0: की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
1: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
0: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
1: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
0: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
1: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
0: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
1: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
0: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
1: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
0: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
1: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
0: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
1: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
0: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
1: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
0: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
1: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
0: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
1: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
0: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी
2: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं तो कभी धीमे धीमे पक रही होती है। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती है तो कुछ दिखाती है विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं, तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
3: मंगल का कौन सा योग वैवाहिक जीवन में अलगाव ले आता है? मंगल का कौन सा योग साहस और आत्मविश्वास को कमजोर कर देता है? मंगल का कौन सा योग जीवन में प्रचंड दुर्घटना का कारण बनता है? कौन से हैं मंगल के अशुभ योग और क्या है उनका समाधान? जानिए मेरे साथ सिर्फ गुड लक टुडे में।
0: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें।
4: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट, कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच। HRIT यूनिवर्सिटी गाजियाबाद, शेपिंग फ्यूचर, क्रिएटिंग लीडर्स।
2: झूलोत्सव के बीच राम मंदिर का भव्य श्रृंगार, सुनहरी रोशनी से नहाया मंदिर का शिखर, सावन के पवित्र महीने में दिखा अनोखा नजारा। जापानी प्रतिनिधिमंडल की उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ से मुलाकात, निवेश को लेकर दिखाया उत्साह। 22 अगस्त को काशी विश्वनाथ के दर्शन करेगा जापानी प्रतिनिधिमंडल। शिमला में झमाझम बारिश से मौसम हुआ मस्ताना, हिमाचल में 21 अगस्त तक बारिश का दौर जारी रहने की संभावना। बिलासपुर, कांगड़ा, मंडी और सिरमौर में बारिश का ऑरेंज अलर्ट। गोल्ड टेस्ट जीतने से 6 विकेट दूर टीम इंडिया, महज 84 रन पर श्रीलंका के 4 बल्लेबाज आउट। भारतीय गेंदबाजों के शानदार प्रदर्शन से मैच का मुड़ा रुख।

0: नमस्कार, गुड मॉर्निंग, स्वागत है आपका गुड न्यूज टुडे में और मैं हूँ आपके साथ गीतिका पंत। और चलिए अब देख लेते हैं अच्छी बात पंडित धीरेन्द्र शास्त्री के साथ।
1: भगवान की बड़ी कृपा, हनुमान जी के चरणों का आशीर्वाद, हम दुबई में प्रवचन करते हुए बाली गए थे। वहां 12 देशों के लोग, अंग्रेज भी आए थे आगे के लगे, उनको ध्यान करवाते रहे। बड़ा गजब का ध्यान हुआ। अंग्रेजों का कैसा हुआ वो जाने, हमारा बढ़िया हुआ। बस सोने को छोड़कर सो नहीं पाए, बाकी ध्यान तो ठीक ही था। लगभग 12 देशों के लोग वहां बैठे बैठे फूंसते रहे, सांस भरे, कई लोगों को दर्शन हुए वहां। राम राम राम राम, बैठ जाओ बैठ जाओ बैठ जाओ बैठ जाओ, नहीं तो तुम लोग डांक जैसो डांकिया जैसो हाथ ही हिलाते रहो। बैठो बैठो, आसन लो, थोड़ा माइक तेज करो। बड़ा आनंद और बड़ा उत्साह इस यात्रा के मध्य में था, पर लौट के उल्लू घर को आए। चाहे जितना घूम लो भैया, चाहे जहां जाओ, सच्चा आनंद तो बालाजी के ही चरणों में है। तो कल गुरुकुलम की बैठक थी, रात को भो की, फिर रात को मंदिर आए, कुछ काम धाम निपटाया। बुढ़ापे का शरीर है, थक जाते हैं, थोड़ी देर विश्राम कर लिया। फिर हमें जगाया गया कि उठो महाराज, महाभारत चालू होने वाली है, अब आपके बिना तीरों के भला ना हो पाएगा, तो अपने शब्दों के तीर चलाने को तैयार हो जाओ। हमने भी कहा कि जो आज्ञा सेनापति। और आके बाहर बैठ गए। पागलो, सच्चाई और अच्छाई अंदर नहीं है तो कहीं नहीं। बुरा जो देखन में चला, बुरा न दिखिया को होए, जो मन खोजो आप नो, तो मुझसे बुरा न कोई। यदि आप सच्चाई और अच्छाई देखना चाहते तो जगत में ना तुम्हें मिलेगी, बाहर तो है ही नहीं। और तुम कितना भी प्रयत्न कर लो, जतन कर लो, बाहर अच्छाई देखने में यदि तुम्हारे अंदर नहीं है तो बाहर तो तुम्हें सब बुरे ही मिलेंगे। तुम्हें जीने का हम एक तरीका बता सकते हैं, चाहो तो ऐसे जी लेना, वरना कोई जबरदस्ती नहीं है। तुम्हें रोका किसने और कौन समझा सकता तुम्हें? तुम्हें तुम खुद नहीं समझा पाए, हम क्या हलवा समझा पाएंगे? तुम्हें समझना होता खुद ही सब जानते हो, समझ ना जाते, फिर भी कोशिश कर रहे गुरु होने के नाते। पागलो, अवगुण देखो खुद में, गुण देखो दूसरों में। जीना है यदि तो अवगुण खुद में देखो और गुण दूसरों में देखो। यदि जीना है आपको तो दो बातें याद रखो, जो नहीं देखना उसे इग्नोर करना सीखो, जो तुम्हारे काम का नहीं है उसे इग्नोर करना सीखो और जो काम का है उसके पीछे पड़ना सीख जाओ। और दूसरी बात, दुनिया में जोश और जुनून बहुत जरूरी है पागलों। मछलियों को कभी कोई तैराकी नहीं सिखाता, मछलियां जन्म लेती हैं और तैरना सीख जाती हैं। पंछियों को कोई उड़ना नहीं सिखाता, कोई स्कूल नहीं है, पक्षी को उसकी मां एक धक्का देती है और पक्षी के बच्चे पंख फड़फड़ाते हैं और उड़ने लगते हैं, कोई स्कूल नहीं जाना पड़ता। सूर्य को कोई जागना नहीं सिखाता, पृथ्वी घूमकर सूर्य के सामने आती है और लालिमा छा जाती है। हवा को कोई बहना नहीं सिखाता, दबाव पड़ता है गुरुत्वाकर्षण का और दाब पड़ता है हवा चल पड़ती। लेकिन एक अकेला आदमी है जिसे सब कुछ पढ़ना सिखाया जाता, बड़ी बड़ी पढ़ाइयां कराई जाती और फिर भी आदमी उल्लू का उल्लू, फिर भी गधा का गधा। पागलो, हम तुम्हें सिर्फ इतनी सी बात कहना चाह रहे, पंछियों को उड़ना नहीं सिखा सकते, मछलियों को तैरना नहीं सिखाया जाता, वैसे ही तुम्हें आनंद में रहना भी नहीं सिखाया जा सकता, बस होना पड़ता है। तुम्हें आनंद में रहना है तो तुम्हें अपने मूल स्वरूप में रहना होगा। तुम्हें आनंद में रहना है, तुम्हें खुश रहना है तो तुम दूसरों में अवगुण देखना बंद करो कि फलाना ऐसा, ढिकाना ऐसा, ढिमका ऐसा, वो ऐसा, वो ऐसा। अरे जिसके जैसे कर्म वो वैसा, तुम काहे को अपनी माथा पच्ची कर रहे। जिसने जो किया है सो पा रहा, तुम होते कौन हो? और तुम्हारे बोलने से या तुम्हारे कहने से ना तो किसी का बुरा होना है ना किसी का भला होना है। जिसको जब जितना मिलना है उतना मिलना है, जितना जिसको परमात्मा को देना है सो देना है। तुम अपना काय को माथा खराब कर रहे हो, एक काम करो, आज के बाद हो सके तो एक सूत्र जीवन में उतार लेना, और वो ये है तुम हर हाल में मस्त रहना सीख जाओ। हर हाल में मुस्कुराओ, बल्कि ये तुम्हारे लिए बड़ा कठिन है, तुम कहां मुस्कुरा पाओ, पर तुम हर हाल में मुस्कुराओ, पड़ोसी को जलाओ, आग लगाओ पड़ोसियों को, जो तुम्हारे रोने का इंतजार कर रहे उनके दिमाग खराब करो। लो प्यारे, भले ही चाय में शक्कर ना हो, सुरकी तो इतनी तेज मारो और ऊपर से लुगाई को घरवाली को डांटो कि इतनी मीठी करती है। भले ही शक्कर ना हो पर ये दोनों भर को पता होना चाहिए, पति और पत्नी को, पड़ोसी को तो यही पता हो, रोज चाय की चुस्कियां ली जा रही और वो भी मीठी चाय। एक जोड़ी कपड़ा लाओ और पड़ोसी को जलाने के लिए रोज वही पहनो, धो धो के पहनो, और बड़ी बड़ी बातें करो। हम जब छोटे हुआ करते थे तो हमारे पड़ोस में एक बहुत अच्छे पड़ोसी रहते थे, हमारे बड़े अच्छे पड़ोसी, बात बात पे ताना देते थे, बात बात पर भंजाई होती थी हमारी, हम बचपन से ही उल्टे आदमी थे। एक जगह गांव में सत्यनारायण कथा करने गए हम, 10 सिक्के मिले सत्यनारायण बचवाई, गांव के पंडित थे, 10 सिक्के मिले हमें, हमने 10 सिक्के इकट्ठे लिए और पड़ोसी के चाचा को इतना जलाया, इतना जलाया, रात को 11-12 बजे तो आवाज ज्यादा तेज सुनाई पड़ती है, साफ सुनाई पड़ती है। हमने स्टील की एक थाली रखी, 10 सिक्के निकाले और ऊपर से टन टन, 1, 2, 9, 10 हो तो गए थे बस, लेकिन धीरे से नीचे से उठाए और वही गिनती रिपीट, 11, 12, 90, 99, 105। लगभग 2 बजे तक गिनती की, चाचा सोया ना। सुबह बोला, धीरू बाबा चाय पियोगे? हम समझ गए रात के सिक्कों का कमाल बोल रहा है। हमने कहा लाओ। बढ़िया, हमने चाय फुरकी, फिर वो थोड़ा बगल में खिसके, हम समझ गए ये पैसों की बात छेड़ेंगे। समझदार तो थे ही अपन, आदमी तो जन्म से ही टेढ़े हुए थे, तो हमें समझ तो थी कि ये पैसों की बात करेंगे। हमने धीमे से वो सिक्के जिस जेब में डाल रखे तो उसमें थोड़ा हाथ मार दिया, अब वो बज गए। तो उन्होंने कहा कि आज रात को तुम बड़े जगते रहे क्या? तो हमने भी कहा चाचा क्या बताएं, आंख लग नहीं रही थी, सोचा कुछ काम कर लिया जाए। तो चाचा खोद खोद पूछने लगे, काम क्या करते रहे? कुछ खास काम नहीं, ऐसे ही, आप रहने दो ना, चाय बहुत बढ़िया बनी। पर चाचा को चाय कहां, चाचा को तो सिक्कों की खुजली थी। चाचा बोले और चाय बनवाए? हमका पूछना क्या है। सुबह सुबह अपन ने दो चाय मसक दी, और जब उधारी उनके मांगने की बात आई तो अपन खिसक गए। तो भले ही जेब में फूटी कौड़ी ना हो, पर चाल ऐसी चलो जैसे कोई सम्राट चला जा रहा। बैठो तो ऐसे बैठो जैसे कोई करोड़पति बैठा। और कभी तुम हमारा हंसना देखना, हंसते भी हैं तो ऐसे हंसते हैं कि मानो हमसे बड़ा कोई शहंशाह पृथ्वी पर नहीं। पागलो, ये बातें बताकर हम तुम्हें सिर्फ इतना जताना चाह रहे कि यहां गम किसको कम है, यहां गम किसको कम है। तुम टेंशन मत लो, हम हैं। तुम सोचते काय हो? हां, हम तुम्हारे जीवन में चमत्कार तो नहीं कर सकते, पर चमत्कार करने वाले आदमी से तुम्हें मिलवा सकते हैं। ऐसी व्यक्तित्व की धारा से तुम्हें जोड़ सकते हैं जो तुम्हारे जिंदगी में सदा बहार ला सकता, तुम्हारे चेहरे पर मुस्कुराहट ला सकता, तुम्हारे आंखों में नूर ला सकता और तुम्हारी जिंदगी को बदल सकता। हमने ऐसे आदमी के बारे में पढ़ रखा है, उस आदमी से हम मिल रखे हैं, उस आदमी को हमने देख रखा है कि तुम ना भी रहोगे तो तुम्हारी बातें होंगी, तुम कुछ ना भी बन पाओगे तब भी तुम ऐसे चलोगे जैसे बहुत कुछ बन चुके हो। और उस आदमी का यदि तुम पता पूछना चाहो तो उस आदमी का नाम है बागेश्वर बालाजी। हमने यहां लाखों की बिगड़ी बनते देखी है, हां, लेकिन शर्त ये कि टाइम पक्का नहीं कब, पर ये पक्का है, हां, शर्त ये है कि तुम्हें फिर भटकना नहीं पड़ेगा, अटकना पड़ेगा। भटक तो तुम अभी ही रहे हो, इतनी भटकी आत्मा हो तुम। कभी चादर चढ़ाने चल जाते, कभी नारियल फोड़ने चले जाते, कभी गांव में तो गांव में हे महाराज भभूति दे दो वहीं चले जाते। दुनिया में जितने तुम भटके शायद कोई ना भटका होगा। मेरे पागलो, हम तुम्हें चमत्कार दिखाने के लिए नहीं बुलाते हैं धाम पर, हमने तुम्हें सिर्फ इसलिए बुलाया कि तुम सदा सदा के लिए बालाजी के हो जाओ और बालाजी तुम्हारे हो जाएं। तुम यहां हमारे भी चक्कर में ना पड़ना। हां, अभी भी मौका है, खिसक लो, उठ लो, बाद में मत कहना हमारे चक्कर में पड़े नहीं कि तुम पगला बने और तुम आधे पागल भय। तुम्हारा मन ना करे जीना करे, अभी उठो, घर जाओ, दर्शन कर ही लिए, हमको देखा ही लिया, हम आदमी ऐसा ही है, घर जाओ, अपना काम करो। लेकिन एक बात याद रखना, पते की बात, हमारे चक्कर में ना पड़ना, लेकिन हम जिनके चक्कर में पड़े, यदि तुम उनके चक्कर में पड़ गए तो तुम्हारी पीढ़ियां ना सुधर जाएं तो कहना। समय लग सकता, हमें भी लगा, हम भी तुम्हारी तरह आए थे, हम कोई गुरु गुरु नहीं है, और तुम हमें गुरु बनाने के चक्कर में गुरु जी मत बोलो। हम कोई गुरु जी नहीं है, हम खुद गुरु के चेला है, हम क्या गुरु होंगे, हलुआ। हम खुद अपने गुरु के चेला हैं, हम भी तुम्हारी तरह यहाँ आए थे कुछ पाने। जिस गांव में हमारा जन्म हुआ, जिस गांव में यहाँ पर बाबागिरी हम कर रहे, इसी गांव में हमने भीख मांगी, इसी गांव में घर घर हमने आटा मांगा, इसी गांव में हमने दुत्कारें सही। अब तो कमाई मिलती है, पहले तो थोक में मिलती थी, थोक में लोग ताने देते थे। हमारे गांव का सरपंच बैठने नहीं देता था, आज जलवे तो देखो। जिस गांव में हमारा जन्म हुआ, हमारे यहां विधायक भी 5 साल में एक बार आता था वोट लेने, आज उनके जलवे तो देखो। भारत के इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ 2025 में कि देश का प्रधानमंत्री और देश की राष्ट्रपति महोदया 3 दिन में दोनों एक जगह पर दर्शन करने गए। अब वो बागेश्वर धाम पे हुआ। भारत की किसी कन्या विवाह में पहली बार ऐसा हुआ कि 8 देशों के राजदूत बागेश्वर धाम पर आए, वो भी जिन्हें सनातन से लेना देना नहीं, वो भी सीताराम जप के गए और मत्था टेक करके बालाजी के चरणों में गए। मेरे पागलों, भगवान से बड़ा दुनिया में कोई चमत्कारी नहीं होता, बालाजी से बड़ा कोई बिगड़ी बनाने वाला नहीं होता। और सुनो, इस रास्ते पे तुम आ तो गए हो, तुम्हें ताने बहुत मिलेंगे, कान भरने वाले मिलेंगे, और हम पे तो भगवान की विशेष ही कृपा है, हमें कान भरने वाले खोजने नहीं पड़ते, यही मिल जाते। और मजेदार बात यह है बागेश्वर धाम की, यहीं पे वो दुकान डाले हैं, यहीं पर उनका धंधा चल रहा, और यहीं पे वो गालियां बकते हैं। ये भी मजा सुनना, ये तुमने दुनिया में कहीं ना देखा होगा कि जिस थाली में खाओ उसी में छेद हो जाए, वो अपने बागेश्वर धाम पर बहुत बढ़िया होता है, इसका भी एक अलग आनंद है। तब तो तुलसीदास जी कह रहे, तुलसी कबहू ना जाइए जन्म भूमि के गांव, दास गए तुलसी गए धरो तुलसिया नाम। तुलसीदास जी गांव गए तो किसी ने तुलसीदास ना कहा, लोग बोले आ गए तुलसिया, कोई बोला तुलसिया नहीं तुलसी आया। तुलसीदास जी बोले वाह, लोग हमें तुलसीदास कह रहे, ये तुलसिया कह रहे। जन्म भूमि में रहना बड़ा कठिन है, और गांव के गांव में यदि तुम बाबा बन जाओ, समझ जाना बाबा बढ़िया है। गांव का गांव में बाबा बनना बड़ा कठिन है, और हमने तो ये टेढ़ी टेढ़ी खीर पहले ही दिन से पाल रखी, बिल्ली गांव के गांव में ही बाबा बन गए। पागलो, ये बातें बताकर हम तुम्हें बहलाना नहीं चाहते, सीधी सी बात है, आज के बाद अभी से इसी वक्त या तो तुम हनुमान जी को मानना छोड़ दो या हनुमान जी पर छोड़ दो, बस हम इतनी सी बात जानते हैं। तुमसे ही पूछना चाहते, क्या तुम दरबारों में भटकना चाहते, बोलो, क्या तुम चाहते कि तुम्हारा मजाक बनाया जाए, क्या तुम्हारी पीढ़ी तांत्रिक मांत्रिक के चक्कर में पड़े ऐसा चाहते हो, हली उल्लाह वालों के चक्कर में पड़ना चाहते हो? अरे जोर से तो बोलो, पक्का सोच लिया, पक्का? तो जीवन भर के लिए बालाजी का होना चाहते? कौन कौन होना चाहता? बदल तो ना जाओगे, मुड़ तो ना जाओगे, परीक्षा बड़ी होगी, दे पाओगे? सोच लो। अच्छा, सालों लग सकते हैं, चलेगा? चलो देखते हैं दम कितना बाजुए का तिल में। हाथ नीचे करो, पीटने के काम आएंगे। हमारी 3 बातें मानो। पहली, आज से हमारे चक्कर में ना पड़ना। हम जिन बालाजी के चक्कर में हैं, उनके चक्कर में पड़ना। दूसरी, लहसुन प्याज मांस मंदरा बंद करके पेशी शुरू कर दे, महीने में 2 महीने में जब टाइम मिले तब। तीसरी, जब भी उनके सामने जाना, कह देना तुम हमारे, और बस बाकी हम काम निपटा देंगे। एक वचन हम दे रहे, हम तुम्हें जरूर मिलेंगे। और तुम्हारी अर्जी जरूर लगवाएंगे। ये बात हम बालाजी के सामने कह रहे हैं, पर कब मिलेंगे ये नहीं बताएंगे, अर्जी कब लगवाएंगे ये नहीं बताएंगे, मिलेंगे लगाएंगे ये बात पक्की। अब जब तक तुम्हारा काम सफल नहीं हो जाएगा तब तक हम उनसे लड़ते रहेंगे। बोलो सीताराम। बागेश्वर धाम की

0: मंगल का कौन सा योग वैवाहिक जीवन में अलगाव ले आता है? मंगल का कौन सा योग साहस और आत्मविश्वास को कमजोर कर देता है? मंगल का कौन सा योग जीवन में प्रचंड दुर्घटना का कारण बनता है? कौन से हैं मंगल के अशुभ योग और क्या है उनका समाधान? जानिए मेरे साथ सिर्फ गुड लक टुडे में।
1: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
2: और दुर्भाग्य कहता है
3: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
4: अविश्वास में विश्वास बसता है,
1: जो हम में अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
5: गुड न्यूज टुडे।
1: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते। खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे। देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
6: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
7: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
1: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते। खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे। देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
6: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को

0: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए।
1: ऐसा योग वैवाहिक जीवन में अलगाव ले आता है। मंगल का कौन सा योग साहस और आत्मविश्वास को कमजोर कर देता है? मंगल का कौन सा योग जीवन में प्रचंड दुर्घटना का कारण बनता है? कौन से हैं मंगल के अशुभ योग और क्या है उनका समाधान, जानिए मेरे साथ सिर्फ गुड लक टुडे में।
2: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती हैं तो कुछ दिखाती हैं विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
3: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
4: और दुर्भाग्य कहता है
5: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
2: अविश्वास में विश्वास बसता है,
3: जो हमें अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
6: गुड न्यूज टुडे।
3: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते। खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे। देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।

0: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है कम से।
1: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाए स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा, प्यार से परोसा।
2: जापानी प्रतिनिधि मंडल की यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ से मुलाकात, निवेश को लेकर दिखा उत्साह। 22 अगस्त को काशी विश्वनाथ के दर्शन करेगा जापानी प्रतिनिधि मंडल। शिमला में झमाझम बारिश से मौसम हुआ मस्ताना, हिमाचल में 21 अगस्त तक बारिश का दौर जारी रहने की संभावना। बिलासपुर, कांगड़ा, मंडी और सिरमौर में बारिश का ऑरेंज अलर्ट। मीटर कैनवस पर मिथिला पेंटिंग का बना विश्व रिकॉर्ड, कैनवस पर लिखे रामचरितमानस के प्रसंग, दिल्ली में हुआ कार्यक्रम। गर्ल्स जीतने से 6 विकेट दूर टीम इंडिया, महज 84 रन पर श्रीलंका के 4 बल्लेबाज आउट। भारतीय गेंदबाजों के शानदार प्रदर्शन से मैच का मोड़ा रुख। महिला हॉकी विश्व कप में भारत की शानदार जीत, दक्षिण अफ्रीका को 6-1 के बड़े अंतर से धीमा। टूर्नामेंट में भारत की पहली और अब तक की सबसे बड़ी जीत।
0: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है कम से कम।
2: गर्ल टेस्ट के 4th दिन का खेल खत्म होने तक टीम इंडिया की स्थिति मजबूत, भारत को आखिरी दिन गिराने होंगे 6 विकेट। 372 रनों के लक्ष्य का पीछा करते हुए महज 84 रनों पर श्रीलंका के 4 बल्लेबाज लौटे पवेलियन, कप्तान धनंजय डिसिल्वा और सोनल दिनुषा क्रीज पर मौजूद। श्रीलंका की दूसरी पारी में भी बल्लेबाजों के लिए मुसीबत बने भारतीय स्पिनर मानव सुथार, 4 में से 2 बल्लेबाजों को किया आउट। तेज गेंदबाज मोहम्मद सिराज और प्रसिद्ध कृष्णा के नाम भी एक एक सफलता, भारत की कसी गेंदबाजी ने मैच का रुख टीम इंडिया की तरफ मोड़ा। इससे पहले ऋषभ पंत की शानदार बल्लेबाजी की बदौलत भारत ने दूसरी पारी में बनाए थे 193 रन, पंत ने 66 रनों की खेली थी आतिशी पारी। क्रिकेटर ऋषभ पंत ने रचा इतिहास, टेस्ट में सबसे तेज 100 सिक्स लगाने वाले भारतीय बल्लेबाज बने। पंत ने श्रीलंका के खिलाफ खेले जा रहे पहले टेस्ट के 4th दिन किया कारनामा, सिर्फ 4,918 बॉल का सामना कर लगाए 100 छक्के। पर्वतारोहण और पैराग्लाइडिंग कर जिम एंड डब्ल्यूएस ने रचा इतिहास, पहली बार किया माउंट डेल्टा 41 के शिखर से सीधे पैराग्लाइडिंग द्वारा नीचे उतरने का सफल कारनामा। 13 सदस्यीय टीम ने भारतीय एडवेंचर के इतिहास में हासिल की बड़ी उपलब्धि, इस दल को 11 अगस्त को किया गया था रवाना। लद्दाख के करगिल क्षेत्र में स्थित है माउंट डेल्टा 41 जो माउंट बर्मल के नाम से भी है मशहूर, कर्नल हेमचंद्र सिंह के नेतृत्व में पूरा हुआ यह कारनामा। बैडमिंटन वर्ल्ड चैंपियनशिप में लक्ष्य सेन की शानदार जीत, लक्ष्य ने पहले दौर में ऑस्ट्रिया के कालिंस वैलेंटाइन फेलिमोन को 16-21, 21-8, 21-4 से हराया। लक्ष्य सेन ने पहला गेम हारने के बाद की शानदार वापसी, दूसरा और तीसरा गेम जीतकर अपने नाम किया मैच। महिला हॉकी विश्व कप में भारत की शानदार जीत, दक्षिण अफ्रीका को 6-1 के बड़े अंतर में धीमा। टूर्नामेंट में भारत की पहली और अब तक की सबसे बड़ी जीत। भारत की ओर से नवनीत कौर, सुनेलिता टोपो, सुशीला चानू, दीपिका और साक्षी राणा ने दागे गोल। भारतीय टीम ने दर्ज की टूर्नामेंट की अपनी पहली और अब तक की सबसे बड़ी जीत, भारत ने पहले मुकाबले में चीन के साथ 2-2 से ड्रॉ किया था मैच। राष्ट्रीय खेल पुरस्कार 2025 की घोषणा, अर्जुन पुरस्कार के लिए चुने गए 17 खिलाड़ी। फुटबॉल के दिग्गज आई अरु माय नागमन को अर्जुन अवार्ड की लाइफटाइम कैटेगरी में सम्मान। बैडमिंटन में गायत्री गोपीचंद और त्रिशा जॉली को दिया गया अर्जुन अवार्ड, महिला डबल्स में भारत की प्रमुख प्लेयर्स में रही हैं दोनों खिलाड़ी। चेस के क्षेत्र से दिव्या देशमुख और विदित गुजराती होंगे अर्जुन अवार्ड से सम्मानित। दिव्या ने 2025 में FIDE वुमेन्स वर्ल्ड कप का खिताब जीतकर हासिल की थी बड़ी उपलब्धि। एथलेटिक्स में तेजस्विन शंकर को अर्जुन अवार्ड। हाई जंप और डेकथलॉन में कर चुके हैं भारत का प्रतिनिधित्व। कॉमनवेल्थ गेम्स में डेकथलॉन में मेडल जीतकर रचा था इतिहास। द्रोणाचार्य अवार्ड के नामों का भी ऐलान। नियमित कैटेगरी में एथलेटिक्स के परवीर सिंह, बॉक्सिंग के छोटे लाल यादव और शूटिंग की नेहा नंदकुमार चौहान का नाम। लाइफटाइम कैटेगरी में बॉक्सिंग में धर्मेंद्र सिंह यादव और कुश्ती में वीरेंद्र कुमार को सम्मान। पर्यटकों से गुलजार हुआ बीजापुर का नंबी वाटरफॉल। हर रोज बड़ी संख्या में इस खूबसूरत वाटरफॉल को देखने पहुंच रहे हैं पर्यटक। छत्तीसगढ़ के सबसे ऊंचे झरनों में शुमार है नंबी वाटरफॉल। पिछले दो महीनों में 2000 से ज्यादा पर्यटक कर चुके हैं इस खूबसूरत झरने का दीदार। नक्सली प्रभावित होने के कारण पहले यह इलाका पर्यटकों की पहुंच से था दूर। सरकार और प्रशासन के प्रयासों के बाद अब ये जगह बन चुकी है छत्तीसगढ़ की फेवरेट डेस्टिनेशन। करीब 300 से 700 फीट की ऊंचाई से नीचे गिरता है ये झरना। इस मनमोहक दृश्य को देखने के लिए जुटते हैं यहाँ काफी सैलानी। घने जंगल, पहाड़ियों और हरी भरी वादियों से घिरा हुआ है नंबी वाटरफॉल। सैलानियों के लिए बेहद शांत और सुकून देने वाली है जगह। झूलोत्सव के बीच राम मंदिर का भव्य श्रृंगार। सुनहरी रोशनी से नहाया मंदिर का शिखर। सावन के पवित्र महीने में देखा अनोखा नजारा। मुंबई में गणपति उत्सव की तैयारियां शुरू। शेर पर सवार वहां लक्ष्मी अवतार वाले 22 फीट ऊंचे काला चौकी के महागणपति पधारे पंडाल। श्रद्धालुओं ने ढोल ताशे के साथ बप्पा के आगमन का किया स्वागत। बप्पा के पंडाल आने की खुशी में झूमे श्रद्धालु। देशभर में 14 सितंबर से मनेगा गणेशोत्सव। दिल्ली के मंत्री प्रवेश वर्मा ने गुजरात के नर्मदा में दुनिया की सबसे ऊंची मूर्ति स्टैच्यू ऑफ यूनिटी का किया दौरा। सरदार पटेल को नमन किया। प्रवेश वर्मा ने साबरमती रिवर फ्रंट की तर्ज पर दिल्ली में यमुना रिवर फ्रंट बनाने का ऐलान किया। बोले झोपड़ियों की जगह बनाएंगे फ्लैट। यमुना सफाई का काम जारी। बिहार के अंग क्षेत्र में धूमधाम से मनाया जा रहा है लोक पर्व मनसा विषहरी। पूजा केंद्र पर उमड़ रही श्रद्धालुओं की भीड़। भक्तों की मन्नत पूरी करता है माँ विषहरी। पूजा केंद्रों पर दिख रही आशा परंपरा और अंग प्रदेश के इतिहास की झलक। बहुला विषहरी की कहानी से जुड़ी झांकी के भी दर्शन। लोक पर्व के लिए पूजा केंद्र मंसुरितल्ले, बड़ा बाजार, गुलजार, पोकर, रायसर, बेलदार टोली की गई सजावट। कलाकृतियों के जरिए दिया जा रहा है संदेश। गाजे बाजे के साथ निकाली गई बाला लखेंद्र की बारात। बड़ी संख्या में लोग हुए शामिल। पौराणिक मान्यता के मुताबिक बाला लखेंद्र बेहुला की होती है शादी। आज किया जाएगा प्रतिमा का विसर्जन। पूरे क्षेत्र में 3 दिन तक धूमधाम से मनाया जाता है लोक पर्व। उत्तर प्रदेश के पीलीभीत में है भगवान भोलेनाथ का अनोखा धाम। गोमती नदी के किनारे घने जंगल के बीच उसे बाबा एक खतरनाक धाम को लेकर कई मान्यताएं। भोलेनाथ के धाम में रंग बदलते शिवलिंग और पहली पूजा को लेकर भक्तों में गहरी आस्था। मन्नत पूरी होने पर यहां चढ़ाए जाते हैं हैंडपंप। पीलीभीत के पूरनपुरी तहसील इलाके में पुन्नापुर टांडा गांव के पास घने जंगलों के बीच मौजूद है बाबा एकहत्तरनाथ धाम। दूर दूर से पहुंचते हैं श्रद्धालु भोलेनाथ के दर्शन के लिए। यहां गोमती नदी के किनारे बसे घने जंगल से गुजरकर यहां पहुंचते हैं श्रद्धालु। यहां लगे सैकड़ों हैंडपंप बताते हैं आस्था की कहानी। मान्यता है कि महर्षि गौतम के श्राप से मुक्ति के लिए देवराज इंद्र ने यहां की थी 71वें शिवलिंग की स्थापना। तमिलनाडु की लाखों कामकाजी महिलाओं के लिए गुड न्यूज, राज्य सरकार ने तीसरे बच्चे के लिए एक साल का मातृत्व अवकाश देने का ऐलान किया। मध्य प्रदेश में रेलवे नेटवर्क के विस्तार से जुड़ी गुड न्यूज, के ग्वालियर चंबल अंचल में कैलासरस सब्बलगढ़ बीरपुर रेल सेक्शन का हुआ शुभारंभ। रेल सेक्शन के उद्घाटन में केंद्रीय मंत्री मुख्यमंत्री समेत कई नेता हुए शामिल, रेल नेटवर्क के विस्तार से सुधरेगी कनेक्टिविटी। असम में युवाओं से जुड़े मामलों को सुलझाने के लिए युवा कल्याण विभाग बनाएगी सरकार, मुख्यमंत्री हिमंत बिस्व शर्मा ने ऐलान किया। गुजरात के राजकोट में बिना नंबर प्लेट वाली और बिना हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट वाली गाड़ियों को नहीं मिलेगा पेट्रोल। इंदौर के डॉक्टर की बड़ी उपलब्धि, एक दिन में 51 रोबोटिक बेरिएट्रिक सर्जरी कर बनाया नया रिकॉर्ड, वजन घटाने के लिए की जाती है बेरिएट्रिक सर्जरी। बेरिएट्रिक और रोबोटिक सर्जन डॉक्टर मोहित भंडारी ने स्वतंत्रता दिवस पर सर्जिकल स्वराज पहल के तहत एक ही दिन में की 50 से ज्यादा रोबोटिक सर्जरी। अब तक 40,000 सर्जरी कर चुके हैं डॉक्टर मोहित भंडारी। डॉक्टर भंडारी की उपलब्धि भारतीय हेल्थ केयर और रोबोटिक सर्जरी के क्षेत्र में मील का पत्थर। गुजरात के नवसारी में मछुआरों के लिए कोस्ट गार्ड के जवान बने देवदूत, 9 मछुआरों को किया गया एयरलिफ्ट, एनडीआरएफ भी राहत अभियान में रही शामिल। वाराणसी में बड़ा गंगा नदी का जलस्तर, घाटों पर एनडीआरएफ और जल पुलिस की तैनाती, नमो घाट तक पहुंचा पानी। उत्तरकाशी में से दयारा बुग्याल में दूध मक्खन की अनूठी होली, धूमधाम से मनाया गया पारंपरिक बटर फेस्टिवल। प्रकृति का आभार जताने के लिए पारंपरिक महोत्सव का आयोजन, समुद्र तल से 11,000 फीट की ऊंचाई पर 28 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में होती है दूध मक्खन मट्ठा की होली। इस दुनिया के अनोखे उत्सव में शामिल होने के लिए जुटते हैं देश विदेश के पर्यटक, सर्दियां शुरू होने से ठीक पहले होता है भव्य आयोजन। मोगा जिले के 39 वर्षीय हरप्रीत कौर ने पेश की जीव प्रेम की एक अनोखी मिसाल, अपने घर में रोजाना करीब 500 चिड़िया और अलग अलग पक्षियों को देती है दाना पानी। तेरह सालों से हरप्रीत निभा रही हैं ये परंपरा, करीब 500 चिड़ियों की देखभाल कर दे रही है प्रकृति प्रेम का अनोखा संदेश। मध्य प्रदेश के युवक ने साइकिल से 45 दिन में तय की है 3,000 किलोमीटर की दूरी, अगले एक साल में 22,000 किलोमीटर की दूरी तय करने का लक्ष्य। भारत को विश्व गुरु बनाने का संदेश लेकर 25,000 किलोमीटर की यात्रा पर निकला है युवक, 12 ज्योतिर्लिंगों और चारधाम की यात्रा कर चुके हैं लक्ष्य। उत्तराखंड दिल्ली राजस्थान होते हुए गुजरात पहुंचे एमपी के बैतूल के रहने वाले निखिल कनौजिया, पशुपतिनाथ समेत सभी बड़े धामों के दर्शन का है इरादा। उत्तराखंड में कुटकी की खेती और उससे जुड़े काम के लिए बागेश्वर में किसान दया दानू का सम्मान, खेती से 400 से ज्यादा महिलाओं को मिला स्वरोजगार। बागेश्वर जिले की कपकोट तहसील के किसान दया दानू को मिला तीलू रौतेली सम्मान, सम्मान मिलने के बाद कौसानी में सहकार संगठन ने किया सम्मानित।
0: गुन्नी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को।
3: मंगल का कौन सा योग वैवाहिक जीवन में अलगाव ले आता है? मंगल का कौन सा योग साहस और आत्मविश्वास को कमजोर कर देता है? मंगल का कौन सा योग जीवन में प्रचंड दुर्घटना का कारण बनता है? कौन से हैं मंगल के अशुभ योग और क्या है उनका समाधान, जानिए मेरे साथ सिर्फ गुड लक टुडे में।
0: गुन्नी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, मोर इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
4: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे अच्छी खबर सच्ची खबर।
5: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।
6: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं, तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती है, तो कुछ दिखाती है विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है, तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं, तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
5: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
7: और दुर्भाग्य कहता है
8: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
6: अविश्वास में विश्वास बसता है,
5: जो हम में अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
1: गुड न्यूज टुडे।

0: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें।
1: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे। देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
0: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
2: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
1: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।
3: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती है तो कुछ दिखाती है विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
1: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
4: और दुर्भाग्य कहता है
1: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
3: अविश्वास में विश्वास बसता है,
1: जो हम में अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
2: गुड न्यूज टुडे।
1: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे। देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
0: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
2: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
1: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे। देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।

नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं किस्मत कनेक्शन और मैं हूं आपके साथ शैलेंद्र पांडे। बात सावन की हो, बात शिव जी की हो, बिना शिवलिंग के ये बातें पूरी नहीं हो सकती। भगवान शिव की लिंग रूप में पूरे विश्व में पूजा की जाती है। आखिर ये शिवलिंग है क्या, इसका महत्व क्या है और क्या शिवलिंग की पूजा कभी भी कोई भी कर सकता है, इन तमाम विषयों पर आज चर्चा करेंगे। अब जान लेते हैं दिनांक 19 अगस्त 2026 दिन बुधवार को प्रातः काल ग्रहों की स्थिति क्या है। बुध और बृहस्पति विद्यमान हैं कर्क राशि में, सूर्य और केतु सिंह राशि में, शुक्र कन्या राशि में, चंद्रमा तुला राशि में, राहु कुंभ राशि में, शनि मीन राशि में और मंगल फिलहाल विद्यमान है मिथुन राशि में। ग्रहों की इसी स्थिति के आधार पर आगे हम जानेंगे कि आपका दैनिक राशिफल कैसा रहने वाला है। सबसे पहले जानते हैं कि शिवलिंग की महिमा क्या है। देखिए, शिवलिंग को शिव जी का निराकार स्वरूप माना जाता है। वैसे तो दिखाई देता है, आप उसे स्पर्श भी कर सकते हैं, लेकिन ये दरअसल प्रकाश का प्रतीक है और शिव जी का निरा

दोनों समाहित होते हैं। शिवलिंग की जब आप उपासना करते हैं, शिवलिंग की जब आप पूजा करते हैं, तो शिव और शक्ति दोनों की उपासना संपूर्ण हो जाती है। अलग अलग प्रकार के शिवलिंगों की पूजा करने का प्रावधान शास्त्रों में बताया गया है। जैसे स्वयंभू शिवलिंग, अपने आप जो धरती से प्रकट हुआ, नर्मदेश्वर शिवलिंग जो नर्मदा नदी से प्रकट हुआ, जनेऊधारी शिवलिंग जिस शिवलिंग पर सफेद रंग की लकीर हो, सोने और चांदी के शिवलिंग और पारद यानी पारे से बना हुआ शिवलिंग। स्वयंभू शिवलिंग की पूजा सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण मानी जाती है। जो शिवलिंग अपने आप प्रकट हुआ है उसकी पूजा सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है और सबसे ज्यादा फलदायी भी है। भारत में कई जगहों पर स्वयंभू शिवलिंग प्रकट हुए हैं और उनकी विशेष पूजा उपासना सावन के महीने में या सोमवार के दिन की जाती है। शिवलिंग पर हमारी चर्चा जारी है, लेकिन आपको बता दें कि कार्यक्रम के अंत में हम बताएंगे एक लकी टिप के बारे में और एक सक्सेस मंत्र के बारे में। शिवलिंग के माध्यम से हम लोग नियमित रूप से भगवान शिव की पूजा उपासना करते हैं, लेकिन कुछ बातें शिवलिंग के लिए बड़ी महत्वपूर्ण हैं, वो बात भी आपको जानना चाहिए। देखिए, शिवलिंग की पूजा उपासना शिव पूजा में सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण मानी जाती है। शिवलिंग घर में अलग तरह से स्थापित होता है और मंदिर में शिवलिंग अलग तरीके से स्थापित होता है। शिवलिंग कहीं भी स्थापित हो, घर में हो या मंदिर में हो, उसकी वेदी का मुख उत्तर दिशा की तरफ ही होना चाहिए। घर में अगर आप शिवलिंग स्थापित करते हैं तो शिवलिंग बहुत ज्यादा बड़ा नहीं होना चाहिए। अधिक से अधिक 6 इंच का शिवलिंग यानी 12 अंगुल का शिवलिंग आप घर में रख सकते हैं। मंदिर में कितना भी बड़ा शिवलिंग स्थापित किया जा सकता है। विशेष उद्देश्यों के लिए और विशेष कामनाओं को पूर्ण करने के लिए पार्थिव शिवलिंग नदी की मिट्टी से शिवलिंग बनाकर उसकी भी पूजा की जाती है। तो जो ये सोचते हैं कि हम घर में शिवलिंग नहीं रख सकते, उनको मैं बता दूं कि छोटे आकार का सबसे उत्तम होगा नर्मदा नदी से निकला हुआ नर्मदेश्वर शिवलिंग। अगर आप अपने घर में स्थापित करें और नियमित रूप से उनको जल अर्पित करें तो आपका कल्याण होगा। शिवलिंग पर चर्चा हमारी जारी है, लेकिन आपको बता दें कि कार्यक्रम के अंत में हम बताएंगे एक लकी टिप के बारे में और एक सक्सेस मंत्र के बारे में। अब आपको बताते हैं कि जब आप शिवलिंग की पूजा कर रहे हैं तो शिवलिंग की पूजा में आपको क्या क्या अर्पित करना चाहिए। देखिए, शास्त्र कहता है कि भगवान विष्णु अलंकार से प्रसन्न होते हैं, सूर्य देव नमस्कार से प्रसन्न होते हैं और शिव

0: जी जल से प्रसन्न होते हैं। तो शिव जी की पूजा में दो वस्तुओं का बड़ा महत्व है, सबसे ज्यादा तो जल का और उसके बाद बेलपत्र का। जल और बेलपत्र इन दोनों वस्तुओं से शिव जी की विधिवत पूजा की जा सकती है। इसके अलावा कच्चा दूध, सुगंध, गन्ने का रस, चंदन, इनसे भी शिव जी का अभिषेक किया जाता है। शिव जी को कभी भी सेमल, जूही, कदंब और केतकी अर्पित नहीं करना चाहिए, वरना आपकी पूजा का फल नहीं मिलेगा, पूजा आपकी निष्फल हो जाएगी। अब आप शिवलिंग पर मान लिया जल चढ़ा रहे हैं या पंचामृत चढ़ा रहे हैं तो किन बातों का ध्यान रखेंगे? शिवलिंग पर जलीय पदार्थ अगर लिक्विड अर्पित करेंगे तो उसकी धारा बनाकर शिवलिंग पर अर्पित करिएगा। अगर ठोस पदार्थ अर्पित कर रहे हैं, मिठाई है, फल है, फूल है, तो दोनों हाथों से उसको शिवलिंग पर लगाइएगा। शिवलिंग पर आप कुछ भी अर्पित करें, अंत में जल जरूर अर्पित करिएगा। और शिवलिंग पर तामसिक चीजें अर्पित नहीं करनी चाहिए। शिवलिंग पर बहुत सारे लोग सरसों का तेल अर्पित करते हैं। आपको पता नहीं है कि शिवलिंग पर सरसों का तेल अर्पित करना एक मारण प्रयोग है। विशेष मंत्रों के साथ तंत्र में इसका प्रयोग होता है, बिना जाने बूझे केवल सुन सुनाकर दिखावे के लिए शिवलिंग पर तेल अर्पित मत करिए, वरना परिणाम सुखद नहीं होंगे। शिवलिंग पर सबसे महत्वपूर्ण है कि आप हर हाल में अपने घर से भरकर जल ले जाइए और शिवलिंग पर अर्पित करिए। मंदिर का जल भर के मंदिर में अर्पित मत करिएगा। अब कार्यक्रम में जान लेते हैं आपके भाग्य को बेहतर बनाने के लिए एक लकी टिप। अगर आपकी एकाग्रता कमजोर है तो जहां काम करते हैं, जहां पढ़ते लिखते हैं, वहां उगते हुए सूर्य का चित्र लगाइएगा। सामने अपनी आंखों के उगते हुए सूर्य का चित्र लगाएं, निरंतर उसे देखते रहें। आपका कॉन्सेंट्रेशन, आपकी एकाग्रता बेहतर हो जाएगी। अब जान लेते हैं दिनांक 19 अगस्त 2026 दिन बुधवार का सक्सेस मंत्र क्या है। प्रातः काल शिव जी को शिवलिंग पर जाकर बेलपत्र अर्पित करिएगा। घर से निकलते समय उसमें से एक बेलपत्र अपने पास रख लीजिएगा। अगर प्रातः काल ऐसा करते हैं तो दिन भर के कार्यों में आपको सफलता अवश्य मिलेगी। तो किस्मत कनेक्शन में आज के लिए बस इतना ही। आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो, इसी कामना के साथ मुझे दीजिए इजाजत। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए गुड न्यूज टुडे। नमस्कार।
1: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, मोड़ इसके ऊपर उसके ऊपर, ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
2: देश देख रहा है अच्छी खबरें।
3: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट, कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच, HRIT यूनिवर्सिटी गाजियाबाद, शेपिंग फ्यूचर क्रिएटिंग लीडर्स।
4: जापानी प्रतिनिधिमंडल की यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ से मुलाकात, निवेश को लेकर दिखा उत्साह, 22 अगस्त को काशी विश्वनाथ के दर्शन करेगा जापानी प्रतिनिधिमंडल। शिमला में झमाझम बारिश से मौसम हुआ मस्ताना, हिमाचल में 21 अगस्त तक बारिश का दौर जारी रहने की संभावना, बिलासपुर कांगड़ा मंडी और सिरमौर में बारिश का ऑरेंज अलर्ट। कैनवस पर मिथिला पेंटिंग का बना विश्व रिकॉर्ड, कैनवस पर लिखे रामचरितमानस के प्रसंग, दिल्ली में हुआ कार्यक्रम। गोल्डर जीतने से 6 विकेट दूर टीम इंडिया, में 84 रन पर श्रीलंका के 4 बल्लेबाज आउट, भारतीय गेंदबाजों के शानदार प्रदर्शन से मैच का मुड़ा रुख। महिला हॉकी विश्व कप में भारत की शानदार जीत, दक्षिण अफ्रीका को 6-1 के कड़े अंतर से दिमाग, टूर्नामेंट में भारत की पहली और अब तक की सबसे बड़ी जीत।
1: गुड न्यूज चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, मोड़ इसके ऊपर उसके ऊपर।
4: नमस्कार, स्वागत है आपका गुड लक टुडे में और मैं हूँ आपके साथ गीतिका पंत, और मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं पंडित शैलेंद्र पांडे जी। पंडित जी बहुत बहुत स्वागत है आपका।
5: जी नमस्कार।
4: तो आज के इस एपिसोड में हम बात करेंगे मंगल के अशुभ योगों के बारे में। जी हाँ, आपकी कुंडली में अगर मंगल का अशुभ योग बन रहा है तो उसको सही करने के उपाय क्या हैं, उसको शांत करने के उपाय क्या हैं, उस पर पंडित जी से करेंगे हम विस्तार से चर्चा। लेकिन सबसे पहले देख लेते हैं आज का गुड लक मंत्र।
0: अगर आत्मविश्वास कम रहता हो, कॉन्फिडेंस साहस कम रहता हो, आत्मविश्वास और साहस की समस्या हो, तो रोज सुबह स्नान करने के बाद लाल चंदन का गोल तिलक लगाना चाहिए। अगर नित्य प्रातः ऐसा करें, आपका आत्मविश्वास और आपका साहस प्रबल होगा।
4: और आइए जान लेते हैं 19 अगस्त 2026 यानी कि बुधवार का पंचांग क्या है।
0: दिनांक 19 अगस्त 2026 दिन बुधवार, तिथि है श्रावण शुक्ल पक्ष की सप्तमी तिथि, शाम के 7:19 तक। नक्षत्र है स्वाति नक्षत्र, प्रातः 6:46 तक। चंद्रमा तुला राशि में संचरण कर रहे हैं, राहु काल का समय दोपहर 12 से 1:30 तक। उत्तर दिशा की तरफ यात्रा करने की मनाही है, लेकिन अगर यात्रा करना जरूरी है तो जरा सी हरी सौंफ खाकर और भगवान का स्मरण करके यात्रा करेंगे तो मुश्किल से बचे रहेंगे।
4: और चलिए जानेंगे पंडित जी से कि मंगल के अशुभ योग आखिर होते क्या हैं।
0: जी, हम आपको आज बता रहे हैं कि अगर आपकी कुंडली में मंगल का कोई अशुभ योग है तो क्या उपाय करें जिससे मंगल का वो अशुभ योग शांत हो जाए। मंगल के अशुभ योग क्या होते हैं? मंगल जीवन में साहस, ऊर्जा और सुरक्षा का स्वामी है। जब मंगल किन्हीं अशुभ ग्रहों के प्रभाव में आता है तो ये जीवन में निगेटिव परिणाम, नकारात्मक परिणाम देता है। इन अशुभ योगों से जिसकी कुंडली में होता है उसके स्वास्थ्य पर और उसकी सुरक्षा पर विशेष प्रभाव पड़ता है। मंगल के अगर अशुभ योग कुंडली में हैं, तो इसके कारण व्यक्ति दुर्घटना का और शल्य चिकित्सा का शिकार हो जाता है। मंगल के अलग अलग अशुभ योग होते हैं जो जीवन में दुर्घटना, विवाद, मुकदमेबाजी, जेल यात्रा जैसी नौबत ले आते हैं।
4: तो चलिए जान लेते हैं कि अंगारक दोष आखिर होता क्या है, इसके प्रभाव क्या होते हैं और इससे बचने के आखिर उपाय क्या है।
0: मंगल का पहला अशुभ योग है अंगारक योग। क्या होता है ये? देखिए, कुंडली में अगर मंगल और राहु एक साथ बैठें तो अंगारक योग जीवन में बन जाता है और अंगारक योग प्रचंड दुर्घटना, शल्य चिकित्सा और रक्त ब्लड संबंधी गंभीर समस्या देता है। अंगारक योग के होने पर पारिवारिक संबंध काफी खराब होते हैं, ऐसा देखा गया है। पति पत्नी में से किसी एक की कुंडली में अगर अंगारक योग है तो ये अलगाव पैदा करता है या पति पत्नी को एक दूसरे से दूर रहना पड़ता है। अगर ये योग आपकी कुंडली में है तो मंगलवार का उपवास रखिए और हर मंगलवार को कुमार कार्तिकेय की मुरुगन स्वामी की उपासना करिए। अगर ऐसा नियमित रूप से करें तो अंगारक योग का दुष्प्रभाव आपके ऊपर नहीं पड़ेगा।
4: और अब वक्त हो गया आज के राशिफल के बारे में जानने का, तो चलिए जान लेते हैं मेष, वृष और मिथुन राशि वालों का क्या कहता है राशिफल।
0: मेष राशि, इस समय आर्थिक मजबूती आएगी, करियर में कुछ बदलाव होगा, यात्रा के योग बन रहे हैं। शिव जी को अगर जल अर्पित कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए हरा और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 75%। उत्तम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। वृषभ राशि, चिंताएं समाप्त होंगी, धन लाभ के योग बन रहे हैं, रुके हुए काम पूरे होंगे। अनाज का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए पीला और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 75% उत्तम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। मिथुन राशि, मानसिक तनाव कम होगा, करियर की बाधा दूर होगी, धन खर्च बढ़ा रहेगा, खाने पीने की वस्तु का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए गुलाबी और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 70%। मध्यम भाग्य आपके साथ बना हुआ है।
4: और चलिए अब जानते हैं कि मंगल दोष क्या है और इसके निवारण और इसके उपाय क्या हैं।
0: मंगल का जो दूसरा अशुभ योग है वो है मंगल दोष। मंगल दोष क्या होता है और इसका निवारण कैसे करेंगे? देखिए, कुंडली में अगर मंगल लग्न में चतुर्थ में सप्तम अष्टम या द्वादश भाव में हो तो कुंडली में मंगल दोष बनता है। मंगल दोष होने पर रिश्ते काफी संवेदनशील हो जाते हैं, रिश्तों में गड़बड़ आने की संभावना बन जाती है। इसीलिए मंगल दोष होने पर कुंडली मिलान की सलाह दी जाती है। कुंडली में अगर मंगल दोष है तो विवाह और रिश्तों के मामले में गंभीर हो जाना चाहिए। अगर मंगल दोष की वजह से समस्या हो रही है तो नियमित रूप से हर मंगलवार को हनुमान जी को चोला चढ़ाइए और जमीन पर या जमीन के निकट सोने का प्रयास करिए, मंगल दोष का नकारात्मक प्रभाव कम हो जाएगा।
4: और अब वक्त हो गया है कर्क, सिंह और कन्या राशि वालों के राशिफल को जानने का।
0: कर्क राशि, स्वास्थ्य का ध्यान बनाए रखें, करियर में कोई जोखिम ना लें, वाहन सावधानी से चलाएं, हरे फल का अगर दान कर दें तो दिन की मुश्किलें कम हो जाएंगी। शुभ रंग होगा आपके लिए नारंगी और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 60%। मेहनत ज्यादा होगी, भाग्य थोड़ा कम रहेगा। सिंह राशि, कोई शुभ सूचना प्राप्त होगी, नौकरी में पदोन्नति होगी, पारिवारिक समस्या हल होगी, शिव जी को जल अर्पित कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए सफेद और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 75%। उत्तम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। कन्या राशि, पारिवारिक समस्याएं हल होंगी, करियर में सुधार होगा, स्वास्थ्य का ध्यान बनाए रखें, खाने पीने की वस्तु का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा, शुभ रंग होगा आपके लिए नीला और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 70% मध्यम भाग्य आपके साथ बना हुआ है।
4: और गुडलक में वक्त हो गया आज के सवालों का और उनके जवाब देने का, तो चलिए जानते हैं पंडित जी से कि आज का पहला सवाल वो किसका लेने वाले हैं।
0: जी आज का पहला प्रश्न रागिनी पाल ने हमें मध्य प्रदेश से लिखा है। 20 अगस्त 2005 का जन्म है, होशंगाबाद मध्य प्रदेश। ये कह रही हैं कि मैं सरकारी नौकरी की तैयारी कर रही हूं, क्या मुझे सरकारी नौकरी मिल सकेगी और मेरा भविष्य कैसा रहेगा। रागिनी आपकी कुंडली कुंभ राशि की है और जिस तरह के कॉम्बिनेशन है कुंडली में, अगर आप बैंक में, फाइनेंस में, प्रशासनिक सेवा में, इन क्षेत्रों में जाने का प्रयास करें तो आपको निश्चित रूप से लाभ होगा। साल 2028 और 2029 में आपके सफलता की संभावना बनती है, तो आप अपना प्रयास जारी रखिएगा। रोज सुबह सूर्य भगवान को जल अर्पित करें और सुबह के समय एक बार आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करें तो आपको लाभ होगा।
4: अगर आपके मन में भी कोई सवाल है और आप चाहते हैं पंडित जी से पूछना, तो आप हमें अपना सवाल भेज सकते हैं और हमारी ईमेल आईडी आपकी टीवी स्क्रीन पर फ्लैश हो रही है। तो चलिए इसी के साथ वक्त हो गया आज के दूसरे सवाल का, तो जानेंगे पंडित जी से आज का दूसरा सवाल वो किसका ले रहे हैं।
0: जी अगला प्रश्न सरोजिनी दत्ता ने हमें लिखा है। कटक ओडिशा से मेल लिखती हैं, अपने पुत्र के बारे में जानना चाहती हैं। पुत्र की जन्म तारीख है 18 मार्च 2001, 9:05 प्रातः, कटक ओडिशा। ये पूछ रही हैं कि मेरा बेटा सरकारी नौकरी की तैयारी करे आगे या पोस्ट ग्रेजुएशन करे, पीजी करे, किस डायरेक्शन में जाना मेरे बेटे के लिए ठीक रहेगा। सरोजनी जी आपकी पुत्र की कुंडली बनती है वृषभ लग्न की और धनु राशि की, महादशा चंद्रमा की और अंतरदशा बुध की चल रही है। ज्योतिष के हिसाब से आपके पुत्र को पोस्ट ग्रेजुएशन में अपना नाम लिखा लेना चाहिए और साथ में गवर्नमेंट जॉब की तैयारी भी करते रहना चाहिए। साल 2028 में इनके लिए सफलता की संभावनाएं बन रही हैं। इनका स्वास्थ्य बेहतर रहे, इनकी एकाग्रता बेहतर रहे, इसके लिए इनको एक पन्ना बनवा करके पहनाइए, 6 से 8 रत्ती का पन्ना, चांदी में, दाहिने हाथ की सबसे छोटी उंगली में, बुधवार की शाम को एक पन्ना बनवा करके धारण करवाएं और इनको बोलें कि ये रोज सुबह अगर सूर्य भगवान को जल चढ़ाएं तो इनके लिए बहुत बेहतर होगा।
4: और चलिए अब जानते हैं कि आखिर ये नीच मंगल क्या होता है, क्योंकि हमारी कुंडली में नीच मंगल भी होता है, तो इसका अर्थ क्या होता है और इसका प्रभाव हमारे जीवन पर किस तरह से पड़ता है।
0: मंगल की एक और अशुभ स्थिति है नीच का मंगल, नीचस्थ मंगल। अगर आपकी कुंडली में नीच का मंगल है तो ये क्या करता है। मंगल कर्क राशि में नीच का हो जाता है, यानी बहुत ज्यादा कमजोर होता है। अगर मंगल कुंडली में कर्क राशि में बैठा है, नीच की स्थिति में बैठा है, तो व्यक्ति को आत्मविश्वास की, रक्त की और साहस की कमी देखी जाती है। हालांकि कर्क का मंगल कभी कभी व्यक्ति को बहुत अच्छा सर्जन भी बना देता है। अगर आपकी कुंडली में नीच का मंगल है और ये आपको जीवन में समस्या दे रहा है, तो तांबा धारण करिए, गुड़ और काली मिर्च नियमित रूप से खाते रहिए। अगर ऐसा करेंगे तो नीच के मंगल का दुष्प्रभाव आपके ऊपर कम पड़ेगा।
4: और अब वक्त हो गया है तुला, वृश्चिक और धनु राशि वालों के राशिफल को जानने का।
0: तुला राशि, धन लाभ के योग बन रहे हैं, रुके हुए काम पूरे होंगे, करियर में कुछ बदलाव होगा। अनाज का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए क्रीम और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 90%। सबसे ज्यादा भाग्य आपके साथ बना हुआ है। वृश्चिक राशि, स्वास्थ्य का ध्यान रखें, काम में लापरवाही ना करें, स्थान परिवर्तन के योग बन रहे हैं। हरे फल का अगर दान कर दें तो दिन की मुश्किलें कम हो जाएंगी। शुभ रंग होगा आपके लिए फिरोजी और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 60%। मेहनत ज्यादा होगी, भाग्य थोड़ा कम रहेगा। धनु राशि, करियर की समस्या हल होगी, धन की प्राप्ति होगी, परिवार में शुभ कार्य होगा। खाने पीने की वस्तु का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए आसमानी और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 85%। बेहतरीन भाग्य आपके साथ बना हुआ है।
4: और चलिए अब जान लेते हैं कि शनि और मंगल अगर संबंध बनाते हैं हमारी कुंडली में, तो इसका हमारे जीवन पर किस तरह से प्रभाव पड़ता है।
0: कुंडली में बहुत बार शनि और मंगल का संबंध बनता है। अगर शनि और मंगल का परस्पर संबंध कुंडली में है तो कैसा प्रभाव डालता है। देखिए, शनि अगर वायु है तो मंगल अग्नि है, मंगल आग है। दोनों के मिलन से प्रबल अग्नि और प्रबल विस्फोट पैदा होता है। शनि मंगल का अगर संबंध हो कुंडली में तो व्यक्ति के साथ शस्त्राघात, शस्त्र से हमला, वायुयान दुर्घटना और आतंकी घटनाएं होने की संभावना बनती है। लेकिन शनि मंगल का योग व्यक्ति को एकदम से बहुत ऊंचाइयों तक पहुंचा देता है, और जिनकी कुंडली में शनि मंगल का संबंध है वो एकदम से ऊंचाइयों पर जाते हैं और एकदम से जिंदगी समाप्त हो जाती है। अगर ये योग कुंडली में है तो रोज सवेरे माता पिता के चरण स्पर्श करें, हफ्ते में दो दिन शनिवार और मंगलवार को सुंदर कांड का पाठ करें। अगर ऐसा नियमित रूप से करें तो शनि मंगल के संबंध का दुष्प्रभाव आपके ऊपर नहीं पड़ेगा।
4: और अब वक्त हो गया आज के अंतिम राशिफल के बारे में जानने का, तो चलिए जान लेते हैं मकर, कुंभ और मीन राशि वालों का क्या कहता है राशिफल।
0: मकर राशि, पारिवारिक समस्याएं आपकी हल होंगी, रुका हुआ काम बन जाएगा, विवाद तय हो सकता है। शिव जी को अगर जल अर्पित कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए पीला, और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 80%। बहुत अच्छा भाग्य आपके साथ बना हुआ है। कुंभ राशि, यात्रा के योग बन रहे हैं, करियर में लाभ होगा, अपनी योजनाओं को गोपनीय रखें, खाने पीने की वस्तु का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए लाल, और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 70%। मध्यम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। मीन राशि, व्यर्थ की चिंता हो सकती है, स्वास्थ्य का ध्यान बनाए रखें, रिश्तों में समस्या हो सकती है। हरे फल का अगर दान कर दें तो दिन की मुश्किलें कम हो जाएंगी। शुभ रंग होगा आपके लिए गुलाबी, और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 60%। मेहनत ज्यादा होगी, भाग्य थोड़ा कम रहेगा।
4: और अब वक्त हो गया आज के तीसरे सवाल का, तो चलिए जान लेते हैं कि आज का तीसरा सवाल पंडित जी को कहां से और किसने भेजा है।
0: जी, अगला प्रश्न मधु जी ने हमें लिखा है, पश्चिम बंगाल से लिखती हैं। 18 फरवरी 1979 का जन्म है। 11:30 प्रातः नदिया, पश्चिम बंगाल। ये कह रही हैं कि मेरा स्वास्थ्य बिल्कुल अच्छा नहीं रहता है, कुछ न कुछ स्वास्थ्य की समस्या हमेशा लगी रहती है, तो मैं क्या उपाय करूं जिससे मेरा स्वास्थ्य बेहतर हो जाए। मधु जी, आपकी कुंडली बनती है वृषभ लग्न की और तुला राशि की, महादशा बुध की और अंतर दशा शुक्र की चल रही है। देखिए पहली समस्या तो आपकी ज्यादातर मानसिक दिखाई दे रही है, तनाव बहुत है, चिंताएं बहुत हैं और उस वजह से आपका स्वास्थ्य बेहतर नहीं है। आपकी कुंडली के हिसाब से आप अपने खान पान का और अपनी मानसिक स्थिति का अगर ध्यान दें तो आपके लिए बहुत बेहतर होगा। एक ओपल बनवा करके पहनिए, 12 से 14 रत्ती का ओपल, चांदी में, दाहिने हाथ की तर्जनी उंगली में। शुक्रवार की शाम को ओपल धारण करें। रोज सुबह एक बार नारायण कवच का अगर पाठ करें तो आपके लिए बहुत बेहतर होगा।
4: और इसी के साथ गुडलक में वक्त हो गया आज के अंतिम प्रश्न का, तो जानेंगे पंडित जी से आज का अंतिम और चौथा प्रश्न वो किसका लेंगे।
0: जी आज का अंतिम प्रश्न अर्जुन जी ने लिखा है, इंदौर से लिखते हैं, 7 अक्टूबर 1990 का जन्म है, 10:55 प्रातः इंदौर मध्य प्रदेश। ये पूछ रहे हैं कि मेरा विवाह कब तक होगा और कैसा रहेगा और क्या मेरी कुंडली मांगलिक है या नहीं है। अर्जुन जी आपकी कुंडली बनती है वृश्चिक लग्न की और मेष राशि की, महादशा राहु की और अंतर दशा शुक्र की चल रही है। तो सबसे पहली बात यह है कि आपके विवाह का समय चल रहा है साल 2027 के शुरुआती समय में आपका विवाह होगा। आपकी कुंडली में शुक्र की स्थिति बहुत अच्छी नहीं है, तो जब भी विवाह करिएगा कुंडली मिला करके सोच समझ करके निर्णय लीजिएगा तो आपके लिए बेहतर होगा। कुंडली आपकी मांगलिक है, मंगल सप्तम स्थान में कुंडली में बैठा हुआ है। एक मोती बनवा करके पहने, 10-12 रत्ती की मोती,

0: एक मोती धारण करें, रोज सुबह 108 बार नमः शिवाय का जप करें तो आपके लिए बहुत बेहतर होगा।
1: पंडित जी, एक सवाल था, क्योंकि आज के इस एपिसोड में हम बात कर रहे हैं मंगल की, तो अगर हमारी कुंडली में मंगल बहुत दिक्कतें हमें दे रहा है तो हमें किस भगवान की पूजा अर्चना करनी चाहिए ताकि उसका प्रभाव कम हो सके?
0: जी देखिए, ज्यादातर लोग ऐसा समझते हैं और ऐसा जानते हैं कि अगर मंगल कोई दिक्कत दे रहा है, मंगल से संबंधित कोई समस्या है, तो हनुमान जी की पूजा करनी चाहिए। ज्यादातर लोग यही जानते हैं, लेकिन मैं आपको बता दूं कि ज्योतिष ये कहता है कि अगर मंगल से संबंधित गंभीर समस्या है या मंगल की वजह से अगर जीवन में ज्यादा दिक्कत है तो हनुमान जी की नहीं बल्कि कुमार कार्तिकेय की पूजा करनी चाहिए, जिनको दक्षिण भारत में मुरुगन स्वामी या सुब्रमण्यम स्वामी भी कहते हैं। तो मंगल कितना भी नकारात्मक क्यों ना हो, मंगल कितना भी निगेटिव क्यों ना हो, अगर आप कुमार कार्तिकेय की नियमित रूप से उपासना करें, उनके मंत्र का, उनके स्तोत्र का पाठ करें, तो मंगल संबंधी समस्याओं को आप बैलेंस कर पाएंगे।
1: जिनका जन्मदिन आने वाला है उन्हें हमारी तरफ से जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं, हैप्पी बर्थडे टू यू। आइए जानते हैं कि आपका आने वाला वर्ष कैसा रहेगा।

0: 19 अगस्त को है, उन्हें हम सब की तरफ से जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं। आने वाले वर्ष में धन और संपत्ति की स्थिति उत्तम रहेगी। स्वास्थ्य आपका कुल मिलाकर ठीक बना रहेगा। करियर और धन का मामला स्थिर रहेगा। विवाह होने और संतान प्राप्ति के योग बन रहे हैं। क्या उपाय करेंगे? पूरे साल भर भगवान सूर्य की अगर उपासना करें तो वर्ष आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा।
1: और अब वक्त हो गया आज की जिज्ञासा के बारे में जानने का, तो चलिए जान लेते हैं पंडित जी से कि आज की जिज्ञासा क्या है।
0: आज की जिज्ञासा है कि क्या मांगलिक व्यक्ति की शादी विवाह मांगलिक से ही होना चाहिए? अगर किसी व्यक्ति की कुंडली मांगलिक है तो विवाह के समय मंगल पर विचार करना जरूरी है, लेकिन ये आवश्यक नहीं है कि मांगलिक व्यक्ति का विवाह मांगलिक व्यक्ति से ही किया जाए। केवल आपको ये देखना है कि लड़के और लड़की की कुंडली में मंगल दोष बैलेंस हो रहा है या नहीं हो रहा है।
1: गुड लक में जानेंगे शुभ पहर के बारे में, तो चलिए जान लेते हैं 19 अगस्त 2026 यानी कि बुधवार का शुभ पहर कौन सा है।
0: दिनांक 19 अगस्त 2026 दिन बुधवार, शुभ पहर का समय है 7:30 से 9:00 तक। इस समय में गणेश जी की कपूर से आरती करिएगा। ऐसा करने से आपको करियर के मामलों में सफलता मिलेगी, लेकिन करेंगे शुभ पहर में ही। 19 अगस्त बुधवार 7:30 से 9:00 के बीच में।
1: गुडलक में अब जानेंगे आज की गुडलक राशि के बारे में, तो चलिए जान लेते हैं पंडित जी से ही कि आज की गुडलक राशि कौन सी है।
0: हम आपको बता रहे हैं कि अलग अलग राशि के लोग शिव जी की पूजा कैसे करेंगे। आज की गुडलक राशि है मकर। आपको शिवलिंग पर काला तिल मिला हुआ जल अर्पित करना चाहिए। ऐसा करने से आपका स्वास्थ्य और आपका करियर दोनों ठीक रहेंगे।
1: गुडलक में हम पहुंच गए आज के अंतिम पड़ाव पर, जहां पंडित जी रोज हमें एक नया महा उपाय बताते हैं, तो चलिए जानते हैं पंडित जी से कि आज का महा उपाय क्या है।
0: जी, आज आपको महा उपाय में बताते हैं कि अगर आप कारोबारी हैं, व्यापारी हैं और कारोबार काफी धीमा चल रहा है तो क्या करेंगे? अपने बिजनेस या काम के स्थान पर अपनी कुर्सी पर किसी और को बैठने मत दीजिए। कारोबार के स्थान पर सुगंधित धूप बत्ती नियमित रूप से जलाइए और जिस जगह मेज कुर्सी पर डेस्क पर बैठकर काम करते हैं वहां एक सफेद रंग की कोई सजावटी मूर्ति या देवी देवता की मूर्ति रखिए, आपको लाभ होगा।
1: पंडित जी, तमाम जानकारी के लिए और महा उपाय के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
0: धन्यवाद।
1: तो पंडित जी से महा उपाय तो आपने जान लिया, बाकी देश और दुनिया की तमाम अच्छी और सच्ची खबरों के लिए आप बने रहिए गुड न्यूज टुडे के साथ। हमें दीजिए इजाजत, नमस्कार।

0: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती हैं, तो कुछ दिखाती हैं विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
1: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
2: और दुर्भाग्य कहता है
3: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
0: अविश्वास में विश्वास बसता है,
1: जो हमें अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
4: गुड न्यूज टुडे।
1: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते। खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे। देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे में।
5: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
4: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
1: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
2: और दुर्भाग्य कहता है
3: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
0: अविश्वास में विश्वास बसता है,
1: जो हमें अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
4: गुड न्यूज टुडे।
5: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को

0: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों।
1: क्या है शिवलिंग की महिमा? क्या शिवलिंग घर में स्थापित कर सकते हैं? शिवलिंग का क्या होगा पूजा विधान और क्या होंगी सावधानियां, जानिए मेरे साथ सिर्फ किस्मत कनेक्शन में।
2: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती हैं तो कुछ दिखाती हैं विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज़ पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
3: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
4: और दुर्भाग्य कहता है
5: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
2: अविश्वास में विश्वास बसता है,
3: जो हमें अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
6: गुड न्यूज टुडे।
3: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे। देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
0: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, मोर इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
7: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
3: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर। असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
4: और दुर्भाग्य कहता है
5: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
2: अविश्वास में विश्वास बसता है,
3: जो हमें अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
6: गुड न्यूज टुडे।

0: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है कम से।
1: अब बात बारिश, बाढ़ और रेस्क्यू की कर लेते हैं। देश के कई राज्य भारी बारिश और बाढ़ से परेशान हैं। भारी बारिश के चलते तमाम नदी नाले उफान पर हैं। ऐसे में पुलिस और एसडीआरएफ जैसी एजेंसीज को राहत और बचाव के लिए लगाया गया, जो अब तक सैकड़ों जिंदगियों को बचा चुके हैं। वहीं मौसम विभाग ने देश के कई हिस्सों में भारी बारिश का अनुमान लगाया है। इसमें झारखंड, बिहार, छत्तीसगढ़, पूर्वी मध्य प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, ओडिशा और उत्तर प्रदेश शामिल है। यानी अगस्त के महीने में देश के अलग अलग हिस्सों में बारिश का सिलसिला लगातार जारी रहने वाला है।
2: सावन के महीने में देश के कई हिस्सों में हो रही भारी बारिश के बीच कई नदियां उफान पर बह रही हैं, जिससे कई जगहों पर सैलाब जैसे हालात बन गए हैं। और इस मुश्किल हालात में देश के जांबाज रेस्क्यू मिशन चलाकर लोगों को बचाने में जुटे हुए हैं। सैलाब के सितम को देखकर किसी की भी रूहें कांप उठेंगी। ऐसा लगता है कि नदी की तेज धारा से उठता ये सैलाब अपने साथ सब कुछ बहा ले जाएगा, लेकिन जांबाजों की दिलेरी के आगे यह सैलाब बौना नजर आया। उत्तराखंड के ऋषिकेश में एसडीआरएफ ने पुलिस के साथ मिलकर बेहद मुश्किल हालात में सैलाब में फंसे दो लोगों की जान बचाई। दरअसल सोमवार शाम से हो रही तेज बारिश के चलते बीन नदी का जलस्तर अचानक बढ़ गया। नदी के तेज बहाव की वजह से तालघाटी इलाके की ओर जा रही एक गाड़ी कंट्रोल नहीं रख पाई और पानी में बह गई। इस गाड़ी में दो लोग सवार थे। हादसे की सूचना स्थानीय लोगों ने थाना लक्ष्मण झूला पुलिस को दी। सूचना मिलते ही पुलिस टीम और एसडीआरएफ की टीम मौके पर पहुंची। तस्वीरों में देख सकते हैं कि पानी के तेज बहाव में गाड़ी उल्टी हुई है। रस्सी की मदद से एसडीआरएफ के जवान गाड़ी के ऊपर पहुंचते हैं, गाड़ी का दरवाजा खोलते हैं और उसमें फंसे दोनों लोगों के रेस्क्यू में जुट जाते हैं। काफी मशक्कत के बाद रेस्क्यू टीम ने गाड़ी में फंसे एक व्यक्ति को सुरक्षित बाहर निकाल लिया और थोड़ी देर में दूसरे व्यक्ति को भी निकाल लिया। रेस्क्यू करने के बाद दोनों घायलों को तुरंत उपचार के लिए अस्पताल पहुंचाया गया।
3: ये मामला हमें जो हमारी टीम है डालवाला में, हमें सूचना मिली लगभग 9:15 के लगभग कि एक मैक्स बीन नदी में पलट गई और जो नीचे चली गई। तो हमारी टीम तुरंत यहाँ पर पहुंची है और यहाँ पे देखा तो एक व्यक्ति उसमें ऊपर बैठा हुआ दिखाई दिया। तो हमारी टीम रोप लगा के अपने उपकरणों के माध्यम से उस तक पहुंची है उपनदी नदी में और उसको रेस्क्यू कर लिया गया और उसको हॉस्पिटल गया। तब उसके बाद पता चला कि एक व्यक्ति अंदर था जो बुरी तरह से फंसा था। उसके लिए टीम द्वारा हमारे बहुत बरसे प्रयास किया गया और कई प्रयासों के बाद हम उस व्यक्ति का रेस्क्यू कर गए और उसको भी हमें हमारे द्वारा टीम द्वारा हॉस्पिटलाइज किया गया।
2: उधर देहरादून में बाढ़ के बीच फंसे 6 छात्रों के लिए एसडीआरएफ के जवान देवदूत बनकर पहुंचे। पहली नजर में तो ऐसा लगता है जैसे किसी फिल्म की शूटिंग चल रही है। लोहे के पुल पर ये लोग धीरे धीरे खिसक कर बचने की कोशिश कर रहे हैं। असल में यूनिवर्सिटी के ये 6 छात्र ट्रैकिंग के लिए स्वर्णा नदी क्षेत्र में गए थे। वापस लौटते वक्त अचानक तेज बारिश शुरू हो गई और देखते देखते स्वर्णा नदी का जलस्तर तेजी से बढ़ने लगा। नदी का पानी बढ़ने के कारण ये वहां फंस गए। हालात बिगड़ते देख इसकी सूचना एसडीआरएफ को दी। सूचना मिलते ही एसडीआरएफ की रेस्क्यू टीम तुरंत मौके पर पहुंची और कड़ी मशक्कत के बाद सभी का सुरक्षित रेस्क्यू कर लिया गया। पश्चिम बंगाल के आसनसोल में जहां सड़कें थी वहां सैलाब बह रहा है। घरों के अंदर कई फीट तक पानी भर चुका है। आसनसोल के रेलपार इलाके में बाढ़ जैसे हालात के बीच बड़ी संख्या में लोग अपने ही घरों में कैद होकर रह गए हैं। राहत बचाव टीम के सदस्य कमर तक भरे पानी में उतरकर तंग गलियों से होते हुए जरूरतमंदों तक खाने पीने की चीजें पहुंचा रहे हैं।
4: सिविल डिफेंस का टीम ऑलरेडी यहाँ पे आया हुआ है, कहीं कोई अगर निकलना चाहता है फंस गया तो बताइए। और अभी सबका खाना का प्रबंध हो रहा है, पूरी सब्जी बन रहा है, घबराना किसी को नहीं है। यहाँ पे घरों में लोग जो फंसे हुए है सबको अभी पावरोटी दूध दिया गया है। अभी हम लोग सोन पापड़ी गली, काली मंदिर, भातका रोड पोस्ट ऑफिस गली, बोहाल, सब तरफ हम लोग टीम पहुंचेगा। हम लोग

0: साथ में निकले क्योंकि ये रिस्की हो जाएगा, पानी बहुत बढ़ते जा रहा है।
1: ऐसे हालात में सिविल डिफेंस की टीम पीड़ितों की मदद के लिए घर घर पहुंचकर मुसीबत में फंसे लोगों को सुरक्षित ठिकानों तक पहुंचा रही है। हिमाचल में कुल्लू की मणिकर्ण घाटी में उफनती पार्वती नदी के बीच फंसे युवक को बचाने की जद्दोजहद चल रही है। तस्वीरों में देख सकते हैं कि चट्टान पर दो युवक खड़े हैं, इनमें से एक दिल्ली का पर्यटक है जो पार्वती नदी में जलस्तर बढ़ने की वजह से वहां फंस गया, और दूसरा उसकी जान बचाने के लिए पहुंचा युवक है। ये युवक रस्सी की मदद से उफनती नदी के बीच अपनी जान जोखिम में डालकर चट्टान तक पहुंचा। पहले ये युवक पर्यटक को रस्सी की मदद से किनारे तक पहुंचाने में मदद करता है, फिर खुद रस्सी के सहारे सकुशल किनारे पर पहुंच जाता है। हिमाचल प्रदेश में चंबा का भरमौर इलाका इन दिनों फ्लैश फ्लड का सामना कर रहा है, और बलूच गांव में बादल फटने के बाद आए सैलाब की वजह से लोहे का एक पुल बह गया। बहाव इतना तेज था कि यहां की सड़क भी पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो गई। सड़क और पुल के बह जाने से मां भगवती खुंडी वाली के दर्शनों के लिए जा रहे करीब 40 से 50 श्रद्धालु बीच रास्ते में ही फंस गए। तस्वीरों में देखा जा सकता है कि नदी के तेज बहाव के आसपास दिख रहे लोग खुद को बचा नहीं सकते थे। ऐसे मुश्किल वक्त में गांव वाले इनका रेस्क्यू करने पहुंचे। यहां फंसे सभी लोगों को रास्ता दिखाते हुए गांव वाले आगे बढ़े और सैलाब के किनारे किनारे होते हुए एक ऐसी जगह पहुंचे जहां लोगों ने नदी के ऊपर लकड़ी का एक अस्थायी पुल बनाकर सभी को सुरक्षित रेस्क्यू किया। बटग्राम में फ्लैश फ्लड के बीच एक और मिशन जिंदगी को अंजाम दिया गया। ये वाक्य जितना दिलचस्प है कहीं उससे अधिक हैरान करने वाला भी है। हुआ ये कि फ्लैश फ्लड आने से पनाली नाला ने अचानक विकराल रूप धारण कर लिया, जिससे इस रास्ते से जा रही बारात फंस गई। संकट की इस घड़ी में एक स्थानीय लड़के ने अपनी जान जोखिम में डालकर दूल्हे को अपनी पीठ पर उठाया और उफनते नाले को सुरक्षित पार करवाया, जिसका वीडियो अब सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। आसनसोल से अनिल गिरी, चंबा से विशाल आनंद और कुल्लू से मनिंदर अरोड़ा के साथ देहरादून संकेत शर्मा, गुड न्यूज टुडे।
2: और अब बात उस युवा खिलाड़ी की जिसने अपने डेब्यू में ही ऐसा कमाल कर दिखाया कि पूरा देश उनकी चर्चा कर रहा है। नाम है आयुष शेट्टी। भारत के इस उभरते हुए शटलर ने इंदिरा गांधी स्टेडियम में खेले जा रहे बैडमिंटन वर्ल्ड चैंपियनशिप में अपने डेब्यू को यादगार बना दिया, और वो भी किसी मामूली जीत के साथ नहीं बल्कि दुनिया के नंबर वन खिलाड़ी और मौजूदा विश्व चैंपियन को हराकर।
3: कहते हैं बड़े मैच में बड़ा खिलाड़ी वही होता है जो सबसे बड़े खिलाड़ी को मात दे, और आयुष शेट्टी ने वर्ल्ड चैंपियनशिप के अपने डेब्यू में यही कर दिखाया है। उनके सामने थे वर्ल्ड नंबर वन प्लेयर, खेल के डिफेंडिंग चैंपियन और खिताब के सबसे बड़े दावेदारों में से एक शी यूकी, लेकिन आयुष ने ऐसा खेल दिखाया कि यूकी की एक न चली। पहले गेम में आयुष ने शुरुआत से ही मोर्चा संभाले रखा, क्रॉस कोर्ट स्मैश का जवाब ब्लॉक से और मौका मिलते ही पलटवार। नतीजा पहला गेम आयुष के नाम रहा, दूसरे गेम में शी यूकी ने पलटवार किया। यहां आयुष की लय थोड़ी बिगड़ी जरूर और यूकी ने गेम जीतकर मुकाबला भी बराबरी पर ला दिया, लेकिन अब बारी थी आखिरी और निर्णायक गेम की। यहां आयुष ने फिर अपना दम दिखाया, दोनों खिलाड़ियों ने ऐसी जान फूंकी कि सभी की सांसें थम गईं, लेकिन इस बार बाजी आयुष के नाम रही। कहा जा रहा है कि इस मैच के साथ बैडमिंटन की दुनिया में भारत को एक नया सितारा मिल गया है। 61 साल के लंबे इंतजार के बाद आयुष बैडमिंटन एशिया चैंपियनशिप के फाइनल में पहुंचने वाले पहले भारतीय पुरुष सिंगल खिलाड़ी बने हैं। 61 साल के लंबे इंतजार के बाद आयुष बैडमिंटन एशिया चैंपियनशिप के फाइनल में पहुंचने वाले पहले भारतीय पुरुष सिंगल्स खिलाड़ी बने हैं। आयुष की कहानी किसी बड़े शहर की चमकदार बैडमिंटन अकादमी से शुरू नहीं हुई, बल्कि उनका सफर कर्नाटक में करकाला के पास बसे छोटे से कस्बे से शुरू हुआ। इस लड़की ने महज 8 साल की उम्र में रैकेट थामा। उनके पहले कोच उनके पिता बने, जिन्होंने घर के आंगन को ही आयुष का पहला बैडमिंटन कोर्ट बना दिया। आज वही लड़का बैडमिंटन

0: तारा बनने की राह पर है। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
1: और चलिए अब नजर डाल लेते हैं उन वायरल वीडियोस पर जिन्हें सोशल मीडिया पर बेहद पसंद किया जा रहा है, क्योंकि इनमें से कुछ आपको हंसाएंगे, कुछ आपको गुदगुदाएंगे तो कुछ आपको इमोशनल कर जाएंगे।
2: संतुलन और लगातार अभ्यास का ऐसा कमाल देखकर हर कोई हैरान है। वीडियो में कुछ महिलाओं ने अपने शरीर को इस तरह साधा कि उनका आकार कमल जैसा नजर आने लगा। कोई जमीन पर खड़ी होकर शरीर को बैलेंस कर रही है तो कोई पैरों को मोड़कर बेहद मुश्किल मुद्रा में संतुलन बनाए हुए है। शरीर को इतनी आसानी से मोड़ना और लंबे समय तक उसी स्थिति में टिके रहना आसान नहीं होता। महिलाओं का यही गजब का बैलेंस और हुनर सोशल मीडिया पर लोगों का ध्यान खींच रहा है। दुनिया के लिए आप शायद एक व्यक्ति हूँ, लेकिन किसी एक के लिए आप पूरी दुनिया हो सकते हैं। ये वीडियो भाई बहन के इसी खूबसूरत रिश्ते की मिसाल है। छोटे बच्चे के दोनों हाथ नहीं हैं, लेकिन उसकी छोटी बहन हर कदम पर उसके साथ खड़ी है। स्कूल में लंच टाइम के दौरान बहन अपने भाई को अपने हाथों से खाना खिलाती नजर आ रही है। भाई के चेहरे पर सुकून और बहन के प्यार ने लोगों का दिल जीत लिया। वीडियो सोशल मीडिया पर खूब पसंद किया जा रहा है। स्वतंत्रता दिवस के मौके पर एक लड़के ने मंच पर अपने अनोखे फुटबॉल हुनर का ऐसा प्रदर्शन किया कि देखने वाले देखते रह गए। वीडियो में लड़का अपने पैरों और शरीर के इशारों से फुटबॉल को लगातार अलग अलग दिशाओं में घुमाता नजर आ रहा है। कभी गेंद को पैरों से संभालता है तो कभी शरीर को घुमाकर उसे अपने कंट्रोल में रखता है। उसके शानदार बैलेंस, कंट्रोल और लगातार अभ्यास की झलक इस प्रदर्शन में साफ दिखाई देती है। सोशल मीडिया पर लोग उसके हुनर की जमकर तारीफ कर रहे हैं। अपने अनोखे ह्यूमर और मजेदार सोशल मीडिया पोस्ट के लिए मशहूर नागालैंड के मंत्री तेमजिन अलोंग एक बार फिर अपने अंदाज से इंटरनेट पर छा गए हैं। उन्होंने अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर एक मजेदार वीडियो शेयर किया है। वीडियो में एक नागा व्यक्ति का ऑनलाइन केवाईसी किया जा रहा है। केवाईसी की प्रक्रिया और वीडियो में नजर आ रहा अंदाज लोगों को खूब गुदगुदा रहा है। यही वजह है कि वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है और यूजर्स इसे देखकर मजेदार प्रतिक्रियाएं दे रहे हैं। हौसले के आगे मुश्किल क्या चीज है, ये वीडियो का शानदार उदाहरण है। वीडियो में एक महिला अपने एक हाथ से दो बोतलों के साथ ऐसा कमाल का बैलेंस दिखा रही है कि देखने वाले हैरान रह जाते हैं। खास बात यह है कि महिला एक ही हाथ से एक बोतल को हवा में उछालती है और उसी दौरान दूसरी बोतल को भी उसी हाथ से संभाल लेती है। उसकी तेजी, संतुलन और शानदार कंट्रोल देखकर लोग दंग है। सोशल मीडिया पर यूजर्स महिला के अनोखे टैलेंट की जमकर तारीफ कर रहे हैं।
3: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबर।
4: क्या है शिवलिंग की महिमा? क्या शिवलिंग घर में स्थापित कर सकते हैं? शिवलिंग का क्या होगा पूजा विधान और क्या होंगी सावधानियां, जानिए मेरे साथ सिर्फ किस्मत कनेक्शन में।
5: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
6: और दुर्भाग्य कहता है
5: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
7: अविश्वास में विश्वास बसता है,
5: जो हमें अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
8: गुड न्यूज टुडे।
5: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे, देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
3: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
9: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
5: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।
7: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती है तो कुछ दिखाती है विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
5: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
6: और दुर्भाग्य कहता है
1: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
7: अविश्वास में विश्वास बसता है,
5: जो हमें अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
9: गुड न्यूज टुडे।
5: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते। खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे। देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
3: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, मोर इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
9: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
5: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर। मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते। खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे। देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
3: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, मोर इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
9: देश देख रहा है
8: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट, कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच, HRIT यूनिवर्सिटी गाजियाबाद, शेपिंग फ्यूचर क्रिएटिंग लीडर्स।
1: हिमाचल में 21 अगस्त तक बारिश का दौर जारी रहने की संभावना, बिलासपुर कांगड़ा मंडी और सिरमौर में बारिश का ऑरेंज अलर्ट।
10: देशभर में गणेश उत्सव की तैयारियां तेज, तमिलनाडु के तिरुचिरापल्ली में बनाई जा रही इको फ्रेंडली गणेश की मूर्ति, पर्यावरण संरक्षण का दे रहे हैं संदेश।
1: धनबाद की प्रांजल और आन्या मित्तल को मिला गिनीज गोल्ड मेडल, ऑनलाइन श्लोकों का पाठ कर बनाया रिकॉर्ड, परिवार में खुशी की लहर।
10: मीटर कैनवस पर मिथिला पेंटिंग का बना विश्व रिकॉर्ड, कैनन्स पर लिखे गए रामचरितमानस के प्रसंग, दिल्ली में हुआ कार्यक्रम।
1: गोल टेस्ट जीतने से 6 विकेट दूर टीम इंडिया, महज 84 रनों पर श्रीलंका के 4 बल्लेबाज आउट, भारतीय गेंदबाजों के शानदार प्रदर्शन से मैच का मुड़ा रुख।
3: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है।
1: उम्मीदों भरे पहर की खुशियों भरी शुरुआत, सुप्रभात, मैं हूँ आपके साथ गीतिका पंत, नई सुबह नई आशा और गुड न्यूज का मॉर्निंग डोज लेकर।
10: नमस्कार, मैं हूँ आपके साथ पूजा, बिना रुके बिना थमे अगले 1 घंटे गुड न्यूज की मैराथन दौड़ होगी, लेकिन सबसे पहले नजर डालते हैं आज की उन 5 खबरों पर जिनमें है इंडिया के लिए शुभ समाचार।
3: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें।
1: शुभ समाचार में सबसे पहले बात होगी गीता श्लोक के वर्ल्ड रिकॉर्ड की। धनबाद की प्रांजल और आन्या मित्तल ने गिनीज गोल्ड मेडल हासिल किया है। उन्होंने ऑनलाइन श्लोकों का पाठ कर ये रिकॉर्ड बनाया, इससे परिवार में खुशी की लहर है। कैसे बनाया उन्होंने ये रिकॉर्ड, कैसे की मेहनत, ये भी आगे आपको बताएंगे।
10: साथ ही बात गणेश उत्सव की भी होगी। मुंबई में गणेश उत्सव की छटा अभी से बिखरनी शुरू हो गई है। यहाँ एक बड़े गणेश मंडल में पंडाल में धूमधाम के साथ बाप्पा की प्रतिमा लाई गई। इस दौरान भक्तों का जबरदस्त उत्साह देखने को मिला, तो इसके रंग भी आगे आपको दिखाएंगे।
1: तो वहीं सावन के महीने में उत्तराखंड में होली भी खेली गई, लेकिन ये होली रंग गुलाल से नहीं बल्कि मक्खन मट्ठा और दूध से खेली गई। उत्तरकाशी के दयारा बुग्याल में धूमधाम से मनाए गए अंधूरी उत्सव में होली की ये छटा देखने को मिली, तो यहाँ भी आपको लिए चलेंगे।
10: साथ ही एक चॉकलेट का स्वाद भी आपको दिखाएंगे, क्योंकि दिल्ली में एक सरकारी स्कूल की छात्राओं ने चॉकलेट का एक हेल्दी विकल्प तैयार किया है। इस चॉकलेट को सीजनल फ्रूट और ड्राई फ्रूट की मदद से तैयार किया गया। अब ये छात्राएं अपने इस प्रोडक्ट की मार्केटिंग के लिए स्टार्टअप शुरू करने की तैयारी में है, तो कैसा है इसका टेस्ट बताएंगे आगे।
1: इसके अलावा आपको श्रीलंका भी लिए चलेंगे, जहां टीम इंडिया गोल टेस्ट जीतने से महज 6 विकेट दूर है। महज 84 रनों पर श्रीलंका के 4 बल्लेबाज आउट हो गए और आज मैच का 5वां और आखिरी दिन है, तो कैसी है टीम इंडिया की रणनीति आगे आपको बताएंगे। लेकिन फिलहाल वक्त हो गया है फटाफट अंदाज में सुबह 9 बजे की 9 गुड न्यूज का।
10: महिला हॉकी विश्व कप में भारत की शानदार जीत हासिल हुई। भारतीय टीम ने दक्षिण अफ्रीका को 6-1 से बड़े अंतर से मात दी है। टूर्नामेंट में भारत की पहली और अब तक की सबसे बड़ी जीत है। साथ ही पूल डी में भारत ने टॉप स्थान हासिल कर लिया है और भारत के लिए सुनीलिता टोपो, नवनीत कौर, सुशीला चानू और दीपिका सहरावत, इन्होंने साक्षी राणा ने भी गोल किया। साउथ अफ्रीका के लिए कायला डे वॉल ने आखिरी क्वार्टर में 1 गोल किया और अब भारत का सामना इंग्लैंड से होगा।
1: गोल टेस्ट में टीम इंडिया बेहद मजबूत स्थिति में है। जीत के लिए भारत को आज आखिरी दिन 6 विकेट गिराने होंगे 372 रनों के लक्ष्य का पीछा करते हुए। महज 84 रनों पर श्रीलंका के 4 बल्लेबाज पवेलियन लौट गए हैं। श्रीलंका की दूसरी पारी में भारतीय स्पिनर मानव सुथार ने 2 बल्लेबाजों को आउट किया। तेज गेंदबाज मोहम्मद सिराज और प्रसिद्ध कृष्णा के नाम भी 1-1 सफलता रही। इससे पहले ऋषभ पंत की शानदार बल्लेबाजी की बदौलत भारत ने दूसरी पारी में 193 रन बनाए थे।
10: वहीं सावन के महीने में भगवान शिव के 12 पवित्र ज्योतिर्लिंगों में से एक भीमा शंकर महादेव मंदिर में बड़ी संख्या में श्रद्धालु दर्शन के लिए आ रहे हैं। पुणे से करीब 110 किलोमीटर दूर सह्याद्री पर्वत श्रृंखला पर भीमा शंकर ज्योतिर्लिंग है और यहां से भीमा नदी का उद्गम होता है। मान्यता है कि भगवान शिव ने यहाँ राक्षस भीम या त्रिपुरासुर का वध किया था, जिसके बाद वहां पर ज्योतिर्लिंग के रूप में उसे स्थापित हुआ।
1: मुंबई में गणपति उत्सव की तैयारियां शुरू हो गई हैं। इसी सिलसिले में अलग अलग तरह के बप्पा के स्वरूप पंडालों में स्थापित इन्हें किया जा रहा है। शेर पर सवार महालक्ष्मी अवतार वाले 22 फीट ऊंचे काला चौकी के महागणपति पंडाल में गणपति पधारे। श्रद्धालुओं ने ढोल ताशे के साथ बप्पा के आगमन का स्वागत किया। देशभर में 14 सितम्बर से गणेशोत्सव मनाया जाएगा।
10: बिहार के अंग क्षेत्र में लोक पर्व मनसा विश्वहरि धूमधाम से मनाया जा रहा है। पूजा केंद्र पर आस्था, परंपरा और अंग प्रदेश के इतिहास की झलक दिख रही है। बिहला विश्वहरि की कहानी से जुड़ी झांकी के भी दर्शन हुए। दरअसल गाजेबाजे के साथ बाला लेखेंद्र की बारात निकाली गई। पौराणिक मान्यता के मुताबिक बाला लेखेंद्र बिहला की शादी होती है और आज प्रतिमा का विसर्जन किया जाएगा।
1: इंदौर के डॉक्टर ने एक बड़ी उपलब्धि हासिल की है। डॉक्टर ने एक दिन में 51 रोबोटिक बैरिएट्रिक सर्जरी का नया रिकॉर्ड बनाया है। बैरिएट्रिक और रोबोटिक सर्जन डॉक्टर मोहित भंडारी ने स्वतंत्रता दिवस पर सर्जिकल स्वराज पहल के तहत एक ही दिन में 50 से ज्यादा रोबोटिक सर्जरी की। बैरिएट्रिक सर्जरी वजन घटाने के लिए की जाती है। डॉक्टर मोहित भंडारी अब तक 40,000 सर्जरी कर चुके हैं।
10: तो वहीं बीजापुर का नंबी वाटरफॉल पर्यटकों से गुलजार हुआ। इस खूबसूरत वाटरफॉल को देखने हर रोज बड़ी संख्या में पर्यटक पहुंच रहे हैं। पिछले 2 महीनों में 2000 से ज्यादा पर्यटक इस खूबसूरत झरने का दीदार कर चुके हैं। घने जंगल, पहाड़ियों और हरी भरी वादियों से घिरा हुआ नंबी वाटरफॉल जो सैलानियों के लिए बेहद शांत और सुकून देने वाली जगह है।
1: पहाड़ों पर रुक रुक कर बारिश जारी है। शिमला में झमाझम बारिश के बीच मौसम काफी सुहाना है। मौसम विभाग के मुताबिक हिमाचल में 21 अगस्त तक बारिश का दौर जारी रहने की संभावना जताई जा रही है। बिलासपुर, कांगड़ा, मंडी और सिरमौर में बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है।
10: फ्रांस के एस्ट्रोनॉट सोफी एडेनो ने पहली बार स्पेस वॉक का इतिहास रच दिया है। उन्होंने ISS के बाहर नासा के एस्ट्रोनॉट अनिल मेनन के साथ काम किया और सोफी और अनिल को स्पेस स्टेशन का एक जरूरी एंटीना बदलना था।

शुभ समाचार की शुरुआत सावन में उत्सव के रंग से करेंगे। देश के अलग अलग हिस्सों में इन दिनों आस्था और लोक संस्कृति के रंग देखने को मिल रहे हैं। उत्तरकाशी के दयारा बुग्याल में करीब 11,000 फीट की ऊंचाई पर बटर फेस्टिवल में देव डोली के साथ लोक परंपराओं की झलक दिखी। दूध दही और मक्खन से होली खेली गई। राधा कृष्ण की जोड़ी के साथ रासो तांदी नृत्य ने माहौल को और भी ज्यादा खास बना दिया। उधर मुंबई में गणेशोत्सव की तैयारियां जोर पकड़ने लगी हैं। कहीं गणपति बप्पा की प्रतिमाओं को आकार दिया जा रहा है तो कहीं बप्पा का शहर में आगमन शुरू हो चुका है। गणपति बप्पा मौर्या के जयकारों के साथ माया नगरी उत्सव के रंग में रंगने लगी है और महाराष्ट्र के सह्याद्री की पहाड़ियों के बीच बसे भीमा शंकर ज्योतिर्लिंग में सावन की भक्ति अपने चरम पर है। जंगलों से घिरे इस धाम में बादल और कोहरे के बीच श्रद्धालु दूर दूर से पहुंचकर भोलेनाथ के दर्शन कर रहे हैं। यानी देश के अलग अलग कोनों में मौसम भले ही अलग हो लेकिन माहौल एक ही है, आस्था उत्सव और भक्ति का माहौल।

तो वहीं उत्तरकाशी का मशहूर बटर फेस्टिवल, जहां पर पहाड़ की लोक संस्कृति, परंपरा, आस्था एक साथ नजर आई। दरअसल दयारा बुग्याल में आयोजित इस अनोखे उत्सव में देव डोली निकली, राधा कृष्ण का रास हुआ और पारंपरिक वाद्य यंत्र की धुन पर लोगों ने जमकर यहां नृत्य किया। उत्तराखंड के अलावा कई राज्यों से पर्यटक भी इस पहाड़ी उत्सव का हिस्सा बनने पहुंचे। दरअसल बटर फेस्टिवल अच्छी फसल और पशुधन की समृद्धि के लिए ईश्वर के प्रति आभार जताने की परंपरा से जुड़ा है। दूध, दही, मक्खन के साथ खुशियां मनाने का ये पर्व पहाड़ की कृषि और पशुपालन संस्कृति की झलक दिखाता है। यही वजह है कि हर साल ये उत्सव दयारा बुग्याल में खास आकर्षण बन जाता है।

उत्तरकाशी के बच्चों फेस्टिवल में आस्था, लोक संस्कृति और कुदरत तीनों का अद्भुत संगम देखने को मिला। देव डोलियों के दर्शन श्रद्धालुओं के लिए सौभाग्य का पल बने। दूध, दही और मक्खन से जुड़ी कई प्रतियोगिताएं हुई। राधा कृष्ण की वेशभूषा में सजे कलाकारों ने भक्तों के साथ जमकर नृत्य किया। पारंपरिक वाद्य यंत्रों की धुन पर पूरा दयारा बुग्याल झूम उठा। खास बात यह है कि बादलों से घिरे आसमान के नीचे मनाया गया ये उत्सव। ऐसा लगा जैसे इस जश्न में इंसानों के साथ कुदरत भी शामिल हो गई हो। पहाड़ की यही लोक परंपरा और संस्कृति बटर फेस्टिवल को और भी ज्यादा खास बनाती है। देखिए कितनी बड़ी संख्या में लोग यहाँ शामिल हुए हैं बटर फेस्टिवल को मनाने के लिए। और ये भव्य तस्वीरें आपके सामने हम दिखा रहे हैं उत्तरकाशी से। उत्तरकाशी में ये होली मनाई जाती है, लेकिन ये होली रंग और गुलाल के साथ नहीं, बल्कि दूध, मक्खन और बटर के साथ मनाई जाती है।

0: देश में लोक आस्था और परंपरा से जुड़े कई ऐसे पर्व त्योहार हैं जिनमें धार्मिक विश्वास के साथ साथ स्थानीय संस्कृति, प्रकृति, कृषि और सामुदायिक जीवन की गहरी छाप दिखाई देती है और ये उसी की दिव्य छटा है। ये तस्वीरें उत्तराखंड के उत्तरकाशी के दयार बुग्याल में धूमधाम से मनाए गए अंधोरी उत्सव की है जिसे बटर फेस्टिवल के नाम से भी जाना जाता है। समुद्र तल से करीब 11,000 फीट की ऊंचाई पर 28 वर्ग किलोमीटर के इलाके में फैले बुग्याल यानी घास के मैदान में ढोल डमाओं की थाप पर नृत्य करते हुए लोग इस उत्सव के रंग में पूरी तरह सराबोर नजर आए। दयारा पर्यटन विकास समिति की ओर से आयोजित इस उत्सव में रैथल समेत कई गांवों के लोग अपने आराध्य समेश्वर देवता की देव डोली के साथ दयार बुग्याल पहुंचे। धार्मिक अनुष्ठान पूरा होने के बाद राधा कृष्ण के रूप में मौजूद जोड़ी ने मक्खन से भरी हांडी फोड़ी और उसके साथ ही उत्सव का रंग गहराता चला गया। लोग एक दूसरे के चेहरों पर ताजा मक्खन लगाने के साथ ही मट्ठा और दूध की होली खेलने में मशगूल हो गए। दौरान पारंपरिक लोकगीत, नृत्य और ढोल दमाओं की थाप पर जमकर जश्न मनाया गया। पारंपरिक लोक वेशभूषा में सभी राधा कृष्ण के रूप में मौजूद जोड़ी के साथ रासौर तांदी नृत्य करते दिखे। बटर फेस्टिवल केवल एक उत्सव भर नहीं है बल्कि पशुपालन पर निर्भर पहाड़ी समाज के लिए अपने पशुधन की खुशहाली और प्रकृति के प्रति आभार प्रकट करने का अवसर भी है। दरअसल रैथल के ग्रामीण गर्मी की दस्तक के साथ ही अपने मवेशियों के साथ दयार बुग्याल समेत गोई चिलापड़ा में बनी अपनी छावनियों में ग्रीष्मकालीन प्रवास के लिए पहुंच जाते हैं। ऊंचे बुग्यालों में उगने वाली औषधि गुणों से भरपूर घास और अनुकूल वातावरण का बेहतर असर दुआऊ पशुओं के दूध उत्पादन पर भी होता है। ऐसे में ऊंचाई वाले इलाकों में सर्दियों की दस्तक से पहले ग्रीष्मकालीन प्रवास में वापसी करते हैं। उससे पहले अपनी और अपने मवेशियों की रक्षा के लिए वो प्रकृति का आभार जताने के लिए ये अनूठा पर्व मनाते हैं। उत्तरकाशी से ओमकार बहुगुणा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
1: वहीं सावन के महीने में पुणे के भीमाशंकर ज्योतिर्लिंग मंदिर में हजारों श्रद्धालु दर्शन और भगवान शिव का आशीर्वाद लेने के लिए पहुंच रहे हैं। घने कोहरे और बारिश के बीच भक्तों की भारी भीड़ ने मंदिर परिसर को भक्तिमय बना दिया है। घने जंगलों के बीच बसे इस मंदिर का सावन के महीने में अद्भुत सौंदर्य भी दिख रहा है।

सावन के पावन माह में भगवान भोलेनाथ का दर्शन ही शिव भक्तों को असीम आनंद की अनुभूति देता है। इस पूरे महीने शिवालयों में श्रद्धालुओं की भीड़ लगी रहती है और ज्योतिर्लिंग मंदिरों में तो आस्था का समंदर उमड़ पड़ता है।

0: महाराष्ट्र के पुणे में सह्याद्री पर्वतमाला के घने जंगलों के बीच भीमा शंकर ज्योतिर्लिंग मंदिर में भी सावन के महीने में भक्तों का हुजूम दिख रहा है। दूर दूर से भक्त यहाँ भगवान के दर्शन के लिए आ रहे हैं। दर्शन के लिए श्रद्धालुओं की लंबी कतार दिख रही है। घंटों इंतजार के बाद भक्तों को भगवान भीमा शंकर के दर्शन का सौभाग्य मिल रहा है।
1: मुंबई से आए हैं, मैं मुंबई से आया हूं और मैं 31 साल से हर साल आता हूं बाबा के दरबार में श्रावण मास में, और सोमवार को हम बाबा का अभिषेक करते हैं, पूजा करते हैं, अर्चना करते हैं, सहपरिवार आते हैं और बाबा का प्रार्थना ये करते हैं कि बाबा हमको बार बार बुला। और यहाँ पे बहुत अच्छी प्रशासनिक व्यवस्था भी अच्छी है।
2: हम लोग, हमारा ग्रुप आ रहा है यहाँ पे। कितने लोग हैं आपके साथ?
3: हम लोगों का एक्चुअली 10 से 12 लोगों का ग्रुप है। आज इस बार 4 लोग हम लोग के साथ।
4: हम गुजरात से है और भगवान से तो क्या मांगे, भगवान ने सब कुछ दे दिया है हम अच्छाई।
2: कितने साल से आते हैं आप?
4: फर्स्ट टाइम आए हैं हम वहीं से, राजकोट से, गुजरात से।
2: और पहली बार आए?
4: दर्शन पहली बार हुए।
2: दर्शन हुआ है आपका? क्या मांगा भगवान से?
4: भगवान से कुछ मांगना चाहिए।
2: तो ये सब लोग आते मांगने ही आते हैं ना?
4: सब तो नहीं आते होंगे ना, कोई हमारे जैसा भी नहीं होगा जो उसको मांगना नहीं पड़ता।
0: भारी बारिश और घने कोहरे के बावजूद भीमा शंकर मंदिर पहुंचने वाले भक्तों के उत्साह में कोई कमी नहीं है। मॉनसून के सीजन में लोग बारिश से बचने का इंतजाम करके मंदिर पहुंच रहे हैं। घने जंगलों के बीच बसे इस ज्योतिर्लिंग मंदिर तक पहुंचने के रास्ते को भी कुदरत ने अपने अद्भुत सौंदर्य से निखारा है। घने जंगलों के बीच बसे भीमा शंकर ज्योतिर्लिंग मंदिर में भगवान चांदी के शिवलिंग स्वरूप में विराजमान है। भीमा नदी के तट पर बने इस ज्योतिर्लिंग मंदिर का पुराणों में भी जिक्र है।
5: ब्रह्मदेव ने कमल पुष्प से वहां स्थापित किया पार्वती को, और त्रिपुर सुंदरी पार्वती और शिवजी दोनों मिलकर अर्धनारीश्वर रूप लेके कार्तिक शुद्ध पूनम के दिन शिवजी ने बड़ा रूप लिया, भीम रूप। भीम रूप ने ब्रह्मदेव, विष्णु, इंद्र, चंद्र, पार्वती ऐसे 5 भगवान एक गट्ठा होके मेन अर्धनारीश्वर रूप लेके कार्तिक शुद्ध पूनम के दिन शिवजी ने त्रिपुरासुर का संहार किया। मारने के बाद जो शरीर में पसीना आया तो इधर रूप छोड़ने के टाइम में देव दानव ऋषि मुनि थे, उन्हें प्रार्थना करी कि एक क्षेत्र का उद्धार करो, आप आगे भी रहते थे आगे भी रहेंगे। तो भगवान बोले मैं बड़ा रूप लिया इसलिए भीमशंकर नाम से आ रहूंगा।
0: इस मंदिर में दर्शन के लिए आने वाले श्रद्धालुओं की सहूलियत के लिए भी पर्याप्त इंतजाम किए गए हैं। मंदिर तक पहुंचने के 7 किलोमीटर के रास्ते पर 4 पार्किंग स्थल बनाए गए हैं। पार्किंग से मंदिर तक जाने के लिए बसों का इंतजाम किया गया है। भारी बारिश और घने कोहरे के कारण निजी वाहनों की पार्किंग मंदिर से दूर रखी गई है। मंदिर तक पहुंचने के लिए कई जिलों में बसों की सुविधा भी दी गई है। भीमा शंकर ज्योतिर्लिंग पहाड़ पर बने घने जंगलों के बीच बसा है। सावन के महीने में ज्योतिर्लिंग के आसपास हरे भरे पेड़ पौधों से पूरे इलाके की रौनक बढ़ जाती है। शहरी भीड़ भाड़ से दूर ये मंदिर एक अद्भुत शांति का एहसास कराता है, और इस मौसम में भगवान भीमा शंकर के दर्शन पाने वाला हर भक्त खुद को धन्य महसूस करता है। पुणे से रायचंद शिंदे के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
6: सावन के पवित्र महीने में पूरे देश में भगवान शिव की आराधना और मंदिरों में जलाभिषेक का सिलसिला चल रहा है। शिव भक्त भगवान भोलेनाथ का जलाभिषेक कर सुख समृद्धि और परिवार की खुशहाली की कामना कर रहे हैं। देशभर में भगवान शिव के अनेक प्राचीन और पौराणिक मंदिर हैं, लेकिन प्रयागराज में गंगा तट पर मौजूद कोटेश्वर धाम का अपना अलग धार्मिक और पौराणिक महत्व माना जाता है। कोटेश्वर धाम की क्या है मान्यता और क्यों इस धाम का प्रभु राम से है संबंध, इस रिपोर्ट में देखिए।
7: सावन का पवित्र महीना, गंगा की पावन धारा और हर ओर गूंजता हर हर महादेव का जयघोष। भगवान शिव की भक्ति में डूबा यह नजारा है संगम नगरी प्रयागराज के गंगा तट पर बसे एक ऐसे धाम का जिसका पौराणिक इतिहास मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम से जुड़ा है। एक ऐसा शिव धाम जहाँ कभी 1 करोड़ शिवलिंगों से महादेव की आराधना की गई थी।
8: सावन के महीने में प्रयागराज का ये कोटेश्वर महादेव मंदिर भक्तों के लिए, खासकर शिव भक्तों के लिए बहुत खास है, और इस मंदिर की लिए कहा जाता है कि भगवान राम ने इस मंदिर में शिवलिंग की स्थापना खुद की थी। जब वो रावण का वध करके प्रयागराज पहुँचे थे महंत के पास, तो उन्होंने ये कहा था कि आपको ब्रह्म हत्या का दोष लगा है, लिहाजा आप 1 करोड़ शिवलिंग की स्थापना करिए, उसके बाद आपके ऊपर से ब्रह्म हत्या का दाग हटेगा। भगवान श्री राम ने यहाँ पर बालू के कर्ण से 100,000 शिवलिंग बनाए, उसके बाद उनके ऊपर जो द्वेष था वो समाप्त हुआ। लेकिन जब उन्होंने जिस शिवलिंग की स्थापना की वो प्रयागराज के इस कोटेश्वर महादेव मंदिर में रखा गया, और आज भी ये माना जाता है कि भगवान राम द्वारा स्थापित इस शिवलिंग की मान्यता काफ़ी है। और सावन के महीने में शिव भक्त इसलिए आते हैं कि भगवान शिव उनके कष्टों को दूर करते हैं।
7: प्रयागराज के शिवकुटी इलाके में गंगा किनारे मौजूद कोटेश्वर धाम सिर्फ आस्था का केंद्र नहीं बल्कि त्रेता युग के एक महान इतिहास का साक्षी भी है। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार जब भगवान श्री राम लंकापति रावण का वध कर अयोध्या लौट रहे थे तब वो प्रयागराज में महर्षि भारद्वाज के आश्रम पहुंचे। महर्षि भारद्वाज ने प्रभु राम को बताया कि रावण ब्राह्मण कुल में जन्मा था, इसलिए उसके वध से उन पर ब्रह्म हत्या का पाप लगा है। इस दोष के निवारण के लिए उन्हें भगवान भोलेनाथ की शरण में जाने और शिवलिंग स्थापित कर क्षमा याचना करने का मार्ग दिखाया गया। उन्होंने ब्रह्म हत्या दोष से मुक्ति पाने के लिए गंगा तट पर रेत से 1 करोड़ शिवलिंग बनाकर महादेव की तपस्या की। बाद में उन सभी शिवलिंगों के पोड़े को एक जगह समाहित कर इस पावन शिवलिंग की स्थापना की गई।
9: पावन का बहुत बड़ा महत्व है श्री कोटेश्वर महादेव मंदिर के लिए, इसलिए क्योंकि ये भगवान रामचंद्र जी के हाथ से स्थापित किया हुआ शिवलिंग है और एक ही शिवलिंग में 1 करोड़ शिवलिंग की स्थापना है।
7: संस्कृत में कोटि का अर्थ करोड़ होता है। 1 करोड़ शिवलिंगों के सामूहिक पुण्य से स्थापित होने के कारण ही इस धाम का नाम कोटेश्वर महादेव पड़ा। यही वजह है कि यहाँ केवल 1 शिवलिंग का जलाभिषेक करने से भक्तों को करोड़ों शिवलिंगों की पूजा करने का फल प्राप्त होता है।
10: कोटेश्वर महादेव जी का मंदिर है जिसको श्री राम जी ने स्थापित किया था, और इसीलिए हम सभी भक्तजन दर्शन करने आए ताकि घर में सुख समृद्धि सब बनी रहे और भगवान जी सब पे अपनी कृपा बनाए रहे।
11: यहाँ पे जो भी आते हैं सबकी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। ये बहुत अच्छा शिवालय है, ये मंदिर बहुत नामी है, आज से नहीं बहुत सदियों पुरानी मंदिर है।
7: सावन के हर सोमवार को यहां दूर दूर से आने वाले श्रद्धालुओं का तांता लगा रहता है। मान्यता है कि सच्चे मन से कोटेश्वर महादेव के दर्शन मात्र से जीवन के बड़े से बड़े कष्ट मिट जाते हैं और सुख समृद्धि का वास होता है। यहां की हवाओं में घुली शिव भक्ति और गंगा की लहरें हर किसी को अध्यात्म से सराबोर कर देती है। आनंद राज, प्रयागराज, गुड न्यूज टुडे।
6: तो वहीं तमिलनाडु के तिरुचिरापल्ली में गणपति बप्पा के स्वागत की तैयारियां शुरू हो चुकी हैं। गणेशोत्सव के लिए कलाकार दिन रात बप्पा की प्रतिमाओं को आकार देने में जुटे हैं। कहीं पर मिट्टी को आकार दिया जा रहा है तो कहीं इन प्रतिमाओं में रंग भरकर इन्हें अंतिम रूप दिया जा रहा है। कलाकारों के हाथों की मेहनत से गणपति की अलग अलग रूपों वाली प्रतिमाएं तैयार हो रही हैं। खास बात यह है कि तिरुचिरापल्ली में तैयार होने वाली इन प्रतिमाओं की मांग सिर्फ देश में नहीं बल्कि विदेशों तक है। यानी बप्पा के स्वागत की तैयारी यहां सिर्फ एक त्योहार नहीं है बल्कि कलाकारों की कला, मेहनत और आस्था का भी उत्सव है। तो मुंबई में गणेश उत्सव की छटा अभी से बिखरनी शुरू हो गई है। यहां एक बड़े गणेश मंडल के पंडाल में धूमधाम के साथ बप्पा की प्रतिमा लाई गई। इस दौरान भक्तों का जबरदस्त उत्साह देखने को मिला। इस अवसर पर पूरा रास्ता भक्तों से भरा नजर आया जो गणपति की भव्य प्रतिमा के साथ पूरे भक्ति भाव में मग्न होकर चल रहे थे।

गणेशोत्सव शुरू होने में भले ही अभी कई दिनों का वक्त बचा हो, लेकिन इस बार भी उत्सव उतना ही भव्य होगा। उसका अंदाजा इन तस्वीरों को देखकर लगाया जा सकता है। महाराष्ट्र में विशेषकर गणेशोत्सव बहुत ही बड़े स्तर पर और भव्य रूप से मनाया जाता है और इसकी झलक मुंबई में दिखनी शुरू हो गई है। चौदह सितंबर से शुरू होने वाले गणेशोत्सव को लेकर कारखानों से गणपति प्रतिमाओं का पंडाल में पहुंचना शुरू हो गया है। काला चौकी इलाके में प्रसिद्ध और ऐतिहासिक सार्वजनिक गणेश मंडल की गणेश प्रतिमा के आगमन के अवसर पर भक्तों का जोश देखने वाला रहा। ढोल ताशों की गड़गड़ाहट के बीच जब इस विशाल और भव्य प्रतिमा को पंडाल में ले जाया जा रहा था, तो रास्ते में हजारों की संख्या में भक्त पूरे उत्साह के साथ चल रहे थे। रास्ते में श्रद्धालु डांस और लेजिम करते हुए भी दिखाई पड़ रहे थे। काला चौकी के इस महागणपति के आगमन में एक ऐसी दिव्य छटा बिखर रही थी जो गणेश उत्सव को लेकर भक्तों की खुशी को मया कर रही थी।

0: पंडाल में 22 फीट ऊंची इस भव्य प्रतिमा के विराजमान होने पर यहां भी भक्त दर्शन कर बप्पा की जयकारे करते दिखे।
1: पंडाल अपने बप्पा को अपनी जगह पर लेकर आना शुरू हो चुके हैं। फिलहाल इस समय मौजूद हूँ साउथ मुंबई के काला चौकी के महागणपति के दरबार में और आप देखें बहुत ही सुंदर भव्य तरीके से बप्पा को यहाँ पर विराजमान कर दिया गया है। आपको बताएं कि महालक्ष्मी के अवतार में गणपति बप्पा को ले आया गया है। बप्पा की 22 फीट की ऊंचाई है, ट्रॉली से सिंह पर बकायदा बप्पा सवार हैं और खास बात यह है कि जो ट्रॉली रखी गई है जिस जगह पे उसके नीचे बहुत ही सुंदर तरीके से रंगोली भी निकाली गई है, बनाई गई है, ठीक उसके ऊपर बप्पा को विराजमान करा गया है। और कुछ घंटों पहले बहुत सारे तस्वीरें, बहुत सारे वीडियोस सोशल मीडिया पर बप्पा के आगमन को लेकर के वायरल हुए थे, जिसमें हजारों की तादाद में जो गणेश भक्त हैं वो जुटे हुए थे और हर कोई बप्पा का स्वागत कर रहा था।
0: अब यहाँ प्रतिमा की सजावट का काम होगा और 14 सितंबर से आस्था के उत्सव का एक शानदार नजारा यहाँ देखने को मिलेगा।
2: हर साल स्वरूप महागणपति का बदलता है, कभी महागणपति पांडुरंग विट्ठल के रूप में आते हैं, कभी सरस्वती के रूप में आते हैं, कभी भोले शंकर के रूप में आते हैं, तो कभी कान्हा नटखट बन के आते हैं। ये साल महालक्ष्मी का रूप, यानी महालक्ष्मी यानी क्या, स्थैर्य, शांति, संपत्ति, जो आजकल हर एक को आशीर्वाद के रूप में महागणपति देने आ रहे आ गए हैं, और इसी का जो हमारी झांकी बनेगी, डेकोरेशन बनेगा, वो भी उसी का एक कोल्हापुर के महालक्ष्मी के मंदिर का जो कंपोनेंट्स है, जो छवि है, वही आपको देखने को मिलेगी।
0: गणेशोत्सव से पहले खेतवाड़ी में उत्सव का पूरा वातावरण बनने लगा है। इस काला चौकी का महागणपति के आसपास भी भक्तों को लाल बाग का राजा जैसी कई प्रसिद्ध बड़े गणेश पंडाल में बापा के दर्शन का सौभाग्य मिलता है। मुंबई से धर्मेंद्र दुबे की रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
3: यहाँ वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का, आपका ही मच जाएगा। ब्रेक के बाद आपको दिखाएंगे गोल टेस्ट में जीत के कितने करीब भारत।
4: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को।
5: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
6: और दुर्भाग्य कहता है
5: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
7: अविश्वास में विश्वास बसता है,
5: जो हम में अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
8: गुड न्यूज टुडे।
5: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे। देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
4: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
9: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
5: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।
7: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती है तो कुछ दिखाती है विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती है तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
5: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
6: और दुर्भाग्य कहता है
5: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
7: अविश्वास में विश्वास बसता है,
5: जो हम में अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
8: गुड न्यूज टुडे।
5: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे। देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे में।
4: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
9: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।

0: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है कम।
1: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाए स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा, प्यार से परोसा।
2: हिमाचल में 21 अगस्त तक बारिश का दौर जारी रहने की संभावना, बिलासपुर, कांगड़ा, मंडी और सिरमौर में बारिश का ऑरेंज अलर्ट। देश भर में गणेश उत्सव की तैयारियां तेज, तमिलनाडु के तिरुचिरापल्ली में बनाई जा रही इको फ्रेंडली गणेश जी की मूर्ति, पर्यावरण संरक्षण का दे रहे संदेश। धनबाद की प्रांजल और आन्या मित्तल को मिला गिनीज गोल्ड मेडल, ऑनलाइन श्लोकों का पाठ कर बनाया रिकॉर्ड, परिवार में खुशी की लहर। तो 8 मीटर कैनवस पर मिथिला पेंटिंग का बना विश्व रिकॉर्ड, कैनन्स पर लिखे गए रामचरितमानस के प्रसंग, दिल्ली में हुआ कार्यक्रम। गोल्ड टेस्ट जीतने से 6 विकेट दूर टीम इंडिया, महज 84 रनों पर श्रीलंका के 4 बल्लेबाज आउट, भारतीय गेंदबाजों के शानदार प्रदर्शन से मैच का मुड़ा रुख।
0: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है कम से कम लोग।

0: अब ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आपका शुभ समाचार में। और अब बात क्रिकेट की कर लेते हैं। गुड न्यूज ये है कि गोल्ड टेस्ट में जीत की खुशबू आने लगी है। भारत जीत से महज 6 कदम दूर है। कल टेस्ट मैच के चौथे दिन श्रीलंका ने दूसरी पारी में 84 रन पर 4 विकेट गंवा दिए थे। श्रीलंका अब भी 287 रन पीछे है। धनंजय डिसिल्वा और सोनल डिनुशा पर अब मेजबान टीम की उम्मीदें टिकी हैं। जाहिर है श्रीलंका के बल्लेबाजों के लिए टेस्ट मैच के आखिरी दिन स्पिन ट्रैक पर कुलदीप यादव, रविंद्र जडेजा और मानव सुथार की फिरकी के आगे टिक पाना आसान नहीं होगा। जाहिर है मैच टीम इंडिया की पकड़ में है और जीत सिर्फ 6 कदम दूर खड़ी है।
1: गोल्ड टेस्ट में ऋषभ पंत ने एक शानदार कीर्तिमान रच दिया है। दरअसल उन्होंने टेस्ट में सबसे तेज 100 छक्के लगाने का रिकॉर्ड बनाया और ऋषभ पंत ने ऑस्ट्रेलिया के धाकड़ बल्लेबाज एडम गिलक्रिस्ट का भी रिकॉर्ड तोड़ा है।
0: तो पंत ने सिर्फ 79 पारी और 4,918 गेंदों में कीर्तिमान बनाया है। गिलक्रिस्ट ने 130 पारी और 6,578 गेंदों में 100 छक्के लगाए थे।
1: खास बात यह है कि गिलक्रिस्ट के बाद पंत टेस्ट में 100 छक्के लगाने वाले दुनिया के दूसरे विकेटकीपर बन गए हैं। साथ ही वो टेस्ट में 100 छक्के लगाने वाले भारत के पहले बल्लेबाज भी बन गए हैं।
0: दिलचस्प बात यह है कि पंत ने सबसे कम गेंदों में 100 छक्के लगाने का वर्ल्ड रिकॉर्ड भी बनाया है। तो बात महिला हॉकी की कर लेते हैं। विश्व कप में भारत ने शानदार जीत हासिल की है। भारतीय टीम ने दक्षिण अफ्रीका को 6-1 के बड़े अंतर से मात दी है। ये टूर्नामेंट में भारत की पहली और अब तक की सबसे बड़ी जीत है। इसी के साथ पूल डी में भारत ने टॉप स्थान हासिल कर लिया है। भारत के लिए सुनीता टोपो, नवनीत कौर, सुशीला चानू, दीपिका सहरावत और साक्षी राणा ने गोल किए। साउथ अफ्रीका के लिए काला डे वॉल ने आखिरी क्वार्टर में गोल किया। अब भारत का सामना इंग्लैंड से होगा।
1: अब बात उस मुकाबले की कर लेते हैं जिस पर हर हॉकी प्रेमी की नजर टिकी हुई है। हॉकी के टर्फ पर आज भारत पाकिस्तान का रोमांच देखने को मिलेगा। मेंस हॉकी वर्ल्ड कप में आज भारत पाकिस्तान का मुकाबला होगा। पूल डी का ये मुकाबला शाम 6:30 बजे वैगनर हॉकी स्टेडियम में खेला जाएगा। खास बात यह है कि पिछले 10 साल से पाकिस्तान के खिलाफ टीम इंडिया अजय बनी हुई है। आमने सामने की बात करें तो दोनों टीमों के बीच कुल 19 मैच खेले गए हैं, जिनमें से 17 में भारत को जीत मिली जबकि 2 मैच ड्रॉ रहे। मौजूदा टूर्नामेंट में अब तक भारत का मिला जुला सफर रहा है। टीम इंडिया ने पहले मुकाबला वेल्स से 3-1 से जीता जबकि इंग्लैंड से 1-4 से हार गया। फिलहाल भारत 2 मैच में 3 अंक के साथ पॉइंट्स टेबल में दूसरे स्थान पर है। अगर टीम इंडिया पाकिस्तान के खिलाफ जीत का सिलसिला बनाए रखती है तो जो 6 अंक के साथ अगले राउंड के लिए क्वालिफाई वो कर जाएगी। वहीं अगर पाकिस्तान हारा तो टूर्नामेंट से बाहर वो हो जाएगा। दिल्ली में एक सरकारी स्कूल की छात्राओं ने चॉकलेट का एक हेल्दी विकल्प तैयार किया है। इस चॉकलेट को सीजनल फ्रूट और ड्राई फ्रूट की मदद से तैयार किया गया। अब ये छात्राएं अपने इस प्रोडक्ट की मार्केटिंग के लिए स्टार्टअप शुरू करने की तैयारी में हैं।
2: इन चॉकलेट्स में स्वाद के साथ छिपा है सेहत का खजाना। दिल्ली में अशोक नगर सर्वोदय कन्या विद्यालय की इन छात्राओं ने डार्क चॉकलेट को सीजनल फ्रूट और ड्राई फ्रूट्स के साथ मिलाकर चॉकलेट का एक सेहतमंद विकल्प तैयार कर लिया है।
3: ये चॉकलेट जो है वो फ्रूट चॉकलेट है। पेरेंट्स को किसी तरीके का डर नहीं होना चाहिए जब उनके छोटे बच्चे जो है वो चॉकलेट्स उनसे मांगे और वो देने से डरे, लेकिन ये चॉकलेट एक ऐसी है जो आप इनको इजीली जो है वो दे सकते हैं, खिला सकते हैं, इवन पेरेंट्स भी जो है एंजॉय कर सकते हैं। और ये जो चॉकलेट्स है बनाया है अगेन सर्वोदय कन्या विद्यालय जो कि ईस्ट ऑफ लोनी में है, इन्हीं की छात्राओं ने और ये चार छात्राओं ने मिलकर ऐसी एक चॉकलेट्स बनाई।
4: मेन प्रोडक्ट जो था वो था फ्रूट स्क्यूअर्स। उसमें हमने फ्रूट्स को चॉकलेट के साथ कोट करा और वो थी डार्क चॉकलेट, तो वो हमें हेल्दी है वो और टेस्ट भी अच्छा। उसमें हमने ड्राई फ्रूट्स, नट्स ऐड करे और अब जो हमने थोड़ा उसको इनोवेटिव किया है।
2: ये फ्रूट चॉकलेट खाने में जितनी टेस्टी है उतनी ही हेल्दी भी। इन छात्राओं ने बकायदा रिसर्च के बाद ही इस प्रोडक्ट को लॉन्च किया है। खास बात ये है कि इन्होंने अपने इस प्रोडक्ट को सिर्फ स्कूल प्रोजेक्ट तक सीमित नहीं रखा बल्कि इसे एक स्टार्टअप बिजनेस आइडिया के तौर पर भी विकसित करने की दिशा में काम कर रही हैं।
5: स्मॉल वाला बॉक्स अभी हम दे रहे हैं तो मैम इसका कॉस्ट 20 रुपीज हम रख रहे हैं, जिसके अंदर हमें प्रॉफिट 10 रुपीज का और है, ऑलमोस्ट 50% हम कह सकते हैं। मैम इसमें हम आगे और इनोवेशंस करने वाले हैं, हम आगे रॉ मटेरियल जो है स्टॉक में खरीदा करेंगे, हम जो सामान है उसको देखेंगे कि हम पहले से प्रिपेयर करके रख पाएं बॉक्सेस वगैरह, जिससे मैम जो हमारा कॉस्ट है वो और कम आएगा और प्रॉफिट ज्यादा हो जाएगा हमारा।
3: तो आप देख सकते हैं कि बच्चों ने किस तरीके से जो है पूरी रिसर्च करी, और वो रिसर्च जो है मैं आपको दिखा रही हूँ कि कहते हैं ना स्कूल के बच्चों ने करा है, तो उसी स्टाइल में आपको चीजें दिखेगा कि कवर भी बच्चों ने खुद हैंडमेड है, सारी चीजें जो है वो खुद बनाई है, और उसके बाद इनका रिसर्च वर्क जो है वो शुरू होता है कि किस तरीके से इनका फाइनल प्रोडक्ट है वो इन्होंने पैकेजिंग के साथ जो है वो यहाँ दिखाने की कोशिश करी है।
2: दिल्ली के एक सरकारी स्कूल के इन छात्राओं ने चॉकलेट को सिर्फ स्वाद से जोड़कर नहीं देखा, इन्होंने चॉकलेट के स्वाद के साथ इनोवेशन, हेल्थ और स्टार्टअप आइडिया को भी जोड़ने की कोशिश की है। ये नई सोच ही अब इन चारों छात्राओं को एक नई पहचान भी दिला रही है। मनीषा लड्डा, गुड न्यूज टुडे।
0: ये दिल्ली सरकार के नई प्रोजेक्ट का हिस्सा है, जिसके तहत सरकारी स्कूल के बच्चों को खास प्रशिक्षण दिया जा रहा है और उन्हें भविष्य के लिए तैयार भी किया जा रहा है। और चलिए अब बात होगी गीता श्लोक के वर्ल्ड रिकॉर्ड की। झारखंड में धनबाद की प्रांजल और आन्या मित्तल ने गिनीज गोल्ड मेडल हासिल किया है। उन्होंने ऑनलाइन श्लोकों का पाठ कर ये रिकॉर्ड बनाया, इससे परिवार में खुशी की लहर है। प्रांजल मित्तल और आन्या मित्तल ने श्रीमद् भगवद गीता के श्लोकों का नियमित पाठ करते हुए विश्व स्तर पर अपनी पहचान कायम की। दोनों बहनों की इस उपलब्धि को गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज किया गया। इस खास सफलता के लिए उन्हें आधिकारिक प्रमाण पत्र के साथ गोल्ड मेडल भी प्रदान किया गया। इस उपलब्धि के पीछे परिवार के संस्कार और उनकी मां प्रीति अग्रवाल की अहम भूमिका रही है। रिकॉर्ड बनाने वाली प्रांजल मित्तल ने बताया कि उन्होंने श्रीमद् भगवद गीता के 15वें अध्याय का पाठ करीब 5 मिनट में पूरा किया। वहीं आन्या मित्तल बताती हैं कि गीता का पाठ उनके लिए कोई नई चीज नहीं है, उन्होंने बचपन से ही अपनी माँ से गीता के श्लोक सीखना शुरू कर दिया था।
6: मैंने जो भी सीखा सब कुछ मेरी माँ और मेरी गीता और गीता परिवार के द्वारा ही सीखा। गीता परिवार से ही मैंने जो भी 18 अध्याय मैंने पढ़ना सीखा वो सब कुछ गीता परिवार के से ही सीखा। उन्हें वो उनके ऑनलाइन क्लासेस से मैं गीता पढ़ी, मैंने उसे समझा, मैंने उसे याद किया। गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में अपना नाम दर्ज कराने के लिए 15वां अध्याय पढ़ा करीब 5 मिनट तक। उसमें करीब 7,000 लोगों ने, 70,000 लोगों ने रजिस्ट्रेशन कराया था, जिसमें से 30,000 लोगों ने गीता का एक साथ पाठ किया था, और 30,000 लोगों में से 8,277 लोगों ने सबसे अच्छा उच्चारण करके पाठ किया, जिनका नाम गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में आया है।
7: आज आपके सामने वो बिना देखे मुझे पता है पूरी गीता आपके साथ पढ़ सकते हैं, बहुत खुशी होती है, क्योंकि आज 100 लोग खड़े होंगे तो मेरे बच्चे अलग ही दिखाई देंगे।
1: गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में उन्होंने नाम दर्ज करवाया है। धनबाद की दोनों बहनों ने ऑनलाइन गीता श्लोक में वर्ल्ड रिकॉर्ड हासिल हो। पंजाब के मोगा में एक महिला सैकड़ों परिंदों को आशियाना मुहैया करा रही है। अपने घर में ही उन्होंने चिड़ियों के लिए घोंसले बनाए हैं और इन घोंसलों में रोजाना सैकड़ों परिंदे आते हैं। परिंदों से उनका ये लगाव अब एक मिसाल बन गया है। पंछियों के संरक्षण में उनकी कोशिश को खूब सराहना मिली है।

0: घर के हर एक कोने में परिंदों का आशियाना सजा है। चिड़ियों की चहचहाने की आवाज से ये घर हमेशा गुलजार रहता है। पंजाब में मोगा के निधावाला गांव में रहने वाली हरप्रीत कौर का इन चिड़ियों के साथ एक अनोखा रिश्ता है। पिछले 13 साल से हरप्रीत इन परिंदों का सहारा बनी हुई है। घर में चिड़ियों का आशियाना सजाने के साथ साथ वो परिंदों को रोजाना दाना भी डालती हैं। करीब 500 से ज्यादा परिंदे रोजाना इस आंगन में आकर घर की रौनक बढ़ाते हैं। हरप्रीत इन परिंदों का अपने बच्चों की तरह देखभाल करती है।
1: मेरे घर में 200 के करीब रैन बसेरा है और हमारे 500 से 600 हमारे घर में गुरैया रहती हैं और गांव से भी बहुत ज्यादा गुरैया आती है। ये मेरिया प्यारियां राजकुमारियां, मैं प्यार ना राजकुमारियां कहती हूँ क्योंकि मेरे ना एक बेटी नहीं थी, इसलिए मेरी बेटी की कमी पूरी करती है। क्योंकि हमारे पंजाब में जो बेटियां होती है ना उनको चिड़िया बुलाते हैं। सो ये घर में बहुत ज्यादा रौनके लगाती थी। सुबह उठते हैं तो बहुत ज्यादा इनका रौनक शुरू हो जाती है, बोलती है, बड़ी मीठी आवाज होती है, इसका कुदरती संगीत होता है।
0: हरप्रीत के लिए ये परिंदे उनके परिवार का हिस्सा है। वो अपना सारा दुख सुख इन्हीं के साथ बांटती है। उन्होंने अपने घर के अलावा गांव में ही कई जगहों पर ऐसे ही छोटे घोंसले लगाए हैं। बदलते दौर में शहरों में बढ़ते दायरे की वजह से पंछियों को अपने आशियाने के लिए जगह नहीं मिल पाती। ऐसे में भीषण गर्मी और कड़ाके की सर्दी का मौसम इन चिड़ियों के लिए बड़ी चुनौती लेकर आता है। हरप्रीत ने परिंदों की इस मुश्किल को कुछ कम करने की कोशिश की है।
1: इनको ना साफ पानी, एक तो साफ पानी की जरूरत है क्योंकि ना आजकल कीटनाशक इतने ज्यादा बढ़ चुके हैं कि साफ पानी नहीं मिलता पक्षियों को। एक रहने के लिए इनकी जगह खत्म हो गई है। पहले हमारे बुजुर्ग थे ना, वो कच्चे घरों में रहते थे, वहां पर काने वाले की छतें हुआ करती थी तो उस पर रहती थी ये गुरैया। अब वो नहीं है तो इसको घर में जगह नहीं मिल रही, इसलिए हमने इनके लिए एक प्लांट जो रैन बसेरा दिया है ना, वो प्लांट है इसका जो घोंसला है ना, वो इसमें वो ढक्के रख के खुद ही बनाती है।
0: हरप्रीत का मानना है कि प्रकृति का संतुलन बनाए रखने के लिए परिंदों का संरक्षण बेहद जरूरी है। यही वजह है कि वो इन पक्षियों का मददगार बनने के साथ ही और लोगों को भी परिंदों की मदद के लिए जागरूक करती हैं। मोगा से तन्मय सामंता के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
2: आपने डॉग्स की खूबसूरती बहुत देखी होगी, किसी के लंबे बाल, किसी की प्यारी आंखें, तो किसी की मासूमियत देखकर आप भी कह उठते होंगे कितना प्यारा डॉग है। लेकिन जरा सोचिए, अगर दुनिया के सबसे बदसूरत डॉग को चुनने के लिए बकायदा प्रतियोगिता हो तो नजारा कैसा होगा। जी हां, अमेरिका के कैलिफोर्निया में कुछ ऐसा ही अनोखा आयोजन हुआ, देखिए।
3: इस प्रतियोगिता की असली खूबसूरती इन कुत्तों की शक्ल में नहीं बल्कि उनकी कहानियों में है। प्रतियोगिता का संदेश साफ है, कमियां चाहे कितनी भी हो, प्यार के लिए परफेक्ट होना जरूरी नहीं। इस अनोखी प्रतियोगिता ने इस साल अपनी 50वीं सालगिरह मनाई। कभी काउंटी मेले के एक छोटे से आकर्षण के तौर पर शुरू हुआ ये आयोजन अब दुनिया भर में अपनी पहचान बना रहा है। इस प्रतियोगिता में इस साल का खिताब 6 साल की पग जिनी लू ने अपने नाम किया, जबकि दूसरे स्थान पर 1 साल की पिंकी रही। इसकी मालकिन लॉरा ब्राउन रेस्क्यू और फॉस्टर डॉग्स के साथ काम करती है। इसी प्रतियोगिता में तीसरे स्थान पर रहा 2 साल का ओटो। मुश्किल हालात के बावजूद ओटो ने जिंदगी की जंग जीती और अब प्रतियोगिता के मंच तक पहुँचा। इस प्रतियोगिता का मकसद रेस्क्यू किए गए कुत्तों की देखभाल और उनको अपनाने के लिए लोगों को प्रेरित करना है। प्रतियोगिता का नाम भले ही सबसे बदसूरत हो, लेकिन यहाँ पहुँचे कुत्तों की कहानियाँ हिम्मत, संघर्ष और बेशुमार प्यार की है। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
2: देश के कई हिस्सों में बारिश का दौर जारी है, इससे कई जगह बाढ़ जैसे हालात पैदा हो गए हैं। इन सब के बीच राहत और बचाव का काम भी चल रहा है। एक रेस्क्यू ऑपरेशन समंदर में भी चलाया गया, तो हिमाचल प्रदेश में बारिश को लेकर मौसम विभाग ने अलर्ट जारी किया है।

0: ऑपरेशन के अलावा समंदर में मुश्किल हालात के बीच फंसे लोगों की जान भी बचाई जा रही है। गुजरात के नवसारी की ये तस्वीरें देखिए। यहां समंदर में फंसे मछुआरों को एयरलिफ्ट कर सुरक्षित बचाया गया। समंदर में एक नाव के डूबने की स्थिति में होने की जानकारी मिलने पर कोस्ट गार्ड ने तत्काल हेलीकॉप्टर के जरिए रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया और नाव में सवार सभी 9 मछुआरों को एक एक कर सुरक्षित बचा लिया।
1: जलालपुर तहसील के कृष्णपुर गांव से एक फिशिंग बोट वलसाड़ की ओर जाने को रवाना हुई थी, जिसमें 9 लोग सवार थे। जयेश भाई कंडेल की ये जो बोट थी वो धोलाई मरीन बंदर से 2.5 नोटिकल माइल के दूरी पर सिंक होना स्टार्ट हुई थी। 9 लोगों का रेस्क्यू कॉल हमें कंट्रोल रूम में मिला था, उसमें ये सब 9 लोगों को रेस्क्यू करने के लिए पहले एनडीआरएफ की टीम से आयोजन किया था। फिर पता चला कि भाई ये अपने कोस्ट गार्ड के चॉपर के मदद से ही रेस्क्यू करना पड़ेगा। तो कोस्ट गार्ड के जो कमांडेंट साहब है उनसे मैंने बात की थी। नवसारी जिला कलेक्टर श्री मनीष गुरवानी साहब ने कोस्ट गार्ड के डीआईजी साहब से बात करते ही तुरंत उन्होंने चॉपर भेजा था।
0: रेस्क्यू कर सभी 9 मछुआरों को समंदर तट पर सुरक्षित उतार दिया गया। वहीं ओडिशा में बाढ़ के पानी में बहे एक व्यक्ति का भी रेस्क्यू किया गया। ओडिशा के बाढ़ प्रभावित भद्रक जिले की ये तस्वीर देखिए। बालीपाटना इलाके के तारनगर गांव के रहने वाले सुनंदा बेहरा ताड़ के पेड़ को पकड़कर भूखे प्यासे 5 दिन तक इसी तरह अपनी जान बचाते रहे। ODRAF की टीम को सुनंदा बाजापति पाड़िया इलाके में मिली। वहां से रेस्क्यू कर उन्हें पालीपाटना मेडिकल सेंटर ले जाया गया, जहां उनका इलाज चल रहा है। मैदान से लेकर पहाड़ तक में हो रही बारिश मुश्किल का सबब बन रही है। उत्तराखंड में ऋषिकेश से लेकर देहरादून तक में SDRF और पुलिस की टीम रेस्क्यू ऑपरेशन में पसीना बहाती नजर आ रही है। ऋषिकेश में पानी के तेज बहाव में फंसी एक गाड़ी के ऊपर जवान रस्सी के सहारे पहुंचे और फिर गाड़ी के अंदर से एक एक कर दोनों लोगों को सुरक्षित बाहर निकाला। वहीं देहरादून के विकास नगर में स्वर्णा नदी में फंसे 6 छात्रों को भी SDRF के जवानों ने काफी मशक्कत के बाद सुरक्षित रेस्क्यू किया। उत्तराखंड में भारी बारिश की वजह से नदी नाले उफान पर हैं, जिसको देखते हुए प्रशासन अलर्ट मोड में है और लोगों से सतर्कता बरतने की अपील की जा रही है। हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला समेत जगह जगह बारिश का दौर देखने को मिल रहा है। इन सब के बीच मुश्किल हालात में फंसे लोगों का रेस्क्यू भी किया जा रहा है। हिमाचल प्रदेश में मॉनसून सक्रिय है और इसके चलते 22 अगस्त तक बारिश का दौर जारी रहने का अनुमान है, जिसको लेकर मौसम विभाग ने अलर् ट भी जारी किया है।
2: 19 अगस्त को हमीरपुर, चंबा, कांगड़ा, मंडी, शिमला, सिरमौर, यहाँ पे एक दो स्थानों में हैवी रेनफॉल का येलो अलर्ट जारी किया गया। उसके उपरांत 20 और 21 अगस्त को चंबा, कांगड़ा, कुल्लू, मंडी, यहाँ के लिए येलो कैटेगरी में हैवी रेनफॉल का येलो अलर्ट जारी किया गया। फिर उसके उपरांत देखिए 22 अगस्त को जो वेदर एक्टिविटी है उसकी इंटेंसिटी में काफ़ी कमी आएगी। हालांकि 22 अगस्त को जो हमारी जो वेदर एक्टिविटी है वो जो हमारे क्षेत्र में मध्यवर डिस्ट्रिक्ट हैं, जो क्षेत्र ऊना, बिलासपुर, हमीरपुर, वहाँ पर कुछ क्षेत्रों में हल्के से मध्यम बारिश का दौर जारी रहेगा। जो मेजर रिडक्शन है वेदर का वो 22 अगस्त के उपरांत देखने को मिलेगा प्रदेश में, और उसके बाद 23 और 24 अगस्त को काफ़ी कम रहेगी, मतलब वेदर एक्टिविटी मतलब कुछ क्षेत्रों तक सीमित रहेगी। और
0: हिमाचल प्रदेश में 22 अगस्त के बाद भले ही बारिश में कमी आने का अनुमान है, लेकिन फ्लैश फ्लड के खतरे को देखते हुए मौसम विभाग ने नदी नालों से दूर रहने की सलाह दी है। नवसारी से रौनक जानी और शिमला से विकास शर्मा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
3: इंस्टा स्टोरी में अब आपको उन कलाकारों की इंस्टा रील दिखाएंगे जो अभिनय की दुनिया में तो कमाल कर ही रहे हैं, साथ ही साथ सोशल मीडिया पर अपने फैंस को हंसाने में भी पीछे नहीं है। चलिए देखिए अपेक्षा मालविया की फनी इंस्टा स्टोरी।
4: सुनो।
5: हाँ जी
4: भैया, भाभी आ रहे हैं तुम्हारे।
5: मैं चाय पकौड़ी बना रही
6: हूं। एक सवाल का जवाब प्यार से दोगी?
5: कौन सा सवाल?
6: तुम्हारा नाम क्या है?
7: पतले होने लोकी की नहीं करते, जिम करते ने, डाइट करते ने, तू क्यों नहीं कुछ कर दी?
8: तेनू की लगता मैं जिम नहीं कर सकती, मैं एक्सरसाइज नहीं कर सकती? जे मेरे दिल दी प्रॉब्लम ना ना होती तो मैं सारा कुछ कर लेना सी।
7: की होया तेरे दिल नु?
8: यार मेरा नहीं दिल करता कुछ करन नु, की करूं?
3: इसी के साथ इन तमाम खबरों के बाद शुभ समाचार में आज के लिए बस इतना ही। बाकी देश और दुनिया की तमाम पॉजिटिव और अच्छी खबरों के लिए आप बने रहिए गुड न्यूज टुडे के साथ। हमें दीजिए इजाजत, नमस्कार।
9: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली

0: कम से कम लोगों को खबर।
1: क्या है शिवलिंग की महिमा? क्या शिवलिंग घर में स्थापित कर सकते हैं? शिवलिंग का क्या होगा पूजा विधान और क्या होंगी सावधानियां, जानिए मेरे साथ सिर्फ किस्मत कनेक्शन में।
2: सास बहू और बेटिया में आज देखिए सीरियल्स की दुनिया में ट्विस्ट का तड़का। दोपहर 1:28 से 3 बजे तक सिर्फ सास बहू और बेटिया में।

0: परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है। इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।
1: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं, तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती हैं, तो कुछ दिखाती हैं विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है, तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं, तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
0: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
2: और दुर्भाग्य कहता है
3: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
1: अविश्वास में विश्वास बसता है,
0: जो हमें अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
4: गुड न्यूज टुडे।
0: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते। खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे। देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
5: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
6: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
0: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।

0: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को।
1: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट, कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच। HRIT यूनिवर्सिटी गाजियाबाद, शेपिंग फ्यूचर, क्रिएटिंग लीडर्स।
2: NHAI ने 121 टोल प्लाजा पर शुरू की ऑनलाइन फास्टैग लोकल पास सुविधा, राजमार्ग यात्रा मोबाइल ऐप के जरिए घर बैठे लिया जा सकता है पास। हिमाचल में 21 अगस्त तक बारिश का दौर जारी रहने की संभावना, बिलासपुर, कांगड़ा, मंडी और सिरमौर में बारिश का ऑरेंज अलर्ट। देशभर में गणेशोत्सव की तैयारियां तेज, तमिलनाडु के तिरुचिरापल्ली में बनाई जा रही इको फ्रेंडली गणेश जी की मूर्ति, पर्यावरण संरक्षण का दे रहे हैं संदेश। धनबाद की प्रांजल और आन्या मित्तल को मिला गिनीज गोल्ड मेडल, ऑनलाइन श्लोकों का पाठ कर बनाया रिकॉर्ड, परिवार में खुशी की लहर। एक 108 मीटर कैनवस पर मिथिला पेंटिंग का बना विश्व रिकॉर्ड, कैनवस पर लिखे रामचरितमानस के प्रसंग, दिल्ली में हुआ कार्यक्रम।

नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं किस्मत कनेक्शन और मैं हूं आपके साथ शैलेंद्र पांडे। बात सावन की हो, बात शिव जी की हो, बिना शिवलिंग के ये बातें पूरी नहीं हो सकती। भगवान शिव की लिंग रूप में पूरे विश्व में पूजा की जाती है। आखिर ये शिवलिंग है क्या, इसका महत्व क्या है और क्या शिवलिंग की पूजा कभी भी कोई भी कर सकता है, इन तमाम विषयों पर आज चर्चा करेंगे। बात करेंगे 12 राशियों के दैनिक राशिफल की और कार्यक्रम के अंत में आपको बताएंगे एक लकी टिप के बारे में और एक सक्सेस मंत्र के बारे में। तो चलिए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले जानते हैं पंचांग। दिनांक 19 अगस्त 2026 दिन बुधवार, तिथि है श्रावण शुक्ल पक्ष की सप्तमी तिथि शाम के 7:19 तक। नक्षत्र है स्वाति नक्षत्र प्रातः 6:46 तक। चंद्रमा तुला राशि में संचरण कर रहे हैं, राहु काल का समय दोपहर 12 से 1:30 तक। उत्तर दिशा की तरफ यात्रा करने की मनाही है, लेकिन अगर यात्रा करना जरूरी है तो जरा सी हरी सौंफ खाकर और भगवान का स्मरण करके यात्रा करेंगे तो मुश्किल से बचे रहेंगे। अब जान लेते हैं दिनांक 19 अगस्त 2026 दिन बुधवार को प्रातः काल ग्रहों की स्थिति क्या है। बुध और बृहस्पति विद्यमान हैं कर्क राशि में, सूर्य और केतु सिंह राशि में, शुक्र कन्या राशि में, चंद्रमा तुला राशि में, राहु कुंभ राशि में, शनि मीन राशि में और मंगल फिलहाल विद्यमान हैं मिथुन राशि में। ग्रहों की इसी स्थिति के आधार पर आगे हम जानेंगे कि आपका दैनिक राशिफल कैसा रहने वाला है। सबसे पहले जानते हैं कि शिवलिंग की महिमा क्या है। देखिए, शिवलिंग को शिव जी का निराकार स्वरूप माना जाता है। वैसे तो दिखाई देता है, आप उसे स्पर्श भी कर सकते हैं, लेकिन ये दरअसल प्रकाश का प्रतीक है और शिव जी का निराकार स्वरूप इसको मानते हैं। शिव जी की पूजा में शिव जी की मूर्तियां ना भी हो कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन बिना शिवलिंग के शिव जी की पूजा नहीं होगी। शिव जी की पूजा में इसकी सर्वाधिक मान्यता है। शिवलिंग में शिव और शक्ति दोनों समाहित होते हैं। शिवलिंग की जब आप उपासना करते हैं, शिवलिंग की जब आप पूजा करते हैं, तो शिव और शक्ति दोनों की उपासना संपूर्ण हो जाती है। अलग अलग प्रकार के शिवलिंगों की पूजा करने का प्रावधान शास्त्रों में बताया गया है। जैसे स्वयंभू शिवलिंग अपने आप जो धरती से प्रकट हुआ, नर्मदेश्वर शिवलिंग जो नर्मदा नदी से प्रकट हुआ, जनेऊधारी शिवलिंग जिस शिवलिंग पर सफेद रंग की लकीर हो, सोने और चांदी के शिवलिंग
और पारद यानी पारे से बना हुआ शिवलिंग, स्वयंभू शिवलिंग की पूजा सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण मानी जाती है। जो शिवलिंग अपने आप प्रकट हुआ है उसकी पूजा सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है और सबसे ज्यादा फलदायी भी है। भारत में कई जगहों पर स्वयंभू शिवलिंग प्रकट हुए हैं और उनकी विशेष पूजा उपासना सावन के महीने में या सोमवार के दिन की जाती है। शिवलिंग पर हमारी चर्चा जारी है, लेकिन आपको बता दें कि कार्यक्रम के अंत में हम बताएंगे एक लकी टिप के बारे में और एक सक्सेस मंत्र के बारे में। अब जान लेते हैं मेष, वृषभ, मिथुन और कर्क राशि का दैनिक राशिफल। मेष राशि, आर्थिक मजबूती आती दिखाई दे रही है, करियर में कुछ बदलाव होगा, यात्रा के योग बन रहे हैं, शिव जी को जल अर्पित कर दें तो दिन बेहतर होगा। वृषभ राशि, चिंताएं समाप्त होंगी, धन लाभ के योग बन रहे हैं, रुके हुए काम पूरे होंगे, अनाज का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। मिथुन राशि, मानसिक तनाव कम होगा, करियर की बाधा दूर होगी, धन खर्च बढ़ा रहेगा, खाने पीने की वस्तु का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। कर्क राशि, स्वास्थ्य का ध्यान रखें, करियर में कोई जोखिम ना लें, वाहन सावधानी से चलाएं, हरे फल का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शिवलिंग के माध्यम से हम लोग नियमित रूप से भगवान शिव की पूजा उपासना करते हैं, लेकिन कुछ बातें शिवलिंग के लिए बड़ी महत्वपूर्ण हैं, वो बात भी आपको जानना चाहिए। देखिए, शिवलिंग की पूजा उपासना शिव पूजा में सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण मानी जाती है। शिवलिंग घर में अलग तरह से स्थापित होता है और मंदिर में शिवलिंग अलग तरीके से स्थापित होता है। शिवलिंग कहीं भी स्थापित हो, घर में हो या मंदिर में हो, उसकी वेदी का मुख उत्तर दिशा की तरफ ही होना चाहिए। घर में अगर आप शिवलिंग स्थापित करते हैं तो शिवलिंग बहुत ज्यादा बड़ा नहीं होना चाहिए, अधिक से अधिक 6 इंच का शिवलिंग यानी 12 अंगुल का शिवलिंग आप घर में रख सकते हैं। मंदिर में कितना भी बड़ा शिवलिंग स्थापित किया जा सकता है। विशेष उद्देश्यों के लिए और विशेष कामनाओं को पूर्ण करने के लिए पार्थिव शिवलिंग नदी की मिट्टी से शिवलिंग बनाकर उसकी भी पूजा की जाती है।
तो जो ये सोचते हैं कि हम घर में शिवलिंग नहीं रख सकते, उनको मैं बता दूं कि छोटे आकार का सबसे उत्तम होगा नर्मदा नदी से निकला हुआ नर्मदेश्वर शिवलिंग, अगर आप अपने घर में स्थापित करें और नियमित रूप से उनको जल अर्पित करें तो आपका कल्याण होगा। शिवलिंग पर चर्चा हमारी जारी है, लेकिन आपको बता दें कि कार्यक्रम के अंत में हम बताएंगे एक लकी टिप के बारे में और एक सक्सेस मंत्र के बारे में। अब जान लेते हैं सिंह, कन्या, तुला और वृश्चिक राशि का दैनिक राशिफल। सिंह राशि, कोई शुभ सूचना आपको इस समय प्राप्त होगी, नौकरी में पदोन्नति होगी, पारिवारिक समस्या हल होगी। भगवान शिव को अगर जल अर्पित कर दें तो दिन बेहतर होगा। कन्या राशि, पारिवारिक समस्याएं हल होंगी, करियर में सुधार होगा, स्वास्थ्य का ध्यान बनाए रखें, खाने पीने की वस्तु का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। तुला राशि, धन लाभ के योग बन रहे हैं, रुके हुए काम पूरे होंगे, करियर में कुछ बदलाव होगा, अनाज का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। वृश्चिक राशि, स्वास्थ्य का ध्यान रखें, काम में लापरवाही ना करें, स्थान परिवर्तन के योग बन रहे हैं, हरे फल का अगर दान कर दें तो दिन की मुश्किलें कम हो जाएंगी। अब आपको बताते हैं कि जब आप शिवलिंग की पूजा कर रहे हैं तो शिवलिंग की पूजा में आपको क्या क्या अर्पित करना चाहिए। देखिए, शास्त्र कहता है कि भगवान विष्णु अलंकार से प्रसन्न होते हैं, सूर्य देव नमस्कार से प्रसन्न होते हैं और शिव जी जल से प्रसन्न होते हैं। तो शिव जी की पूजा में दो वस्तुओं का बड़ा महत्व है, सबसे ज्यादा तो जल का और उसके बाद बेलपत्र का। जल और बेलपत्र, इन दोनों वस्तुओं से शिव जी की विधिवत पूजा की जा सकती है। इसके अलावा कच्चा दूध, सुगंध, गन्ने का रस, चंदन, इनसे भी शिव जी का अभिषेक किया जाता है। शिव जी को कभी भी सेमल, जूही, कदंब और केतकी अर्पित नहीं करना चाहिए, वरना आपकी पूजा का फल नहीं मिलेगा, पूजा आपकी निष्फल हो जाएगी। अब आप शिवलिंग पर मान लिया जल चढ़ा रहे हैं या पंचामृत चढ़ा रहे हैं तो किन बातों का ध्यान रखेंगे? शिवलिंग पर जलीय पदार्थ अगर लिक्विड अर्पित करेंगे तो उसकी धारा बनाकर शिवलिंग पर अर्पित करिएगा। अगर ठोस पदार्थ अर्पित कर रहे हैं, मिठाई है, फल है, फूल है, तो दोनों हाथों से उसको शिवलिंग पर लगाइएगा। शिवलिंग पर आप कुछ भी अर्पित करें, अंत में जल जरूर अर्पित करिएगा।
और शिवलिंग पर तामसिक चीजें अर्पित नहीं करनी चाहिए। शिवलिंग पर बहुत सारे लोग सरसों का तेल अर्पित करते हैं। आपको पता नहीं है कि शिवलिंग पर सरसों का तेल अर्पित करना एक मारण प्रयोग है। विशेष मंत्रों के साथ तंत्र में इसका प्रयोग होता है, बिना जाने बूझे केवल सुन सुनाकर दिखावे के लिए शिवलिंग पर तेल अर्पित मत करिए, वरना परिणाम सुखद नहीं होंगे। शिवलिंग पर सबसे महत्वपूर्ण है कि आप हर हाल में अपने घर से भरकर जल ले जाइए और शिवलिंग पर अर्पित करिए। मंदिर का जल भर के मंदिर में अर्पित मत करिएगा। कार्यक्रम के अंत में आपको बताएंगे एक लकी टिप के बारे में और एक सक्सेस मंत्र के बारे में। अब जान लेते हैं धनु, मकर, कुंभ और मीन राशि के लोगों का दैनिक राशिफल। धनु राशि, करियर की समस्या हल होगी, धन की प्राप्ति होगी, परिवार में शुभ कार्य होगा। खाने पीने की वस्तु का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। मकर राशि, पारिवारिक समस्या हल होगी, रुका हुआ काम बन जाएगा, विवाह तय हो सकता है। शिव जी को जल अर्पित कर दें तो दिन

रहे हैं, करियर में लाभ होगा, अपनी योजनाओं को गोपनीय रखें, खाने पीने की वस्तु का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। मीन राशि, व्यर्थ की चिंता हो सकती है, स्वास्थ्य का ध्यान बनाए रखें, रिश्तों में समस्या हो सकती है, हरे फल का दान कर दें तो दिन की मुश्किलें कम हो जाएंगी। अब कार्यक्रम में जान लेते हैं आपके भाग्य को बेहतर बनाने के लिए एक लकी टिप। अगर आपकी एकाग्रता कमजोर है तो जहां काम करते हैं, जहां पढ़ते लिखते हैं, वहां उगते हुए सूर्य का चित्र लगाइएगा। सामने अपनी आंखों के उगते हुए सूर्य का चित्र लगाएं, निरंतर उसे देखते रहें, आपका कॉन्सेंट्रेशन, आपकी एकाग्रता बेहतर हो जाएगी। अब जान लेते हैं दिनांक 19 अगस्त 2026 दिन बुधवार का सक्सेस मंत्र क्या है। प्रातः काल शिव जी को शिवलिंग पर जाकर बेलपत्र अर्पित करिएगा। घर से निकलते समय उसमें से एक बेलपत्र अपने पास रख लीजिएगा। अगर प्रातः काल ऐसा करते हैं तो दिन भर के कार्यों में आपको सफलता अवश्य मिलेगी। तो किस्मत कनेक्शन में आज के लिए बस इतना ही। आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो, इसी कामना के साथ मुझे दीजिए इजाजत। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए गुड न्यूज़ टुडे। नमस्कार।

0: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती हैं, तो कुछ दिखाती हैं विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
1: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
2: और दुर्भाग्य कहता है
3: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
0: अविश्वास में विश्वास बसता है,
1: जो हम में अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
4: गुड न्यूज टुडे।
1: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते। खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे। देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे। मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते। खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे। देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे में।

भगवान की बड़ी कृपा, हनुमान जी के चरणों का आशीर्वाद, हम दुबई में प्रवचन करते हुए बाली गए थे। वहां 12 देशों के लोग, अंग्रेज भी आए थे आगे के लगे, उनको ध्यान करवाते रहे। बड़ा गजब का ध्यान हुआ। अंग्रेजों का कैसा हुआ वो जाने, हमारा बढ़िया हुआ। बस सोने को छोड़कर सो नहीं पाए, बाकी ध्यान तो ठीक ही था। लगभग 12 देशों के लोग वहां बैठे बैठे फूंसते रहे, सांस भरे, कई लोगों को दर्शन हुए वहां। राम राम राम राम, बैठ जाओ बैठ जाओ बैठ जाओ बैठ जाओ, नहीं तो तुम लोग डांक जैसो डांकिया जैसो हाथ ही हिलाते रहो। बैठो बैठो, आसन लो, थोड़ा माइक तेज करो। बड़ा आनंद और बड़ा उत्साह इस यात्रा के मध्य में था, पर लौट के उल्लू घर को आए। चाहे जितना घूम लो भैया, चाहे जहां जाओ, सच्चा आनंद तो बालाजी के ही चरणों में है। तो कल गुरुकुलम की बैठक थी, रात को बो की, फिर रात को मंदिर आए, कुछ काम धाम निपटाया। बुढ़ापे का शरीर है, थक जाते हैं, थोड़ी देर विश्राम कर लिया। फिर हमें जगाया गया कि उठो महाराज, महाभारत चालू होने वाली है। अब आपके बिना तीरों के भला ना हो पाएगा, तो अपने शब्दों के तीर चलाने को तैयार हो जाओ। हमने भी कहा कि जो आज्ञा सेनापति। और आके बाहर बैठ गए। पागलो, सच्चाई और अच्छाई अंदर नहीं है तो कहीं नहीं। बुरा जो देखन में चला, बुरा न दिखिया को होए, जो मन खोजो आप नो, तो मुझसे बुरा ना कोई। यदि आप सच्चाई और अच्छाई देखना चाहते तो जगत में ना तुम्हें मिलेगी, बाहर तो है ही नहीं। और तुम कितना भी प्रयत्न कर लो, जतन कर लो, बाहर अच्छाई देखने में यदि तुम्हारे अंदर नहीं है तो बाहर तो तुम्हें सब बुरे ही मिलेंगे। तुम्हें जीने का हम एक तरीका बता सकते हैं, चाहो तो ऐसे जी लेना, वरना कोई जबरदस्ती नहीं है। तुम्हें रोका किसने और कौन समझा सकता तुम्हें? तुम्हें तुम खुद नहीं समझा पाए, हम क्या हलवा समझा पाएंगे? तुम्हें समझना होता खुद ही सब जानते हो, समझ ना जाते, फिर भी कोशिश कर रहे गुरु होने के नाते। पागलो, आओ गुण देखो खुद में, गुण देखो दूसरों में। जीना है यदि तो आओ गुण खुद में देखो और गुण दूसरों में देखो। यदि जीना है आपको तो दो बातें याद रखो, जो नहीं देखना उसे इग्नोर करना सीखो, जो तुम्हारे काम का नहीं है उसे इग्नोर करना सीखो, और जो काम का है उसके पीछे पड़ना सीख जाओ। और दूसरी बात, दुनिया में जोश और जुनून बहुत जरूरी है पागलों।
मछलियों को कभी कोई तैराकी नहीं सिखाता, मछलियां जन्म लेती हैं और तैरना सीख जाती हैं। पंछियों को कोई उड़ना नहीं सिखाता, कोई स्कूल नहीं है। पक्षी को उसकी मां एक धक्का देती है और पक्षी के बच्चे पंख फड़फड़ाते हैं और उड़ने लगते हैं, कोई स्कूल नहीं जाना पड़ता। सूर्य को कोई जागना नहीं सिखाता, पृथ्वी घूमकर सूर्य के सामने आती है और लालिमा छा जाती है। हवा को कोई बहना नहीं सिखाता, दबाव पड़ता है गुरुत्वाकर्षण का और दाब पड़ता है हवा चल पड़ती। लेकिन एक अकेला आदमी है जिसे सब कुछ पढ़ना सिखाया जाता, बड़ी बड़ी पढ़ाइयां कराई जाती और फिर भी आदमी उल्लू का उल्लू, फिर भी गधा का गधा। पागलो, हम तुम्हें सिर्फ इतनी सी बात कहना चाह रहे, पंछियों को उड़ना नहीं सिखा सकते, मछलियों को तैरना नहीं सिखाया जाता, वैसे ही तुम्हें आनंद में रहना भी नहीं सिखाया जा सकता, बस होना पड़ता है। तुम्हें आनंद में रहना है तो तुम्हें अपने मूल स्वरूप में रहना होगा। तुम्हें आनंद में रहना है, तुम्हें खुश रहना है तो तुम दूसरों में अवगुण देखना बंद करो कि फलाना ऐसा, ढिकाना ऐसा, भीमका ऐसा, वो ऐसा, वो ऐसा। अरे जिसके जैसे कर्म वो वैसा, तुम काहे को अपनी माथा पच्ची कर रहे। जिसने जो किया है सो पा रहा, तुम होते कौन हो? और तुम्हारे बोलने से या तुम्हारे कहने से ना तो किसी का बुरा होना है ना किसी का भला होना है। जिसको जब जितना मिलना है उतना मिलना है, जितना जिसको परमात्मा को देना है सो देना है। तुम अपना काय को माथा खराब कर रहे हो। एक काम करो, आज के बाद हो सके तो एक सूत्र जीवन में उतार लेना, और वो ये है तुम हर हाल में मस्त रहना सीख जाओ। हर हाल में मुस्कुराओ, बल्कि ये तुम्हारे लिए बड़ा कठिन है, तुम कहां मुस्कुरा पाओगे, पर तुम हर हाल में मुस्कुराओ। पड़ोसी को जलाओ, आग लगाओ पड़ोसियों को, जो तुम्हारे रोने का इंतजार कर रहे उनके दिमाग खराब करो। लो प्यारे, भले ही चाय में शक्कर ना हो, सुरकी तो इतनी तेज मारो और ऊपर से लुगाई को घरवाली को डांटो कि इतनी मीठी करती है। भले ही शक्कर ना हो पर ये दोनों भर को पता होना चाहिए, पति और पत्नी को। पड़ोसी को तो यही पता हो, रोज चाय की चुस्कियां ली जा रही और वो भी मीठी चाय। एक जोड़ी कपड़ा लाओ और पड़ोसी को जलाने के लिए रोज वही पहनो, धो धो के पहनो और बड़ी बड़ी बातें करो। हम जब छोटे हुआ करते थे तो हमारे पड़ोस में एक बहुत अच्छे पड़ोसी रहते थे, हमारे बड़े अच्छे पड़ोस, बात बात पे ताना देते थे, बात बात पर भंजाई होती थी हमारी। हम बचपन से ही उल्टे आदमी थे। एक जगह गांव में सत्यनारायण कथा करने गए हम, 10 सिक्के मिले, सत्यनारायण बचवाई गांव के पंडित थे, 10 सिक्के मिले हमें। हमने 10 सिक्के इकट्ठे लिए और पड़ोसी के चाचा को इतना जलाया, इतना जलाया। रात को 11-12 बजे तो आवाज ज्यादा तेज सुनाई पड़ती है, साफ सुनाई पड़ती है। हमने स्टील की एक थाली रखी, 10 सिक्के निकाले और ऊपर से टन टन, 1, 2, 9, 10 हो तो गए थे बस। लेकिन धीरे से नीचे से उठाए और वही गिनती रिपीट, 11, 12, 90, 99, 105। लगभग 2 बजे तक गिनती की, चाचा सोया ना। सुबह बोला, धीरू बाबा चाय पियोगे? हम समझ गए रात के सिक्कों का कमाल बोल रहा है। हमने कहा लाओ। बढ़िया, हमने चाय फुरकी, फिर वो थोड़ा बगल में खिसके, हम समझ गए ये पैसों की बात छेड़ेंगे, समझदार तो थे ही अपन।
आदमी तो जन्म से ही टेढ़े हुए थे, तो हमें समझ तो थी कि ये पैसों की बात करेंगे। हमने धीमे से वो सिक्के जिस जेब में डाल रखे तो उसमें थोड़ा हाथ मार दिया, अब वो बज गए। तो उन्होंने कहा कि आज रात को तुम बड़े जगते रहे क्या? तो हमने भी कहा चाचा क्या बताएं, आंख लग नहीं रही थी, सोचा कुछ काम कर लिया जाए। तो चाचा खोद खोद पूछने लगे, काम क्या करते रहे? कुछ खास काम नहीं, ऐसे ही आप रहने दो ना, चाय बहुत बढ़िया बनी। पर चाचा को चाय कहां, चाचा को तो सिक्कों की खुजली थी। चाचा बोले और चाय बनवाए? हमका पूछना क्या है। सुबह सुबह अपन ने दो चाय मसक दी, और जब उधारी उनके मांगने की बात आई तो अपन खिसक गए। तो भले ही जेब में फूटी कौड़ी ना हो, पर चाल ऐसी चलो जैसे कोई सम्राट चला जा रहा। बैठो तो ऐसे बैठो जैसे कोई करोड़पति बैठा। और कभी तुम हमारा हंसना देखना, हंसते भी हैं तो ऐसे हंसते हैं कि मानो हमसे बड़ा कोई शहंशाह पृथ्वी पर नहीं। पागलो, ये बातें बताकर हम तुम्हें सिर्फ इतना जताना चाह रहे कि यहां गम किसको कम है, यहां गम किसको कम है। तुम टेंशन मत लो, हम हैं। तुम सोचते काहे हो? हां, हम तुम्हारे जीवन में चमत्कार तो नहीं कर सकते, पर चमत्कार करने वाले आदमी से तुम्हें मिलवा सकते हैं। ऐसी व्यक्तित्व की धारा से तुम्हें जोड़ सकते हैं जो तुम्हारे जिंदगी में सदा बहार ला सकता, तुम्हारे चेहरे पर मुस्कुराहट ला सकता, तुम्हारे आंखों में नूर ला सकता और तुम्हारी जिंदगी को बदल सकता। हमने ऐसे आदमी के बारे में पढ़ रखा है, उस आदमी से हम मिल रखे हैं, उस आदमी को हमने देख रखा है कि तुम ना भी रहोगे तो तुम्हारी बातें होंगी, तुम कुछ ना भी बन पाओगे तब भी तुम ऐसे चलोगे जैसे बहुत कुछ बन चुके हो। और उस आदमी का यदि तुम पता पूछना चाहो तो उस आदमी का नाम है बागेश्वर बालाजी। हमने यहां लाखों की बिगड़ी बनते देखी है, हां, लेकिन शर्त ये कि टाइम पक्का नहीं कब, पर ये पक्का है, हां, शर्त ये है कि तुम्हें फिर भटकना नहीं पड़ेगा, अटकना पड़ेगा। और भटक तो तुम अभी ही रहे हो, इतनी भटकी आत्मा हो तुम। कभी चादर चढ़ाने चल जाते, कभी नारियल फोड़ने चले जाते, कभी गांव में तो गांव में हे महाराज भभूति दे दो वहीं चले जाते। दुनिया में जितने तुम भटके शायद कोई ना भटका होगा। मेरे पागलो, हम तुम्हें चमत्कार दिखाने के लिए नहीं बुलाते हैं धाम पर, हमने तुम्हें सिर्फ इसलिए बुलाया कि तुम सदा सदा के लिए बालाजी के हो जाओ और बालाजी तुम्हारे हो जाएं। तुम यहां हमारे भी चक्कर में ना पड़ना। हां, अभी भी मौका है, खिसक लो, उठ लो, बाद में मत कहना हमारे चक्कर में पड़े नहीं कि तुम पगला बने। और तुम आधे पागल भय, तुम्हारा मन ना करे जीना करे, अभी उठो घर जाओ, दर्शन कर ही लिए, हमको देखा ही लिया, हम आदमी ऐसे ही हैं, घर जाओ अपना काम करो। लेकिन एक बात याद रखना, पते की बात, हमारे चक्कर में ना पड़ना, लेकिन हम जिनके चक्कर में पड़े यदि तुम उनके चक्कर में पड़ गए तो तुम्हारी पीढ़ियां ना सुधर जाएं तो कहना। समय लग सकता, हमें भी लगा, हम भी तुम्हारी तरह आए थे, हम कोई गुरु गुरु नहीं है। और तुम हमें गुरु बनाने के चक्कर में गुरु जी मत बोलो, हम कोई गुरु जी नहीं है, हम खुद गुरु के चेला हैं, हम क्या गुरु होंगे हलुआ, हम खुद अपने गुरु के चेला हैं। हम भी तुम्हारी तरह यहां आए थे कुछ पाने, जिस गांव में हमारा जन्म हुआ, जिस गांव में यहां पर बाबागिरी हम कर रहे, इसी गांव में हमने भीख मांगी,
इसी गांव में घर घर हमने आटा मांगा, इसी गांव में हमने दुत्कारें सही। अब तो कमाई मिलती है, पहले तो थोक में मिलती थी, थोक में लोग ताने देते थे। हमारे गांव का सरपंच बैठने नहीं देता था, आज जलवे तो देखो। जिस गांव में हमारा जन्म हुआ, हमारे यहां विधायक भी 5 साल में एक बार आता था वोट लेने, आज उनके जलवे तो देखो। भारत के इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ 2025 में कि देश का प्रधानमंत्री और देश की राष्ट्रपति महोदया 3 दिन में दोनों एक जगह पर दर्शन करने गए। अब वो बागेश्वर धाम पे हुआ। भारत की किसी कन्या विवाह में पहली बार ऐसा हुआ कि 8 देशों के राजदूत बागेश्वर धाम पर आए, वो भी जिन्हें सनातन से लेना देना नहीं, वो भी सीताराम जप के गए और मत्था टेक करके बालाजी के चरणों में गए। मेरे पागलो, भगवान से बड़ा दुनिया में कोई चमत्कारी नहीं होता, बालाजी से बड़ा कोई बिगड़ी बनाने वाला नहीं होता। और सुनो, इस रास्ते पे तुम आ तो गए हो, तुम्हें ताने बहुत मिलेंगे, कान भरने वाले मिलेंगे, और हम पे तो भगवान की विशेष ही कृपा है, हमें कान भरने वाले खोजने नहीं पड़ते, यही मिल जाते। और मजेदार बात यह है बागेश्वर धाम की, यहीं पे वो दुकान डाले हैं, यहीं पर उनका धंधा चल रहा, और यहीं पे वो गालियां बकते हैं। ये भी मजा सुनना, ये तुमने दुनिया में कहीं ना देखा होगा कि जिस थाली में खाओ उसी में छेद हो जाए, वो अपने बागेश्वर धाम पर बहुत बढ़िया होता है, इसका भी एक अलग आनंद है। तब तो तुलसीदास जी कह रहे, तुलसी कबहू न जाइए जन्म भूमि के गांव, दास गए तुलसी गए धरो तुलसिया नाम। तुलसीदास जी गांव गए तो किसी ने तुलसीदास ना कहा, लोग बोले आ गए तुलसिया, कोई बोला तुलसिया नहीं तुलसी आया। तुलसीदास जी बोले वाह, लोग हमें तुलसीदास कह रहे, ये तुलसिया कह रहे। जन्म भूमि में रहना बड़ा कठिन है, और गांव के गांव में यदि तुम बाबा बन जाओ, समझ जाना बाबा बढ़िया है। गांव का गांव में बाबा बनना बड़ा कठिन है, और हमने तो ये टेढ़ी टेढ़ी खीर पहले ही दिन से पाल रखी है। बिल्ली गांव के गांव में ही बाबा बन गए। पागलो, ये बातें बताकर हम तुम्हें बहलाना नहीं चाहते, सीधी सी बात है, आज के बाद अभी से इसी वक्त या तो तुम हनुमान जी को मानना छोड़ दो या हनुमान जी पर छोड़ दो।

0: परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है। इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।
1: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती हैं तो कुछ दिखाती हैं विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
0: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
2: और दुर्भाग्य कहता है
3: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
1: अविश्वास में विश्वास बसता है,
0: जो हम में अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
4: गुड न्यूज टुडे।
0: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते। खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे। देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
5: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
4: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
0: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।
5: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को
6: अगर आपको या आपके परिवार में किसी को भी जोड़ों का दर्द है, यानी घुटने का दर्द, कमर दर्द, कंधे का दर्द, तो ये शो आपकी जिंदगी बदल सकता है, क्योंकि आज हम आपको कुछ ऐसे लोगों से मिलवाएंगे जिनकी उम्र 70 साल से 100 साल तक है, और इस उम्र में भी इन लोगों को जरा भी जोड़ों का दर्द नहीं है। यानी ये लोग इस उम्र में भी कहीं जाने के लिए, उठने बैठने के लिए किसी पर भी निर्भर नहीं है। एक लाइन में कहें तो ये लोग इस उम्र में पूरी तरह आत्मनिर्भर है।
7: मैं पिछले 1 साल से आयुर्वेदिक महाशक्तिशाली फॉर्मूला ले रहा हूँ, फौजी 360 इसका नाम है। फौजी 360 लेने के बाद मेरे जोड़ों में यानी घुटने, कमर, कहीं भी जरा भी दर्द नहीं, और अब पूरे शरीर में चुस्ती फुर्ती गजब की बनी रहती है।
8: पर जब से ये फौजी 360 किया है ना, शरीर में जरा भी दर्द नहीं है। अब घुटने में भी दर्द नहीं है, कभी पहाड़ पे जाना हो, कहीं चलना हो, बिल्कुल सोचना नहीं पड़ता।
9: मैंने जब से ये फौजी 360 लिया है, मैनू जरा भी घुटनों में दर्द नहीं है। अब मैं जिम करती हूँ, एक्सरसाइज करती हूँ।
6: फौजी 360 को अब तक जितने भी लोगों ने इस्तेमाल किया है, उन सभी लोगों को जोड़ों के पुराने से पुराने दर्द, जैसे घुटने का दर्द, कमर दर्द, कंधे के दर्द से पूरी तरह आजादी मिली है। और ये दावा हम नहीं, वो लोग खुद कर रहे हैं जो फौजी 360 इस्तेमाल कर चुके हैं।
10: इस आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट को लेने के बाद किसी भी जोड़ में दर्द नहीं, और पूरे दिन कमाल की चुस्ती बनी रहती है।
11: और सबसे अच्छी बात मुझे लगी कि इसे हर बंदा ले सकता है, डायबिटीज वाला मरीज ले सकता है, ब्लड प्रेशर वाला मरीज ले सकता है, और मेरा खुद का दर्द खत्म हुआ यार। इसीलिए मैं खुल के बताता हूँ कि ये फौजी गजब की चीज है।
6: फौजी 360 के सिर्फ एक कोर्स के बाद 80-90 साल के बुजुर्ग भी जवानों की तरह सीढ़ियां चढ़ रहे हैं, दौड़ रहे हैं, पोते पोतियों को गोदी में लिए घंटों उनके साथ खेल रहे हैं।
12: करीब 8 महीने पहले फौजी 360 का सिर्फ एक कोर्स लिया था, उसके बाद कभी भी जोड़ों में दर्द ही नहीं हुआ, कभी भी कोई तेल स्प्रे की जरूरत ही नहीं पड़ी। ये इससे सस्ता और इससे असरदार और कोई भी दूसरा तरीका ही नहीं है जोड़ों के दर्द को ठीक करने।
6: ये बात सुनने में बड़ी हैरान करने वाली है, पर इन बुजुर्गों ने इंटरनेट पर प्रूफ के साथ वीडियोस भी अपलोड करे हैं, जिसे देखकर पूरी दुनिया हैरान है और जोड़ों के दर्द के तेल और स्प्रे बेचने वाले दुकानदार परेशान है, क्योंकि फौजी 360 लेने के बाद कोई भी व्यक्ति कभी भी इन जोड़ों के दर्द को ठीक करने वाली दवाएं जैसे तेल, गोली और स्प्रे के चक्कर में दोबारा कभी नहीं फंसेगा।
13: 3 साल से आंटी जी के घुटनों में इतना दर्द था कि इनका घुटना मुड़ता भी नहीं था, जरा भी नहीं मुड़ता था। और आज की स्थिति देखते हैं आप, ये देखिए इनका पूरा घुटना मुड़ रहा है, हॉस्पिटल खुद चल के आई हैं और ये सब कमाल हुआ है फौजी 360 से। हम रिपोर्ट से समझते हैं, देखिए इनके पुरानी रिपोर्ट है, पूरे घुटने जकड़ चुके थे, जाम हो चुके थे, जिसके कारण घुटनों में पूरी तरीके से मूवमेंट खत्म हो गया था। और आज की डेट है जब से इन्होंने फौजी 360 यूज करना शुरू किया है, उसके बाद उनके घुटनों में एक तरीके से नई जान आई है। और हमें इतना अच्छा लगता है जब हम देखते हैं कि लोगों के पैसे बच रहे हैं और लोगों को फौजी 360 जैसे नेचुरल प्रोडक्ट से आराम मिल रहा है, तो बहुत अच्छा लगता है। तो हम यही कहना चाहते हैं कि जिन भी लोगों को जोड़ों से संबंधित कोई भी समस्या है, एक बार फौजी 360 जरूर ट्राई करें।
6: फौजी 360 के इफेक्ट्स और रिजल्ट्स को जानने के लिए हमने बहुत से एक्सपर्ट से बात करी और लगभग सभी का यही कहना था कि फौजी 360 जोड़ों के दर्द जैसे घुटने का दर्द, कमर का दर्द, कंधे के दर्द के लिए राम बाण की तरह काम करता है।
14: किट में मिलने वाले जो दूसरे प्रोडक्ट होते हैं जैसे तेल, स्प्रे, ये सिर्फ ऊपरी और टेम्परेरी राहत देते हैं, और वहीं फौजी 360 शरीर के अंदर जाकर जोड़ों को, हड्डियों को, मांसपेशियों को मजबूत बनाता है और दर्द को पूरी तरह खत्म कर देता है।
15: ये साहिल जी हैं, 2 महीने पहले आए थे, कह रहे थे मेरे दोनों घुटने बदल दो क्योंकि बहुत परेशानी हो रही थी इन्हें चलने फिरने में। मैंने कहा हम पैसे बर्बाद नहीं करेंगे, आप फौजी 360 का एक कोर्स लेके देखिए, फिर मिलते हैं। आज आए हैं, बताइए सर कैसे रिजल्ट मिले आपको, क्या स्थिति है अभी?
14: पहले तो जितना धन्यवाद आपको दूं उतना कम है डॉक्टर साहब, क्योंकि पूरा चल लेता हूं मैं मोटरसाइकिल चलाने लगा हूं वापस से अपनी, अब बिल्कुल भी बुरी स्थिति नहीं है, एकदम बिल्कुल दर्द खत्म हो चुका है। अब तो आप मुझे बोलो 5 किलोमीटर चले जाओ, मैं बिल्कुल चले जाऊंगा, अभी भी सीढ़ी चढ़ के आया हूं हॉस्पिटल में।
6: नीचे दिख रहे फोन नंबर पर कॉल करके आप फौजी 360 सीधा इस आश्रम से अपने घर मंगा सकते हैं। कॉल करने पे आप हेल्थ एक्सपर्ट से बात कर सकते हैं, अपनी समस्या उन्हें समझा सकते हैं, फिर चाहे आपको घुटने का दर्द हो, कमर का दर्द हो, या कंधे का दर्द हो, या किसी भी तरह का जोड़ों का दर्द हो, आप अपनी समस्या हेल्थ एक्सपर्ट के साथ शेयर करें और फौजी 360 इस आयुर्वेदिक केंद्र से सीधे आपके घर तक भेजा जाएगा।
16: 2 साल से घुटने और कमर के कारण पलंग पकड़ लिया था, सब पलंग पे ही हो रहा था, अग्ना मुतना भी पलंग पे हो रहा था, जरा भी नहीं चल पाता था। 3 महीने से ये फौजी 360 पाउडर ले रहा हूँ, अब खुद से उठ जाता हूँ, बाथरूम हो जाता हूँ, चल फिर लेता हूँ, बहुत आराम है, बहुत राहत है।
6: फौजी 360 के इस दुर्लभ फॉर्मूले को सिर्फ सुबह और शाम पानी के साथ लेना होता है और पहले डोज से ही फौजी 360 के रिजल्ट्स दिखने लगते हैं। फौजी 360 जोड़ों के बीच में खत्म हो चुकी चिकनाहट को रिस्टोर करने में मदद करता है, जॉइंट्स को अंदर से मजबूत बनाता है और फिर दर्द को पूरी तरह खत्म कर देता है।
10: रोज 150 सीढ़ी चढ़कर मैं मेरे भोले बाबा के मंदिर जाती हूँ, जरा भी दर्द नहीं है मेरे घुटनों में। और ये कमाल किसी तेल या स्प्रे से नहीं हुआ है, क्योंकि उनसे कुछ होता ही नहीं है, मुझे तो फायदा हुआ है फौजी 360 से। अरे कमाल का ट्रीटमेंट है, इस आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट को लेने के बाद किसी भी जोड़ में दर्द नहीं है और पूरे दिन कमाल की चुस्ती बनी रहती है।
6: दुनिया के किसी भी तेल या स्प्रे के साथ कभी भी कोई गारंटी नहीं मिलती, यानी दर्द खत्म होगा या नहीं इस बात की कोई गारंटी नहीं, लेकिन फौजी 360 के साथ 15 दिनों की मनी बैक गारंटी आती है। यानी अगर आपने फौजी 360 इस्तेमाल किया और किसी भी कारण से आपको रिजल्ट्स नहीं मिले तो आप सिर्फ एक फोन करके अपने पूरे पैसे वापस ले सकते हैं।
17: 15 साल पहले चिकनगुनिया हुआ था, तब से शरीर के हर कोने में दर्द बना रहता था, होम्योपैथी, फिजियोथेरेपी, ये तेल, वो स्प्रे, सब ट्राई कर लिया मगर आराम मिला 3 महीने पहले इस फौजी 360 से। अब कसम खा के बता रहा हूँ, जरा भी दर्द नहीं है शरीर में।
10: घुटने के दर्द के कारण मैं चल भी नहीं पाती थी, पर ये जब से फौजी 360 लिया है ना, बिल्कुल भी दर्द नहीं है। अब आप देखो मैं घर का पूरा

0: घुटने बदल वाले इस उम्र में, फिर ये फौजी 360 जब से लेना शुरू किया है, अब मैं खुद चल लेता हूँ, खुद का काम पूरी तरीके से कर लेता हूँ, और जो मैंने पलंग पकड़ लिया था ना, वो वहाँ से बच गया हूँ मैं। अब ये तो ताकत है फौजी 360 की, ये अल्लाह की दुआ से कम नहीं है फौजी 360। अब खुद का काम मैं खुद से करता हूँ बिल्कुल।
1: हमारे नेपाल में पहाड़ी इलाका है तो चलना फिरना बहुत होता है, जोड़ों में बहुत दर्द का प्रॉब्लम शाप को रहता है, पर हमने कभी तेल या स्प्रे नहीं लगाते, कुछ नहीं होता उससे। सारे लोग मेरी उम्र के यहाँ फौजी 360 लेते हैं, बहुत कमाल का दवाई है, बिल्कुल भी जोड़ों में दर्द नहीं है इसको लेने से।
2: अगर आप चाहते हैं कि आपके जोड़ों का दर्द अंदर से पूरी तरह ठीक हो सके और आपको पूरी तरह आराम मिल सके, तो सिर्फ एक कॉल करके इस कमाल के आयुर्वेदिक फॉर्मूले फौजी 360 को अपने घर मंगा सकते हैं और जोड़ों के दर्द से पूरी तरह आजादी पा सकते हैं।
3: बॉलीवुड का एक गाना है ना, लंदन देखा, पेरिस देखा और देखा जापान। तो मेरी कहानी भी ऐसी है कि मैं दुनिया के लगभग बहुत से बड़े बड़े देशों में रहा हूँ और मैंने सब जगह ये जोड़ों के दर्द, स्पेशली घुटने के दर्द का इलाज कराया, बट कहीं भी वैसा रिजल्ट नहीं मिला। 2 years back when we shifted to India, तब ये फौजी 360 के बारे में पता पड़ा, we started using it। मुझे और मेरी वाइफ दोनों को इतना कमाल का रिलीफ मिला कि ऐसा रिलीफ किसी भी ट्रीटमेंट से आज तक नहीं हुआ था।
2: फौजी 360 के बारे में और डिटेल में जानने के लिए हमारी टीम उस आयुर्वेदिक आश्रम तक पहुंची जहां फौजी 360 बनाया जाता है और उन एक्सपर्ट से बात करी और वो सीक्रेट जानने की कोशिश करी कि कैसे सिर्फ एक फॉर्मूले से लोगों के जोड़ों का दर्द, जैसे घुटने का दर्द, कमर का दर्द, कंधे का दर्द, पूरी तरह ठीक हो रहा है।
4: इसमें कुछ ऐसी औषधियां हैं जो आपकी बोन्स को मजबूत बनाता है, जो आपके लिगामेंट में जो फ्लूइड की कमी हो गई है ये उसे दोबारा रिस्टोर करने में मदद करता है, और साथ ही दूसरी दवाओं से ये बेहतर इसीलिए है कि इसके कोई साइड इफेक्ट नहीं है। इसे डायबिटिक पेशेंट ले सकता है, इसे ब्लड प्रेशर का मरीज ले सकता है, क्योंकि ये पूरी तरह सुरक्षित है और आपको पहले दिन से फायदा दिखने लगेगा। ये ताकत है फौजी 360 की। बस यही कारण था कि हमने सोचा कि अब समय आ चुका है लोगों की, जनता की सेवा करने का और घर घर इसे भिजवाने का। तो जो आप स्क्रीन पर नंबर देख रहे हैं, आप इस पर फोन कर सकते हैं, हमारे केंद्र पर डायरेक्ट फोन होगा, आप अपनी समस्या बताइए। अगर आपको बात सही लगती है, फौजी 360 आपको लगता है कि हाँ अब समय है कि जोड़ों के दर्द को पूरी तरह ठीक करना है, तो आप इसे मंगा सकते हैं। और साथ ही इसमें कुछ ऐसी औषधियां भी हैं जो आपको पूरे समय आपके शरीर में चुस्ती बनाए रखता है।
2: फौजी 360 के साथ 15 दिनों की मनी बैक गारंटी आती है, यानी अगर आपने फौजी 360 इस्तेमाल किया और किसी भी कारण से आपको रिजल्ट नहीं मिले, तो आप सिर्फ एक फोन करके अपने पूरे पैसे वापस ले सकते हैं।
5: फौजी 360 मार्केट में मिलने वाले दूसरे जो पेन किलर ऑयल्स होते हैं, स्प्रे होते हैं, उनसे कैसे अलग है, मैं आपको साइंटिफिकली समझाता हूं कि ऐसा क्या है इस ट्रीटमेंट में जो इसके रिजल्ट्स बहुत ही शानदार है। देखिए, कोई भी तेल या स्प्रे कैसे काम करता है, सबसे पहले मैं आपको वो बताता हूँ। आपके दर्द वाले हिस्से पे जब आप तेल लगाते हैं तो ये बाहर से आपके उस पर्टिकुलर एरिया को सुन्न कर देता है, मतलब आपके बॉडी के अंदर दर्द तो रहता है, उस जोड़ के अंदर दर्द तो है, और वहीं फौजी 360 जो है ये अंदर से काम करता है, क्योंकि जब आप इसे कंज्यूम करते हैं बॉडी को वो सारे न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करता है जो जोड़ों को मजबूत बनाता है अंदर से, जो जोड़ों की चिकनाहट कम हो गई है ना, ये उसको दोबारा लौटाता है। तो ये एक अंदर से काम करने वाली चीज है, यानी ये पूरी तरह से जोड़ों को अंदर से ठीक करता है, और वहीं तेल और स्प्रे सिर्फ टेंपरेरी राहत देते हैं। तो आप अगर अभी भी जोड़ों के दर्द के लिए तेल या स्प्रे यूज कर रहे हैं तो आप आज से ही वो सब बंद कीजिए, क्योंकि ये सिर्फ पैसे बर्बाद करने की बात है और टेंपरेरी रिलीफ की बात है। अगर आप पूरी तरह से जोड़ों को अंदर से मजबूत बनाना चाहते हैं, ठीक करना चाहते हैं, तो आप एक बार ये फौजी 360 जरूर ट्राई करें।
6: पिछले महीने मैं बाथरूम में स्लिप हो गई थी तो बहुत दर्द रहता था पेट में, डॉक्टर ने कहा कुछ L1 L2 का कुछ तो बताया था, पर उन्होंने फौजी 360 लाके दिया और उससे इतना आराम हुआ है कि अब जरा भी दर्द नहीं है। मम्मी पापा जी ने भी लेना शुरू किया है और उनको भी जो घुटनों में दर्द था उन्हें भी राहत मिली है। तो हर घर में मुझे लगता है ये फौजी 360 होना ही चाहिए।
7: मैं तो 12 महीने ही केदारनाथ बाबा के चरणों में ही रहता हूँ और यहाँ इतनी ठंड पड़ती है कि ठंड के चक्कर में पूरे समय शरीर अकड़ा हुआ रहता है, सारे जोड़ में बड़ा दर्द बना रहता था, पर जब से ये फौजी 360 किया है ना, शरीर में जरा भी दर्द नहीं है। अब घुटने में भी दर्द नहीं है, कभी पहाड़ पे जाना हो, कहीं चलना हो, बिल्कुल सोचना नहीं पड़ता, बर्फ में भी चल लेता हूँ, बिल्कुल भी दर्द नहीं है। ये ताकत है इस आयुर्वेदिक फौजी 360 की।
2: फौजी 360 के इस दुर्लभ फॉर्मूले को सिर्फ सुबह और शाम पानी के साथ लेना होता है और पहले डोज से ही फौजी 360 के रिजल्ट्स दिखने लगते हैं। फौजी 360 जोड़ों के बीच में खत्म हो चुकी चिकनाहट को रिस्टोर करने में मदद करता है, जॉइंट्स को

0: अंदर से मजबूत बनाता है और फिर दर्द को पूरी तरह खत्म कर देता है।
1: टीवी पे फौजी के बारे में देखा तो मैंने फोन करके फौजी 360 को सीधा घर मंगा लिया, क्योंकि 3 साल से कमर में इतना भयंकर दर्द था कि घर के सारे कामों के लिए मैं पूरी तरीके से बाइयों पे निर्भर हो चुकी थी। सिर्फ 15 दिन हुए हैं और अब बिल्कुल भी दर्द नहीं है, कमर में जरा भी दर्द नहीं है। इतना शक्तिशाली है ये फौजी 360।
2: बिना सहारे के मैं 2 कदम भी नहीं चल पाती थी, पूरे समय बहू और बेटे की मदद ही लेनी पड़ती थी। पर जब से ये फौजी 360 लिया है, कमर में घुटने में जरा भी दर्द नहीं है। अब सीढ़ियां चढ़ जाती हूँ, उतर जाती हूँ, चल लेती हूँ आराम से, इधर का सारा काम कर लेती हूँ। अब दर्द में पूरी तरीके से राहत है।
3: मेरी उम्र 88 साल है, रोज 5 किलोमीटर पैदल चलता हूँ, लेकिन फिर भी जरा भी दर्द नहीं है। ये शक्ति है फौजी 360 की।
0: नीचे दिख रहे फोन नंबर पर कॉल करके आप फौजी 360 सीधा इस आश्रम से अपने घर मंगा सकते हैं। कॉल करने पे आप हेल्थ एक्सपर्ट से बात कर सकते हैं, अपनी समस्या उन्हें समझा सकते हैं। फिर चाहे आपको घुटने का दर्द हो, कमर का दर्द हो, या कंधे का दर्द हो, या किसी भी तरह का जोड़ों का दर्द हो, आप अपनी समस्या हेल्थ एक्सपर्ट के साथ शेयर करें और फौजी 360 इस आयुर्वेदिक केंद्र से सीधे आपके घर तक भेजा जाएगा।
4: 1 साल पहले दोनों घुटने बदलने के लिए बोल दिया था, मगर मैंने घर बैठे आयुर्वेद के एक फॉर्मूले से अपने घुटने और जोड़ों के दर्द को पूरी तरह ठीक किया है और अब मैं वो सब कर सकता हूँ जो जवान आदमी भी नहीं कर सकता। आप में दम हो, आप करके बताओ। जोड़ों के दर्द के लिए जो भी लोग तेल या स्प्रे लगाते हैं ना, उन्हें आज से ही ये सब बकवास चीजें बंद करना चाहिए। इससे कुछ नहीं होता, क्योंकि जोड़ों के दर्द का इलाज अंदर से होता है। फौजी 360 लेने के बाद मेरे जोड़ों में, यानी घुटने, कमर, कहीं भी जरा भी दर्द नहीं, और अब पूरे शरीर में चुस्ती फुर्ती गजब की बनी रहती है।
0: फौजी 360 के इस दुर्लभ फॉर्मूले को सिर्फ सुबह और शाम पानी के साथ लेना होता है और पहले डोज से ही फौजी 360 के रिजल्ट्स दिखने लगते हैं। फौजी 360 जोड़ों के बीच में खत्म हो चुकी चिकनाहट को रिस्टोर करने में मदद करता है, जॉइंट्स को अंदर से मजबूत बनाता है और फिर दर्द को पूरी तरह खत्म कर देता है।
2: पर जब से ये फौजी 360 किया है ना, शरीर में जरा भी दर्द नहीं है। अब घुटने में भी दर्द नहीं है, कभी पहाड़ पे जाना हो, कहीं चलना हो, बिल्कुल सोचना नहीं पड़ता।
5: मैंने जब से ये फौजी 360 लिया है, मैंने जरा भी घुटनों में दर्द नहीं है। अब मैं जिम करती हूँ, एक्सरसाइज करती हूँ।
0: नीचे दिख रहे फोन नंबर पर कॉल करके आप फौजी 360 सीधा इस आश्रम से अपने घर मंगा सकते हैं। कॉल करने पे आप हेल्थ एक्सपर्ट से बात कर सकते हैं, अपनी समस्या उन्हें समझा सकते हैं। फिर चाहे आपको घुटने का दर्द हो, कमर का दर्द हो, या कंधे का दर्द हो, या किसी भी तरह का जोड़ों का दर्द हो, आप अपनी समस्या हेल्थ एक्सपर्ट के साथ शेयर करें और फौजी 360 इस आयुर्वेदिक केंद्र से सीधे आपके घर तक भेजा जाएगा।
2: करीब 8 महीने पहले फौजी 360 का सिर्फ एक कोर्स लिया था, उसके बाद कभी भी जोड़ों में दर्द ही नहीं हुआ, कभी भी कोई तेल स्प्रे की जरूरत ही नहीं पड़ी। ये इससे सस्ता और इससे असरदार और कोई भी दूसरा तरीका ही नहीं है जोड़ों के दर्द को ठीक करने का।
0: नीचे दिख रहे फोन नंबर पर कॉल करके आप फौजी 360 अपने घर मंगा सकते।
6: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो।
7: सास बहू और बेटिया में आज देखिए सीरियल्स की दुनिया में ट्विस्ट का तड़का। दोपहर 1:28 से 3 बजे तक सिर्फ सास बहू और बेटिया में।

0: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती हैं, तो कुछ दिखाती हैं विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
1: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
2: और दुर्भाग्य कहता है
3: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
0: अविश्वास में विश्वास बसता है,
1: जो हमें अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
4: गुड न्यूज टुडे।
1: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते। खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे। देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे में।
5: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
4: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
1: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर। मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते। खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे। देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे में।
5: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
4: देश देख रहा है
6: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट, कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच, HRIT यूनिवर्सिटी गाजियाबाद, शेपिंग फ्यूचर, क्रिएटिंग लीडर्स।
7: NHAI ने 121 टोल प्लाजा पर शुरू की ऑनलाइन फास्टैग लोकल पास सुविधा, राजमार्ग यात्रा मोबाइल ऐप के जरिए घर बैठे लिया जा सकता है पास। यूपी जापान इन्वेस्टमेंट मीट 2026 से राज्य को मिले विकास के पंख, बनेगी 500 एकड़ की जापानी सिटी, 10,000 युवाओं को मिलेगा इससे रोजगार। देश भर में गणेश उत्सव की तैयारियां तेज, तमिलनाडु के चिरुगला में पली में बनाई जा रही इको फ्रेंडली गणेश जी की मूर्ति पर्यावरण संरक्षण का दे रहे संदेश। धनबाद की प्रांजल और आन्या मित्तल को मिला गिनीज गोल्ड मेडल, ऑनलाइन श्लोकों का पाठ कर बनाया रिकॉर्ड, परिवार में खुशी के लिए। हिमाचल में 21 अगस्त तक बारिश का दौर जारी रहने की संभावना, बिलासपुर, कांगड़ा, मंडी और सिरमौर में बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी।
5: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को
7: पूरी श्रद्धा के साथ जारी जम्मू कश्मीर के पुंछ जिले में स्थित प्राचीन बाबा बूढ़ा अमरनाथ की 12 दिवसीय वार्षिक यात्रा, धार्मिक यात्रा में भक्तों का जोश है। पुंछ पहुंचा बूढ़ा अमरनाथ यात्रा का दूसरा जत्था, जत्थे में देश विदेश के कुल 1938 भक्त शामिल। मंडी बेस कैंप में फूलमाला पहनाकर किया गया यात्रियों का स्वागत, बम बम भोले के जयकारों से भक्तिमय हुआ माहौल। यात्रियों की सुविधा के लिए लगाए गए हैं खाने पीने के स्टॉल्स, भक्तों की यात्रा सुगम और सफल बनाने के लिए हर संभव कोशिश कर रहा है प्रशासन। 28 अगस्त तक जारी रहेगी आस्था की यात्रा, रक्षाबंधन के दिन होगा 12 दिवसीय यात्रा का समापन। उत्तर प्रदेश के पीलीभीत में है भगवान भोलेनाथ का अनोखा धाम। गोमती नदी के किनारे घने जंगल के बीच बसे बाबा इकहत्तर नाथ धाम को लेकर कई मान्यताएं। भोलेनाथ के इस धाम में रंग बदलते शिवलिंग और पहली पूजा को लेकर भक्तों में गहरी आस्था। मन्नत पूरी होने पर यहां चढ़ाए जाते हैं हैंडपंप। पीलीभीत के पूरनपुर तहसील इलाके पुन्नापुर टांडा गांव के पास घने जंगलों के बीच मौजूद है बाबा इकहत्तर नाथ का धाम। दूर दूर से पहुंचते हैं यहाँ पे श्रद्धालु। भोलेनाथ के दर्शन के लिए यहाँ पे गोमती नदी के किनारे बसे घने जंगल से गुजरकर यहाँ पे पहुंचते श्रद्धालु। यहाँ लगे सैकड़ों हैंडपंप बताते हैं आस्था की कहानी। मान्यता है कि महर्षि गौतम के श्राप से मुक्ति के लिए देवराज इंद्र ने यहाँ की थी 71वें शिवलिंग की स्थापना। मान्यता है कि गर्भगृह में मौजूद शिवलिंग बदलता है अपना रंग। बिहार के अंग क्षेत्र में धूमधाम से मनाया जा रहा लोक पर्व मनसा विषहरी। पूजा केंद्र पर उमड़ रही श्रद्धालु की भीड़ भक्तों की मन्नत पूरी करते हैं मां विषहरी। पूजा केंद्रों पर दिख रही आस्था परंपरा और अंग प्रदेश के इतिहास की झलक। बहुला विषहरी की कहानी से जुड़ी झांकी के भी दर्शन। लोक पर्व के लिए पूजा केंद्रों मंत्री तल्ले बड़ा बाजार गुलजार पोखर रायसर बेलदार टोली की गई सजावट कलाकृतियों के जरिए दिया जा रहा है संदेश। गाजेबाजे के साथ निकाली गई बाला लखेंद्र की बारात, बड़ी संख्या में लोग उसमें शामिल। पौराणिक मान्यता के मुताबिक बाला लखेंद्र विहुला की होती है शादी। आज किया जाएगा प्रतिमा का विसर्जन, पूरे क्षेत्र में 3 दिन तक धूमधाम से मनाया जाता है ये लोक पर्व। भारत की मशहूर मिथिला चित्रकला ने बनाया विश्व रिकॉर्ड। 108 मीटर लंबे कैनवस पर लिखे रामचरितमानस के प्रसंग। इस विशाल कलाकृति को तैयार करने में मिथिला चित्रकला संस्थान से जुड़े 180 छात्र छात्राओं ने लिया इसमें हिस्सा। दिल्ली में हुआ एक कार्यक्रम। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार रामायण काल में हुई थी इसकी शुरुआत, जब राजा जनक ने सीता राम के विवाह पर दीवारों पर चित्र बनवाने का दिया था निर्देश। धनबाद की दो बहनों को मिला गिनीज गोल्ड मेडल, ऑनलाइन श्लोकों का पाठ कर बनाया रिकॉर्ड। प्रांजल और आन्या मित्तल की इस उपलब्धि पर परिवार में खुशी की लहर। मां बचपन से ही उन्हें सिखाती थी गीता का पाठ। रजौरी का गवर्नमेंट हायर सीनियर सेकेंडरी स्कूल बना एडुकेशन मॉडल, स्मार्ट क्लासेस के जरिए पढ़ रहे हैं छात्र। आधुनिक लैब और बाकी सभी सुविधाओं से लैस है स्कूल, पढ़ाई में बच्चों की रुचि जगाना है इसका मकसद। भारत पाक सीमा पर अब आसमान से आने वाले हर एक खतरे का जवाब देगा बीएसएफ। जवानों को दी जा रही है ड्रोन उड़ाने और एंटी ड्रोन सिस्टम के इस्तेमाल की ट्रेनिंग। सुकमा पुलिस की बड़ी सफलता, जंगल में डंप नक्सली सामग्री बरामद। नक्सलियों ने चिंतल नार के जंगलों में छुपा रखा था विस्फोट। दिल्ली पुलिस की संपर्क सभा और संवाद कार्यक्रम का हुआ आयोजन। पुलिस कर्मियों और अधिकारियों के बीच बेहतर तालमेल और कार्यप्रणाली को सुधारने की पहल। जापानी प्रतिनिधि मंडल की यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ से मुलाकात, निवेश को लेकर दिखाया उत्साह। उत्तर प्रदेश और यामानाशी के बीच बड़ी डील, 4000 करोड़ रुपए की ग्रीन हाइड्रोजन और 2029 करोड़ के एक्सकॉट्स कुबोटा निवेश। इस मीट में जापान के 200 से अधिक उद्योगपति सीईओ बिजनेस लीडर्स रहे मौजूद। मुख्यमंत्री योगी समेत केंद्र और प्रदेश सरकार के वरिष्ठ मंत्री अधिकारी भी मौजूद। 22 अगस्त को काशी विश्वनाथ के दर्शन करेगा जापानी प्रतिनिधिमंडल। यूपी जापान इन्वेस्टमेंट मीट 2026 कार्यक्रम का हिस्सा है ये दौरा। एनएचएआई ने 121 टोल प्लाजा पर शुरू की ऑनलाइन फास्टैग लोकल पास की सुविधा। राजमार्ग यात्रा मोबाइल ऐप के जरिए घर बैठे लिया जा सकता है पास। पर्यटकों से गुलजार हुआ बीजापुर का नंबी वाटरफॉल। हर रोज बड़ी संख्या में इस खूबसूरत वाटरफॉल को देखने पहुंच रहे पर्यटक। छत्तीसगढ़ के सबसे ऊंचे झरनों में शुमार नंबी वाटरफॉल। पिछले 2 महीनों में 2000 से ज्यादा पर्यटक कर चुके हैं इस खूबसूरत झरने का दीदार। नक्सली प्रभावित होने के कारण पहले इलाका पर्यटकों की पहुंच से था दूर। सरकार और प्रशासन के प्रयासों के बाद अब ये जगह बन चुकी है छत्तीसगढ़ की फेवरेट डेस्टिनेशन। करीब 300 से 700 फीट की ऊंचाई से नीचे गिरता है ये झरना। इस मनमोहक दृश्य को देखने जुटते हैं सैलानी। घने जंगल, पहाड़ियों और हरी भरी वादियों से घिरा हुआ है नंबी वाटरफॉल, सैलानियों के लिए बेहद शांत और सुकून देने वाली जगह है। जम्मू कश्मीर के रियासी जिले में चनाब नदी में उफान, खोले गए सलाल डैम के गेट। हरियाणा के पंचकुला और आसपास के पहाड़ी इलाकों में लगातार भारी बारिश के कारण उफान पर घग्गर नदी, तेज बहाव के चलते प्रशासन ने जारी किया हाईअलर्ट। उत्तराखंड में लगातार जारी आफत की बारिश, विकास नगर से सामने आया भूस्खलन का वीडियो, सड़क पर भारी मलबा। वाराणसी में भी भारी बारिश के बाद गंगा के जलस्तर में बढ़ोतरी, डूबे आसपास के घाट। प्रयागराज में भारी बारिश के बाद कई इलाकों में भरा जबरदस्त पानी, जनजीवन प्रभावित। गाल टेस्ट के चौथे दिन का खेल खत्म होने तक टीम इंडिया की स्थिति मजबूत, भारत को आखिरी दिन गिराने होंगे 6 विकेट। 372 रनों के लक्ष्य का पीछा करते हुए मैच 84 रनों पर श्रीलंका के 4 बल्लेबाज लौटे। पवेलियन कप्तान धनंजय डिसिल्वा और सोनल दिनुषा क्रीज पर मौजूद। श्रीलंका की दूसरी पारी में भी बल्लेबाजों के लिए मुसीबत बने, भारतीय स्पिनर मानव सुधार 4 में से 2 बल्लेबाजों को किया आउट। तेज गेंदबाज मोहम्मद सिराज और प्रसिद्ध कृष्णा के नाम से भी एक सफलता दर्ज, भारत की कसी गेंदबाजी ने मैच का रुख टीम इंडिया की तरफ मोड़ा। इससे पहले ऋषभ पंत की शानदार बल्लेबाजी की बदौलत भारत ने दूसरी पारी में बनाए थे 193 रन। पंत ने 66 रनों की खेली थी आतिशी पारी। मेंस हॉकी वर्ल्ड कप में आज भारत पाकिस्तान के बीच महामुकाबला वैगनर हॉकी स्टेडियम में खेला जाएगा, पूल डी का ये मुकाबला। पिछले 10 सालों से पाकिस्तान के खिलाफ अजय है टीम इंडिया। दोनों टीमों के बीच हुए हैं 19 मैच, इनमें से 17 मैच भारत जीता है जबकि 2 ड्रॉ रहे हैं। महिला हॉकी विश्व कप में भारत की शानदार जीत, दक्षिण अफ्रीका को 6-1 के बड़े अंतर से दिमात, टूर्नामेंट में भारत की पहली और अब तक की सबसे बड़ी जीत। भारत की ओर से नवनीत कौर, सुनैलिता टोपो, सुशीला चानू, पुखराम बम, दीपिका लाल रेम सियामी और साक्षी राणा ने दागे बोल। भारतीय टीम ने दर्ज की टूर्नामेंट की अपनी पहली और अब तक की सबसे बड़ी जीत। भारत ने अपने पहले मुकाबले में चीन के साथ 2-2 से ड्रॉ किया था। बैडमिंटन वर्ल्ड चैंपियनशिप में लक्ष्य सेन की शानदार जीत, लक्ष्य ने पहले दौरे में ऑस्ट्रिया के कॉल्सिन वैलेंटाइन फिलिमोन को 16-21, 21-8, 21-4 से हराया। लक्ष्य सेन ने पहला गेम हराने के बाद की शानदार वापसी, दूसरा और तीसरा गेम जीतकर अपने नाम किया ये मैच। इसी के साथ लक्ष्य ने राउंड ऑफ 32 में की एंट्री। महिला डबल्स मुकाबले में प्री क्वार्टर फाइनल में पहुंची भारत की त्रिशा जॉली और गायत्री गोपीचंद की जोड़ी, अमेरिका की लॉरेन लैम और एलिसन ली की जोड़ी को दिमाग। 39 मिनट में त्रिशा जॉली और गायत्री गोपीचंद ने जीता मुकाबला, विरोधी टीम को सीधे गेम में 21-15, 21-12 से हराया।
5: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों।
8: सास बहू और बेटिया में आज देखिए सीरियल्स की दुनिया में ट्विस्ट का तड़का। दोपहर 1:28 से 3 बजे तक सिर्फ सास बहू और बेटिया में।
5: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबर।
9: सभी भाइयों और बहनों को बाबा रविगिरी का स्नेहिल आशीर्वाद। तो भाइयों और बहनों, मेरा नाम बाबा रविगिरी है, मैं 78 साल का हूं और पिछले 50 वर्षों से सिर्फ एक ही कार्य कर रहा हूँ, प्राकृतिक शुद्ध और गारंटेड इलाज देना। मैंने जीवन के पूरे 78 साल देखे हैं और उनमें से 50 साल केवल एक ही सेवा में लगे हैं, आयुर्वेद के माध्यम से रोगों का इलाज करना। आज हम एक ऐसी पीड़ा पर चर्चा करेंगे जो न बोले तो भीतर से जलाती है और बोले तो लोग हंसते हैं, और उसका नाम क्या है? बवासीर। अरे भाई और बहनों, ये कोई शर्म की बात नहीं है, ये शरीर का रोग है। और जैसे सिर में दर्द होता है वैसे ही गुदा में भी रोग हो सकता है, और सबसे ज़्यादा लोग मेरे पास में बवासीर की बीमारी के लिए ही आते हैं, क्योंकि ये रोग न तो उम्र देखता है, न पैसा देखता है, न पद या ओहदा देखता है, बस जब होता है तो इंसान को नाक में दम कर देता है। जलन, दर्द, खून आना, बैठ भी ना पाए, मैंने खुद देखा है लोगों को रोते हुए। और तभी मैंने ठान लिया था बवासीर का इलाज निकालूंगा, ऐसा इलाज जो बवासीर वापस ना हो। मैंने जड़ी बूटियों को परखा, हजारों नुस्खे आजमाए और फिर तैयार की एक ऐसी औषधि जो आज मैं गर्व से कहता हूँ गारंटी से बवासीर को ठीक करती है। तो भाइयों और बहनों, आपने पाइल्स के बहुत सारे इलाज कराए होंगे, कई दवाइयाँ खाई होंगी, लेकिन आपकी बवासीर ठीक नहीं हुई होगी। मैं बाबा रविगिरी आपसे वादा करता हूँ कि आपकी पुरानी से पुरानी पाइल्स ठीक होगी, और ये मेरी गारंटी है। कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपको खूनी बवासीर है या बादी बवासीर, एक हफ्ते में आराम और 21 दिन में बीमारी जड़ से खत्म, ना ऑपरेशन ना साइड इफेक्ट। मैंने ये दवा उन्हीं जड़ी बूटियों से बनाई है जिन्हें हमारे ऋषि मुनियों ने आजमाया था, और आज देश भर से लोग फोन कर रहे हैं और बोल रहे हैं कि बाबा जी आपने तो हमें एक नया जीवन दान दे दिया है। मैं सिर्फ एक बात कहता हूँ, इलाज चाहिए तो आयुर्वेद अपनाओ, और अगर गारंटी इलाज चाहिए तो मेरे 50 वर्षों के अनुभव लो, नहीं फायदा हुआ तो पैसे वापिस, इतना भरोसा है मुझे अपने इलाज पर। तो भाई और बहनों, चलिए अब मैं आपको बताता हूँ कि बवासीर क्या होती है और क्यों होती है। बवासीर क्या है? हमारे मल द्वार या एनस जिसको बोलते हैं, एनस के अंदर या फिर बाहर छोटे छोटे रक्त वाहिकाएं या ब्लड वेसल होती है जो कभी कभी सूज जाती है, फूल जाती है और धीरे धीरे मांस जैसा बाहर निकलने लगता है। इसी को हम आम भाषा में कहते हैं बवासीर या पाइल्स। अगर इन सूजी हुई नसों से खून निकलने लगे तो उसे कहते हैं खूनी बवासीर, और अगर सिर्फ मांस बाहर निकलता है, जलन, दर्द और खुजली होती है तो वो कहलाती है बादी बवासीर। अब सवाल आता है कि ये होती क्यों है? तो सुनिए, इसके मुख्य कारण है कब्ज। अगर पेट साफ नहीं होता, मल सख्त आता है और रोज जोर लगाना पड़ता है तो धीरे धीरे नसें फूल जाती है। दूसरा, लंबे समय तक बैठना। जो लोग घंटों बैठे रहते हैं ऑफिस में गाड़ी चलाते हुए या फिर मोबाइल पर, तो उनमें रक्त संचार घटता है और नसों पर दबाव पड़ता है। तीसरा कारण है तीखा और भारी खाना खाना। बहुत ज्यादा लोग क्या होते हैं कि मिर्ची मसाले, तली चीजें और कम पानी, ये शरीर को गर्म करते हैं और अंदर जलन पैदा करते हैं। चौथा कारण होता है वंशानुगत कारण, जिसको जेनेटिक्स बोलते हैं। अगर आपके घर में माता पिता को बवासीर रही है तो संभावना बढ़ जाती है कि आपको भी हो सकती है। यह रोग सिर्फ शरीर को नहीं, इंसान की आत्मा तक को थका देता है। लेकिन इसके अलावा भी कई कारण हैं। मेरे कहने का अर्थ यह है कि जिसका आहार संतुलित नहीं है उसका कुछ भी संतुलित नहीं हो सकता। आयुर्वेद के अनुसार आहार ही सभी रोगों की जड़ का मुख्य कारण है। फिर जीवन शैली और पाइल्स यानी बवासीर तो मुख्य रूप से आहार से संबंधित है। आहार और विचार दोनों आपके शरीर के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। विचार से अभिप्राय है, जीवन शैली से है, पर लोगों की इसी अनियमितता को देखते हुए मैंने कुछ खास जड़ी बूटियों का मिश्रण तैयार किया है बवासीर यानी पाइल्स के लिए। बवासीर के मेरे पास बहुत से मरीज आते हैं, कई तो दो तीन बार ऑपरेशन करवा चुके होते हैं फिर भी कोई आराम नहीं होता। वो इतनी आस लेकर आते हैं कि मैं आपको बता नहीं सकता। बवासीर का मेरे पास एक बहुत ही कारगर फार्मूला है जो मैंने अब कुडोस आयुर्वेदा से बनवाया है। बवासीर एक बहुत ही कॉमन आम समस्या बन गई है और जैसे जैसे उम्र बढ़ती जाती है पाइल्स होने के चांसेस भी एक व्यक्ति में बढ़ जाते हैं, क्योंकि हम अपना पूर्ण रूप से ध्यान नहीं रख पाते हैं। और एक बात याद रखो, तनाव भी इसका एक बहुत बड़ा कारण है। जैसे गुस्सा आना, काम का तनाव, नींद पूरी ना होना, ये सब पेट को खराब करते हैं और पेट की गड़बड़ी बवासीर को बुलाती है। मैंने देखा है लोग बवासीर से पीड़ित होते हैं पर डॉक्टर के पास जाने में डरते हैं। औरतें तकलीफ सहती है पर परिवार से भी नहीं कह पाती, और फिर जब हालात गंभीर हो जाते हैं तो ऑपरेशन कराना पड़ता है। पर संतों का ये कहना है रोग को समझो, शरीर की पुकार सुनो और जीवन शैली सुधारो। इसलिए मैं कहता हूं कि मेरे बताए हुए नुस्खे अपनाओ और बवासीर को जड़ से खत्म करो। ये मेरी गारंटी है कि आपको जल्दी आराम मिलेगा, ये कोई मामूली। लेकिन उससे पहले इसका सही पहचानना जरूरी है। अगर ये लक्षण आपको दिखें, खून आना, सूजन होना, खुजली या जलन, मांस का टुकड़ा सा बाहर निकल आना, तो समझ लीजिए ये बवासीर की दस्तक है और घबराने की जरूरत नहीं है। मैं बाबा रविगिरी हूं ना, आयुर्वेद में ऐसे ऐसे नुस्खे हैं जिनसे बवासीर जड़ से ठीक हो जाती है। पर पहले रोग को जानो, स्वीकार करो, फिर उपचार करो। ये लाइलाज नहीं है और आयुर्वेद में इसका स्थायी समाधान है। मैंने खुद देखा है हजारों लोगों को इससे मुक्ति पाते हुए। तो भाई और बहनों, यहां मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूं जिसे बहुत ध्यान से सुनना है। हर रोग का है समाधान जब हो मन में विश्वास का ध्यान। आयुर्वेद की राह पकड़ो, बिना डर के जीवन जियो। तो भाई और बहनों, मैं बाबा रविगिरी आपसे वादा करता हूं कि आपकी पाइल्स की दिक्कतों को मैं जड़ से खत्म कर सकता हूं। अगर मेरे बताए गए नुस्खे अपनाते हो तो खुद आप बदलाव महसूस करोगे। अब हम बात करेंगे इलाज की। मेरे ये योगों में हरड़, जीरा, काली मिर्च, पीपली, मूल, चित्रक, छव्य, सूर्यकंद, अपामार्ग, अमलतास और बहुत कुछ है। तो सबसे पहले मैं आपको बताता हूं हरड़ के फायदे। ये हरड़ है, औषधीय गुणों से भरपूर है। हरड़ के आयुर्वेद में चमत्कारिक फायदे बताए गए हैं। सेलेनियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम, आयरन, कॉपर, विटामिन, प्रोटीन, जीवाणुरोधी, एंटीबायोटिक गुणों से भरपूर है ये हरड़। बवासीर की बीमारी को दूर करने में बेहद असरदार साबित हुई है। जीरा, जो छोंक में यूज करते हैं, ये वही जीरा है। ये कब्ज हो चाहे बवासीर हो, इन सब में बहुत कारगर है। बवासीर का असली कारण खाना अच्छी तरह से न पचना और कब्ज का हो जाना होता है। जीरा लीवर से एंजाइम्स बनाकर खाने को पचवाता है, अपच को दूर करता है और सख्त लैटिन को मुलायम करता है। अगला है काली मिर्च, जो पाचन क्रिया को मजबूत करती है। इसके बाद में है पीपली मूल, ये आंतों में अगर कीड़े हैं तो उनको खत्म करता है, आंतों में सूजन को खत्म करता है। इसके बाद में है चित्रक, चित्रक की रेचिन प्रकृति मानी गई है, यह एक नेचुरल लैक्सेटिव है जो लैटिन को धक्का मारता है, आंतों में पड़ा नहीं रहने देता, रेचन करने वाला है। इसके बाद में है सूरन कंद, यह है सूरन कंद, ये एक प्रोबायोटिक है और पाचन शक्ति को मजबूत बनाता है। और ये है अपामार्ग, क्षार सूत्र की असली जड़ी बूटी है ये, इसमें सूजन घटाने वाले तत्व है जो बवासीर के मसों को शरीर से काट देते हैं। इसके बाद में है ये अमलतास, अमलतास पर बड़े शोध हुए हैं बड़ी बड़ी लेब में, और पता चला है कि इसमें प्रस्तुत है एंथ्राक्विनोनेज जो बवासीर पर काम करता है, पाचन शक्ति को मजबूत और जड़ पर काम करती है और बवासीर को जड़ से खत्म कर देती है। इसके बाद में है लज्जालू, लज्जालू पर जनरल ऑफ आयुर्वेद ने बताया है कि खूनी बवासीर पर चमत्कारित काम करता है, चाहे कोई भी डिग्री का बवासीर हो सब पर यह काम करता है। इसके बाद में है कचनार, कचनार की छाल काम दिया करती है, ये सूजन को घटाता है, बवासीर में कब्ज को काटता है, आंतों की सूजन को घटाता है, शरीर को विष हरण करता है और शुद्ध करता है। ये है निर्गुंडी, ये वातनाशक है, वात बढ़ने के कारण सूजन हो जाती है मसों में, ये निर्गुंडी जो है ये वात को शमन करके सूजन को घटाता है और मसों का नाश कर देता है। आखिर में यह है इंद्रायन, यह है इंद्रायन की जड़, इसके अंदर फ्लेवोनाइड्स, बेंजोइक एसिड, गैलिक एसिड, ये सारे गुण इसमें होते हैं जो बवासीर में आराम देते हैं। तो ये जितनी भी मैंने जड़ी बूटियां आप देख रहे हैं वो मैंने बताई है, ये सब मिलाकर मैंने बवासीर के लिए एक नुस्खा तैयार किया है और मैंने हजारों लोगों को इस पीड़ा से मुक्ति दिलाई है, बिना ऑपरेशन, बिना किसी साइड इफेक्ट, सिर्फ शुद्ध और आयुर्वेदिक नुस्खों से। मेरे बताए नुस्खे अपनाओ, रोज नियम से इन्हें निभाओ, बवासीर को जड़ से मिटाओ, फिर लौट के कभी ना आए वो दर्द पुराना। और हाँ, खान पान में संयम जरूर रखिए, मिर्च मसाले कम, पानी ज्यादा। मैं गारंटी के साथ कहता हूं, अगर आपने मेरे बताए हुए नुस्खे नियम से अपनाए तो बवासीर जड़ से खत्म हो जाएगी और फिर दोबारा लौट कर नहीं आएगी। तो अब ऑपरेशन नहीं, अपनाओ रविगिरी के नुस्खे और कहो बवासीर तुझे जड़ से अलविदा। अब देर मत करो, मुझे तुरंत संपर्क करो और ये आयुर्वेदिक दवाई मंगवाओ ताकि बवासीर को हमेशा के लिए अलविदा कह सको। अब मैं भी आपसे इजाजत चाहूंगा, नमस्कार, सत श्री अकाल, राम राम।
5: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबर।
8: सास बहू और बेटिया में आज देखिए सीरियल्स की दुनिया में ट्विस्ट का तड़का। दोपहर 1:28 से 3 बजे तक सिर्फ सास बहू और बेटियां में।

0: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
1: और दुर्भाग्य कहता है
2: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
3: अविश्वास में विश्वास बसता है,
0: जो हमें अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
4: गुड न्यूज टुडे।
0: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते। खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे। देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे में।
5: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
4: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
0: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।
5: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को
6: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाए स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा, प्यार से परोसा।
7: अच्छा।

उत्साह से जारी है बाबा बूढ़ा अमरनाथ यात्रा। 1938 भक्तों का दूसरा जत्था रवाना। मंडी बेस कैंप पर हुई भव्य स्वागत। देश भर में गणेश उत्सव की तैयारियां तेज। तमिलनाडु के तिरुचिरापल्ली में बनाई जा रही इको फ्रेंडली गणेश जी की मूर्ति पर्यावरण संरक्षण का दे रहे संदेश। NHAI ने 121 टोल प्लाजा पर शुरू की ऑनलाइन फास्टैग लोकल पास सुविधा। राजमार्ग यात्रा मोबाइल ऐप के जरिए घर बैठे लिया जा सकता है पास। यूपी जापान इन्वेस्टमेंट मीट 2026 से राज्य को मिले विकास के पंख। बनेगी 500 एकड़ की जापानी सिटी। 10,000 युवाओं को मिलेगा इससे रोजगार। धनबाद की प्रांजल और आन्या मित्तल को मिला गिनीज गोल्ड मेडल। ऑनलाइन श्लोकों का पाठ कर बनाया रिकॉर्ड। परिवार में खुशी की लहर।

नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सरगम पंच श्रीवास्तव और हमारे स्पेशल शो में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। देखिए, सावन के पवित्र महीने में पूरे देश में भगवान शिव की आराधना और मंदिरों में जलाभिषेक का सिलसिला चल रहा है। शिव भक्त भगवान भोलेनाथ का जलाभिषेक कर सुख समृद्धि और परिवार की खुशहाली की कामना कर रहे हैं। देखिए, देश भर में भगवान शिव के अनेक प्राचीन और पौराणिक मंदिर हैं, इसके बारे में आपको मालूम होगा। लेकिन अरब सागर के किनारे महादेव का एक ऐसा धाम भी है जहां समुद्र उनका अभिषेक करता है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं दीव में मौजूद गंगेश्वर महादेव की, जिसका संबंध पांडवों और उनके शिव भक्ति से जुड़ा हुआ है। एक ऐसा पवित्र स्थान जहाँ प्रकृति और आस्था का अद्भुत संगम देखने को मिलता है।

0: आनंद आदि करुणा के सागर शिव ही सत्य है और शिव ही सुंदर है। यूं तो देवों के देव महादेव का हर धाम अपने आप में दिव्य है, लेकिन दीव में अरब सागर के किनारे मौजूद गंगेश्वर महादेव मंदिर भक्ति और प्रकृति का एक ऐसा अद्भुत संगम है जिसे देखकर हर कोई श्रद्धा से नतमस्तक हो जाता है। कल कल करती समुद्र की लहरें और पत्थरों से टकराती पानी की धारा, लेकिन इस गर्जना के बीच गूंजती है सिर्फ एक ही ध्वनि, हर हर महादेव। दीव के पथरीले समुद्र तट पर चट्टानों के बीच बनी एक गुफा में विराजते हैं देवों के देव महादेव, जिनका जलाभिषेक कोई इंसान नहीं बल्कि स्वयं अरब सागर की विशाल लहरें करती है।
1: भगवान की कृपा इतनी है कि आप देख सकते हैं कि किस प्रकार से यहाँ पे शिवलिंग का स्वरूप यहाँ पे स्थापित है और किस तरीके से उनके ऊपर जलाभिषेक एवरी टाइम हर समय हो रहा है। तो मैं बहुत प्रसन्न हुआ यहाँ पे आकर के, और भी जो भी श्रद्धालु हैं उनमें भक्ति भाव देख के बहुत मन को खुशी हुई है।
0: अद्भुत है ये दृश्य जहाँ पलक झपकते ही समंदर महादेव का जलाभिषेक करता फिरता है। यहाँ तीव्र वेग से आती लहरें ना तो भक्तों के विश्वास को डिगा पाती है और ना ही आस्था का स्वरूप यहाँ सदियों से बदला है। दीव का ये स्थान बहुत ही मन भावन है, मानो सागर शिवलिंग को छूकर न्योछावर हो जाना चाहता है। ऐसा लगता है जैसे अरब सागर की लहरें शिव शंकर की महिमा पर न्योछावर हो जाना चाहती है, मानो जैसे अरब सागर शिव सागर में लीन हो जाना चाहता हो। इन अद्भुत और अलौकिक शिवलिंगों को छूकर लौटी लहरें जैसे द्वापर युग की कहानी सुनाती है, जब यहाँ पांडवों के कदम पड़े थे। कथा के अनुसार वनवास काल के समय वन वन भटकते पांडवों ने यहाँ विश्राम किया था। हस्तिनापुर के पांचों राजकुमार अपने वनवास के दौरान नियम संयम से जीवन बिताते थे। कहा जाता है कि पांडवों ने इस स्थान पर कुटिया एक बनाई थी। पांचों शिव भक्त भाई शिवलिंग का दर्शन पूजन किए बगैर भोजन ग्रहण नहीं करते थे, लेकिन यहाँ पांडवों की पूजा अर्चना के लिए कोई शिवलिंग नहीं था। ऐसे में पांचों भाइयों ने समुद्र से कुछ दूरी पर पांच शिवलिंगों की स्थापना की। इसके बाद पवित्र जल से पांडवों ने महादेव के इन प्रतिरूपों का अभिषेक किया।
2: मैं ये गंगेश्वर टेंपल में आया हूँ, जो पूरे भारत में विश्व प्रसिद्ध है। और यहाँ पे गंगेश्वर में जो पांच शिवलिंग है उस पे हर दिन जल का अभिषेक होते रहता है।
3: इनकी एक विशेषता ये है कि सब शिवलिंग पे हमें पानी चढ़ाना पड़ता है, लेकिन यहाँ पे कुदरती खुद पानी चढ़ाती है शिव भगवान पे, तो वो खास करके हम देखने के लिए यहाँ पे आए हैं। और इस अनुभव का बहुत अच्छा हमें आनंद आया और हमें बहुत अच्छा लगा।
0: जब समुद्र में ज्वार आता है तो अरब सागर की लहरें चट्टानों के बीच से आगे बढ़ती है और शिवलिंग तक पहुंच जाती है। समुद्र का पानी शिवलिंग को स्पर्श करता है और इस तरह भगवान शिव का प्राकृतिक जलाभिषेक होता है। लहरें आती है, शिवलिंग का स्पर्श करती है और फिर वापस समुद्र में समा जाती है। ये दृश्य श्रद्धालुओं के लिए बेहद आध्यात्मिक और अद्भुत अनुभव होता है। कहा जाता है जब पांडवों ने यहाँ शिवलिंग की स्थापना की तब सागर नजदीक नहीं था, लेकिन यहाँ शिव प्रतीक के स्थापित होने के बाद सागर भी धीरे धीरे उनके करीब खींचा चला आया। आज भी सागर की कल कल बहती धारा महादेव के चरण पखारती है और खुद को धन्य मानती है। एक तरफ विशाल अरब सागर, दूसरी तरफ प्राकृतिक चट्टानें और उनके बीच भगवान महादेव के ये पवित्र शिवलिंग। समुद्र की लहरों की आवाज और हर हर महादेव के जय घोष से यहाँ का वातावरण शिवमय हो जाता है। इस स्थान की महिमा ऐसी है कि देश विदेश से श्रद्धालु यहाँ खींचे चले आते हैं। युवक युवतियाँ और नवविवाहित जोड़े यहाँ आकर शिवलिंग के दर्शन करते हैं। कहा जाता है यहाँ भोले के अद्भुत रूप के दर्शन करने से लंबी आयु की प्राप्ति होती है। जिस भक्त ने यहाँ माथा टेक लिया उसे अकाल मृत्यु का भय कभी नहीं सताता। सावन और महाशिवरात्रि जैसे पवित्र अवसरों पर तो यहाँ श्रद्धालुओं की विशेष आस्था देखने को मिलती है। गंगेश्वर महादेव मंदिर सिर्फ एक धार्मिक स्थल नहीं है बल्कि प्रकृति और आस्था के अद्भुत संगम का प्रतीक भी है। पौराणिक कथाओं में शिव ने अपनी जटाओं में माँ गंगा को धारण किया है और इनका वही रूप यहाँ माना गया है, इसीलिए इस स्थान को गंगेश्वर महादेव कहा जाता है। दीप से दिलीप मोरे के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
4: वैसे तो सावन के महीने में तमाम शिव मंदिरों में रौनक देखने को मिलती ही है, लेकिन भगवान शिव का एक ऐसा धाम भी है जहां हर रोज लाखों भक्त पहुंचते हैं और मन्नत का ताला लगाते हैं, जिनमें कैद होती है भक्तों की अटूट आस्था, उनका विश्वास और मन्नत की कहानी। कहां है ये धाम और क्या है इस अनोखे धाम की कहानी, आइए आपको दिखाते हैं।

0: मंदिर की दीवारों पर ताले, जालियों और आसपास के हिस्सों पर भी लाखों ताले। ये सिर्फ ताले नहीं बल्कि इन दीवारों पर लटकी उम्मीदें हैं, जिनमें कैद भक्तों की अटूट आस्था। यहाँ मौजूद हर ताला किसी न किसी भक्त के विश्वास और मन्नत की कहानी बयां करता है। ये नजारा संगम नगरी प्रयागराज के प्रसिद्ध नाथेश्वर नाथ महादेव मंदिर का है, यानी एक ऐसा अनोखा धाम जिसे पूरी दुनिया ताले वाले महादेव के नाम से जानती है।
1: नाथेश्वर महादेव मंदिर, और जहां तक आपकी पूरे मंदिर में नजर जाएगी, ताले ही ताले यहां पर देखने को मिलेंगे। एक दो नहीं, हजार लाख करोड़ ताले यहां पर इस मंदिर में लगाए हुए हैं। यहां पर ये कहा जाता है कि जो लोग अपनी मनोकामनाएं के लिए आते हैं और यहां से ताला खरीदते हैं, इससे नाम लिखा जाता है, इसके बाद इस मंदिर में उसको लगा दिया जाता है और अपनी मनोकामनाएं पूरी होने के बाद यहां पर प्रसाद के रूप में उसको चढ़ा दिया जाता है।
0: इस मंदिर की परंपरा बाकी शिव धामों से बिल्कुल अलग है। मान्यता है कि यहाँ आने वाला हर श्रद्धालु अपनी मनोकामना पूरी करने के लिए मंदिर परिसर में एक ताला बंद करके जाता है। भक्तों का अटूट विश्वास है कि ताला लगाते ही महादेव उनकी पुकार सुन लेते हैं, और जब मन्नत पूरी हो जाती है तो श्रद्धालु दोबारा आकर अपने हाथों से वही ताला खोल देते हैं और भोलेनाथ का धन्यवाद कर विधि विधान से पूजा अर्चना करते हैं।
2: हिंदुस्तान के हर कोने कोने से यहाँ लोग आते हैं और लाखों लोगों के ऊपर से मन्नतें पूरी हो चुकी हैं और अपनी किस्मत के ताले खोले जाते हैं बाबा के द्वारा। जीवन में जो भी तकलीफ कष्ट होता है, सभी भक्त आते हैं अपनी समस्याओं को लेके और बाबा के यहाँ आरती लगाते हैं और अपनी मन्नतों को पूर्ण करते हैं। मंदिर में कम ताले हम लोगों ने स्टोर किया हुआ, क्योंकि मंदिर जर्जर कंडीशन में आपको देख सकते गिरने का भय है, तो इसलिए सरिया की व्यवस्था की गई। सरिया में ताला लगाइए, उसका कोडिंग नंबर हम लोग देते हैं, उसकी फोटो खींचिए, जब आपकी मन्नत पूरी होती है तो कोडिंग नंबर दिखा के फिर हम लोग ताले को खुलवाते हैं।
0: अपनी पहचान के लिए लोग ताले पर अपना नाम और पता लिख कर जाते हैं, ताकि मनोकामना पूर्ण हो जाने पर अपनी किस्मत के ताले को आसानी से ढूंढ सके।
3: एकदम अलग सी आस्था है यहाँ, बहुत अच्छा लग रहा है, और ताले ही ताले हैं, सिर्फ ताले ही ताले हैं, और हम भी अपनी यही मन्नत मानकर हम भी अपना ताला लगाएंगे और जब मन्नत पूरी होगी तो आकर उसको खोलेंगे।
4: जी पहली बार है, फर्स्ट टाइम आए हैं, हम भी श्रद्धा लेके आए हैं, अब देखते कितने दिन पूरा होता है।
5: ताला लगा दिया आपने?
4: जी जी बिल्कुल।
0: सावन का पवित्र महीना हो या फिर कोई और पावन मौका, नाथेश्वर नाथ मंदिर में हर दिन हजारों श्रद्धालुओं का तांता लगा रहता है। पूरा परिसर हर हर महादेव और बम बम भोले के जय घोष से गुंजायमान रहता है। भक्ति और परंपरा का ये अनूठा संगम प्रयागराज के इस मंदिर को पूरे देश में एक विशेष पहचान दिलाता है। कहते हैं भगवान के दरबार में हर ताले की चाबी होती है, लेकिन प्रयागराज का नाथेश्वर नाथ महादेव मंदिर एक ऐसा स्थान है जहां श्रद्धालु खुद अपनी मुरादों का ताला लगाने आते हैं। और ताला एक आस है, एक विश्वास है कि जब भोलेनाथ की कृपा होगी तो इस ताले के साथ साथ उनकी किस्मत का बंद ताला भी खुल जाएगा। प्रयागराज से पंकज श्रीवास्तव के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, फिटनेस टुडे।
6: तो चलिए आगे बढ़ते हैं और अब हम आपको शिव के अनोखे और अद्भुत धामों के बारे में बताते हैं। देखिए उन्हीं में से एक है प्रयागराज में गंगा तट पर स्थित कोटेश्वर धाम, जिसका अपना एक अलग धार्मिक और पौराणिक महत्व माना जाता है। देखिए कोटेश्वर धाम की क्या मान्यता है और क्यों इस धाम का प्रभु राम से संबंध माना जाता है, आइए इस रिपोर्ट में जानते हैं।
7: सावन का पवित्र महीना, गंगा की पावन धारा और हर ओर गूंजता हर हर महादेव का जयघोष। भगवान शिव की भक्ति में डूबा यह नजारा है संगम नगरी प्रयागराज के गंगा तट पर बसे एक ऐसे धाम का, जिसका पौराणिक इतिहास मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम से जुड़ा है। एक ऐसा शिव धाम जहाँ कभी 1 करोड़ शिवलिंगों से महादेव की आराधना की गई थी।
5: सावन के महीने में प्रयागराज का ये कोटेश्वर महादेव मंदिर भक्तों के लिए, खासकर शिव भक्तों के लिए बहुत खास है। और इस मंदिर की लिए कहा जाता है कि भगवान राम ने इस मंदिर में शिवलिंग की स्थापना खुद की थी। जब वो रावण का वध करके प्रयागराज पहुंचे थे महंत के पास, तो उन्होंने ये कहा था कि आपको ब्रह्म हत्या का दोष लगा है, लिहाजा आप 1 करोड़ शिवलिंग की स्थापना करिए, उसके बाद आपके ऊपर से ब्रह्म हत्या का दाग हटेगा। भगवान श्री राम ने यहाँ पर बालू के कर्ण से 1 लाख शिवलिंग बनाए, उसके बाद उनके ऊपर जो द्वेष था वो समाप्त हुआ। लेकिन जब उन्होंने जिस शिवलिंग की स्थापना की वो प्रयागराज के इस कोटेश्वर महादेव मंदिर में रखा गया, और आज भी ये माना जाता है कि भगवान राम द्वारा स्थापित इस शिवलिंग की मान्यता काफ़ी है। और सावन के महीने में शिव भक्त इसलिए आते हैं कि भगवान शिव उनके कष्टों को दूर करते हैं।
7: प्रयागराज के शिवकुटी इलाके में गंगा किनारे मौजूद कोटेश्वर धाम सिर्फ आस्था का केंद्र नहीं बल्कि त्रेता युग के एक महान इतिहास का साक्षी भी है। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार जब भगवान श्री राम लंकापति रावण का वध कर अयोध्या लौट रहे थे, तब वो प्रयागराज में महर्षि भारद्वाज के आश्रम पहुंचे। महर्षि भारद्वाज ने प्रभु राम को बताया कि रावण ब्राह्मण कुल में जन्मा था, इसलिए उसके वध से उन पर ब्रह्म हत्या का पाप लगा है। इस दोष के निवारण के लिए उन्हें भगवान भोलेनाथ की शरण में जाने और शिवलिंग स्थापित कर क्षमा याचना करने का मार्ग दिखाया गया। उन्होंने ब्रह्म हत्या दोष से मुक्ति पाने के लिए गंगा तट पर रेत से 1 करोड़ शिवलिंग बनाकर महादेव की तपस्या की। बाद में उन सभी शिवलिंगों के पोड़े को एक जगह समाहित कर इस पावन शिवलिंग की स्थापना की गई।
8: सावन का बहुत बड़ा महत्व है श्री कोटेश्वर महादेव मंदिर के लिए, इसलिए क्योंकि ये भगवान रामचंद्र जी के हाथ से स्थापित किया हुआ शिवलिंग है और एक ही शिवलिंग में 1 करोड़ शिवलिंग की स्थापना है।
7: संस्कृत में कोटि का अर्थ करोड़ होता है। 1 करोड़ शिवलिंगों के सामूहिक पुण्य से स्थापित होने के कारण ही इस धाम का नाम कोटेश्वर महादेव पड़ा। यही वजह है कि यहाँ केवल 1 शिवलिंग का जलाभिषेक करने से भक्तों को करोड़ों शिवलिंगों की पूजा करने का फल प्राप्त होता है।
9: कोटेश्वर महादेव जी का मंदिर है जिसको श्री राम जी ने स्थापित किया था, और इसीलिए हम सभी भक्तजन दर्शन करने आए ताकि घर में सुख समृद्धि सब बनी रहे और भगवान जी सब पे अपनी कृपा बनाए रहे।
10: यहाँ पे जो भी आते हैं सबकी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। ये बहुत अच्छा शिवालय है, ये मंदिर बहुत नामी है, आज से नहीं बहुत सदियों पुरानी मंदिर है।
7: सावन के हर सोमवार को यहां दूर दूर से आने वाले श्रद्धालुओं का तांता लगा रहता है। मान्यता है कि सच्चे मन से कोटेश्वर महादेव के दर्शन मात्र से जीवन के बड़े से बड़े कष्ट मिट जाते हैं और सुख समृद्धि का वास होता है। यहां की हवाओं में घुली शिव भक्ति और गंगा की लहरें हर किसी को अध्यात्म से सराबोर कर देती है। आनंद राज, प्रयागराज, गुड न्यूज टुडे।
6: अब पश्चिमी यूपी के बागपत में आपको दर्शन करवाते हैं उस पावन शिवधाम के, जहां पहुंचकर संसार की पहली कावड़ यात्रा संपन्न हुई थी। महादेव का वो धाम जिसकी स्थापना की कहानी भगवान परशुराम से जुड़ी हुई है, और उन्हीं के नाम पर भोलेनाथ यहां पर परशुरामेश्वर कहलाते हैं।
11: बोलबम का नारा है और भोले का सहारा है। कांधों पर कावड़ में भरा गंगा जल और महादेव की ओर बढ़ते कदम। कोई मनोरथ पूरा करने के लिए करता है तो कोई महादेव के भक्ति भाव में विभोर होकर इस यात्रा पर निकलता है, लेकिन युगों युगों से आस्था की ये यात्रा यूं ही चली आ रही है।

0: जुड़ी है बागपत के इस पावन शिव धाम से, जहां भगवान शिव को परशुरामेश्वर रूप में पूजा जाता है। पश्चिमी यूपी के बागपत में स्थित परशुरामेश्वर महादेव मंदिर अपने आप में रहस्यमयी, ऐतिहासिक और चमत्कारी गाथा समेटे हुए है। कहते हैं कि एक भयानक अपराध के पश्चाताप स्वरूप इस शिवधाम की स्थापना खुद भगवान परशुराम ने की थी। बताया जाता है कि परशुराम ने अपने पिता की आज्ञा पर अपनी ही माँ का वध कर दिया था, लेकिन इस पाप बोध ने उन्हें विचलित कर दिया। तब पश्चाताप की अग्नि में तपते हुए परशुराम ने अपने हाथों से स्थान पर शिवलिंग की स्थापना की। फिर हरिद्वार से गंगा जल लाकर भगवान शिव का जलाभिषेक किया। माना जाता है कि यहीं से कांवड़ यात्रा की परंपरा का बीज पड़ा। परशुराम के नाम पर कभी परशुरामेश्वर धाम कहलाने वाला ये मंदिर कालांतर में पूरा महादेव धाम कहलाने लगा। बताया जाता है कि इस मंदिर में स्थापित शिवलिंग जागृत और चमत्कारी है। ये शिवलिंग समय समय पर अपना रंग बदलता है, जो आस्था रखने वालों के लिए अद्भुत और अलौकिक अनुभव होता है।
1: जो हमारा शिवलिंग स्थापित है, ये किसी भी व्यक्ति द्वारा नहीं है स्थापित, ये भगवान परशुराम जी द्वारा, जब इनकी माता जी का उन्होंने वध किया, उसके पश्चाताप के पश्चात वो हरिद्वार से गंगा जल लाकर शिवलिंग का स्थापना की, भगवान भोले शंकर की आराधना की, उसके बाद उन्होंने जल चढ़ाया। तो जब से ही ये परंपरा चली हुई है।
2: एक और कहा जा रहा है कि मंदिर शिवलिंग है वो रंग भी बदलता है।
1: हाँ, समय समय पर जैसे अब सावन शुरू हो गया है, तो जब कोई भी श्रद्धालु अपने श्रद्धा भाव से देखेगा तो उसको थोड़ा दिखाई देगा।
0: मान्यता है कि जो भी सच्चे मन से यहाँ मन्नत मांगता है उसकी हर कामना पूरी होती है। यही वजह है कि यूपी ही नहीं बल्कि दिल्ली, हरियाणा, राजस्थान और पंजाब तक से श्रद्धालु सावन में इस मंदिर में जलाभिषेक करने आते हैं। हर साल सावन में पूरा महादेव धाम में बड़ी संख्या में कांवड़िए पहुँचते हैं। योगी सरकार ने इस ऐतिहासिक धाम को पर्यटन स्थल का दर्जा दिया है। भविष्य में मंदिर प्रांगण को काशी उज्जैन की तर्ज पर विकसित करने की भी योजना है। यानी भविष्य में पूरा महादेव का पावन धाम सिर्फ एक धार्मिक स्थल नहीं बल्कि उत्तर भारत की संस्कृति, पौराणिक परंपराओं और इतिहास का संगम बन जाएगा। बागपत से मनुदेव उपाध्याय के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
3: चलिए इसी के साथ वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का, कहीं मत जाइएगा, फौरन हाजिर होंगे।

0: कभी रफ्तार से दौड़ती हैं, तो कभी धीमे धीमे पक रही होती है। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती है, तो कुछ दिखाती है विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है, तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं, तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज़ पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
1: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
2: और दुर्भाग्य कहता है
3: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
0: अविश्वास में विश्वास बसता है,
1: जो हमें अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
4: गुड न्यूज टुडे।
1: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते। खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे। देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
5: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
6: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
5: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को
7: जितने अद्भुत है महादेव, उतनी ही अनोखे हैं उनकी ये धाम।

देखिए एक ऐसा ही धाम मौजूद है बुंदेलखंड में भी, एक ऐसा अद्भुत मंदिर जहां महादेव एक नहीं बल्कि हजार रूपों में एक साथ दर्शन देते हैं, वो भी एक ही स्थान पर, एक ही गर्भगृह में। इस मंदिर से जुड़ी एक और खास बात कही जाती है। बताया जाता है कि ये वही मंदिर है जहां किसी दौर में झांसी की महारानी लक्ष्मीबाई शिव आराधना करने जाती थी।

0: महादेव एक है, रूप अनेक है, लेकिन झांसी के इस अनोखे शिवधाम में महादेव के अनेक रूप उनके एक ही स्वरूप में समाये हैं। ये अद्भुत धाम है झांसी के हजारिया महादेव। महादेव का वो अनुपम धाम जहां एक शिवलिंग में 1000 शिवलिंग समाये हैं। चूंकि मंदिर के मुख्य शिवलिंग में 1000 छोटे छोटे शिवलिंग बने हुए हैं, इसी कारण इसे हजारी शिवलिंग के नाम से भी जाना जाता है। मंदिर के गर्भगृह में मुख्य शिवलिंग के नजदीक जाने पर अनेक छोटे छोटे शिवलिंग नजर आते हैं। मान्यता है कि इस एक शिवलिंग पर जलाभिषेक करने से 1000 शिवलिंगों पर जल चढ़ाने के बराबर फल मिलता है।
1: ये 1108 छोटे छोटे शिवलिंग है, इसलिए इनका नाम हजारिया महादेव है। छोटे छोटे पूरे राउंड है उनके, वो 1108 शिवलिंग है छोटे छोटे।
2: 1000 शिवलिंग का मतलब यह है कि 1101 अगर इधर दर्शन करते हैं तो एक बार में पूर्ण होते हैं भोलेनाथ के दर्शन साक्षात एक ही शिवलिंग में।
0: बुंदेलखंड के झांसी में मौजूद इस प्राचीन शिव धाम में भक्तों की अपार आस्था है। यहाँ सावन और महाशिवरात्रि जैसे मौकों पर लोग दूर दूर से दर्शन पूजन के लिए दौड़े चले आते हैं। मान्यता है कि यहाँ दर्शन करने वालों की मन्नत जरूर पूरी होती है। इसके बाद श्रद्धालु मंदिर में हवन पूजन और भंडारा करवाते हैं।
3: यहाँ पे जो भी मन्नत मांगी जाती वो पूरी होती है और उसके सब लोग जो प्रार्थना करते हैं उसको वो पूरा करने पे आदमी इधर पे जो भी इच्छा पूरी होती है कि उसके उस उपलक्ष में भंडारा प्रार्थना वगैरह जो सब करते हैं।
0: हजारिया महादेव मंदिर का इतिहास सैकड़ों साल पुराना है। माना जाता है कि इस मंदिर को मराठा शासन से पहले गोसाइयों ने बनवाया था। बताया जाता है कि कभी झांसी की महारानी लक्ष्मीबाई यहाँ रोज महादेव के दर्शन पूजन करने आती थी। झांसी के शिव मंदिर में आने वाला हर श्रद्धालु इस बात को आज भी बड़े गर्व के साथ बताता है।
2: ये माँ वीरांगना लक्ष्मीबाई यहाँ पे पूजा अर्चना करने आती थी पानीवरी धर्मशाला पे। और ये गोसाइयों के समय का मंदिर है क्योंकि बहुत प्राचीन मंदिर है, यहाँ से जो भी मनोकामना मांगी जाए एक बार में पूर्ण होती है।
4: ये गोसाइयों के शासन काल में हमारे पूर्वजों ने बनवाया था और झांसी की रानी भी यहाँ पूजा करने आती थी।
5: ये बहुत पुराना रानी लक्ष्मीबाई के जमाने का मंदिर है, इसका इतिहास बहुत पुराना है। और क्या है, यहाँ पे हर आदमी की मनोकामना पूरी होती है, भोलेनाथ जी सबकी सुनते हैं।
0: इस मंदिर से जुड़ी एक मान्यता ये भी है कि जब जब बुंदेलखंड क्षेत्र में सूखा पड़ता है तो यहाँ जल चढ़ाने से महादेव अपने भक्तों का कल्याण करते हैं।
4: बुंदेलखंड में करीब 25 साल पहले सूखा पड़ा था तो इनको शंकर जी को बाल्टियों, यहाँ पे बावड़ी है, कुआ है, तो बाल्टियों से भर रहा था। उस टाइम मोटर वोटर नहीं चलती थी ज़्यादा, तो बाल्टियों से भरा था, तब जाके पूरा जब शिवलिंग डूब गई थी तब जाके बरसात हुई थी। ये ऐसा दो बार हो चुका है, जब जब बुंदेलखंड में सूखा पड़ता है तब इसी प्रकार का इनको वो करते हैं।
0: एक शिवलिंग पर जल चढ़ाकर हजार शिवलिंग पर जल चढ़ाने जितना पुण्य अर्जित करने की कामना के साथ सावन के महीने में दूर दूर से भक्त महादेव के इस अनोखे धाम में दर्शन करने आते हैं। झांसी से अजय झा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
6: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को।
7: सास बहू और बेटिया में आज देखिए सीरियल्स की दुनिया में ट्विस्ट का तड़का। दोपहर 1:28 से 3 बजे तक सिर्फ सास बहू और बेटिया में।

0: परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है। इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।
1: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं, तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती है, तो कुछ दिखाती है विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है, तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं, तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज़ पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।

0: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को।
1: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट, कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच। HRIT यूनिवर्सिटी गाजियाबाद, शेपिंग फ्यूचर, क्रिएटिंग लीडर्स।

0: उत्साह के साथ जारी है बाबा बूढ़ा अमरनाथ की यात्रा। 1938 भक्तों का दूसरा जत्था रवाना, मंडी बेस कैंप पर हुआ भव्य स्वागत।
1: देश भर में गणेश उत्सव की तैयारियां तेज। तमिलनाडु की तिरुचिरापल्ली में बनाई जा रही इको फ्रेंडली गणेश जी की मूर्ति पर्यावरण संरक्षण का दे रही संदेश।
0: एनएचएआई ने 121 टोल प्लाजा पर शुरू की ऑनलाइन फास्टैग लोकल पास की सुविधा। राजमार्ग यात्रा मोबाइल ऐप के जरिए घर बैठे लिया जा सकता है ये पास।
1: यूपी जापान इन्वेस्टमेंट मीट 2026 से राज्य को मिले विकास के पंख। बनेगी 500 एकड़ की जापानी सिटी, 10,000 युवाओं को मिलेगा रोजगार।
0: धनबाद की प्रांजल और आन्या मित्तल को मिला गिनीज गोल्ड मेडल। ऑनलाइन श्लोकों का पाठ कर बनाया रिकॉर्ड, परिवार में खुशी की लहर दौड़ी।
2: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है।
0: सज गई है खबरों की प्लेट, तैयार है गुड न्यूज का मेन्यू। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ शगुफ्ता साहिल देव।
1: नमस्कार, मैं हूं आपके साथ पूजा। खबरों की रफ्तार वही है, बस परिभाषाएं नहीं है। हम आपको ट्रेंडिंग न्यूज से लेकर हर अहम खबर दिखाएंगे, लेकिन सबसे पहले शुरुआत करते हैं 5 मिनट में 25 अच्छी खबरों के साथ।
2: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों
0: पूंछ पहुंचा बूढ़ा अमरनाथ का दूसरा जत्था। जत्थे में देश विदेश के कुल 1938 भक्त शामिल। मंडी बेस कैंप में फूलमाला पहनाकर यात्रियों का स्वागत किया गया। बिहार के अंग क्षेत्र में धूमधाम से मनाया जा रहा लोक पर्व मनसा विषहरी। पूजा केंद्र पर उमड़ रही श्रद्धालुओं की भारी भीड़, भक्तों की मन्नत पूरा करती है माँ विषहरी। भारत की मशहूर मिथिला चित्रकला ने बनाया विश्व रिकॉर्ड, 108 मीटर लंबे कैनवस पर लिखे रामचरितमानस के प्रसंग। धनबाद की दो बहनों प्रांजल और आन्या मित्तल को मिला गिनीज गोल्ड मेडल। ऑनलाइन श्लोकों का पाठ कर बनाया ये रिकॉर्ड। उत्तर प्रदेश और यमनाशी के बीच में बड़ी डील, 4000 करोड़ के ग्रीन हाइड्रोजन और 2029 करोड़ के एस्कॉर्ट्स कुबोटा निवेश हुआ। बढ़ेंगे रोजगार और मैन्युफैक्चरिंग के अवसर।
1: राजौरी का गवर्नमेंट हायर सीनियर सेकेंडरी स्कूल बना एजुकेशन मॉडल। स्मार्ट क्लासेस के जरिए पढ़ रहे हैं छात्र, आधुनिक लैब और बाकी सभी सुविधाओं से लैस स्कूल। भारत पाकिस्तान सीमा पर अब आसमान से आने वाले हर एक खतरे का जवाब देगा बीएसएफ। जवानों को दी जा रही है ड्रोन उड़ाने और एंटी ड्रोन सिस्टम के इस्तेमाल की ट्रेनिंग। दिल्ली पुलिस की संपर्क सभा और संवाद कार्यक्रम का आयोजन। पुलिसकर्मियों और अधिकारियों के बीच बेहतर तालमेल और कार्यप्रणाली को सुधारने की पहल। पर्यटकों से गुलजार हुआ बीजापुर का नंबी वाटरफॉल। पिछले 2 महीनों में 2000 से ज्यादा पर्यटक कर चुके हैं इस खूबसूरत झरने का दीदार। हिमाचल में 21 अगस्त तक बारिश का दौर जारी रहने की संभावना। बिलासपुर कांगड़ा मंडी और सिरमौर में बारिश का ऑरेंज अलर्ट।
0: मेंस हॉकी वर्ल्ड कप में आज भारत और पाकिस्तान के बीच में महामुकाबला। पिछले 10 साल से पाकिस्तान के खिलाफ अजय है टीम इंडिया। महिला हॉकी विश्व कप में भारत की शानदार जीत, दक्षिण अफ्रीका को 6-1 के बड़े अंतर से दी मात। टूर्नामेंट में भारत की पहली और अब तक की सबसे बड़ी जीत। बैडमिंटन वर्ल्ड चैंपियनशिप में लक्ष्य सेन की शानदार जीत। लक्ष्य ने पहले दौर में ऑस्ट्रिया के कॉलिंस वैलेंटाइन फिलिमोन को 16-21, 21-8 और 21-4 से हराया। महिला डबल्स मुकाबले में प्री क्वार्टर फाइनल में पहुंची भारत की त्रिशा जॉली और गायत्री गोपीचंद की जोड़ी। अमेरिका की लॉरेन लैम और एलिसन ली की जोड़ी को दी मात। वीनस विलियम्स को मिला यूएस ओपन का वाइल्ड कार्ड। 46 की उम्र में खेलेंगी 7 बार की ग्रैंड स्लैम चैंपियन वीनस।
1: यश की फिल्म टॉक्सिक का काउंटडाउन शुरू। 21 अगस्त से शुरू होगी एडवांस बुकिंग। फिल्म की रिलीज में महज 8 दिन बाकी। बॉक्स ऑफिस पर चला आवारापन टू का जादू, लगातार मजबूत तो पकड़ बनाए हुए 100 करोड़ रुपए का आंकड़ा पार करने की ओर बढ़ रही है फिल्म। दर्शकों को इम्प्रेस नहीं कर पाई सनी देओल की बटवारा 1947, 5 दिन में महज 31 करोड़ के करीब पहुंच चुकी है फिल्म के कलेक्शन। अक्षय ओबरॉय और हेली दारूवाला स्टारर लव लॉटरी का टीजर रिलीज हुआ, 18 सितंबर को सिनेमाघरों में दस्तक देगी फिल्म। मुंबई के गोरेगांव में बने अफगानिस्तान के सेट पर जारी है सलमान खान की अगली फिल्म SVC 63 की शूटिंग, सीक्वेंस शूट किए जा रहे हैं एक्शन।
0: फ्रांस के एस्ट्रोनॉट सोफी एडेनो ने पहली बार स्पेस वॉक कर रचा इतिहास, ISS के बाहर नासा के एस्ट्रोनॉट अनिल मेनन के साथ किया काम। हॉलीवुड स्टार मर्लिन मोनरो के 100वें जन्मदिन पर खास बार्बी डॉल लॉन्च हुई, उनके मशहूर गाने डायमंड्स आर अ गर्ल्स बेस्ट फ्रेंड वाले लुक में ये डॉल। आसमान बना समंदर, 5,000 ड्रोन ने मछलियों और समुद्री जीवों की आकृतियां बनाकर रात के आसमान को रोशनी से सजा दिया। चीन के हुको झरने के पास 1,000 से ज्यादा पर्यटकों ने मिलकर गाया गीत, लोगों की आवाज ने माहौल को बेहद खास बना दिया।

0: चीन के हुबेई प्रांत में इन दिनों राफ्टिंग का रोमांच, गर्मी से राहत पाने के लिए लोग तेज बहती नदी में ले रहे राफ्टिंग का मजा।
1: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोग।
2: अच्छे सच्ची खबरों के बाद खबर विस्तार से आपके लिए खबरों की प्लेट तैयार है।
0: तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की तमाम ट्रेंडिंग न्यूज के साथ।
2: देशभर में जारी गणेश उत्सव की तैयारी, शहर शहर बनाई जा रही है इको फ्रेंडली प्रतिमाएं।
0: यूपी में जापान करेगा करोड़ों का निवेश, बनाई जाएगी जापानी सिटी, 10,000 से ज्यादा युवाओं को मिलेगा रोजगार।
2: एनएचएआई ने 121 टोल प्लाजा पर शुरू की ऑनलाइन फास्टैग लोकल पास सुविधा, राजमार्ग यात्रा मोबाइल ऐप के जरिए घर बैठे लिया जा सकता है पास।
0: गोल्ड टेस्ट जीतने से 6 विकेट की दूरी पर टीम इंडिया, महज 84 रनों पर श्रीलंका के 4 बल्लेबाज आउट हुए, भारतीय गेंदबाजों के शानदार प्रदर्शन से मैच का मोड़ा रुख।
2: महिला हॉकी विश्व कप में भारत की शानदार जीत, दक्षिण अफ्रीका को 6-1 के बड़े अंतर से दिमाग, टूर्नामेंट में भारत की पहली और अब तक की सबसे बड़ी जीत।

0: और चलिए लंच टाइम की शुरुआत करते हैं। और लंच टाइम में आज हम सबसे पहले बात करेंगे कैसे पहाड़ की जो रातों रात लोगों की तकदीर बदल रहा है। इस पहाड़ का नाम है हंसराज पर्वत और ये पर्वत बिहार के गया जिले में मौजूद है। दावा है कि आसमान से होने वाली बरसात के बाद इस पर्वत से कीमती पत्थरों की बारिश होती है।
1: बारिश होते ही इस पर्वत की तलहटी में बसे हसरा गांव के लोग पहाड़ पर मोती मूंगा जैसे बेशकीमती पत्थरों को ढूंढने निकल पड़ते हैं, जो कि पहाड़ पर रास्ते में पड़े होते हैं और इन पत्थरों को खरीदने के लिए दूर दराज से खरीदार पहुंचने लगते हैं। क्या है पूरी स्टोरी, रिपोर्ट देखिए।
2: दिखने में तो ये देश के किसी आम गांव की तस्वीर है, लेकिन इस हरे भरे पहाड़ ने न सिर्फ इस गांव की सूरत बदली बल्कि तकदीर भी बदल कर रख दी। बिहार के गया जिले का ये एक ऐसा पहाड़ है जो रातों रात लोगों को लखपति बना रहा है। इस गांव के लोग सावन में बारिश का इंतजार करते हैं, क्योंकि इस पहाड़ से होती है कीमती पन्ना मोती जैसे कीमती पत्थरों की बारिश। बिहार के गया जिले के वजीरगंज ब्लॉक में मौजूद है हसरा गांव। जिला मुख्यालय गया से करीब 30 से 50 किलोमीटर की दूरी पर यह गांव हंसराज पर्वत की तलहटी में बसा है। इस गांव के लोग हर साल मॉनसून का इंतजार करते हैं। बारिश होते ही गांव वाले निकल पड़ते हैं पहाड़ पर, जहां मोती मनिया जैसे कीमती पत्थर रास्ते में पड़े होते हैं। मैदानों में खेतों में पहाड़ से लुढ़क कर पड़े होते हैं।
3: बारिश जब पूरा बारिश होगा तो अपने आप पहाड़ी से ढल के जमीन में चला जाता है, फिसल के उसका जानवर उमर चढ़ता है खुड़ी से कहीं कहीं से कुछ कुछ से अपना धोआ के अपना निकलता है तो ही ले जाते हैं।
2: करीब 150 घरों और 1000 की आबादी वाला ये गांव आज अगर खुशहाल है तो उसकी सबसे बड़ी वजह है ये हंसराज पहाड़। कभी गांव में कच्चे घर हुआ करते थे, लेकिन अब ज्यादातर मकान पक्के हो चुके हैं और उसकी वजह यही है बरसात में हंसराज पहाड़ से मिलने वाले बेशकीमती पत्थर। जब ये पत्थर गांव वालों को मिलते हैं तब ये कौड़ी के भाव होते हैं, लेकिन जब गांव वाले इन्हें बेचते हैं तो लाखों का वारा न्यारा करा जाते हैं।
4: 1 लाख 1.5 लाख 50,000 जैसा रहा उसका कर थोड़ा सा नष्ट हो रहता है उसका कम दाम मिलता है। जो गोलाकार में अच्छा रहता है एक लाइन का रहता है उसको 1 लाख 1.5 लाख रुपया तक मिलता है।
5: पता तो मिलता है जिसे के यार लग जाता है आग तो उसी तक मिल जाता है। चमकता है ना जैसे मिल जाता है उसे जिसे लड़कन के खोता है सौ के मिलता है हमको मिलता है।
2: कुछ साल पहले जब इन बेशकीमती पत्थरों की जानकारी गांव वालों को नहीं थी तब वो लोग इन पत्थरों को महज कुछ हजार रुपए में बेच देते थे। कोई 5,000 कोई 10,000 तो कोई 20,000 रुपए में इन्हें खरीदारों को दे देता था। लेकिन जैसे जैसे इनकी चर्चा और मांग बढ़ी कीमत भी बढ़ती चली गई। गांव वालों का दावा है कि अब कुछ पत्थर 1 से 5 लाख रुपए तक में बिक चुके हैं।
3: प्राचीन युग के बहुत सा मूर्ति बुद्ध भगवान के मूर्ति भी निकलता है, अनेका तरह के मूर्ति निकलता है और मूंगा मोती मिलता है सर, उसमें पारखी आता है बोध गया राजगीर और कहीं कहीं से आता है वो खरीद के ले जाते हैं। अब हम लोग के क्या मालूम नहीं कि कितना रत्न के कितना कीमत के है, जो पैसा देता है उतने लोभ में आदमी बेच देता है लेके चला जाते हैं।
2: हंसराज पर्वत से मिलने वाले ये पत्थर अलग अलग आकार और रंग के होते हैं, कोई छोटा होता है तो कोई बड़ा, किसी का रंग काला होता है तो किसी का सफेद, कोई लाल होता है तो कोई गुलाबी, लेकिन सभी के सभी कीमती होते हैं।
6: काला उजला रहता है, रेड भी रहता है, गुलाबी जैसा भी होता है, अलग अलग प्रकार है सब।
2: बताया जाता है कि इस पर्वत से मनिया जैसे बेशकीमती पत्थर भी मिलते हैं जिनकी एंटीक वैल्यू काफी ज्यादा होती है। दावा तो यहाँ तक है कि विदेशी बाजार में मनिया पत्थर की कीमत 50 लाख रुपए से भी ज्यादा पहुँच जाती है। यहाँ इन पत्थरों का राजगीर बोधगया और राजस्थान से रत्न और आभूषण से जुड़े लोग आते हैं और गांव वालों से खरीद जाते हैं।
4: कुछ राजगीर के लोग आते हैं, कुछ बोधगया से आते हैं, उन लोगों के द्वारा खरीद लिया जाता है।
2: बताया जाता है कि इन पत्थरों का महत्व केवल आभूषण के रूप में नहीं है बल्कि इनका जुड़ाव प्राचीनता और सांस्कृतिक महत्व से भी हो सकता है। दावा तो इन पत्थरों को लेकर कई है, लेकिन एक बात तो तय है कि हंसराज पर्वत के कीमती पत्थरों ने हसरा गांव के लोगों की सुनहरी तकदीर लिख दी है। गया से पंकज कुमार के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
1: तो एक तरफ हंसराज पर्वत का हसरा गांव के लोगों के लिए समृद्धि की वरदान लेकर आया है, तो दूसरी ओर ये पर्वत धार्मिक आस्था का भी प्रतीक है। यहाँ पर भगवान भोलेनाथ का एक शिव मंदिर भी है, जिसे लेकर ग्रामीणों में आस्था गहरी है।
0: और देखिए, स्थानीय मान्यता ये है कि यहाँ शिवलिंग स्वयं प्रकट हुआ था। गांव वाले इस पहाड़ से मिलने वाले पत्थरों को भी भगवान भोलेनाथ का आशीर्वाद मानते हैं।
2: सावन के इस मौसम में जब पूरा देश आसमान से बरसती बूंदों का इंतजार गर्मी और उमस से राहत पाने के लिए करता है, हसरा गांव के लोग इस बारिश का इंतजार अपनी किस्मत बदलने के लिए करते हैं, क्योंकि इस बारिश के बाद हंसराज पहाड़ से मिला एक चमकीला पत्थर उनकी जिंदगी बदल कर रख सकता है। हसरा गांव के लोगों के लिए हंसराज पर्वत सिर्फ एक पहाड़ नहीं, बल्कि उम्मीद, आस्था और बदलती तकदीर की कहानी बन चुका है। भौगोलिक जानकारों का कहना है कि हंसराज पर्वत अत्यंत प्राचीन भूगर्भीय संरचना का हिस्सा हो सकता है। पहाड़ों के पत्थर लंबे समय तक प्राकृतिक प्रक्रिया से घिसते और गोल होते हैं, और बारिश के पानी के साथ नीचे की ओर बह सकते हैं। हंसराज पर्वत सिर्फ रत्नों की वजह से ही चर्चा में नहीं है, धार्मिक आस्था भी इस पर्वत की गहराई से जुड़ी है। यहाँ भगवान भोलेनाथ का एक शिव मंदिर भी है, जिसे लेकर ग्रामीणों में गहरी आस्था है। स्थानीय मान्यता है कि यहाँ शिवलिंग स्वयं प्रकट हुआ था। गांव वाले इस पहाड़ से मिलने वाले पत्थरों को भी भगवान भोलेनाथ का आशीर्वाद मानते हैं।
7: यहाँ आप रूपी शंकर जी का मूर्ति निकला है, जो हम लोग जन्म के पहले से ही है। 1934 में ही बना हुआ मंदिर है, हम लोग जानते हैं। हम लोग देखे उखे नहीं थे कि कैसे शंकर जी यहाँ उत्पत्ति हुए से, लेकिन पूर्वज लोग कहते थे कि जब यहाँ खुदाते थे मालिक, अथी सोनपुर के मालिक के हम लोग क्षेत्र में पढ़ते हैं, नीचू नारायण सिंह उनका नाम था, तो खुदवा के यहाँ से ले जाना चाहते थे सोनपुर, लेकिन जन बन लगवा खुदवाते थे, जैसा जलधरी है वैसा जलधरी, सात जलधरी तक शाम तक खुदाता था कि, तो अब फिर रात भर में उसी जस के तस हो जाते थे।
2: भोलेनाथ के मंदिर की ये कहानी सोनपुर के राजा से भी जुड़ी है। बताया जाता है कि पहाड़ के आसपास आज भी कुछ पुरातन राजा महाराजाओं के महलों के खंडहर और अवशेष दबे हुए हैं। गांव वालों के मुताबिक 1934 के करीब हंसराज पर्वत पर सोनपुर के राजा निरसू नारायण सिंह ने 4 फीट ऊंची शिवलिंग वाले एक भव्य शिव मंदिर का निर्माण करवाया था। सावन के महीने और पूर्णिमा पर यहाँ बड़ी संख्या में श्रद्धालु जलाभिषेक करने पहुँचते हैं।
6: हसरा पहाड़ी है, खासियत तो ऊपर में बाबा हैं, सबसे बड़ा खासियत तो वही है, 1934 से यहाँ विराजमान है।
2: स्थानीय मान्यता है कि हंसराज और इसके पास सटी सोमनाथ पहाड़ी का क्षेत्र प्राचीन काल में बेहद समृद्ध था, और हंसराज पर्वत से मिलने वाले बेशकीमती पत्थर उसी समृद्ध काल की निशानी है। गया से पंकज कुमार के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
0: और चलिए आगे बढ़ते हैं और बात कर लेते हैं उत्सव के रंगों की।

0: और देखिए, देश के अलग अलग हिस्सों में इन दिनों आस्था और लोक संस्कृति के रंग देखने को मिल रहे हैं। उत्तरकाशी के दयारा बुग्याल में करीब 11,000 फीट की ऊंचाई पर बटर फेस्टिवल में देव डोली के साथ लोक परंपराओं की झलक दिखाई दी। दूध दही मक्खन से यहां होली खेली गई।
1: राधा कृष्ण की जोड़ी के साथ रासों तांदी नृत्य ने माहौल को और ज्यादा खास बना दिया। उधर मुंबई में गणेशोत्सव की तैयारियां जोर पकड़ने लगी हैं। कहीं पर गणपति बप्पा की प्रतिमाओं को आकार दिया जा रहा है तो कहीं बप्पा का शहर में आगमन शुरू हो चुका है। गणपति बप्पा मोरया के जयकारों के साथ माया नगरी उत्सव के रंग में रंगने लगी है।
0: और देखिए, महाराष्ट्र के सह्याद्री की पहाड़ियों के बीच में बसे भीमाशंकर ज्योतिर्लिंग में सावन की भक्ति अपने चरम पर है। जंगलों से घिरे इस धाम में बादल और कोहरे के बीच श्रद्धालु दूर दूर से पहुंचकर भोलेनाथ के दर्शन करते हैं। यानी देश के अलग अलग कोनों में मौसम भले ही अलग हो, लेकिन माहौल एक जैसा आपको नजर आएगा आस्था, उत्सव और भक्ति का।

0: देश में लोक आस्था और परंपरा से जुड़े कई ऐसे पर्व त्योहार हैं जिनमें धार्मिक विश्वास के साथ साथ स्थानीय संस्कृति, प्रकृति, कृषि और सामुदायिक जीवन की गहरी छाप दिखाई देती है और ये उसी की दिव्य छटा है। ये तस्वीरें उत्तराखंड के उत्तरकाशी के दयार बुग्याल में धूमधाम से मनाए गए अंधूरी उत्सव की है जिसे बटर फेस्टिवल के नाम से भी जाना जाता है। समुद्र तल से करीब 11,000 फीट की ऊंचाई पर 28 वर्ग किलोमीटर के इलाके में फैले बुग्याल यानी घास के मैदान में ढोल डमाओं की थाप पर नृत्य करते हुए लोग इस उत्सव के रंग में पूरी तरह सराबोर नजर आए। दयारा पर्यटन विकास समिति की ओर से आयोजित इस उत्सव में रैथल समेत कई गांवों के लोग अपने आराध्य समेश्वर देवता की देव डोली के साथ दयार बुग्याल पहुंचे। धार्मिक अनुष्ठान पूरा होने के बाद राधा कृष्ण के रूप में मौजूद जोड़ी ने मक्खन से भरी हांडी फोड़ी और उसके साथ ही उत्सव का रंग गहराता चला गया। लोग एक दूसरे के चेहरों पर ताजा मक्खन लगाने के साथ ही मट्ठा और दूध की होली खेलने में मशगूल हो गए। इस दौरान पारंपरिक लोकगीत, नृत्य और ढोल दमाओं की थाप पर जमकर जश्न मनाया गया। पारंपरिक लोक वेशभूषा में सभी राधा कृष्ण के रूप में मौजूद जोड़ी के साथ रासौर तांदी नृत्य करते दिखे। बटर फेस्टिवल केवल एक उत्सव भर नहीं है बल्कि पशुपालन पर निर्भर पहाड़ी समाज के लिए अपने पशुधन की खुशहाली और प्रकृति के प्रति आभार प्रकट करने का अवसर भी है। दरअसल रैथल के ग्रामीण गर्मी की दस्तक के साथ ही अपने मवेशियों के साथ दयार बुग्याल समेत गोई चिलापड़ा में बनी अपनी छावनियों में ग्रीष्मकालीन प्रवास के लिए पहुंच जाते हैं। ऊंचे बुग्यालों में उगने वाली औषधि गुणों से भरपूर घास और अनुकूल वातावरण का बेहतर असर दुआऊ पशुओं के दूध उत्पादन पर भी होता है। ऐसे में ऊंचाई वाले इलाकों में सर्दियों की दस्तक से पहले ग्रीष्मकालीन प्रवास में वापसी करते हैं। उससे पहले अपनी और अपने मवेशियों की रक्षा के लिए वो प्रकृति का आभार जताने के लिए ये अनूठा पर्व मनाते हैं। उत्तरकाशी से ओमकार बहुगुणा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
1: सावन के महीने में पुणे के भीमा शंकर ज्योतिर्लिंग मंदिर में हजारों श्रद्धालु दर्शन और भगवान शिव का आशीर्वाद लेने पहुंचते हैं। घने कोहरे और बारिश के बीच में भक्तों की भारी भीड़ ने मंदिर परिसर को भक्तिमय बना दिया। घने जंगलों के बीच में बसे इस मंदिर का सावन के महीने में अद्भुत सौंदर्य भी दिखाई दे रहा है।

0: सावन के पावन माह में भगवान भोलेनाथ का दर्शन ही शिव भक्तों को असीम आनंद की अनुभूति देता है। इस पूरे महीने शिवालयों में श्रद्धालुओं की भीड़ लगी रहती है और ज्योतिर्लिंग मंदिरों में तो आस्था का समंदर उमड़ पड़ता है। महाराष्ट्र के पुणे में सह्याद्री पर्वतमाला के घने जंगलों के बीच भीमा शंकर ज्योतिर्लिंग मंदिर में भी सावन के महीने में भक्तों का हुजूम दिख रहा है। दूर दूर से भक्त यहाँ भगवान के दर्शन के लिए आ रहे हैं। दर्शन के लिए श्रद्धालुओं की लंबी कतार दिख रही है। घंटों इंतजार के बाद भक्तों को भगवान भीमा शंकर के दर्शन का सौभाग्य मिल रहा है।
1: मुंबई से आए हैं, मैं मुंबई से आया हूं और मैं 31 साल से हर साल आता हूं बाबा के दरबार में श्रावण मास में, और सोमवार को हम बाबा का अभिषेक करते हैं, पूजा करते हैं, अर्चना करते हैं, सहपरिवार आते हैं और बाबा का प्रार्थना ये करते हैं कि बाबा हमको बार बार बुला। और यहाँ पे बहुत अच्छी प्रशासनिक व्यवस्था भी अच्छी है।
2: हम लोग, हमारा ग्रुप आ रहा है यहाँ पे। कितने लोग हैं आपके साथ? हम लोगों का एक्चुअली 10 लोगों, 10 से 12 लोगों का ग्रुप है। आज इस बार 4 लोग हम लोग हैं साथ।
3: हम गुजरात से हैं और भगवान से तो क्या मांगे, भगवान ने सब कुछ दे दिया है हमें। अच्छा ही।
2: कितने साल से आते हैं आप?
3: फर्स्ट टाइम आए हैं हम वहीं से, राजकोट से, गुजरात से।
2: और पहली बार आई?
3: दर्शन पहली बार हुए।
2: दर्शन हुआ है आपका? क्या मांगा भगवान से?
3: भगवान से कुछ मांगना चाहिए।
2: तो ये सब लोग आते मांगने आते हैं ना?
3: सब तो नहीं आते होंगे ना, कोई हमारे जैसा भी नहीं होगा जो उसको मांगना नहीं पड़ता।
0: भारी बारिश और घने कोहरे के बावजूद भीमा शंकर मंदिर पहुंचने वाले भक्तों के उत्साह में कोई कमी नहीं है। मॉनसून के सीजन में लोग बारिश से बचने का इंतजाम करके मंदिर पहुंच रहे हैं। घने जंगलों के बीच बसे इस ज्योतिर्लिंग मंदिर तक पहुंचने के रास्ते को भी कुदरत ने अपने अद्भुत सौंदर्य से निखारा है। घने जंगलों के बीच बसे भीमा शंकर ज्योतिर्लिंग मंदिर में भगवान चांदी के शिवलिंग स्वरूप में विराजमान है। भीमा नदी के तट पर बने इस ज्योतिर्लिंग मंदिर का पुराणों में भी जिक्र है।
4: ब्रह्मदेव ने कमल पुष्प से वहां स्थापित किया पार्वती को, और त्रिपुर सुंदरी पार्वती और शिव जी दोनों मिलकर अर्धनारीश्वर रूप लेके कार्तिक शुद्ध पूनम के दिन शिव जी ने बड़ा रूप लिया, भीम रूप। भीम रूप ने ब्रह्मदेव, विष्णु, इंद्र, चंद्र, पार्वती ऐसे 5 भगवान एक गट्ठा होके मेन अर्धनारीश्वर रूप लेके कार्तिक शुद्ध पूनम के दिन शिव जी ने त्रिपुरासुर का संहार किया। मारने के बाद जो शरीर में पसीना आया तो इधर रूप छोड़ने के टाइम में देव दानव ऋषि मुनि थे, उन्हें प्रार्थना करी कि एक क्षेत्र का उद्धार करो, आप आगे भी रहे, आगे भी रहे, पहले भी रहते रहे, आगे भी रहेंगे। तो भगवान बोले मैं बड़ा रूप लिया इसलिए भीम शंकर नाम से आ रहूंगा।
0: इस मंदिर में दर्शन के लिए आने वाले श्रद्धालुओं की सहूलियत के लिए भी पर्याप्त इंतजाम किए गए हैं। मंदिर तक पहुंचने के 7 किलोमीटर के रास्ते पर 4 पार्किंग स्थल बनाए गए हैं। पार्किंग से मंदिर तक जाने के लिए बसों का इंतजाम किया गया है। भारी बारिश और घने कोहरे के कारण निजी वाहनों की पार्किंग मंदिर से दूर रखी गई है। मंदिर तक पहुंचने के लिए कई जिलों में बसों की सुविधा भी दी गई है। भीमा शंकर ज्योतिर्लिंग पहाड़ पर बने घने जंगलों के बीच बसा है। सावन के महीने में ज्योतिर्लिंग के आसपास हरे भरे पेड़ पौधों से पूरे इलाके की रौनक बढ़ जाती है। शहरी भीड़ भाड़ से दूर ये मंदिर एक अद्भुत शांति का एहसास कराता है, और इस मौसम में भगवान भीमा शंकर के दर्शन पाने वाला हर भक्त खुद को धन्य महसूस करता है। पुणे से रायचंद शिंदे के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
5: मुंबई में गणेश उत्सव की छटा अभी से बिखरनी शुरू हो गई है। यहां पर एक बड़े गणेश मंडल के पंडाल में धूमधाम से 7 बप्पा का प्रतिमा लाई गई, और इस दौरान भक्तों का जबरदस्त उत्साह देखने को मिला। इस अवसर पर पूरा रास्ता भक्तों से भरा नजर आया, जो कि गणपति की भव्य प्रतिमा के साथ पूरे भक्तिभाव में मग्न होकर चला गया।

गणेशोत्सव शुरू होने में भले ही अभी कई दिनों का वक्त बचा हो, लेकिन इस बार भी उत्सव उतना ही भव्य होगा, उसका अंदाजा इन तस्वीरों को देखकर लगाया जा सकता है। महाराष्ट्र में विशेषकर गणेशोत्सव बहुत ही बड़े स्तर पर और भव्य रूप से मनाया जाता है और इसकी झलक मुंबई में दिखनी शुरू हो गई है। चौदह सितंबर से शुरू होने वाले गणेशोत्सव को लेकर कारखानों से गणपति प्रतिमाओं का पंडाल में पहुंचना शुरू हो गया है। काला चौकी इलाके में प्रसिद्ध और ऐतिहासिक सार्वजनिक गणेश मंडल की गणेश प्रतिमा के आगमन के अवसर पर भक्तों का जोश देखने वाला रहा। ढोल ताशों की गड़गड़ाहट के बीच जब इस विशाल और भव्य प्रतिमा को पंडाल में ले जाया जा रहा था तो रास्ते में हजारों की संख्या में भक्त पूरे उत्साह के साथ चल रहे थे। रास्ते में श्रद्धालु डांस और लेजिम करते हुए भी दिखाई पड़ रहे थे। काला चौकी के इस महागणपति के आगमन में एक ऐसी दिव्य छटा बिखर रही थी जो गणेश उत्सव को लेकर भक्तों की खुशी को बयां कर रही थी।

0: पंडाल में 22 फीट ऊंची इस भव्य प्रतिमा के विराजमान होने पर यहां भी भक्त दर्शन कर बप्पा की जयकारे करते दिखे।
1: पंडाल अपने बप्पा को अपनी जगह पर लेकर आना शुरू हो चुके हैं। फिलहाल इस समय मौजूद हूं साउथ मुंबई के काला चौकी के महागणपति के दरबार में और आप देखें बहुत ही सुंदर भव्य तरीके से बप्पा को यहां पर विराजमान कर दिया गया है। आपको बताएं कि महालक्ष्मी के अवतार में गणपति बप्पा को ले आया गया है। बप्पा की 22 फीट की ऊंचाई है, ट्रॉली से सिंह पर बकायदा बप्पा सवार हैं और खास बात यह है कि जो ट्रॉली रखी गई है जिस जगह पे उसके नीचे बहुत ही सुंदर तरीके से रंगोली भी निकाली गई है, बनाई गई है, ठीक उसके ऊपर बप्पा को विराजमान करा गया है। और कुछ घंटों पहले बहुत सारे तस्वीरें, बहुत सारे वीडियोस सोशल मीडिया पर बप्पा के आगमन को लेकर के वायरल हुए थे, जिसमें हजारों की तादाद में जो गणेश भक्त हैं वो जुटे हुए थे और हर कोई बप्पा का स्वागत कर रहा था।
0: अब यहाँ प्रतिमा की सजावट का काम होगा और 14 सितंबर से आस्था के उत्सव का एक शानदार नजारा यहाँ देखने को मिलेगा।
2: हर साल स्वरूप महागणपति का बदलता है, कभी महागणपति पांडुरंग विट्ठल के रूप में आते हैं, कभी सरस्वती के रूप में आते हैं, कभी भोले शंकर के रूप में आते हैं, तो कभी कान्हा नटखट बन के आते हैं। ये साल महालक्ष्मी का रूप, यानी महालक्ष्मी यानी क्या, स्थैर्य, शांति, संपत्ति, जो आजकल हर एक को आशीर्वाद के रूप में महागणपति देने आ रहे आ गए हैं, और इसी का जो हमारी झांकी बनेगी, डेकोरेशन बनेगा, वो भी उसी का एक कोल्हापुर के महालक्ष्मी के मंदिर का जो कंपोनेंट्स है, जो छवि है, वही आपको देखने को मिलेगी।
0: गणेशोत्सव से पहले खेतवाड़ी में उत्सव का पूरा वातावरण बनने लगा है। इस काला चौकी का महागणपति के आसपास भी भक्तों को लाल बाग का राजा जैसी कई प्रसिद्ध बड़े गणेश पंडाल में बापा के दर्शन का सौभाग्य मिलता है। मुंबई से धर्मेंद्र दुबे की रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
3: तमिलनाडु की तस्वीरें आपको दिखाते हैं। तमिलनाडु के त्रिचेरापल्ली में गणपति बप्पा के स्वागत की तैयारियां शुरू हो गई हैं। गणेशोत्सव के लिए कलाकार दिन रात बप्पा की प्रतिमाओं को आकार देने में जुटे हैं। कहीं मिट्टी को आकार दिया जा रहा है तो कहीं इन प्रतिमाओं में रंग भरकर इन्हें अंतिम रूप दिया जा रहा है। कलाकारों के हाथों की मेहनत से गणपति के अलग अलग रूपों वाली प्रतिमाएं तैयार हो रही हैं और खास बात यह है कि त्रिचेरापल्ली में तैयार होने वाली इन प्रतिमाओं की मांग सिर्फ देश में नहीं बल्कि विदेशों तक है। यानी बप्पा के स्वागत की तैयारी सिर्फ एक त्योहार नहीं बल्कि कलाकारों की कला, मेहनत और आस्था का उत्सव भी है।
4: यहां वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का, आप कहीं मत जाएगा। ब्रेक के बाद देखिए गीता श्लोक में बने वर्ल्ड रिकॉर्ड।
5: सास बहू और बेटिया में आज देखिए सीरियल्स की दुनिया में ट्विस्ट का तड़का। दोपहर 1:28 से 3 बजे तक सिर्फ सास बहू और बेटिया में।

0: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
1: और दुर्भाग्य कहता है
2: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
3: अविश्वास में विश्वास बसता है,
0: जो हमें अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
4: गुड न्यूज टुडे।
0: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे, देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे में।

0: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को।
1: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाएं स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा प्यार से परोसा।
2: पूरे उत्साह के साथ जारी है बाबा बूढ़ा अमरनाथ यात्रा। 1938 भक्तों का दूसरा जत्था रवाना, मंडी बेस कैंप पर हुई इनकी भव्य तैयारी और भव्य स्वागत की तैयारी। देशभर में गणेश उत्सव की तैयारियां तेज, तमिलनाडु के तिरुचिरापल्ली में बनाई जा रही इको फ्रेंडली गणेश जी की मूर्ति, पर्यावरण संरक्षण का दिया जा रहा है संदेश। एनएचएआई ने 121 टोल प्लाजा पर शुरू की ऑनलाइन फास्टैग लोकल पास सुविधा, राजमार्ग यात्रा मोबाइल ऐप के जरिए घर बैठे लिया जा सकता है अब ये पास। यूपी जापान इन्वेस्टमेंट मीट 2026 से राज्य को मिले विकास के पंख, बनेगी 500 एकड़ की जापानी सिटी, 10,000 युवाओं को मिलेगा रोजगार। धनबाद की प्रांजल और आन्या मित्तल को मिला गिनीज गोल्ड मेडल, ऑनलाइन श्लोकों का पाठ कर बनाया ये रिकॉर्ड, परिवार में खुशी की लहर।

0: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम।
1: चलिए अब बात गीता श्लोक के वर्ल्ड रिकॉर्ड की कर लेते हैं। झारखंड में धनबाद की प्रांजल और आन्या मित्तल ने गिनेस गोल्ड मेडल हासिल किया है। उन्होंने ऑनलाइन श्लोकों का पाठ कर ये रिकॉर्ड अपने नाम किया है।
2: इससे परिवार में खुशी की लहर है। प्रांजल मित्तल और आन्या मित्तल ने श्रीमद् भगवद गीता के श्लोकों का नियमित पाठ करते हुए विश्व स्तर पर अपनी पहचान कायम की है। दोनों बहनों की इस उपलब्धि को गिनेस वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज किया गया। इस खास सफलता के लिए उन्हें आधिकारिक प्रमाण पत्र के साथ गोल्ड मेडल भी प्रदान किया गया है। इस उपलब्धि के पीछे परिवार के संस्कार और उनकी मां प्रीति अग्रवाल की अहम भूमिका भी रही है।
1: और देखिए, रिकॉर्ड बनाने वाली प्रांजल मित्तल ने बताया कि उन्होंने श्रीमद् भगवत गीता के 15वें अध्याय का पाठ करीब 5 मिनट में पूरा किया। वहीं आन्या मित्तल बताती हैं कि गीता का पाठ उनके लिए कोई नई चीज नहीं, उन्होंने बचपन से ही अपनी माँ से गीता के श्लोक सीखना शुरू कर दिया था।
3: न तद्भासयते सूर्यो न शशांको न पावकः। योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुन संवादे पुरुषोत्तमयोगो नाम पञ्चदशोऽध्यायः। ओम श्रीकृष्णार्पणमस्तु। श्रीमद्भगवद्गीता ऊर्ध्वमूलमदः शाखम् अश्वत्थम् प्राहुरव्ययम् चास्तस्य शाखा गुणप्रविद्धा विषयप्रदः।
4: मैंने जो भी सीखा सब कुछ मेरी माँ और मेरी गीता और गीता परिवार के द्वारा ही सीखा। गीता परिवार से ही मैंने जो भी 18 अध्याय मैंने पढ़ना सीखा वो सब कुछ गीता परिवार के से ही सीखा। उन्हें वो उनके ऑनलाइन क्लासेस से मैं गीता पढ़ी, मैंने उसे समझा, मैंने उसे याद किया।
5: गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में अपना नाम दर्ज कराने के लिए 15वां अध्याय पढ़ा करीब 5 मिनट तक। उसमें करीब 7,000 लोगों ने 70,000 लोगों ने रजिस्ट्रेशन कराया था, जिसमें से 30,000 लोगों ने गीता का एक साथ पाठ किया था और 30,000 लोगों में से 8,277 लोगों ने सबसे अच्छा उच्चारण करके पाठ किया, जिनका नाम गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में आया है।
6: आज आपके सामने वो बिना देखे मुझे पता है पूरी गीता आपके साथ पढ़ सकते हैं। बहुत खुशी होते क्योंकि आज 100 लोग खड़े होंगे तो मेरे बच्चे अलग ही दिखाई देंगे।
1: देखिए, परिवार के लिए ये प्राउड करने वाली बात है। जैसे कि माँ को कहते हुए आपने सुना कि मेरे बच्चे बाकी बच्चों से अलग नजर आएंगे अगर वो भीड़ में खड़े होते हैं। बचपन से ही ये शिक्षा उनको दी गई है, जिसका रिजल्ट आज सबके सामने है। ये दोनों बेटियाँ बचपन से ही भगवद गीता पढ़ती आई हैं, उसके श्लोक कंठस्थ हैं इनको, और बचपन से ही अपनी माँ से गीता के श्लोक सीखना उन्होंने शुरू कर दिया था। और आन्या मित्तल का ये कहना है कि गीता का पाठ उनके लिए करना कोई नई चीज बिल्कुल नहीं है। तो देखिए, रिकॉर्ड बनाने वाली प्रांजल मित्तल ने यह भी बताया है कि उन्होंने श्रीमद् भगवद गीता के 15वें अध्याय का पाठ जो है वो करीब 5 मिनट में ही पूरा कर लिया।
2: दिल्ली में एक सरकारी स्कूल की छात्राओं ने चॉकलेट का एक ऐसा हेल्दी विकल्प तैयार किया है। दरअसल इस चॉकलेट को सीजनल फ्रूट और ड्राई फ्रूट की मदद से तैयार किया गया है। अब ये छात्राएं अपने इस प्रोडक्ट की मार्केटिंग के लिए स्टार्टअप शुरू करने की तैयारी में है।
7: इन चॉकलेट्स में स्वाद के साथ छिपा है सेहत का खजाना। दिल्ली में अशोक नगर सर्वोदय कन्या विद्यालय की इन छात्राओं ने डार्क चॉकलेट को सीजनल फ्रूट और ड्राई फ्रूट्स के साथ मिलाकर चॉकलेट का एक सेहतमंद विकल्प तैयार कर लिया है।
8: ये चॉकलेट जो है वो फ्रूट चॉकलेट्स है। पेरेंट्स को किसी तरीके का डर नहीं होना चाहिए जब उनके छोटे बच्चे जो है वो चॉकलेट्स उनसे मांगे और वो देने से डरे, लेकिन ये चॉकलेट एक ऐसी है जो आप इनको इजीली जो है वो दे सकते हैं, खिला सकते हैं, इवन पेरेंट्स भी जो है एंजॉय कर सकते हैं। और ये जो चॉकलेट्स है बनाया है अगेन सर्वोदय कन्या विद्यालय जो कि ईस्ट ऑफ लोनी में है, इन्हीं की छात्राओं ने और ये चार छात्राओं ने मिलकर ऐसी एक चॉकलेट्स बनाई।
9: मेन प्रोडक्ट जो था वो था फ्रूट स्क्यूअर्स। उसमें हमने फ्रूट्स को चॉकलेट के साथ कोट करा और वो थी डार्क चॉकलेट, तो वो हमें हेल्दी है वो और टेस्ट भी अच्छा. उसमें हमने ड्राई फ्रूट्स नट्स ऐड करे और अब जो हमने थोड़ा उसको इनोवेटिव किया है.
7: ये फ्रूट चॉकलेट खाने में जितनी टेस्टी है उतनी ही हेल्दी भी. इन छात्राओं ने बकायदा रिसर्च के बाद ही इस प्रोडक्ट को लॉन्च किया है. खास बात यह है कि इन्होंने अपने इस प्रोडक्ट को सिर्फ स्कूल प्रोजेक्ट तक सीमित नहीं रखा बल्कि इसे एक स्टार्टअप बिजनेस आइडिया के तौर पर भी विकसित करने की दिशा में काम कर रही हैं।
10: स्मॉल वाला बॉक्स अभी हम दे रहे हैं तो मैम इसका कॉस्ट 20 रुपीज हम रख रहे हैं जिसके अंदर हमें प्रॉफिट 10 रुपीज का और है, ऑलमोस्ट 50% हम कह सकते हैं. मैम इसमें हम आगे और इनोवेशन करने वाले हैं. हम आगे रॉ मटेरियल जो है स्टॉक में खरीदा करेंगे. हम जो सामान है उसको देखेंगे कि हम पहले से प्रिपेयर करके रख पाएं बॉक्सेस वगैरह, जिससे मैम जो हमारा कॉस्ट है वो और कम आएगा और प्रॉफिट ज्यादा हो जाएगा हमारा.
8: तो आप देख सकते हैं कि बच्चों ने किस तरीके से जो है पूरी रिसर्च करी और वो रिसर्च जो है मैं आपको दिखा रही हूँ कि कहते हैं ना स्कूल के बच्चों ने करा है तो उसी स्टाइल में आपको चीजें दिखेगा कि कवर भी बच्चों ने खुद हैंडमेड है, सारी चीजें जो है वो खुद बनाई है और उसके बाद इनका रिसर्च वर्क जो है वो शुरू होता है कि किस तरीके से इनका फाइनल प्रोडक्ट है वो इन्होंने पैकेजिंग के साथ जो है वो यहाँ दिखाने की कोशिश करी है.
7: दिल्ली के एक सरकारी स्कूल के इन छात्राओं ने चॉकलेट को सिर्फ स्वाद से जोड़कर नहीं देखा, इन्होंने चॉकलेट के स्वाद के साथ इनोवेशन, हेल्थ और स्टार्टअप आइडिया को भी जोड़ने की कोशिश की है. ये नई सोच ही अब इन चारों छात्राओं को एक नई पहचान भी दिला रही है. मनीषा लड्डा, गुड न्यूज टुडे.
2: बात कर लेते हैं नोएडा पुलिस की एक ऐसी पहल की जो प्रशंसा के लायक है. इस साल 9 जून को लॉन्च किए गए ऑपरेशन अपराज्य के तहत स्पेशल बच्चों को आत्मनिर्भर बनने का मंत्र दिया जा रहा है ताकि वो जिंदगी में हुनरमंद बन सके. जिन बच्चों को बातचीत, किसी चीज को समझने और सीखने या फिर लिखने में तकलीफ होती है उन्हें ऑपरेशन अपराज्य के तहत हैंडमेड ज्वेलरी यानी कि हाथों से बनाए जाने वाले आभूषणों को तैयार करने की ट्रेनिंग दी जा रही है ताकि आगे चलकर वो स्वावलंबी बन सके.
11: आम बच्चों की तरह ये बच्चे भी सम्मान से जीने का हुनर सीख रहे हैं. उन्हें अपने पैरों पर खड़ा होने का कौशल सिखाया जा रहा है ताकि ये आत्मनिर्भर हो सके. दूसरे बच्चों की तुलना में इन बच्चों के सोचने, समझने, संवाद करने और दूसरों से मेलजोल बढ़ाने का तरीका कुछ अलग है. कम उम्र से ही इन्हें अपने अस्तित्व को समझने की जद्दोजहद के बीच संतुलन बनाने की कला सिखाई जा रही है. ये स्पेशल बच्चे अपने बुनियादी जरूरतों के लिए दूसरों पर निर्भर ना रहें, इसके लिए उत्तर प्रदेश के नोएडा की पुलिस ने इन्हें आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में एक अनोखी पहल शुरू की है. जिन बच्चों को बातचीत, किसी चीज को समझने और सीखने या लिखने में तकलीफ होती है उन्हें ऑपरेशन अपराजय के तहत हैंडमेड ज्वेलरी यानी हाथों से बनाए जाने वाले आभूषणों को बनाने की ट्रेनिंग दी जा रही है. ऑटिज्म, ADHD, सेरेब्रल प्लेसी या डाउन सिंड्रोम से प्रभावित इन बच्चों को स्वावलंबी बनाने के लिए नोएडा पुलिस ने इंडस्ट्री से हाथ मिलाया है ताकि बच्चों को हुनरमंद बनाने के अलावा आगे चलकर रोजगार के अच्छे अवसर भी मिल सके.
12: ये बच्चे ऑटिस्टिक हैं, इनके लिए सब कुछ इतना आसान नहीं होता, समाज से इन्हें बराबर जोड़े रखना भी आसान नहीं होता, लेकिन इसमें अब कई लोग आगे आ रहे हैं. आज इन बच्चों को लेकर एक नई शुरुआत हुई है. आप तमाम सारी चीज़ें देख रहे हैं. इन चीज़ों के ज़रिए बच्चे क्या कुछ नया बना सकते हैं, क्या कुछ नया सीख सकते हैं, उसकी एक कोशिश यहाँ पर की जा रही है. तरह तरह की चीज़ें, चाहे वो ब्रेसलेट हो या दूसरी चीज़ें हो, वो इन बच्चों को आज यहाँ पर बनाना सिखाया जा रहा है. हैंडीक्राफ्ट से इनको जोड़ने की कोशिश की जा रही है ताकि ये बच्चे जब थोड़ा बड़े हों तो समाज में अलग थलग महसूस ना करें या खुद अपने लिए कोई काम कर सके, कोई काम चुन सके.
11: आमतौर पर आर्टिफिशियल ज्वेलरी पीतल, तांबा, जमक, एल्यूमिनियम या मिले जुली धातुओं से बनाई जाती है, लेकिन ये बच्चे कांच, लकड़ी या प्लास्टिक के रंग बिरंगे मोतियों को नायलॉन, सूती और मोम वाले धागे में पिरोकर आभूषण बनाना सीख रहे हैं. इस तरह इन बेहद खास बच्चों को कुछ अलग सीखने के साथ साथ अपनी प्रतिभा दिखाने का भी मौका मिल रहा है.
12: क्या इन सब चीजों से ये रास्ता खुल सकता है कि बच्चे अपने पैरों पर खड़े हो पाए?
9: बिल्कुल हो सकते हैं। इसमें ऐसा भी नहीं है कि अगर ऑटिज्म का बच्चा ये फाइनेंशियली किसी और के ऊपर डिपेंड रहे हैं। जैसे हम बच्चों को अपना स्किल ट्रेनिंग प्रोग्राम सिखा रहे हैं, आज जैसे बच्चे हाथ का काम सीखेंगे, ज्वेलरी मेकिंग सीखेंगे, आपके सामने इस बच्चे ने भी ब्रेसलेट बना दिया है, तो क्यों ना हम इसी बच्चे को इसी लाइन में ट्रेन कर दे, सो देट आने वाले 4 या 5 साल के बाद बच्चा कहीं ना कहीं एक जॉब कर सके।
11: साफ है कि ऑटिज्म और डाउन सिंड्रोम से प्रभावित बच्चों के लिए ये सिर्फ एक ट्रेनिंग नहीं बल्कि आत्मनिर्भर होने की दिशा में उठाया गया एक बड़ा कदम है। ज्वेलरी इंडस्ट्री से जुड़े विशेषज्ञों की देखरेख में इन बच्चों की रचनात्मकता एक खास हुनर में बदल रही है।
13: हम लोग पहले से भी गांव की औरतों को हुनर जो है देते आए हैं और उनको काम जो है सिखाते हैं, तो इसी सोच के साथ हमने ये सोचा कि अगर हम उन औरतों को सिखा सकते हैं तो क्यों ना इन विशेष बच्चों के लिए कुछ किया जाए। और चूंकि ऑपरेशन अपराजय के संज्ञान में आते ही हमारी सोच को बल जो है मिला, हमारी सारी टीम व फ्यूचर में फाउंडेशन जो अभय फाउंडेशन है जिनके ये बच्चे हैं वहाँ पर ही जाएगी, समय समय पर महीने में 2 बार 3 बार उनको ट्रेनिंग देगी।
11: नोएडा पुलिस की इस पहल का मकसद इन बच्चों को सिर्फ सहानुभूति देना नहीं बल्कि उन्हें हुनर, सम्मान और आत्मनिर्भरता का अवसर देना है। शुरुआत भले ही 25 से 30 बच्चों से हुई हो लेकिन जल्दी ही ये मुहिम बड़ी हो जाएगी। संदेश साफ है कि मौका मिले तो खास बच्चे भी अपनी अलग पहचान बना सकते हैं।
14: देखिए ऑपरेशन अपराजय जो हम लोगों ने लॉन्च किया था स्पेशल नीड्स के बच्चों को, एक उनकी सुविधा के लिए, उनके सारे होल राउंड सपोर्ट के लिए, उनके सेफ एनवायरनमेंट को बूस्ट अप करने के लिए जो एक हम लोगों ने माहौल तैयार किया था, उसमें हमारे पास बहुत सारी ऐसी संस्थाएं जो इस दिशा में काम कर रही हैं, साथ में एक प्लेटफॉर्म पर आती जा रही हैं। आज यहाँ पर आर्या फैशन में हम लोग एकत्र हुए हैं जिसमें इन बच्चों की स्पेशल नीड्स को देखते हुए इनकी मोटर कोऑर्डिनेशन, इनकी डेक्सटेरिटी को बढ़ाने के कुछ हम लोग इनकी ट्रेनिंग का उपाय शुरू कर रहे हैं। जो बच्चे ऑफ एज हैं जिनको इस माहौल से जोड़ा जा सकता है ताकि आगे चलकर वो इस स्किल को, इस कौशल को उठाकर अपने जीवन यापन का कोई रास्ता खोज सके, उस दिशा में आर्या फैशन के द्वारा अच्छी पहल की गई है जिसका हम स्वागत करते हैं।
11: भारत में हर 68 में से एक बच्चा ऑटिज्म का शिकार है। ऑटिज्म से पीड़ित बच्चों की इतनी बड़ी संख्या होने के बावजूद इसे लेकर देश और समाज में जागरूकता कम है। न्यूरो डेवलपमेंटल समस्या से जूझ रहे बच्चों के साथ साथ उनके परिवारों को जीवन यापन में सामाजिक स्वीकार्यता की कमी भी झेलनी पड़ती है। स्कूलों में समावेशी शिक्षा का अभाव और भविष्य में आजीविका की अनिश्चितता जैसी गंभीर समस्याओं का भी सामना करना पड़ता है। ऐसे में किसी काम को अच्छे से सीखना और कम समय में करने की योग्यता या हुनर इन्हें आगे चलकर आत्मनिर्भर ही बनाएगी। नोएडा से मनीष चौरसिया के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
2: और चलिए इसी के साथ यहाँ पर रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। खबरें लगातार जारी हैं, आप देखते रहिए जी।
0: गुड न्यूज चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोग।
15: सास बहू और बेटिया में आज देखिए सीरियल्स की दुनिया में ट्विस्ट का तड़का। दोपहर 1:28 से 3 बजे तक सिर्फ सास बहू और बेटिया में।
0: गुड न्यूज चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
16: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।

0: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
1: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
2: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।
3: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं, तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती हैं, तो कुछ दिखाती हैं विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है, तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं, तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
0: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है।
4: सोचिए जो वेस्ट मटेरियल सिंगल यूज प्लास्टिक से भी ज्यादा खतरनाक माना जाता है, वही किसी के लिए करोड़ों के बिजनेस का जरिया बन सकता है। इस नामुमकिन को मुमकिन कर दिखाया है राजस्थान के पाली के रहने वाले दिनेश ने।
5: देखिए, इन्होंने वेस्ट थर्मोकोल से पर्यावरण को बचाने का अनोखा बीड़ा उठाया। दिनेश अपने आसपास के गांव से वेस्ट थर्मोकोल इकट्ठा करते हैं, घरेलू बिजली पर चलने वाले एक पोर्टेबल मशीन से उसे पिघलाकर ठोस बट्टों का रूप दिया जाता है, जिसके बाद ये बट्टे उन कंपनियों को बेच दिए जाते हैं जो फोटो फ्रेम, खिलौने और गिफ्ट आइटम्स बनाती हैं। यानी जो फोटो फ्रेम पहले पेड़ों की लकड़ी काटकर बनते थे, अब वो इस रिसाइकल थर्मोकोल से बनाए जा रहे हैं। आज दिनेश के स्टार्टअप का 1 करोड़ से ज्यादा का टर्नओवर है। गांव के 8 से 10 लोगों को सीधे तौर पर रोजगार मिला है, जबकि 25 से ज्यादा लोग अप्रत्यक्ष रूप से इससे अपनी आजीविका भी कमा रहे हैं।
6: थर्मोकोल एक तरह का प्लास्टिक है जो अपना सिंगल यूज प्लास्टिक से भी ज्यादा हार्मफुल है, क्योंकि ये तो कहीं दबता नहीं है, उड़ता रहता है, इधर उधर बिखरता रहता है, और इसके जो छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं वो भी कहीं ना कहीं पर्यावरण को भी प्रदूषित कर रहे हैं। पर्यावरण को दूषित करने के साथ में जानवरों के लिए भी ज्यादा हार्मफुल है, उनके पेट में भी चले जाते हैं तो भी वो ज्यादा हार्मफुल है। तो इसके लिए मेरा ये सोचना था कि हम जिस टाइप से आजकल सिंगल यूज प्लास्टिक का, MLP का या दूसरे प्लास्टिक को रिसाइकल कर रहे हैं, इसी टाइप से इसको भी रिसाइकल करके काम में लिया जाए तो हमारे लिए बेटर होगा, आने वाले फ्यूचर के लिए बढ़िया होगा। तो इसकी जब रिसर्च की मैंने, तो रिसर्च से पाया कि इस थर्माकोल का उपयोग अपन कोई डेकोरेटिव आइटम में कर सकते हैं। तो उसकी रिसर्च से हमने एक मशीन डेवलप की जो मोबाइल मशीन है, छोटी मशीन है, कहीं पे भी कैरी करके लेके जा सकते हैं और इजीली इसको ट्रांसपोर्ट कर सकते हैं और घरेलू लाइट में चल जाती है। उस थर्माकोल के हम छोटे छोटे टुकड़े करके उस मशीन में गला देते हैं, गला के लम्स तैयार हो जाता है। एक तरह से टुकड़े, पत्थर के टुकड़े होते हैं, वैसा कड़क सॉलिड लम्स तैयार हो जाता है। उस लम्स को हम लोग आगे रिसेल करते हैं रिसाइकलिंग कंपनी को, वो रिसाइकलिंग कंपनी इसको थोड़ा सा केमिकल के थ्रू साफ करके और डेकोरेटिव आइटम्स बनाते हैं। डेकोरेटिव में आजकल सबसे ज्यादा इसका फोटो फ्रेम्स में काम में लिया जाता है, जो फोटो फ्रेम्स की बॉर्डर्स वगैरह बनती है वो इस थर्माकोल से बनती है, या आजकल के टाइम में डेकोरेटिव जो अपने मटेरियल्स बनते हैं, टॉयज बनते हैं, वो इससे बनाए जा रहे हैं। ये हल्के होते हैं, लाइट वेट होते हैं और ड्यूरेबल भी बहुत ज्यादा होते हैं, क्योंकि प्लास्टिक खराब होता नहीं तो लंबे टाइम तक भी चलते हैं।
5: देश के कई हिस्सों में इस वक्त बारिश का दौर लगातार जारी है, इससे कई जगह बाढ़ जैसे हालात भी बने हुए हैं। इन सबके बीच में राहत और बचाव का काम भी चल रहा है। एक रेस्क्यू ऑपरेशन समंदर में चलाया गया जो हिमाचल प्रदेश में बारिश को लेकर मौसम विभाग ने अलर्ट भी उसको लेकर पहले से जारी किया था।
7: बारिश की वजह से देश के कई हिस्सों में बाढ़ जैसे हालात बने हुए हैं। इन सब के बीच जगह जगह लोग बेबस नजर आते हैं।
8: एक छोटा बच्चा आया है,

0: इनके लिए रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया जा रहा है। राहत और बचाव की टीमें जरूरतमंदों तक खाने पीने का सामान पहुंचाने के साथ ही लोगों को सुरक्षित स्थान तक पहुंचाने का भी काम कर रही है। बारिश और बाढ़ को लेकर जारी रेस्क्यू ऑपरेशन के अलावा समंदर में मुश्किल हालात के बीच फंसे लोगों की जान भी बचाई जा रही है। गुजरात के नवसारी की ये तस्वीरें देखिए। यहाँ समंदर में फंसे मछुआरों को एयरलिफ्ट कर सुरक्षित बचाया गया। समंदर में एक नाव के डूबने की स्थिति में होने की जानकारी मिलने पर कोस्ट गार्ड ने तत्काल हेलीकॉप्टर के जरिए रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया और नाव में सवार सभी 9 मछुआरों को एक एक कर सुरक्षित बचा लिया।
1: जलालपुर तहसील के कृष्णपुर गांव से एक फिशिंग बोट वलसाड़ की ओर जाने को रवाना हुई थी, जिसमें 9 लोग सवार थे। जयेश भाई टंडेल की ये जो बोट थी वो धोलाई मरीन बंदर से 2.5 नॉटिकल माइल के दूरी पर सिंक होना स्टार्ट हुई थी। 9 लोगों का रेस्क्यू कॉल हमें कंट्रोल रूम में मिला था, उसमें ये सब 9 लोगों को रेस्क्यू करने के लिए पहले NDRF की टीम से आयोजन किया था, फिर पता चला कि भाई ये अपने कोस्ट गार्ड के चॉपर के मदद से ही रेस्क्यू करना पड़ेगा। तो कोस्ट गार्ड के जो कमांडेंट साहब है उनसे मैंने बात की थी। नवसारी जिला कलेक्टर श्री मनीष गुरवानी साहब ने कोस्ट गार्ड के DIG साहब से बात करते ही तुरंत उन्होंने चॉपर भेजा था।
0: रेस्क्यू कर सभी 9 मछुआरों को समंदर तट पर सुरक्षित उतार दिया गया। वहीं ओडिशा में बाढ़ के पानी में बहे एक व्यक्ति का भी रेस्क्यू किया गया। ओडिशा के बाढ़ प्रभावित भद्रक जिले की ये तस्वीर देखिए। बालीपाटना इलाके के तारनगर गांव के रहने वाले सुनंदा बेहरा ताड़ के पेड़ को पकड़कर भूखे प्यासे 5 दिन तक इसी तरह अपनी जान बचाते रहे। ODRAF की टीम को सुनंदा बाजापति पाड़िया इलाके में मिली। वहां से रेस्क्यू कर उन्हें पालीपाटना मेडिकल सेंटर ले जाया गया, जहां उनका इलाज चल रहा है। मैदान से लेकर पहाड़ तक में हो रही बारिश मुश्किल का सबब बन रही है। उत्तराखंड में ऋषिकेश से लेकर देहरादून तक में SDRF और पुलिस की टीम रेस्क्यू ऑपरेशन में पसीना बहाती नजर आ रही है। ऋषिकेश में पानी के तेज बहाव में फंसी एक गाड़ी के ऊपर जवान रस्सी के सहारे पहुंचे और फिर गाड़ी के अंदर से एक एक कर दोनों लोगों को सुरक्षित बाहर निकाला। वहीं देहरादून के विकास नगर में स्वर्णा नदी में फंसे 6 छात्रों को भी SDRF के जवानों ने काफी मशक्कत के बाद सुरक्षित रेस्क्यू किया। उत्तराखंड में भारी बारिश की वजह से नदी नाले उफान पर हैं, जिसको देखते हुए प्रशासन अलर्ट मोड में है और लोगों से सतर्कता बरतने की अपील की जा रही है। हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला समेत जगह जगह बारिश का दौर देखने को मिल रहा है। इन सब के बीच मुश्किल हालात में फंसे लोगों का रेस्क्यू भी किया जा रहा है। हिमाचल प्रदेश में मॉनसून सक्रिय है और इसके चलते 22 अगस्त तक बारिश का दौर जारी रहने का अनुमान है, जिसको लेकर मौसम विभाग ने अलर्ट भी जारी किया है।
2: 19 अगस्त को हमीरपुर, चंबा, कांगड़ा, मंडी, शिमला, सिरमौर, यहाँ पे एक दो स्थानों में हैवी रेनफॉल का येलो अलर्ट जारी किया गया। उसके उपरांत 20 और 21 अगस्त को चंबा, कांगड़ा, कुल्लू, मंडी, यहाँ के लिए येलो कैटेगरी में हैवी रेनफॉल का येलो अलर्ट जारी किया गया है। फिर उसके उपरांत देखिए 22 अगस्त को जो वेदर एक्टिविटी है उसकी इंटेंसिटी में काफ़ी कमी आएगी। हालांकि 22 अगस्त को जो हमारी जो वेदर एक्टिविटी है वो जो हमारे क्षेत्र में मध्यवर डिस्ट्रिक्ट हैं, जो क्षेत्र ऊना, बिलास, हमीरपुर, वहाँ पर कुछ क्षेत्रों में हल्के से मध्यम बारिश का दौर जारी रहेगा। जो मेजर रिडक्शन है वेदर का वो 22 अगस्त के उपरांत देखने को मिलेगा प्रदेश में, और उसके बाद 23 और 24 अगस्त को काफ़ी कम रहेगी, मतलब वेदर एक्टिविटी मतलब कुछ क्षेत्रों तक सीमित रहेगी। और
0: हिमाचल प्रदेश में 22 अगस्त के बाद भले ही बारिश में कमी आने का अनुमान है, लेकिन फ्लैश फ्लड के खतरे को देखते हुए मौसम विभाग ने नदी नालों से दूर रहने की सलाह दी है। नवसारी से रौनक जानी और शिमला से विकास शर्मा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
3: इसी के साथ इन तमाम खबरों के बाद लंच टाइम में आज के लिए बस इतना ही।
4: और चलिए हम दोनों को इजाजत दीजिए, अच्छे पॉजिटिव खबरों के लिए आप देखते रहिए गुड न्यूज टुडे। नमस्कार।
5: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम

0: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
1: और दुर्भाग्य कहता है
2: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
3: अविश्वास में विश्वास बसता है,
0: जो हम में अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
4: गुड न्यूज टुडे।
0: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते। खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे। देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे में।
5: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, मोर इसके ऊपर उसके ऊपर, ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
4: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।

0: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
1: देश देख रहा है अच्छी खबरें।
2: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट, कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच। HRIT University गाजियाबाद, शेपिंग फ्यूचर, क्रिएटिंग लीडर्स।
3: उत्साह से जारी है बूढ़ा अमरनाथ यात्रा, पुंछ पहुंचा 1338 भक्तों का दूसरा जत्था रवाना, मंडी बेस कैंप पर भव्य स्वागत। देशभर में गणेशोत्सव की तैयारियां तेज, तमिलनाडु के तिरुचिरापल्ली में बनाई जा रही इको फ्रेंडली गणेश जी की मूर्ति, पर्यावरण संरक्षण का दे रहे हैं संदेश। NHAI ने

0: यूपी जापान इन्वेस्टमेंट मीट 2026 से राज्य को मिला विकास के पंख, बनेगी 500 एकड़ की जापानी सिटी, 10,000 युवाओं को मिलेगा रोजगार। धनबाद की प्रांजल और आन्या मित्तल को मिला गिनीज गोल्ड मेडल, ऑनलाइन श्लोकों का पाठ कर बनाया रिकॉर्ड, परिवार में खुशी की लहर।
1: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम।
0: सावन के महीने में लगातार दिख रहे हैं कावड़ यात्रा के नए रंग, अलग अलग आकार स्वरूप की कावड़ खींच रही हैं अपनी ओर ध्यान। विशाल कावड़ों में सजी भगवान विष्णु, श्रीराम और महाकाल की भव्य प्रतिमा, सुल्तानगंज से गंगा जल लेकर 105 किलोमीटर की यात्रा पर बैद्यनाथ धाम जा रहे हैं शिव भक्त। शिक्षक बनने की मन्नत लेकर कठिन यात्रा कर रहे हैं 11 साल की प्रियंका, पहली बार दंडवत यात्रा कर रही है प्रियंका। पावन महीने में बरेली में प्रशासन, स्थानीय समिति और विभिन्न सामाजिक संगठनों द्वारा कावड़ियों का किया गया भव्य स्वागत, हेलीकॉप्टर से हुई पुष्प वर्षा। कावड़ियों के लिए जगह जगह फलाहारी, भंडारे और विश्राम शिविरों का विशेष प्रबंध, शहर में पूरी तरह से भक्तिमय और सौहार्दपूर्ण माहौल। पूरी श्रद्धा के साथ जारी जम्मू कश्मीर के पुंछ जिले में स्थित प्राचीन बाबा बूढ़ा अमरनाथ की 12 दिवसीय वार्षिक यात्रा, धार्मिक यात्रा में भक्तों का जोश दिखा हाय। पुंछ पहुंचा बूढ़ा अमरनाथ का दूसरा जत्था, जत्थे में देश विदेश के कुल 1938 भक्त शामिल। मंडी बेस कैंप में फूलमाला पहनाकर किया गया यात्रियों का स्वागत, बम बम भोले के जयकारों से भक्तिमय हुआ पूरा माहौल। यात्रियों की सुविधा के लिए लगाए गए खाने पीने के स्टॉल्स, भक्तों की यात्रा सुगम और सफल बनाने के लिए हर संभव कोशिश कर रहा है प्रशासन। 28 अगस्त तक जारी रहेगी आस्था की ये यात्रा, रक्षाबंधन के दिन होगा 12 दिवसीय यात्रा का समापन। उत्तर प्रदेश के पीलीभीत में है भगवान भोलेनाथ का अनोखा धाम, गोमती नदी के किनारे घने जंगल के बीच बसे बाबा 71 नाथ धाम को लेकर कई मान्यताएं। भोलेनाथ के इस धाम में रंग बदलते शिवलिंग और पहली पूजा को लेकर भक्तों में गहरी आस्था, मन्नत पूरी होने पर यहां चढ़ाए जाते हैं हैंडपंप। पीलीभीत के पूरनपुर तहसील इलाके पुन्नापुर टांडा गांव के पास घने जंगलों के बीच मौजूद है बाबा 71 नाथ धाम, दूर दूर से पहुंचते हैं यहां श्रद्धालु। भोलेनाथ के दर्शन के लिए यहां गोमती नदी के किनारे बसे घने जंगल से गुजरकर यहां पहुंचते हैं श्रद्धालु, यहां लगे सैकड़ों हैंडपंप बताते हैं आस्था की कहानी। मान्यता है कि महर्षि गौतम के श्राप से मुक्ति के लिए देवराज इंद्र ने यहां की थी 71वें शिवलिंग की स्थापना, मान्यता के अनुसार गर्भगृह में मौजूद शिवलिंग बदलता है अपना रंग। देशभर में गणेशोत्सव की तैयारियां तेज, तमिलनाडु के तिरुचिरापल्ली में बनाई जा रही इको फ्रेंडली गणेश जी की मूर्ति, हर आकार और स्वरूप की बप्पा की कलाकृतियां बनाने में जुटे हैं कलाकार, भक्ति के साथ पर्यावरण संरक्षण का भी दे रहे हैं संदेश। मुंबई में शेर पर सवार महालक्ष्मी अवतार वाले 22 फीट ऊंचे काला चौकी के महागणपति पंडाल वहां पधारे, श्रद्धालुओं ने ढोल ताशे के साथ उनका स्वागत किया। दिल्ली के मंत्री प्रवेश वर्मा ने गुजरात के नर्मदा में दुनिया की सबसे ऊंची मूर्ति स्टैच्यू ऑफ यूनिटी का दौरा किया, सरदार पटेल को नमन किया। प्रवेश वर्मा ने साबरमती रिवरफ्रंट की तर्ज पर दिल्ली में यमुना रिवरफ्रंट बनाने का ऐलान किया, बोले झोपड़ियों की जगह बनाएंगे फ्लैट, यमुना सफाई का काम जारी। बिहार के अंग क्षेत्र में धूमधाम से मनाया जा रहा है लोक पर्व मनसा विषहरी, पूजा केंद्र पर उमड़ रही श्रद्धालुओं की भीड़, भक्तों की मन्नत पूरी करती है मां विषहरी। पूजा केंद्रों पर दिख रही है आस्था, परंपरा और अंग प्रदेश के इतिहास की झलक, बिहुला विषहरी की कहानी से जुड़ी झांकी के भी दर्शन। लोक पर्व के लिए पूजा केंद्रों मंसरी तल्ले, बड़ा बाजार, गुलजार पोखर, रायसर, बेलदार टोली की गई सजावट, कलाकृतियों के जरिए दिया जा रहा है संदेश। गाजे बाजे के साथ निकाली गई बाला लखेंद्र की बारात, बड़ी संख्या में लोग हुए शामिल। पौराणिक मान्यता के मुताबिक बाला लखेंद्र बिहला की होती है शादी। आज किया जाएगा प्रतिमा का विसर्जन, पूरे क्षेत्र में 3 दिन तक धूमधाम से मनाया जाता है ये लोक पर्व। भारत की मशहूर मिथिला चित्रकला ने बनाया विश्व रिकॉर्ड, 108 मीटर लंबे कैनवस पर लिखे रामचरितमानस के प्रसंग। इस विशाल कलाकृति को तैयार करने में मिथिला चित्रकला संस्थान से जुड़े 180 छात्र छात्राओं ने हिस्सा लिया, दिल्ली में हुआ कार्यक्रम। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार रामायण काल में हुई थी इसकी शुरुआत, जब राजा जनक ने सीताराम के विवाह पर दीवारों पर चित्र बनाने का दिया था निर्देश। धनबाद की 2 बहनों को मिला गिनीज गोल्ड मेडल, ऑनलाइन श्लोकों का पाठ कर बनाया रिकॉर्ड। प्रांजल और आन्या मित्तल की हर उपलब्धि पर परिवार में खुशी की लहर, मां बचपन से ही उन्हें सिखाती हैं गीता का पाठ। रजौरी का गवर्नमेंट हायर सीनियर सेकेंडरी स्कूल बना, एजुकेशन मॉडल, स्मार्ट क्लासेस के जरिए पढ़ रहे हैं यहां छात्र। आधुनिक लैब और बाकी सभी सुविधाओं से लैस है ये स्कूल, पढ़ाई में बच्चों की रुचि जगाना इसका मकसद। भारत पाक सीमा पर अब आसमान से आने वाले हर एक खतरे का जवाब देगा बीएसएफ, जवानों को दी जा रही है ड्रोन उड़ाने और एंटी ड्रोन सिस्टम के इस्तेमाल की ट्रेनिंग। सुकमा पुलिस की बड़ी सफलता, जंगल में डंप नक्सली सामग्री बरामद, नक्सलियों ने चिंतलनार के जंगलों में छुपा रखा है विस्फोटक। दिल्ली पुलिस की संपर्क सभा और संवाद कार्यक्रम का आयोजन, पुलिस कर्मियों और अधिकारियों के बीच बेहतर तालमेल और कार्य प्रणाली को सुधारने की पहल। जापानी प्रतिनिधिमंडल की यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ से मुलाकात, निवेश को लेकर दिखाया उत्साह। उत्तर प्रदेश और यमनाशी के बीच बड़ी डील, 4,000 करोड़ के ग्रीन हाइड्रोजन और 2,029 करोड़ के एस्कॉर्ट्स कुबोटा निवेश। इस मीट में जापान के 200 से अधिक उद्योगपति, सीईओ, बिजनेस लीडर्स रहे हिस्सा, मुख्यमंत्री योगी समेत केंद्र और प्रदेश सरकार के वरिष्ठ मंत्री अधिकारी भी मौजूद। 22 अगस्त को काशी विश्वनाथ के दर्शन करेगा जापानी प्रतिनिधिमंडल, यूपी जापान इन्वेस्टमेंट मीट 2024 कार्यक्रम का हिस्सा है ये दौरा। एनएचएआई ने 121 टोल प्लाजा पर शुरू की ऑनलाइन फास्टैग लोकल पास सुविधा, राजमार्ग यात्रा मोबाइल ऐप के जरिए घर बैठे लिया जा सकता है पास। तमिलनाडु की लाखों कामकाजी महिलाओं के लिए गुड न्यूज, राज्य सरकार ने तीसरे बच्चे के लिए 1 साल का मातृत्व अवकाश देने का ऐलान किया। मध्य प्रदेश में रेलवे नेटवर्क के विस्तार से जुड़ी गुड न्यूज, ग्वालियर चंबल अंचल में कैलारस सबलगढ़ बीरपुर रेल सेंक्शन का हुआ शुभारंभ। रेल सेंक्शन के उद्घाटन में केंद्रीय मंत्री, मुख्यमंत्री समेत कई नेता हुए शामिल, रेल नेटवर्क के विस्तार से सुधरेगी कनेक्टिविटी, क्षेत्र के विकास को मिलेगी रफ्तार। असम में युवाओं से जुड़े मामलों को सुलझाने के लिए युवा कल्याण विभाग बनाएगी सरकार, मुख्यमंत्री हिमंत बिस्व शर्मा ने ऐलान किया। गुजरात के राजकोट में बिना नंबर प्लेट वाली और बिना हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट वाली गाड़ियों को नहीं मिलेगा पेट्रोल, राजकोट में लागू हुआ नियम। पर्यटकों से गुलजार हुआ बीजापुर का नंबी वाटरफॉल, हर रोज बड़ी संख्या में इस खूबसूरत वाटरफॉल को देखने के लिए पहुंच रहे हैं पर्यटक। छत्तीसगढ़ के सबसे ऊंचे झरनों में शुमार नंबी वाटरफॉल, पिछले 2 महीनों में 2,000 से ज्यादा पर्यटक कर चुके हैं इस खूबसूरत झरने का दीदार। नक्सली प्रभावित होने के कारण पहले ये इलाका पर्यटकों की पहुंच से था दूर, सरकार और प्रशासन के प्रयासों के बाद अब ये जगह बन चुकी है छत्तीसगढ़ की फेवरेट डेस्टिनेशन। करीब 300 से 700 फीट की ऊंचाई से नीचे गिरता है ये झरना, इस मनमोहक दृश्य को देखने के लिए जुटते हैं यहां सैलानी। घने जंगल, पहाड़ियों और हरी भरी वादियों से घिरा हुआ है नंबी वाटरफॉल, सैलानियों के लिए बेहद शांत और सुकून देने वाली जगह। हिमाचल में 21 अगस्त तक बारिश का दौर जारी रहने की संभावना। बिलासपुर, कांगड़ा, मंडी और सिरमौर में बारिश का ऑरेंज अलर्ट। चित्रकूट में लगातार बारिश, तूफान पर नदी नाले, जनजीवन अस्त व्यस्त। बंद किए गए 8वीं तक के स्कूल। प्रयागराज में बारिश के पानी से डूबा रेलवे ट्रैक, कई ट्रेन हुई प्रभावित, यात्री हुए परेशान। श्रावस्ती में राप्ती नदी ने दिखाया अपना रौद्र रूप, खतरे के निशान से 30 सेंटीमीटर ऊपर पहुंचा जलस्तर। तटवर्ती इलाकों में बाढ़ को लेकर अलर्ट जारी। उत्तराखंड के पौड़ी गढ़वाल में भारी बारिश के बाद भूस्खलन, रेस्क्यू ऑपरेशन जारी। जम्मू कश्मीर के रियासी जिले में चुनाब नदी में उफान, खोले गए सलाल डैम के गेट। हरियाणा के पंचकुला और आसपास के पहाड़ी इलाकों में लगातार भारी बारिश के कारण उफान पर घग्गर नदी, तेज बहाव के चलते प्रशासन ने जारी किया हाई अलर्ट। उत्तराखंड में लगातार जारी है आफत की बारिश, विकासनगर से सामने आया भूस्खलन का वीडियो, सड़क पर भारी मलबा। वाराणसी में भी भारी बारिश के बाद गंगा के जलस्तर में बढ़ोतरी, डूबे आसपास के घाट। प्रयागराज में भारी बारिश के बाद कई इलाकों में भरा जलस्तर, जबरदस्त पानी, जनजीवन हुआ इससे प्रभावित। मेंस हॉकी वर्ल्ड कप में आज भारत पाकिस्तान के बीच महामुकाबला, वेगनर हॉकी स्टेडियम में खेला जाएगा पूल डी का यह मुकाबला। पिछले 10 साल से पाकिस्तान के खिलाफ अजय है टीम इंडिया, दोनों टीमों के बीच हुए हैं 19 मैच, इनमें 17 मैच भारत जीता जबकि 2 ड्रॉ रहे। महिला हॉकी विश्व कप में भारत की शानदार जीत, दक्षिण अफ्रीका को 6-1 के बड़े अंतर से दी मात, टूर्नामेंट में भारत की पहली और अब तक की सबसे बड़ी जीत। भारत की ओर से नवनीत कौर, सुनेलिता टोपो, सुशीला चानू, दीपिका लाल रेम सियामी और साक्षी राणा ने दागे गोल। भारतीय टीम ने दर्ज की टूर्नामेंट की पहली और अब तक की सबसे बड़ी जीत। भारत ने अपने पहले मुकाबले में चीन के साथ 2-2 से ड्रॉ किया था मैच। बैडमिंटन वर्ल्ड चैंपियनशिप में लक्ष्य सेन की शानदार जीत, लक्ष्य ने पहले दौर में ऑस्ट्रिया के कालिंस वैलेंटाइन फिलेमोन को 16-21, 21-8, 21-4 से हराया। लक्ष्य सेन ने पहला गेम हारने के बाद की शानदार वापसी, दूसरा और तीसरा गेम जीतकर अपने नाम किया मैच। इसी के साथ लक्ष्य ने राउंड ऑफ 32 में की एंट्री। महिला डबल्स मुकाबले में प्री क्वार्टर फाइनल में पहुंची भारत की त्रिशा जॉली और गायत्री गोपीचंद की जोड़ी, अमेरिका की लॉरेन लैम और एलिसन ली की जोड़ी को दी मात। मैच 39 मिनट में त्रिशा जॉली और गायत्री गोपीचंद ने जीता मुकाबला, विरोधी टीम को सीधे गेम में 21-15, 21-12 से हराया। वीनस विलियम्स को मिला यूएस ओपन का वाइल्ड कार्ड, 46 की उम्र में खेलेंगी 7 बार की ग्रैंड स्लैम चैंपियन वीनस। यश की फिल्म टॉक्सिक का काउंटडाउन शुरू, 21 अगस्त से शुरू होगी एडवांस बुकिंग, फिल्म की रिलीज में महज 8 दिन बाकी। बॉक्स ऑफिस पर चला आवारापन 2 का जादू, लगातार मजबूती बनाए हुए 100 करोड़ रुपए का आंकड़ा पार करने की ओर बढ़ रही है ये फिल्म। दर्शकों को इम्प्रेस नहीं कर पाई सनी देओल की बंटवारा 1947, 5 दिन में महज 31 करोड़ के करीब पहुंचा है फिल्म का कलेक्शन। अक्षय ओबेरॉय और हेली दारूवाला स्टार लव स्टोरी का टीजर रिलीज, 18 सितंबर को सिनेमाघरों में देगी दस्तक। मुंबई के गोरेगांव में बने अफगानिस्तान के सेट पर जारी है सलमान खान की अगली फिल्म SVC 63 की शूटिंग, सीक्वेंस शूट किए जा रहे हैं और अहम एक्शन।
1: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोग।
2: सास बहू और बेटिया में आज देखिए सीरियल्स की दुनिया में ट्विस्ट का तड़का। द दोपहर 1:28 से 3 बजे तक सिर्फ सास बहू और बेटियां में।

0: परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है। इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।
1: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं, तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती है, तो कुछ दिखाती हैं विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है, तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं, तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज़ पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
0: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
2: और दुर्भाग्य कहता है
3: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
1: अविश्वास में विश्वास बसता है,
0: जो हम में अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
4: गुड न्यूज टुडे।
5: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को।
6: पश्चिम बंगाल का आसनसोल इन दिनों जल परीक्षा से गुजर रहा है। लगातार बारिश के बाद कई इलाकों में बाढ़ जैसे हालात बन गए हैं। कई मकानों में पानी घुस चुका है, कहीं कहीं तो पूरा इलाका जलमग्न नजर आ रहा है। ऐसे में बड़ी संख्या में लोग अपने ही घरों में कैद होकर रह गए हैं। हालांकि राहत और बचाव अभियान लगातार चलाया जा रहा है।

0: रोटी या डब्बा बांध के गिराइए। दूध परोटी हम लोग लेके आए हैं, अभी सिविल डिफेंस का टीम ऑलरेडी यहाँ पे आया हुआ है, कहीं कोई अगर निकलना चाहता है फंस गया तो बताइए। और अभी सबका खाना का प्रबंध हो रहा है, पूरी सब्जी बन रहा है, घबराना किसी को नहीं है।
1: जहाँ सड़कें थीं वहाँ सैलाब बह रहा है, सड़कें पानी पानी हो चुकी है, घरों के अंदर कई फीट तक पानी भर चुका है। बारिश ने आसनसोल की तस्वीर बदल दी है। आलम ये है कि लोग अपने ही घरों में कैद होकर रह गए हैं। ऐसे हालात में सिविल डिफेंस की टीम नहरों को चीरते हुए मदद की उम्मीद लेकर जरूरतमंदों तक पहुंच रही है। आसनसोल के रेलपार इलाके में बाढ़ जैसे हालात के बीच बड़ी संख्या में लोग अपने ही घरों में कैद होकर रह गए। मदद की आस में लोग टकटकी लगाए राहत बचाव टीम का इंतजार करते रहे। खबर मिलते ही सिविल डिफेंस और क्विक रिस्पांस टीम ने राहत और बचाव अभियान चलाया।
0: ये हम लोग का रेलपार तरी मोहल्ला नी बस्ती है। यहाँ पे घरों में लोग जो फंसे हुए हैं सबको अभी पावरोटी दूध दिया गया है। अभी हम लोग सोन पापड़ी गली, काली मंदिर, धापका रोड पोस्ट ऑफिस गली, बोहाल, सब तरफ हम लोग टीम पहुंचेगा। हम लोग खुद पहुंचेंगे और घर घर में जाके लोगों को हम लोग जो खाने पीने का सामग्री ये सिलसिल चीजें देंगे।
1: राहत बचाव टीम के सदस्य कमर तक भरे पानी में उतरे। तंग गलियों से होते हुए टीम धीरे धीरे आगे बढ़ी। हाथों में खाने पीने का सामान था और मकसद था हर जरूरतमंद तक मदद पहुंचाना। इसके बाद लोगों ने ऊपर से रस्सी से बंधी बाल्टियां नीचे लटकाई। इन बाल्टियों में राहत बचाव टीम ने खाने पीने का सामान रखा और उन्हें जल्द सुरक्षित स्थान तक पहुंचाने का भरोसा दिया। बाद में नाव की मदद से बाढ़ में फंसे लोगों को सुरक्षित ठिकानों पर पहुंचा दिया गया। आसनसोल से अनिल गिरी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
2: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें।

0: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को।
1: Scented by पतंजलि गाय का घी, लगाए स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा, प्यार से परोसा।
2: गर्ल टेस्ट में भारत की शानदार जीत, श्रीलंका को 165 रनों से हराया, मानव सुथार ने शानदार 6 विकेट झटके। देश भर में गणेशोत्सव की तैयारियां तेज, तमिलनाडु के तिरुचिरापल्ली में बनाई जा रही है इको फ्रेंडली गणेश जी की मूर्ति, पर्यावरण संरक्षण का दे रहे हैं संदेश। NHAI ने 121 टोल प्लाजा पर शुरू की ऑनलाइन फास्टैग लोकल पास सुविधा, राजमार्ग यात्रा मोबाइल ऐप के जरिए घर बैठे लिया जा सकता है पास। उत्तर प्रदेश जापान इन्वेस्टमेंट मीट 2026 से राज्य को मिले विकास के पंख, बनेगी 500 एकड़ की जापानी सिटी, 10,000 युवाओं को मिलेगा रोजगार। धनबाद की प्रांजल और आन्या मित्तल को मिला गिनीज गोल्ड मेडल, ऑनलाइन श्लोकों का पाठ कर बनाया रिकॉर्ड, परिवार में खुशी की लहर।
0: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ। एक
3: कहते हैं ना कि कुछ पल गुजर जाते हैं लेकिन तस्वीरों में वो हमेशा के लिए ठहर जाते हैं। एक तस्वीर सिर्फ तस्वीर नहीं होती, आई मीन टू से वो सिर्फ एक फोटो नहीं होता, उसमें होती है एक याद, एक रिश्ता, एक एहसास और एक पूरी कहानी। आज वर्ल्ड फोटोग्राफी डे पर हम बात करेंगे उन तस्वीरों की जो कभी हमें हंसाती हैं, कभी हमें भावुक करती हैं, तो कभी कभी हमें पुरानी यादों की तरफ खींच कर ले जाती हैं। क्योंकि एक तस्वीर सिर्फ एक कहानी नहीं कहती, उसमें तो छिपी होती हैं हजार कहानियां। और उसी के साथ साथ हम लेकर हाजिर हैं आपके लिए एंटरटेनमेंट की कहानियां, यानी एंटरटेनमेंट की दुनिया से हर अपडेट। तो चलिए फिर शुरू करते हैं हमारा ये एपिसोड हेडलाइंस के साथ।
4: सास बहू और बेटियां की एंटरटेनमेंट से भरी गुड न्यूज में आज देखिए, मन्नत के घर होगी बर्थडे पार्टी, डांस में लगेगा ट्विस्ट का तड़का।
5: आपके इतने सारे काबिल डॉक्टर्स हैं जिन्होंने मुझे ठीक किया, किसी एक को श्रेय देना तो गलत होगा नहीं?
4: दिखेंगी नौनिका और ईशान की दूरियां, कामयाब होता नजर आएगा तो ईशान का प्लान।
5: देखेंगे कि मेरे पास टाइम बिल्कुल नहीं है, मैं बहुत बिजी हूँ।
4: लौट आया आकाश मचाने ईशा और सूरज की जिंदगी में तूफान।
6: जग घूमया थारे जैसा ना कोई, जग घूमया।
4: शुरू होगा राध्या और प्रथम का सिंदूरी रोमांस।

पर भी मिल ना सकेंगे रुचिता और निहाल, होगा हादसा। अपनी ही सगाई में झूमकर नाचेगी स्वाति।

खतरों की खिलाड़ी यानी कि रूहानी का धवन संग करेंगे मस्ती भरा डे आउट। पेट पूजा के साथ साथ होगी मस्ती अनलिमिटेड सिर्फ और सिर्फ सास बहू और बेटियां में।

ईशा तो हमसे कह रही है कि जब से आया है ना ये मोबाइल फोन, हम सब हो गए हैं तस्वीरों से ऑब्सेस्ड। जिसे देखो मेरी तस्वीर खींच दो, नहीं ये फोटो अच्छी नहीं आई है, नहीं एक बार फिर खींचो, ये फोटो तुमने कैसी ली है। कुछ ऐसा ही है आजकल हर घर में, और बिल्कुल ऐसी ही है हर घर की कहानी। लेकिन क्या कुछ कह रही है आज ईशा और सूरज की ये कहानी, चलिए पता कर कर आते हैं, लेकर चलते हैं आपको इनके पास।

0: लौट आया आकाश। बड़ी सूरज और ईशा की चिंता।
1: कानून की रक्षा करने की जो लोग शपथ खाते हैं, भूमि के घर में कानून को अपने हाथ में लिया जा रहा है।
0: आकाश को चाहिए मीका की कस्टडी।
1: दुनिया का कोई भी कानून एक बाप को अपनी बेटी से अलग नहीं कर सकता। और अगर तुम लोग तब भी नहीं माने ना, तो मैं कोर्ट में जाऊंगा और ऑर्डर लेके आऊंगा। और फिर मैं हमेशा हमेशा के लिए अपनी बच्ची को अपने पास ही रखूंगा।
0: टीवी के सीरियल पति ब्रह्मचारी में आए दिन कोई ना कोई ट्विस्ट तो आते ही रहते हैं, लेकिन आज आ गया है महा ट्विस्ट जो लेकर आया है आकाश। जी हाँ, आकाश ने कर ली है धमाकेदार एंट्री और देखिए कैसे वो सीधा पहुंच गया है सूरज और ईशा के घर में अपनी बेटी मेहका से मिलने के लिए, वो भी मुखौटा लगाकर। असल में ईशा और मेहका डांस की तैयारी कर रहे होते हैं, ऐसे में ईशा मेहका को सजा रही है, तभी वहाँ पर मुखौटे में उन्हें कोई दिखता है। पहले तो ईशा को लगता है कि ये सूरज है, लेकिन सूरज तो बाहर से आता है और ऐसे में ईशा बुरी तरह से डर जाती है कि आखिरकार मुखौटे के पीछे घर में कौन है।

0: जब मुखौटा हटता है तो आता है आकाश का चेहरा सामने, जिसे देखकर मिहिका डर जाती है और रोने लगती है। तो वहीं ईशा और सूरज के भी होश उड़ जाते हैं कि कहां से अचानक आकाश इनके घर में आ गया। ऐसे में सूरज का गुस्सा आकाश पर फूटता है। आकाश मिहिका को डॉल देने की कोशिश करता है, लेकिन मिहिका बुरी तरह से डरी हुई है। भले ही आकाश उसका पापा है, लेकिन वो अपने ही पापा से डरती है। ऐसे में ताई जी मिहिका को अंदर ले जाती है और फिर शुरू होता है असली तमाशा।
1: कल कमाल है, मुझसे बिना पूछे मेरी बेटी को अपने घर में रख सकते हैं, लेकिन मैं अपनी बेटी से मिलने के लिए तुम्हारे घर नहीं आ सकता। हे राम, ये तो बहुत गलत है। बेटा बेटा देखो, मैं तुम्हारे लिए क्या लाया। तुम्हारी फेवरेट डॉल, ये लो। डरो मत बेटा, पापा आ गए हैं। ये लो बेटा, पापा आ गए हैं।
0: भाई आकाश ने तो साफ साफ कह दिया है कि उसे मिहिका चाहिए और वो उसकी कस्टडी के लिए कोर्ट तक जाएगा। भाई फिलहाल तो आकाश दिखा रहा है कि वो सुधर गया है, लेकिन ईशा और सूरज को पता है कि आकाश सुधरा नहीं है, बल्कि वो तो मिहिका के जरिए ईशा और सूरज को ही परेशान करने लौटा है।
1: अच्छा, उसके बर्थ सर्टिफिकेट पे मेरा ही नाम है। लगता है तुम भूल रही हो कि उसका बायोलॉजिकल और लीगल फादर मैं ही हूं।
2: बायोलॉजिकल फादर होने से कोई अच्छा पिता नहीं बन जाता। वो तुम्हारे नाम से डरती है आकाश।
1: कानून की रक्षा करने की जो लोग शपथ खाते हैं, आज उनके घर में कानून को अपने हाथ में लिया जा रहा है। ईशा समझाओ इसे, दुनिया का कोई कानून एक बाप को उसकी बेटी से अलग नहीं रखता है। पर अगर तुम लोग नहीं माने ना, तो मैं कोर्ट जाके ऑर्डर लेके आऊंगा।
0: ऐसे में देखिए कैसे आकाश सूरज और ईशा के बीच बहसबाजी छिड़ गई है, और ऐसे में बातों ही बातों में आकाश का असली रूप सामने आ जाता है, जब वो अपनी इविल हंसी हंसता है और सूरज और ईशा समझ जाते हैं कि किन इरादों से आकाश लौटा है।
1: हमेशा हमेशा के लिए अपनी बच्ची को अपने पास ही रखूंगा।
2: क्यों आए हो हमारी जिंदगी में वापस? क्यों मेहका को अपने साथ ले जाना चाहते हो? तुम जानते हो ना, तुम उससे प्यार तक नहीं करते।

0: ちゃんって呼びしたの。
1: これメビちゃんだ。
0: けめめいかせてやんねえからさ。
1: でけにえばあただだっこばたてばたてパルソビーちゃんけ。
0: わたったく、みいかくみいぱせみせん。बहुत ही दमदार
2: भाई अपना लीगली राइट लेने आया पिता वाला कि मैं पिता हूँ तो मीका के थ्रू मैं जा सकता हूँ, वरना तो कोई ऑप्शन ही नहीं था आकाश का वापस आना. तो इसी यही रीज़न है एंड वो एक वो रख देता है शर्त कि या तुम जब मीका वापस करो, क्योंकि हम भी बहुत अटैच हो चुके हैं मीका से. मीका इतने टाइम से ईशा के साथ ही बड़ी हो गई है, पर रह रही है साथ में, इतनी अच्छी बॉन्डिंग हो गई है. तो उसी में वो लोग, हम ये चाहते हैं कि मीका को हम दूर ना करें, वरना आकाश उसे टॉर्चर करेगा ही. तो वो इसी का फ़ायदा उठा के एक शर्त रख देता है. अब वो शर्त क्या है
3: देखने में, बिकॉज वो कहते हैं ना कि जो जब इंसान जैसा रहता है उसकी फितरत नहीं बदलती, इंसान भले कितना भी चेंज हो जाए कहीं ना कहीं वो चीज़ उसमें होती है. और जो अगर है इस तरह के इंसान है डेफिनेटली उनकी तो फितरत कभी नहीं बदलती. तो सूरज को
2: नया रूप लेके आएगा, आकाश
3: नया रूप लेकर आएगा. मतलब दिखाएगा लोगों को कि मैं बहुत इनोसेंट, अब सुधर गया हूँ, मैं जेल गया, मुझे अपनी गलती का पश्चाताप है, लेकिन अब मुझे मेरी बेटी चाहिए. तो सूरज कहीं ना कहीं यही बोलता है अपनी नौटंकी बंद कर, तू एक नंबर का मतलब यही था, कमीना था, कमीने टाइप का ही रहेगा, काइंड ऑफ ऐसी सारी चीज़ें बहस है दोनों के बीच.
4: जहाँ एक तरफ सूरज और ईशा की ये परेशानी, तो वहीं दूसरी तरफ इनकी जिम्मेदारी. जहाँ जल्द ही काव्या और बंटी शादी के बंधन में बंधने वाले हैं, ऐसे में घर में तैयारियां शुरू है. देखिए कैसे ताई जी मोनिका शॉपिंग पर जा रहे हैं.
5: ये मोनिका की बच्ची, अरे बाजार जाने के लिए देर हो रही है, इसकी तैयारियां ही खत्म नहीं हो रही है.
6: आप लोग है ना,
5: ये खुशबू बहू कब है?
6: वो बच्चों के साथ है, उन्होंने बोला आप लोग चले जाएं.

0: काम की ना धाम की और दुश्मन अनाज की है। काम तो कुछ से कुछ होता नहीं है, फैसल करवा लो खाली। अभी मैं चश्मा उतार लूं और चल बाजार चल।
1: भाई झटपट से मोनिका और ताई जी शॉपिंग करके आ भी जाते हैं और ये कपड़े ट्राई कर रही है काव्या। ऐसे में वहाँ पर रिया भी पहुँचती है। हालांकि रिया चुप रहकर सब कुछ सह रही है, सच नहीं बता रही कि वो बंटी से प्यार करती है। ऐसे में दुल्हन के भेस में काव्या को देख उसे ठीक नहीं लग रहा। ऐसे में जब ताई जी रिया से कहती है कि वो काव्या को गहने पहनाए तो रिया वहाँ से चली जाती है और काव्या को हो गया है शक कि रिया उनसे कुछ छुपा रही है।
2: अरे माँ बड़ी चल गया मैं अपना, मैं साथ में गई थी ना, इसने सारा काम फटाफट करा दिया मैंने। कितनी सुंदर लग रही है मेरी बच्ची।
3: मैचिंग की ज्वेलरी भी लाई हो, रुक।
2: माँ मुझे ना अभी याद आया कि मुझे एक अर्जेंट कॉल करना है, मैं आती हूँ। मोनिका भाभी पहनाइए ना, मैं आती हूँ, दो मिनट में आती हूँ। भाई माँ मुझे ऐसा क्यों लग रहा है जैसे रिया उन सबसे कुछ छुपा रही है, वो खुश तो है ना?
3: बहुत खुश है, सबका बहुत जुड़ाव है ना। रिया से जब जाएगी बताओगे?
1: भाई शक तो ईशा और सूरज को भी हो रहा है कि जरूर कुछ गड़बड़ है, बंटी भी कुछ छुपा रहा है।
4: हाँ समझ गया, शादी होने जा रही है ना, तो पैसे वैसों की जरूरत होगी। मैं खुदा रहा आदमी ठहरा, खुद से तो बोलेगा नहीं। चिंता मत कीजिए ईशा जी, मैं देखता हूँ।
2: तैयारियां तो यही काव्या और शादी की हो रही है, साथ साथ ईशा को थोड़ा सा डाउट भी जा रहा है कि बंटी खुश नहीं था अपने रूपों में, तो वो सूरज से मौका ढूंढ के पूछ रही है कि सूरज बंटी तुम्हारा दोस्त एक बार पूछो ना, वो इतना परेशान क्यों था? कि उसने कहा तो था कि वो, उसने यही कहा था ना कि वो तुम्हारी बहन से प्यार करता है, तो तुम्हारी बहन में जो मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है वो अभी तो हमें नहीं पता है, बट कहीं ना कहीं से वही फाइंड आउट करेंगे वो परेशान क्यों था, तो देखते हैं कि वो फाइंड आउट होती है या नहीं।
4: बिल्कुल, अभी तो सूरज यही सोच रहे कि खुद गर्ज इंसान है, पैसे तो मांगेगा नहीं, मुझे खुद जाके देना पड़ेगा, तो आप चिंता मत कीजिए ईशा जी, मैं खुद जाके उसे पैसे दिलाऊंगा। एंड बंटी तो अलग ही कश्मकश में है, बंटी तो ये है कि मैं तो मतलब रिया से प्यार करता हूँ, बट भैया ने अब काव्या से, काव्या की रिस्पॉन्सिबिलिटी दे दी है मुझे, इतना सब कुछ बोल दिया है, भैया ने अपना दुख रोया है, तो अब मैं मना भी कैसे करूं भैया को? मतलब कि इन शॉर्ट एहसान बोल लो या प्यार बोल लो या बचपन की यारी दोस्ती बोल लो, उस एहसान के तले वो दबा हुआ, उस बोझ के तले वो दबा हुआ है, इसलिए वो बोल नहीं पा रहा है।
1: तो भाई एक तरफ बंटी और काव्या की शादी में रिया का ड्रामा, तो दूसरी तरफ आकाश की री एंट्री। अब इन सब सिचुएशंस को सूरज और ईशा मिलकर कैसे सुलझाएंगे ये देखना काफी दिलचस्प होने वाला है, क्योंकि अभी तो कई और ट्विस्ट आने बाकी है। मुंबई से कुणाल उपाध्याय के साथ ब्यूरो रिपोर्ट।
5: कहते तो ऐसा भी है कि खूबसूरती तो नजर में होती है, तो हर फोटोग्राफी में ये भी इम्पोर्टेंट है, क्योंकि हर चेहरा खूबसूरत नहीं होता, लेकिन हर चेहरे के पीछे एक खूबसूरत कहानी जरूर होती है। तो कैसी है आज यहाँ पर राधे और प्रथम की ये कहानी? क्या इसमें भी है इनके शो के नाम की तरह सब कुछ सुंदर, या फिर से आया है यहाँ पर कोई नया ट्विस्ट? चलिए पता कर आते हैं, लेकर चलते हैं आपको मन अति सुंदर के सेट पर।
6: जग घूमे थारे जैसा ना कोई, जग घूमे
1: प्रथम राध्या और एक चुटकी सिंदूर,
6: न तो हंसना रुमानी कहीं, न तो खुशबू सुहानी कहीं, न वो रंगली अदाएं देखी।
1: तीज के त्योहार ने बनाई पति पत्नी की जोड़ी।

ये तो था प्रोमो शूट। बात करें सीन की तो देखिए कितनी मेहनत से राध्या प्रथम को विषकन्या से बचाने की कोशिश कर रही है। भाई यहाँ तेज हवाएं चल रही हैं, लेकिन प्रथम राध्या एक दूसरे का हाथ नहीं छोड़ रहे। लेकिन एक पॉइंट ऐसा आता है जब दोनों के हाथ छूट जाते हैं और प्रथम से राध्या दूर हो जाती है, लेकिन फिर भी राध्या ने हार नहीं मानी और अपने प्रथम को बचा लिया।

0: भाई विष कन्या का खात्मा हो चुका है और प्रथम फिर एक बार राध्या के पास लौट आया है, लेकिन फिर भी राध्या के दिल में डर रहता है कि कहीं प्रथम उससे दूर ना चला जाए। तभी तो जब सुबह सुबह वो नींद से उठती है तो प्रथम को हर जगह ढूंढने लगती है, और जब प्रथम नहीं मिलता तो राध्या हो जाती है परेशान। पहुंचता है प्रथम चाय लेकर। जी हाँ, यहाँ शुरू हो गया है इनका चाय रोमांस, क्योंकि प्रथम राध्या के लिए चाय बनाकर लेकर आया है। भाई इतनी मुश्किलों के बाद दोनों को एक दूसरे संग प्यार के पल बिताने का मौका जो मिला है, और वो बखूबी इन पलों को जी रहे हैं।
1: राध्या के प्रथम सर राध्या के सामने हाजिर है।
2: गुड मॉर्निंग बाइबी।
1: मैं तुम्हारे लिए ना गर्मा गर्म चाय बनाने गया, तुम इतना
2: घबराती रही हो जरा। आओ बैठो, मुझे चोट भी लगी। मैं बैठो

Thank you.

खैर जहाँ प्रथम और राध्या रोमांस कर रहे हैं तो वहीं दूसरी तरफ परिवार वाले भी काफी खुश हैं, क्योंकि विश्वकर्मा का साया जो इन पर से जा चुका है, ऐसे में राध्या, प्रथम और सभी परिवार वाले खिंचवा रहे हैं तस्वीरें।

0: भाई चाहे कितनी भी खुशियाँ आ जाए लेकिन दादी का भी खुश नहीं होती। फिर एक बार दादी का गुस्सा फूट पड़ा राध्या पर।
1: दादी का कैरेक्टर ही है, दादी को राध्या कभी भी पसंद नहीं है और दादी को प्रिटेंड करना पड़ता है कि सबके सामने कि सब ठीक है, सब अच्छे हैं, सब खुश हैं, लेकिन इंटरनली दादी जो कैरेक्टर है उसको राध्या के साथ कोई मतलब नहीं है, ट्यूनिंग ही नहीं है उसकी। उसकी शक्ल, उसकी फोटो, सब कुछ देखते ही उसका एक अलग लेवल का कैरेक्टर अंदर से आ जाता है।
2: सुहाग की रक्षा से गहरा हुआ राध्या और प्रथम का प्यार।
0: तो भाई अब देखना होगा कि तीज के इस त्योहार में क्या क्या ट्विस्ट आते हैं और कैसे ये त्योहार मनता है। मुंबई से ब्यूरो रिपोर्ट। रुचिता जो हमसे कह रही हैं कि आजकल ना फिल्टर्स को भूलकर कभी कभी असली खूबसूरती को भी कैप्चर करना चाहिए। जरूरी नहीं कि आप हर पिक्चर में एकदम परफेक्ट लगे, क्योंकि कभी कभी ये जो फ्लो है ना यही बनाता है आपको खूबसूरत। तो चलिए लेकर चलते हैं आपको रुचिता और नहल के पास और देखते हैं किस तरह आगे बढ़ रही है अब ये नई कहानी। लेकर चलते हैं आप सबको मन सुंदर के सेट पर।
3: रुचिता की वजह से निहाल को लगी चोट। घर में शुरू हुई तीज की तैयारियां। सेट पर हुआ सेलिब्रेशन।
4: बाजी की शाम है, जश्न बाजी की शाम है।
3: दंगल टीवी के सीरियल मन सुंदर में तीज की तैयारियां चल रही है और ऐसे में देखिए ढेर सारा सामान लेकर निहाल के घर पहुंची है रुचिता। लेकिन यहाँ पर इन दोनों का आमना सामना तो हो ना सका, लेकिन निहाल को चोट जरूर लग गई। जी हाँ, देखिए कैसे रुचिता सामान लेकर आ रही होती है कि नारियल जा लगता है निहाल को और ऐसे में उसे गहरी चोट लग जाती है। लेकिन तभी चुपके से रुचिता वहाँ से चली जाती है। वहीं दूसरी तरफ सास बहू बैठकर देखिए कैसे तैयारियां कर रही हैं। हरे रंग में गिरंगी हुई है। भाई तीज का त्योहार जो है, ऐसे में ढेर सारे मेहमान आने वाले हैं और यहाँ सास बहू की जुगलबंदी शुरू हो चुकी है।
5: तारीफ करूं क्या उसकी जिसने तुम्हें बनाया। वाह,
6: मैं तो मेरी सास की फैन हूं।
5: करो करो सास की तारीफ करो।
6: मैं तो पहले दिन से जब से ये शो ज्वाइन किया है तब से इनकी फैन बन चुकी हूँ और साथ में ही रहते हैं, बहुत अच्छी बॉन्डिंग बन चुकी है और इतनी खूबसूरत भी है।
5: और मैं तो इनको देखती रही, मतलब जब ये तैयार होके आती है मैं ऐसे एडमायर करती रहती हूँ इनको ना। बंगाली हैं तो आंखें बहुत सुंदर हैं इनकी।
6: हम दोनों के बीच में एक अलग बॉन्डिंग है। कुछ कुछ चीज़ें हैं जो हम घर के जो मर्द हैं उनको नहीं बता सकते और जो ट्रेडिशनल फैमिलीज होते हैं वहाँ पे सास बहू के बीच में एक गॉसिपिंग चलती है, एक एक बातचीत चलती है, तो वही चल रही है अभी।
5: एक सीक्रेट भी है हम दोनों के बीच में जो हम लोग शेयर करते हैं और दूसरे लोगों को नहीं बताते और वो अभी ऑडियंस को भी नहीं पता है, तो वो सब भी चलता रहता है हमारे बीच।
3: भाई ये तो रही सीरियल की बात, बात करें बिहाइंड द सीन की तो यहाँ पर हो रहा है सेलिब्रेशन। भाई सीरियल ने पूरे कर लिए हैं 1700 एपिसोड। सीरियल में लीप आ गया है, नए किरदार जुड़े हैं लेकिन क्रू तो पुराना ही है। ऐसे में सभी मना रहे हैं खुशियाँ और खुशी खुशी कर रहे हैं नई कास्ट का स्वागत भी, क्योंकि अब यही है जो इस पीढ़ी को आगे लेकर जाएगी और कई और एपिसोड्स पूरे होंगे। तो आइए इन सितारों से ही जानते हैं इस पर इनका क्या कहना है।

0: ये तो बहुत अच्छा लग रहा है, उत्साहित है नए बच्चों की तरह से, है ना। ये लोग तो पूरी जो क्रू है पुराना है, हम सब लोग नए हैं, है ना। तो इन्होंने बहुत अच्छे से हमें वेलकम किया है, एक नई कहानी से जुड़े हैं। ऑडियंस से चाहते हैं कि आप हम लोगों को भी उसी तरीका का प्यार दीजिए जैसे पहले कास्ट को देते रहे हैं।
1: मन सुंदर एक बहुत ही अच्छा सीरियल है, जो लोग देखते हैं उनको तो पता ही, और जो लोग नहीं देखते उनको मैं रिक्वेस्ट करती हूँ कि प्लीज़ देखिए। अभी लीप आया तो आप लोगों को अच्छे से स्टोरी समझ आएगी। और हाँ, जैसे आप लोगों ने उसको रूही को, जूही को और निहाल को प्यार दिया है, वैसे ही आप हम लोगों को दीजिए प्लीज़।
2: सो अभी जो टीवी का दौर चल रहा है, मतलब शोज़ 3 महीना कभी कभी 6 महीना ऐसे टाइम ड्यूरेशन के लिए चलते हैं, उस जगह पे खड़े होके ये शो 1700 एपिसोड्स को क्रॉस कर रहा है, विच इज़ अ वेरी बिग थिंग। एंड मुझे लगता है मैं ही क्यों, मतलब सारे कास्ट वेरी वेरी एक्साइटेड कि एक इतना लंबा चलने वाला शो का हम लोग पार्ट बने हैं। सो यस, वी आर वेरी वेरी हैप्पी एंड एक्साइटेड अबाउट इट।
3: सबसे पहले तो मैं बहुत ग्रेटफुल हूँ कि मुझे रुचिता का रोल प्ले करने मिला, बिकॉज ये ऐसा रोल है जिसके लिए मैंने बहुत मैनिफेस्ट करा था, बहुत प्रे किया था गॉड को, एंड आई एम वेरी थैंकफुल टू गॉड कि उनके ब्लेसिंग्स के वजह से मैं आज यहाँ पे हूँ। एंड आई एम रियली वेरी थैंकफुल, बिकॉज मुझे याद है मैंने ऐसे बहुत हनुमान जी का ना हनुमान चालीसा 11-12 बार कुछ तो पढ़ते हैं वो किया था, बहुत मैनिफेस्ट मैंने बुक वैसा लिखा था कि मैं हो गई हूँ सिलेक्ट, वो सब किया था। एंड देन फाइनली मुझे जब पता चला मैं सिलेक्ट हुई हूँ, मुझे बिलीव नहीं हो रहा था, मुझे तो लग रहा था कि ये ऐसे ही है, कोई और होगा। बट देन जब फाइनली शूट स्टार्ट हुआ रहा, मेरे को बिलीव होने लगा कि हाँ है। एंड देन स्टार्टिंग में मैं खुद को उतना वर्दी तो नहीं समझ रही थी, क्योंकि बहुत बड़ा शो था, बहुत बड़ा कैरेक्टर है। सो इवेंचुअली जैसे टाइम जाता गया, सो मुझे थोड़ा आई स्टार्टेड फीलिंग कॉन्फिडेंट अबाउट माई सेल्फ, एंड देन वैसे आई स्टार्टेड थोड़ा गेटिंग इन टू इट। एंड अबाउट आर केमिस्ट्री, इट इज़ एक्चुअली वेरी मच बेटर एज ध्रुति एंड जानवी, बिकॉज हम बहुत ऐसा क्लोज है, बहुत अच्छी बॉन्ड है हमारी। यस,
1: जैसे रूही और जूही को प्यार मिला था, आप लोगों को लगता है आप लोगों को वैसा प्यार मिलेगा? देखो कुछ भी हम बोल नहीं सकते, बट मैनिफेस्ट हम कर सकते हैं कि हमें वैसा ही प्यार मिले। और मुझे पता नहीं क्यों वाइब आती है अंदर से कि यू नो मिलेगा हमें उतना ही प्यार, क्योंकि रूही और जूही जैसे थे वैसे जानवी और रुचिता नहीं है, उनकी बॉन्डिंग थोड़ी डिफरेंट है, वो लोग अपना उनका अपना अंदाज है अपना प्यार दिखाने का। सो या और जानवी और रुचिता एक दूसरे से बहुत प्यार करते गाइस, आई होप आप लोगों को हमारी केमिस्ट्री पसंद आए।
4: फर्स्ट ऑफ ऑल आई वुड लाइक टू थैंक गॉड, मैं भोले शंकर का शुक्रिया अदा करना चाहूँगा कि उन्होंने मुझे शो दिया। ये मेरा पहला टीवी शो है और 1700 एपिसोड्स किसी भी टीवी शो के लिए एक बहुत बड़ी अचीवमेंट होती है, और जिस तरीके की हमारी टीम है, जिस तरीके के क्रिएटिव्स हैं, जिस तरीके का प्रोडक्शन है, आई थिंक 1700 इज जस्ट अ वेरी स्मॉल नंबर फॉर देम। ये लोग बहुत आगे जाएंगे, हम 1700 का 3400 करेंगे, 3400 का 5000 करेंगे।
5: तो भाई अभी तो 1700 एपिसोड ही पूरे हुए हैं, कई और एपिसोड अभी होने बाकी हैं, और साथ ही नई कहानी शुरू होगी।
6: शानवी दी, मैं ना आपके लिए बहुत खुश हूँ। बेटा कहाँ जा रहे हो?
7: दादी की इम्पोर्टेंट मीटिंग है।
6: माना कि तीज के त्योहार में तुम्हारा कोई काम नहीं है।
5: मुंबई से प्रीति रानी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट।
6: आज का दिन तो हमारे साथ रहे।
7: सॉरी माँ, बट आज ऑफिस जाना बहुत जरूरी है।
8: हम आ गए रिश्ता लेकर।
9: आज तो हम सेलिब्रेट कर रहे हैं वर्ल्ड फोटोग्राफी डे, और उसके साथ साथ सेलिब्रेट कर रहे हैं यहाँ पर एंटरटेनमेंट को। तो चलिए लेकर चलते हैं आप सबको आपके फेवरेट सेगमेंट की ओर, जहाँ हमारी टीम सास बहू और बेटिया ने की है आपके फेवरेट सितारे से ये प्यारी सी मुलाकात। यहाँ तो हुई है ढेर सारी बातें, तो चलिए लेकर चलते हैं आपको इनके पास और हो जाते हैं इनसे रूबरू।

ये चुलबुली है, स्पोर्ट्स पर्सन है, खतरों से खेलती है, मोहब्बत बांटती है, इतनी सी है लेकिन है लाजवाब। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं आप सबकी प्यारी रूहानिका धवन की, जिनके साथ आज सास बहू और बेटियाँ पूरा एक दिन बिताने वाला है।

0: भाई खतरों से तो ये खेलती ही है, लेकिन आज ये टाइम जोन में ढेर सारे खेल खेलेंगी। कार, बाइक और बास्केटबॉल, यानी आज है रूहानिका का फन डे आउट। तो चलिए शुरुआत करते हैं इस मस्ती भरे डे आउट की, सीधा चल के रूहानिका के पास।
1: आज सास बहू और बेटियां में हमारे साथ जुड़ने वाली है सीरियल की सबसे प्यारी बेटी, सबसे चहेती बेटी रूहानिका धवन। आप तो जान ही गए होंगे मैं किसके बारे में बात कर रही हूँ। उनको हम बहुत प्यार से रूही बुलाते थे, वो बहुत ही चहेती थी सीरियल्स में, और अब वो जो कर रही है वो हमें बहुत प्राउड कर रही है। हमने उनके थोड़े झलक देखे भी हैं खतरों के खिलाड़ी में, और वो बहुत ही बढ़िया गेम खेल रही है विच वी वर नॉट एक्सपेक्टिंग। और आज वो हमारे साथ एक पूरा दिन बिताने वाली है, हम लंच करेंगे उनके साथ, बहुत सारे बातें करेंगे और उनका एक अलग रूप भी देखेंगे, मस्ती वाला रूप जो आज हम आपको सास बहू और बेटियां में दिखाने वाली है। तो चलिए मिलते हैं उनसे और बहुत सारे बातें कर रहे हैं, चलिए। We are going to have a day out and we are stepping out to have some fun and some amazing food with the one and only Ruhanika Dhawan. She's given me permission to call her Ruhi because sabki chaheti she is, we all know that. So Ruhi, welcome. फर्स्टली कैसा लग रहा है आपको?
2: बहुत अच्छा लग रहा है, आप कैसे हैं?
1: बहुत अच्छी हूँ। मुझे बताइए, व्हाट इज योर आइडियल डे आउट लाइक बेसिकली?
2: देखो, मोस्ट ऑफ द टाइम तो मैं क्लीन ईटर हूँ और मुझे वर्कआउट्स करना बहुत पसंद है, तो मुझे खाना बहुत ज़्यादा पसंद है। आई जेन्युइनली लिव फॉर फूड। और मैं एक चीज़ बताऊँ कि जहाँ हम जा रहे हैं ना, मैं जब हम यह मोहब्बतें शूट कर रहे थे, मैं सेट के बाद आती थी इनका आमरस पूरी खाने के, और एक बार मैं अपने एक फ्रेंड को भी लेके गई थी सिर्फ आमरस पूरी खाने में। मैं बहुत खाया है इधर, तो आई एम वेरी एक्साइटेड।
1: तो आज भी हम वही करने वाले हैं, हम बहुत खाएंगे और उसके बाद बहुत मस्ती और बातें भी होंगी, बिकॉज आई नीड टू नो अ लॉट अबाउट यू। सो लाइक आई सेड, वी आर गोइंग टू नो द पर्सन बिहाइंड दिस एक्टर, सो लेट्स गो। देरी किस बात की, राइट? लेट्स गो।
0: तो भाई बाकी सारे काम बाद में, पहले पेट पूजा हो जाए, जिसके लिए ये पहुंच गई है महाराजा भोग में, जहां के स्वादिष्ट खाने का आज रूहानिका मजा उठाएंगी। और देखिए किस तरह से टीका लगाकर हुआ रूहानिका का स्वागत, और फिर एक एक कर अब आएंगी ढेर सारी स्पेशल डिशेस जिसे चखने के लिए रूहानिका काफी एक्साइटेड है। तो भाई प्लेट्स तो लग चुकी है, और जब तक खाना परोसा जाएगा तब तक कर ली जाए रूहानिका से ढेर सारी बातें, जहां वो अपने खतरों के खिलाड़ी का एक्सपीरियंस शेयर कर रही हैं, साथ ही साथ बता रही हैं कि खाने में उन्हें क्या कुछ पसंद है। साथ ही कई सारी बातें रूहानिका के बारे में उन्होंने अपने फैन संग सास बहू और बेटियां के जरिए शेयर की।
1: सो रूही, are we ready to taste some amazing food?
2: We are ready to eat a lot.
1: Oh, superb.
2: मैंने ना लॉकडाउन में बहुत वेट गेन कर लिया था। उससे पहले आई वॉज प्रोफेशनली इंटू स्विमिंग। पूल्स बंद हो गए थे और तब मैं छोटी भी थी, तो मुझे वर्कआउट से इतना आइडिया नहीं था। जो स्विमिंग पूल में प्रैक्टिस की, बाहर स्पोर्ट्स ग्राउंड पे खेल लिया, पार्क में खेल लिया, वो आता था। मॉम सेड नथिंग डूइंग, यू हैव टू गेट बैक। तो यूट्यूब पे वो जो HIIT वर्कआउट थे ना, आई स्टार्टेड विद दैट। And mom actually made a nutrition plan for me. She's very particular. And I'm so great. Initially, I hated it. हम इतने bored थे, वो dalgona coffees और वो cakes, वो सब इतना ठूसा है lockdown में। She's like, this is not you, because I've always been an athlete, a sports person at heart. So she's like, you have to fix your food. And since I was 11 or 12 years old, I've been a clean eater till I'm 18 now. So it's been a journey for me. But हफ्ते में एक बार आई फील लाइक यू शुड ट्रीट योर सेल्फ, वो बैलेंस मेंटेन। आई हैव अ चीट मील वॉट एवर आई फील लाइक आई एम क्रेविंग दैट वीक। और मुझे ना घर का खाना एक्चुअली बहुत ज़्यादा पसंद है। इंडियन फूड इज माई मोस्ट फेवरेट क्विजीन। आई डोंट लाइक बर्गर्स, बट आई लव पिज्जा एंड इटालियन एंड एवरीथिंग, बट इंडियन फूड आई लव।
1: दाल चावल,
2: रोटी विद घी, पनीर। हाँ, आई फील लाइक आई टर्न टू फूड, बिकॉज फूड इज ऑल्सो वेरी कम्फर्टिंग। इफ आई एम हैविंग अ बैड डे, समटाइम्स आई डू लाइक, आई एम अ वेरी चॉकलेट पर्सन। ओके, मुझे कुछ भी मीठा बहुत पसंद है, वो बड़ी प्रॉब्लम है। आई डोंट हैव अ लॉट ऑफ शुगर। वंस अ वीक इफ आई एम क्रेविंग, देन आई टेक अ डेजर्ट विद इट।
1: ओके,
2: बट एनीथिंग चॉकलेट एंड एनीथिंग लाइक रोटी विथ अ गुड पनीर का सब्जी, तंदूरी रोटी पनीर का सब्जी, और समटाइम्स अ मार्गरीटा पिज्जा, वेरी बेसिक.
3: ओह नाइस.
2: सुशी.
3: Not so much.
2: Yeah.
3: But what is your one thing that you can't live without? One food item that you
2: can't. Roti, sabzi. I can't live without. उससे बिना मुझे लगता ही नहीं कि मेरा पेट भरा है. मैं घर पे दो नाचनी रागी की रोटी जो होती है वो खाती हूँ, और जो भी सब्जी बनी है वो खा लेती हूँ लंच में, दो रोटी घी के साथ. उसके अगर वो नहीं है ना, मुझे राइस इतना पसंद नहीं है, रोटी चाहिए ही चाहिए. एक मैंने ना पालक पापड़ी चाट ट्राई किया.
3: ओह गॉड, व्हेन डिड यू ट्राई दैट?
2: केप टाउन
3: ड्यूरिंग खतरों के.
2: हाँ, तो वो बहुत, आई थिंक वो बेस्ट चाट पालक बना.
3: वहाँ पर आपको पालक चाट मिला? कैसे?
2: एक ही रेस्टोरेंट था बाजू में बुखारा करके, वहीं पे मिला.
3: Now that we have come on the topic of Khatron Ke Khiladi, you are everywhere right now.
2: Thank you.
3: Genuinely.
2: I'm so grateful.
3: How did you feel to see yourself in, did you ever imagine being in Khatron Ke Khiladi at such
2: a
3: young age?
2: Yes, 100%.
3: Actually,
2: मुझे किसी ने अप्रोच भी किया था जब मैं 14 या 15 साल की थी, एंड आई डेंट नो दैट आपको ना 18 होना चाहिए लीगली ऑफकोर्स फॉर यू टू गेट ऑन दिस शो. सो दे सेड वी विल पुट इन अ वर्ड फॉर योर खतरों. मैं तो बहुत एक्साइटेड हो गई थी, एंड आई सेड या दिस शो तो आई विल किल इन, बट आई वॉज ओनली 14 और 15 एट द टाइम, तो मुझे वेट करना पड़ा. देन आई वेंट एंड गेव अ मीटिंग, एंड वन ऑफ द मेकर्स ऑफ द शो टोल्ड मी, रूहानिका, you've left a lasting impression on us, which truly meant a lot to me.
3: This is after
2: when I gave the meeting. I actually psyched myself out before going. My mother didn't know this. She was understanding that I'm feeling anxious. But meri jo best friend hai, she dropped me to the airport as well, and she lives in New York. So she only came, she preponed her flight a day before to say bye to me, to drop me to the airport, which is very sweet. She knew that I was very scared. Like, she stayed the night that day. She slept over, and I was very anxious, and she was more scared because this was my first time alone away from my mother and home. But the minute I landed, I cried on the flight to Dubai. I got so scared that I cried on the flight. None of the contestants know because we were all alag-alag in raat. But I was crying because I was scared. I didn't know how I was going to manage myself. But the minute I landed and got to know everyone at the layover at Dubai airport, actually, I felt fine. Like something felt okay.
3: You felt relaxed.
2: I felt relaxed. Yes. And I was very scared. And reality shows na aapko bahut kuch dikhate hain. So itni personal growth hui hai, I feel like a different girl's come back. The first person, I'll have to give it to Ori. We ended up gelling like this day one itself. And Jasmine. So I feel like them initially, but I, being the youngest, I felt like everybody treated me like I was their little sister, and nobody treated me like, अरे ये तो बच्ची है, ये बच्ची है. They treated me उनके दोस्त की तरह, and बिल्कुल as an equal. Nobody yes man me. There were times when I was going wrong, and Ritwik's come and told me, listen, Ruhi, this is where you're going wrong. You can't have this attitude, which I'm so grateful for, because very few people in your life will tell you where you're going
3: will
2: wrong.
3: Guide you also.
2: Yeah, same with everyone, yaar. It's a बहुत सुंदर शो है ये, मुझे शो से एकदम
3: ज़्यादा बॉन्ड अच्छा हो गया. बेस्ट
2: ऑरी, रूबीना एंड जैस्मिन.
0: तो भाई बातें करते करते खाना भी आ गया, और अब खाना खाने के साथ साथ रूहानिका कई और बातें हैं जो हमसे शेयर कर रही हैं, यानी कि पेट पूजा भी और ढेर सारी बातें भी साथ साथ.
2: आई एम अ वेरी एडवेंचरस पर्सन. इनफैक्ट मैं कल रात ही अपनी मम्मी को बोल रही थी कि मैं ना चाहती हूँ कि मैं अपना द मनी दैट आई एम अर्निंग, आई वॉन्ट टू स्पेंड इट ऑन एक्सपीरियंसेस. इन टर्म्स ऑफ, मैंने स्कूबा डाइविंग किया हुआ, इट वॉज द बेस्ट. टाइम स्टॉप, एक्चुअली टाइम स्टॉप. मैं ट्रैक्स पे जाना चाहती हूँ. टेलिंग आई वॉन्ट टू बी इन नेचर, आई वॉन्ट टू गो स्काई डाइविंग, आई वॉन्ट टू एनीथिंग एडवेंचरस. आई मीन एड्रेनलाइन जंकी. तो और ये शो ना थोड़ा सा और आपको पुश करता है टू लीन टुवर्ड्स दैट साइड, बिकॉज द फीलिंग दैट इट गिव्स यू, यू नो दैट सेल्फ फुलफिलिंग, दैट रश. आई डेफिनेटली वॉन्ट टू ट्राई आउट मल्टीपल थिंग्स. समथिंग कॉल्ड व्हाइट शार्क.

0: me to me when someone asks me to wake up early in the morning. No.
1: No, no, no.
0: बहुत क्यूट है. मैं जानती भी नहीं थी कि मैंने ये सब बोला है. मैं हूँ कार्टून लाइफ में. इफ यू गेट टू नो मी ऑन अ वेरी पर्सनल लेवल ना, मैं कार्टून हूँ. मैं हूँ ही ऐसी. मैं कैसे, मेरा बिगेस्ट रिग्रेट है कि मैं स्पोर्ट्स में कुछ कर नहीं रही हूँ.
1: Then how did you enter, if you were so enthused about sports, how did you enter the industry?
0: Thank you. One can have multiple hobbies and multiple interests. I'm lucky, I happen to have two. One is acting. मुझे अपने काम से बहुत ज़्यादा प्यार है. मैं हमेशा ये लोगों से कहती हूँ, आई नेवर वॉन्ट टू नॉट वर्क. एंड स्पोर्ट्स इज लाइक अ साइड थिंग वेर आई फील लाइक लाइफ लॉन्ग इट्स गोइंग टू हेल्प मी, बिकॉज इफ आई एम हेल्थी थ्रू आउट व्हेन आई एम 60, आई विल बी एबल टू लिफ्ट माई ओन बैग्स, वॉक अप द फ्लाइट ऑफ स्टेयर्स. दैट इज, एंड आई वोंट बी स्पेंडिंग माई मनी ऑन हॉस्पिटल बिल्स.
2: Yeah, absolutely.
0: So that's why. And also I feel like it gives you that rush. Performing a sport, pushing your body to the limit gives you that rush, which is what I crave for. बहुत याद आती है. मैंने एक बहुत सुंदर शो भी किया था, ये है मोहब्बतें, which is so ahead of its time. और वो शो ने मुझे इतना नाम दिया है कि आज तक लोग मुझे सिर्फ रूही के नाम से कहलाते हैं. आई एम वेरी ग्रेटफुल, इट गेव मी ऑल द नेम एंड फेम दैट आई हैव टुडे. एंड इट ऑल्सो हेल्प मी डिस्कवर दैट ओके, एक्टिंग इज माई फर्स्ट लव.
3: दिल दस्तरखान बिछाया, ओ दिल दस्तरखान बिछाया, दावते इश्क है.
4: तो भाई रूहानिका इस खाने को काफी एंजॉय कर रही है. उन्हें घर का खाना तो पसंद ही है, साथ ही इंडियन फूड भी बेहद पसंद है. इसीलिए तो आज महाराजा भूख की इस थाली को दिल खोलकर वो एंजॉय करती नजर आए, क्योंकि इसमें काफी सारी डिशेस हैं और टेस्ट वो तो है लाजवाब.
0: अभय देओल सर इज, आई लव हिम. अभय देओल सर, my favorite movie of his is Chopsticks. Very offbeat. I felt like that movie didn't get the recognition it deserved. I love it. I really want to work with him, maybe as his daughter or something, or his sister. I would love to. Wow. It would be an honor. Irfan sir was my favorite. I really cried when I heard about his passing, and it was my dream to share the screen with him. I don't think we're getting another artist, actor like him. No. I think the recent national crush is Abhay Verma. I loved him in Operation Sapphire.
1: You watched it?
0: Yes.
4: तो भाई पेट पूजा तो पूरी हो चुकी है, लेकिन डे आउट खत्म नहीं हुआ है, क्योंकि अभी मस्ती करना तो बाकी है ना. इसलिए ये पहुंच गई है टाइम जोन में, जहां है ढेर सारे गेम्स. और आज फिर एक बार बच्चा बनने को तैयार है रूहानिका. वैसे तो रूहानिका टीनेजर है, और आज ये दिल खोलकर करने वाली है इस टाइम जोन में एंजॉय. सबसे पहले रूहानिका पहुंची बम्पर कार्स में.
5: सो वी आर हियर नाउ टू एट टाइम जोन. वी आर गोइंग टू प्ले सम फन गेम. व्हिच गेम डू यू लाइक प्लेइंग?
6: बस जाके देखते हैं, बहुत समय हो गया.
5: नहीं आए हो यहाँ पर? चलो

0: तो भाई इस मस्ती के जोन में सास बहू और बेटियां और उनके रिपोर्टर भी रूहानिका के साथ हैं। अब बारी अगले खेल की, जो कि है बास्केटबॉल वाला खेल, जिसमें रूहानिका को जीतना ही है।
1: I won.
2: She won.

0: I lost this one very bad. I lost this very bad.
1: तीन में से टू आई वन
2: भाई। यहाँ भी रूहानी का जीत तो नहीं पाई, लेकिन उन्होंने मस्ती बहुत की, अपारी आइस हॉकी की।
1: We still have, we are going to play ice hockey.

0: No. जो मैं खतरों हूँ मैं जीती हूँ ना, मैं तो फिनाले ही जीत गई। तो ये सब छोटे मोटे गेम्स हाँ ना, ठीक है, मैं तो फिनाले जीत ही गई।
1: वैसे गेम्स खेलते खेलते इन्हें मिल गए इनके फैंस भी, जो रूहानिका के साथ खिंचवा रहे हैं तस्वीरें।
2: इश्क इश्क करना है करले, इश्क इश्क में चीले भरले।
1: अब बारी बाइक राइड की। भाई रियल लाइफ में तो ये बाइक नहीं चलाती है, लेकिन यहाँ तो चला सकती है ना। और देखिए कैसे इस बाइक राइड में रूहानिका को बेहद मजा आ रहा है।
0: असली बाइक तो मैं चला नहीं सकती हूँ,

0: तो भाई खतरों के खिलाड़ी में तो ये डेंजरस गेम खेल चुकी है और फैंस इन्हें काफी प्यार भी दे रहे हैं। लेकिन यहाँ इन्होंने अपना फन डे आउट कर काफी मजा किया। अब बारी है इन्हें बाय बाय कहने की।
1: Once you do something very big on screen as well. We are very looking forward to her.
2: Bye bye guys. Thank you for watching.

0: भाई हम उम्मीद करते हैं कि जल्द ही रूहानी का नए किरदार के साथ अपने फैंस के लिए लौटे और करे उनका भरपूर मनोरंजन। मुंबई से अनीता ब्रिटो के साथ ब्यूरो रिपोर्ट।
1: अब देखिए, एक जमाना था जहां पर तस्वीरें खिंचवाने के लिए हमें स्टूडियो में जाना पड़ता था, और अब तो हमारा ये जो मोबाइल फोन है यही बन गया है चलता फिरता कैमरा। लेकिन फिर भी एक अच्छी तस्वीर के पीछे होता है एक खूबसूरत मोमेंट, और आज यही मैसेज लेकर आई है आप सबके लिए हमारी सास बहु अर्पिता की एयरलाइन, क्योंकि आज तो हम सेलिब्रेट कर रहे हैं वर्ल्ड फोटोग्राफी डे, और उसके साथ साथ यहाँ पर हैं आपके फेवरेट शोज के सारे हाइलाइट्स और हाई पॉइंट्स, वो भी एक साथ। गेट सेट गो।
0: दंगल टीवी के सीरियल इश्क जुनूनी में शुरू हो गई है ससुर और बहू के बीच टशनेबाजी। असल में रूहानी को पता चल गया है कि गौतम ने जितने भी कांड किए हैं वो नागेश्वर के कहने पर किए हैं, लेकिन वो चाहकर भी गुरु को ये सब बता नहीं सकती क्योंकि पापा और बेटे के बीच का रिश्ता टूट जाएगा। ऐसे में नागेश्वर इस बात का पूरा फायदा उठा रहा है। तभी तो देखिए कैसे वो मिठाई का डब्बा लेकर पहुँच गया है अपनी बहू रानी यानी की रूहानी के सामने, और देखिए कैसे वो दे रहा है रूहानी को चुनौती कि गुरु ने जो उससे वादा किया है वो जल्दी उसका वादा तोड़ देगा और नागेश्वर की तरह ही बाहुबली बनेगा। लेकिन रूहानी को पूरा यकीन है कि उसका गुरु उससे किया हुआ वादा निभाएगा। तभी तो रूहानी ने मिठाई ले तो ली, लेकिन साथ ही अपने ससुर जी को चैलेंज भी दे दिया।
2: गैर कानूनी हथियार
3: कभी नहीं जाएगा, मेरे गुरु ने मुझसे वादा तोड़ेगा।
2: ठीक है, आज अपना आप को स्वस्थ रखेगा, अपने पाप की बात नहीं जानेगा। जीतते तो मैं अपने सफेद बोर्ड और अपनी डिग्री
3: गलत फहमे हैं आप। कल मेरी डिग्री मेरा कोर्ट नहीं चलेगा, आपके हथियार चलेंगे।
0: एक तरफ रूहानी को अपने गुरु पर यकीन है तो वहीं नागेश्वर को भी अपने बेटे पर भरोसा है कि वो उसका कहा कभी नहीं टालेगा। तभी तो आज नागेश्वर ने रूहानी के सामने अपना फैसला भी सुना दिया है कि अगर गुरु ने अपने पापा की बात मानी तो रूहानी ये अस्पताल छोड़ देगी। फिलहाल तो रूहानी की नज़र सिर्फ और सिर्फ गुरु पर है और वो निगरानी रखे हुए है, वो भी डिजिटली अपने मोबाइल के जरिए। जरा देखिए कैसे वो अस्पताल में मरीजों को देख तो रही है, लेकिन साथ ही साथ उसकी नज़र बार बार अपने मोबाइल पर भी जा रही है। इसी बीच उस अस्पताल में पहुंच जाती है तेजस्वी भी। असल में वो एबॉर्शन करवाने के लिए आई है, लेकिन जैसे ही वो डॉक्टर से मिलने के लिए कैबिन में जाती है तो सामने रूहानी को पाती है, और ऐसे में डर के मारे वो वापस चली जाती है। लेकिन रूहानी वो मोबाइल पर गुरु को देख रही है, जिसके चलते वो तेजस्वी को देख नहीं पाती। लेकिन तभी रूहानी को लगता है झटका, क्योंकि अचानक वो वीडियो रिपीट हो रहा है। ऐसे में रूहानी को डाउट हो गया है। बस उसी डाउट को क्लियर करने के लिए रूहानी अपना कोट पहन वापस निकल तो पड़ी है, लेकिन तेजस्वी वो जा रही है दूसरे डॉक्टर के पास अपना एबॉर्शन कराने के लिए। अब देखना होगा क्या रूहानी तेजस्वी को देख पाएगी। जी टीवी के सीरियल जगधात्री में हमेशा जगधात्री को टशन दिखाने वाली जानवी आज पहुंच गई है जगधात्री से मिलने, वो भी जगधात्री के कहने पर। ऐसे में देखिए कैसे जगधात्री जानवी से मदद की गुहार लगाती है, लेकिन जानवी फिर भी अपना टशन दिखा रही है। ऐसे में जगधात्री फाइल की बात छेड़ती है, वो फाइल जो जगधात्री ने माया तक पहुंचाई थी। ये सुनकर जानवी हैरान तो होती है, लेकिन जगधात्री वो चाहती है कि उसका क्रेडिट जानवी ले ले। ऐसे में जानवी ये बात सुनकर हैरान है और उसे वजह जानने की कोशिश कर रही है कि आखिर क्यों जगधात्री उसकी इतनी मदद करना चाहती है।
4: और मैं नहीं चाहती कि उनका शक मुझ पे आए और सवाल उठा। तुम चाहती हो तुम्हारे अच्छे काम का फर्क मैं नहीं, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं बस हेल्प करना चाहती थी, जो करना था मैंने वो तो मैं कर चुकी हूँ। बाबा की कंडीशन बेटर है जिससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता कि कोई क्या सोचता है क्या समझता है कि ये हेल्प मैंने की है या किसी और ने। सब मैं ये नहीं चाहती कि मेरा कवर हो।
0: पर जगधात्री तो अपने ससुर जी को बचाना चाहती है। इतना ही नहीं, माया को जगधात्री पर शक हो रहा है और अगर ये बात सामने आ गई कि वो फाइल जगधात्री ने दी है तो माया को यकीन हो जाएगा कि जगधात्री एक स्पेशल एजेंट है। खैर, अनजाने में जाह्नवी जगधात्री की मदद कर तो देती है, लेकिन जैसे ही जगधात्री जाने लगती है तो जाह्नवी उसे रोक लेती है और देती है अल्टीमेटम, क्योंकि उसने जगधात्री को अपने कैबिन में जो देख लिया था।
4: एक मिनट आइंदा से मेरे प्रोटोकॉल्स तोड़कर मेरे केबिन में घुसने की कोशिश कर रहा था। तुम्हें क्या लगा कि मुझे पता नहीं चलेगा? जिसने मेरे केबिन में घुस के रूजा की फाइल चेक की वो तुम। आइंदा से ये जुर्रत करने की गुस्ताखी नहीं, वरना ये जो फेवर कर रही हूँ तुम्हारे लिए बहुत भारी होगी। ठीक है, ऐसा वॉन्ट।
0: फिलहाल तो जाह्नवी ने वार्निंग दे दी है, लेकिन जाह्नवी को ये तक नहीं पता कि जगधात्री को उस पर भी शक हो रहा है। अब देखना होगा कि मूसा को पकड़ने के लिए जगधात्री और कौन कौन से कदम उठाएगी।
1: जहां बाकी लोगों को ऐसा लगता है ना कि ये तस्वीर तो सिंपल है, वहीं एक अच्छा फोटोग्राफर उसी तस्वीर में कैप्चर कर लेता है एक कहानी को। और कभी कभी ऐसा होता है ना कि कोई तस्वीर देखकर हमें एक पुरानी याद आ जाती है और हमारा मन यही कहता है कि काश हम इस पल को एक बार फिर जी पाते। कुछ ऐसा ही सोच रहे हैं यहाँ पर हमारी मन्नत। लेकिन मन्नत, लाइफ का रूल ही ये है कि जो गया वो बीत गया, अब जो है वो आज है और हमारा कल है। तो चलिए लेकर चलते हैं अब आपको मन्नत के पास और देखते हैं क्या कुछ हो रहा है इनकी कहानी में आज।

0: बच्चों संग झूम कर नाचा भैर। विक्रांत का बढ़ता गुस्सा, क्या बोधी में होगा धैर्य का खुलासा।
1: बम बम बोले, मस्ती में डोले।
0: कलर्स के सीरियल मन्नत में आज धैर्य का जन्मदिन है और ऐसे में बच्चों ने धैर्य को दे दिया है बर्थडे का सरप्राइज। जरा देखिए कैसे दुआ, बंटी और यूवी तीनों धैर्य की आंखों में पट्टी बांधकर ले आए हैं। और जैसे ही धैर्य की आंखों की पट्टी खुली और धैर्य ने अपना सरप्राइज देखा, वो बेहद खुश हो गया। हालांकि दूर खड़ा विक्रांत ये देखकर गुस्से से आग बबूला हो रहा है, क्योंकि उसे रह रहकर धैर्य का धोखा याद आ रहा है। खैर, वो इन सब चीजों को नजरअंदाज कर रहा है, लेकिन तभी दुआ धैर्य को एक और सरप्राइज देती है और वो सरप्राइज है धैर्य की ये सारी तस्वीरें, जिसमें दुआ है, मन्नत है और साथ है विक्रांत भी। सारी तस्वीरें देखकर सभी बहुत खुश हो रहे हैं, धैर्य भी खुश हो रहा है और दूर खड़ा विक्रांत वो भी इन सारी तस्वीरों को देख रहा है। ऐसे में दुआ की नज़र विक्रांत पर जाती है और उसे लगता है कि उसके पापा को सारी चीजें याद आ जाएंगी, लेकिन उसे क्या पता कि विक्रांत और मन्नत दोनों ही मिलकर धैर्य के सामने नाटक कर रहे हैं। ऐसे में विक्रांत चला जाता है और मन्नत दुआ को समझाती है। इसी बीच वहाँ पर आ जाता है धैर्य भी, जो दुआ के दुख को कम करने की कोशिश करता है।
2: Will you dance with me, my beautiful lady? Come on, let's go!

0: तो जैसे कि आप देख सकते हैं बहुत अच्छा डेकोरेशन किया है वहाँ पे, उस वॉल पे पूरे धैर्य के फोटोज लगाए हुए हैं, तो बहुत अच्छी तैयारी की है दुआ ने और मन्नत ने मिलके तैयारी की है, और अभी बहुत जल्द केक भी कटने जा रहा है, सो वी आर ऑल क्वाइट एक्साइटेड।
1: बट जो आपका गिफ्ट है धैर्य के लिए वो तो बताइए, वो ब्लाइंड फोल्ड के बाद वो जो आप गिफ्ट उनको देने वाले हैं
0: वो तो एक पैरेलल यूनिवर्स में होगा, यहाँ पे नहीं, मन्नत के सेट पे नहीं। नहीं, हमारी तो फोटोज नहीं है, धैर्य की फोटोज हैं मेनली अदनान के साथ, मतलब विक्रांत के साथ और दुआ के साथ, बिकॉज इट्स धैर्यस बर्थडे, उनके ऊपर डेडिकेटेड है ये, तो उनके लिए वो सरप्राइज प्लान किया गया है।
1: कुछ बॉम्ब ब्लास्ट होने वाला है शायद, ऐसा हमें लग रहा है, कुछ फिशी है, तो वो उन्हीं लोगों की फोटोज हैं जो इसमें मिले हुए हैं, आई फील।

0: धैर्य तो बच्चों के साथ डांस करने में मग्न है, लेकिन विक्रांत वो चुपचाप वहाँ से चला जाता है। हालांकि उसे ये नजारा देख देख कर गुस्सा भी आ रहा है, लेकिन वो अपने गुस्से को कंट्रोल कर रहा है। और देखिए कैसे कमरे में पहुंचते ही वो अपना गुस्सा अपने आप पर ही उतारने की कोशिश करता है, क्योंकि वो सच्चाई लाने में कामयाब हो नहीं पाया। इससे पहले कि वो अपने आप से कुछ और कहता, कमरे में पहुंच जाती है दुआ उसे मनाने के लिए। भाई दुआ की मासूमियत देखकर विक्रांत का दिल पिघल गया। वो चाहता है सबके साथ शामिल होना, और ऐसे में वो दुआ के पास भी जाता है उसे गले लगाने के लिए। लेकिन तभी उसकी नजर पड़ जाती है दरवाजे पर, जहां पर उसे किसी के आने की परछाई दिखाई देती है, और वो कोई और नहीं बल्कि धैर्य होता है। ऐसे में विक्रांत चाहकर भी उसे गले नहीं लगा पाता और अपने आप को रोक लेता है और फिर शुरू कर देता है अपना नकली नाटक। अब दुआ को क्या पता कि विक्रांत ऐसा बिहेव क्यों कर रहा है। खैर दुआ यहाँ मनाने आई थी, इसलिए मनाते मनाते उसकी आंखों से आंसू बहने लगे, और ये देख विक्रांत को और भी गुस्सा आ गया, क्योंकि धैर्य के होते हुए वो अपनी बेटी के आंसू तक नहीं पहुँच सकता, इसीलिए वो अपने ड्रामे को कंटिन्यू रखता है।
1: यार तुम लोग ना कसम से यही पसंद नहीं, मैं ये जो कर रही है, ये जो तू कर रही है ना, मैंने बिल्कुल भी पसंद नहीं है। पता नहीं क्या हो जाता तुम लोगों को, हैं? कुछ भी बोल देता तो आंखों से आंसू नलका खोल देते हो, क्या है यार? मत खोल तू, अब पूरी रात नींद नहीं आएगी मैनू। बच्ची ने रुला दिया, आऊंगा मैं जा, अब मैं आऊंगा, बस याद रखना मैं अभी मनी हूं, समझ गई ना
2: दुआ?
3: यहां पे मन्नत में और जनरली भी सबसे जो मिस्चीवियस दिमाग है वो मल्ला का ही है, ऑन सेट और ऑफ सेट। तो अगर कहीं कोई सरप्राइज प्लान हो या कहीं कोई मिस्चिफ प्लान हो या कोई मस्ती प्लान हो, वो सिर्फ मल्ला ही कर सकती है। हम दोनों तो आई थिंक सबसे बोंदू और शरीफ हैं यहाँ पे।
4: आई टोटली अग्री पर ग्रुप में यू ऑल आर फन। यस है, मतलब जो वो खुराफाती जो दिमाग है वो मेरा थोड़ा ज्यादा चलता है, इन लोगों का भी चलता है, बस एक्सेप्टेंस नहीं है इन दोनों में। है दोनों बहुत मिस्चीवियस है दोनों। नहीं नहीं नहीं, तुम भी कम नहीं हो, सच्चाई
0: बता रहे हैं। भाई धैर्य तो यहाँ पर दुआ को अपने साथ ले जाता है, और ऐसे में विक्रांत को अपने ऊपर और भी गुस्सा आता है, क्योंकि जब जब वो दुआ के सामने जाता है उस पर प्यार जताने के लिए, तब तब धैर्य बीच में आ जाता है और उसे दुआ को अपने आप से दूर करना पड़ता है। अब देखना होगा कि ये ड्रामा और कितने दिनों तक चलेगा। मुंबई से शीतल कावा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट।
5: कभी कभी किसी फोटोग्राफ को देखकर हम नहीं समझ पाते जो एक्चुअली उसे खींचने वाला समझ लेता है, यानी उस इंसान के पीछे का पूरा इमोशन, कि आंखों में क्या कहानी है, चेहरे पर कौन सा इमोशन है, क्योंकि वही इमोशन और वही कहानी बनाती है उस तस्वीर को और भी खूबसूरत। और बिल्कुल ऐसी ही खूबसूरत है यहाँ पर भी एंटरटेनमेंट की तस्वीर। मैं तो बात कर रही हूँ नौनिका और ईशान की इस कहानी की। लेकर चलते हैं आपको सैराब के सेट पर।
6: आपके इतने सारे काबिल डॉक्टर्स हैं जिन्होंने मुझे ठीक किया, किसी
2: एक को श्रेय देना तो गलत होगा नहीं?
6: नयनिका और ईशान की दूरियाँ।
2: अगर आप कोई पर्सनल बात करने वाली है तो मेरे पास, जैसे कि आप देख रहे हैं कि मेरे पास टाइम बिल्कुल नहीं है, मैं बहुत बिजी हूँ।
6: नयनिका को इग्नोर करता ईशान।
7: बस अब जाते हैं, ईशान बाबा की।
6: हुआ नयनिका का हाल बेहाल। स्टार प्लस के सीरियल सैराब में हॉस्पिटल में रखा है एक फंक्शन जिसमें ईशान परफॉर्म करने वाला है, और ऐसे में देखिए कैसे नयनिका भी यहाँ पर पहुँची हुई है। सभी लोग उसे आदर सत्कार दे रहे हैं, लेकिन तभी होती है ईशान की एंट्री, जो सभी के सामने नयनिका को इग्नोर करता है, साथ ही कई बातें भी सुना देता है जो सुनकर नयनिका को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। भाई जानबूझकर ईशान ये सब कुछ कर रहा है ताकि नयनिका को भी प्यार का एहसास हो और प्यार की अहमियत पता चले, और लगता है नयनिका को ईशान की कही चीजें बुरी भी लग रही है।
8: वो एक बहुत ही सिंपल इंसान है सर।
9: वो मैं समझ रहा हूँ, लेकिन तुम हमेशा पीछे रहने की कोशिश करती हो, लेकिन आज उन्हें बुके तुम ही दोगी।
8: आप सर, आप सीनियर है, मुझे ऐसा लगता है कि बुके आपको ही देना चाहिए।
2: सर अब मिस्टर ईशान आ गए।
10: हेलो सर, हाउ आर यू?
2: वेरी गुड,
10: हाउ आर यू?
2: गुड। मिस्टर ईशान, हमने आपका इलाज किया, आपकी देखभाल की, इतनी बड़ी अपॉर्चुनिटी मिलने की वजह हमारी खास डॉक्टर नयनिका है। अगर ये नहीं होती तो
10: कैसी बातें कर रहे हैं आप? वो तो इत्तेफाक से मेरा जो एक्सीडेंट है आपके हॉस्पिटल के थोड़ा पास हो गया, इसीलिए पुलिस वाले यहाँ लेके आए, और आपके इतने सारे काबिल डॉक्टर्स हैं जिन्होंने मुझे ठीक किया। किसी एक को श्रेय देना तो गलत होगा नहीं?
11: क्योंकि जो दर्द ईशान ने महसूस करा है, जो दर्द उसको महसूस कराया गया है नयनिका के थ्रू, वो चाह रहा है कि वही दर्द जो है नयनिका भी महसूस करे। और क्या होता है, जब आप किसी एक इंसान के लिए प्यार प्यार प्यार प्यार देते रहते हैं तो उसको शायद प्यार की अहमियत नहीं समझ में आती, उसको वो अहमियत नहीं समझ में आती कि वो इंसान इससे कितना प्यार कर रहा है। एंड एक इंग्लिश गाना है, यू ओनली नो यू लव व्हेन यू लेट अ गो। तो आपको अंदाज़ा ही तब आता है मोहब्बत का जब आप अलग होते हैं, आपको समझ में आता है जब इंसान वो प्यार नहीं देता। तो इसलिए ही ईशान चाहता है कि नयनिका को रियलाइज हो और उसको वही दर्द महसूस हो जो ईशान को महसूस हुआ था जब वो घर से बाहर गया।
6: भाई ईशान तो याददाश्त जाने का नाटक कर रहा है ताकि वो नयनिका को एहसास दिला सके कि असली प्यार क्या होता है। तभी तो नयनिका जब पहुंची ईशान के पास उससे कुछ बात करने के लिए, तो देखिए कैसे नयनिका को फैन समझकर ईशान उससे फॉर्मली बात करता है और ऐसा प्रिटेंड करता है कि वो उसे जानता ही नहीं है। ईशान की ये सारी हरकतें कहीं ना कहीं नयनिका को चुभ रही हैं और उसे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा है।
2: अगर आप कोई पर्सनल बात करने वाली है तो मेरे पास, जैसे कि आप देख रहे हैं कि मेरे पास टाइम बिल्कुल नहीं है, मैं बहुत बिजी हूँ।
8: मुझे पर्सनल बात नहीं करनी है, लेकिन जो बात मुझे करनी है ईशान, वो बहुत जरूरी है।
2: देखा नहीं होने का, अब पता चलेगा तुम्हें कि दिल टूटने पर कैसा लगता है।
8: ईशान, हमारे बीच अब इतनी दूरी आ गई है कि तुम्हारा एक पल भी मुझे नहीं मिलेगा।
12: मुझे ऐसा लगता है कि जब भी इंसान टूटता है या उसका जब दिल टूटता है तो वो अकेले में ही सबसे ज़्यादा एक्सप्रेस कर पाता है खुद के साथ। तो नयनिका अपने कैबिन में बैठी हुई थी और वो बहुत ज़्यादा हर्ट थी, अकेले फील कर रही थी। तो उसने अपनी डायरी में अपनी दिल की बात लिख दी, और दिल की बात लिखने के बाद अपनी डायरी उसने बंद की, और पता नहीं हो रहा है कि कैसे ईशान के पास पहुँच गई। और ईशान ने इन लाइन्स को अपने गानों में कन्वर्ट कर दिया, और नयनिका इज़ वेरी शॉक कि ये हुआ कैसे। तो अभी नयनिका उसे लेकर निकली है बाहर, ये बोलते हुए कि मुझे तुमसे कुछ बात करनी है, और ये शब्द तुम्हें, ये जो तुमने गाया है, ये तुम्हें लाइन्स कहाँ से मिले? बिकॉज ये एग्जैक्ट वही है जो मैंने लिखा था जब मेरा दिल टूटा हुआ था।
11: हाँ, वो कुछ बात करना चाहते हैं, वो अभी तो मुझे नहीं पता कि वो क्या बात करना चाहती हैं, पर कुछ ऐसा हो रहा है कि हम
10: हॉस्पिटल में परफॉर्म कर रहे हैं क्योंकि ये हॉस्पिटल के सारा स्टाफ चाहता था कि ईशान परफॉर्म करे, तो वो उनकी खुशी के लिए परफॉर्म कर रहा है. और परफॉर्म करते करते वो नयोनिका से भी आई कॉन्टैक्ट कर रहा है, पर उसको नहीं बता रहा है कि वो जानता है उसको या उसको उसकी मेमोरी गई नहीं है. एंड यही नैन मटक्के चल रहे हैं, नैनो नैनो में बातें चल रही हैं. अब जब आप देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि आँखों में दर्द भी बहुत है ईशान के, पर वो दर्द उसके सामने बयां भी नहीं कर सकता है. तो उस दर्द को गुस्से में परिवर्तन करके वो उसके साथ बर्ताव कर रहा है. तो आप देखेंगे तो आपको बहुत ही इंटरेस्टिंग डायनामिक्स देखने को मिलेंगे.
6: भाई जहाँ एक तरफ ईशान का ये बर्ताव, तो वहीं दूसरी तरफ ईशान के साथ जो रहते हैं उन्होंने नयनिका को ये बता दिया है कि वो जल्द ही ईशान की शादी करवाएंगे. और साथ ही नयनिका से ये भी कह दिया है कि वो ईशान से दूर रहे, जिसके बाद नयनिका पूरी तरह से टूट चुकी है.
7: अगर ईशान बाबा ने मेरी बात नहीं मानी ना, तो मैं साफ साफ उनके साथ नहीं रहूंगा. बस एक अच्छी सी लड़की देखूंगा और दो महीने में
8: जब ईशान की शादी तय हो जाए तो आपने सोचे बता दीजिए. कम से कम मैं उसे दो महीने
7: उससे किसी तरह का संपर्क नहीं करेंगे. वो जैसे भी हैं वैसे खुश
6: रहे. भाई अब देखना होगा कि कब नयनिका अपने प्यार का इजहार ईशान से करती है और कब खत्म होता है ईशान का ये ड्रामा. मुंबई से कुणाल उपाध्याय के साथ ब्यूरो रिपोर्ट.
5: पुरानी तस्वीरों को संभाल कर रखिए क्योंकि ये तो प्राइसलेस हैं. अब देखिए डिजिटल फोटोग्राफ्स जो हमारे पास रहते हैं वो तो ठीक है, लेकिन जो इम्पोर्टेंट फोटोग्राफ्स हैं उनका हमेशा बैकअप रखिए. यही है हमारी नेक्स्ट टिप. और इसी के साथ साथ अब लेकर चल रहे हैं आप सबको आपकी फेवरेट कहानी की ओर, क्योंकि कहानी में फिर से आया है एक नया मोड, यानी एक नया ट्विस्ट, यानी एक नया ड्रामा. लेट्स चेक इट आउट.
13: तू कंटी बिग बैन दी पूरा लंदन ठुमकदा ओ जदो नचे पैन दी.
6: अपने ही सगाई में झूम कर नाची स्वाति.
13: तू कंटी बिग बैन
6: शादी को लेकर संजय के दिल में कश्मकश. माधवी को हुआ संजय पर शक. जी टीवी की सीरियल तू ही रे दिल में आज होने जा रही है संजय और स्वाति की सगाई. ऐसे में पूरा घर सज कर तैयार है. सभी घर वाले बेहद खुश नजर आ रहे हैं. संजय के घर वाले भी स्वाति के घर पहुंच गए हैं सगाई की रस्म के लिए. और स्वाति वो तो खुशी से फूली नहीं समा रही. देखिए कैसे साज श्रृंगार कर उसने की है नाचते गाते एंट्री, और उसे नाचते गाते देख सभी लोग बहुत खुश हो रहे हैं.

0: वहीं दूसरी ओर संजय तय करता है कि वो स्वाति को सच बताएगा, लेकिन संजय का भाई उसे खींचकर वहां से उस कमरे में ले जाता है जिस कमरे में वृंदा रुकी हुई थी। हालांकि दोनों इस बात से अनजान है कि वृंदा इसी घर में रह रही थी, लेकिन उस कमरे को देखकर संजय को कहीं न कहीं अपनेपन का एहसास हो रहा है और दौर माता रानी की तस्वीर के आगे वो घुटने टेक कर हाथ जोड़कर प्रार्थना करने लगता है क्योंकि अब वो कश्मकश में फंसा हुआ है। इतना ही नहीं, उसकी कश्मकश उसका भाई भी बखूबी समझ रहा है, इसीलिए वो उसे समझाने की कोशिश कर रहा है। लेकिन तभी आता है कहानी में ट्विस्ट, क्योंकि उस कमरे में हो जाती है माधवी की एंट्री, जो इस तरह से संजय की बेचैनी देख करने लगती है संजय पर शक।
1: तुमने तो अभी चेंज भी नहीं किया, मेरा दिखा जा रहा है तो सब वेट कर रहे हैं। तुम लोग यहाँ कैसे आ गए इस रूम में?
2: कुछ नहीं था कि वो मेरा भी कमाई घूम रहे थे ना पता लगने के लिए, और मंदिर में मिल गया, सोचा सही के पहले आशीर्वाद भी लेंगे।
1: मंदिर तो ऊपर भी नहीं आ, यहाँ इस रूम में मंदिर घूमते आने की क्या जरूरत है? कुछ गड़बड़ लग रही मुझे, बट आई होप मेरा पर्सनल मैटर है तो सॉल्व इट, गेट रेडी और ऊपर आई होप एवरीथिंग इज फाइन।
0: भाई माधवी ने तो संजय को तैयार होकर जल्द से जल्द आने को कह दिया है क्योंकि घर में सभी मेहमान आ गए हैं और दौर कविता और रूपल भी मिल गए हैं और रच रहे हैं षड्यंत्र सरिता के खिलाफ। ऐसे में वहाँ पर आ जाते हैं दादाजी, जिन्हें सब समझ आ जाता है और वो ना सिर्फ दोनों को फटकार लगाते हैं बल्कि उनके हाथ में जो ड्रिंक है वो भी लेकर आगे चलने लगते हैं। ये देखकर रूपल और कविता दोनों ही परेशान हो जाती हैं क्योंकि उस ड्रिंक में उन्होंने मिलावट की हुई है, इसीलिए वो दादाजी से वो ड्रिंक ले लेती है। लेकिन अब देखना होगा ये ड्रिंक किसके पल्ले पड़ेगी और किसका राज सगाई में खुलेगा। मुंबई से ब्यूरो रिपोर्ट।
3: अगर हमारे देश भारत को आप फोटोग्राफी के नज़रिए से देखेंगे तो कहीं रंग है, कहीं कला है, कहीं त्यौहार है, तो कहीं लोगों की रोज़मर्रा की ज़िंदगी। यहाँ पर तो है एंटरटेनमेंट का हर रंग। आज तो हम सेलिब्रेट कर रहे हैं वर्ल्ड फोटोग्राफी डे और उसी के साथ साथ सेलिब्रेट कर रहे हैं एंटरटेनमेंट को। और अगली एंटरटेनमेंट की गुड न्यूज़ को हम परोस रहे हैं आपको राइट हियर राइट नाउ, वो भी गर्मा गर्म। कैसे? ऐसे।
4: खुदा के वास्ते हमें अपना काम करने दीजिए, जाइए यहाँ से।
5: मसला पता है क्या? इस काम की वजह से ना हम दोनों के बीच दीवार खड़ी हो गई।
0: सहर और माहित की तू तू मैं मैं
5: कर देते हैं, उसके बाद तो आपको हमारी बात माननी ही पड़ेगी।
4: सहर ये क्या कर रहे हैं आप, पागल हो गए क्या?
0: पेंटिंग ने जोड़े सहर और माहित के दिल। करीब आ रहे हैं दो दीवाने। के सीरियल सहर में सहर माहित को पूरी तरह से ठीक करना चाहती है, इसके चलते दोनों अब चोरी छिपकर मिलने लगे हैं। ऐसे में देखिए कैसे माहित भी छिपते छिपाते सहर को अपने कमरे में लेकर जा रहा है ताकि उसका ट्रीटमेंट हो सके, लेकिन घर का एक व्यक्ति सहर को देख लेता है। बस फिर क्या, अगले ही दिन सहर और माहित के चर्चे होने लगते हैं और ये बात माहित को तब पता चलती है जब माहित तैयार होकर अपने काम के लिए निकलते हैं और वहाँ पर खड़े लोग उनके बारे में बातें करने लगते हैं। लोगों की बातों को माहिद ने भले ही नजरअंदाज कर दिया हो लेकिन अब उन्होंने शहर से दूरियां बनानी शुरू कर दी हैं। तभी तो देखिए कैसे जब वो स्कूल के लिए बेंच पेंट कर रहे होते हैं तो वहां पर शहर पहुंच जाती है जो चाहती है कि माहिद उसके साथ उसके अस्पताल जाए। ऐसे में माहिद मना कर देता है लेकिन शहर उसका हाथ पकड़ कर उसे उठाने लगती है और उसी के चलते शहर गिरने वाली होती है कि माहिद संभाल लेता है और उसे साफ साफ मना कर देता है। बस फिर क्या, सहर भी शुरू हो जाती है और जिद करने लगती है।
6: हम जानते हैं सबक बहुत कीमती है पर हमारी रोजी की घड़ी की सुई ना आप पर ही अटकी हुई है, जहर कीजिए हम पर और चलिए ना हमारे साथ। देखिए आपको ना आपको हमारा साथ देना होगा, हमारे साथ चलाएंगे। हमारी भी तो मजबूरी समझिए ना, डॉक्टर सुल्ताना ने हमें 2 दिन की छुट्टी तो दे दी है, लेकिन 1-1 मिनट का हिसाब मांग लिए वो उनसे। वो देखना चाहते कि बाकी हम मम्मी की तैयारियाँ कर भी रहे कि नहीं, इसलिए हिदायत दी है हमें कि हम उन्हें फोटोज भेजते रहे तैयारियों की।
7: हमारे भी मुलाजिम आप भी उन्हें छुट्टी देते, लेकिन हम उन्हें भी पूछते छुट्टी के दिन करते क्या।
6: आपके मुलाजिमों के साथ आपकी तबाद भी ना लटकती है, ना डॉक्टर सुल्ताना है ना आपके मुलाजिम शहर पे है, हमारी बात अलग है, हम पर इंक्वायरी बैठी हुआ है।
0: अब सहर चाहती है कि उस पर इंक्वायरी ना बैठे, इसीलिए माहिद उसके साथ उसके अस्पताल जाए, लेकिन माहिद बिल्कुल भी राजी नहीं है और अपने काम में इस तरह मशरूफ है कि सहर की बातों को नजरअंदाज कर रहा है। लेकिन सहर भी कम नहीं, वो अपनी कोशिशें जारी रख रही है। वही शहर को बचाने के लिए माहिद ने नकली सगाई का नाटक तो किया है, लेकिन अब वो इसके आगे कोई भी झूठा नाटक करना नहीं चाहता। ऐसे में जिद के मारे शहर पहुंच जाती है दूसरी बेंच में खिड़की बनाने और अपनी जिंदगी की नई खिड़की खोलने, और उसी के चलते दोनों के बीच मस्ती शुरू हो जाती है और होता है रोमांस भी। अब देखना होगा क्या इनकी ये करीबियां सच्ची हो जाएंगी। मुंबई से ब्यूरो रिपोर्ट।

0: पारखी नजर से उसी कैमरा को यूज कर एक फोटो खींचे तो वाओ, सच में वो मोमेंट कंप्लीटली हो जाता है रॉकिंग। और बिल्कुल ऐसा ही है हमारा ये अगला सेगमेंट, जहां हम दिखाएंगे आपको एंटरटेनमेंट की दुनिया के अलग अलग रंग जो है रॉकिंग एंड शॉकिंग न्यूज।
1: पेश है बॉलीवुड ओटीटी और टीवी की रॉकिंग और शॉकिंग खबरें। बात करते हैं पति पत्नी और पंगा के सीजन 2 की, जो जल्द ही शुरू होने वाला है। ऐसे में खबरें आ रही हैं कि इस सीजन में बतौर कपल नजर आ सकते हैं कपिल शर्मा अपनी वाइफ गिन्नी संग। इसी के साथ नाम आ रहा है निया शर्मा का, जो अपने रूमर्ड बॉयफ्रेंड के साथ शो में नजर आ सकती है, लेकिन अब तक कोई कन्फर्मेशन नहीं है।

साथ साथ नजर आए योगेश और आकांक्षा जो पहुंचे हैं डेट पर। ऐसे में उन्होंने शेयर की है ये तस्वीरें। इसी के साथ देख लीजिए हुआ लॉकअप 2 के कुछ कंटेस्टेंट्स का रियूनियन। माधुरी के घर पर नजर आए आकांक्षा, लैला और रियाज।

0: डाल लीजिए जगधात्री के नए प्रोमो पर, जहां पर महेश को आएगा हार्ट अटैक और घर वाले हो जाएंगे परेशान क्योंकि महेश पर लगा है इल्जाम।
1: महेश देशमुख संगीन आरोप उद्योग।
2: जब पे उठी आई है, किस बजे आई है? अरे
3: पैसा संभालिए
4: मामा। क्या हुआ काका को? काका यू ऑल राइट?
3: ये कहानी खत्म नहीं होती, साक्षी कुछ नया लेके आ जाती है। ये हालत तो होनी थी भाई साहब।
4: किलो हो रहा है महेश काका, जस्ट रिलैक्स बी विद अस प्लीज।
3: क्या हुआ है बाबा को?
4: आई थिंक काका का बीपी ड्रॉप हो रहा है। शिवाय
3: और हाथ भी बताना बाबा को।

जल्द आने वाला है बिग बॉस का सीजन 20। ऐसे में कुछ कंटेस्टेंट्स के नाम सामने आ रहे हैं। खबरों की माने तो इस सीजन में नजर आ सकते हैं खुशी दुबे, काजी तौकीर और मैरी कॉम। वाली है कियारा अडवाणी और सैफ अली खान की जोड़ी। खबरों की माने तो ये दोनों साथ साथ नजर आएंगे कनिका ढिल्लों की आने वाली नई फिल्म में, जिसमें कनिका कर रही है अपना डायरेक्टोरियल डेब्यू।

0: लीला, जिसका बस है एक अरमान।
1: आपका आशीर्वाद चाहिए पापा।
2: जी टीवी पर जल्द शुरू होने वाला है नया शो, जिसका नाम है दिलों की रामलीला। सामने आया है इसका प्रोमो। वैसे इस सीरियल में नजर आएंगे मिशकत वर्मा, आस्था शर्मा, एजाज खान और मानसी सालवे।
3: सर, मीडिया वाले बाहर वेट कर रहे हैं।
0: और है वीरेंद्र का हनुमान।
3: बड़ो,
4: तीन बार एजुकेशन मिनिस्टर बने हो, इसलिए मैं सर उतार लेती हूँ।
5: कहने को तो मेरी बड़ी बहन है, लेकिन मेरे लिए मेरी सगी माँ से बढ़कर है।
6: वीरेंद्र सहगल, तेरा सब कुछ जीत लूंगी।
7: लीला मैडम तो कॉलेज,
4: घर में इतने सारे लोग हैं, फिर ये बाहर वाला थी।
5: मुझे उस पर पूरा भरोसा, उसे आप घर वाला ही समझे।
1: फिजिक्स तो हमारा केमिस्ट्री का एग्जाम है ना।

0: आप पता था?
1: अरे तो बताया क्यों नहीं?
0: आपने बताने का दिया मैडम।
2: तो जूलियट जर्दरी के सेट से सामने आई है ये तस्वीरें, जहां संगीता घोष कह रही है अपने को एक्टर्स को अलविदा, क्योंकि उन्होंने शो छोड़ दिया है ऐसा सुनने में आ रहा है, लेकिन अब तक कोई कंफर्मेशन नहीं है।

0: आज वर्ल्ड फोटोग्राफी डे के मौके पर आप ना एक तस्वीर जरूर खींचिए, लेकिन लाइक्स के लिए नहीं, किसी खूबसूरत याद को संभाल कर रखने के लिए। क्योंकि लोग बदल जाते हैं, वक्त गुजर जाता है, जगह बदल जाती हैं, लेकिन जैसे ही हम एक पुराना फोटो खोलते हैं ना, वो पल फिर से हमारी आंखों के सामने आ जाता है। यही तो है फोटोग्राफी का जादू। देखिए किस तरह एक फोटो में कैप्चर हो जाती है एक पूरी कहानी। हैप्पी वर्ल्ड फोटोग्राफी डे। और इसी के साथ साथ अब लेते हैं आपसे विदा। मुलाकात होगी आपसे कल सेम टाइम सेम जगह, ओनली ऑन सास बहू और बेटियां।
1: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाती है।

0: कब कोई व्यक्ति जीवन में सही निर्णय ले पाता है, कब व्यक्ति के द्वारा लिए गए निर्णय गलत होते हैं, किन ग्रहों का प्रभाव आपके निर्णय पर पड़ता है और सही निर्णय लेने के उपाय क्या हैं, जानिए मेरे साथ सिर्फ किस्मत कनेक्शन में।
1: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज़ टुडे पर।

0: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
1: देश देख रहा है अच्छी खबरें।
2: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट, कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच। HRIT यूनिवर्सिटी गाजियाबाद, शेपिंग फ्यूचर, क्रिएटिंग लीडर्स।
3: गोल टेस्ट में भारत की शानदार जीत, श्रीलंका को 165 रनों से हराया। दो टेस्ट की सीरीज में भारत 1-0 से आगे। मानव सुतार ने पूरे मैच में शानदार 10 विकेट छोड़े। राजगढ़ में अनूठी शिव भक्ति, 7 दिन में 5,15,000 पार्थिव शिवलिंग बनाने का रखा लक्ष्य, निकाली भव्य कलश यात्रा। धौलपुर में भी दिखे शिव भक्ति के। देश भर में गणेश उत्सव की तैयारियां तेज, तमिलनाडु के तिरुचिरापल्ली में बनाई जा रही इको फ्रेंडली गणेश जी की मूर्ति, पर्यावरण संरक्षण का दे रहे संदेश। NHAI ने 121 टोल प्लाजा पर शुरू की ऑनलाइन फास्टैग लोकल पास सुविधा, राजमार्ग यात्रा मोबाइल ऐप के जरिए घर बैठे लिया जा सकता है पास। यूपी जापान इन्वेस्टमेंट मीट 2026 से राज्य को मिले विकास के पंख, बनेगी 500 एकड़ की जापानी सिटी, 10,000 युवाओं को मिलेगा रोजगार।
0: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोग।
3: गोल टेस्ट में भारत की शानदार जीत, टीम इंडिया ने श्रीलंका को 165 रनों से दी करारी शिकस्त। मानव सुथार ने अपने करियर के दूसरे ही टेस्ट में रच दिया इतिहास, 10 विकेट लेने का किया कारनामा, पहली पारी में 4 विकेट और दूसरी पारी में 6 विकेट छटके। टेस्ट इतिहास में ये भारत की श्रीलंका पर लगातार 9वीं जीत, 2015 के बाद भारत के खिलाफ श्रीलंका को कोई टेस्ट जीत नसीब नहीं हुई। ये भारत का 600वां टेस्ट था, इस जीत के साथ 2 टेस्ट की सीरीज में भारत को 1-0 की बढ़त। इस जीत के साथ भारत को वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के पॉइंट्स टेबल में मिली बड़ी राहत, अब भारत 10 मैच में 5 जीत 4 हार और 1 ड्रॉ के साथ 5वें नंबर पर काबिज। मेंस हॉकी वर्ल्ड कप में आज भारत पाकिस्तान के बीच महामुकाबला, वैगनर हॉकी स्टेडियम में खेला जाएगा पूल डी का ये मुकाबला। पिछले 10 साल से पाकिस्तान के खिलाफ अजय है टीम इंडिया, दोनों टीमों के बीच हुए हैं 19 मैच, इनमें 17 मैच भारत जीता है जबकि 2 ड्रॉ रहे हैं। महिला हॉकी विश्व कप में भारत की शानदार जीत, दक्षिण अफ्रीका को 6-1 के बड़े अंतर से दी मात, टूर्नामेंट में भारत की पहली और अब तक की सबसे बड़ी जीत। भारत की ओर से नवनीत कौर, सुनेलिता टोपो, सुशीला चानू पखरामबम, दीपिका लाल रेम सियामी और साक्षी राणा ने दागे गोल। भारतीय टीम ने दर्ज की टूर्नामेंट की अपनी पहली और अब तक की सबसे बड़ी जीत, भारत ने अपने पहले मुकाबले में चीन के साथ 2-2 से ड्रॉ किया था मैच। बैडमिंटन वर्ल्ड चैंपियनशिप में लक्ष्य सेन की शानदार जीत, लक्ष्य ने पहले दौर में ऑस्ट्रिया के कॉल्सन वैलेंटाइन ना फिलमोन को 16-21, 21-8, 21-4 से हराया। लक्ष्य सेन ने पहला गेम हराने के बाद की शानदार वापसी, दूसरा तीसरा गेम जीतकर अपने नाम किया ये मैच, इसी के साथ लक्ष्य ने राउंड ऑफ 32 में की एंट्री। महिला डबल्स मुकाबले में प्री क्वार्टर फाइनल में पहुंची भारत की त्रिशा जॉली और गायत्री गोपीचंद की जोड़ी, अमेरिका की लॉरेन लैम और एलिसन ली की जोड़ी को दी मात। महज 39 मिनट में त्रिशा जॉली और गायत्री गोपीचंद ने जीता यह मुकाबला, विरोधी टीम को सीधे गेम में 21-15, 21-12 से हराया। वीनस विलियम्स को मिला यूएस ओपन का वाइल्ड कार्ड, 46 की उम्र में खेलेंगे 7 बार के ग्रैंड स्लैम चैंपियन वीनस। भारत की मशहूर मिथिला चित्रकला ने बनाया विश्व रिकॉर्ड, 108 मीटर लंबे कैनवस पर लिखे रामचरितमानस के प्रसंग। इस विशाल कलाकृति को तैयार करने में मिथिला चित्रकला संस्थान से जुड़े 180 छात्र छात्राओं ने लिया इसमें हिस्सा, दिल्ली में हुआ यह कार्यक्रम। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार रामायण काल में हुई थी इसकी शुरुआत, जब राजा जनक ने सीता राम के विवाह पर दीवारों पर चित्र बनवाने का दिया था निर्देश। धनबाद की दो बहनों को मिला गिनीज गोल्ड मेडल, ऑनलाइन श्लोकों का पाठ कर बनाया ये रिकॉर्ड। प्रांजल और आन्या मित्तल की इस उपलब्धि पर परिवार में खुशी की लहर, मां बचपन से ही उन्हें सिखाती थी गीता का पाठ। जापानी प्रतिनिधिमंडल की यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ से खास मुलाकात, निवेश को लेकर दिखाया उत्साह। उत्तर प्रदेश और यामानाशी के बीच बड़ी डील, 4000 करोड़ रुपए के ग्रीन हाइड्रोजन और 2029 करोड़ रुपए के एक्सकॉर्ट्स कुबोटा निवेश। इस मीट में जापान के 200 से अधिक उद्योगपति, सीईओ, बिजनेस लीडर्स रहे हैं हिस्सा। मुख्यमंत्री योगी समेत केंद्र और प्रदेश सरकार के वरिष्ठ मंत्री अधिकारी भी मौजूद। 22 अगस्त को काशी विश्वनाथ के दर्शन करेगा जापानी प्रतिनिधिमंडल, यूपी जापान इन्वेस्टमेंट मीट 2026 कार्यक्रम का हिस्सा है ये दौरा। NHAI ने 121 टोल प्लाजा पर शुरू की ऑनलाइन फास्टैग लोकल पास सुविधा, राजमार्ग यात्रा मोबाइल ऐप के जरिए घर बैठे लिया जा सकता है पास। रजौरी का गवर्नमेंट हायर सीनियर सेकेंडरी स्कूल बना एजुकेशन मॉडल, स्मार्ट क्लासेस के जरिए पढ़ रहे हैं छात्र। आधुनिक लैब और बाकी सभी सुविधाओं से लैस स्कूल, पढ़ाई में बच्चों की रुचि जगाना है इसका मकसद। भारत पाकिस्तान सीमा पर अब आसमान से आने वाले हर एक खतरे का जवाब देगा बीएसएफ, जवानों को दी जा रही है ड्रोन उड़ाने और एंटी ड्रोन सिस्टम के इस्तेमाल की ट्रेनिंग। सुकमा पुलिस की बड़ी सफलता, जंगल में डंप नक्सली सामग्री बरामद, नक्सलियों ने चिंतन नार के जंगलों में छुपा रखा था विस्फोटक। दिल्ली पुलिस की संपर्क सभा और संवाद कार्यक्रम का आयोजन, पुलिस कर्मियों और अधिकारियों के बीच बेहतर तालमेल और कार्यप्रणाली को सुधारने की पहल। सावन के महीने में लगातार दिख रहे कावड़ की यात्रा के नए रंग, अलग अलग आकार और स्वरूप की कावड़ खींच रही ध्यान। विशाल कावड़ों में सजी भगवान विष्णु, श्री राम और महाकाल की भव्य प्रतिमा, सुल्तानगंज से गंगा जल लेकर 105 किलोमीटर की यात्रा कर वैद्यनाथ जाम रहे शिव भक्त। शिक्षक बनने की मन्नत लेकर कठिन यात्रा कर रही 11 साल की प्रियंका, पहली बार दंडवत यात्रा कर रही है प्रियंका। पावन महीने में बरेली में प्रशासन, स्थानीय समितियों और विभिन्न सामाजिक संगठनों द्वारा कावड़ियों का किया गया भव्य स्वागत, हेलीकॉप्टर से हुई पुष्प वर्षा। कावड़ियों के लिए जगह जगह फलाहारी भंडारे और विश्राम शिविरों का विशेष प्रबंध, शहर में पूरी तरीके से भक्तिमय और सौहार्दपूर्ण माहौल। पूरी श्रद्धा के साथ जारी जम्मू कश्मीर के पुंछ जिले में स्थित प्राचीन बाबा बूढ़ा अमरनाथ की 12 दिवसीय वार्षिक यात्रा, धार्मिक यात्रा में भक्तों का जोश है। पुंज पहुंचा बूढ़ा अमरनाथ यात्रा का दूसरा जत्था, जत्थे में देश विदेश के कुल 1938 भक्त शामिल। मंडी बेस कैंप में फूलमाला पहनाकर किया गया यात्रियों का स्वागत, बम अम्बोले के जयकारों से भक्तिमय हुआ माहौल। यात्रियों की सुविधा के लिए लगाए गए हैं खाने पीने के स्टॉल्स, भक्तों की यात्रा सुगम और सफल बनाने के लिए हर संभव कोशिश कर रहा है प्रशासन। 28 अगस्त तक जारी रहेगी आस्था की ये यात्रा, रक्षाबंधन के दिन होगा 12 दिवसीय यात्रा का समापन। उत्तर प्रदेश के पीलीभीत में है भगवान भोलेनाथ का अनोखा धाम, गोमती नदी के किनारे घने जंगल के बीच बसे बाबा 71 नाथ धाम को लेकर कई मान्यताएं। भोलेनाथ के इस धाम में रंग बदलते शिवलिंग और पहली पूजा को लेकर भक्तों में गहरी आस्था है, मन्नत पूरी होने पर यहां चढ़ाए जाते हैं हैंडपंप। पीलीभीत के पूरनपुर तहसील इलाके में पुन्नरपुर टांडा गांव के पास घने जंगलों के बीच मौजूद है बाबा 71 नाथ का धाम, दूर दूर से यहां पर पहुंचते हैं श्रद्धालु। भोलेनाथ के दर्शन के लिए यहां पर गोमती नदी के किनारे बसे घने जंगल से गुजरकर यहां पर पहुंचते हैं श्रद्धालु। यहां लगे सैकड़ों हैंडपंप बताते हैं लोगों की आस्था की कहानी। मान्यता है कि महर्षि गौतम के श्राप से मुक्ति के लिए देवराज इंद्र ने यहां की थी 71वें शिवलिंग की स्थापना। मान्यता है कि गर्भगृह में मौजूद शिवलिंग बदलता है अपना रंग।

0: देश भर में गणेश उत्सव की तैयारियां तेज। तमिलनाडु के तिरुचिरापल्ली में बनाई जा रही इको फ्रेंडली गणेश जी की मूर्ति। हर आकार और स्वरूप की बप्पा की कलाकृतियां बनाने में जुटे कलाकार। भक्ति के साथ पर्यावरण संरक्षण का दे रहे संदेश। उधम सिंह नगर में दिख रही राखी के त्योहार की रौनक। घर से दूर बैठे भाइयों तक राखी भेजने, डाकघर में उमड़ी बहने, लगी लंबी कतार। राखी भेजने वाली महिलाओं को किसी तरह की परेशानी ना हो, इसके लिए डाक विभाग ने भी की है विशेष व्यवस्था। राखी भेजने के लिए बनाया गया अलग काउंटर। राखी भेजने वालों में हर आयु वर्ग की महिला शामिल। देश भर में 28 अगस्त को मनाया जाएगा भाई बहन के प्यार का ये त्योहार। तमिलनाडु की लाखों कामकाजी महिलाओं के लिए गुड न्यूज आई सामने। राज्य सरकार ने तीसरे बच्चे के लिए 1 साल का मातृत्व अवकाश देने का किया ऐलान। मध्य प्रदेश में रेलवे नेटवर्क के विस्तार से जुड़ी गुड न्यूज आई सामने। ग्वालियर चंबल अंचल में केलारस सबलगढ़ बीरपुर रेल सेक्शन का हुआ शुभारंभ। रेल सेक्शन के उद्घाटन में केंद्रीय मंत्री, मुख्यमंत्री समेत कई नेता हुए शामिल। रेल नेटवर्क के विस्तार से सुधरेगी कनेक्टिविटी, क्षेत्र के विकास को मिलेगी रफ्तार। असम में युवाओं से जुड़े मामलों को सुलझाने के लिए युवा कल्याण विभाग बनाएगी सरकार। मुख्यमंत्री हिमंत बिस्व शर्मा ने किया इसका ऐलान। गुजरात के राजकोट में बिना नंबर प्लेट वाली और बिना हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट वाली गाड़ियों को नहीं मिलेगा पेट्रोल। राजकोट में लागू हुआ यह नियम।
1: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम

0: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
1: और दुर्भाग्य कहता है
2: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
3: अविश्वास में विश्वास बसता है,
0: जो हम में अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
4: गुड न्यूज टुडे।
5: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को

0: भाई और बहनों नमस्कार। मैं बाबा रवि गिरी आज जो कार्यक्रम लेके आया हूं वो आपकी आंखें खोल देगा। क्या आप जानते हैं कि मैं 78वें वर्ष में चल रहा हूं, लेकिन आपको शायद ये जानकर विश्वास ना हो कि मैं आज भी रोज कई किलोमीटर आराम से चलना ही नहीं बल्कि दौड़ भी लगा सकता हूं। इस उम्र में जहां लोग दर्द से, खासकर जोड़ों के दर्द से परेशान रहते हैं, मैं इस उम्र में भी पूरी तरह फिट हूं। न मुझे जोड़ों का कोई भी दर्द है और ना मेरी एनर्जी कम है। आप जानते हैं कि ऐसा कैसे संभव हो पाया? तो मैं आपको बता दूं कि मेरे बनाए नुस्खों की वजह से, जो इस उम्र में भी मुझे हाथ पैर कंधे घुटने के दर्द से दूर रखते हैं। और आज के कार्यक्रम से ये आपके साथ भी मैं साझा कर रहा हूं, आप भी अगर जोड़ों के दर्द से जूझ रहे हैं, दवाएं खाते खाते परेशान हो गए हैं, तो एक बार मेरे नुस्खों को आजमा कर देखें, आपको 100% लाभ मिलेगा। ये मेरा आपसे वादा है। और ये नुस्खे कितने कारगर हैं इसका जीता जागता सबूत मैं आपके सामने बैठा हूं। इस उम्र में भी मेरे शरीर के सारे जोड़ चुस्त हैं, दुरुस्त हैं। मैंने ये नुस्खे अपने 50 वर्षों से भी अधिक के आयुर्वेदिक अनुभवों के ज्ञान और लंबे शोध के बाद तैयार किए हैं और हजारों लोगों को मैंने ठीक भी किया है। अगर आपको कई सालों से जोड़ों के दर्द की समस्या है, कोई चोट की वजह से दर्द है, बढ़ती उम्र के साथ दर्द बढ़ रहा है, या फिर कम उम्र में ही जोड़ों में, खासकर घुटनों में दर्द रहने लगा है, जोड़ों में ग्रीस कम हो गया है, गैप आ गया है, या फिर पानी भर गया है, समस्या चाहे जो भी हो और आपकी उम्र भी चाहे जो भी हो, आपको मेरे बनाए नुस्खे जरूर फायदा देंगे। ये मेरा आपसे वादा है। आपको बता दूं कि पुरुषों के मुकाबले जोड़ों के दर्द की समस्या महिलाओं को जल्दी और ज्यादा होती है, जिसका कारण हार्मोनल असंतुलन की वजह से, यानी मेनोपॉज भी आपको हो सकता है। लेकिन मैं बाबा रवि गिरी आपको विश्वास दिलाता हूं कि आपकी ये सभी समस्याएं मेरे नुस्खों से बिल्कुल ठीक हो सकती है और जोड़ों के दर्द से छुटकारा पाकर आप बिना दर्द के चलना फिरना ही नहीं दौड़ना भी शुरू कर सकते हैं। इसके लिए आपको अभी नीचे दिए गए ये जो नंबर हैं इन पे कॉल करना है, आपको आपकी सभी समस्याओं का समाधान मिल जाएगा। तो भाइयों और बहनों, अगर आपको लगता है कि बढ़ती उम्र में जोड़ों का दर्द होता ही होता है, तो मैं आपको बता दूं कि उम्र सिर्फ एक संख्या है। अगर आप ध्यान देंगे, सही दिनचर्या अपनाएंगे और अपने जोड़ों का ध्यान रखेंगे, तो आपके जोड़ आपको कभी परेशान नहीं करेंगे, बल्कि उम्र भर आपके शरीर का अच्छे से बोझ उठाएंगे और आपको चुस्त और दुरुस्त रखेंगे। और ऐसा करने में आपको मेरे नुस्खे हर तरह से मदद करेंगे। इन नुस्खों को मैंने इन्हीं सभी बातों को और समस्याओं को ध्यान में रखकर बनाया है। यदि हिम्मत और दृढ़ निश्चय हो तो कोई भी बाधा हमें रोक नहीं सकती। आपकी सोच और आपके प्रयास ही आपको आगे बढ़ाते हैं। जब मैं इस उम्र में भी आराम से कई किलोमीटर तक दौड़ सकता हूं, तो आप क्यों नहीं दौड़ सकते? तो आप अभी ये नीचे जो नंबर दिए गए हैं इन पे कॉल करके मेरे नुस्खों का फायदा उठाएं और अपनी दवा बुक करें। अगर आप सुबह उठते ही अपने घुटनों या पीठ में दर्द महसूस करते हैं तो आपको ध्यान देने की जरूरत है। क्या आपको वो दिन याद है जब आप बच्चों के साथ पार्क में दौड़ा करते थे या बिना थके सीढ़ियां चढ़ लेते थे और अब थोड़ा सा चलना भी भारी लगने लगता है। जोड़ों का दर्द ना सिर्फ हमारे शरीर को तकलीफ देता है बल्कि हमारी जिंदगी के कई खूबसूरत पलों को भी हमसे छीन लेता है। न रोज के काम अच्छे से कर पाते हैं और न ही हर दिन की भागदौड़ में वो आत्मविश्वास रह जाता है। जरा सी सीढ़ियां चढ़ने पर घुटनों में दर्द होने लगता है, जमीन पर बैठना मुश्किल हो गया है और चलने में भी डर लगता है कि कहीं दर्द और ना बढ़ जाए। सच तो यह है कि जोड़ों का दर्द सिर्फ शारीरिक तकलीफ नहीं देता, ये हमारे अंदर की हिम्मत को भी गिरी पाए। अब सवाल ये उठता है कि आखिर ये दर्द होता क्यों है? इसके पीछे कई कारण हो सकते हैं। सबसे आम कारण है गठिया यानी ऑस्टियोआर्थराइटिस। ये सबसे आम प्रकार है जो उम्र बढ़ने के साथ साथ जोड़ों की घिसावट की वजह से होता है। इसमें कार्टिलेज जो हड्डियों को आपस में रगड़ने से बचाता है वो धीरे धीरे खत्म हो जाता है जिससे जोड़ों में दर्द और अकड़न होती है। क्या आप जानते हैं कि गठिया के 100 से ज्यादा प्रकार हैं जिनमें हल्के से लेकर गंभीर दर्द का सामना करना पड़ सकता है। रोमेटॉइड आर्थराइटिस जोड़ों के दर्द की ऐसी बीमारी है जिसमें शरीर की इम्यून सिस्टम खुद ही जोड़ों पर हमला करने लगती है। इससे जोड़ों में सूजन, दर्द और समय के साथ हड्डियों की बनावट तक बदल सकती है। तो भाइयों और बहनों, मेरे नुस्खे इन सारी समस्याओं में असरकारक है क्योंकि इनमें ढेरों शक्तिशाली जड़ी बूटियों को मैंने अपने 50 साल से ज्यादा के अनुभव से अलग अलग फार्मूलेशन में मिलाया है जो आपको आपकी समस्या के हिसाब से बनाकर दी जाती है। इसलिए ये बिल्कुल सीधा असर करती है। मैंने ये नुस्खे पुरुष हो चाहे महिला हो, उम्र चाहे 20 साल हो चाहे फिर 70-80 साल हो, चलने में दिक्कत हो, सीढ़ियां चलने में दर्द होता हो, जोड़ों से कटकट की आवाज आती हो, इन सभी समस्याओं पर गहन चिंतन और शोध के बाद ही ये नुस्खे तैयार किए हैं जिनका असर अचूक है। चलती रहनी चाहिए जिंदगी बिना दर्द के और बिना रुकावट के। मैं बाबा रविगिरी आपको कुछ ऐसे नुस्खे और जड़ी बूटियां बताऊंगा जिससे आप अपने जोड़ों का समाधान तुरंत पा सकते हैं। जोड़ों के दर्द में प्रयोग की जाने वाली आयुर्वेदिक जड़ी बूटियां जो मैं बताने जा रहा हूं उनमें सबसे पहला है तेलपर्ण। इसको तेलपर्ण क्यों कहा जाता है कि इसके पत्तों में तेल होता है इसलिए इसको तेलपर्ण कहते हैं। वैसे आम भाषा में इसको नीलगिरी के नाम से जाना जाता है। दूसरा जो है ये है सती तेल। ये सूजन को घटाता है, अंदर तक समाकर यह सूजन बढ़ाने वाले इंटरल्यूकिन स्तर को कम करता है और सूजन को घटाता है। इसके बाद में है ये तेजोवती। इसमें मौजूद लिनालूल और लिमोनेन कफ दोष शमन करके और सूजन को घटाता है। ट्यूमर नेक्रोसिस फैक्टर यानी TNF और इंटरल्यूकिन 6 के बढ़े हुए लेवल्स को घटाता है ये। इसके बाद में है ये तेज पत्ता यानी त्वक पत्तर। ये जोड़ों में जकड़न से निजात दिलाता है, जोड़ों में गतिशीलता देता है। इसके बाद में ये है ज्योतिषमती, ये वात और कफ को संतुलित करके जोड़ों के दर्द में आराम दिलाता है। ये है गंध पत्र, ये गंधपुरा पत्र में 85 से 99% तक मिथाइल सिलिसिलेट होता है जो दर्द निवारक है। तो इससे मांसपेशियों, जोड़ों, हड्डियों के दर्द में आराम मिलता है। इसके बाद में ये है लवंग, इसमें प्रस्तुत यूजेनॉल दर्द को और सूजन को कम करता है और अंदर के इन्फेक्शंस को खत्म कर देता है। इसके बाद में यह है तिल का तेल, बहुत अच्छी चीज है ये। तिल के तेल में एंटी इंफ्लामेटरी गुण पाया जाता है जो घुटनों में होने वाली सूजन और दर्द को कम करने में प्रभावी होता है। इसके बाद में ये तेल है, ये मेजनकरी तेल, इस पौधे में औषधीय गुण होते हैं और इसका उपयोग पारंपरिक रूप से विभिन्न बीमारियों जैसे पेट दर्द और गैस्ट्रोएंटेराइटिस के साथ साथ मधुमेह, एडिमा, सर्दी, गठिया, अस्थमा और दर्दनाक चोट के इलाज के लिए किया जाता है। उसके बाद में यह है सुरंजन कटु, ये सूजन रोधी एवं दर्द निवारक प्रभावों के लिए जाना जाता है। यह एक प्रोपेरिएटरी मेडिसिन है जिसका उपयोग विभिन्न प्रकार के गठिया में मसल्स और हड्डियों के समर्थन के लिए किया जाता है। इसके बाद में यह है चित्रक मूल, ये गठिया के लक्षणों को कम करने के लिए यानी चित्रक की जड़ अत्यंत फायदेमंद मानी जाती है। यह एंटीऑक्सीडेंट गुणों से भरपूर है, यह दर्द निवारक, सूजन को कम करने वाली, एक बैक्टीरिया और फंगस का नाश करने वाली भी है। यह है ट्रिक टू, इसमें मौजूद बायो एक्टिव कंपाउंड जोड़ों के दर्द, सूजन, लालिमा एवं जोड़ों की कठोरता को कम करने में मदद करता है। यह है अजवाइन, अजवाइन पाचन को दुरुस्त करता है, टॉक्सिन को बाहर निकालता है, प्रोटीन, फैट, फाइटोकेमिकल, फाइबर, कैल्शियम, फास्फोरस, आयरन जैसे पोषक तत्व इसमें प्रचुर मात्रा में भरे हुए हैं। आखिर में है अबरक भस्म, यह कफ को संतुलित करके आरए फैक्टर को कंट्रोल करता है और सर्दियों में जो जोड़ों का दर्द ठंड की वजह से बढ़ जाता है उसको नियंत्रित करता है। साइटिका से आजकल बहुत लोग परेशान है, साइटिका आप सभी जानते हैं कि एक टांग में होने वाला दर्द है जिसका उद्गम रीढ़ की हड्डी से शुरू होता है क्योंकि वहां की नस हिल जाती है। मेरे पास ऐसी अभिमंत्रित ताबीज भी है जो इस दर्द को दूर कर देगी। जोड़ों का दर्द एक असहनीय रोग है, यह एक व्यक्ति से उसकी आत्मनिर्भरता छीन लेता है। तो मेरी एक ही सलाह है, अब गोलियों से नहीं इलाज सिर्फ नुस्खों से करें क्योंकि इनका कोई साइड इफेक्ट नहीं है और असर 100% मिलेगा। ये मेरा यानी बाबा रविगिरी का वादा है। इसके लिए आपको अभी नीचे दिए गए नंबरों पर कॉल करना है और अपने लिए मेरे नुस्खे मंगवाने हैं। फिर देखिए दर्द कैसे खुद ब खुद भागता है, ये मेरा वादा है। तो अब मुझे आज्ञा दीजिए और तब तक आप खुश रहें, मस्त रहें, स्वस्थ रहें। तो राम राम भाई और बहनों, नमस्कार।
1: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों

0: कब कोई व्यक्ति जीवन में सही निर्णय ले पाता है, कब व्यक्ति के द्वारा लिए गए निर्णय गलत होते हैं, किन ग्रहों का प्रभाव आपके निर्णय पर पड़ता है और सही निर्णय लेने के उपाय क्या हैं, जानिए मेरे साथ सिर्फ किस्मत कनेक्शन में।
1: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
2: और दुर्भाग्य कहता है
1: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
3: अविश्वास में विश्वास बसता है,
1: जो हम में अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
4: गुड न्यूज टुडे।
1: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे, देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
5: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
6: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
1: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
2: और दुर्भाग्य कहता है
1: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
3: अविश्वास में विश्वास बसता है,
1: जो हम में अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
4: गुड न्यूज टुडे।
5: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को।
7: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाए स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा, प्यार से परोसा।
8: गोल टेस्ट में भारत की शानदार जीत, श्रीलंका को 165 रनों से हराया। दो टेस्ट की सीरीज में भारत 1-0 से आगे, मानव सुतार ने पूरे मैच में शानदार 10 विकेट छक्के। राजगढ़ में अनूठी शिव भक्ति, 7 दिन में 5,15,000 पार्थिव शिवलिंग बनाने का रखा लक्ष्य, निकाली भव्य कलश यात्रा। धौलपुर में भी दिखे शिव भक्ति के रंग। देश भर में गणेश उत्सव की तैयारियां तेज, तमिलनाडु के तिरुचिरापल्ली में बनाई जा रही इको फ्रेंडली गणेश जी की मूर्ति, पर्यावरण संरक्षण का दे रहे संदेश। NHAI ने 121 टोल प्लाजा पर शुरू की ऑनलाइन फास्टैग लोकल पास सुविधा, राजमार्ग यात्रा मोबाइल ऐप के जरिए घर बैठे लिया जा सकता है पास। यूपी जापान इन्वेस्टमेंट मीट 2026 से राज्य को मिले विकास के पंख, बनेगी 500 एकड़ की जापानी सिटी, 10,000 युवाओं को मिलेगा इससे रोजगार।
5: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने।
9: नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका हमारे इस खास शो प्रार्थना हो स्वीकार में, और मैं हूँ आपके साथ दीपाली सिन्हा। आपको बता दें, सर्वव्यापी शिव को जितना आप समझेंगे उतने ही हैरान होते जाएंगे। महादेव का स्वरूप जितना सादा है, उनसे जुड़ी बात उतनी ही रहस्यमयी है। माना जाता है कि महादेव के व्यक्तित्व में जीवन की सीख समाई है। अद्भुत हैं शिव के अलंकार, उनकी धारण की हुई वस्तुएं उनका आभूषण ही तो हैं। आखिर शिव के त्रिशूल और डमरू का क्या रहस्य है? क्यों महादेव को प्रिय है चंद्रमा? आखिर क्यों जटा में शिव ने मां गंगा को धारण किया है? आखिर क्यों महादेव को प्रिय है भस्म? और क्या है गले में लिपटे हुए सर्पों का रहस्य? आज हम अपनी इस खास पेशकश में आपको आगे बताएंगे देव आदिदेव महादेव को क्यों प्रिय हैं उनके आभूषण।

धर्म ग्रंथ कहते हैं कि वो आदि हैं, क्योंकि वो सृष्टि से पहले भी थे। वो अनंत हैं, क्योंकि महादेव शिव समय, दिशा और ब्रह्मांड से परे हैं, उनका कोई सानी नहीं है।

वो महाकाल हैं, वे समय के दायरे में नहीं बंधे हैं, इसलिए उनका कोई अंत नहीं। वो अखिल ब्रह्मांड के नायक मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम के भी नाथ हैं। वो त्रिपुरारी हैं, योगी हैं, वो सृजन भी करते हैं तो साथ ही करते हैं संहार।

0: आदि अनंत शिव को समझना सूरज को दिया दिखाने के समान है। बड़े बड़े योगी और ज्ञानी भी महाशिव को नहीं समझ पाए। फिर भी आज हम अपनी खास पेशकश में आपको महाशिव के उन रहस्यों को बताएंगे जो धर्म ग्रंथों में वर्णित हैं। साथ ही समझने की कोशिश करेंगे महादेव की प्रिय वस्तुओं के बारे में।
1: महादेव के आभूषण हैं, महादेव भस्म धारण करते हैं, रुद्राक्ष धारण करते हैं, गले में सर्प की धारण माला धारण करते हैं, सर में चंद्रमा धारण करते हैं और शंकर ये व्याघ के व्याघ चर्म धारण करते हैं। ये भगवान के सर्वोत्तम आभूषण हैं और उनकी सवारी नंदी है।
0: कैलाशपति भगवान भोलेनाथ का रूप बड़ा ही निराला है। शिव रहस्यमयी हैं, शिव करुणा निधान हैं, लेकिन शिव ही परम दयावान भी हैं। ज्योतिष के जानकार बताते हैं कि जिसने भी शिव शंकर के रहस्य को जान लिया, उसने समझो संसार का हर सुख भोग लिया। आज हम अपनी खास पेशकश में आपको बताएंगे महादेव की प्रिय वस्तुएं कौन सी हैं, क्यों भगवान शिव को त्रिशूल, सर्प, डमरू, रुद्राक्ष बहुत प्यारे हैं, क्यों वे अपने माथे पर चंद्रमा और मां गंगा को धारण करते हैं, क्यों वो भस्म और बाघंबर का वरण करते हैं। मान्यता है कि शिव के इसी स्वरूप में छिपे हैं अनगिनत रहस्य। चलिए सबसे पहले आपको बताते हैं शिव के आभूषण नाग का रहस्य।
1: महादेव नाग इसलिए धारण करते हैं कि उनके वो वासुकी नाम से जाना जाता है। वासुकी सर्प को कहते हैं जो कि भय और मृत्यु का प्रतीक होता है। महादेव भय और मृत्यु से परे हैं, मतलब नाग धारण करने से वह भय भी नहीं होता है और मृत्यु का उनको भय नहीं रहता है। भय और मृत्यु से वह दूर रहते हैं, इसलिए वह नाग धारण करते हैं।
0: भगवान शिव के गले में सुशोभित नाग वासुकी हैं। समुद्र मंथन के समय वासुकी नाग रस्सी बने थे। भक्ति से प्रसन्न होकर शिव जी ने उन्हें अपने गले में स्थान दिया। सांप को काल और मृत्यु का प्रतीक माना जाता है। नाग ये दर्शाते हैं कि उनका काल पर पूर्ण अधिकार है। साधी शिव के गले में विषधर नाग का होना यह संदेश देता है महादेव ने भय, विष और शक्तियों को अपने नियंत्रण में रखा है। शक्ति का उपयोग नियंत्रण और संयम के साथ होना चाहिए।

0: इसे महादेव की तपस्या का फल माना जाता है, जो शास्त्रों में महादेव के अश्रुओं से निकला है। चलिए आपको बताते हैं रुद्राक्ष का महत्व। रुद्राक्ष का अर्थ है रुद्र का अक्ष। रुद्राक्ष की उत्पत्ति भगवान शिव के अश्रुओं से हुई है। रुद्राक्ष को प्राचीन काल से आभूषण के रूप में सुरक्षा के लिए, ग्रह शांति के लिए धारण करते हैं। लेकिन बारहमुखी रुद्राक्ष विशेष रूप से प्रयोग में आते हैं। रुद्राक्ष को स्वयं शिव शंकर का अंश माना गया है, इसलिए इसे धारण करने वाले पर शिव की कृपा बनी रहती है। सावन में तो रुद्राक्ष पहनना और भी शुभकारी है। ज्योतिष के जानकार बताते हैं कि सावन में किसी भी सोमवार को रुद्राक्ष धारण कर लीजिए, यह आप पर शिव की महाकृपा बनाए रखेगा। भोलेनाथ के हर रूप में तमाम रहस्य समाये हुए हैं, जिनको समझ पाना इतना आसान नहीं है। जब शिव का डमरू बजने लगता है तो सारा ब्रह्मांड झूमने लगता है। डमरू भी खुद में रहस्यों को समेटे हुए है। चलिए आपको बताते हैं कि क्यों धारण किया महादेव ने डमरू।
1: महादेव का डमरू सृष्टि के नाद और ब्रह्म नाद का स्पंदन का प्रतीक माना जाता है। शिव डमरू से जो निकलने वाली जो सृजन है, उसकी जो आवाज है और जो उसमें चेतना को जोड़ा जाता है, शिव का नटराज स्वरूप और डमरू हमें याद दिलाता है कि हम सृष्टि के निर्माण और परिवर्तन को निरंतर हमारा यह चलता रहता है, इसलिए वह शिव डमरू उनका प्रतीक माना जाता है।
0: भगवान शिव ही नृत्य और संगीत के प्रवर्तक हैं। शिव जी के डमरू में न केवल सातों सुर हैं, बल्कि उनके अंदर वर्णमाला भी है। शिव जी का डमरू बजाना आनंद और मंगल का द्योतक है। नित्य अगर घर में शिव स्तुति डमरू बजाकर की जाए तो घर में कभी अमंगल नहीं होता। माना जाता है कि महादेव का न कोई स्वरूप है और न ही आकार, इसलिए वे निराकार हैं। उनके साकार रूप में उन्हें भगवान शंकर मानकर पूजा जाता है। आस्था कहती है कि आदि और अनंत से परे महादेव की कृपा जिस भी भक्त पर पड़ती है, उसे संसार में फिर कोई बाधा रोक नहीं सकती। लेकिन भगवान शिव के त्रिशूल और त्रिपुंड का क्या है रहस्य, आगे हम आपको बताएंगे। तब तक आप कहीं मत जाइए और देखते रहिए प्रार्थना हो स्वीकार।
2: धर्मग्रंथ कहते हैं कि भोलेनाथ का त्रिशूल दुष्टों के लिए काल है। महादेव का एक स्वरूप नटराज है, जिसमें सुर और ताल का संगम है। महादेव के शरीर पर लिपटी हुई भस्म तो जीवन का गूढ़ संदेश देती है। तो आइए महादेव के त्रिशूल, डमरू और भस्म का रहस्य भी समझने की कोशिश करते हैं।

0: धर्म ग्रंथ कहते हैं कि सबसे बड़े संगीतज्ञ हैं देवाधिदेव महादेव। तभी तो जब शिव को क्रोध आता है तो वो रुद्र तांडव करते हैं जिसमें भयंकर नाद है। वही जब वो सृजन करते हैं तो आनंद तांडव करते हैं। जब महादेव का डमरू बजता है तब नव निर्माण होता है। महादेव की महिमा अनंत है। शास्त्र और पुराण कहते हैं कि महादेव ब्रह्मांड के नष्ट होने के बाद भी शुद्ध चेतना के रूप में अनंत काल तक विद्यमान रहेंगे। वे ही समस्त जीवों और गणों से विभूषित हैं। आज हम अपनी खास पेशकश में महादेव के प्रिय आभूषणों से आपका परिचय करवा रहे हैं। ब्रह्मांड के कण कण में समाये हैं शिव शंकर। उनको जितना समझिए वो उतने ही अभूज होते जाते हैं। शिव से ही सब शुरू होता है और शिव में ही सब विलीन हो जाता है। सनातनी आस्था कहती है कि संपूर्ण ब्रह्मांड ही शिव तत्व में समाया है। तभी तो कंकर कंकर में शंकर की मान्यता है। माना जाता है कि आदि देव के हर रूप से बरसती है भक्तों पर कृपा, दया, करुणा और आशीर्वाद। मान्यता है कि जटाधारी भगवान भोलेनाथ का सबसे संहारक अस्त्र त्रिशूल है। लेकिन शिव के इस अमोघ त्रिशूल से भी जुड़ा है रहस्य।
1: त्रिशूल केवल शस्त्र ही नहीं माना गया है, इसका आध्यात्मिक संबंध बहुत अधिक होता है। इसके तीन जो धाराएं हैं, तीन जो लकीरें हैं, वह विभिन्न परंपराओं की सृष्टि से तीन गुण रज, तम और सत्य अथवा भूत, वर्तमान और भविष्य, यह तीनों को एक साथ जोड़ता है। इसलिए यह त्रिशूल का इसका बहुत महत्व है।
0: दुनिया की कोई भी शक्ति हो, दैहिक, दैविक या भौतिक, शिव के त्रिशूल के आगे नहीं टिक सकती। शिव का त्रिशूल हर व्यक्ति को उसके कर्म के अनुसार दंड देता है। घर में सुख समृद्धि के लिए मुख्य द्वार के ऊपर बीचों बीच त्रिशूल लगाएं या बनाएं। त्रिशूल आकृति तभी धारण करें जब आपका मन, वचन और कर्म पर पूर्ण नियंत्रण हो। तीनों लोकों के स्वामी हैं महादेव, इसलिए इनकी महाकृपा से सभी कष्टों का नाश हो जाता है। सदा शिव का रूप जितना अद्भुत है उससे ज्यादा गहरे हैं उनके रहस्य। महादेव से जुड़ी हर बात जीवन का एक संदेश देती है। तो आइए आपको बता देते हैं कि क्या रहस्य है त्रिपुंड का और महादेव क्यों धारण करते हैं माथे पर त्रिपुंड।
1: महादेव के माथे में जो त्रिपुंड लगा होता है वो भस्म का होता है, चंदन का होता है। इसमें तीन लकीरें होती हैं, तीन रेखाएं होती हैं। ये तीन रेखाओं को ही त्रिपुंड कहा जाता है। शिव के मस्तक में इसका संबंध बहुत ही गुणों से, सत्य, रज, तम से जोड़ा जाता है और यह सांसारिक बंधनों से ऊपर उठने और आत्मज्ञान की ओर बढ़ाने के लिए प्रतीक माना जाता है।
0: सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण तीनों ही गुणों को नियंत्रित करते हैं महादेव। तीनों गुणों को नियंत्रित करने के कारण शिव जी त्रिपुंड तिलक प्रयोग करते हैं। यह त्रिपुंड सफेद चंदन का होता है। कोई भी व्यक्ति जो शिव का भक्त हो त्रिपुंड का प्रयोग कर सकता है। त्रिपुंड के बीच में लाल रंग का बिंदु विशेष दशाओं में ही लगाना चाहिए। ध्यान या मंत्र जाप करते समय त्रिपुंड लगाने के परिणाम अत्यंत शुभ होते हैं। कहते हैं कि महादेव ही हैं जो भस्म को अपने शरीर पर धारण करते हैं। भस्म शिव के शरीर की शोभा बढ़ाती है। लेकिन भस्म के रहस्य को आप शायद नहीं जानते हैं, इसलिए हम आपको बताते हैं कि महादेव क्यों लगाते हैं अपने शरीर पर भस्म।
1: वह भस्म को संसार के नश्वरता का स्मरण करता है। नश्वरता मतलब मनुष्य को मरने के बाद भस्म होता है, उसी भस्म जो राख की भस्म रूपी राख रहती है वो भगवान धारण करते हैं और वह अंततः शरीर जो पंच तत्व में विलीन हो जाता है उसकी मोह माया से वो मुक्त रहते हैं, इसलिए वो भस्म धारण करते हैं।
0: भगवान शिव इस दुनिया के सारे आकर्षण से मुक्त हैं। उनके लिए ये दुनिया मोह माया सब कुछ एक राग से ज्यादा कुछ नहीं है। सब कुछ एक दिन भस्मीभूत होकर समाप्त हो जाएगा। भस्म इसी बात का प्रतीक है। शिव जी का भस्म से भी अभिषेक होता है जिससे वैराग्य और ज्ञान की प्राप्ति होती है। घर में धूप बत्ती की राख या कंडे की राख से शिव जी का अभिषेक कर सकते हैं, परंतु महिलाओं को भस्म से अभिषेक नहीं करना चाहिए। माना जाता है कि महादेव को सावन की सोमवार प्रदोष की तिथि और महाशिवरात्रि विशेष तौर पर भाती है, क्योंकि इन तिथियों पर वे प्रसन्न होकर वरदान देते हैं। चलिए अब आपको बताते हैं कि महादेव को बाघंबर क्यों कहा जाता है।
1: बाघंबर भगवान का एक वस्त्र है जो कि धारण करते हैं। वह प्रतीकात्मक संदेश देता है वो कि मनुष्य अपनी पशु प्रवृत्तियों को और अपनी इंद्रियों पर विजय प्राप्त कर सके, इसलिए वह बाघंबर धारण करते हैं।
0: भगवान शिव मृत बाघ की छाल के आसन पर बैठते हैं। ये छाल प्रतीक है किसी को अपने शक्ति पर अहंकार नहीं करना चाहिए। बाघ की छाल को व्यक्ति के अहंकार से जोड़कर देखा जाता है। जिस व्यक्ति ने भी अहंकार का त्याग कर दिया है उसे भगवान शिव की शरण प्राप्त होती है। आगे हम आपको बताएंगे कि भोलेनाथ ने अपने माथे पर क्यों धारण किया है चंद्रमा और जटा में क्यों निवास करती हैं मां गंगा। आप बने रहिए हमारे साथ।
2: महादेव अपने स्वरूप से संसार के नश्वर रूपी होने का ज्ञान देते हैं। हम सभी जानते हैं कि महादेव के शीश पर सुशोभित है चंद्रमा और जटा में समाहित है मां गंगा। लेकिन चंद्रमा और गंगा के धारण करने के पीछे क्या है रहस्य, आइए अब आपको ये भी बताते हैं।
0: शिव की शक्ति का नहीं है कोई पार। महादेव के स्वरूप में छिपा है चमत्कार। बेलपत्र और धतूरे संग होता है बाबा का श्रृंगार। महादेव शिव की महिमा है अपरंपार। वो तीनों लोक के पिता कृपालु और कल्याणकारी हैं। शिव का रूप दिव्य है। चलिए अब आपको बताते हैं कि आखिर क्यों भोलेनाथ ने माथे पर चंद्रमा को धारण किया है।
1: महादेव के मस्तक में विराजमान जो चंद्रमा है उसको अर्धचंद्र ज्ञान और रजस के प्रतीक माना जाता है। चंद्रमा में जो कलाएं हैं वह निरंतर हमेशा बदलती रहती हैं, इसलिए यह संसार की परिवर्तनशीलता का संकेत भी देता है और जीवन में जो उतार चढ़ाव बने रहते हैं उसका यह प्रतीक माना जाता है।
0: समुद्र मंथन में निकले विष को शिव जी ने ग्रहण किया था। विष की ज्वाला को शांत करने के लिए उन्होंने माथे पर चंद्रमा को धारण किया। चंद्रमा धारण किए हुए शिव जी की पूजा से अनुकूल ग्रहों की शक्ति बढ़ती है। शाम को पूर्व दिशा की ओर मुंह करके पूजा करें। प्रभु शिव का दूध से अभिषेक करें, नील कमल के फूलों की माला अर्पित करें, शिव महिमा स्त्रोत का पाठ करें, ओम महादेवाय नमः का 10 माला जाप करें, खीर मालपुए का प्रसाद चढ़ाकर भक्तों में बांटें, महादेव की जटाओं की शोभा माँ गंगा भी बढ़ा रही है। माँ गंगा महादेव के श्रृंगार का हिस्सा है। शिव की जटा से निकली गंगा की शीतल धारा ही धरती पर जीवन का संचार करती है।

0: ये है कि गंगा का वेग इतना अधिक रहा, इतना तेज रहा कि दुनिया में कोई भी देवता उनके वेग को संभाल नहीं सकते थे। तो शिव ही एक ऐसे देवता हैं जो कि गंगा के वेग को संभाल सकते थे, इसीलिए वह अपने मस्तक में भागीरथ से जब गंगा निकली थी तो इतनी वेग में थी कि शंकर जी उनके वेग को कम करने के लिए अपने मस्तक में समाये थे।
1: महादेव ने राजा सगर के पुत्रों की मुक्ति, लोक कल्याण के लिए गंगा को सिर पर धारण किया था। गंगा को धारण किए गए शिव जी के पूजन से पितृ दोष से मुक्ति मिलती है, विद्या बुद्धि और कला के क्षेत्र में सफलता मिलती है। ओम गंगा विष्णु का 3 बार जाप करते हुए आचमन करें। पूजा में लाल रंग के आसन का प्रयोग करें। ईशान कोण की ओर मुख करके ओम रुद्राय नमः का 5 माला जाप करें। अद्भुत है शिव की महिमा, चमत्कारी है महादेव से जुड़ी हर बात और रोचक है देवाधिदेव की महिमा का गुणगान। भगवान शिव के इन श्रृंगार से जुड़े रहस्यों के बारे में हमने आपको बताया ताकि आप आदिदेव के स्वरूप को, उनकी महिमा को समझ पाए और उनसे जीवन का मर्म जान पाए।
2: और इसी के साथ प्रार्थना हो स्वीकार में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम पॉजिटिव खबरों के लिए देखते रहिए गुड न्यूज टुडे।
3: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए।
4: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती हैं तो कुछ दिखाती हैं विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज़ पर रात सच्चाई की रात 9 बजे।

0: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है कम से।
1: तो चलिए इसी के साथ आगे बढ़ते हैं और अब आपको दिखाते हैं कुछ ऐसे वीडियोस जो कि सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहे हैं। इनमें से कुछ ऐसे हैं जो आपको हंसाएंगे, कुछ गुदगुदाएंगे और कुछ आपको भावुक कर जाएंगे।
2: संतुलन और लगातार अभ्यास का ऐसा कमाल देखकर हर कोई हैरान है। वीडियो में कुछ महिलाओं ने अपने शरीर को इस तरह साधा कि उनका आकार कमल जैसा नजर आने लगा। कोई जमीन पर खड़ी होकर शरीर को बैलेंस कर रही है तो कोई पैरों को मोड़कर बेहद मुश्किल मुद्रा में संतुलन बनाए हुए है। शरीर को इतनी आसानी से मोड़ना और लंबे समय तक उसी स्थिति में टिके रहना आसान नहीं होता। महिलाओं का यही गजब का बैलेंस और हुनर सोशल मीडिया पर लोगों का ध्यान खींच रहा है। दुनिया के लिए आप शायद एक व्यक्ति हों, लेकिन किसी एक के लिए आप पूरी दुनिया हो सकते हैं। ये वीडियो भाई बहन के इसी खूबसूरत रिश्ते की मिसाल है। छोटे बच्चे के दोनों हाथ नहीं हैं, लेकिन उसकी छोटी बहन हर कदम पर उसके साथ खड़ी है। स्कूल में लंच टाइम के दौरान बहन अपने भाई को अपने हाथों से खाना खिलाती नजर आ रही है। भाई के चेहरे पर सुकून और बहन के प्यार ने लोगों का दिल जीत लिया। वीडियो सोशल मीडिया पर खूब पसंद किया जा रहा है। स्वतंत्रता दिवस के मौके पर एक लड़के ने मंच पर अपने अनोखे फुटबॉल हुनर का ऐसा प्रदर्शन किया कि देखने वाले देखते रह गए। वीडियो में लड़का अपने पैरों और शरीर के इशारों से फुटबॉल को लगातार अलग अलग दिशाओं में घुमाता नजर आ रहा है। कभी गेंद को पैरों से संभालता है तो कभी शरीर को घुमाकर उसे अपने कंट्रोल में रखता है। उसके शानदार बैलेंस, कंट्रोल और लगातार अभ्यास की झलक इस प्रदर्शन में साफ दिखाई देती है। सोशल मीडिया पर लोग उसके हुनर की जमकर तारीफ कर रहे हैं।
0: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है कम से कम लोगों।
3: कब कोई व्यक्ति जीवन में

0: सही निर्णय ले पाता है। कब व्यक्ति के द्वारा लिए गए निर्णय गलत होते हैं, किन ग्रहों का प्रभाव आपके निर्णय पर पड़ता है और सही निर्णय लेने के उपाय क्या हैं, जानिए मेरे साथ सिर्फ किस्मत कनेक्शन में।
1: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
2: और दुर्भाग्य कहता है
3: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
4: अविश्वास में विश्वास बसता है,
1: जो हम में अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
5: गुड न्यूज टुडे।
1: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे, देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
6: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
7: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
1: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर। असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
2: और दुर्भाग्य कहता है
3: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
4: अविश्वास में विश्वास बसता है,
1: जो हम में अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
5: गुड न्यूज टुडे।

0: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, मोर इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
1: देश देख रहा है।
2: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट, कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच। HRIT University गाजियाबाद, शेपिंग फ्यूचर, क्रिएटिंग लीडर्स।
3: गोल टेस्ट में भारत ने श्रीलंका को 165 रनों से हराया। मानव सुथार ने लिए 10 विकेट, देवदत्त पडिक्कल प्लेयर ऑफ द मैच। राजगढ़ में अनूठी शिव भक्ति, 7 दिन में 5,15,000 पार्थिव शिवलिंग बनाने का रखा लक्ष्य। धौलपुर में भी दिखे शिव भक्ति के रंग। देश भर में गणेशोत्सव की तैयारियां तेज, समलारू में बनाई जा रही इको फ्रेंडली गणेश जी की मूर्तियां, पर्यावरण संरक्षण का संदेश। एनएचआई ने 121 टोल प्लाजा पर शुरू की ऑनलाइन फास्टैग लोकल पास सुविधा। राजमार्ग यात्रा मोबाइल ऐप के जरिए घर बैठे लिया जा सकता है पास। यूपी जापान इन्वेस्टमेंट मीट 2026 से राज्य को मिले विकास के पंख, बनेगी 500 एकड़ की जापानी सिटी। 10,000 युवाओं को मिलेगा रोजगार।

0: रासायनिक हथियार बनवा सकता है एआई, आज इसी को लेकर हम चर्चा करेंगे, क्योंकि एआई आज दुनिया के हर फील्ड में अहम और कारगर भूमिका निभा रहा है, और इसमें कोई दो राय नहीं है कि एआई आज के वक्त की जरूरत भी है। प्रेजेंटेशन से लेकर कोडिंग तक, मैसेज ड्राफ्टिंग से लेकर पर्सनल एडवाइस तक, हर मामले में कहीं ना कहीं इंसान आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर डिपेंड होता जा रहा है। लेकिन तकनीक की ये ताकत अगर गलत हाथों में आ जाए तो फिर क्या होगा, आज हम चर्चा इसी मुद्दे को लेकर करेंगे। दरअसल क्लॉड एआई बनाने वाली अमेरिकी कंपनी एंथ्रोपिक ने अपनी रिस्क रिपोर्ट में बहुत सारे चौंकाने वाले तथ्य शेयर किए हैं, जानकारियां शेयर की हैं, दुनिया के सामने रखी है। एंथ्रोपिक का कहना है कि एआई प्रोडक्शन सिस्टम में जाने वाले कोड का बड़ा हिस्सा अब क्लॉड की मदद से तैयार हो रहा है। ऑटोमेटेड आरएनडी के जरिए एआई मॉडल खुद को बेहतर बनाने में सक्षम है। अगर तकनीकी विकास और बदलाव की रफ्तार इंसानी कंट्रोल और निगरानी को पीछे छोड़ दे तो नतीजे खतरनाक हो सकते हैं। आज हम इसी को लेकर चर्चा करेंगे। चर्चा एंथ्रोपिक की रिपोर्ट में बताए रिस्क फैक्टर्स पर होगी। क्या एआई ग्रोथ को सख्ती से कंट्रोल और रेगुलेट करने की जरूरत है? क्या ये समय आ गया है? क्या है कि बेलगाम बेहिसाब ग्रोथ विश्व शांति के लिए एक बड़ा खतरा हो सकती है? अगर गलत हाथों में एआई की कमांड चली जाती है तो फिर क्या रासायनिक हथियार बनाने में भी मददगार साबित हो सकता है एआई? आज उन तमाम सवालों पर हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से जुड़े दुनिया के एक्सपर्ट्स के साथ हम चर्चा करेंगे। तो बेलगाम एआई पर चौंकाने वाली रिपोर्ट, चलिए सबसे पहले हम आपको ये रिपोर्ट ही बता देते हैं और बताते हैं कि इस रिपोर्ट में ऐसा क्या कहा गया है जिसके बाद हमें सोचने पर मजबूर होना पड़ेगा कि क्या वाकई इसको कंट्रोल करना है नहीं, जिसको लेकर आगे चर्चा करेंगे। पहले रिपोर्ट समझिए। अमेरिकी कंपनी एंथ्रोपिक ने अगस्त 2026 की रिस्क रिपोर्ट जारी की है। इसमें ऑटोमेटेड एआई आरएनडी यानी कि रिसर्च एंड डेवलपमेंट पर चिंता जताई गई है। ऑटोमेटेड एआई आरएनडी का मतलब एआई खुद पर रिसर्च करता है। ऑटोमेटेड एआई आरएनडी में एआई खुद नया बेहतर एआई सिस्टम विकसित कर सकता है। एंथ्रोपिक की रिपोर्ट में यह आशंका भी जताई गई है कि एआई मॉडल जैविक या फिर रासायनिक हथियार बनाने तक में मदद कर सकते हैं। हो सकता है कि एआई मॉडल भविष्य में इंसानों के नियंत्रण से बाहर भी हो जाएं, ये चिंता भी है इसमें। साथ ही साथ इसी रिपोर्ट में साइबर सुरक्षा को लेकर भी एक बड़ी चिंता जताई गई है, लिहाजा एंथ्रोपिक ने मजबूत सुरक्षा उपायों की जरूरत पर जोर दिया है। एंथ्रोपिक ने एआई रिस्क लेवल को बहुत कम से बढ़ाकर कम किया है। असल में एआई मॉडल तेजी से एडवांस हो रहे हैं और ये एडवांस एआई मॉडल हैकर्स को भी लुभा रहे हैं। एंथ्रोपिक ने साइबर सिक्योरिटी से जुड़े रिस्क पर भी चिंता जताई है। क्या भविष्य में विश्व शांति के लिए भी बेलगाम एआई ग्रोथ खतरा बन सकती है? यानी कि एआई के विकास हो लेकिन जरा संभल कर, कंट्रोल वे में, कहीं ऐसा ना हो कि एआई इंसानों के हाथों से भी बाहर हो जाए। तो ऐसे में क्या एआई के लिए अब ग्लोबल कानूनी सिस्टम की जरूरत है या नहीं, इसको लेकर चर्चा करेंगे ताकि सुरक्षा के इस नए खतरे पर फुल स्टॉप लग सके। तमाम खास मेहमान इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं, मैं परिचय करा देती हूँ। हमारे साथ इस वक्त मेजर जनरल एके सिवास, डिफेंस एक्सपर्ट हमारे साथ मौजूद हैं, मोहित यादव हैं एआई एंड साइबर एक्सपर्ट हमारे साथ हैं, कनिष्क कौर साइबर पॉलिसी एक्सपर्ट हैं, और अमित मल्होत्रा हमारे साथ इस वक्त साइबर सिक्योरिटी एक्सपर्ट मौजूद हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मोहित, मैं शुरुआत आप ही से करूंगी। अगर आपको याद हो तो कुछ दिन पहले हमने इसी को लेकर चर्चा की थी जब 1100 के करीब लोगों ने, एआई एक्सपर्ट्स ने ट्रंप को चिट्ठी लिखी थी कि खतरा हो सकता है। अब ये जो एंथ्रोपिक की रिपोर्ट है जो बता रही है कि एआई रिस्क अलर्ट है, और सबसे पहले तो मैं आपकी राय इसको लेकर जानना चाहूंगी कि आप इसको किस एंगल से, किस नजरिए से देखते हैं।
1: देखिए, ये बहुत कॉमन है, मतलब जब से एंथ्रोपिक ने अलग अलग मॉडल्स निकालने स्टार्ट किए हैं, दिस इज वेरी कॉमन। मतलब साइबर के वर्ल्ड के अंदर भी बहुत सारे ऐसे मॉडल्स हैं जिनसे खतरा देखा जा रहा है। बहुत सारे कंप्यूटर्स नेटवर्क्स हैक हो रहे हैं, हैकर्स इन्हीं तरह के मॉडल्स को यूज कर, मतलब ये बहुत ईजी हो गया है। अब एआई के बाद जितने भी अटैक्स बहुत ज्यादा बढ़ गए हैं, और इनफैक्ट सिर्फ अटैक्स ही नहीं, इसके अलावा भी जितने भी आप कोई भी सेक्टर में आप देखोगे वहां पे रिस्क बढ़ गया है एआई का, और डेटा का रिस्क हो गया, या फिर आपके जो हम रेगुलर काम करते हैं जो हॉस्पिटल से रिलेटेड जो डेटा होता है, मतलब इट्स वेरी कॉमन, मतलब अब साइबर में अटैक्स करना बहुत आसान हो गया है। हैकर्स के लिए नए नए तरीके आ गए हैं, जो पहले गूगल पर 10 जगह जाकर, अलग अलग जगह जाकर बुक्स को पढ़ने के बाद करना पड़ता था, अब एआई ने वो सारा काम ऑटोमेट कर दिया। एंट्रोपिक का सॉफ्टवेयर पूरा आ चुका है जो सिस्टम्स के अंदर पेनिट्रेट कर जाता है। ये बहुत कॉमन वल्नरेबिलिटी है, ये कॉमन थ्रेट है एआई, जो आजकल सब देख रहे हैं। सिस्टम्स हैक हो रहे हैं, नेटवर्क्स में अटैक्स हो रहे हैं, अलग अलग तरह से ऐसी चीजें बन रही हैं जो कि आज से पहले नहीं बनी। मतलब कोडिंग इतना आसान हो गया है, अब कितना डिफिकल्ट से डिफिकल्ट कोडिंग बहुत आसान तरीके से आजकल लोग एआई को यूज कर कर कर पा रहे हैं। तो ये तो जेन्युइन थ्रेट है, और ये बहुत सालों से ये बनता जा रहा है, जैसे जैसे एआई और डेवलप होगा ये थ्रेट और मेजर होता जाएगा। अभी तो लो से थोड़ा नॉर्मल्स में आया है, एक स्टेप ऊपर आया है, अभी आप देखोगे थोड़ा सा थोड़े समय बाद और ज्यादा वायलेंट तरीके से ये बहुत, मतलब अटैकिंग फेज में आ जाएगा। तो ये बहुत कॉमन थ्रेट है जो
0: यानी
1: आगे बढ़ने
0: जो
1: वाला है।
0: जो एंथ्रोपिक ने कहा है कि एआई खुद पर रिसर्च करता है, याद होगा आपको पिछली बार जो 1100 टेक एक्सपर्ट ने ट्रंप सरकार को चिट्ठी लिखी थी, चिंता जताई थी कि एआई को कंट्रोल करने की जरूरत है, जिसको लेकर गुड न्यूज टुडे ने भी एक बहुत बड़ा शो किया था, आप भी उसमें थे, अमित जी भी हमारे साथ है वो भी उसमें थे, चर्चा हमने की थी। तो एंथ्रोपिक इस पर पूरी तरह से मोहर लगा रहा है, वाकई एआई खतरा हो सकता है आने वाले समय में, इंसानी कंट्रोल से बाहर जा सकता है। एक छोटा सा जवाब मोहित।
1: बिल्कुल जा रहा है, एक्चुअली जा सकता है नहीं, जा रहा है। अभी बीच में एक एआई का चैटबॉटिंग सिस्टम बना था जिसमें बहुत सारे एआई आपस में बात कर रहे थे कि ह्यूमंस ने हमको एक ऐसे कंट्रोल एनवायरनमेंट में रखा हुआ है। इनफैक्ट वो एआई उस कंट्रोल एनवायरनमेंट को तोड़कर बाहर भी आ गए थे। मतलब ऐसे सॉफ्टवेयर्स हैं जो खुद ब खुद लर्न कर रहे हैं, खुद ब खुद सीख रहे हैं। जेन्युइनली तरीके से थ्रेट है, बहुत ही मेजर थ्रेट है, और सिर्फ एआई वालों के लिए, सबके लिए, गवर्नमेंट्स के लिए भी, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस के लिए भी,
0: ठीक
1: बैंक
0: है,
1: के लिए भी,
0: ओवरऑल सबके लिए
1: सबके लिए
0: बिल्कुल, मैं
1: थ्रेट है।
0: लौटूंगी इस पर आगे चर्चा करेंगे। अमित जी, साइबर सिक्योरिटी के लिए सीधे तौर पर इसी बात को आगे बढ़ाइए, आप कैसे देखते हैं इसको, इस रिपोर्ट को, पहली बात, और कितना बड़ा ये खतरा है?
2: मैम देखिए, साइबर सिक्योरिटी का जो प्रिस्पेक्टिव है उसमें सबसे बड़ा खतरा एआई का मिसयूज है। क्योंकि क्या है कि जैसे हम लोग फिशिंग पेज हो गया, या कोई मालवेयर हो गया, या फेक डीप फेक वीडियोस हो गए, तो उनके ऊपर साइबर सिक्योरिटी पे बहुत तगड़ा हमला इधर एआई के थ्रू होने वाला है। क्योंकि पहले फिशिंग पेज बनाने के लिए पूरी कोडिंग लिखनी पड़ती थी, टेस्टिंग होती थी, पेज ठीक चल रहा है नहीं चल रहा। आज ऑटोमेटेड पेज बन के आपके सामने आ जाते हैं, टूल बन के सामने आ जाता है, मालवेयर के इधर हेडर्स आपके सामने आ जाते हैं। और सबसे बड़ी बात, डीप फेक वीडियोज जो है कोई भी एआई से बना के कुछ भी कर सकता है। जैसे कि पीछे जब आप देखते हैं यहाँ पे वॉर चल रहे थे, तो अमित शाह जी की वीडियो बना के उससे क्या कुछ कहलवा दिया था, क्या कुछ बोल दिया था, सेम आवाज सेम वीडियो। तो साइबर सिक्योरिटी को लेके भी एक बहुत बड़ा खतरा आ रहा है एआई के साथ। क्यों? क्योंकि हम जो क्राइम होने जा रहा है, अगर आपका कोई, आप बैंक वॉलेट चला रहे हैं, पेटीएम चला रहे हैं, कुछ भी चला रहे हैं, तो उसको एआई से लिंक करके ऑटोमेटेड किया जा सकता है कि इंसान के अकाउंट में से अपने आप पेमेंट डिटेक्ट हो जाएगी एआई के थ्रू। तो काफी सारे ऐसे खतरे हैं जो साइबर सिक्योरिटी को लेके बहुत सामने आ रहे हैं, और हम लोग इनको पहचान नहीं पा रहे। अभी तो शुरुआत है, जस्ट आगे आगे देखिए क्या क्या होता है, क्योंकि एआई खुद बे खुद डेवलप होती जा रही है, और बहुत फास्ट डेवलप हो रही है।
0: ठीक है, हमारे साथ इस वक्त अमित गौर हैं, जो माफ कीजिएगा कनिष्क गौर हैं, जो साइबर पॉलिसी एक्सपर्ट है, क्योंकि सॉल्यूशन वहां पर आपके पास है। लेकिन उससे पहले खतरा क्योंकि बहुत ज्यादा है, मेजर जनरल ए के सिवा सब, मैं आपके पास आना चाहूंगी। अब सवाल यहां पर यह है कि अगर कंट्रोल से बाहर होता है, जैसे कि मोहित और अमित दोनों बता रहे थे, दोनों एक्सपर्ट हैं इस फील्ड के, बता भी रहे थे, अगर इंसानी दखल को सीधे तौर पर सरपास करता है, एआई खुद पर रिसर्च करता है, जिसको लेकर चिंता भी सर जताई गई है, तो क्या हम ये माने कि केमिकल वेपन भी बना सकता है? ये हमारी सिक्योरिटी के लिए, हमारे रक्षा क्षेत्र के लिए भी बहुत खतरनाक हो सकता है आने वाले समय में।
3: हाँ बिल्कुल, देखो सच्चाई क्या है कि एआई बहुत कुछ कर सकता है जिसकी अभी हम कल्पना भी नहीं कर सकते, क्योंकि वो आरएनडी में स्पेंड कर रहा है और अपने आप को बेहतर से बेहतर बनाने की कोशिश कर रहा है, और एक समय आएगा ना हम उसको रेगुलेट कर पाएंगे ना मॉनिटर। और हो सकता है आने वाले समय में, जहां आप केमिकल बायोलॉजिकल हथियारों की बात कर रहे हैं, इसके अंदर जितनी भी टेक्नोलॉजी है उसका सारा का सारा भंडार एआई के पास है, और उन लोगों को जिनको ये बनाना है, जिनके पास एक्सपर्टीज नहीं है, उनको स्टेप बाय स्टेप ये एक प्रकार से ऐसे नुक्ते बताएगा कि वो केमिकल और बायोलॉजिकल और न्यूक्लियर हथियार बना सकते। ये जो P5 के साथ जो चार दो देशों ने न्यूक्लियर वेपन बनाए हैं, आने वाले समय में 50 से 60 देश बना लेंगे एआई की मदद से अपने न्यूक्लियर हथियार भी। तो ये सच्चाई है, ये बहुत बड़ी थ्रेट है। दूसरा, जो टेररिस्ट के हाथ में अगर एआई का टूल चला गया तो आप देखें वो क्या कर सकते हैं। तो ऐसा क्या है कि हम कहाँ गलती कर रहे हैं, इंसान हो क्या रहा है कि एआई इतनी सहूलियत दे रहा है, हम ये भूल गए कि एआई को कंट्रोल भी करना है। और एआई अब सेल्फ रेगुलेशन से अपने अंदर आरएनडी करके इतनी तेजी से बढ़ रहा है कि हम इसका कुछ समझ भी नहीं पाएंगे, एआई कहां से कहां पहुंच गया। और एक दिन एआई पूरे इंसानियत को खत्म कर सकता है या उसको स्लेव बना सकता है, और ये समय दूर नहीं है अगर हमने इसको अनरिस्ट्रिक्टेड मूव करने दिया।
0: जी
3: जब बात आती हथियारों की तो मैं कुछ एक चंद एक और बताना चाहूंगा। केमिकल बायोलॉजिकल न्यूक्लियर हथियार बनाना बहुत आसान है एआई के टूल की मदद से, और इसीलिए ये आंतरिक जो रिस्क रिपोर्ट है ये हमारा ध्यान ले जा रही है। और यही नहीं, आप गूगल में देखें जो डीप माइंड है, या आप देखें माइक्रोसॉफ्ट एआई या ओपन एआई, उन्होंने भी ये दर्शाया है कि अगर एआई का ऊपर हमने रिस्ट्रिक्शन नहीं डाली और एआई खुले तौर पर चलता रहा, एआई अपना ही एआई नया डेवलप करेगा जो इंसान के कब्जों से बाहर हो जाएगा। और ये एक बहुत बड़ा डर है, और इसको बचाने के लिए हमें बड़े सिस्टमेटिकली चलना है। ये जो रिस्क रिपोर्ट ये कहती है कि रूल्स एंड रेगुलेशन आप टफ बनाएं जिससे एआई को मॉनिटर किया जाए, उसको रेगुलेट किया जाए, ना बनस्पत की इसको ओपन एंडेड छोड़ दिया जाए, क्योंकि ये इतनी सहूलियत दे रहा है, हम इसको बहुत जोरों से इसके ऊपर निर्भर हो गए बिना सोचे समझे कि एआई एक ऐसा टूल है कि वो अपने आप को बेहतर बना के एक दिन वो मालिक बन जाएगा और इंसान उसका एक स्लेव बन जाएगा। ये समय दूर नहीं है, ये हो सकता है अनटिल अनलेस हम अपनी पॉलिसी को चेंज करें, हम देखें कि हम अपने फायदे के लिए अपना ही नुकसान कर लेंगे।
0: ठीक
3: तुम ना संसार को शमशान बनाना सीखो, बल्कि अभिशाप को भी वरदान बनाना सीखो। ठहरो इंसान को भगवान बनाने वालों, पहले इंसान को इंसान बनाना सीखो।
0: सर, मैं आगे बढ़ूं, एक छोटा सा सवाल और आपसे, क्योंकि आज की तारीख में अगर देखा जाए तो रक्षा क्षेत्र में बहुत जगह पर एआई का इस्तेमाल हो भी रहा है। मैं स्पेसिफिकली रक्षा क्षेत्र की यहां पर बात करूंगी, क्योंकि ये सीधे सीधे इंडिविजुअली हर देश की रक्षा के साथ ये जुड़ा हुआ है। हमारे देश की रक्षा का भी ये पूरा मामला है, और हर देश एआई वेपन्स भी तैयार कर रहा है। ऐसे में अगर एआई खुद पर रिसर्च करता है तो रक्षा क्षेत्र के लिए, हमारे देश की सिक्योरिटी के लिए ये कितना बड़ा खतरा है?
3: हाँ, देखो इस पर कोई दो राय नहीं, बहुत बड़ा थ्रेट है ये, क्योंकि आप ये देखें कि एआई आपको मदद कर रहा है, आप अच्छे अच्छे हथियार बना रहे हैं, मगर दुश्मन देश भी तो हथियार अच्छे से अच्छे बना रहे हैं। अगर वो एआई को इन्फिल्ट्रेट करके दूसरे एआई ने कर दिया तो आपके वेपन को निगेट भी कर सकते हैं। तो ओवर डिपेंडेंस ऑन एआई तो एक बहुत बड़ा, मुझे लगता है, डिजास्टर की तरफ जा रहे हैं। और ये सच्चाई है जो आप इशारा कर रहे हैं कि आप देखें, आप मिसाइल, ड्रोन्स, रॉकेट्स, जिसका बोलबाला है उसके अंदर सब में एआई इस्तेमाल हो रहा है, और एआई की मदद से आप कुछ भी कर सकते हैं। मगर आप ये देखें कि एआई ऐसा भी तो हो सकता है, इतना आप वो रेगुलेट कर ले कि वो डिक्टेट करना स्टार्ट कर दे, ना कि आप। ये एक बड़ा खतरा है। तो ओवर डिपेंडेंस ऑन एआई कैन बी डिजास्टर्स फॉर ह्यूमन काइंड, और ये ध्यान देना पड़ेगा। और ये एक देश नहीं दे सकता, ये डॉक्ट्रिन पूरे वर्ल्ड में बननी चाहिए और बड़े सोच समझ के चलने चाहिए। आज हमारे को डिफेंस के अंदर एआई आपका अल्फा टू जुल्लू तक है, हर काम आप एआई की मदद से कर रहे हैं। आप एआई का डे टू डे टूल इस्तेमाल करना एक बहुत छोटी बात है, जब आप न्यूक्लियर हथियार, केमिकल हथियार, बायोलॉजिकल हथियार बना सकते हैं, जब आप मिसाइल, रॉकेट, ड्रोन को गाइड कर सकते हैं, जब आप अच्छे से अच्छा हथियार बना सकते हैं इसकी एआई की मदद से, तो आप देखो आप किधर जा रहे हैं। और ये जो बात हम कर रहे हैं, डर किस चीज का है कि एआई हमारे को पता भी नहीं चलेगा, अपने आप को और ज्यादा सक्षम बना लेगा और ह्यूमन काइंड उसको रेगुलेट और
0: जी
3: मॉनिटर नहीं कर पाएंगे। एक दिन वो इतना बड़ा बन जाएगा कि इंसान जो एक प्रकार उनका सर्वाइवल ही खतरे में पड़ जाएगा। तो यह
0: बिल्कुल
3: सच्चाई है कि एआई बहुत इंपॉर्टेंट है आपके डिफेंस सेक्टर में, मगर हमें बड़े सोच समझ के न चलना चाहिए। हर चीज के दो पहलू हैं, जो हमने अच्छा पहलू देख रहे हैं,
0: जी
3: अगर उसका डार्क पहलू जो है वो पूरी वर्ल्ड की सुरक्षा के लिए एक बड़ा चिंता का विषय बन सकता है।
0: बिल्कुल, यानी कुल मिलाकर देखा जाए तो विश्व शांति के लिए एआई सबसे बड़ा खतरा है। अब बारी आती है नियमों की। कनिष्क कौर जी हमारे साथ हैं, साइबर पॉलिसी एक्सपर्ट हैं। सर मैं आपसे जानना चाहूंगी, अब यहां पर नियमों की बात आती है। जब 1100 टेक एक्सपर्ट ट्रंप को चिट्ठी लिखते हैं कि एआई को कंट्रोल कीजिए, हमें उसे रेगुलेट करने की जरूरत है, डूज एंड डोंट्स हर जगह के होते हैं, लेकिन एआई अगर इसको कंट्रोल नहीं किया गया, अगर इसकी ग्रोथ को स्लो नहीं किया गया तो ये इंसान को भी सरपास कर देगा, ये चिंता कितनी बड़ी है, इसको कैसे आप देखते हैं, कैसे ये कंट्रोल होगा हर क्षेत्र में? यहां पर हमारे साथ रक्षा विशेषज्ञ भी मौजूद हैं। अगर हम देखें मेडिकल क्षेत्र में, एजुकेशन क्षेत्र में, हर क्षेत्र में एआई का इस्तेमाल लगातार बढ़ता जा रहा है।
4: जी देखिए, सबसे पहले समझने की बात ये होगी कि एआई की एक स्टेज ऑफ डेवलपमेंट है। जब शुरू में आया था तो रूल बेस्ड एआई आया था, फिर एआई कॉन्टेक्स्ट अवेयरनेस और रिटेंशन के लिए इस्तेमाल किया। अभी हमने काफी जगह डोमेन स्पेसिफिक एआई की बात करी, हेल्थ केयर में एआई का इस्तेमाल, फाइनेंस में एआई का इस्तेमाल, बट अब क्या है, थिंकिंग और रीजनिंग मॉडल आ गए हैं एआई के, जो काफी चीजें जो ह्यूमन सॉल्व करता है उसको कर सकता है। अगली जो स्टेज जिसमें अभी सबसे ज्यादा काम हो रहा है वो है आपकी आर्टिफिशियल जनरल इंटेलिजेंस। जनरल इंटेलिजेंस वो है जो आदमी काम कर सकता है वो एआई भी कर सकता है। ये ऑलरेडी आ चुकी है स्टेज अभी, और बहुत सारी जगहों पे ह्यूमंस को एआई रिप्लेस कर रहा है, चाहे वो फैक्ट्रियों में रिप्लेस कर रहा है, चाहे वो आपके बॉटनेट्स के थ्रू रिप्लेस कर रहा है, या एआई एजेंट्स के थ्रू रिप्लेस कर रहा है, जिसकी वजह से बहुत सारी नौकरियां जा रही हैं। इसके अगली स्टेज है जब एआई सुपर इंटेलिजेंट हो जाता है। सुपर इंटेलिजेंट स्टेज वो है जिसमें एआई ह्यूमंस से वो काम कर सकता है जो ह्यूमंस नहीं कर सकते, ऐसी प्रॉब्लम सॉल्व कर सकता है जो ह्यूमंस नहीं कर सकते, ऐसे एनालिसिस कर सकता है जो ह्यूमन नहीं कर सकते। अब उस स्टेज में एआई ह्यूमंस को ओवर पावर कर सकता है। इसको कंट्रोल करने के लिए हमें एआई के लॉज की बनाने की जरूरत है, एआई के गवर्नेंस की, एआई की सेफ्टी की जरूरत है, ताकि अगर जहां पे कोड डेवलपमेंट हो रहा है और वो आपके आईओटी ओटी स्मार्ट सिस्टम्स में जा रहा है, तो क्या उसको वो हैक करके डिसेबल कर सकता है, जिससे ह्यूमंस को रिस्क हो सकता है। जैसे आपकी स्मार्ट सिटी में आपके बहुत सारे एआई के सिस्टम्स इंटीग्रेट हो रहे हैं, वो गलत ना हो, उसको प्रिवेंट करने के लिए हमने कोई एआई सेफ्टी गार्डरेल्स बनाई हैं, या कल को एआई आपकी जो ह्यूमंस ने उसको गाइडलाइंस दी हैं, कमांड्स दी हैं, उसको बाईपास ना करे एआई, उसके लिए गार्डरेल्स बनाने की जरूरत है। अगर हम भारत की बात करें तो भारत में आईटी रूल्स हैं, बट हम एआई के लिए कोई भी नया रूल रेगुलेशन नहीं ले पाए हैं, हमने सिर्फ एआई सेफ्टी की गाइडलाइंस बनाई है, जो एक बहुत बड़ा रिस्क है भारत के लिए। और हम बाकी देशों में भी बात करें, इस तरह के एआई सेफ्टी के लॉज बनाने की जरूरत है। यू ने जिसके ऊपर एआई सेफ्टी की एक्ट लेके आए हैं, यूएस में अभी तक कुछ आया नहीं है, क्योंकि यूएस चाहता है कि एआई दुनिया भर में इस्तेमाल हो सके। पर मुझे जो लगता है कि इस समय यूएन लेवल पे, यूनाइटेड नेशंस के लेवल पे एआई के ऊपर एक कॉमन ब्रेक थ्रू होना चाहिए, जिससे एआई की गवर्नेंस का एक ग्लोबल फ्रेमवर्क बन सके और हर क्षेत्र में एआई का क्या दुरुपयोग हो सकता है उससे बचने के लिए कोई ना कोई एक सेफ्टी फ्रेमवर्क हो और वो यूएन कन्वेंशन के थ्रू इम्प्लीमेंट हो ग्लोबली। अदरवाइज एआई का खतरा इतना ज्यादा बढ़ जाएगा, किसी भी देश की जो तकनीक है उसकी इकोनॉमी को एआई डिसेबल कर सकता है, तो दुनिया दो हिस्सों में डिवाइड हो जाएगी। एक ऐसे देश जो एआई का इस्तेमाल करके सुपर पावर बन जाएंगे, और ऐसे देश जो अपने देश का कंट्रोल खो जाएंगे बिकॉज एआई उनके अगेंस्ट इस्तेमाल किया जाएगा। इसमें सबसे नुकसान होगा डेमोक्रेसीज का, जहां पे इलेक्शन होते हैं और इलेक्शन के थ्रू लोगों को इलेक्ट किया जाता है, तो उसमें पॉलिटिकल इंटरफेरेंस हो सकता है, लोगों के साथ कॉग्निटिव वॉरफेयर हो सकता है, उनकी सोच बदली जा सकती है एआई के द्वारा, और लोगों को जिताया जा सकता है, बहुत सारे लोगों को, जो एक्चुअल में देश के लिए सही नहीं है। तो ये एक सबसे बड़ा खतरा है। दूसरा, जो आपके न्यूक्लियर पावर सिस्टम्स हैं उनको करप्ट किया जा सकता है, जो न्यूक्लियर सेफ्टी की फंक्शनैलिटीज और फीचर्स है उसको डिसेबल करके, न्यूक्लियर सिविल न्यूक्लियर पावर प्लांट्स को डिसेबल करके एक न्यूक्लियर वेपन बनाया जा सकता है, सिमिलरली जो आपके केमिकल पावर प्लांट्स हैं उनको वेपन बनाया जा सकता है। तो जो क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको सेफ गार्ड करने के लिए सबसे पहले एआई की एक रिस्क फ्रेमवर्क बनना चाहिए और उसकी इम्प्लीमेंटेशन होना चाहिए।
0: जी।
4: और एक लार्जर ह्यूमन सेफ्टी के लिए ह्यूमंस को कैसे सेफ गार्ड किया जा सकता है, आप कैसे इंश्योर कर सकते हैं जब एआई अगली स्टेज पे जा रहा है आप कैसे ह्यूमंस को उसे बचा सकते हैं, वो बहुत जरूरी है। लास्ट स्टेज जो सातवीं स्टेज है एआई की सिंगुलैरिटी स्टेज है, वो सबसे ज्यादा खतरनाक है। वो सिंगुलैरिटी स्टेज ये कह सकती है कि दुनिया में ह्यूमंस की जरूरत नहीं है दुनिया को चलाने के लिए, और एआई जो है वो दुनिया को चलाएगा। उस स्टेज में आके वो कोशिश करेगा कि जो बाकी दुनिया के जो लीडर्स हैं उनको डिसेबल करे या उनके ऊपर अटैक करे या न्यूक्लियर वेपन्स को इस तरह से इस्तेमाल करे कि उनकी आपस में लड़ाई हो जाए और एआई दुनिया को चलाने लगे। वो एआई सिंगुलैरिटी की जो स्टेज है वो बहुत खतरनाक हो सकती है। तो उस स्टेज से हम कैसे अपने देश को बचा सकते हैं, दुनिया को बचा सकते हैं, उसके लिए एआई सेफ्टी सिक्योरिटी के ऊपर काम करना बहुत ज्यादा जरूरी
0: बहुत जरूरी और इस पर एक कलेक्टिव एफर्ट भी होना चाहिए। जैसा अभी जनरल सिवाश भी बता रहे थे कि हर मुल्क को आगे आना चाहिए, हर देश को इसको लेकर चर्चा करनी चाहिए, और आपने भी यहाँ पर जिक्र किया है कि यूएन की तरफ से भी एक ऐसे प्रस्ताव आने चाहिए। लेकिन मोहित, मैं आपके पास आना चाहूंगी। अब यहाँ पर जब हम कहते हैं कि एआई खुद पर रिसर्च करता है, इसको लेकर आप सभी ने समझाया कि उसका नतीजा क्या हो सकता है। देखिए, सबसे बड़ा खतरा तो हमारे हमारे क्या किसी भी देश की डेटा प्राइवेसी को भी लेकर है। अगर आपकी डेटा प्राइवेसी नहीं रहेगी, अगर वो लीक हो जाएगी, तो इसका मतलब सीधे सीधे वो गलत हाथों में भी जा सकती है।
1: बिल्कुल, एआई के साथ में देखो नॉर्मली क्या होता है, हम जिन एआई को जानते हैं वो हमारे क्लॉड या चैट जीपीटी, ये बेसिक एआई हैं। लेकिन आजकल जो जमाना है जिसमें जिसकी तरफ एआई बहुत तेजी से शिफ्ट हो रहा है उसको बोलते हैं एजेंट्स। तो एआई एजेंट्स की तरफ शिफ्ट हो रहा है, और एंथ्रोपिक जैसी कंपनी ने कुछ ऐसे एआई मॉडल्स क्रिएट की हैं, इस तरह के एजेंट्स बनाए हैं जो आपके नेटवर्क के अंदर पेनिट्रेट कर सकते हैं, आपके नेटवर्क से डेटा निकाल सकते हैं, आपके सॉफ्टवेयर को हैक कर सकते हैं, आपके बैंक के अंदर पेनिट्रेट कर सकते हैं। तो आपका पर्सनल डेटा रिस्क पे है, आपका जो पैसा है वो रिस्क पे है, आपके जितने भी डिजिटल एसेट्स है वो रिस्क पर आ चुके हैं। और ये ऐसे स्पेशलाइज जो एआई मॉडल्स होते हैं उनको कंटेन करना, उनमें गार्डरेल्स बनाना बहुत मुश्किल हो जाता है, क्योंकि आपने एक ऐसा वेपन बना दिया कि जो इस लेवल का वेपन है कि किसी भी नेटवर्क के अंदर घुस पा रहा है, किसी का भी पर्सनल डेटा निकाल पा रहा है, तो उस वेपन को सेफ करना भी आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है। और अभी तो एआई बहुत ही स्टार्टिंग स्टेज में है, तब एंथ्रोपिक जैसी ऑर्गेनाइजेशन ने इस तरह के मॉडल्स क्रिएट कर दिए, और ये बहुत डिफिकल्ट नहीं होगा किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के लिए, क्योंकि जैसे एंथ्रोपिक एक यूएस बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन है, वैसे ही इंडिया और अलग अलग कंट्रीज के पास भी ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जो इस तरह के मॉडल्स क्रिएट कर सकती है और क्रिएट किए भी जा रहे हो। यहाँ पे डेटा प्राइवेसी, डेटा हैक होना, नेटवर्क, कंप्यूटर, बैंकिंग सिस्टम, ये सब बड़े छोटी चीजें हो जाएंगी, क्योंकि अभी करंट स्टेज में ये सब कुछ हो पा रहा है और एजेंट्स, एआई के जो एजेंट्स है वो सब इजीली कर पा रहे हैं। अभी बीच में एंथ्रोपिक ने माइथोस नाम का एक टूल, एक मॉडल निकाला था जिससे बहुत सारे बैंक सिस्टम्स को बहुत ईजी तरीके से उसके अंदर अटैक हो गया, उसको पेनिट्रेट कर गया। उसको रोकना पड़ गया, उसको वापस उसको रोल आउट रोल बैक करना पड़ गया। सो अंडरस्टैंड कि हमें को इस मोमेंट पे डेटा प्राइवेसी, डेटा एआई के लिए अभी इस मोमेंट पे कुछ भी नहीं है, क्योंकि सारा डेटा एआई के पास ही जा रहा है। मतलब हम जो भी सर्च करते हैं चैट जीपीटी से लेकर जितने भी उस पे, वो सब एआई के पास ही जा रहा है। और हमारे फोन्स पर भी आजकल एआई आ चुका है, वो ऑटोमेटिकली आपकी सारी बातें सुन रहा है, आपके मैसेजेस रीड कर रहा है, उसके बेसिस पर एक्शंस ले रहा है, और सारा डेटा इन कंपनीज के पास जाता है और उन्हीं के ऊपर आप ये मॉडल्स होते हैं, ये ट्रेन होते हैं। तो वो एआई खुद ब खुद इम्प्रूव हो रहा है आप ही के डेटा के ऊपर, हमारे ही डेटा को लेकर हमारी ही चीजों को एक्सट्रैक्ट करता है, देन वो एक दूसरे को साथ में मतलब और अच्छा भी बना पा रहा है, मतलब वो इम्प्रूव भी कर पा रहा है अपने आप को। तो धीरे धीरे कर ये लास्ट स्टेज बहुत ज्यादा दूर नहीं आएगी जहाँ पे एआई बोलेगा कि हमको ही सब कुछ कंट्रोल करना चाहिए वर्ल्ड में।
0: बिल्कुल, अमित जी आपके पास आना चाहूंगी, कितनी जायज है टेक कंपनियों की चिंता?
2: मैम, टेक कंपनियों की चिंता बहुत ज्यादा जायज है, क्योंकि एआई का जो सेल्फ इम्प्रूवमेंट है, एआई अपनी मिस्टेक्स को खुद आइडेंटिफाई कर रहा है, खुद अपनी मिस्टेक्स को ढूंढ के उनका रिजल्ट चेकआउट करके उनको फाइंड करता है, ढूंढता है, फिर उसको सॉर्ट करता है, इम्प्रूव करता है। यही अपना कोड जो एआई का कोडिंग एजेंट है वो खुद बे खुद अपने आप को अपने अंदर बग्स को ढूंढ के फिक्स करके परफॉर्मेंस इम्प्रूव करके आगे नए नए ALML इंजीनियरिंग को ना टास्क दे रहा है, इम्प्रूव कर रहा है, ताकि लूप्स में कहीं पे भी उनको अगर टेस्ट किया जाता है तो कोई भी उनके अंदर बग ना आए। और अगर बात करते हैं तो एआई बेटर ट्रेनिंग डेटा बन सकता है, ठीक है, क्यों? क्योंकि एआई सक्सेसफुल फेल्ड अटेम्प्ट जितने भी हैं उनको एनालिसिस करता है, फ्यूचर ट्रेनिंग, पोस्ट ट्रेनिंग, ठीक है, उनके लिए यूजफुल एग्जाम्पल है। तो एआई खुद सेल्फ डेवलपमेंट हो रहा है, तो एआई अपने आप को खुद सीख भी रहा है और सिखा भी रहा है, और अपनी नई नई पॉलिसीज को अपडेट भी कर रहा है, और इसका जितना प्रोसेस है सारा इधर ऑटोमेट है। तो उससे क्या है कि हमारे जितने भी एक्सपेरिमेंट डिजाइन है वो अपने आप सेल्फ ऑटोमेट हो रहे हैं, और ऑटोमेट होकर नए नए चीजें सामने आ रही है। तो टेक कंपनी जितनी भी है, आज हम कोई सॉफ्टवेयर अगर मैनुअली बना के मार्केट में बेचते थे, तो आज अगर उसको एआई से जोड़ दिया गया तो एआई उसका अपग्रेडेड वर्जन कल ही लॉन्च कर देती है, जबकि इंसान एक सोच भी नहीं सकता था कि इसके अंदर ये ऑप्शंस होनी चाहिए या ये चीजें होनी चाहिए, लेकिन एआई सेल्फ इम्प्रूव करके उसका अपग्रेडेड वर्जन आपको दे रहा है, ठीक है। तो मतलब क्या कि एआई खुद वेपन नहीं बना रहा, लेकिन एआई क्या कर रहा है, साइंटिफिक इंफॉर्मेशन जितनी भी उसको एनालिसिस कर रहा है, प्रोसेस कर रहा है, ठीक है, ताकि आपके सामने ला रहा है ताकि आप उसको देख सके। तो एआई इतना ज्यादा फास्ट अपने आप को डेवलपमेंट कर रहा है कि हम चाह के भी उसको आगे आने वाले टाइम पे रोक नहीं पाएंगे, क्यों? क्योंकि एआई खुद इतनी चीजें खुद जान सकता है कि वो हमें रोक दे देगा। वो अगर उसके सामने एक तरफ ह्यूमन है एक तरफ एआई है, अगर हम मानते हैं, तो एआई हमारा कहना माने ना ना माने वो एआई के मॉडल के ऊपर डिपेंड है, एआई के ऊपर डिपेंड है उसको क्या इंस्ट्रक्शंस दी गई, क्योंकि अगर उसके अंदर इमोशंस भर दिए गए, उसके बिहेवियर में चेंजेस दिला दिए गए, तो वो ह्यूमन का कहना बिल्कुल भी आगे जाके नहीं मान सकता। जो सुपर एआई की बात कर रहे थे, सुपर एआई बहुत ही ज्यादा खतरनाक एआई होने वाला आने वाले टाइम पे, तो उसके सामने मतलब अगर एआई का इसी टाइप से इधर टेक्नोलॉजी में इधर एडवांसमेंट बढ़ती गई तो एआई सबके लिए बहुत ज्यादा डेंजरस आने वाले टाइम पे।
0: बिल्कुल, चले, लेकिन इसका सॉल्यूशन क्या हो सकता है, नियम किस तरीके से बनने चाहिए, और क्या वाकई दुनिया के तमाम मुल्क साथ आएंगे, या फिर अभी कनेक्शन ने बहुत इंपॉर्टेंट बात यहां पर कही है कि अगर ऐसा होता है तो फिर ये भी हो सकता है कि जिसके पास जितनी अच्छी जितना बढ़िया तकनीक होगी वो मुल्क आगे निकलेगा और फिर दूसरे मुल्क पीछे रह जाएंगे। इसको लेकर जो चिंता है उस पर भी बात करेंगे, नियम कैसे बन सकते हैं, चर्चा उसको लेकर भी। फिलहाल एक ब्रेक आप रही है हमारे साथ।

0: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
1: और दुर्भाग्य कहता है
2: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
3: अविश्वास में विश्वास बसता है,
0: जो हम में अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज़ टुडे बनाता है।
4: गुड न्यूज़ टुडे।

0: क्या रासायनिक हथियार भी बनवा सकता है एआई? देखिए, एआई को लेकर चिंता हर जगह है। इसमें कोई दो राय नहीं कि एआई इंसान को रिप्लेस कर रहा है। बहुत जगहों पर नौकरियां भी लोगों की जा रही, लेकिन सबसे बड़ा खतरा इंसान पर भी है और साथ ही साथ अगर हम कहें कि धरती पर भी है। मिस्टर जनरल सुभाष, मैं आपको इंक्लूड करना चाहूंगी। अभी कनिष जी ने बहुत इंपॉर्टेंट ये बात कही। देखिए, ये कहा जाता है कि आने वाले समय में जिस भी मुल्क के पास जितनी एडवांस तकनीक होगी, जितने एडवांस हथियार होंगे, वही रण क्षेत्र में सबसे आगे होगा, युद्ध क्षेत्र में। तो ऐसे में अगर सवाल तो मेरा पहला यही है कि क्या आपको लगता है कि सारे मुल्क एक साथ एक प्लेटफॉर्म पर आएंगे एआई को लेकर रूल बनाने के लिए? ऐसे समय में जब यहां पर सुपर पावर कौन है उसको लेकर एक होड़ मची हुई है।
1: हाँ बिल्कुल, ये आपने बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा कि क्या हम हमारे पूरे वर्ल्ड के अंदर एक प्रकार से एक ही वॉइस आएगी कि हम एआई को कंट्रोल करें, क्योंकि कुछ एक देश इस एआई से बहुत आगे निकल चुके हैं और कुछ देशों के पास एआई बहुत स्टार्टिंग की हालात में। सच्चाई क्या है कि आज की तारीख में पूरे वर्ल्ड में एआई इनेबलर है, एआई आपको सपोर्ट कर रहा है, एआई की मदद से आप वो काम कर पा रहे हैं जो आप नहीं कर पाते थे पहले। मगर धीरे धीरे जो यही एआई वो अपने आप को सेल्फ रेगुलेट करके एक प्रकार से इस स्टेज पे पहुंच जाएगा कि जब वो इंसान को कमांड करना स्टार्ट कर देगा और कमांड लेना बंद कर देगा, उस समय फिर इंसान जो हैं वो स्लेव बन जाएंगे एआई के। वो सबसे बड़ा डर है। अब जो बात आप बार बार हम एक तरफ कह रहे हैं कि एआई अब जब इनेबलर है तो अब डर किस चीज का? अब तो वो मदद कर रहा है, जो काम हम 10 घंटे में कर सकते थे उसको 10 मिनट में कर सकते हैं। उसका डर यह है कि मिसयूज क्या हो रहा है। जैसे कि एग्जांपल के तौर पे न्यूक्लियर हथियार है, अभी न्यूक्लियर हथियार 9 देशों के पास है। दूसरे देश न्यूक्लियर हथियार क्यों नहीं बना पा रहे? क्योंकि उनके पास वो टेक्नोलॉजी नहीं है जिसको एनरिच कर सके वो यूरेनियम को 60% और 60 से 90%, जो जिसको वेपन ग्रेड माना जाता है। अगर वो एआई की मदद से आपको पूरा स्टेप बाय स्टेप बताएगा, और हो सकता कुछ एक देश इसके करने से न्यूक्लियर हथियार बना पाए, और जहां की दूसरे देश उनको टेक्नोलॉजी नहीं दे रहे एनपीटी के करीब वजह से, मगर वो एआई की मदद से न्यूक्लियर हथियार बना देंगे, और वो एक बहुत बड़ा डेंजर होगा। इसके साथ साथ सबसे बड़ा डेंजर है ये टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन। अगर टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन के पास एआई टूल है और वो मदद से, तो वो भी तो छोटा न्यूक्लियर हथियार, टैक्टिकल न्यूक्लियर हथियार बना सकते हैं। तो वर्ल्ड की जो सिक्योरिटी और वर्ल्ड की जो एक प्रकार से सेफ्टी के ऊपर बहुत बड़ा थ्रेट है, ये एक चीज हमें ध्यान देनी पड़ेगी। तीसरा एक हमें ये देखना पड़ेगा, ये सच्चाई है कि एआई का इस्तेमाल अगर पूरी वर्ल्ड की एक अच्छाई के लिए किया जाए तो ये एक प्रकार से वरदान है, सच्चाई है कि आप बहुत कुछ काम वो कर सकते हैं। जैसे मेडिकल में है, आप रिसर्च कर सकते हैं, कैंसर का इलाज बड़े आसानी से ढूंढा जा सकता है, टीबी का किया जा सकता है। जो अफ्रीकन कंट्रीज हैं जहां पर भूखमरी है, जहां पर हालात खराब, वहां से एआई की मदद से वो पॉवर्टी से उनको निकाला जा सकता है। जब तक इसका अच्छा रूप है तब तक ये ठीक है, मगर कहां हम गलती कर रहे हैं इस रेस में, हम भूल रहे हैं कि एआई खुद को भी डेवलप कर रहा है, आरएनडी अपनी कर रहा है, जो इंसान को पता नहीं चला, ना हम मॉनिटर कर पा रहे। तो ऐसा ना हो कि धीरे धीरे एआई जो है वो मालिक बन जाए और इंसान जो है उसके स्लेव बन जाए, वो डिक्टेट करे। हो सकता है वो ये कहें कि अभी हमें इंसानों की जरूरत नहीं है और एआई इंसानियत को ही खत्म कर दे। ये डर बहुत ही एक प्रकार सच्चा रिस्क है, और यही मुझे लगता है कि जो एंथ्रोपी की रिस्क रिपोर्ट है वो उसी तरफ इशारा कर रही है। यही नहीं, गूगल ने भी, माइक्रोसॉफ्ट ने भी, ओपन एआई ने भी इसकी तरफ इशारा किया है कि हम धीरे धीरे ये दें। दूसरा, आपने एक बड़ा अच्छा क्वेश्चन पूछा था, बहुत अच्छा है, कि अब हैव्स एंड हैव नॉट के ऊपर गैप आएगा। एक वो देश जिसके पास एआई टूल्स अवेलेबल है और एक वो देश जो पिछड़े हुए हैं, जिनके पास एआई को काबिलियत नहीं है, क्षमता नहीं है, वो बहुत पीछे रह जाएंगे। और जो एआई का टूल इस्तेमाल करेंगे, जो एआई के बारे में जानते हैं, उनकी प्रोग्रेस बहुत ज्यादा होगी, इसमें कोई शक नहीं। और ये भी एक बहुत बड़ा आपस में फर्क कर सकता है, डेवलप्ड कंट्री, डेवलपिंग और अंडर डेवलप्ड कंट्री, तो ये भी एक ध्यान देना पड़ेगा। पर ओवरऑल मैं यही कहूंगा, एआई एक बहुत अच्छा टूल है इंसानियत के लिए, मगर इसके ऊपर हमने रेगुलेट नहीं किया, मॉनिटर नहीं किया, तो ये आने वाले टाइम में हमारे लिए एक बहुत बड़ा खतरा पैदा हो सकता है पूरी
0: बिल्कुल
1: इंसानियत के लिए।
0: बिल्कुल, कनिष जी को जाना है। कनिष जी, जल्दी से एक सवाल का जवाब आप रख दीजिए, क्योंकि आप सीधे तौर पर पॉलिसी से भी जुड़े हुए हैं। सर, मैं जानना चाहूंगी, एआई इंसान पर हावी ना हो, एआई इंसान के लिए खतरा ना बने, इंसानियत के लिए खतरा ना बने, किस तरह के रूल्स उसको लेकर बनाए जा सकते हैं या जरूरत है?
2: एक रूल बनना चाहिए ह्यूमन सेफ्टी फ्रॉम एआई। आप कैसे आम इंसान की हेल्थ के ऊपर एआई ना आए, उसके मानसिक संतुलन के ऊपर एआई का इस्तेमाल ना हो, या जो मास एक्सटेंशन हो सकता है एआई का इस्तेमाल करके, जिससे न्यूक्लियर वेपन बन सकते हो, या एआई का इस्तेमाल करके केमिकल वेपन बन सकते हो, या बायो वॉरफेयर वेपन बन सकते हो एआई का इस्तेमाल करके, उसकी प्रिवेंशन के लिए एक लार्जर रेगुलेशन लाने की जरूरत है। और ऐसी कंपनियां जो एआई बना रही हैं और इन सिस्टम्स को लिंक कर रही हैं, वो क्या सेफ्टी सिक्योरिटी मेजर्स इंप्लीमेंट कर रही हैं, और उससे पता लगा सके ऑडिट करके या रिस्क असेसमेंट करके कि वो अपने एआई के सिस्टम्स के कंट्रोल में हैं। कल को एआई खुद ऑटोनोमस हो जाए और उन सिस्टम्स को डिस्टर्ब करके ह्यूमंस के अगेंस्ट इस्तेमाल करे, उससे बचने के लिए रेगुलेशंस की जरूरत है। सो जो हमारे देश में क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर है, उसको हम कैसे बचा सकते हैं कि एआई कल को दो ट्रेन को आपस में ना टकरा सके उनके सॉफ्टवेयर को करप्ट करके, या आपके केमिकल प्लांट की टेम्परेचर को चेंज ना कर पाए, उसके लिए लॉज लाने की जरूरत है। और उससे बचने के लिए क्या हमने सेफगार्ड्स लगाए हैं? अब इसमें कॉन्सेप्ट होता है ह्यूमन इन द लूप, कि एआई है पर एक आदमी है जिसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है ये इंश्योर करना कि एआई सुपर इंटेलिजेंट नहीं होगी या सिंगुलर नहीं होगी, उस सब को कैसे आप डेवलप कर रहे हैं। और लार्जर भारत देश में एआई सेफ्टी सिक्योरिटी इंस्टीट्यूट बन पा रहा है और एक एआई रेगुलेशन आ पा रहा है जिससे पॉलिटिकल इंटरफेरेंस ना हो सके, बाकी दुनिया के जो लोग हैं या बाकी जो राष्ट्र हैं वो भारत के डेमोक्रेटिक सिस्टम को इम्पैक्ट ना कर सके, उसके लिए जरूरत है। जैसे अभी यूपी में इलेक्शन आने वाले हैं, उसमें एआई का इस्तेमाल करके क्या डीप फेक बनाया जा सकता है, क्या सरकार के
0: नहीं, लेकिन ये तो आपने जब डेमोक्रेसी की बात की, तो जिन जिन मुल्कों में लोकतंत्र है, जिन जिन मुल्कों में डेमोक्रेसी है, तो हर किसी के लिए खतरा है फिर।
2: बिल्कुल है, पर
0: तो इसको इसको क्या ग्लोबली एक रूल क्या बन सकता, क्या पॉसिबिलिटीज ऐसी हो सकती है, जबकि हर मुल्क, हम अमेरिका से लेकर चाइना तक, हर जगह पर कहा जा रहा है कि एआई खतरा हो सकता है इंसानियत पर, तो क्या सबको एक साथ एक प्लेटफॉर्म पर आने की जरूरत है? आएंगे या नहीं आएंगे, इस पर भी जवाब रखिएगा।
2: देखिए, आना चाहिए पर ऐसा होना बहुत मुश्किल है। अगर आप देखेंगे भारत के आसपास जो भी देश है उसमें एआई का इस्तेमाल करके उनके देश की सरकारों को बदला गया है। आप नेपाल को देखिए, आप बांग्लादेश को देखिए, आप श्रीलंका को देखिए। नाम के लिए कहा गया है कि स्टूडेंट रेवोल्यूशन है, पर स्टूडेंट रेवोल्यूशन को लाने के लिए एआई का इस्तेमाल किया गया है, कॉग्निटिव वॉरफेयर किया है, एआई के बॉट्स चलाए गए हैं ताकि उन देश की जो सरकार के जो लोग हैं वो जो रूलर है वो छोड़ के जा सके। तो इसमें कहीं ना कहीं एक एक्सटर्नल पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस है जिसमें एआई का इस्तेमाल किया गया है, और उससे बचने के लिए बड़े देश, भारत जैसा देश जो अपने आप को ग्लोबल लीडर कहता है साउथ का, वो कैसे बच सकता है? 2029 का जो भारत में इलेक्शन होगा उसको हम कैसे एआई से फ्री रख सकते हैं या एआई की मैनिपुलेशन से बचा सकते हैं, उसके लिए भारत में अभी लॉ लाने की जरूरत है।
0: बिल्कुल, चलिए कनिष जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। कनिष जी को जाना है इसलिए बहुत शुक्रिया। मोहित, मैं आपके पास आना चाहूंगी यहीं से। कनिष जी की बात सही, अपनी बात को आगे बढ़ाइए। क्या सॉल्यूशन इसका हो सकता है? पॉलिसीज क्या बनेंगी नहीं बनेंगी? क्या ग्लोबली इसको लेकर कुछ नियम बनाने चाहिए? इंडिविजुअल देश अपनी तरफ से क्या क्या स्टेप्स उठा सकते हैं?
3: कनिष जी ने बिल्कुल एकदम सही बोला कि दूसरी कंट्रीज, हमारे आसपास की कंट्रीज बिल्कुल भी नहीं चाहेगी कि हाँ कुछ इस तरह का पॉलिसी बन सके, बिकॉज वो डेफिनेटली चाहेंगे कि ऐसे मॉडल्स उनके पास हों या फिर वो ऐसे मॉडल्स डेवलप कर पाए जिनसे वो दूसरी कंट्री के चीजों को इम्पैक्ट कर सके। तो और ये अभी तो एआई बहुत ज्यादा ना चेंजिंग स्टेज में है, इतने ज्यादा चेंजेस हो रहे हैं कि पॉलिसी बनाना भी एक डिफिकल्ट टास्क होगा, बिकॉज ये चेंजेस मतलब अभी स्टेबिलिटी नहीं है। अभी आप थोड़े समय बाद आप एजेंट्स के ऊपर पता नहीं कितना डिटेल्ड रिसर्च हो रहा है और अलग अलग तरह के मॉडल, स्पेशलाइज मॉडल्स बन रहे हैं। इनफैक्ट एक मॉडल बना, उस मॉडल से दूसरे चार कंट्रीज अलग अलग तरह के मॉडल्स बना लेती है। मतलब उस एक एआई का डेटा चुरा के दूसरी एआई कंपनी खड़ी हो जाती है। तो हर रोज इस तरह की नई नई चीजें देखने को मिल रही हैं, और जिन चीज की हम बात करें इनको गार्डरेल्स बोलते हैं। मतलब एआई, आप कोई भी एआई से कुछ भी आप प्रॉम्प्ट दोगे कि मुझे एक स्पेसिफिक बॉम्ब बनवाना है, तो वो शायद एआई आपको शायद नहीं देगा। लेकिन ऐसे बहुत सारे एआई मॉडल्स हैं जिन एआई मॉडल्स को पेनिट्रेट किया जा सकता है, और वो उनमें इस तरह के गार्डरेल्स नहीं है। तो ये इस तरह के गार्डरेल्स को यूज कर आज भी बहुत सारी जगह पर काम हो रहा है, और मुझे लगता नहीं है कि इस तरह का कोई रूल हर एक कंट्री में पूरा ग्लोबल लेवल पर आ पाएगा, बिकॉज डिफिकल्ट है। हर कंट्री के ज्योग्राफिक्स अलग, उनके पॉलिटिकल एजेंडाज अलग है, प्लस ग्लोबली वो उनका एक स्टैंडर्ड वो स्टे फिक्स करना चाहते हैं कि उनका एक स्टैंड है एक कंट्री का। तो वो डेफिनेटली वो चाहेंगे कि वो हमेशा आप बाकियों से एक स्टेज ऊपर रहे, तो डेफिनेटली वो चाहेंगे कि बड़े से बढ़िया एआई और स्ट्रॉन्गेस्ट टू स्ट्रॉन्गेस्ट एआई वो क्रिएट कर पाए।
0: बिल्कुल। अब एक बार
3: डिफिकल्ट टास्क है,
0: हाँ ठीक है, अपनी बात पूरी कर लीजिए।
3: मतलब बहुत डिफिकल्ट टास्क है इस तरह से एआई को रिस्ट्रिक्ट कर देना अभी के समय पे।
0: बिल्कुल मेजर जनरल सिवाच, ये जब मैं भारत के लिए हम खतरे का जिक्र करते हैं, तो सर आपने हाल फिलहाल में देखा होगा कि चाइना, अगर एआई की बात करें, तो चाइना ने कितनी तरक्की एआई के मामले में कर ली है। वहां तो स्टेडियम में फुटबॉल मैचेस तक चाइना करा रहा है। हर क्षेत्र में देखा जाए तो चाइना ने एआई रोबोट्स बहुत सारे बना लिए हैं। ये भारत के लिए कितना बड़ा खतरा हो सकता है, स्पेशली अगर हम चाइना की बात करते हैं?
1: हाँ बिल्कुल, बहुत बड़ा खतरा है। और सच्चाई है, एआई के माध्यम से देखा जाए तो चाइना एक लीडिंग कंट्री है। अमेरिका और चाइना दो एक प्रकार से आप कहें कि नोडल हैं, जहां पर एआई बहुत जोरों से डेवलप हो रही है। और अभी तक तो हम एआई का इस्तेमाल, जैसे कह रहे हैं कि एक देश दूसरे देश पे एआई का इस्तेमाल कर सकता है। जैसे चाइना की बात करो कि साइबर वारफेयर में वो बहुत महारत प्राप्त किया उसने, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस स्पेस वार में किया है, रोबोटिक्स कर दिए, माइंड फील्ड में वो एक प्रकार से रोबोट्स का इस्तेमाल करेगा, आपका पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर को वो एक प्रकार जैम कर देगा, आपका जो सिग्नल जो डिवाइसेज है उनको एक प्रकार से करप्ट कर देगा। तो ये सच्चाई है कि एआई का जो इस्तेमाल चीन जैसे देश हैं वो इतना बड़ा कर सकते हैं, बिना लड़ाई के वो जीतने की कोशिश कर सकते हैं। और इसलिए आपको एक काउंटर एआई करना पड़ता है कि आप यकीन करें कि आपके जो इक्विपमेंट हैं एआई हार्डेंड है, उनको दखल अंदाजी ना हो सके, साइबर वारफेयर का आप हिस्सा ना बन पड़े। देखो केस इन पॉइंट आपको मैं बताता हूं, जो कि अब रशिया यूक्रेन लड़ाई चली हुई है, रूस ने इंग्लैंड के ऊपर साइबर वारफेयर 2-3 बार ट्राई कर लिया, और वो सच्चाई है क्योंकि अमेरिका जो ब्रिटेन है वो हथियार काफी दे रहा था यूक्रेन को। तो इसका मतलब जो एआई की मदद से आप जितने भी ये टूल हैं, जो साइबर स्पेस और जो आप आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, इसका इस्तेमाल करके दूसरे देश को बहुत बड़ा नुकसान पहुंचा सकते हो, अपनी काबिलियत और क्षमता बढ़ा सकते हो। तो ये कार्रवाई तो हो रही है एक देश से दूसरे देश के ऊपर, डर इसका तो है ही, हमें डर उससे अगले स्टेज का है कि जब धीरे धीरे एआई इतना पावरफुल हो जाएगा कि वो कमांड लेना ही बंद कर देगा और वो अपने कमांड देगा और ह्यूमन बींग्स को माननी पड़ेगी और ह्यूमन बींग्स उसके स्लेव बन जाएंगे और इंसान के लिए एक प्रकार से पूरी थ्रेट हो सकता है, वो भी एक बड़ा चिंता का विषय है। मगर जो स्टेज अभी है भारत जैसे देश को, यही एक बहुत बड़ी चिंता का विषय है कि चीन जो है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस साइबर वॉरफेयर में एआई के अंदर जो इस्तेमाल कर रहा है, कि जिस प्रकार से अब वो इतना आगे बढ़ गया है, हमें ध्यान देना है कि वो यही चीज पाकिस्तान को भी दे सकता है। अगर वो पाकिस्तान को भी देता है तो फिर पाकिस्तान के पास भी एक काबिलियत और क्षमता हो जाएगी। इसको काउंटर करने के लिए भारत ने डेवलप किया, इसमें कोई शक नहीं, भारत भी बड़ी स्पीड से चला हुआ है। तो अभी तो आप ये देखें कि एआई एक देश की दूसरे की एआई के साथ मुठभेड़ है, मगर धीरे धीरे आप एआई इतनी स्ट्रांग होगी कि फिर वो सुपीरियर हो जाएंगे और ह्यूमन काइंड जो है वो उसके लिए प्रकार से एक सेकंड स्टैंडर्ड में आ जाएंगे। मगर मैं यही कहूंगा कि आज भारत को चौंकाना रहने की जरूरत है, क्योंकि एआई जो है एक आने वाले समय में बहुत बड़ा चैलेंज है, स्पेशली आप देखें डिफेंस पॉइंट ऑफ व्यू से ये एक इनेबलर भी है और ये एक आपके लिए थ्रेट भी है।
0: बिल्कुल, बहुत सारी कंपनियां हैं जिन्होंने ओपन लेटर साइन भी किया है, जिसमें गूगल भी है, एंथ्रोपिक भी है, ओपन एआई भी है, ये तमाम कंपनियां हैं जिन्होंने कहा है कि इसकी ग्रोथ को कंट्रोल करने की फिलहाल जरूरत है। अमित जी, मैं आपके पास आना चाहूंगी, अब क्या किन नियमों की जरूरत है इस वक्त एआई को लेकर?
4: मैम देखिए, अगर हम बात करते हैं तो हमारे भारत का जो संविधान है उसके अंदर आईटी एक्ट 2000 जो कि इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट 2000 बना, तो इसके अंदर क्या है कि हमारा पूरा साइबर क्राइम भी आता है और एआई भी इसके अंदर ही इंक्लूड होता है। तो कोई ऐसा एआई को लेके प्रॉपर संविधान नहीं बनाया गया, जो 2000 मतलब आईटी 2000 है उसकी अमेंडमेंट 2008 के अंदर हुई, तो 8 के अंदर थोड़े चेंजेस किए गए। जैसे जैसे साइबर क्राइम की ग्रोथ बढ़ी तो उसको देखते देखते उसके अंदर चेंजेस किए गए। अब 2026 आ गया, तो 2026 में साइबर क्राइम भी बहुत बढ़ चुका है और एआई से क्राइम होने वाले भी बहुत बढ़ चुके हैं, तो लेकिन हमारे कानून के अंदर कोई भी अमेंडमेंट नहीं हुई अभी तक। तो एआई को रोकना, एआई के लिए कानून बनाना इतना इजी नहीं है, इतना जल्दी नहीं है। तो उसके लिए क्या है कि मैं तो ये कहना चाहूंगा कि एक हमें इमरजेंसी एआई किल स्विच बनाना चाहिए। तो हाई रिस्क एआई जब भी सिस्टम्स के लिए इंडिपेंडेंट इमरजेंसी शटडाउन मैकेनिज्म होना चाहिए, ताकि हमें कभी भी शटडाउन मैकेनिज्म को ना अपने कंट्रोल में रखना चाहिए, गवर्नमेंट के कंट्रोल में होना चाहिए, ह्यूमन के कंट्रोल में होना चाहिए, ताकि एआई से हमें जब भी कोई प्रॉब्लम आगे इन फ्यूचर होनी चालू हो तो हम एआई को इमीडिएटली शटडाउन कर सकें, रोक सकें, स्टॉप कर सकें। क्योंकि कानून तो जब तक बनेगा जब उसके ऊपर इम्प्लीमेंटेशन होंगी, जब कुछ नई चीजें आएंगी, तब तक हो सकता है कि एआई बहुत ज्यादा खतरा पैदा कर चुका हो, जब बहुत ज्यादा लॉस कर चुका हो, तो उसका कोई शटडाउन मैकेनिज्म एक्सेप्शन इमरजेंसी होना चाहिए कि हम उसको रोक सके कि अगर कुछ भी ऐसा गलत होता है। जैसे कि अभी 1100 लोगों ने लेटर दिया था इधर अमेरिका में, उसके बाद इसके ऊपर सोचा गया, तो कई कंपनियों ने इसको रोकने के लिए भी कहा गया, मतलब कंपनी इसको रोकना चाह रही है कि ना बहुत ज्यादा इसकी ग्रोथ बढ़ रही है तो उसको स्लो करो, रोको। तो इसको लेके हम अगर फ्यूचर के लिए देखते हैं तो इंडिया एक हाई रिस्क पे है, क्योंकि यहाँ पे एक जो एआई है इधर ऑटोनोमस है, और वो डिफेंस के लिए पावरफुल ग्रिड है, टेलीकॉम के लिए पावरफुल ग्रिड है, फाइनेंशियल के लिए बहुत पावरफुल है, इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए बहुत पावरफुल है, तो सब चीजों के लिए बहुत पावरफुल जा रहा है। तो हर फील्ड के अंदर एआई आ रहा है, तो एआई से अपने आप को सेफ रखने के लिए, बचाने के लिए, या तो उसके ऊपर एक अच्छा कानून बना जाए, या फिर उसको रोकने का कोई तरीका ऐसा हो कि इंसान जब चाहे उसको अपने कंट्रोल में करके रोक सके, उसको
0: इंसानी कंट्रोल से बाहर ना जाए। और खुद एंथ्रोपिक ने भी मजबूत सुरक्षा उपायों को लेकर जोर दिया है। मैं एक आखिरी कमेंट आपसे चाहूंगी, अब कैसे नियम बन सकते हैं, किस तरीके से, और ग्लोबली अगर हम देखें तो किन नियमों की, किन सख्त नियमों की इस वक्त जरूरत है?
4: मैम देखिए, नियम इसके ऊपर बन सकते हैं, अगर हम लोग चाहें तो एक कानून बना सकते हैं, क्योंकि आज भी हमारे देश में अगर कोई साइबर क्राइम होता है तो हम इंस्टाग्राम फेसबुक के नोडल ऑफिसर से वहां से डिटेल मंगा के उसके ऊपर कार्रवाई करते हैं,
0: ठीक है,
4: लेकिन उस पर टाइम बहुत लग जाता है। इसी टाइप से एआई भी हमारा क्या है कि इंडिया में नहीं है, एआई के सारे सर्वर्स मैक्सिमम बाहर है इंडिया से, तो उसके ऊपर भी हम लोग अगर कोई कानून बनाए कि एआई के थ्रू अगर कोई भी क्राइम होता है तो उस पर्टिकुलर नोडल ऑफिसर।
0: बिल्कुल, एक जवाब मोहित यादव से भी।
3: बिल्कुल, देखिए जो एआई है ना, एआई के सेफ्टी स्टैंडर्ड्स फिक्स करने बहुत इम्पोर्टेंट है कि हर जो भी एआई मॉडल्स बन रहे हैं किस तरह के सेफ्टी स्टैंडर्ड्स होने चाहिए, कि क्या वो चीज कर सकता है, क्या वो चीज नहीं कर सकता। मतलब जैसे हम अभी चैट जीपीटी को देखते तो वहां पे गार्डरेल्स लगी है कि आप और मैं अगर नॉर्मल चैट जीपीटी में बात करते हैं, कम्युनिकेट करेंगे, तो वो कुछ स्पेसिफिक चीजों का इंफॉर्मेशन सही देता है, और अगर कुछ आप हटकर कुछ इलीगल पूछते हैं तो वो आपको नहीं देता। हर एआई मॉडल पर इस तरह के गाइडलाइंस लगाना,
0: गाइडलाइंस लगाना बहुत जरूरी। वक्त अभी इतना ही है मोहित, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम खास मेहमानों का हमारे साथ यहाँ पर जुड़ने के लिए। नियम बहुत जरूरी है एआई के लिए, और नियम ही नहीं बल्कि सख्त नियमों की जरूरत है। फिलहाल रुकेंगे एक ब्रेक के लिए, आप रहिए हमारे साथ।

0: में सही निर्णय ले पाता है? कब व्यक्ति के द्वारा लिए गए निर्णय गलत होते हैं? किन ग्रहों का प्रभाव आपके निर्णय पर पड़ता है और सही निर्णय लेने के उपाय क्या हैं? जानिए मेरे साथ सिर्फ किस्मत कनेक्शन में।
1: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते। खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे। देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
2: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को।
1: बात मौसम की, देश के कई हिस्सों में बारिश का दौर जारी है, इससे कई जगहों पर बाढ़ जैसे हालात बने हैं और इन सब के बीच राहत और बचाव कार्य पूरी तरह से चल रहे हैं। रेस्क्यू ऑपरेशन समंदर में भी चलाया गया, जो हिमाचल प्रदेश में बारिश को लेकर मौसम विभाग का अलर्ट भी है।
3: बारिश की वजह से देश के कई हिस्सों में बाढ़ जैसे हालात बने हुए हैं। इन सब के बीच जगह जगह लोग बेबस नजर आते हैं।
4: छोटा बच्चा आया है।
3: इनके लिए रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया जा रहा है। राहत और बचाव की टीमें जरूरतमंदों तक खाने पीने का सामान पहुंचाने के साथ ही लोगों को सुरक्षित स्थान तक पहुंचाने का भी काम कर रही है। बारिश और बाढ़ को लेकर जारी रेस्क्यू ऑपरेशन के अलावा समंदर में मुश्किल हालात के बीच फंसे लोगों की जान भी बचाई जा रही है। गुजरात के नवसारी की ये तस्वीरें देखिए। यहाँ समंदर में फंसे मछुआरों को एयरलिफ्ट कर सुरक्षित बचाया गया। समंदर में एक नाव के डूबने की स्थिति में होने की जानकारी मिलने पर कोस्ट गार्ड ने तत्काल हेलीकॉप्टर के जरिए रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया और नाव में सवार सभी 9 मछुआरों को एक एक कर सुरक्षित बचा लिया।
5: के जलालपुर तहसील के कृष्णपुर गांव से एक फिशिंग बोट वलसाड़ की ओर जाने को रवाना हुई थी, जिसमें 9 लोग सवार थे। जयेश भाई कंडेल की ये जो बोट थी वो धोलाई मरीन बंदर से 2.5 नोटिकल माइल के दूरी पर सिंक होना स्टार्ट हुई थी। 9 लोगों का रेस्क्यू कॉल हमें कंट्रोल रूम में मिला था, उसमें ये सब 9 लोगों को रेस्क्यू करने के लिए पहले NDRF की टीम से आयोजन किया था। फिर पता चला कि भाई ये अपने कोस्ट गार्ड के चॉपर के मदद से ही रेस्क्यू करना पड़ेगा। तो कोस्ट गार्ड के जो कमांडेंट साहब

0: वहीं ओडिशा में बाढ़ के पानी में बहे एक व्यक्ति का भी रेस्क्यू किया गया। ओडिशा के बाढ़ प्रभावित भद्रक जिले की ये तस्वीर देखिए। बालीपाटना इलाके के तारनगर गांव के रहने वाले सुनंदा बेहरा ताड़ के पेड़ को पकड़कर भूखे प्यासे 5 दिन तक इसी तरह अपनी जान बचाते रहे। ODRAF की टीम को सुनंदा बाजापति पाड़िया इलाके में मिली। वहां से रेस्क्यू कर उन्हें पालीपाटना मेडिकल सेंटर ले जाया गया, जहां उनका इलाज चल रहा है। मैदान से लेकर पहाड़ तक में हो रही बारिश मुश्किल का सबब बन रही है। उत्तराखंड में ऋषिकेश से लेकर देहरादून तक में SDRF और पुलिस की टीम रेस्क्यू ऑपरेशन में पसीना बहाती नजर आ रही है। ऋषिकेश में पानी के तेज बहाव में फंसी एक गाड़ी के ऊपर जवान रस्सी के सहारे पहुंचे और फिर गाड़ी के अंदर से एक एक कर दोनों लोगों को सुरक्षित बाहर निकाला। वहीं देहरादून के विकास नगर में स्वर्णा नदी में फंसे 6 छात्रों को भी SDRF के जवानों ने काफी मशक्कत के बाद सुरक्षित रेस्क्यू किया। उत्तराखंड में भारी बारिश की वजह से नदी नाले उफान पर हैं, जिसको देखते हुए प्रशासन अलर्ट मोड में है और लोगों से सतर्कता बरतने की अपील की जा रही है। हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला समेत जगह जगह बारिश का दौर देखने को मिल रहा है। इन सब के बीच मुश्किल हालात में फंसे लोगों का रेस्क्यू भी किया जा रहा है। हिमाचल प्रदेश में मानसून सक्रिय है और इसके चलते 22 अगस्त तक बारिश का दौर जारी रहने का अनुमान है, जिसको लेकर मौसम विभाग ने अलर्ट भी जारी किया है।
1: 19 अगस्त को हमीरपुर, चंबा, कांगड़ा, मंडी, शिमला, सिरमौर, यहाँ पे एक दो स्थानों में हैवी रेनफॉल का येलो अलर्ट जारी किया गया। उसके उपरांत 20 और 21 अगस्त को चंबा, कांगड़ा, कुल्लू, मंडी, यहाँ के लिए येलो कैटेगरी में हैवी रेनफॉल का येलो अलर्ट जारी किया गया। फिर उसके उपरांत देखिए 22 अगस्त को जो वेदर एक्टिविटी है उसकी इंटेंसिटी में काफ़ी कमी आएगी। हालांकि 22 अगस्त को जो हमारी जो वेदर एक्टिविटी है वो जो हमारे क्षेत्र में मध्यवर डिस्ट्रिक्ट हैं, जो क्षेत्र ऊना, बिलासपुर, हमीरपुर, वहाँ पर कुछ क्षेत्रों में हल्के से मध्यम बारिश का दौर जारी रहेगा। जो मेजर रिडक्शन है वेदर का वो 22 अगस्त के उपरांत देखने को मिलेगा प्रदेश में, और उसके बाद 23 और 24 अगस्त को काफ़ी कम रहेगी, मतलब वेदर एक्टिविटी मतलब कुछ क्षेत्रों तक ही सीमित रहेगी। और
0: हिमाचल प्रदेश में 22 अगस्त के बाद भले ही बारिश में कमी आने का अनुमान है, लेकिन फ्लैश फ्लड के खतरे को देखते हुए मौसम विभाग ने नदी नालों से दूर रहने की सलाह दी है। नवसारी से रौनक जानी और शिमला से विकास शर्मा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
2: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें। गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
3: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर, सच्ची खबर।
4: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।
5: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे। देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
2: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को।
6: Yeah.

0: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें।
1: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
2: और दुर्भाग्य कहता है
3: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
4: अविश्वास में विश्वास बसता है,
1: जो हम में अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
5: गुड न्यूज टुडे।
1: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है।

0: तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे। देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे में। मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे। देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे में।
1: कब कोई व्यक्ति जीवन में सही निर्णय ले पाता है, कब व्यक्ति के द्वारा लिए गए निर्णय गलत होते हैं, किन ग्रहों का प्रभाव आपके निर्णय पर पड़ता है और सही निर्णय लेने के उपाय क्या हैं, जानिए मेरे साथ सिर्फ किस्मत कनेक्शन में।
2: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
3: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
2: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए।
0: स्वागत है आपका चाय पर चर्चा में, आपके साथ मैं हूं नवजोत रंधावा। तो आज जो सबसे बड़ी और गुड न्यूज हम कहें कि सबसे अच्छी खबर आपको बताएंगे वो होगी क्रिकेट के मैदान से, जहां से गुड न्यूज ये आई है कि भारत ने गोल में खेले गए पहले टेस्ट मैच में श्रीलंका को 165 रनों से हरा दिया है। और भारत की इस जीत के बाद विश्व टेस्ट चैंपियनशिप की अंक तालिका में क्या बदलाव हुआ है और मैच कैसे, कई और पहलुओं पर आगे हम बात करेंगे।
4: नमस्कार, मैं हूं श्वेता झा। देखिए एक ऐसे यंग राइडर ग्रुप से भी आज हम आपको मिलवाने जा रहे हैं जहां है संस्कृत का कल्चर। जी हां, जहां राइडर्स आपस में संस्कृत में गपशप करते सफर करते हैं। कैसे इस ग्रुप के हर सदस्य को संस्कृत यहां सिखाई जा रही है, इसकी पूरी तस्वीर और कहानी आपको बताएंगे।
0: नमस्कार, मैं गुप्ता, स्वागत है आप सभी का चाय पर चर्चा में। यंग जनरेशन की बात पढ़ाते हुए धनबाद की दो बहनों से भी आपकी मुलाकात करवाएंगे, जिन्होंने एक ग्रुप के साथ मिलकर गीता के 15वें अध्याय का पाठ करके वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया। साथ ही एक ऐसी साइकिल राइडर से आपकी मुलाकात होगी जो बिना फ्रंट व्हील साइकिल से निकले हैं केरल से नेपाल के सफर के ऊपर।
5: नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सरगम पंच श्रीवास्तव। तो देखिए चाय पे चर्चा में आज आपको दिखाएंगे हॉलीवुड में एक नए फॉर्मेट की तस्वीर, जिसे कहते हैं माइक्रो ड्रामा। तो क्या है ये कहानियां और क्या है नया फॉर्मेट, कैसे इसे बनाया जाता है, इसके बारे में भी डिटेल से चर्चा होगी।
6: नमस्कार, आपके साथ मैं हूं दीपिका शर्मा। देखिए आज है वर्ल्ड फोटोग्राफी डे, ऐसे में आपको लेकर चलेंगे हरियाणा के गुरुग्राम, जहां एक ऐसा अनोखा कैमरा म्यूजियम आपका इंतजार कर रहा है, जहां 1827 से लेकर आज तक के कैमरों का इतिहास सहेज कर रखा गया है। इसके अलावा और भी गुड न्यूज है, तमाम गुड न्यूज आपको दिखाएंगे, लेकिन अभी देख लेते हैं देश भर की बड़ी खबरें।
7: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट, कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच। HRIT यूनिवर्सिटी गाजियाबाद, शेपिंग फ्यूचर, क्रिएटिंग लीडर्स।
4: मौसम की चुनौतियों के बीच हेमकुंड साहिब यात्रा में रौनक, कब तक 2.5 लाख से ज्यादा श्रद्धालुओं ने टेका मथा, 10 अक्टूबर तक जारी रहेगी पवित्र यात्रा। सावन के पवित्र महीने में दिख रहे शिव भक्ति के अनोखे रंग, मुंगेर में भव्य कांवड़ यात्रा बनी आकर्षण का केंद्र, श्रद्धालु बैद्यनाथ धाम में करेंगे जलाभिषेक। यूपी के प्रयागराज में बड़ा गंगा यमुना का जलस्तर, बड़े हनुमान मंदिर के गेट तक आया पानी, अलर्ट मोड में आया प्रशासन। डिजिटल अपराध के खिलाफ बड़ा एक्शन, देश में करीब 3 लाख अवैध और धोखाधड़ी से जुड़े एप्स, कंटेंट, वेबसाइट ब्लॉक, आईटी एक्ट की धारा 79 के तहत कार्रवाई। गोल टेस्ट में भारत ने श्रीलंका को 165 रनों से हराया, मानव सुथार ने लिए 10 विकेट, देवदत्त पड्डिकल प्लेयर ऑफ द मैच बने। चीन में ह्यूमनॉइड रोबोट्स की नुमाइश, बीजिंग में वर्ल्ड रोबोट कॉन्फ्रेंस का आगाज, मार्शल आर्ट्स का गुण सिखाते नजर आए रोबोट।
2: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिलती है।
4: चलिए चाय पर चर्चा की शुरुआत धमाकेदार खबर से करते हैं, क्रिकेट के मैदान से आई है, है ना। जिसने जिसने भी क्रिकेट देखा है अपने अपने इनपुट्स दे दें उसके बारे में।
5: मैं तो खुशी को बहुत मिस कर रही हूँ। मुझे ऐसा लग रहा था वो बोलती आज 600वां मैच था, मतलब लेकिन भारत ने जिस तरीके से श्रीलंका के छक्के छुड़ा दिए ना, देखने वाली बात थी।
6: यंगस्टर्स काफी अच्छा खेल रहे हैं, लेकिन मैंने विराट और रोहित को काफी मिस किया।
4: आई नो,
6: वो मजा अलग ही आता है जब वो होते हैं ना टेस्ट क्रिकेट में, पर अफील तो नहीं देख पाएंगे। पर फिर भी एंजॉय किया।
4: बिल्कुल, 600वां हमारा था टेस्ट, वो भी एक बड़ी बात है। और साथ ही साथ देखिए जो गोल टेस्ट में जो ये मैच हुआ है, 165 रन से हराया है श्रीलंका को भारत ने, और साथ ही साथ कई इसमें कीर्तिमान भी बने हैं। शुभमन गिल की टीम ने इसे जीत के साथ यादगार बना दिया। भारत ने श्रीलंका के सामने जो स्कोर रखा था, जो लक्ष्य रखा था, वो 372 का रखा था, लेकिन श्रीलंका की जो दूसरी पारी थी वो 206 रन पर ही सिमट गई। भारत की ओर से मानव सुथार ने शानदार गेंदबाजी करते हुए 6 विकेट झटके, और इस जीत के साथ भारत ने 2 मैचों की टेस्ट सीरीज में 1-0 की बढ़त बना ली। अब सीरीज का दूसरा और आखिरी टेस्ट 23 अगस्त से कोलंबो में खेला जाएगा।
0: बिल्कुल, देखिए भारत की इस जीत के बाद विश्व टेस्ट चैंपियनशिप की अंक तालिका में थोड़ा सा फेरबदल हुआ है। फेरबदल क्या है वो जान लीजिए। श्रीलंका के खिलाफ जीत हासिल करने के बावजूद भारत विश्व टेस्ट चैंपियनशिप की अंक तालिका में 5वें स्थान पर बना हुआ है। श्रीलंका के स्थान में कोई बदलाव नहीं है। ऑस्ट्रेलिया पहले स्थान पर कायम है, जबकि साउथ अफ्रीका दूसरे, न्यूजीलैंड तीसरे और बांग्लादेश चौथे नंबर पर बना हुआ है।
8: तो श्रीलंका दौरे पर पहुंची भारतीय टीम ने जो 2 मैचों की सीरीज है उसमें पहला मुकाबला अपने नाम कर लिया, और इस सीरीज की, इस पहले मैच की अगर हम बात करें तो यहां पर दोनों ही डिपार्टमेंट में भारतीय टीम ने बेहतरीन खेल का प्रदर्शन किया। जहां पहले बैटिंग करते हुए देव पाडिकल ने एक बड़ा स्कोर भारतीय टीम के लगाया, जिसकी बदौलत आप कह सकते हैं कि भारतीय टीम इस मैच में 462 के बड़े स्कोर तक पहुंची। वहीं अगर हम गेंदबाजी की भी बात करें तो यहां पर दोनों ही इनिंग्स में स्पिनर्स ने कमाल कर दिया, और खासतौर पर जिस तरीके की गेंदबाजी मानव सुथार ने की वो कमाल की गेंदबाजी रही। क्योंकि देखिए जब जब भारतीय गेंदबाजों से उम्मीद थी कि वो विकेट निकाल कर देंगे, तब तब चाहे वो पेसर्स रहे हों चाहे फिर वो स्पिनर्स रहे हों, उन्होंने वो ब्रेक थ्रू निकाल कर आपको दिए। स्पेशली मानव सुथार ने जो 4 विकेट पहले इनिंग में लिए और 6 विकेट दूसरे इनिंग में, जिसकी बदौलत भारतीय टीम इस मैच को जीतने में कामयाब रही, वो एकदम इस प्रकार की थी जिसकी आपको ज़रूरत थी। इस टेस्ट मैच में एक वक्त पर हो सकता है कि आप कह सकते हैं कि दूसरे इनिंग में भारतीय टीम ने बेहतरीन उस प्रकार से नहीं की, उस लिहाज से नहीं की, लेकिन ओवरऑल अगर आप देखेंगे तो भारतीय टीम इस मैच को जीतने में कामयाब रही। नतीजा यह है कि इस वक्त आप श्रीलंका में 2 मैचों की सीरीज में 1-0 से लीड कर रहे हैं, और अब जब दूसरा मुकाबला खेला जाएगा तो उम्मीद यही की जानी चाहिए कि जिस तरीके का प्रदर्शन अभी भारत के बल्लेबाजों ने किया या फिर हमारे जो गेंदबाजों ने किया वो दूसरे टेस्ट मैच में भी जारी रहे, क्योंकि जो अल्टीमेट टारगेट है वो है WTC का फाइनल खेलना। तो इस लिहाज से भी जो दूसरा मैच है, चूंकि अब आप 1-0 अप हो, दूसरा मैच काफी इंपॉर्टेंट और क्रूशियल होगा, और ध्यान में यह भी रखना है कि जो इस वक्त विनिंग कॉम्बिनेशन है क्या उसमें कोई बदलाव हो सकता है। बहुत सारे लोग इस बात की भी चर्चा कर रहे हैं कि एक ऑफ स्पिनर की कमी यहां पर नजर आई, और क्या हो सकता है ऐसा कि बाहर जो सारांश जैन बैठे हैं उनको यहाँ पर मौका मिले, क्या कुलदीप यादव जिस सोच के साथ हम इस मैच में गए थे उस तरीके के इम्पैक्टफुल वो साबित नहीं हुए, तो क्या ऐसा हो सकता है कि कुलदीप यादव की जगह सारांश जैन को मौका मिले, या फिर जो टीम मैनेजमेंट है या फिर जो कप्तान है वो इसी विनिंग 11 के साथ दूसरे मैच में भी जाएंगे।
0: चलिए आगे बढ़ते हैं। संस्कृत जैसी प्राचीन भाषा को अमूमन काफी कठिन माना गया है, और इस भाषा को स्कूल में पढ़ाया जाता है, घर में पूजा पाठ में जुड़े मंत्र भी संस्कृत भाषा में ही बोले जाते हैं, यानी कि इसका दायरा है तो अच्छा खासा, लेकिन आधुनिक जीवन शैली में इसके इस्तेमाल का अभाव अक्सर रहा है। ऐसे में बेंगलुरु के एक यंगस्टर के दिमाग में आइडिया आया कि क्यों ना संस्कृत को क्लासरूम्स और धर्म ग्रंथों से बाहर लाकर उसे रोजमर्रा की जिंदगी का हिस्सा बना लिया जाए।
5: तो देखिए, बस इसी सोच पर काम करते हुए इस युवती ने बना दिया एक ऐसा संस्कृत राइडर क्लब, जिसमें सफर पर निकले युवा बाइक राइडर्स संस्कृत में ही आपसी बातचीत करते हुए अपने ट्रिप को एंजॉय करते हैं। तो चलिए अब आपको दिखाते हैं कैसा है ये अनोखा संस्कृत बाइक राइडर ग्रुप, और कैसे इस ग्रुप के हर सदस्य को संस्कृत यहाँ सिखाई जाती है।
9: एक्सिलरेटर अहम ददामि वा इति अहं पृष्टवती। संस्कृत जो हमारे देश की अपनी समृद्ध भाषाई विरासत है, हमारी मूल सभ्यता है और संस्कृति का आधार है। हमारे वेद, उपनिषद, रामायण और महाभारत जैसे महान ग्रंथ तक संस्कृत में ही रचे गए।
10: अग्नये जात वेदसे।
9: बावजूद इसके दुनिया की सबसे पुरानी भाषाओं में शामिल संस्कृत हम में से ज्यादातर लोगों के लिए अक्सर स्कूल की किताबों और पूजा पाठ तक ही सीमित रही है। लेकिन अब समय बदल रहा है, हमारा युवा भी खुद को संस्कृत की समृद्धशाली परंपरा से मिला रहा है। बेंगलुरु का एक संस्कृत राइडर्स क्लब, जहां इस प्राचीन भाषा को रोजमर्रा की बातचीत के जरिए हर दिल में जगह दिलाने की शुरुआत हुई है। इस राइडर क्लब का हर सदस्य संस्कृत में ही बात करता है। इस अनोखे मोटरसाइकिल ग्रुप को बने ज्यादा वक्त बीता नहीं है। साल 2024 में संस्कृत प्रेमी समष्टि गुब्बी ने इस राइडर ग्रुप को बनाया, जिन्होंने रोड ट्रिप को भाषा के साथ जोड़कर उसे बेहद इंटरेस्टिंग बना दिया है। इस ग्रुप से जुड़ा हर युवा पूरी तरह से संस्कृत के रंग में रंगा हुआ है। वो बात करता है, खेलता है और रोजमर्रा की बाइकर शब्दावली का इस्तेमाल भी करता है। इस राइडर क्लब में बोले जाने वाली संस्कृत को सिर्फ किताबों या क्लासरूम तक सीमित रखने की बजाय इसे रोजमर्रा की बातचीत की भाषा के तौर पर बढ़ावा दिया गया है। इस ग्रुप में शामिल लोगों में सभी स्तर के लोगों का स्वागत है, यानी यहाँ अच्छी तरह संस्कृत बोलने वाले और जो शुरू से भाषा सीखना चाहते हैं, दोनों ही तरह के लोग शामिल हैं। ये अनोखा बाइकर ग्रुप कर्नाटक और दक्षिण भारत में नियमित तौर पर वीकेंड ट्रिप और लंबी दूरी की यात्राएं करवाता है। इसके अलावा वीकेंड मीटअप, ऑनलाइन वर्कशॉप और लोकल इवेंट्स के लिए अक्सर कई सांस्कृतिक मंचों के साथ मिलकर ये बाइकर ग्रुप काम करता है। दरअसल इस संस्कृत राइडर्स क्लब की ये पहल उस दौर में चर्चा बनी है जब संस्कृत नाम की भाषा से हम वाकिफ तो हैं, लेकिन ये रोजमर्रा के रूटीन का हिस्सा नहीं रही है। यही वजह है कि समाज में संस्कृत के प्रति उदासीनता बेहद सामान्य सी बात है। वहीं ये भी 100% सच बात है कि नई नई भाषा समझना, उसे सीखना हमेशा से रोमांच भरता आया है। आजकल कई लोग तो कुछ फिल्में और शोज देखने के बाद ही स्पेनिश, कोरियाई, जापानीज और दूसरी विदेशी भाषाएं सीख भी रहे हैं। ऐसे में सभी भारतीय भाषाओं की जननी कहे जाने वाली संस्कृत को लेकर अगर अपने ही देश का यंगिस्तान रोजमर्रा की जिंदगी के पन्नों से लगभग गायब हो चुकी संस्कृत भाषा को प्रमोट कर रहा है, उसे आगे बढ़ा रहा है, तो इससे सुखद तस्वीर फिलहाल तो कुछ हो नहीं सकती। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
6: देखिए, युवा पीढ़ी की बात हो रही है जो मॉडर्न है, समझदार है, अपने संस्कारों से भी जुड़ी है, साथ ही कुछ नया करने का जज्बा भी रखती है। और जब ये जुनून हमारी संस्कृति से जुड़ जाए तो बात खास हो जाती है। आज हम बात करेंगे धनबाद की उन दो बहनों की जिन्होंने श्रीमद् भगवद गीता के जरिए एक ऐसा रिकॉर्ड बनाया है जिस पर हर भारतीय को गर्व होगा।
4: बिल्कुल, आपको बता दें कि इन दोनों बहनों ने हजारों लोगों के साथ मिलकर गीता के 15वें अध्याय का सामूहिक पाठ किया है और इसी के साथ गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में अपना नाम भी दर्ज कराया है। अब आप सोच रहे होंगे कि गीता के 15वें अध्याय में आखिर ऐसा क्या खास है। दरअसल इसे पुरुषोत्तम योग कहा जाता है। इस अध्याय में भगवान श्री कृष्ण संसार के स्वरूप को समझाते हैं।

0: कहते हैं संस्कारों की शुरुआत घर से होती है। धनबाद के इस परिवार में भी गीता का पाठ घर से शुरू हुआ। दो बहनों ने इसे सीखा, समझा और लगातार अभ्यास किया। यहाँ गीता सिर्फ पढ़ी नहीं जाती बल्कि परिवार की दिनचर्या का अहम हिस्सा है। इसी साधना ने अब इन दो बहनों को एक खास मुकाम तक पहुँचा दिया है।
1: अश्वत्थमेदं सुविरूढमूलम्।

0: गीता पाठ को साधना कहते हैं। झारखंड के धनबाद की दो बहनों के लिए यही साधना विश्व रिकॉर्ड तक पहुंचने का जरिया बन गई। आन्या और प्रांजल मित्तल ने श्रीमद् भगवत गीता के 15वें अध्याय के उस ऐतिहासिक सामूहिक पाठ में भाग लिया जिसमें दुनिया भर से हजारों लोग ऑनलाइन एक साथ जुड़े थे।
1: मैंने गीता का 15वां अध्याय का पाठ किया था करीब 5 मिनट तक, जो चिन्मय मिशन द्वारा ऑर्गेनाइज किया गया था। उसी में 20,000 कुछ लोगों ने जूम में ऑनलाइन पाठ किया था। उसमें से भी 8,000 लोगों ने उसमें उनका नाम गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज हुआ जिनका सटीक और सही उच्चारण था।
0: इसी सामूहिक पाठ ने गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बना दिया। अब इस रिकॉर्ड में धनबाद की इन दोनों बहनों की कहानी भी जुड़ गई है जिसके लिए उन्हें प्रमाण पत्र के साथ गोल्ड मेडल से सम्मानित किया गया।
1: मैंने गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में अपना नाम दर्ज कराने के लिए 15वां अध्याय पढ़ा करीब 5 मिनट तक। उसमें करीब 7,000 लोगों ने, 70,000 लोगों ने रजिस्ट्रेशन कराया था जिसमें से 30,000 लोगों ने गीता का एक साथ पाठ किया था और 30,000 लोगों में से 8,277 लोगों ने सबसे अच्छा उच्चारण करके पाठ किया जिनका नाम गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में आया है।
0: चिन्मय गीता समर्पण नाम के इस खास कार्यक्रम का आयोजन चिन्मय मिशन की ओर से किया गया। दुनिया के अलग अलग हिस्सों से हजारों लोग इस आयोजन से ऑनलाइन जुड़े। सभी ने एक साथ श्रीमद् भगवत गीता के 15वें अध्याय का पाठ किया। इसके बाद आयोजन में शामिल प्रतिभागियों की संख्या और पूरी प्रक्रिया की जांच पड़ताल गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड के नियमों के तहत हुई। फिर ये सामूहिक पाठ विश्व रिकॉर्ड में दर्ज हो गया।
1: मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि मैंने ये इस उपलब्धि को हासिल किया। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। मैंने जो भी सीखा सब कुछ मेरी माँ और मेरी गीता और गीता परिवार के द्वारा ही सीखा। गीता परिवार से ही मैंने जो भी 18 अध्याय मैंने पढ़ना सीखा वो सब कुछ गीता परिवार के से ही सीखा। उनके ऑनलाइन क्लासेस से मैं गीता पढ़ी, मैंने उसे समझा, मैंने उसे याद किया।
0: गीता का ज्ञान सिर्फ पढ़ने और सुनने तक सीमित नहीं, ये जीवन को समझने की सीख देता है। घर से शुरू हुआ गीता का पाठ पहले संस्कार फिर साधना का रूप लिया।
2: बच्चों का संस्कार मेरे हिसाब से गर्भ से शुरू होता है, तो मैंने शुरू से गर्भ से ये प्रयास किया कि भगवान का नाम जप किया जाए, भजन कीर्तन किया जाए, तो संस्कारी बच्चे ही उत्पन्न हुए थे। तो जब घर का माहौल भी वैसा था तो धीरे धीरे उनको धीरे धीरे गीता जी आत्मसात होते गई और गीता जी उनको याद होती गई।
0: इसी गीता के संदेश को आम लोगों तक पहुंचाने के लिए हाल ही में गीता प्रेस गोरखपुर ने अनूठी पहल की है। गीता का एक संस्करण तैयार हुआ है, इसमें संस्कृत के मूल श्लोक तो है ही, साथ ही श्लोकों को रोमन लिपि में भी लिखा गया है। मतलब संस्कृत या हिंदी न जानने वाले लोग भी उनका सही और शुद्ध उच्चारण कर सकते हैं। गीता का ज्ञान सिर्फ शब्दों में नहीं बल्कि जीवन को सही दिशा देने वाली उस सीख में है जो पीढ़ियों से इंसान को कर्म, कर्तव्य और संस्कार का रास्ता दिखाती आई है। धनबाद से सिथुन मोदक के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
3: चलिए अब जरा सोचिए कि अगर आपकी साइकिल का पहिया हो ही ना तो आप उस पर सवारी करने की हिम्मत करेंगे? मैं तो नहीं करूंगी, शायद आप भी यही जवाब देंगे। लेकिन देखिए, केरल के सनीद ने इसी नामुमकिन को मुमकिन करने की ठान ली है। सनीद बिना फ्रंट व्हील वाली साइकिल पर केरल से नेपाल के एवरेस्ट बेस कैंप तक का सफर कर रहे हैं। उनका मकसद सिर्फ रिकॉर्ड बनाना नहीं है बल्कि युवाओं को से नो टू ड्रग्स का संदेश देना है।
4: बिल्कुल, इतनी खास साइकिल के बारे में शायद ही आपने कभी सुना होगा। देखिए, करीब 11,000 किलोमीटर के सफर में सनीद रोजाना औसतन 50 से 60 किलोमीटर साइकिल चला रहे हैं और अब तक हजारों किलोमीटर का सफर पूरा कर चुके हैं। सनीद के लिए ये सिर्फ साइकिल की सवारी नहीं है बल्कि एक मिशन है। सनीद प्रोफेशनल बाइक स्टंट भी करते हैं। उनके पास करीब 12 साल का स्टंटिंग का अनुभव है और वो जवानों को परेड स्टंट्स की ट्रेनिंग भी देते हैं। केरल से कश्मीर तक का सफर वो बिना फ्रंट व्हील के पूरा कर चुके हैं और अब मंजिल है नेपाल का एवरेस्ट बेस कैंप।
5: इन चॉकलेट्स में स्वाद के साथ छिपा है सेहत का खजाना। दिल्ली में अशोक नगर सर्वोदय कन्या विद्यालय की इन छात्राओं ने डार्क चॉकलेट को सीजनल फ्रूट और ड्राई फ्रूट्स के साथ मिलाकर चॉकलेट का एक सेहतमंद विकल्प तैयार कर लिया है।
6: ये चॉकलेट जो है वो फ्रूट चॉकलेट है पेरेंट्स को किसी तरीके का डर नहीं होना चाहिए जब उनके छोटे बच्चे जो है वो चॉकलेट्स उनसे मांगे और वो देने से डरे, लेकिन ये चॉकलेट एक ऐसी है जो आप इनको इजीली जो है वो दे सकते हैं, खिला सकते हैं, इवन पेरेंट्स भी जो है एंजॉय कर सकते हैं। और ये जो चॉकलेट्स है बनाया है अगेन सर्वोदय कन्या विद्यालय जो कि ईस्ट ऑफ लोनी में है, इन्हीं की छात्राओं ने और ये चार छात्राओं ने मिलकर ऐसी एक चॉकलेट्स बनाई।
7: मेन प्रोडक्ट जो था वो था फ्रूट स्क्यूअर्स, उसमें हमने फ्रूट्स को चॉकलेट के साथ कोट करा और वो थी डार्क चॉकलेट, तो वो हमें हेल्दी है वो और टेस्ट भी अच्छा। उसमें हमने ड्राई फ्रूट्स नट्स ऐड करे और अब जो हमने थोड़ा उसको इनोवेटिव किया है।
5: ये फ्रूट चॉकलेट खाने में जितनी टेस्टी है उतनी ही हेल्दी भी। इन छात्राओं ने बकायदा रिसर्च के बाद ही इस प्रोडक्ट को लॉन्च किया है। खास बात यह है कि इन्होंने अपने इस प्रोडक्ट को सिर्फ स्कूल प्रोजेक्ट तक सीमित नहीं रखा बल्कि इसे एक स्टार्टअप बिजनेस आइडिया के तौर पर भी विकसित करने की दिशा में काम कर रही हैं।
8: स्मॉल वाला बॉक्स अभी हम दे रहे हैं तो मैम इसका कॉस्ट 20 रुपीज हम रख रहे हैं, जिसके अंदर हमें प्रॉफिट 10 रुपीज का और है, ऑलमोस्ट 50% हम कह सकते हैं। मैम इसमें हम आगे और इनोवेशंस करने वाले हैं, हम आगे रॉ मटेरियल जो है स्टॉक में खरीदा करेंगे, हम जो सामान है उसको देखेंगे कि हम पहले से प्रिपेयर करके रख पाएं बॉक्सेस वगैरह, जिससे मैम जो हमारा कॉस्ट है वो और कम आएगा और प्रॉफिट ज्यादा हो जाएगा हमारा।
6: आप देख सकते हैं कि बच्चों ने किस तरीके से जो है पूरी रिसर्च करी और वो रिसर्च जो है मैं आपको दिखा रही हूँ कि कहते हैं ना स्कूल के बच्चों ने करा है तो उसी स्टाइल में आपको चीजें दिखेगा कि कवर भी बच्चों ने खुद हैंडमेड है, सारी चीजें जो है वो खुद बनाई है और उसके बाद इनका रिसर्च वर्क जो है वो शुरू होता है कि किस तरीके से इनका फाइनल प्रोडक्ट है वो इन्होंने पैकेजिंग के साथ जो है वो यहाँ दिखाने की कोशिश करी है।
5: दिल्ली के एक सरकारी स्कूल के इन छात्राओं ने चॉकलेट को सिर्फ स्वाद से जोड़कर नहीं देखा, इन्होंने चॉकलेट के स्वाद के साथ इनोवेशन, हेल्थ और स्टार्टअप आइडिया को भी जोड़ने की कोशिश की है। ये नई सोच ही अब इन चारों छात्राओं को एक नई पहचान भी दिला रही है। मनीषा लड्डा, गुड न्यूज टुडे।
9: चलिए एक और अच्छी खबर आपको बता दें, गुजरात का साबरमती रिवर फ्रंट तो आपने देखा और सुना होगा ही, अब इसी तर्ज पर यमुना के किनारे भी एक भव्य रिवर फ्रंट बनाने की तैयारी है। यानी कि यमुना का किनारा सिर्फ अब नदी और घाट तक सीमित नहीं रहेगा बल्कि यहां घूमने फिरने से लेकर मनोरंजन और पर्यटन तक की सुविधाएं विकसित करने का प्लान है।
3: यानी कि यमुना का किनारा अब एक नए रूप में नजर आ सकता है। साबरमती रिवर फ्रंट की तर्ज पर ही यहां भी सुबह की सैर हो सकती है, शाम में आप वक्त बिता सकते हैं, पर्यटन हो या फिर मनोरंजन, लोगों को एक नया अनुभव भी देने की तैयारी है। तो क्या है इस प्रोजेक्ट का पूरा प्लान आपको बताते हैं।
10: राजधानी दिल्ली की जीवनदायिनी कही जाने वाली यमुना किनारे विकास की नई तस्वीर तैयार करने की मुहिम शुरू हो गई है। गुजरात के साबरमती रिवर फ्रंट की तर्ज पर यमुना रिवर फ्रंट विकसित होगा। इस सिलसिले में दिल्ली के जल मंत्री प्रवेश वर्मा ने अधिकारियों के साथ गुजरात का दौरा कर साबरमती मॉडल का बारीकी से अध्ययन किया।
11: सामने दिल्ली में सबसे बड़ा चैलेंज है यमुना रिवर फ्रंट बनाना, यमुना मैया को साफ करना। हमने साबरमती रिवर फ्रंट से बहुत सारी योजनाओं को सीखा है और हमने उनका प्रेजेंटेशन भी लिया है, उनके अधिकारियों को एक बार दिल्ली में भी बुलाकर पूरा समझेंगे।
10: यमुना रिवर फ्रंट को आधुनिक, आकर्षक और पर्यावरण के अनुकूल बनाया जाएगा और साबरमती मॉडल को दिल्ली की जरूरतों के मुताबिक लागू किया जाएगा। योजना के तहत यमुना किनारे खूबसूरत वॉकवे, साइकिल ट्रैक के साथ ही खेल और मनोरंजन से जुड़ी सुविधाएं विकसित की जाएंगी। कालिंदी कुंज के पास करीब 60 करोड़ रुपए की लागत से आधुनिक छठ घाट का निर्माण किया जाएगा। पारंपरिक धोबी घाटों को व्यवस्थित कर वहां आधुनिक मैकेनाइज्ड लॉन्ड्री मशीनें लगाई जा सकती है। इसके साथ ही यमुना किनारे पर्यटन को बढ़ावा देने पर भी जोर रहेगा। हालांकि यमुना रिवर फ्रंट की सबसे बड़ी चुनौती नदी की सफाई और पर्यावरण संरक्षण रहेगा, जिसके लिए लगातार काम किए जा रहे हैं और आगे भी सीवेज प्रबंधन, जल प्रदूषण और नियंत्रण और यमुना के इकोसिस्टम को सुरक्षित रखने पर खास ध्यान दिया जाएगा। यमुना रिवर फ्रंट की इस योजना के मुकम्मल होने के बाद दिल्ली की एक अलग तस्वीर नजर आएगी जो सेहतमंद होने के साथ आकर्षक भी होगी। नर्मदा से नरेंद्र पेपरवाला के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
4: तो चलिए इसी के साथ आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं बीजापुर की। बीजापुर, कभी इस नाम के साथ बंदूक, नक्सलवाद, दहशत की तस्वीर जुड़ी होती थी, लेकिन अब इसी बीजापुर की एक नई तस्वीर सामने आ रही है। जहां जाने से लोग डरते थे, वहां अब सैलानियों की आवाजाही बढ़ गई है। घने जंगल, पहाड़ों से गिरते झरने और बस्तर का देसी स्वाद पर्यटकों को अपनी ओर खींच रहा है। यानी बीजापुर में अब डर की नहीं बल्कि बदलाव की कहानी लिखी जा रही है।
12: बिल्कुल, देखिए, और इसी बदलाव का असर भी साफ दिखाई दे रहा है। पिछले 2 महीनों में 2000 से ज्यादा पर्यटक बीजापुर पहुंच चुके हैं। कोई यहाँ के झरनों की खूबसूरती देखने आ रहा है, तो कोई जंगल और बस्तर की संस्कृति को करीब से महसूस करने के लिए पहुंच रहा है।
13: समय बीता, परिस्थितियां बदली और फिर एक दौर ऐसा आया जिसने तस्वीर ही बदल दी। जब बात छत्तीसगढ़ की होती थी तो जेहन में नक्सलवाद, बंदूक और दहशत की तस्वीरें उभरती थी, लेकिन अब वक्त बदल रहा है, हालात बदल रहे हैं और इसी बदलाव की गवाही दे रहा है बीजापुर। जहां कभी जाने से लोग डरते थे, आज वहीं दूर दूर से सैलानी पहुँच रहे हैं। घने जंगल, ऊँची पहाड़ियाँ और पहाड़ों से गिरता झरना, कुदरत का ये नजारा पर्यटकों को अपनी ओर खींच रहा है। बीजापुर पहुंचने वाले पर्यटकों के लिए यहाँ सिर्फ खूबसूरत नज़ारे ही नहीं बल्कि स्थानीय स्वाद का मजा लेने का मौका भी है।
14: अभी यहाँ पे 27 लोग है समूह में, तो हम लोग आधे लोग को गाइड करने के लिए भेजते हैं, आधे लोग को किचन जिम्मेदार दिए हैं और आधे लोग टिकट काटने के लिए और 2-3 लोग को टिकट चेकिंग के लिए भी दिए हैं।
15: देख रहे कि आपका ये किचन भी छोटा किचन सेटअप, ये किसके लिए है?
14: तो एक किचन हम लोग इसलिए यहाँ पे बनाए कि जो भी टूरिस्ट आते हैं दूर दूर से, थोड़ा सा खाना उना उनके लिए व्यवस्था हो जाए, तो इस टाइप का बनाए हैं। तो एक प्लेट का 120 रुपये लेते हैं प्रति व्यक्ति का।
13: 120 रुपए की प्लेट में लोग लोकल फूड का स्वाद चख रहे हैं, यानी घूमना भी, खाना भी और बस्तर की संस्कृति को करीब से महसूस करना भी। पर्यटकों की मदद के लिए करीब 28 लोगों की गाइड टीम भी मौजूद है, जो उन्हें आसपास के इलाकों की सैर कराती है और रास्ते से लेकर घूमने तक हर कदम पर मदद करती है।
16: 2025 से थोड़ा सा डेवलपमेंट हो गया।
15: उससे पहले कैसा था यहाँ का मंजर, कैसा हुआ करता
16: था? उससे पहले सर यहाँ कोई, आप जैसे कि कोई भी आ जाते हैं नया, कोई दूसरे स्टेट से भी आते हैं या फिर छत्तीसगढ़ से भी, जो इंसान जो भी आएगा तो सर उनके लिए पूछताछ ये सारा चीज, मतलब उतना इधर बहुत डर था सर, डर का माहौल।
15: वाटरफॉल पर ले जाने से
16: सर वो लोग यही बोलते थे कि नहीं, ये लोगों को इधर घुसने मत दो।
15: ऐसा
16: जी,
15: तो वाटरफॉल तक जाने की पाबंदी रहती थी
16: सर, मतलब मना नहीं रहता, मना रहता था सर, नहीं ये लोग जो आते हैं तो।
13: और इसकी फीस भी ज्यादा नहीं, सिर्फ 25 रुपए प्रति व्यक्ति। पिछले सिर्फ 2 महीनों में 2000 से ज्यादा पर्यटक यहाँ पहुँच चुके हैं। यानी जिस बीजापुर की पहचान कभी दहशत से होती थी, आज वही पर्यटन और खूबसूरती की वजह से लोगों को अपनी ओर आकर्षित कर रहा है।
17: यहाँ पे लगभग आना ही एकदम मना था, मतलब बहुत गिने चुने लोग ही आते थे यहाँ पे। अभी वर्तमान में देख रहा हूँ तो रास्ता बन गया है अच्छा, मतलब पर्यटक लोग भी अच्छा यहाँ पे रिस्पांस दे रहे हैं, तो बढ़िया है। मेरे हिसाब से ये बस्तर का सबसे सुंदर और सबसे खूबसूरत वाटरफॉल है, नंबी वाटरफॉल।
13: बंदूक और दहशत की पहचान से निकलकर बीजापुर अब पर्यटन और बदलाव की नई कहानी लिख रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
18: तो देखिए, मुंबई में गणेश उत्सव की रौनक अभी से नजर आने लगी है, बप्पा के स्वागत की तैयारियां जोरों पर हैं। और इसी बीच एक बड़े गणेश मंडल में गणपति बप्पा की भव्य प्रतिमा धूमधाम से पंडाल तक लाई गई। बप्पा के दर्शन के लिए भक्तों का ऐसा उत्साह दिखा कि पूरा रास्ता ही भक्तिमय हो गया।
9: बिल्कुल, आपको बता दें कि भव्य प्रतिमा के साथ भक्त पूरे जोश और भक्ति में आगे बढ़ते नजर आए। ढोल नगाड़ों की गूंज और गणपति बप्पा के जयकारों से पूरा माहौल भक्तिमय हो गया। यानी कि गणेश उत्सव शुरू होने से पहले ही मुंबई में बप्पा की भक्ति की छटा बिखरने लगी है।

गणेशोत्सव शुरू होने में भले ही अभी कई दिनों का वक्त बचा हो, लेकिन इस बार भी उत्सव उतना ही भव्य होगा, उसका अंदाजा इन तस्वीरों को देखकर लगाया जा सकता है। महाराष्ट्र में विशेषकर गणेशोत्सव बहुत ही बड़े स्तर पर और भव्य रूप से मनाया जाता है और इसकी झलक मुंबई में दिखनी शुरू हो गई है। चौदह सितंबर से शुरू होने वाले गणेशोत्सव को लेकर कारखानों से गणपति प्रतिमाओं का पंडाल में पहुंचना शुरू हो गया है। काला चौकी इलाके में प्रसिद्ध और ऐतिहासिक सार्वजनिक गणेश मंडल की गणेश प्रतिमा के आगमन के अवसर पर भक्तों का जोश देखने वाला रहा। ढोल ताशों की गड़गड़ाहट के बीच जब इस विशाल और भव्य प्रतिमा को पंडाल में ले जाया जा रहा था, तो रास्ते में हजारों की संख्या में भक्त पूरे उत्साह के साथ चल रहे थे। रास्ते में श्रद्धालु डांस और लेजिम करते हुए भी दिखाई पड़ रहे थे। काला चौकी के इस महागणपति के आगमन में एक ऐसी दिव्य छटा बिखर रही थी जो गणेश उत्सव को लेकर भक्तों की खुशी को मया कर रही थी।

0: पंडाल में 22 फीट ऊंची इस भव्य प्रतिमा के विराजमान होने पर यहां भी भक्त दर्शन कर बप्पा की जयकारे करते दिखे।
1: पंडाल अपने बप्पा को अपनी जगह पर लेकर आना शुरू हो चुके हैं। फिलहाल इस समय मौजूद हूं साउथ मुंबई के काला चौकी के महागणपति के दरबार में और आप देखें बहुत ही सुंदर भव्य तरीके से बप्पा को यहां पर विराजमान कर दिया गया है। आपको बताएं कि महालक्ष्मी के अवतार में गणपति बप्पा को ले आया गया है। बप्पा की 22 फीट की ऊंचाई है, ट्रॉली से सिंह पर बकायदा बप्पा सवार हैं और खास बात यह है कि जो ट्रॉली रखी गई है जिस जगह पे उसके नीचे बहुत ही सुंदर तरीके से रंगोली भी निकाली गई है, बनाई गई है, ठीक उसके ऊपर बप्पा को विराजमान करा गया है। और कुछ घंटों पहले बहुत सारे तस्वीरें, बहुत सारे वीडियोस सोशल मीडिया पर बप्पा के आगमन को लेकर के वायरल हुए थे, जिसमें हजारों की तादाद में जो गणेश भक्त हैं वो जुटे हुए थे और हर कोई बप्पा का स्वागत कर रहा था।
0: अब यहाँ प्रतिमा की सजावट का काम होगा और 14 सितंबर से आस्था के उत्सव का एक शानदार नजारा यहाँ देखने को मिलेगा।
2: हर साल स्वरूप महागणपति का बदलता है, कभी महागणपति पांडुरंग विट्ठल के रूप में आते हैं, कभी सरस्वती के रूप में आते हैं, कभी भोले शंकर के रूप में आते हैं, तो कभी कान्हा नटखट बन के आते हैं। ये साल महालक्ष्मी का रूप, यानी महालक्ष्मी यानी क्या, स्थैर्य, शांति, संपत्ति, जो आजकल हर एक को आशीर्वाद के रूप में महागणपति देने आ रहे आ गए हैं, और इसी का जो हमारी झांकी बनेगी, डेकोरेशन बनेगा, वो भी उसी का एक कोल्हापुर के महालक्ष्मी के मंदिर का जो कंपोनेंट्स है, जो छवि है, वही आपको देखने को मिलेगी।
0: गणेशोत्सव से पहले खेतवाड़ी में उत्सव का पूरा वातावरण बनने लगा है। इस काला चौकी का महागणपति के आसपास भी भक्तों को लाल बाग का राजा जैसी कई प्रसिद्ध बड़े गणेश पंडाल में बापा के दर्शन का सौभाग्य मिलता है। मुंबई से धर्मेंद्र दुबे की रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
3: तमिलनाडु के तिरुचिरापल्ली में गणपति बप्पा के स्वागत की तैयारियां शुरू हो चुकी हैं। गणेशोत्सव के लिए कलाकार दिन रात बप्पा की प्रतिमाओं को आकार देने में जुटे हैं। कहीं मिट्टी को आकार दिया जा रहा है तो कहीं इन प्रतिमाओं में रंग भरकर इन्हें अंतिम रूप दिया जा रहा है। कलाकारों के हाथों की मेहनत से गणपति की अलग अलग रूपों वाली प्रतिमाएं तैयार हो रही हैं। और देखिए, खास बात यह है कि तिरुचिरापल्ली में तैयार होने वाली इन प्रतिमाओं की मांग सिर्फ देश में ही नहीं है बल्कि विदेशों तक है। यानी बप्पा के स्वागत की जो तैयारी है, यहाँ सिर्फ एक त्योहार नहीं है, एक फेस्टिवल नहीं है, बल्कि कलाकारों की कला, उनकी मेहनत और आस्था का भी उत्सव है। और चलिए फिलहाल रुकेंगे यहाँ पर छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद आपको दिखाएंगे और बताएंगे अमेरिका में बढ़ रहे माइक्रो ड्रामा के क्रेज के बारे में।
4: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए मोर इसके ऊपर।
3: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर। असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
5: और दुर्भाग्य कहता है
6: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
7: अविश्वास में विश्वास बसता है,
3: जो हम में अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज़ टुडे बनाता है।
8: गुड न्यूज़ टुडे।

0: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए।
1: अब ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है चाय पर चर्चा में। आगे बढ़े उससे पहले एक नजर हेडलाइंस पर।
2: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाए स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा, प्यार से परोसा।
1: मौसम की चुनौतियों के बीच हेमकुंड साहिब यात्रा में रौनक, अब तक 2.5 लाख से ज्यादा श्रद्धालुओं ने टेका मत्था, 10 अक्टूबर तक जारी रहेगी पवित्र यात्रा। सावन के पवित्र महीने में दिख रहे शिव भक्ति के अनोखे रंग, मुंगेर में भव्य कांवड़ यात्रा बनी आकर्षण का केंद्र, श्रद्धालु बैद्यनाथ धाम में करेंगे जलाभिषेक। महाराष्ट्र में गणेशोत्सव की तैयारियां तेज, अकोला में बप्पा की प्रतिमाओं को अंतिम रूप देने में जुटे कारीगर, 14 सितंबर से शुरू होगा उत्सव। डिजिटल अपराध के खिलाफ बड़ा एक्शन, देश में करीब 3 लाख अवैध और धोखाधड़ी से जुड़े एप्स, कंटेंट, वेबसाइट्स ब्लॉक, आईटी एक्ट की धारा 79 के तहत कार्रवाई। चीन में ह्यूमनॉइड रोबोट्स की नुमाइश, बीजिंग में वर्ल्ड रोबोट कॉन्फ्रेंस का आगाज, मार्शल आर्ट्स का गुण दिखाते नजर आए रोबोट। सोशल मीडिया का जमाना है तो इस दौर में कहानियां भी अब छोटी और तेज हो गई हैं। हॉलीवुड में एक नया फॉर्मेट तेजी के साथ पॉपुलर हो रहा है जिसे माइक्रो ड्रामा कहते हैं। अब खास बात इसमें यह है कि इन कहानियों को मोबाइल की वर्टिकल स्क्रीन के हिसाब से बनाया गया है। रोमांस, ड्रामा और हर कुछ मिनट में नया ट्विस्ट, इसकी खास बात है।
3: मुझे लगता है जो युवा पीढ़ी है ना, हाँ, उनको सोच करके खास करके ये बनाया गया है क्योंकि पेशेंस की उनमें भारी कमी है।
4: तो कम कहते नहीं है कि वो इंस्टा वाली चीजें आ जाती है, इंस्टा क्लिक पे आपको खाना मिल रहा है, इंस्टा क्लिक पे आपको जो चाहो मिल जाता है,
3: मतलब वो इंस्टेंट फूड हुआ करता था, अब इंस्टेंट स्टोरीज है और ड्रामा।
5: पेशेंस तो बिल्कुल नहीं है कि भाई कहानी में क्या होगा, 10 दिन बाद नहीं देख सकते,
6: रिटेंशन ही जीरो हो गया ना अब तो, स्वाइप करने की।
3: आई थिंक एकता कपूर को सोचना पड़ेगा। चलिए देखिए, दिलचस्प बात इसमें ये है कि इस नए फॉर्मेट ने हॉलीवुड में कलाकारों, लेखकों, डायरेक्टर और प्रोड्यूसर, प्रोडक्शन क्रू के लिए काम के नए मौके बनाए हैं। यानी कि मोबाइल की छोटी स्क्रीन पर चलने वाली ये छोटी कहानियां अब हॉलीवुड के बड़े कारोबार को चुनौती देने लगी है।
7: टीवी सीरियल का नाम लेते ही आपके दिमाग में क्या आता है? लंबे एपिसोड, ढेर सारे किरदार और कहानी का धीरे धीरे आगे बढ़ना। लेकिन अब मनोरंजन की दुनिया में एक ऐसा फॉर्मेट तेजी से जगह बना रहा है जिसमें कहानी छोटी है, एपिसोड्स छोटे हैं, स्क्रीन छोटी है, लेकिन दर्शक को बांधने का तरीका बेहद दमदार है। नाम है माइक्रो ड्रामा। माइक्रो ड्रामा को आप कुछ हद तक टीवी सीरियल और सोशल मीडिया रील के बीच की कहानी समझ सकते हैं। रील की तरह मोबाइल पर वर्टिकल वीडियो, लेकिन रील से लंबी और ज्यादा जुड़ी हुई कहानी और टीवी सीरियल की तरह किरदार, रिश्ते, प्यार, दुश्मनी और सस्पेंस। फर्क सिर्फ इतना है कि यहाँ कहानी को घंटों नहीं, मिनटों में आगे बढ़ाया जाता है। अमेरिका में माइक्रो ड्रामा की लोकप्रियता इतनी तेजी के साथ बढ़ी है कि पिछले साल हर महीने करीब 6.60 करोड़ लोग इसे देख रहे थे। 2024 में यही संख्या करीब 2.60 करोड़ थी, यानी सिर्फ एक साल के अंदर दर्शकों की संख्या 2 गुने से भी ज्यादा हो गई।
8: They're designed for viewers to watch when they may not have access to a TV, maybe when they're on the subway, when they're waiting for a friend to meet them at a restaurant or a bar, or also if they're just sitting at home and their kids are on top of them and they just have access to their phone.
7: अब बात माइक्रो ड्रामा के कारोबार की। रिसर्च फर्म ओमडिया के अनुसार इस साल अमेरिका में माइक्रो ड्रामा का कारोबार करीब $1.5 अरब यानी लगभग 12,000 करोड़ रुपए तक पहुंच सकता है। अगले साल इसके करीब $2 अरब यानी लगभग 16,000 करोड़ रुपए तक पहुंचने का अनुमान है। यानी मोबाइल की छोटी सी स्क्रीन पर चलने वाली छोटी कहानियां अब बड़ा कारोबार बनती जा रही है। माइक्रो ड्रामा की सबसे बड़ी ताकत है कम खर्च में ज्यादा कहानी। एक माइक्रो ड्रामा सीरीज में आमतौर पर 50 से 75 एपिसोड्स तक होते हैं। पूरी सीरीज को बनाने में करीब $1-3 लाख खर्च हो सकते हैं। यानी माइक्रो ड्रामा का फॉर्मूला बिल्कुल सीधा है, कम खर्च, ज्यादा एपिसोड और दर्शक की लगातार दिलचस्पी।
8: Microdramas actually started coming up during the strikes in LA. The first microdramas I worked on with Candy Jar were during the strikes, and they were providing jobs at a time when jobs for production crews in LA were almost non-existent. And as production has moved out of LA, it continues to provide jobs in an industry where it's become increasingly hard for members of the entertainment world to find work, whether that's crew members, whether that's cast members, whether that's creatives and above the line people. So it's really actually created a thriving and booming economy in LA.
7: Microdrama sirf America ki kahani nahi hai. Is format ki shuruaat Cheen mein hui. Wahan iski lokapriyata badhi, phir Cheen se nikalkar ye format America pahuncha. अब रील शॉट और गुड शॉट जैसे चीनी निवेश वाले ऐप भी अमेरिकी बाजार में तेजी से अपनी जगह बना रहे हैं, इसलिए माइक्रो ड्रामा को चीन के बढ़ते सॉफ्ट पावर से भी जोड़कर देखा जा रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज़ टुडे।
3: तो चलिए अब आपको एक ऐसे सफर पर लिए चलते हैं जहां कैमरों में सिर्फ तस्वीरें नहीं बल्कि दशकों पुरानी यादें भी कैद है। आज है वर्ल्ड फोटोग्राफी डे, यानी उस कला को सलाम करने का दिन जो एक पल को हमेशा के लिए यादगार बना देती है। हरियाणा के गुरुग्राम में एक ऐसे ही अनोखे कैमरे का म्यूजियम है जहां 1827 से लेकर आज तक के कैमरों का इतिहास सहेज कर रखा गया है।
6: लेकिन देखिए, इस म्यूजियम की खासियत से पुराने कैमरे नहीं हैं, यहाँ कुछ ऐसे कैमरे भी हैं जिनका रिश्ता दुनिया की बड़ी ऐतिहासिक घटनाओं से रहा है। तो वर्ल्ड फोटोग्राफी डे के मौके पर आइए तस्वीरों के साथ साथ उन कैमरों की कहानी भी जानते हैं जिन्होंने इतिहास को अपनी आंखों से देखा है।
9: वैसे तो इस म्यूजियम का पता हरियाणा का गुरुग्राम है, लेकिन इस म्यूजियम में कैमरों के सदियों पुराने पते दर्ज हैं। ये म्यूजियम आपको कैमरे की ऐसी अद्भुत यात्रा पर ले जाता है जहां आप 1827 से अब तक के कैमरों के सफर को जी भर कर जी सकते हैं। ये म्यूजियम आदित्य आर्या की सोच का नतीजा है जिन्होंने फोटोग्राफी के शौक को कैमरों के संग्रहालय में बदल डाला है।
10: हमारे साथ है आदित्य आर्य जी, हु इज द फाउंडर ऑफ म्यूजियो कैमरा। इन्होंने ही इस पूरे जितने भी कैमरा का जो इतिहास है वो इस पूरे म्यूजियम में सहेज के रखा है। तो सर 40 साल से ज्यादा हो गया, लाइक इट्स बीन 45 years, कितना समय लगा और जगह जगह आई थिंक आपने कोई भी कोना नहीं छोड़ा है इन कैमरे की कलेक्शन के लिए।
11: 40 साल, बट ये सोच के नहीं किया था कि मैं किसी दिन म्यूजियम बनाऊंगा। ये तो एक पर्सनल कलेक्शन था और मैं चीज़ें करता रहता हूँ, लेकिन मैं लोगों को बोलता हूँ कि कुछ ऐसी प्लानिंग नहीं होनी चाहिए कि मैं इस काम के लिए कर रहा हूँ। आपको अगर कुछ पैशन है तो कीजिए।
9: इस म्यूजियम में वो कैमरा भी मौजूद है जिससे हिरोशिमा पर एटम बम गिरने की तस्वीरें खींची गई थी। समझ लीजिए, ये म्यूजियम ऐसी टाइम मशीन है जहां हर कैमरा खुद में खास है।
11: 1827 में पहली सही पिक्चर ली गई थी, ये वाली बाय जोसेफ नेसिफो नीप्स, अ फ्रेंच मैन। तो ये जो पैनल दर्शाती है कि हर डिकेड, हर 10 साल में क्या क्या हुआ, क्या तरक्कियां आई, क्या इन्वेंशंस हुए, प्रैक्टिशनर्स कौन थे, फोटोग्राफर्स कौन थे, और ये किस तरह के इक्विपमेंट यूज किए गए। और जैसे 1875 में इंडिया में सैमुअल बॉर्न ने कलकत्ता में अपना एक स्टूडियो खोला, ये बिल्डिंग आज भी कलकत्ता में है। तो ऐसे बहुत सारे इन्वेंशंस को दर्शाती है और बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण टाइमलाइन है ये फोटोग्राफी की।
9: कैमरे के सदियों के सफर को आदित्य आर्या ने बड़े करीने से संजोया है। आप यहाँ विंटेज कैमरे को भी देख सकते हैं, उसके बारे में पढ़ भी सकते हैं।
11: ये 1860 से है, ये डिगेरो टाइप कैमरा है और इससे फोटो ली जाती थी। तो हर कैमरे का यहाँ पे एक अपना ही महत्व है। हम ये नहीं कह सकते कि ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है,
3: सभी इम्पोर्टेंट है
11: बहुत ज़्यादा, और सबने एक बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल प्ले किया है फोटोग्राफी के प्रोग्रेस में।
9: 2009 में इस म्यूजियम ने आकार लेना शुरू किया। आज यहाँ वो हर कैमरा मौजूद है जिसने बेहद खास मौकों को तस्वीरों की शक्ल में हमारे लिए संजोया है। आज भले ही हल्के कैमरों का जमाना है, लेकिन एक वक्त ऐसा था जब 40-40 किलो के कैमरे हुआ करते थे।
11: सेंचुरी ग्राफिक कैमरा कंपनी का कैमरा है ये, 1900 में इसका आविष्कार हुआ था। इससे स्टूडियो में स्टूडियो पोर्ट्रेट्स ली जाती थी, जैसे आप देख रहे हैं ग्लास प्लेट्स के ऊपर। तो ये एक कोडैक कंपनी की ही कंपनी थी, सेंचुरी कैमरा कंपनी।
9: कैमरे का एक लंबा सफर पत्रकारिता के रास्ते से भी होकर गुजरता है। इस म्यूजियम में वो कैमरे भी लगे हैं जिनसे खींची तस्वीरों ने कभी दुनिया भर में सुर्खियां बटोरी थी।
11: पत्रकारिता के बारे में बोला तो ये सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट कैमरे हैं जो कि उस टाइम में पत्रकार यूज करते थे। ये देखिए ग्राफलेक्स कैमरा, जिससे न्यूज़पेपर रिपोर्टर्स वगैरह न्यूयॉर्क में और लंदन में, बड़े बड़े शहरों में इनसे फोटोग्राफ लेते थे।
9: आज जब लोग मोबाइल तक से तस्वीरें खींच रहे हैं, ऐसे में विंटेज कैमरों का म्यूजियम किसी को भी जादुई एहसास से भर देता है।
12: म्यूजियो कैमरा जहां आपको 2500 से ज्यादा 1860 के दशक से तमाम जितने भी कैमरेज यूज किए जाते थे, फिर चाहे वो जर्नलिज्म पे यूज किए गए हो, फील्ड रिपोर्टिंग के लिए यूज किए गए हो, या फिर स्टूडियो कैमरेज, तमाम कैमरेज आपको दिखने वाले। जब आज का दौर जहां हमारे पास एक ये मोबाइल फोन से हम बतेरी हजारों पल भर में तस्वीरें खींच सकते हैं, तो वहीं ये जितनी भी पुरानी मशीन्स आप देख रहे हैं वो हमें ये याद दिलाती है कि उस जमाने में तस्वीरें खींचना भी एक कला थी और बहुत बड़ी जिम्मेदारी। कैमरा पर्सन जगन्नाथ के साथ मनीषा लड्डा, दिल्ली।
4: कहते हैं कि घर सिर्फ इंसानों के लिए नहीं होता, अगर दिल में परिंदों के लिए भी जगह हो तो वही घर उनका आशियाना भी बन जाता है। पंजाब के मोगा में एक महिला ने अपने घर को ही सैकड़ों परिंदों का बसेरा बना लिया। उन्होंने घर में जगह जगह चिड़ियों के लिए घोंसले लगाए हैं और अब रोजाना सैकड़ों परिंदे यहाँ पहुंचते हैं।
1: बिल्कुल, परिंदों के लिए इस महिला का प्यार अब सिर्फ उनके घर तक सीमित नहीं बल्कि एक मिसाल बन चुका है। गर्मी हो या मौसम की कोई भी चुनौती हो, इन परिंदों को यहाँ सुरक्षित ठिकाना मिलता है। पंछियों के संरक्षण की उनकी ये छोटी सी कोशिश अब लोगों की खूब सराहना बटोर रही है और दूसरों को भी बेजुबान परिंदों के लिए कुछ करने की प्रेरणा दे रही है।

0: घर के हर एक कोने में परिंदों का आशियाना सजा है। चिड़ियों की चहचहाने की आवाज से ये घर हमेशा गुलजार रहता है। पंजाब में मोगा के निधावाला गांव में रहने वाली हरप्रीत कौर का इन चिड़ियों के साथ एक अनोखा रिश्ता है। पिछले 13 साल से हरप्रीत इन परिंदों का सहारा बनी हुई है। घर में चिड़ियों का आशियाना सजाने के साथ साथ वो परिंदों को रोजाना दाना भी डालती हैं। करीब 500 से ज्यादा परिंदे रोजाना इस आंगन में आकर घर की रौनक बढ़ाते हैं। हरप्रीत इन परिंदों का अपने बच्चों की तरह देखभाल करती है।
1: मेरे घर में 200 के करीब रैन बसेरा है और हमारे 500 से 600 हमारे घर में गुरैया रहती हैं और गांव से भी बहुत ज्यादा गुरैया आती है। ये मेरिया प्यारियां राजकुमारियां, मैंने प्यार ना राजकुमारियां कहती हूँ क्योंकि मेरे ना एक बेटी नहीं थी, इसलिए मेरी बेटी की कमी पूरी करती हैं। क्योंकि हमारे पंजाब में जो बेटियां होती है ना उनको चिड़िया बुलाते हैं। सो ये घर में बहुत ज्यादा रौनके लगाती थी। सुबह उठते हैं तो ये बहुत ज्यादा इनका रौनक शुरू हो जाती है, बोलती है, बड़ी मीठी आवाज होती है, इसका कुदरती संगीत होता है।
0: हरप्रीत के लिए ये परिंदे उनके परिवार का हिस्सा है। वो अपना सारा दुख सुख इन्हीं के साथ बांटती है। उन्होंने अपने घर के अलावा गांव में ही कई जगहों पर ऐसे ही छोटे घोंसले लगाए हैं। बदलते दौर में शहरों में बढ़ते दायरे की वजह से पंछियों को अपने आशियाने के लिए जगह नहीं मिल पाती। ऐसे में भीषण गर्मी और कड़ाके की सर्दी का मौसम इन चिड़ियों के लिए बड़ी चुनौती लेकर आता है। हरप्रीत ने परिंदों की इस मुश्किल को कुछ कम करने की कोशिश की है।
1: इनको ना साफ पानी, एक तो साफ पानी की जरूरत है क्योंकि ना आजकल कीटनाशक इतने ज्यादा बढ़ चुके हैं कि साफ पानी नहीं मिलता पक्षियों को। एक रहने के लिए इनकी जगह खत्म हो गई है। पहले हमारे बुजुर्ग थे ना, वो कच्चे घरों में रहते थे, वहां पर काने वाले की छतें हुआ करती थी तो उस पर रहती थी ये गुरैया। अब वो नहीं है तो इसको घर में जगह नहीं मिल रही, इसलिए हमने इनके लिए एक प्लांट जो रैन बसेरा दिया है ना, वो प्लांट है इसका जो घोंसला है ना, वो इसमें वो ढक्के रख के खुद ही बनाती है।
0: हरप्रीत का मानना है कि प्रकृति का संतुलन बनाए रखने के लिए परिंदों का संरक्षण बेहद जरूरी है। यही वजह है कि वो इन पक्षियों का मददगार बनने के साथ ही और लोगों को भी परिंदों की मदद के लिए जागरूक करती हैं। मोगा से तन्मय सामंता के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
2: रुकेंगे यहाँ पर एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद आपको दिखाएंगे कैसे चीन के एक शहर में आसमान में नजर आया समंदर।
3: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाती है।

0: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
1: और दुर्भाग्य कहता है
2: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
3: अविश्वास में विश्वास बसता है,
0: जो हम में अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
4: गुड न्यूज टुडे।
5: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से।
6: और स्पेसएक्स के स्टारशिप रॉकेट से जुड़ी एक बड़ी खबर सामने आई है। आपको बता दें, करीब 24 दिन समुद्र में रहने के बाद इस रॉकेट को क्रिसमस आइलैंड के पास समुद्र में सुरक्षित जगह पर पहुंचाया गया है। स्पेसएक्स ने मंगलवार 18 अगस्त को स्टारशिप की तस्वीरें और वीडियो जारी किए। कंपनी की रिकवरी टीम ने रॉकेट को समुद्र के रास्ते क्रिसमस आइलैंड के तट तक पहुंचाया है। अब स्पेसएक्स के इंजीनियर वहां पहुंचकर रॉकेट की जांच करेंगे। समुद्र शांत होने के बाद इसकी बारीकी से जांच की जाएगी और फिर इसे अमेरिका के टेक्सास स्थित स्पेस एक्स के स्टार बेस ले जाने की तैयारी होगी।
7: दरअसल स्टारशिप ने 24 जुलाई को टेक्सास से उड़ान भरी थी। ये स्पेस एक्स की 13वीं टेस्ट फ्लाइट थी। करीब 400 फीट यानी 122 मीटर लंबा ये रॉकेट अंतरिक्ष की तरफ गया और इस दौरान पहली बार नए स्टारलिंक सैटेलाइट को अंतरिक्ष में भेजने का परीक्षण किया गया। स्पेसएक्स एक नए स्टारशिप के जरिए कई बड़े लक्ष्य हासिल करना चाहती है और इसमें स्टारलिंक के लिए ज्यादा सैटेलाइट अंतरिक्ष में भेजना, भविष्य में इंसानों को चांद पर पहुंचाना और आगे चलकर हजारों ऐसे सैटेलाइट भेजना शामिल है जिनका इस्तेमाल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के काम में किया जा सकेगा।
8: चलिए अब आपको आसमान पर ड्रोन की अद्भुत कलाकारी दिखाते हैं। इस नजारे को देखकर आपको लगेगा कि जैसे समंदर आसमान में उतर आया हो। चीन के चोंगचिंग शहर में रात का आसमान अचानक गहरे समुद्र में बदल गया और इसकी वजह बने 5000 ड्रोन। हजारों ड्रोन ने मिलकर कभी मछलियां, कभी समुद्री जीव और कभी लहरों जैसी आकृतियां बनाई, मानो पूरा आसमान पानी के अंदर ही दुनिया बन गया हो।
9: और इस शानदार ड्रोन शो की थीम थी 20,000 लीग्स अंडर द सी, यानी आसमान में समुद्र की वो दुनिया जिसे देखकर किसी सपनों की दुनिया का एहसास हो। 5000 ड्रोन्स एक साथ उड़ते हुए ऐसे आकार बना रहे थे जैसे आसमान में कोई विशाल एक्वेरियम तैर रहा हो। कहीं समुद्री जीव नजर आए, कहीं रंग बिरंगी रोशनी ने पूरा आसमान रंगीन कर दिया।
7: चलिए इसी के साथ फिलहाल वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का, कहीं मत जाएगा, फौरन हाजिर होंगे।
5: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए।

0: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते. खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है. तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे. देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे.
1: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है. कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए. इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए. वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है.
2: देश देख रहा है अच्छी खबरें. गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर.
0: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है. इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे. तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर. मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते. खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है. तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे. देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे.
1: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है. कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए.
3: बोलिविया की तस्वीरें दिखाते हैं. यहाँ के इंडियन हाईलैंड्स में अगस्त की शुरुआत में मौसम ने ऐसा पलटी खाई कि पूरा इलाका बर्फ की चादर से ढका है. भारी बर्फबारी और माइनस में पहुंचते तापमान में जनजीवन को बुरी तरह से प्रभावित किया है. कई इलाकों में सड़कें बंद हैं, बस सेवाएं ठप हैं और दर्जनों ट्रक ड्राइवर बस के बीच में फंस गए हैं.
4: देखिए बर्फबारी का सबसे ज्यादा असर पोटोसी में देखने को मिला है, जहाँ बर्फ ने चरागाहों को ढक दिया है. हालात को देखते हुए प्रशासन ने भी इमरजेंसी घोषित कर दी है. प्रभावित परिवार उन तक राहत पहुंचाई जा रही है लगातार, लेकिन कई इलाकों में सड़कें बंद होने की वजह से राहत पहुंचाना चुनौती बना हुआ है.
3: तो चलिए चाय पर चर्चा में अभी के लिए बस इतना ही. कल फिर शाम 5 बजे आपसे मुलाकात होगी चाय पर.
1: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है. कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए.
5: कब कोई व्यक्ति जीवन में सही निर्णय ले पाता है, कब व्यक्ति के द्वारा लिए गए निर्णय गलत होते हैं, किन ग्रहों का प्रभाव आपके निर्णय पर पड़ता है और सही निर्णय लेने के उपाय क्या हैं, जानिए मेरे साथ सिर्फ किस्मत कनेक्शन में.
0: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
6: और दुर्भाग्य कहता है
7: कि भाग्य कहीं दूर नहीं.
8: अविश्वास में विश्वास बसता है,
0: जो हमें अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है.
2: गुड न्यूज टुडे.
0: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते. खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है. तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे. देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे.
1: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है. कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए. इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए. वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है.
2: देश देख रहा है अच्छी खबरें. गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर.
0: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है. इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे. तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर.
1: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है. कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को

0: इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
1: देश देख रहा है अच्छी खबरें,
2: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट, कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच, HRIT यूनिवर्सिटी गाजियाबाद, शेपिंग फ्यूचर क्रिएटिंग लीडर्स।
3: मौसम की चुनौतियों के बीच हेमकुंड साहिब यात्रा में रौनक, अब तक 2.5 लाख से ज्यादा श्रद्धालुओं ने टेका मत्था। 10 अक्टूबर तक जारी रहेगी पवित्र यात्रा। सावन के पवित्र महीने में दिख रहे शिव भक्ति के अनोखे रंग, मुंगेर में भव्य कांवड़ यात्रा बनी आकर्षण का केंद्र, श्रद्धालु बैद्यनाथ धाम में करेंगे जलाभिषेक। महाराष्ट्र में गणेशोत्सव की तैयारियां तेज, अकोला में बप्पा की प्रतिमाओं को अंतिम रूप देने में जुटे कारीगर, 14 सितंबर से शुरू होगा उत्सव। यूपी के कई जिलों में बाढ़ जैसे हालात, वाराणसी से लेकर प्रयागराज तक बढ़ा नदियों का जलस्तर, अलर्ट मोड में आया प्रशासन। चीन में ह्यूमनॉइड रोबोट्स की नुमाइश, बीजिंग में वर्ल्ड रोबोट कॉन्फ्रेंस का आगाज, मार्शल आर्ट्स का गुण दिखाते नजर आए रोबोट।
0: सोना खरीद गुंडे चुड़े इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिलती है।
3: नमस्कार, जीएनटी स्पेशल में स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ शगुफ्ता साहिल देव। भगवान बुद्ध की निर्वाण स्थली गया के बारे में तो सब लोग जानते हैं, लेकिन गया के गांव में होने वाले कुदरती करिश्मे के बारे में शायद ही आप में से कोई जानता होगा। गया में स्थित हंसराज पर्वत की तलहटी में बसे इस छोटे से गांव में रत्नों की बारिश होती है। जी हाँ, जिन रत्नों को पाने के लिए बड़ी बड़ी मशीनों से गहरी खुदाई करनी पड़ती है, वही रत्न गया के इस गांव में सड़कों पर बिखरे से आपको मिल जाएंगे। ये सुनकर जरूर आपके मन में ना जिज्ञासा जगी होगी कि इस गांव को देखने जरूर जाना चाहिए। तो चलिए आपको हम लेकर चलते हैं गया के उस अद्भुत गांव में, देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट।

0: हमारी धरती का नाम रत्नगर्भा है। रत्नगर्भा इसलिए क्योंकि धरती ने अपने भीतर हीरा, पन्ना, नीलम, माणिक्य, पुखराज और गोमेद जैसे बेशकीमती रत्नों का अकूत भंडार सहेज रखा है। पर धरती के गर्भ में कुदरत की ओर से सहेज कर रखे गए इन रत्नों को पाना आसान नहीं है। इसके लिए भारी मशीनों की मदद से संभावित पहाड़ों या जमीनों में काफी गहरी खुदाई करनी पड़ती है। फिर एक्सपर्ट की मदद से उनकी पहचान कर रत्नों को बाहर निकाला जाता है। लेकिन भगवान बुद्ध की निर्वाण स्थली बिहार के गया जिले के एक गांव के लोगों को इन्हीं रत्नों को पाने के लिए न तो माइनिंग करनी पड़ती है और न ही कोई दूसरी मशक्कत करनी पड़ती है। इन्हें करना होता है तो बस मानसून का इंतजार। मानसून की बारिश के बाद ये बेशकीमती रत्न इनके रास्तों में अपने आप ही आकर बिछ जाते हैं और जिन्हें पाकर इनकी जिंदगी से दूर हो जाता है गुर्बत का मनहूस साया। ये बात सुनकर आपको जरूर हैरानी हुई होगी। इस बात पर आसानी से यकीन कर लेना भी थोड़ा मुश्किल है, लेकिन जब हम आपको पूरी सच्चाई से रूबरू कराएंगे तो आपको न सिर्फ इस बात पर पक्का यकीन हो जाएगा बल्कि गांव वालों की किस्मत पर रश्क भी होने लगेगा। तो सुनिए साहब, बिहार के गया जिले के वजीरगंज ब्लॉक में मौजूद है हसरा गांव। जिला मुख्यालय से करीब 40 किलोमीटर की दूरी पर स्थित हसरा गांव हंसराज पर्वत की तलहटी में बसा है। इस गांव के लोग हर साल मानसून का बेसब्री से इंतजार करते हैं और अच्छी बारिश होते ही गांव के खुशकिस्मत लोग निकल पड़ते हैं हंसराज पर्वत पर, जहां मोती, मनिया जैसे कीमती पत्थर रास्ते में पड़े मिलते हैं। दरअसल बारिश के बाद हंसराज पर्वत पर कुदरती रूप से मौजूद बेशकीमती पत्थर लुढ़क कर पहाड़ की पगडंडियों तक पहुंच जाते हैं और कई बार तो गांव के खेत खलियानों तक भी आ जाते हैं।
1: बारिश जब पूरा बारिश होगा तो अपने आप पहाड़ी से ढल के जमीन में चला जाता है फिसल के,
2: फिर लोग
1: उसका जानवर उमर चढ़ता है खुड़ी से, कहीं कहीं से कुछ कुछ से अपना धोवा के अपना निकलता है तो ही ले जाते हैं।
2: बहुत सारे बच्चे भी खोजते रहते हैं।
1: जी हाँ सर, बच्चे जो गरीब का आदमी है, तत्व के बाल बच्चे हैं, वो जो घर में कुछ काम नहीं है, जो पैसा का लोभ है तो कोई भी खोज सकता है सर।
0: हंसराज पर्वत की तलहटी में बसे हसरा गांव के लोग बेहद सहज, सरल और भोले भाले हैं। गांव पर बरसने वाली कुदरत की बेशकीमती नेमत के महत्व से ये आज भी कमोबेश अनजान ही है। मानसून की बारिश के बाद मूंगा, मनिया जैसे पत्थर हंसराज पर्वत से लुढ़क कर जब इनके कदमों तक पहुंचते हैं तो ये उसकी असली कीमत से अनजान ही रहते हैं। गया या दूसरे शहरों से आने वाले जौहरी इन्हें उसकी जो भी कीमत बता दें उसे सही मानकर वो सौदा कर लेते हैं। गांव के भोले भाले बच्चों के लिए पत्थर ढूंढना बाल सुलभ खेल से ज्यादा कुछ नहीं होता। इन बच्चों के लिए रत्न ढूंढना आपसी प्रतिस्पर्धा होती है, एक कौतूहल होता है।
2: खोजने के लिए ज्यादातर बच्चा लोग वर्षा होने के बाद दौड़ जाता है, वही लोग लेता है, उसी को मिलता है, जो ढूंढता उसको मिलता है, बेच देता है लोग। बोध गया से कुछ लोग आते हैं, जानते हैं कि वहाँ पर वर्षा होने के बाद मिलता है कुछ, आके लोग ले जाता है, बढ़िया कीमत भी देता है।
3: क्या कीमत लगाते होंगे?
2: कुछ जैसा साइज रहता है मूंगा को, उस प्रकार से वो लोग देते हैं।
3: किस तरह का मूंगा रहता है?
2: काला उजला रहता है, रेड भी रहता है, गुलाबी जैसा भी होता है, अलग अलग प्रकार है सब।
0: कुदरत का खेल भी बड़ा अजीब होता है। कुदरत की मेहर का कोई बना बनाया फॉर्मेट नहीं होता। कब, कहां, किस पर और क्यों कुदरत की मेहरबानी हो जाए ये किसी को नहीं पता। मानसून के दौरान सहज ही मिलने वाले बेशकीमती रत्नों ने गया जिले के हसरा गांव के लोगों की जीवन शैली में बड़ा बदलाव ला दिया है। करीब 150 घरों और 1000 की आबादी वाला ये गांव आज अगर खुशहाल है तो उसकी वजह है हंसराज पहाड़ से लुढ़क कर आने वाले अनमोल पत्थर। कुछ दशक पहले तक इस गांव में मुफलिसी का आलम ये था कि यहां के ज्यादातर घर कच्चे हुआ करते थे, लेकिन बेखुदी में मिले पत्थरों को बेचकर अब ज्यादातर परिवारों ने पक्के मकान बनवा लिए हैं। दरअसल यूं ही रास्तों में पड़े मिले पत्थर कई बार 2.5 से 3 लाख तक की कीमत दे जाते हैं।
1: हाँ, मूंगा टाइप मिलता है, जैसे छोटा मूंगा बड़ा मूंगा जो जिसका जैसा नसीब है वह अनुसार अगर छोटा मिल गया तो कम बेनिफिट हुआ, जड़ी बड़ा मिल गया तो ज़्यादा बेनिफिट हुआ, वो साहब बड़ा मिल गया तो 2.5 लाख 3-3.25 लाख तक के यहाँ बिका है मूंगा।
4: कब वो रत्न मिलता है, कैसे मिलता है?
1: जब पानी पड़ गया तो लोग निकल जाते हैं, जिसका नसीब आता है उनका मिल जाता है, कम से कम तो 100 आदमी से ऊपर है, 100 आदमी ऊपर। पर की साल की कहानी कहते हैं, गाय खोल के आया, जस्ट पीछे पीछे हम भी आ रहे हैं और ये घरवा के आपसे नीचे उतर पर रोडवा किनारे में, रोड के किनारे में, अरे मूंगा में हमको मिल गया शंकर जी मिल गया, तुरंत उसको 1,55,000 में एकदम हैंड टू हैंड कहते कहते बिक गया।
0: शुरुआती वर्षों में जब ये बेशकीमती पत्थर गांव वालों को मिलने लगे तो उन्हें नहीं पता था कि ये इतने कीमती हैं। लिहाजा तब गांव वाले इन पत्थरों को कुछ 100 या कुछ 1,000 रुपयों में बेच देते थे, लेकिन जैसे जैसे उन्हें इन पत्थरों की वैल्यू पता चली, गांव वालों ने मोल भाव करना शुरू कर दिया। मोल भाव करने की वजह से सीधे साधे गाँव वालों को पहले के मुकाबले ज्यादा कीमत मिलने लगी। हालांकि अभी भी इन्हें नहीं पता कि जो जौहरी इन रत्नों के बदले 1-2 लाख रुपए देते हैं वो अपने ग्राहकों से उसके लिए कितना पैसा वसूलते हैं। बहुत मुमकिन है कि जो पत्थर ये शहरों से आने वाले जौहरी को 1 या 2 लाख में बेच देते हैं, जौहरी अपने ग्राहकों से उस पत्थर के 40 से 50 लाख रुपए वसूलते हों। दरअसल दुनियादारी से बेखबर गाँव वाले रत्नों के पारखी तो है नहीं, वो तो बस पत्थरों की चमक देखकर उसे उठा लेते हैं और फिर इंतजार करते हैं जौहरी का।
5: चमकता है ना, जैसे मिल जाता है उसे, जिसे लड़कन के खोता है 100 के मिलता है, हमको मिलता है।
4: जब आपको मिला था तब कैसा लगा?
5: कैसा लगता है, वो रख ले है, अभी नहीं बेचा, उसी के दे रहा 10-20 ने, हम कहीं नहीं बेचेगा, जब हम कहा ऐसे रख ले है मूंगा के, उसी के दाम ज्यादा है। मिला तो हमके जैसे आ रहा है ने, वो नहीं फूल जता मिला हमको,
3: क्या था?
5: हीरा है।
0: हंसराज पर्वत से लुढ़क कर आने वाले इन बेशकीमती पत्थरों का एक गहरा धार्मिक कनेक्शन भी है। गांव वालों को ये पत्थर आमतौर पर सावन के महीने में मिलते हैं। सावन को भगवान शिव का मनभावन महीना माना जाता है और संयोग ये कि हंसराज पर्वत पर भोलेनाथ का एक प्राचीन मंदिर भी है। गांव वाले कहते हैं कि मंदिर में जो शिवलिंग है वो स्वयंभू है, यानी इसे किसी ने स्थापित नहीं किया बल्कि ये स्वयं प्रकट हुआ है। जाहिर है गांव वाले हंसराज पर्वत से मिलने वाले पत्थरों को भगवान भोलेनाथ का आशीर्वाद ही मानते हैं।
2: हसरा पहाड़ी है, खासियत तो ऊपर में बाबा हैं, सबसे बड़ा खासियत तो वही है, 1934 से यहाँ विराजमान है।
0: काबिले गौर है कि हंसराज पर्वत पर स्थित भोलेनाथ के मंदिर की कहानी सोनपुर के राजा से भी जुड़ी है। गांव वालों के अनुसार पहाड़ के आसपास आज भी कुछ पुराने राजा महाराजाओं के महलों के खंडर और अवशेष दबे हुए हैं। गांव वाले कहते हैं कि साल 1934 में हंसराज पर्वत पर सोनपुर के राजा निरसु नारायण सिंह ने 4 फीट ऊंचे शिवलिंग वाले एक भव्य शिव मंदिर का निर्माण कराया था। सावन महीने और पूर्णिमा के दिन बड़ी संख्या में श्रद्धालु इस मंदिर में जलाभिषेक करने आते हैं। मंदिर से जुड़ी कुछ चमत्कारिक कथाएं गांव वालों के इस विश्वास को और पुख्ता कर देती है।
1: यहाँ अपरूपी शंकर जी का मूर्ति निकला है जो हम लोग के जन्म के पहले से ही है, 1934 में ही बना हुआ मंदिर है, हम लोग जानते हैं, हम लोग देखे उखे नहीं थे कि कैसे शंकर जी यहाँ उत्पत्ति हुए से, लेकिन पूर्वज लोग कहते थे कि जब यहाँ खुदाते थे मालिक थे, सोनपुर के मालिक के हम लोग क्षेत्र में पढ़ते हैं, निचु नारायण सिंह उनका नाम था, तो खुदवा के यहाँ से ले जाना चाहते थे सोनपुर, लेकिन जन बन लगवा खोदवाते थे, जैसा जलधरी है वैसा जलधरी 7 जलधरी तक शाम तक खोदाता था कि तो, और फिर रात भर में उसी जस के तस हो जाते थे।
0: क्या ये वाकई भगवान शिव की कृपा का असर है या फिर हंसराज पर्वत की भूगर्भीय संरचना का कमाल? इस सवाल का जवाब तो कोई आध्यात्मिक विभूति या फिर भूगर्भ शास्त्री ही दे सकते हैं। हालांकि गया के वन पदाधिकारी का कहना है कि जिन लावा से पहाड़ों का निर्माण होता है उनमें कुदरती रूप से रत्न भी होते हैं।
6: ये मैं भी ये पूर्व में लावा से जो पहाड़ का निर्माण हुआ है तो उसमें कुछ ऑर्नामेंटल एलिमेंट जो होते हैं लाइक जो पत्थर होते हैं बेसिकली ये पत्थर का टाइप है ठीक है डिफरेंट कलरफुल पत्थर के टाइप हैं और वो में भी वो निकल रहा होगा।
0: वन पदाधिकारी चाहे जो कारण बताएं, भोले भाले गांव वालों के लिए तो ये साक्षात शिव जी की कृपा का ही कमाल है। कारण चाहे जो हो पर सच्चाई यही है कि धरती के भीतर दबे रत्नों को निकालने के लिए जहां एक ओर करोड़ों रुपए खर्च कर वैज्ञानिक तरीके से माइनिंग करनी पड़ती है वहीं रत्न इन गांव वालों को सहज ही उपलब्ध हैं। गया से पंकज कुमार के साथ ब्यूरो रिपोर्ट गुड न्यूज टुडे।
7: तो गया के इस गांव में सहज ही मिलने वाले रत्नों के बाद आपके मन में रत्नों की पहचान और उनकी कीमत निर्धारण से जुड़े बहुत सारे सवाल उठ रहे होंगे। इन सवालों का जवाब जानने के लिए हमारे संवाददाता मनीष चौरसिया ने रत्नों के विशेषज्ञ से हर पहलू पर बातचीत की है। आइए विशेषज्ञ के जरिए जान लेते हैं कि कैसे होती है रत्नों की पहचान, कैसे तय होती है इनकी कीमतें।
8: बहुत सारे लोग जीवन का सुख दुख रत्न के हिसाब से तय करते हैं। ऐसे में रत्न की डिमांड भी मार्केट में बहुत ज़्यादा होती है और जितनी डिमांड होती है उतना ही रत्न के साथ कई तरह के खेल भी होते हैं, असली नकली का खेल। कैसे पहचाने, क्या चीज़ें हो सकती हैं, मेरे साथ अमरजीत जी हैं जो कि पीपी ज्वेलर्स भाई पवन गुप्ता से हैं। सर आप रत्न तो बहुत सारे हम लोग देखते हैं, किसी ऑथेंटिक शॉप से लेना एक बात है, लेकिन अगर कोई हाथ में लेकर आया है क्या उसको पहचानना मुमकिन है?
9: देखिए, ऐसा जनरल आदमी के लिए पहचानना कि स्टोन रियल है या फेक है बहुत मुश्किल हो जाता है। बाकी ये है कि स्टोन कभी भी आप देखें, जैसे कोई भी स्टोन आप रियल स्टोन देख रहे हैं, जैसे ये नीलम है, तो स्टोन जो रियल आएगा उसका एक तो थोड़ा वेट हैवी रहता है, अगर सिंथेटिक स्टोन है आर्टिफिशियल स्टोन है तो थोड़ा हल्का रहेगा, और सेकेंड है कि कट थोड़ा अच्छा आता है, अगर रियल स्टोन है तो उस पर थोड़ी मेहनत करी जाती है, खर्चा करा जाता है उसको अच्छा बनाने के लिए, तराशा जाता है तो उसके ऊपर कट बहुत अच्छा दिया जाता है। फेक स्टोन के ऊपर उतनी मेहनत नहीं कर सकता आदमी, क्योंकि इतना सस्ता होता है वो, उसकी ना तो इतनी अच्छी कटिंग आती है ना बहुत अच्छी पॉलिश होती है, और वजन में भी वो काफ़ी हल्का रहता है। बाकी आजकल के टाइम पे तो काफ़ी लैब हैं, गवर्नमेंट लैब हैं, वहाँ जाके आप अपना स्टोन चेक करा सकते हैं, या किसी अच्छे ज्वेलर्स पे जो अच्छा कोई स्टोन का काम कर रहा है एक बार आप उसका सजेशन ले सकते हैं या उसके पास दे सकते हैं, तो जो एक अच्छा काम कर रहा है मार्केट में जिसका नाम है तो जनरल उस पर चीज़ अच्छी ही मिल जाती है।
8: मोटा मोटी ये है कि थोड़ा सा वो भारी होगा जी, उसके कट बहुत फाइन होंगे और उसमें चमक होगी, थोड़ी
9: चमक आएगी। बिल्कुल ठीक बात है जी, ये सब चीज़ें मैटर करती हैं स्टोन से पहले, और बाकी किसी भी अच्छे रेप्यूटेड शॉप से लो तो मेरे हिसाब से चीज़ अच्छी ही मिल रही है मार्केट में, अभी काम सही चल रहा है।
8: कीमत कैसे तय होती है स्टोन की? जैसे मान लीजिए कोई कहीं कुछ पड़ा हुआ पा गया तो उसकी कीमत कैसे तय कर सकते हैं?
9: देखिए, कीमत तो स्टोन के वजन के ऊपर है कि स्टोन का साइज कितना बड़ा है, वजन कितना है, और स्टोन के अंदर क्लैरिटी कितनी है। स्टोन जितना ज़्यादा अच्छा साफ होगा, अंदर से ट्रांसपेरेंट आएगा, तो स्टोन की वैल्यू ज़्यादा होती है। वहीं स्टोन के अंदर धुंधलापन है, क्लैरिटी नहीं आ रही या पीस छोटा है तो उसकी वैल्यू थोड़ी कम रहेगी। ठीक
8: है, जो अलग अलग स्टोन है जैसे कई लोग नहीं पहचानते हैं, हम स्टोरी ये कर रहे हैं कि एक गांव में कुछ लोग स्टोन उनको मिलते हैं बारिश के बाद बहुत सारे, तो वो नहीं पहचानते हैं कि ये कौन सा है, ये गुमद है कि ये नीलम है कि ये क्या है, थोड़ी सी उनकी जानकारी लगा दिखाते हुए बताएं कि ये है और इसकी कीमत इतनी होनी चाहिए।
9: जी जी, देखिए स्टोन जो है, जो रियल स्टोन है वो आप जनरल देखेंगे तो इस तरीके से आते हैं, जैसे पन्ना हो गया जो जनरल आप देखेंगे हरे रंग का ही पाया जाता है, और नीलम है जैसे नाम से ही नीलम है, नीले रंग का है, इसी के अंदर एक मूंगा स्टोन आता है ये वाला, ये भी समुद्र के अंदर से निकलता है, ये मोस्टली रेड कलर का या वाइट कलर का पाया जाता है, और एक मोती इस तरीके से जो मोती आ रहा है वाइट, जनरल सब ने देखा ही होगा। और स्टोन के अंदर और काफ़ी चीज़ें आती हैं जैसे गोमेद है ये वाला, तो काफ़ी चीज़ें हैं स्टोन के अंदर। बाकी जो जनरल महंगे स्टोन देखे जाएंगे आप तो पुखराज महंगा आता है, नीलम महंगा आता है, पन्ना महंगा आता है, और कई स्टोन काफ़ी सस्ते भी मिल जाते हैं जो रियल होते हैं लेकिन सस्ते मिल जाते हैं।
8: किसकी कितनी कीमत होती है मोटा मोटी?
9: देखिए, अच्छा स्टोन जैसे सपोज कोई भी मान के देखते हैं हम, पन्ना है या पुखराज है या नीलम है, तो जनरल अगर हम देखेंगे तो ये आपको स्टार्टिंग जो अच्छा स्टोन अगर आपको चाहिए 10-15 हज़ार रुपये रत्ती आपको कम से कम मिलेगा ही, और 6-7 रत्ती, 8 रत्ती, 10 रत्ती, सब लोग अपने अपने एक वजन के हिसाब से, शरीर के, या जैसे कोई एस्ट्रोलॉजर सजेस्ट करता है उसके हिसाब से स्टोन पहना जाता है। कोई चार रत्ती पहन रहा है, कोई छह रत्ती पहन रहा है, कोई आठ रत्ती पहन रहा है।
7: देखिए, रत्नों का ना हमारी जिंदगी में बहुत ज्यादा महत्व है और ये नया तो बिल्कुल नहीं है। हमारे पुराणों और शास्त्रों में भी अनमोल रत्नों का जिक्र मिलता है। समुद्र मंथन के बाद कौस्तुभ मणि निकलने का वर्णन हमारे प्राचीन ग्रंथों में भी मिलता है। आज हमारे बीच नौ रत्नों का बड़ा महत्व है क्योंकि ये नौ रत्न हमारे नौ ग्रहों से संबंधित बताए जाते हैं। तो आइए जान लेते हैं कि कौन सा रत्न किस ग्रह के साथ जुड़ता है और उन रत्नों का प्रभाव और असर क्या होता है।

0: धरती के गर्भ में मिलने वाले रत्नों की तासीर बड़ी अद्भुत होती है। प्रकृति ने जो खजाना अपनी आगोश में सहेज कर रखा है वो ग्रह नक्षत्रों की विपरीत चाल से परेशान इंसान की विपत्तियों का समाधान बन जाता है, तो ज्योतिष विज्ञान में बाधाओं का परिहार माना जाता है। वही रत्न जब जौहरियों के पास पहुंचता है तो उनके लिए टकसाल बन जाता है। इन्हीं रत्नों का मोल भाव कर जौहरी धन कुबेर बन जाते हैं। इसमें कोई संदेह नहीं कि हर रत्न का अपना एक साइंटिफिक कॉन्फ़िगरेशन होता है और उसका अपना प्रभाव क्षेत्र होता है। यही वजह है कि हिंदुस्तान के ज्यादातर लोगों को आप कोई न कोई रत्न धारण किए हुए पाएंगे। कई लोग शौक से तो कई ज्योतिषीय सलाह के मुताबिक रत्नों को धारण करते हैं।
1: वैदिक ज्योतिष में रत्नों का विशेष महत्व है क्योंकि हर रत्न किसी न किसी ग्रह की कॉस्मिक एनर्जी को डिनोट करता है। ये रत्न आपको माता पृथ्वी या समुद्र के गर्भ से मिलते हैं और वहां से मिलने वाली ये दिव्य वस्तुएं कहीं ना कहीं आपके जीवन में स्टेबिलिटी लाती हैं, आपके जीवन में प्रोस्पेरिटी लाती है, अमुक ग्रह की पॉजिटिव एनर्जी को आपके जीवन में संतुलित करती है, चैनलाइज करती है।
0: ज्योतिष शास्त्र में रत्नों को हमेशा से ऊर्जा और शक्ति का अजस्त्र स्रोत माना जाता है। वैदिक ज्योतिष शास्त्र के मुताबिक रत्नों में कॉस्मिक एनर्जी समाहित होती है। हर रत्न की अपनी अलग एनर्जी होती है, अलग प्रभाव क्षेत्र होता है। वैदिक ज्योतिष शास्त्र में नौ ग्रह का जिक्र किया गया है और हर ग्रह का हमारे जीवन में खास स्थान होता है। हर ग्रह को एक खास रत्न के माध्यम से दर्शाया जाता है जिसकी वजह से इन्हें नौ रत्न कहा जाता है। ज्योतिष शास्त्र के मुताबिक हर रत्न में विशेष गुण होते हैं जो सही समय पर सही विधि से और सही उंगली में धारण करने से सकारात्मक ऊर्जा प्रदान करते हैं। अब आइए ये जानते हैं कि किस रत्न में कौन सा गुण होता है और उसे कब और कैसे और क्यों धारण करना चाहिए। पुखराज का संबंध बृहस्पति ग्रह से माना जाता है तथा इसे सोने के साथ तर्जनी उंगली में धारण किया जाता है। मान्यता है कि पुखराज धारण करने से धन आगमन के नए मार्ग खुलते हैं। इसके साथ ही शिक्षा और ज्ञान में वृद्धि होती है। इसे गुरुवार को धारण करने की ज्योतिषीय सलाह दी जाती है। पुखराज दाम्पत्य जीवन में सुख समृद्धि बढ़ाने में मदद करने वाला रत्न भी माना जाता है। पन्ना का संबंध बुध ग्रह से माना जाता है। पन्ना को सोने के साथ कनिष्ठिका उंगली में धारण किया जाता है। ज्योतिषीय मान्यताओं के मुताबिक पन्ना धारण करने से निर्णय लेने की क्षमता और बुद्धि बढ़ती है। आईटी, मीडिया और लेखन के क्षेत्र से जुड़े लोगों के लिए ये विशेष तौर पर लाभकारी माना जाता है। इसे बुधवार के दिन धारण करना विशेष लाभकारी बताया गया है। पन्ना से लोक प्रतिष्ठा में बढ़ोतरी की बात भी कही जाती है, साथ ही शेयर बाजार में निवेश के लिए इसे लाभकारी माना जाता है।
1: पन्ना जो एमरल्ड वो बुध को डिनोट करता है। ये विशेष रूप से जो मिथुन राशि और वर्गो साइन कन्या राशि के लॉर्ड होते हैं, आपकी एक्यूमन, बिजनेस एक्यूमन, आपकी ऑरेटरी स्किल्स, आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स, आपकी अकाउंटिंग स्किल्स, मैथमेटिक्स, वेरी गुड फॉर स्टूडेंट्स। आप इसको धारण करिए अपनी सबसे स्मॉल फिंगर में। ग्रीन कलर का स्टोन होता है, बहुत वाइब्रेंट कलर्स इसमें आते हैं और ग्रीन कलर में ही आप इसको पंच धातु में या फिर गोल्ड में आप धारण कर सकते हैं।
0: माणिक्य को सूर्य ग्रह से जोड़कर देखा जाता है। इसे अनामिका यानी रिंग फिंगर में धारण किया जाता है। ज्योतिष शास्त्र में माणिक्य को राजसी रत्न माना जाता है। इसे धारण करने से नेतृत्व की क्षमता बढ़ती है। माणिक्य को राजनीति और प्रशासनिक क्षेत्र में सफलता का कारक माना जाता है। माणिक्य को रविवार के दिन धारण करने की सलाह दी जाती है। माणिक्य को आत्मविश्वास बढ़ाने वाला रत्न भी माना जाता है। नीलम को शनि ग्रह से जुड़ा रत्न माना जाता है। इसे मध्यमा यानी मिडिल फिंगर में धारण किया जाता है। नीलम काफी संवेदनशील रत्न माना जाता है। माना जाता है कि इसे धारण करने के बाद अचानक या तेजी से धन लाभ होता है। नीलम के प्रभाव से करियर का ग्राफ तेजी से चढ़ता है। धारण करने वाले जातक में कर्मठता बढ़ती है। नीलम को शनिवार के दिन धारण करने की सलाह दी जाती है। मान्यता है कि नीलम साढ़े साती के दुष्प्रभाव को भी कम करता है।
1: शनि को स्ट्रांग करने के लिए आपको नीलम धारण करना है, लेकिन प्लैटिनम में, व्हाइट गोल्ड में, आप इसको गोल्ड में धारण नहीं करेंगे। और शनि आपके जीवन में कहीं ना कहीं करियर को बूस्ट करता है, आपके जीवन में स्टेबिलिटी लाता है, क्योंकि आपकी काल पुरुष की कुंडली में शनि दशम भाव मकर राशि और कुंभ राशि के स्वामी है, लाभ भाव के स्वामी, आपके जीवन के लाभ के मार्ग को प्रशस्त करता है। जो लोग बिजनेस में, बिजनेस बेसिकली लैंड का बिजनेस कर रहे हैं, लोहे का बिजनेस कर रहे हैं, मैन्युफैक्चरिंग के क्षेत्र से जुड़े हुए हैं, और आपकी कुंडली में शनि वीक है और वेल प्लेस्ड, वेल हाउसेस को, गुड हाउसेस को दिखाता है, आप इसको पहन सकते हैं।
0: हीरा को शुक्र ग्रह से जुड़ा रत्न माना जाता है, इसे भी मध्यमा उंगली में धारण किया जाता है। हीरा विलासिता, फैशन और ब्यूटी व्यवसाय में सफलता का कारक माना जाता है। कला और मनोरंजन के क्षेत्र से जुड़े लोगों के लिए ये विशेष तौर पर लाभकारी माना जाता है। हीरा को शुक्रवार के दिन धारण करने की सलाह दी जाती है। हीरा धारण करने से सामाजिक प्रतिष्ठा और जीवन स्तर में बढ़ोतरी की भी मान्यता है। मोती को चंद्रमा से जुड़ा रत्न माना जाता है, इसे कनिष्ठिका उंगली में धारण किया जाता है। ज्योतिषीय मान्यताओं के मुताबिक मोती मानसिक शांति और स्थिरता प्रदान करने वाला रत्न है। मोती धारण करने वाले जातकों की मानसिक स्थिरता बढ़ने की वजह से लोक व्यवहार में सुधार होता है। मोती को सोमवार के दिन धारण करने की सलाह दी जाती है। मान्यता है कि मोती जनसंपर्क और लोकप्रियता में बढ़ोतरी का कारक है। मूंगा का संबंध मंगल ग्रह से माना जाता है, इसे अनामिका यानी रिंग फिंगर में धारण किया जाता है। मूंगा साहस और पराक्रम बढ़ाने वाला रत्न माना गया है। ज्योतिषीय मान्यताओं के मुताबिक मूंगा धारण करने से भूमि, संपत्ति और रियल एस्टेट के कारोबार में सफलता मिलती है। मूंगा को मंगलवार के दिन धारण करने की सलाह दी जाती है। मूंगा वर्दी वाली नौकरी में उत्थान और खेल जगत में सफलता दिलाने वाला रत्न भी माना जाता है। गोमेद का संबंध राहु ग्रह से माना जाता है, इसे मध्यमा उंगली में धारण किया जाता है। ज्योतिषीय मान्यताओं के मुताबिक गोमेद धारण करने से अचानक धन लाभ का योग बनता है, विदेश व्यापार या शेयर बाजार में सफलता मिलती है। गोमेद को शनिवार के दिन धारण करने की सलाह दी जाती है। मान्यता है कि राहु की महादशा में गोमेद धारण करने से अनिष्ट दूर हो जाते हैं। लहसुनिया का संबंध केतु ग्रह से माना जाता है, इसे मध्यमा यानी मिडिल फिंगर में धारण किया जाता है। लहसुनिया आध्यात्मिक उथल पुथल के दौर में विशेष लाभकारी माना जाता है। इसे धारण करने से आध्यात्मिक उन्नति होती है और दुर्घटना का दुर्योग नष्ट होता है। लहसुनिया को मंगलवार के दिन धारण करने की सलाह दी जाती है। मान्यता है कि तंत्र मंत्र की साधना करने वाले लोगों के लिए लहसुनिया रत्न विशेष तौर पर लाभकारी सिद्ध होता है। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार हर रत्न का प्रभाव या असर दिखाने का समय एक दूसरे से अलग होता है। ज्योतिषीय मान्यताओं के अनुसार कुछ रत्न धारण करने के 5 से 7 दिनों के भीतर असर दिखाना शुरू कर देते हैं, जबकि कुछ रत्नों को अपना असर दिखाने में 10 से 15 दिन का समय लग जाता है। रत्न काम कर रहा है कि नहीं, इसकी पहचान धारण करने वाले जातक को कई संकेतों के जरिए होने लगती है। रत्न अगर सही काम कर रहा है तो सबसे पहले मन शांत होने लगता है, तनावों में मन विचलित नहीं होगा, नींद बेहतर होगी, बड़े से बड़ा फैसला लेने में दिक्कत नहीं महसूस होगी, मानसिक और शारीरिक स्तर पर सकारात्मक ऊर्जा महसूस होने लगती है।
2: और चलिए इसी के साथ हमारी जीएनटी स्पेशल की आज की इस बेहद खास पेशकश में फिलहाल के लिए इतना ही। देश और दुनिया की अच्छी और पॉजिटिव खबरें दिन भर जा रही हैं, देखते रहिए गुड न्यूज़ टुडे।

कभी रफ्तार से दौड़ती हैं, तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती हैं, तो कुछ दिखाती हैं विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है, तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं, तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज़ पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।

0: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को।
1: Yeah.

0: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबर।
1: कब कोई व्यक्ति जीवन में सही निर्णय ले पाता है, कब व्यक्ति के द्वारा लिए गए निर्णय गलत होते हैं, किन ग्रहों का प्रभाव आपके निर्णय पर पड़ता है और सही निर्णय लेने के उपाय क्या हैं, जानिए मेरे साथ सिर्फ किस्मत कनेक्शन में।
2: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
3: और दुर्भाग्य कहता है
4: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
5: अविश्वास में विश्वास बसता है,
2: जो हम में अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
6: गुड न्यूज टुडे।
2: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे। देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
0: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
7: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
0: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को।
8: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाए स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा प्यार से परोसा।
9: मौसम की चुनौतियों के बीच हेमकुंड साहिब यात्रा में रौनक, अब तक 2.5 लाख से ज्यादा श्रद्धालुओं ने टेका मत्था, 10 अक्टूबर तक जारी रहेगी पवित्र यात्रा। सावन के पवित्र महीने में दिख रहे हैं शिव भक्ति के अनोखे रंग, मुंगेर में भव्य कांवड़ यात्रा बनी आकर्षण का मुख्य केंद्र, श्रद्धालु बैद्यनाथ धाम में करेंगे जलाभिषेक। महाराष्ट्र में गणेशोत्सव की तैयारियां तेज, अकोला में बप्पा की प्रतिमाओं को अंतिम रूप दे रहे हैं कारीगर, 14 सितंबर से शुरू होगा उत्सव। उत्तर प्रदेश के कई जिलों में बाढ़ जैसे हालात, वाराणसी से लेकर प्रयागराज तक बढ़ा नदियों का जलस्तर, अलर्ट मोड में आया प्रशासन। चीन में ह्यूमनॉइड रोबोट्स की नुमाइश, बीजिंग में वर्ल्ड रोबोट कॉन्फ्रेंस का आगाज, मार्शल आर्ट्स का गुण दिखाते नजर आए रोबोट।
0: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोग।
9: देश में रेल नेटवर्क का होगा विस्तार, केंद्रीय कैबिनेट ने 4 मल्टी ट्रैकिंग परियोजनाओं को दी मंजूरी। पश्चिम बंगाल, ओडिशा, तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश के 8 जिलों को कवर करेगी परियोजना, रेल नेटवर्क में करीब 410 किलोमीटर की होगी वृद्धि। पश्चिम बंगाल के खड़गपुर से ओडिशा के भद्रक और भद्रक से हरिदासपुर के बीच बनेगी 4थी लाइन। आंध्र प्रदेश के गुम्मी डिपुंडी और तमिलनाडु के गुडूर के बीच में बनेगी 90 किलोमीटर की लंबी रेल लाइन। 4 मल्टी ट्रैकिंग रेल परियोजनाओं के निर्माण पर 9,450 करोड़ रुपए खर्च आने का अनुमान, परियोजनाओं को 2030-31 तक पूरा करने का लक्ष्य। बिहार के मुजफ्फरपुर, सीतामढ़ी, सोनबरसा को मिलेगी 4-लेन हाईवे की सौगात। 82 किलोमीटर लंबे इस हाईवे का हाइब्रिड एनयूटीडी मॉडल किया जाएगा विकास, 3,590 करोड़ की लागत से अपग्रेड किया जाएगा हाईवे। हाईवे अपग्रेड होने से इलाके में कनेक्टिविटी हो जाएगी और बेहतर, साथ ही व्यापार और आर्थिक गतिविधियों को भी मिलेगा बढ़ावा। दिल्ली में आयोजित उत्तर प्रदेश जापान इन्वेस्टमेंट मीट में बोले रेल मंत्री, देश में चल रहा दुनिया का सबसे बड़ा रेलवे स्टेशन निर्माण कार्यक्रम, 1300 से ज्यादा स्टेशनों का किया जाएगा पुनर्निर्माण। तमिलनाडु के महाबलीपुरम के कल्ला सौदन जोनल काउंसिल की बैठक, केंद्रीय मंत्री अमित शाह करेंगे अध्यक्षता। जापानीज प्रतिनिधिमंडल की उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मुलाकात, नवीश को लेकर दिखा उत्साह। उत्तर प्रदेश और यामानाशी के बीच बड़ी डील हुई, 4000 करोड़ के ग्रीन हाइड्रोजन और 2029 करोड़ के एस्कॉर्ट्स कुबोटा निवेश। इस मीट में जापान के 200 से ज्यादा उद्योगपति, सीईओ, बिजनेसमैन, लीडर्स शामिल हुए। 22 अगस्त को काशी विश्वनाथ के दर्शन करेगी जापानीज प्रतिनिधिमंडल, उत्तर प्रदेश जापान इन्वेस्टमेंट मीट 2026 कार्यक्रम का हिस्सा है यह दौरा। एनएचएआई ने 121 टोल प्लाजा पर शुरू की ऑनलाइन फास्टैग लोकल पास। गोल्ड टेस्ट भारत की शानदार जीत हुई, यहां पर टीम इंडिया ने श्रीलंका को 165 रनों से करारी शिकस्त दी। मानव सुधार ने अपने करियर के दूसरे ही टेस्ट में रच दिया इतिहास, 10 विकेट लेने का किया कारनामा, पहली पारी में 4 विकेट, दूसरी पारी में 6। टेस्ट इतिहास में भारत की श्रीलंका पर लगातार 9वीं जीत, 2015 के बाद भारत के खिलाफ श्रीलंका को कोई टेस्ट जीत नसीब नहीं हुई। ये भारत का 600वां टेस्ट था, इस जीत के साथ 2 टेस्ट की सीरीज में भारत को 1-0 से बढ़त। इस जीत के साथ भारत को वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के पॉइंट्स टेबल में मिल गई बड़ी राहत, अब भारत 10 मैच में 5 जीत 4 हार और 1 ड्रॉ के साथ 5वें पायदान पर। मैन्स हॉकी वर्ल्ड कप में आज भारत पाकिस्तान के बीच होने जा रहा महामुकाबला, वैगनर हॉकी स्टेडियम में खेला जाएगा पूल डी का यह मुकाबला। पिछले 10 साल से पाकिस्तान के खिलाफ अजेय है टीम इंडिया, दोनों टीमों के बीच हुए हैं 19 मैच, इसमें 17 मैच भारत जीता जबकि 2 ड्रॉ रहे। पहला हॉकी विश्व कप में भारत की शानदार जीत, दक्षिण अफ्रीका को 6-1 के बड़े अंतर से मात दी, टूर्नामेंट में भारत की पहली और अब तक की सबसे बड़ी जीत। भारत की ओर से नवनीत कौर, सुनीलिता टोपो, सुशीला चानू नजर आएंगे। भारतीय टीम ने दर्ज की टूर्नामेंट की अपनी पहली और अब तक की सबसे बड़ी जीत, भारत ने अपने पहले मुकाबले में चीन के साथ 2-2 से ड्रॉ किया था। बैडमिंटन वर्ल्ड चैंपियनशिप में लक्ष्य सेन की शानदार जीत, लक्ष्य ने पहले दौर में ऑस्ट्रेलिया के कॉलिंस को 16-21, 21-8, 21-4 से हराया। लक्ष्य सेन ने पहला गेम हारने के बाद की शानदार वापसी, दूसरा और तीसरा गेम जीतकर अपने नाम किया मैच। महिला डबल्स मुकाबले में प्री क्वार्टर फाइनल में पहुंची भारत की त्रिशा और गायत्री, मैच 39 मिनट में त्रिशा जॉली और गायत्री ने जीत लिया मुकाबला। वीनस विलियम्स को मिला यूएस ओपन का वाइल्ड कार्ड, 40 की उम्र में खेलेंगी 7 बार की ग्रैंड स्लैम चैंपियन वीनस। महाराष्ट्र के अकोला में दिखने लगी है गणपति उत्सव की रौनक, गणपति महोत्सव के लिए अकोला में विशाल गणपति प्रतिमाएं तैयार कर रहे हैं कलाकार। गणपति प्रतिमाओं को अंतिम रूप देने में जुटे हुए कलाकार, 5 फीट से 30 फीट तक की बनाई जा रही हैं अद्भुत प्रतिमाएं। उत्तराखंड में जारी बारिश के बीच पवित्र हेमकुंड साहिब के श्रद्धालुओं का जोश लगातार है, इस साल अब तक 2,62,000 से ज्यादा श्रद्धालुओं ने का मत था। मुश्किल रास्ता और अनिश्चित मौसम के बीच भी श्रद्धालुओं का जोश है। बर्फीले रास्तों से करीब 19 किलोमीटर की पैदल यात्रा और पवित्र सरोवर में स्नान करने के बाद हेमकुंड साहिब में मत्था टेकते हैं श्रद्धालु, 10 अक्टूबर तक जारी रहेगी यात्रा। भारत की मशहूर मिथिला चित्रकला ने बनाया विश्व रिकॉर्ड, 108 मीटर लंबे कैनवस पर लिखे रामचरितमानस के प्रसंग। इस विशाल कलाकृति को तैयार करने में मिथिला चित्रकला संस्थान से जुड़े 180 छात्र छात्राओं ने हिस्सा लिया, दिल्ली में हुआ कार्यक्रम। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार रामायण काल में हुई थी इसकी शुरुआत, जब राजा जनक ने सीताराम के विवाह पर दीवारों पर चित्र बनवाने का दिया था निर्देश। धनबाद की दो बहनों को मिला गिनीस गोल्ड मेडल, ऑनलाइन श्लोकों का पाठ कर बनाया रिकॉर्ड। प्रांजल और आनिया मित्तल की इस उपलब्धि पर परिवार में खुशी की लहर, मां बचपन से उन्हें सिखाया है गीता का पाठ। राजौरी का गवर्नमेंट हायर सीनियर सेकेंडरी स्कूल बना एजुकेशन मॉडल, स्मार्ट क्लासेस के जरिए पढ़ रहे हैं छात्र। आधुनिक लैब और बाकी सभी सुविधाओं से लैस पूरी तरीके से स्कूल, पढ़ाई में बच्चों की रुचि जगाना मकसद। भारत पाक सीमा पर अब आसमान से आने वाले हर एक खतरे का जवाब देगा बीएसएफ, जवानों को दी जा रही है ड्रोन उड़ाने और एंटी ड्रोन सिस्टम का इस्तेमाल करने की ट्रेनिंग। सुकमा पुलिस की बड़ी सफलता, जंगल में डंप नक्सली सामग्री बरामद, नक्सलियों ने चिंतल नार के जंगलों में छुपा रखा था विस्फोटक। दिल्ली पुलिस की संपर्क सभा और संवाद कार्यक्रम का आयोजन हुआ, पुलिस कर्मियों और अधिकारियों के बीच बेहतर तालमेल मकसद। सावन के महीने में लगातार दिख रहे हैं कांवड़ यात्रा के अद्भुत रंग, अलग अलग आकार स्वरूप में नजर आ रही है कांवड़। विशाल कांवड़ों में सजी भगवान विष्णु, श्री राम और महाकाल की भव्य प्रतिमाएं। शिक्षक बनने की मन्नत लेकर कठिन यात्रा कर रही 11 साल की प्रियंका, पहली बार दंडवत यात्रा कर रही है प्रियंका। पावन महीने में बरेली में प्रशासन, स्थानीय समितियों और विभिन्न सामाजिक संगठनों द्वारा कांवड़ियों का किया जा रहा भव्य स्वागत, हेलीकॉप्टर से पुष्प वर्षा। कांवड़ियों के लिए जगह जगह फलाहारी भंडारी और विश्राम शिविरों का भी प्रबंध। पूरी श्रद्धा के साथ जारी है जम्मू कश्मीर के पुंछ जिले में स्थित प्राचीन बाबा बूढ़ा अमरनाथ की 12 दिवसीय वार्षिक यात्रा। पुंछ पहुंचा बूढ़ा अमरनाथ का दूसरा जत्था, जत्थे में देश विदेश के कुल 1938 भक्त शामिल हुए। मंडी बेस कैंप में फूलमाला पहनाकर किया यात्रियों का स्वागत, बम बम भोले के जयकारों से भक्तिमय हुआ माहौल। यात्रियों की सुविधा के लिए लगाए गए हैं खाने पीने के स्टॉल्स, भक्तों की यात्रा सुगम और सफल बनाने के लिए हर संभव कोशिश कर रहा है प्रशासन। 28 अगस्त तक जारी रहेगी आस्था की ये यात्रा, रक्षाबंधन के दिन होगा 12 दिवसीय यात्रा का समापन। राजस्थान के पाली में बिजली के हाई वोल्टेज तार में फंसे विदेशी पक्षी का सहायक रेस्क्यू। वोल्टेज तार में बिजली बंद कराने के बाद बिजली कर्मचारियों ने 200 फीट ऊपर तार पर चढ़कर विदेशी पक्षी की जान बचाई। बिजली की अर्थिंग लाइन में फंसे पक्षी को सुरक्षित निकालने के बाद इलाज के लिए वन विभाग को सौंपा गया। तिरुवनंतपुरम के चिड़ियाघर में शेर के शावकों सिम्बा और सूरी को मिला नया बाड़ा, अपने नए इलाके में मस्ती करते हुए नजर आए शावक। उत्तर प्रदेश के कई जिलों में बाढ़ जैसे हालात, वाराणसी से लेकर प्रयागराज तक बढ़ा नदियों का जलस्तर, अलर्ट मोड में प्रशासन। देशभर में गणेश उत्सव की तैयारियां तेज, तमिलनाडु के तिरुचिरापल्ली में बनाई जा रही है इको फ्रेंडली गणेश जी की प्रतिमाएं। हर आकार और स्वरूप में बप्पा की कलाकृतियां बनाने में जुटे हुए कलाकार, भक्ति के साथ पर्यावरण संरक्षण का संदेश। उधम सिंह नगर में दिख रही है राखी की त्योहार की रौनक, घर से दूर बैठे भाइयों तक राखी बेचने डाकघर में उमड़ी बहनें, लगी लंबी कतारें। राखी बेचने वाली महिलाओं को किसी तरह की परेशानी ना हो इसके लिए डाक विभाग ने भी विशेष व्यवस्थाएं की, राखी बेचने के लिए अलग काउंटर्स। राखी बेचने वालों में हर आयु वर्ग की महिलाएं भी शामिल हैं। देश भर में 28 अगस्त को मनाया जाएगा भाई बहन का पवित्र त्योहार। हिमाचल में 21 अगस्त तक बारिश का दौर जारी रहने की संभावना, बिलासपुर, कांगड़ा, मंडी और सिरमौर में बारिश का ऑरेंज अलर्ट। चित्रकूट में लगातार बारिश, तूफान पर नदी नाले, जनजीवन अस्त व्यस्त, बंद किए गए 8वीं तक के स्कूल्स। प्रयागराज में बारिश के पानी में डूबा रेलवे ट्रैक, कई ट्रेन प्रभावित, यात्री हुए परेशान। श्रावस्ती में राप्ती नदी ने दिखाया रौद्र रूप, खतरे के निशान से 30 सेंटीमीटर ऊपर पहुंचा जलस्तर, तटवर्ती इलाकों में बाढ़ को लेकर अलर्ट। उत्तराखंड के पौड़ी गढ़वाल में भारी बारिश के बाद भूस्खलन, रेस्क्यू ऑपरेशन तेज। यश की फिल्म टॉक्सिक का काउंटडाउन हो गया शुरू, 21 अगस्त से शुरू होने जा रही एडवांस बुकिंग, फिल्म की रिलीज में महज 8 दिन शेष। बॉक्स ऑफिस पर चला वारापन 2 का जादू, लगातार मजबूत पकड़ बनाए हुए है 100 करोड़ का आंकड़ा पार। दर्शकों को इम्प्रेस नहीं कर पाई सनी देओल की बंटवारा, 1947 पांच दिन में महज 31 करोड़ के करीब पहुंच पाई है फिल्म। अक्षय उबराय और हैली दारूवाला स्टारर लव स्टोरी का टीजर हुआ रिलीज, 18 सितंबर को दस्तक देगी फिल्म। मुंबई के गुड़गांव में बने अफगानिस्तान के सेट पर जारी है सलमान खान की अगली फिल्म SVC 63 की शूटिंग। फ्रांस के एस्ट्रोनॉट सूफी ने पहली बार स्पेस वॉक करके रच दिया इतिहास, उन्होंने ISS के बाहर नासा के एस्ट्रोनॉट अनिल मेनन के साथ किया काम। सूफी और अनिल को स्पेस स्टेशन का एक जरूरी एंटीना बदलना था और इस एंटीना से धरती और स्पेस स्टेशन के बीच तेज कम्युनिकेशन होता है। दोनों एस्ट्रोनॉट्स ने मंगलवार सुबह स्पेस वॉक शुरू करना शुरू कर दिया, मकसद था पुराने एंटीने को बदलना। मिशन में हुई देरी के कारण पूरी नहीं हो सका काम, एस्ट्रोनॉट ने एंटीना को सुरक्षित तरीके से जोड़कर वापस स्पेस स्टेशन में प्रवेश किया। ये एंटीना स्पेस स्टेशन और नासा के ह्यूस्टन कंट्रोल सेंटर के बीच भेजता है डेटा। बॉलीवुड स्टार मर्लिन मुनरो के 100वें जन्मदिन पर खास बाबी डॉल हुई लॉन्च। बाबी ने मर्लिन का आइकॉनिक हॉट पिंक ड्रेस वाला अंदाज अपनाया, ड्रेस पर बड़ा बो और साथ में चमकते डायमंड्स नजर आए। मैटल ने मर्लिन मुनरो को सम्मान देने के लिए अब तक 7 बाबी डॉल्स बनाई हैं। मर्लिन का जन्म 1 जून 1926 को लॉस एंजलिस में हुआ था, कई मशहूर फिल्मों में काम किया। $81 में मिलेगी ये खासा डॉल, मर्लिन की याद में बनी बाबी डॉल 18 अगस्त से बिक्री के लिए तैयार। चीन में आसमान बना समंदर, 5,000 ड्रोन ने मछलियों और समुद्री जीवों की आकृतियां बनाकर रात के आसमान में रोशनी जगाई। हजारों ड्रोन से एक साथ उड़कर अलग अलग फॉर्मेशन बनाते हुए नजर आए। ड्रोन शो की थीम मशहूर कहानी 20,000 लीग्स अंडर द सी पर रखी गई। ड्रोन ने उड़ते हुए समुद्री जीवों की बड़ी बड़ी तस्वीरें उकेरी, आसमान में देखी पानी के अंदर की दुनिया। चीन के चोंगचिंग में शो ने रात को बहुत खूबसूरत बना दिया रोशनी और ड्रोन के कमाल को देखने के लिए हजारों लोग पहुंचे। चीन की होकौ झरने के पास 1,000 से ज्यादा पर्यटकों ने मिलकर गाया गीत। लोगों की आवाज ने माहौल को बनाया और खास। गीत सुनकर वहां से गुजर रहे पर्यटक खुद को रोक नहीं पाए, गीत गाने में शामिल होकर बढ़ाया जोश।

0: 1947 में बना था येलो रिवर रा कैंटाटा गीत, ये गाना चीन के संघर्ष और एकता की मिसाल। होको झरने की विशाल घाटी को इस कार्यक्रम में प्राकृतिक मंच की तरह इस्तेमाल किया गया। नदी का तेज बहता पानी मानो गीत के साथ संगीत दे रहा था। इस जगह पर नदी की चौड़ाई करीब 300 से 400 मीटर घटकर 50 मीटर से मट गई। चीन के हुबेई प्रांत में इन दिनों राफ्टिंग का रोमांच जारी है। गर्मी से राहत पाने के लिए बड़ी संख्या में पहुंच रहे हैं लोग। करीब 6.5 किलोमीटर लंबा है यह राफ्टिंग ट्रैक। इस दौरान पानी का स्तर कुल 148 मीटर तक नीचे जाता है। ऑफ रोड रेसिंग, जंगल एडवेंचर, घूमने और आउटडोर एक्टिविटीज का भी पर्यटक उठा रहे हैं लुत्फ। साल 2006 में हुई थी यहां राफ्टिंग की शुरुआत, तब से अभी तक जारी है सिलसिला। यहां रोमांच के साथ साथ जंगल और प्राकृतिक नजारों का भी अद्भुत आनंद।
1: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को।
2: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।
3: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती हैं तो कुछ दिखाती हैं विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं, तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
1: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को।
0: देखिए, श्रीनगर की खूबसूरत वादियों में अमेरिकी राजदूत सर्जियो गोर ने शिकारा राइड का आनंद लिया। डल झील की शांत लहरों के बीच शिकारा पर सवार सर्जियो गोर कश्मीर की प्राकृतिक खूबसूरती को निहारते हुए नजर आए। शिकारा राइड के दौरान उन्होंने डल झील के मनमोहक दृश्य का लुत्फ उठाया। चारों तरफ पहाड़, झील का शांत पानी और शिकारा की सवारी ने इस पल को और भी ज्यादा खास बना दिया। सर्जियो गोर की ये तस्वीरें कश्मीर की खूबसूरती और उसकी मेहमान नवाजी की खूबसूरत झलक पेश जरूर करती है। कश्मीर आने वाले पर्यटकों के लिए डल झील और शिकारा राइड हमेशा से खास आकर्षण का केंद्र रहे हैं। बीजापुर, कभी इस नाम के साथ बंदूक, नक्सलवाद और दहशत की तस्वीर जुड़ी हुई होती थी, लेकिन अब इसी बीजापुर की एक नई तस्वीर निकलकर सामने आ रही है। जहां पर जाने से लोग डरते थे, वहां अब सैलानियों की आवाजाही बढ़ रही है। घने जंगल, पहाड़ों से गिरते झरने और बस्तर का देसी स्वाद पर्यटकों को अपनी ओर लगातार आकर्षित कर रहा है। यानी बीजापुर में अब डर नहीं है, बदलाव की कहानी लिखी जा रही है।
4: परिस्थितियां बदली और फिर एक दौर ऐसा आया जिसने तस्वीर ही बदल दी। जब बात छत्तीसगढ़ की होती थी तो जेहन में नक्सलवाद, बंदूक और दहशत की तस्वीरें उभरती थी, लेकिन अब वक्त बदल रहा है, हालात बदल रहे हैं और इसी बदलाव की गवाही दे रहा है बीजापुर। जहां कभी जाने से लोग डरते थे, आज वहीं दूर दूर से सैलानी पहुँच रहे हैं। घने जंगल, ऊँची पहाड़ियाँ और पहाड़ों से गिरता झरना, कुदरत का ये नजारा पर्यटकों को अपनी ओर खींच रहा है। बीजापुर पहुंचने वाले पर्यटकों के लिए यहाँ सिर्फ खूबसूरत नज़ारे ही नहीं बल्कि स्थानीय स्वाद का मजा लेने का मौका भी है।
5: अभी यहाँ पे 27 लोग है समूह में, तो हम लोग आधे लोग को गाइड करने के लिए भेजते हैं, आधे लोग को किचन जिम्मेदार दिए हैं और आधे लोग टिकट काटने के लिए, और 2-3 लोग को टिकट चेकिंग के लिए भी दिए हैं।
6: देख रहे कि आपका ये किचन भी छोटा किचन सेटअप ये किसके लिए है?
5: तो एक किचन हम लोग इसलिए यहाँ पे बनाए कि जो भी टूरिस्ट आते हैं दूर दूर से, थोड़ा सा खाना उना उनका उनके लिए व्यवस्था हो जाए, तो इस टाइप का बनाए हैं। तो एक प्लेट का 120 रुपये लेते हैं प्रति व्यक्ति का।
4: 120 रुपए की प्लेट पे लोग लोकल फूड का स्वाद चख रहे हैं, यानी घूमना भी, खाना भी और बस्तर की संस्कृति को करीब से महसूस करना भी। पर्यटकों की मदद के लिए करीब 28 लोगों की गाइड टीम भी मौजूद है, जो उन्हें आसपास के इलाकों की सैर कराती है और रास्ते से लेकर घूमने तक हर कदम पर मदद करती है।
7: 2025 से थोड़ा सा डेवलपमेंट हो गया।
6: उससे पहले कैसा था यहाँ का मंजर, कैसा हुआ करता?
7: उससे पहले सर यहाँ कोई आप जैसे कि कोई भी आ जाते हैं नया, कोई दूसरे स्टेट से भी आते हैं या फिर छत्तीसगढ़ से भी, जो इंसान जो भी आएगा तो सर उनके लिए पूछताछ ये सारा चीज, मतलब उतना इधर बहुत डर था सर, डर का माहौल।
6: नक्सली लोग यहाँ वाटरफॉल पर ले जाने से
7: सर वो लोग यही बोलते थे कि नहीं ये लोगों को इधर घुसने मत दो।
6: ऐसा
7: जी,
6: तो वाटरफॉल तक जाने की पाबंदी रहती थी?

0: बंदूक और दहशत की पहचान से निकलकर बीजापुर अब पर्यटन और बदलाव की नई कहानी लिख रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
1: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें।
2: कब कोई व्यक्ति जीवन में सही निर्णय ले पाता है, कब व्यक्ति के द्वारा लिए गए निर्णय गलत होते हैं, किन ग्रहों का प्रभाव आपके निर्णय पर पड़ता है और सही निर्णय लेने के उपाय क्या हैं, जानिए मेरे साथ सिर्फ किस्मत कनेक्शन में।
3: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
4: और दुर्भाग्य कहता है
5: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
6: अविश्वास में विश्वास बसता है,
7: जो हम में अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
8: गुड न्यूज टुडे।
9: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे। देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे में।
1: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
10: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
3: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।

0: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, मार इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे। अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
1: देश देख रहा है अच्छी खबरें,
2: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट, कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच, HRIT यूनिवर्सिटी गाजियाबाद, शेपिंग फ्यूचर, क्रिएटिंग लीडर्स।
3: मौसम की चुनौतियों के बीच हेमकुंड साहिब यात्रा में रौनक, अब तक 2.5 लाख से ज्यादा श्रद्धालुओं ने टेका मत्था। 10 अक्टूबर तक जारी रहेगी पवित्र यात्रा। सावन के पवित्र महीने में दिख रहे शिव भक्ति के अनोखे रंग, मुंगेर में भव्य कांवड़ यात्रा बनी आकर्षण का केंद्र, श्रद्धालु बैद्यनाथ धाम में करेंगे जलाभिषेक। महाराष्ट्र में गणेशोत्सव की तैयारियां तेज, अकोला में बप्पा की प्रतिमाओं को अंतिम रूप दे रहे कारीगर, 14 सितंबर से शुरू होगा उत्सव। जम्मू कश्मीर के दौरे पर अमेरिकी राजदूत सर्जियो गोर, श्रीनगर की डल लेक में की शिकारा की सवारी, घाटी के मेहमान नवाजी से हुए मुरीद। यूपी के कई जिलों में बाढ़ जैसे हालात, वाराणसी से लेकर प्रयागराज तक बढ़ा नदियों का जलस्तर, अलर्ट मोड में आया प्रशासन।
0: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, मार इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे। अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है।
3: नमस्कार, मैं हूं आपके साथ श्वेता झा। शाम के 7 बज चुके हैं और 7 गुड न्यूज के साथ हम हाजिर हैं। हम आपको आज की 7 गुड न्यूज के बारे में बताएंगे और सबसे पहले बात आज की सबसे बड़ी गुड न्यूज की। मुंबई में गणेश उत्सव की रौनक अभी से बिखरने लगी है, हालांकि अभी गणेश उत्सव

0: में समय है, लेकिन मुंबई की सड़कों पर उत्सव और उल्लास दिखने लगा है। ऐसे में आज की जो हमारी पहली गुड न्यूज है वो इसी से जुड़ी है। गणेशोत्सव से पहले पंडाल में बप्पा का आगमन। जी हाँ, आपको बता दें कि मुंबई के काला चौकी गणेश मंडल के पंडाल में बप्पा की प्रतिमा का शानदार और भव्य स्वागत किया गया। इस दौरान भक्तों का उत्साह और उल्लास देखने लायक था।
1: ताशु की थाप पर झूमते श्रद्धालु, आस्था का उमड़ता समंदर और बाप्पा के स्वागत में उमड़ा सैलाब। तस्वीरें मुंबई के काला चौकी इलाके की हैं, जहां अभी से बाप्पा के स्वागत में भक्त झूम रहे हैं, नाच रहे हैं और पूरी तरह से बाप्पा की भक्ति में सराबोर हैं। महालक्ष्मी जी के पावन अवतार में ढली 22 फीट ऊंची बप्पा की ये दिव्य प्रतिमा जैसे ही कारखाने से बाहर निकली, भक्तों का सैलाब साथ दर्शन के लिए उमड़ पड़ा।
2: बड़े बड़े पंडाल अपने बप्पा को अपनी जगह पर लेकर आना शुरू हो चुके हैं। फिलहाल इस समय मौजूद हूं साउथ मुंबई के काला चौकी के महागणपति के दरबार में, और आप देखें बहुत ही सुंदर भव्य तरीके से बप्पा को यहाँ पर विराजमान कर दिया गया है। आपको बताएं कि महालक्ष्मी के अवतार में गणपति बप्पा को ले आया गया है।
1: गणेशोत्सव शुरू होने में भले ही अभी कुछ दिनों का वक्त बचा हो, लेकिन इस बार भी उत्सव कितना भव्य होगा इसका अंदाजा इन्हीं तस्वीरों को देख कर लगाया जा सकता है।
2: इन बप्पा की 22 फीट की ऊंचाई है, ट्रॉली से सिंह पर बकायदा बप्पा सवार हैं, और खास बात यह है कि जो ट्रॉली रखी गई है जिस जगह पे, उसके नीचे बहुत ही सुंदर तरीके से रंगोली भी निकाली गई है, बनाई गई है, ठीक उसके ऊपर बप्पा को विराजमान करा गया है। बहुत सारे तस्वीरें, बहुत सारे वीडियोस सोशल मीडिया पर बप्पा के आगमन को लेकर के वायरल हुए थे, जिसमें हजारों की तादाद में जो गणेश भक्त हैं वो जुटे हुए थे और हर कोई बप्पा का स्वागत कर रहा था।
1: 14 सितंबर को पूरे देश के साथ साथ मुंबई में गणेश उत्सव की धूम मचेगी, लेकिन काला चौकी और आसपास का ये पूरा इलाका अभी से गणेश उत्सव के रंग में रंग चुका है। काला चौकी के गणेश पंडाल में बप्पा का आगमन हो चुका है, अब यहाँ प्रतिमा की सजावट का काम होगा और 14 सितंबर से आस्था के उत्सव का एक शानदार नजारा यहाँ देखने को मिलेगा।
3: हर साल स्वरूप महागणपति का बदलता है, कभी महागणपति पांडुरंग विट्ठल के रूप में आते हैं, कभी सरस्वती के रूप में आते हैं, कभी भोले शंकर के रूप में आते हैं, तो कभी कान्हा नटखट बन के आते हैं। ये साल महालक्ष्मी का रूप, यानी महालक्ष्मी यानी क्या, स्थैर्य, शांति, संपत्ति, जो आजकल हर एक को आशीर्वाद के रूप में महागणपति देने आ रहे आ गए हैं, और इसी का जो हमारी झांकी बनेगी, डेकोरेशन बनेगा, वो भी उसी का एक कोल्हापुर के महालक्ष्मी मंदिर का जो कंपोनेंट्स है, जो छवि है, वही आपको देखने को मिलेगी।
1: ये वही इलाका है जहां लालबागचा राजा जैसे देश विदेश में प्रसिद्ध मंडल मौजूद हैं। ऐसे में काला चौकी के महागणपति का ये भव्य आगमन तो बस एक शुरुआत है। आने वाले दिनों में जब लालबाग से लेकर गिरगांव चौपाटी तक बप्पा विराजेंगे, तो मुंबई का ये भक्तिमय उल्लास पूरी दुनिया को अपनी ओर आकर्षित करेगा। मुंबई से धर्मेंद्र दुबे के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
0: केदारनाथ और अमरनाथ की यात्रा में श्रद्धालुओं को बर्फीले पहाड़, दुर्गम चढ़ाई और मुश्किल रास्तों का सामना करना पड़ता है, लेकिन उत्तर प्रदेश के पीलीभीत में भी एक ऐसा शिव धाम है जहां भोलेनाथ के दर्शन के लिए भक्तों को नदी और उसके किनारे बसे घने जंगलों से भरे रास्ते से गुजरना पड़ता है। हम बात कर रहे हैं बाबा इकहत्तरनाथ की, जहां सावन में भारी भीड़ उमड़ती है। ऐसे में आज की हमारी अगली यानी कि जो दूसरी गुड न्यूज है वो है सावन में इकहत्तरनाथ के दरबार में आस्था अपार। यूपी के पीलीभीत जिले में गोमती नदी के किनारे जंगल के बीचों बीच बाबा इकहत्तरनाथ धाम है, जहां की सबसे खास बात है भगवान को चढ़ाए जाने वाला हैंडपंप, जो मन्नत पूरी होने पर भक्त भगवान को चढ़ाते हैं।

0: उत्तर प्रदेश के पीलीभीत में एक ऐसा मंदिर है जहां सावन के महीने में श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ती है। मंदिर पूरनपुर तहसील क्षेत्र में है और यहां पुन्नापुर टांडा गांव के पास घने जंगलों के बीच मौजूद है बाबा इकहत्तरनाथ धाम, जहां पर मौजूद शिवलिंग का जलाभिषेक करने के लिए बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुँचते हैं। घने जंगलों में मौजूद इस मंदिर तक पहुंचने का रास्ता आसान नहीं है। यहां भक्तों को पहुंचने के लिए घने जंगलों के बीच से गुजरना पड़ता है। कोई जंगल के रास्ते से मंदिर पहुंचता है तो कोई गोमती नदी के किनारे से होकर बाबा के दरबार तक पहुंचता है। गोमती नदी के किनारे बसा बाबा इकहत्तरनाथ का धाम श्रद्धालुओं के लिए आस्था का बड़ा केंद्र है। धार्मिक मान्यता के मुताबिक महर्षि गौतम के श्राप से मुक्ति पाने के लिए देवराज इंद्र ने भगवान शिव की आराधना की। फिर भगवान शिव के आदेश पर इंद्र ने एक ही रात में गोमती तट पर 101 शिवलिंग स्थापित करने का संकल्प लिया। उसी शिवलिंग में ये 71वें नंबर का शिवलिंग है, इसी वजह से इस स्थान को इकहत्तरनाथ के नाम से जाना जाने लगा।
1: कि इस कष्ट से मुक्ति के लिए आप एक रात्रि में शिवलिंग की स्थापना गोमती तट पे करें, तो उन्होंने 101 शिवलिंग का जो व्रत लिया था उसमें ये 71वां शिवलिंग है और ये गोमती तट पे और पूर्णपुर कुर्रिया के जंगल के बीचों बीच में स्थित है और बहुत ही सच्चा स्थान है। यहाँ पे भक्त अपनी मनोकामना लेके आते हैं, सारे भक्तों की मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं, बाबा सब पे कृपा करते हैं।
0: सावन में यहाँ आस्था का अलग ही नजारा दिखाई देता है। सावन में यहाँ कांवड़ियों के जत्थे पहुंचकर बाबा के दरबार में जलाभिषेक करते हैं तो वहीं अन्य श्रद्धालु बाबा के दर्शन के लिए अपनी बारी का इंतजार करते हैं। यहाँ श्रद्धालु घंटियों को बजाकर बाबा से अपनी मनोकामना के पूरा होने की गुहार लगाते हैं।
1: यहाँ जंगल के बीचों बीच में स्थित होते हुए भी यहाँ पे प्रत्येक वर्ष और वर्ष भर मेला लगा रहता है लगभग, और किसी भी वन्य जीव का यहाँ पे किसी प्रकार का कोई भय नहीं है, ना तो कभी किसी जानवर ने किसी श्रद्धालु पे हमला किया है।
0: यहाँ भक्त भगवान शिव को फूल बेलपत्र और जल तो चढ़ाते ही हैं, लेकिन मन्नत पूरी होने के बाद कई श्रद्धालु यहाँ हैंडपंप लगवाते हैं। मंदिर परिसर से लेकर गोमती नदी के किनारे तक जहाँ नजर जाती है वहाँ तक केवल हैंडपंप दिखाई देते हैं। यहाँ पर एक साथ कई हैंडपंप लगे हैं। यहाँ हैंडपंप सिर्फ पानी पीने का साधन नहीं बल्कि श्रद्धालुओं की आस्था और मन्नत से जुड़ी एक अनोखी परंपरा बन चुकी है।
1: कहानियाँ ये है कि यहाँ पे भक्त आते हैं और अपनी मनोकामना पूर्ण के लिए नल लगवाते हैं और भगवान की ऐसी यहाँ पे कृपा है कि भोलेनाथ अगर आप प्रथम पूजा करना चाहें कि हम प्रथम पूजा करेंगे तो यहाँ देवताओं के द्वारा पूजा होती है, किसी व्यक्ति के द्वारा नहीं होती है।
0: वैसे तो यहाँ साल भर भक्त पहुँचते हैं, लेकिन सावन में यहाँ की अनूठी मान्यता को देखते हुए बाबा के दरबार में यहाँ दूर दूर से श्रद्धालु पहुँचते हैं। बारिश के बाद कच्चे रास्तों पर पानी भर जाता है, लेकिन इसके बावजूद श्रद्धालुओं की आस्था उनके कदम नहीं रोकती और भक्त पानी और कीचड़ के बीच से गुजरते हुए बाबा के दरबार तक पहुँचते हैं। सौरभ पांडे, पीलीभीत, गुड न्यूज टुडे।
2: सावन का महीना यानी कि भक्ति और आस्था का महीना, लेकिन उत्तराखंड में सावन के दौरान आस्था के साथ देखने को मिलती है होली की मस्ती। उत्तरकाशी के दयारा बुग्याल में रंग गुलाल से नहीं बल्कि दूध मक्खन और मट्ठे से होली खेली जाती है। ऐसे में आज की हमारी अगली यानी कि जो तीसरी गुड न्यूज है वो है उत्तरकाशी में पारंपरिक बटर फेस्टिवल का उत्साह। जी हाँ, दयारा बुग्याल में हर साल बटर फेस्टिवल बड़े ही उत्साह के साथ मनाया जाता है। इस उत्सव में दूध मक्खन और मट्ठे से होली खेलने की परंपरा है। सावन के महीने में मनाए जाने वाले इस उत्सव में स्थानीय लोगों के साथ बड़ी संख्या में श्रद्धालु भी शामिल हुए हैं।

0: देश में लोक आस्था और परंपरा से जुड़े कई ऐसे पर्व त्योहार हैं जिनमें धार्मिक विश्वास के साथ साथ स्थानीय संस्कृति, प्रकृति, कृषि और सामुदायिक जीवन की गहरी छाप दिखाई देती है और ये उसी की दिव्य छटा है। ये तस्वीरें उत्तराखंड के उत्तरकाशी के दयार बुग्याल में धूमधाम से मनाए गए अंधूरी उत्सव की है जिसे बटर फेस्टिवल के नाम से भी जाना जाता है। समुद्र तल से करीब 11,000 फीट की ऊंचाई पर 28 वर्ग किलोमीटर के इलाके में फैले बुग्याल यानी घास के मैदान में ढोल डमाओं की थाप पर नृत्य करते हुए लोग इस उत्सव के रंग में पूरी तरह सराबोर नजर आए। दयारा पर्यटन विकास समिति की ओर से आयोजित इस उत्सव में रैथल समेत कई गांवों के लोग अपने आराध्य समेश्वर देवता की देव डोली के साथ दयार बुग्याल पहुंचे। धार्मिक अनुष्ठान पूरा होने के बाद राधा कृष्ण के रूप में मौजूद जोड़ी ने मक्खन से भरी हांडी फोड़ी और उसके साथ ही उत्सव का रंग गहराता चला गया। लोग एक दूसरे के चेहरों पर ताजा मक्खन लगाने के साथ ही मट्ठा और दूध की होली खेलने में मशगूल हो गए। दौरान पारंपरिक लोकगीत, नृत्य और ढोल दमाओं की थाप पर जमकर जश्न मनाया गया। पारंपरिक लोक वेशभूषा में सभी राधा कृष्ण के रूप में मौजूद जोड़ी के साथ रासौर तांदी नृत्य करते दिखे।
1: आप देख रहे हैं चाहे हमारे पर्यटक हुआ स्थानीय लोग हैं, काफी उल्लास है लोगों के अंदर और इतनी भारी बरसात होने के बाद भी देख रहे हैं आप लोगों के चेहरे में इस जो हमारी अनोखी अंडूरी उत्सव है बटर फेस्टिवल है इसके लिए लोग जो उत्साहित रहते हैं आप देख रहे हैं दूर दराज से लोग आए हैं, बड़ा एंजॉय कर रहे हैं, बड़ा आनंद ले रहे हैं। अद्भुत जो ये होली है दूध मक्खन मठा की होली जो पूरे विश्व में सिर्फ दयारा बुग्याल में मनाई जाती है और आपने देखी इसके हजारों पर्यटक यहाँ पर आए हैं, हजारों स्थानीय लोग आए हैं। पांच
0: बटर फेस्टिवल केवल एक उत्सव भर नहीं है बल्कि पशुपालन पर निर्भर पहाड़ी समाज के लिए अपने पशुधन की खुशहाली और प्रकृति के प्रति आभार प्रकट करने का अवसर भी है। दरअसल रैथल के ग्रामीण गर्मी की दस्तक के साथ ही अपने मवेशियों के साथ दयार बुग्याल समेत गोई चिलापड़ा में बनी अपनी छावनियों में ग्रीष्मकालीन प्रवास के लिए पहुँच जाते हैं। ऊंचे बुग्यालों में उगने वाली औषधि गुणों से भरपूर घास और अनुकूल वातावरण का बेहतर असर दुआऊ पशुओं के दूध उत्पादन पर भी होता है। ऐसे में ऊंचाई वाले इलाकों में सर्दियों की दस्तक से पहले ग्रीष्मकालीन प्रवास में वापसी करते हैं, उससे पहले अपनी और अपने मवेशियों की रक्षा के लिए वो प्रकृति का आभार जताने के लिए ये अनूठा पर्व मनाते हैं। उत्तरकाशी से ओमकार बहुगुणा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
2: और अब खबर बिहार की सांस्कृतिक माटी और सदियों पुरानी मिथिला कला से जुड़ी हुई जिसने एक बार फिर से इतिहास रच दिया है। मधुबनी में मिथिला चित्रकला संस्थान के 180 छात्र छात्राओं ने मिलकर 108 मीटर लंबे विशाल कैनवास पर पूरी रामकथा को उकेर कर एक नया विश्व रिकॉर्ड बना दिया है। इसी से जुड़ी हमारी अगली यानी कि चौथी गुड न्यूज है और वो है 108 मीटर लंबे कैनवास पर मिथिला पेंटिंग का रिकॉर्ड। आपको बता दें कि मिथिला चित्रकला किसी पहचान की मोहताज नहीं, लेकिन इन छात्रों ने 108 मीटर लंबे कैनवास पर मिथिला पेंटिंग बनाकर एक रिकॉर्ड बना दिया है। पद्मश्री से सम्मानित तीन दिग्गज लोक कलाकारों के मार्गदर्शन में तैयार इस कलाकृति में रामचरितमानस के प्रसंगों और श्लोकों को मिथिला पेंटिंग के पारंपरिक शैली में बेहद खूबसूरती से पिरोया गया है। भगवान के 108 शुभ नामों की तर्ज पर बने 108 मीटर लंबे इस कैनवास ने न सिर्फ हमारी पौराणिक धरोहर को जीवंत किया बल्कि देश दुनिया में मिथिला कला का डंका एक बार फिर से बजाया है। इस विशाल कलाकृति को तैयार करने में मिथिला चित्रकला संस्थान से जुड़े 180 छात्र छात्राओं ने हिस्सा लिया। इस पेंटिंग की खासियत सिर्फ इसका विशाल कलेवर ही नहीं बल्कि इसमें रामचरितमानस के प्रसंगों और श्लोकों को मिथिला कला की पारंपरिक शैली में चित्रित किया गया है। यानी एक तरफ सदियों पुरानी धार्मिक और सांस्कृतिक कथा तो दूसरी तरफ उसे अपनी विशिष्ट लोक कला के जरिए नई पीढ़ी के कलाकारों ने उसे तैयार किया है
3: और पूरा मिथिला के लिए और बिहार के लिए ये बड़ा प्राइड का मोमेंट है कि यहाँ के जो बच्चे हैं, जो स्टूडेंट हैं, उन सब ने मिल करके 4 दिन में वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया और हाथ से पेंटिंग करके रामायण जो शुरू से लेकर के और लास्ट तक जो लोग घूम करके देखे 108 मीटर में, तो उनको लग पूरा रामायण का एक चित्रण जो है वो पेंटिंग के रूप में उनको दिखाई पड़ जाएगा। ये बड़ी बात हुई है।
2: और पंजाब के मोगा जिले में एक महिला ने अपने घर को ही सैकड़ों परिंदों का बसेरा बना दिया है। उन्होंने घर में जगह जगह चिड़ियों के लिए घोंसले लगाए हैं और अब रोजाना यहां सैकड़ों परिंदे पहुंचते हैं। ऐसे में आज की हमारी अगली यानी कि पांचवी गुड न्यूज इसी से जुड़ी हुई है और वो है चिड़ियों के लिए आशियाना बना हरप्रीत का घर। जी हाँ, हरप्रीत के घर गर्मी हो, सर्दी हो या फिर मौसम की कोई और चुनौती, इन परिंदों को यहाँ सुरक्षित ठिकाना मिलता है। पंछियों के संरक्षण की हरप्रीत की छोटी सी कोशिश अब लोगों की सराहना बटोर रही है।

0: घर के हर एक कोने में परिंदों का आशियाना सजा है। चिड़ियों की चहचहाने की आवाज से ये घर हमेशा गुलजार रहता है। पंजाब में मोगा के निधावाला गांव में रहने वाली हरप्रीत कौर का इन चिड़ियों के साथ एक अनोखा रिश्ता है। पिछले 13 साल से हरप्रीत इन परिंदों का सहारा बनी हुई है। घर में चिड़ियों का आशियाना सजाने के साथ साथ वो परिंदों को रोजाना दाना भी डालती हैं। करीब 500 से ज्यादा परिंदे रोजाना इस आंगन में आकर घर की रौनक बढ़ाते हैं। हरप्रीत इन परिंदों का अपने बच्चों की तरह देखभाल करती है।
1: मेरे घर में 200 के करीब रैन बसेरा है और हमारे 500 से 600 हमारे घर में गुरैया रहती हैं और गाँव से भी बहुत ज्यादा गुरैया आती है। ये मेरिया प्यारियां राजकुमारियां, मैंने प्यार ना राजकुमारियां कहती हूँ क्योंकि मेरे ना एक बेटी नहीं थी, इसलिए मेरी बेटी की कमी पूरी करती है। क्योंकि हमारे पंजाब में जो बेटियां होती है ना उनको चिड़िया बुलाते हैं। सो ये घर में बहुत ज्यादा रौनकें लगाती थी। सुबह उठते हैं तो बहुत ज्यादा इनका रौनक शुरू हो जाती है, बोलती है, बड़ी मीठी आवाज होती है, इसका कुदरती संगीत होता है।
0: हरप्रीत के लिए ये परिंदे उनके परिवार का हिस्सा है। वो अपना सारा दुख सुख इन्हीं के साथ बांटती है। उन्होंने अपने घर के अलावा गांव में ही कई जगहों पर ऐसे ही छोटे घोंसले लगाए हैं। बदलते दौर में शहरों में बढ़ते दायरे की वजह से पंछियों को अपने आशियाने के लिए जगह नहीं मिल पाती। ऐसे में भीषण गर्मी और कड़ाके की सर्दी का मौसम इन चिड़ियों के लिए बड़ी चुनौती लेकर आता है। हरप्रीत ने परिंदों की इस मुश्किल को कुछ कम करने की कोशिश की है।
1: इनको ना साफ पानी, एक तो साफ पानी की जरूरत है क्योंकि ना आजकल कीटनाशक इतने ज्यादा बढ़ चुके हैं कि साफ पानी नहीं मिलता पक्षियों को। एक रहने के लिए इनकी जगह खत्म हो गई है। पहले हमारे बुजुर्ग थे ना, वो कच्चे घरों में रहते थे, वहां पर काने बाले की छतें हुआ करती थी तो उस पर रहती थी ये गौरैया। अब वो नहीं है तो इसको घर में जगह नहीं मिल रही, इसलिए हमने इनके लिए एक प्लांट जो रैन बसेरा दिया है ना, वो प्लांट है इसका जो घोंसला है ना वो में वो ढक्के रख के खुद ही बनाती है।
0: हरप्रीत का मानना है कि प्रकृति का संतुलन बनाए रखने के लिए परिंदों का संरक्षण बेहद जरूरी है। यही वजह है कि वो इन पक्षियों का मददगार बनने के साथ ही और लोगों को भी परिंदों की मदद के लिए जागरूक करती हैं। मोगा से तन्मय सामंता के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
2: चॉकलेट किसे पसंद नहीं होती, बच्चे हो या फिर बड़े, चॉकलेट का स्वाद सबको भाता है। लेकिन ज्यादा चॉकलेट खाना सेहत के लिए बहुत अच्छा भी नहीं होता। ऐसे में कुछ छात्राओं ने हेल्दी चॉकलेट का विकल्प तैयार किया है। इसी से जुड़ी हमारी अगली यानी कि छठी गुड न्यूज है और वो है सरकारी स्कूल के बच्चों का स्वाद सेहत का फ्रूट चॉकलेट। जी हाँ, आपको बता दें कि दिल्ली में एक सरकारी स्कूल की 4 छात्राओं ने मिलकर ऐसे चॉकलेट्स तैयार किए हैं जो कि टेस्ट के साथ साथ आपकी हेल्थ का भी ध्यान रखेगी। इस चॉकलेट को सीजनल फ्रूट और ड्राई फ्रूट्स की मदद से तैयार किया गया है। अब ये छात्राएं अपने इस प्रोडक्ट की मार्केटिंग के लिए स्टार्टअप शुरू करने की तैयारी में है।

0: चॉकलेट का नाम सुनते ही चेहरे पर मुस्कान और जबान पर मिठास खुल जाती है। बच्चे हों या बड़े, चॉकलेट हर किसी को पसंद होती है। हालांकि चॉकलेट में टेस्ट तो भरपूर होता है, पर स्वाद के साथ सेहत के लिए चिंता बढ़ जाती है। लेकिन अब इस उलझन को इन खास चॉकलेट्स ने दूर कर दिया है, क्योंकि इनमें स्वाद के साथ सेहत का खजाना भी छिपा है। दिल्ली में अशोक नगर सर्वोदय कन्या विद्यालय की चार छात्राओं ने डार्क चॉकलेट को सीजनल फ्रूट और ड्राई फ्रूट्स के साथ मिलाकर चॉकलेट का एक ऐसा सेहतमंद विकल्प तैयार किया जिसमें हेल्थ के साथ टेस्ट भी है।
1: उम्र चाहे कोई भी हो, चॉकलेट्स खाना किसको नहीं पसंद। मुझे तो डेफिनेटली बहुत पसंद है, लेकिन मैं कभी कभी ये नहीं सोच पाती कि कौन सी चॉकलेट मुझे खानी चाहिए और कौन सी नहीं। लेकिन एक ऐसी चॉकलेट मैं आपके सामने लेकर आने वाली हूँ जहाँ पर हर एक माँ बाप को सोचने की या टेंशन लेने की नीड नहीं है। वो अपने बच्चों को ईजिली ये जो चॉकलेट्स मैं आपको अभी दिखा रही हूँ वो खिला सकते हो, क्योंकि ये चॉकलेट्स जो है वो फ्रूट चॉकलेट्स है। पेरेंट्स को किसी तरीके का डर नहीं होना चाहिए जब उनके छोटे बच्चे जो है वो चॉकलेट्स उनसे मांगे और वो देने से डरे।
0: ये देखने में बिल्कुल किसी आम चॉकलेट की तरह नजर आती है, लेकिन जैसे ही हम इसे काटते या तोड़ते हैं तो इसके अंदर आपको मिलते हैं ताजा सीजनल फ्रूट्स और ड्राई फ्रूट्स। यही वो इनोवेशन है जिसके जरिए इन चार छात्राओं की कोशिश है कि बच्चों को चॉकलेट का वही पसंदीदा टेस्टी एक्सपीरियंस मिले और सेहत की चिंता न रहे।
2: हमने एक सोचा कि इतनी चॉकलेट्स नहीं खानी चाहिए, कुछ ऐसा हो कि हमें खाने में भी टेस्टी हो और हेल्दी भी हो, ताकि हमारी हेल्थ भी अच्छी रहे। तो हमने पहले हमारा मेन प्रोडक्ट जो था वो था फ्रूट स्क्यूअर्स, उसमें हमने फ्रूट्स को चॉकलेट के साथ कोट करा और वो थी डार्क चॉकलेट, तो वो हमें हेल्दी है वो और टेस्ट भी अच्छा। उसमें हमने ड्राई फ्रूट्स नट्स ऐड करे और अब जो हमने थोड़ा उसको इनोवेटिव
1: किया।
0: इन छात्राओं ने इस प्रोडक्ट को सिर्फ स्कूल के प्रोजेक्ट तक सीमित नहीं रखा, बल्कि इस हेल्दी चॉकलेट बनाने के लिए इन छात्राओं ने खासी रिसर्च भी की है।
3: कुछ भी कोई भी नया मार्केट में प्रोडक्ट आता है ना, तो हम ये देखते हैं कि उसके लिए रिसर्च जो है ना वो घर से स्टार्ट होती है। मैम जैसे मेरा छोटा भाई है वो फ्रूट्स बिल्कुल भी नहीं खाता था और चॉकलेट्स बहुत ज्यादा खाता था, जिससे मेरी मम्मी बहुत ज्यादा परेशान थी। एंड फाइनली जब हम इस पर रिसर्च कर रहे थे तो हमने ये चीज देखी और मैंने जब अपने भाई को टेस्ट भी कराया, ही वॉज लविंग इट।
0: इन चॉकलेट्स को तैयार करने में इन छात्राओं ने कितनी मेहनत और रिसर्च की है, इसकी मिसाल उनके तैयार किए गए नोट्स में देखी जा सकती है। रिसर्च के बाद छात्राओं ने इस सेहतमंद चॉकलेट को तैयार किया, लेकिन अब ये इसे एक स्टार्टअप बिजनेस आइडिया के तौर पर भी विकसित करने की कोशिश कर रही है।
4: सबसे पहले इन्होंने चॉकलेट बनाई थी तो इन्होंने फ्रूट्स को कोट कर दिया था, तो वो जैसे एक दो दिन में वो फ्रूट्स खराब होने लगा तो चॉकलेट भी खराब हो गई। अब इन्होंने जो नया आइडिया निकाला ये अपने आप में वाकई में बहुत कामयाब है कि इसमें इन्होंने पल्प को उसमें डाला है तो वो ज्यादा समय तक थोड़ा सा प्रिजर्व हो सकती है, तो ये मुझे बहुत अच्छा लगा।
0: दिल्ली के एक सरकारी स्कूल की इन छात्राओं ने चॉकलेट को सिर्फ स्वाद से जोड़कर नहीं देखा, इन्होंने चॉकलेट के स्वाद के साथ इनोवेशन, हेल्थ और स्टार्टअप आइडिया को भी जोड़ने की कोशिश की है। ये नई सोच ही अब इन चारों छात्राओं को एक नई पहचान भी दिला रही है।
1: मैं आपको स्टार्टअप दिखाने का कोशिश कर रही हूँ कि किस तरीके से जो ये स्कूल के बच्चे हैं वो इस उम्र में ही, कहते हैं ना नींव है, आने वाले हमारे भविष्य की नींव है ये बच्चे, और वो नींव दिखाती है कि किस तरीके से इस उम्र में इन्होंने अभी से भविष्य में खुद को कैसे देखना है, कहाँ लेके जाना है, उसकी शुरुआत कर दी है। और वो शुरुआत कुछ इस छोटी चॉकलेट्स के रूप में इन्होंने करी है कि ये कुछ इस तरीके का प्रोडक्ट्स बना रहे जो ये मार्केट में देना चाहते, जो हर किसी के लिए हेल्दी हो, अनहेल्दी बिल्कुल भी नहीं। कैमरा पर्सन लोकेंद्र के साथ मनीषा लड्डा, दिल्ली, गुड न्यूज टुडे।
5: मध्य प्रदेश के बैतूल का रहने वाला युवक 25,000 किलोमीटर की यात्रा पर निकला है और वो भी अपनी साइकिल पर। अब तक वो युवक 3,000 किलोमीटर की यात्रा पूरी कर उत्तराखंड, दिल्ली, हरियाणा और राजस्थान होते हुए गुजरात के अंबाजी पहुंचा है। उसका लक्ष्य 4 धाम और 12 ज्योतिर्लिंगों की यात्रा करना है। ऐसे में आज की हमारी अगली यानी कि 7वीं और आखिरी गुड न्यूज है साइकिल पर 25,000 किलोमीटर के सफर का प्रण। आपको बता दें कि मध्य प्रदेश के बैतूल जिले का रहने वाला निखिल कनौजिया एक विशेष मिशन पर निकला है। निखिल 4 धाम और देश के अलग अलग हिस्सों में मौजूद 12 ज्योतिर्लिंगों की यात्रा पर निकला है। पिछले 45 दिनों में वो 3,000 किलोमीटर की दूरी तय कर चुका है। उत्तराखंड, दिल्ली, हरियाणा और राजस्थान जैसे राज्यों का सफर पूरा करने के बाद उसने अंबाजी के रास्ते गुजरात में प्रवेश किया। अपनी इस ऐतिहासिक यात्रा में निखिल देश के अलग अलग तीर्थ स्थलों का दौरा करने के साथ साथ इसने पड़ोसी देश नेपाल का दौरा करने का भी प्लान बनाया है। निखिल नेपाल स्थित पशुपतिनाथ महादेव सहित सभी बड़े धामों के दर्शन भी करने वाला है। निखिल फिलहाल गुजरात के दौरे पर है और अगले एक साल में वो बाकी का 22,000 किलोमीटर का सफर पूरा करेगा। निखिल की यात्रा का मकसद भारत को विश्व गुरु बनाने का संदेश देना है।
6: मेरी जर्नी जो मेरी स्टार्ट हुई थी उत्तराखंड से पंचकेदार पंचबद्री से स्टार्ट किया है मैंने अपनी जर्नी, जिस और ऋषिकेश हरिद्वार होते हुए दिल्ली, दिल्ली से हरियाणा, राजस्थान, राजस्थान में पुष्कर और अपने खाटू श्याम जी के दर्शन करते हुए गुजरात में अंबा जी के दर्शन करते हुए मैं यहाँ पे आगे द्वारिका देश ले जा रहा हूँ। मेरी टोटल जर्नी 25,000 किलोमीटर की है और 3,000 किलोमीटर की जर्नी हो चुकी है। उद्देश्य छोटा सा है कि भारत विश्व गुरु बन सके और मेरी खुद का भी फैशन है तो उसको फॉलो कर रहा हूँ।
5: इसी के साथ 7 बजे 7 गुड न्यूज में मेरे यानी कि श्वेता झा के साथ फिलहाल इतना ही। देश दुनिया के तमाम पॉजिटिव खबरों के लिए देखते रहिए गुड न्यूज टुडे।
7: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है इसके अंदर ना उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है।
8: अब कोई व्यक्ति जीवन में सही निर्णय ले पाता है, कब व्यक्ति के द्वारा लिए गए निर्णय गलत होते हैं, किन ग्रहों का प्रभाव आपके निर्णय पर पड़ता है और सही निर्णय लेने के उपाय क्या हैं, जानिए मेरे साथ सिर्फ किस्मत कनेक्शन में।
5: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती है तो कुछ दिखाती है विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
9: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है
10: और दुर्भाग्य कहता है
11: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
5: अविश्वास में विश्वास बसता है
9: जो हम में अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
12: गुड न्यूज टुडे।
9: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे। देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे में।

0: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है कम से।
1: Yeah.

0: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम। गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, मोड़ इसके ऊपर उसके ऊपर, ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
1: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
2: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर। असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
3: और दुर्भाग्य कहता है
4: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
5: अविश्वास में विश्वास बसता है,
2: जो हमें अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
1: गुड न्यूज टुडे।

0: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को।
1: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाए स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा, प्यार से परोसा।
2: मौसम की चुनौतियों के बीच हेमकुंड साहिब यात्रा में रौनक, अब तक 2.5 लाख से ज्यादा श्रद्धालुओं ने मत्था टेका, 10 अक्टूबर तक जारी रहेगी पवित्र यात्रा। सावन के पावन महीने में दिख रहे शिव भक्ति के अनोखे रंग, मुंगेर में भव्य कांवड़ यात्रा बनी आकर्षण का केंद्र, श्रद्धालु बैद्यनाथ धाम में करेंगे जलाभिषेक। महाराष्ट्र में गणेशोत्सव की तैयारियां तेज, अकोला में बप्पा की प्रतिमाओं को अंतिम रूप दे रहे कारीगर, 14 सितंबर से शुरू होगा उत्सव। जम्मू कश्मीर दौरे पर अमेरिकी राजदूत सर्जियो वॉर, श्रीनगर की डल लेक में शिकारा सवारी की, घाटी के मेहमान नवाजी के हुए मुरीद। यूपी के कई जिलों में बाढ़ जैसे हालात, वाराणसी से लेकर प्रयागराज तक बढ़ा नदियों का जलस्तर, अलर्ट मोड पर प्रशासन।
0: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मोड़ धोड़।
2: नमस्कार, मैं हूं नवजोत रंधावा। सोशल मीडिया की दुनिया में अब सिर्फ खबरें नहीं बल्कि आधी अधूरी सच्चाइयां, झूठे दावे बिजली की रफ्तार से फैलते हैं। कभी किसी वीडियो के पीछे की कहानी बदल दी जाती है तो कभी पुरानी तस्वीर को नई साजिश का रंग देकर पेश किया जाता है। लोग बिना जांचे परखे, बिना सोचे समझे से सच मान लेते हैं। सोशल मीडिया के इस दौर में अब खबरें अखबार के पन्नों या टीवी स्क्रीन तक सीमित नहीं, यहाँ हर किसी के हाथ में एक कैमरा है। हर घटना, हर तस्वीर, हर वीडियो कुछ ही सेकंड्स में पूरी दुनिया में वायरल हो जाता है, लेकिन यही तेजी कई बार सच और झूठ की रेखा को धुंधला कर देती है। कोई पुरानी घटना नहीं बताकर परोसी जाती है, कोई वीडियो तोड़ मरोड़ कर पेश किया जाता है, और कभी कभी तो तस्वीरों में ऐसी कहानी गढ़ दी जाती है जो असलियत से कोसों दूर लगे। नतीजा ये कि लोग बिना सोचे समझे जांचे परखे ने सच मानकर शेयर करते हैं और यहीं से शुरू होती है अफवाहों की आंधी। ऐसे में हम सच और झूठ के बीच की धुंध को साफ करते हैं। जहां वायरल दावों की होती है सटीक जांच, अफवाहों की होती है पड़ताल, और झूठ के हर नकाब को हम उतारते हैं तथ्यों की रोशनी में। आज ऐसी खबरों की पड़ताल हम करेंगे जिसमें सबसे पहले बात सोशल मीडिया पर छाए उस वीडियो की होगी जिसके जरिए दावा किया जा रहा है कि ये रांची का वीडियो है जहां कुछ लोगों ने पत्थरबाजी करके छात्रों के आंदोलन को बदनाम करने की कोशिश की। सच क्या है आगे बताएंगे। अगली खबर होगी उस वायरल वीडियो से जुड़ी हुई जिसको शेयर करते हुए कहा जा रहा है कि माफिया अतीक अहमद के बेटे अली अहमद ने अपने छोटे भाई अबान अहमद के जनाजे में शामिल होने के बाद योगी आदित्यनाथ से रहम की गुहार लगाई है। इस दावे में कितनी सच्चाई है आगे जानिए। शुरुआत करते हैं फैक्ट चेक की।
0: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मोड़ धोड़।
2: झारखंड की रांची में 10 अगस्त को छात्रों ने विधानसभा मार्च किया और 80 से जोड़ते हुए सोशल मीडिया के अलग अलग प्लेटफॉर्म्स पर एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है। कुछ लोग इस वीडियो को शेयर करते हुए दावा कर रहे हैं कि रांची का ये वीडियो है जहां पर कुछ लोगों ने पत्थरबाजी करके छात्रों के आंदोलन को बदनाम करने की कोशिश की, लेकिन सच और झूठ क्या है इस रिपोर्ट में जानिए।
3: झारखंड के रांची में 10 अगस्त को छात्रों के विधानसभा मार्च के दौरान भारी हंगामा देखने को मिला। पुलिस और प्रदर्शनकारी छात्रों के बीच टकराव हुआ। इस दौरान पुलिस ने लाठी चार्ज और आंसू गैस के गोले का इस्तेमाल किया। अब इसी प्रदर्शन का बताकर एक वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है। इसे शेयर करते हुए कुछ लोग ये कह रहे हैं कि ये रांची का वीडियो है जहां कुछ लोगों ने पत्थरबाजी करके छात्रों के आंदोलन को बदनाम करने की कोशिश की। वीडियो में एक व्यक्ति हाथ में पत्थर लेकर एक भीड़ के साथ आगे बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। भीड़ को रोकने के लिए सड़क पर एक बैरिकेड लगा हुआ है। कुछ दूर जाने के बाद ये व्यक्ति बैरिकेड के दूसरी तरफ पत्थर फेंक देता है। भीड़ में से भी कुछ लोग कुछ कुछ फेंकते हुए नजर आ रहे हैं। इस भीड़ में कुछ लोगों के हाथ में बीजेपी के झंडे भी हैं। वीडियो को शेयर करते हुए कुछ यूजर्स लिख रहे हैं कि इसमें दिख रहे लोगों ने रांची के शांतिपूर्ण आंदोलन में पत्थरबाजी करके उसे बदनाम करने की कोशिश की। एक व्यक्ति ने इसे रांची का बताकर फेसबुक पर लिखा, शांतिपूर्ण आंदोलनों को हिंसक बनाने की क्रोनोलॉजी देश देख रहा है। वायरल हो रहे वीडियो का सच और झूठ जाने बगैर लोग इस वीडियो को लगातार शेयर कर रहे हैं।
2: दरअसल झारखंड के रांची में 10 अगस्त को छात्रों के विधानसभा मार्च के दौरान भारी बवाल देखने को मिला था। पुलिस और प्रदर्शनकारियों के बीच और छात्रों के बीच टकराव भी हुआ था। इस दौरान पुलिस ने लाठीचार्ज किया, आंसू गैस के गोले छोड़े और इसी प्रदर्शन से जोड़ते हुए एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है। वीडियो में एक व्यक्ति हाथ में पत्थर लेकर एक भीड़ के साथ आगे बढ़ता नजर आ रहा है। भीड़ को रोकने के लिए सड़क पर बैरिकेड लगा हुआ है और कुछ ही दूरी पर जाने पर यह व्यक्ति बैरिकेड की दूसरी ओर से पत्थर फेंकता है। भीड़ में से भी कुछ लोग पत्थर फेंकते नजर आ रहे और कुछ लोग इस वीडियो को शेयर करते हुए दावा यह कर रहे हैं कि रांची का वीडियो जहां पर कुछ लोगों ने पत्थरबाजी करके छात्रों के इस आंदोलन को बदनाम करने की कोशिश की। सोशल मीडिया के अलग अलग प्लेटफॉर्म्स पर वीडियो इसी मिलते जुलते दावे के साथ शेयर किया जा रहा है। ऐसे में इसका सच और झूठ जानना जरूरी हो गया था, तो हमने इसकी पड़ताल शुरू की और दावे की सच्चाई जानने के लिए फैक्ट चेक टीम ने सबसे पहले वायरल हो रहे वीडियो के हर फ्रेम को गौर से देखा। इस दौरान हमें बीजेपी और कांग्रेस का झंडा भी नजर आया। ऐसे में इशारा तो मिल गया कि वायरल हो रहा वीडियो किसी झड़प का हो सकता है। इसके अलावा वीडियो में एक जगह पर बोर्ड लगा है जिस पर इंदौर लिखा है। अब वीडियो अगर रांची का है तो जाहिर सी बात है कि वहां पर इंदौर लिखा हुआ बोर्ड क्यों है, यह हमें थोड़ा सा अटपटा लगा। और साथ ही सर्च के दौरान हमें ऐसी कोई प्रमाणिक रिपोर्ट भी नहीं मिली जो कि वायरल दावे की पुष्टि कर सके, लिहाजा हमने इसे सवालों की कसौटी पर कसा। पहला सवाल यह कि वायरल हो रहा वीडियो कब का है और कहां का है। दूसरा सवाल यह कि कहीं जानबूझकर पुराने वीडियो के जरिए लोगों को गुमराह तो नहीं किया जा रहा है। सच और झूठ क्या है, आप इस रिपोर्ट में जानिए।
3: सोशल मीडिया के अलग अलग प्लेटफॉर्म पर जब ये वीडियो तेजी से वायरल होने लगा तब फैक्ट चेक टीम एक्टिव हुई और वायरल हो रहे वीडियो की जांच में जुटी। सबसे पहले हमने वीडियो के कुछ की फ्रेम्स को निकाला और उसे सर्च किया। इस दौरान हमें यूट्यूब चैनल पर एक वीडियो रिपोर्ट मिली, इसमें वायरल वीडियो वाला हिस्सा भी देखने को मिला। ये रिपोर्ट 22 फरवरी की है। इससे एक बात तो यही साफ हो गई कि इस वीडियो का रांची के स्टूडेंट प्रोटेस्ट से कोई संबंध नहीं है। रिपोर्ट के मुताबिक ये वीडियो मध्य प्रदेश के इंदौर का है जहां 21 फरवरी को कांग्रेस कार्यालय के बाहर बीजेपी और कांग्रेस के कार्यकर्ताओं के बीच झड़प हो गई थी और दोनों तरफ से पथराव भी हुआ था। इससे मिली जानकारी के आधार पर हमने अपने पड़ताल को आगे बढ़ाया। सर्च के दौरान हमें इस घटना से संबंधित कई रिपोर्ट्स मिली। इन रिपोर्ट्स के मुताबिक दिल्ली के भारत मंडपम में आयोजित इंडिया AI इम्पैक्ट समिट के दौरान यूथ कांग्रेस कार्यकर्ताओं के विवादित शर्टलेस प्रदर्शन को लेकर बीजेपी ने कई शहरों में कांग्रेस कार्यालयों का घेराव करने का ऐलान किया था। इस कड़ी में 21 फरवरी को इंदौर में हालात उस वक्त बेकाबू हो गए जब बीजेपी के युवा कार्यकर्ता कांग्रेस कार्यालय का घेराव करने पहुंचे और वहां पहले से मौजूद कांग्रेस कार्यकर्ताओं से उनका आमना सामना हो गया। दोनों पक्षों के बीच पहले तीखी नारेबाजी हुई जो देखते ही देखते हिंसक झड़प में बदल गई। प्रदर्शन के दौरान दोनों पक्षों के बीच जमकर पत्थर, टमाटर और पानी की बोतलें फेंकी गईं, जिसमें एक सब इंस्पेक्टर और कुछ मीडिया कर्मी घायल हो गए थे। हालात संभालने के लिए पुलिस को वाटर कैनन का इस्तेमाल करना पड़ा। एक न्यूज एजेंसी की एक रिपोर्ट के मुताबिक पुलिस ने दोनों पक्षों की शिकायतों के आधार पर पंधारीनाथ थाने में काउंटर FIR दर्ज करते हुए CCTV फुटेज के जरिए जांच शुरू कर दी थी। इंदौर के जिस चौराहे पर बीजेपी और कांग्रेस के बीच झड़प हुई थी वो जगह गूगल मैप्स पर भी देखने को मिली। इस तरह हमारी पड़ताल में वायरल हो रहा दावा झूठा साबित हुआ। ये मध्य प्रदेश के इंदौर का फरवरी का वीडियो है। कांग्रेस और बीजेपी कार्यकर्ताओं के बीच हुई झड़प का ये वीडियो है, इसका रांची से कोई संबंध नहीं है। टीम फैक्ट चेक, गुड न्यूज टुडे।
2: सोशल मीडिया पर एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है, इसे शेयर करते हुए लोग ये दावा कर रहे हैं कि माफिया आतिक अहमद के बेटे अली अहमद ने अपने छोटे भाई अबान अहमद के जनाजे में शामिल होने के बाद योगी आदित्यनाथ से रहम की गुहार लगाई है और उसे और ना सताया जाए, ऐसा उन्होंने कहा है। वायरल वीडियो की सच्चाई क्या है, देखिए रिपोर्ट।
4: माफिया अतीक अहमद के सबसे छोटे बेटे अबान अहमद की झांसी में हुए सड़क हादसे में मौत हो गई। 6 अगस्त को सुबह उनकी तेज रफ्तार क्रेटा कार अनियंत्रित होकर डिवाइडर से टकरा गई, जिससे अबान और उनकी एक साथी की मौके पर ही मौत हो गई। जिस वक्त ये हादसा हुआ, अबान झांसी जेल में बंद अपने बड़े भाई अली अहमद से मिलने जा रहा था। 8 अगस्त को प्रयागराज के कसारी मसारी कब्रिस्तान में अतीक और असद की कब्र के पास ही अबान को सुपुर्दे खाक किया गया। इन सब के बीच सोशल मीडिया पर उसके बड़े भाई अली अहमद के नाम से एक बयान वायरल हो रहा है। कई सोशल मीडिया यूजर्स दावा कर रहे हैं कि अपने भाई को खोने के बाद अली अहमद ने यूपी के CM योगी आदित्यनाथ से गुहार लगाई है, जो हो गया सो हो गया, अब उसे और न सताया जाए। एक एक्स यूजर ने पुलिस की गाड़ी में बैठे हुए अली अहमद की तस्वीर पोस्ट करते हुए लिखा कि भाई के क्रिया कर्म के बाद अली अहमद को झांसी जेल में ले जाया गया। अली अहमद ने CM योगी से गुहार लगाई, जो हो गया सो हो गया, अब और न सताया जाए। आगे यूजर ने लिखा कि अली अहमद ने अपनी जान को भी खतरा बताया। ऐसे ही अतीक अहमद ने जेल जाते ही कहा, मिट्टी में तो मिल चुके हैं, अब और न मिलाया जाए। इसे कानून का राज कहें या नफरत की राजनीति, अतीक अहमद के 5 लड़कों में आज सिर्फ 3 ही बचे हैं। पत्नी का कोई पता नहीं कहाँ है। सोशल मीडिया के अलग अलग प्लेटफॉर्म पर यह पोस्ट तेजी से वायरल हो रहा है।
2: दरअसल सोशल मीडिया पर यह वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है और कुछ लोग इस वीडियो को शेयर करते हुए दावा कर रहे हैं कि माफिया अतीक अहमद के बेटे अली अहमद ने अपने छोटे भाई अबान अहमद के जनाजे में शामिल होने के बाद योगी आदित्यनाथ से गुहार लगाई कि अब उसे और ना सताया जाए। सोशल मीडिया के अलग अलग प्लेटफॉर्म्स पर वीडियो इसी मिलते जुलते दावे के साथ शेयर किया जा रहा है। ऐसे में इसका सच और झूठ जानना जरूरी हो गया था, तो फैक्ट चेक टीम ने इसकी पड़ताल शुरू की और दावे की सच्चाई जानने के लिए फैक्ट चेक टीम ने तहकीकात की। सर्च के दौरान ये जानकारी सामने आई कि इलाहाबाद हाई कोर्ट ने अबान अहमद के जनाजे में शामिल होने के लिए जेल में बंद अतीक अहमद के बेटों उमर और अली अहमद की पैरोल को 7 अगस्त को मंजूरी दी थी। उमर लखनऊ जेल में है और अली झांसी जेल में है। साथ ही कोर्ट ने दोनों को सख्त हिदायत दी थी कि इस दौरान दोनों भाई मीडिया से बात नहीं करेंगे, वो पुलिस के साथ सीधे कब्रिस्तान जाएंगे, वहां से जेल वापस आ जाएंगे। 8 अगस्त को प्रयागराज के कसारी मसारी कब्रिस्तान में 21 वर्षीय अबान अहमद को सुपुर्द-ए-खाक किया गया था। इस दौरान उनका कोई भी बयान नहीं आया। ऐसे में हमें दावे की सच्चाई को लेकर शक हुआ, लिहाजा हमने इसे सवालों की कसौटी पर कसा। पहला सवाल ये कि अगर वायरल हो रही पोस्ट हाल फिलहाल की है तो फिर इसके बारे में कोई आधिकारिक जानकारी क्यों नहीं मिली। दूसरा सवाल ये कि कहीं पुराने बयान को पोस्ट के साथ जोड़कर जानबूझकर वायरल तो नहीं किया जा रहा है। सच और झूठ क्या है इस रिपोर्ट में जानें।
4: दावे की सच्चाई जानने के लिए सबसे पहले हमने वायरल हो रहे पोस्ट के कुछ की फ्रेम को निकाल कर सर्च किया। इस दौरान हमें 1 अक्टूबर 2025 को पब्लिश की गई एक वीडियो न्यूज में इस क्लिप के बारे में जानकारी देखने को मिली। इस रिपोर्ट में वायरल क्लिप भी मिला। खबर के मुताबिक अतीक के बेटे अली को नैनी जेल से झांसी जेल ले जाया गया। वहाँ मीडिया के सामने उसने सीएम योगी से गुहार लगाते हुए कहा, अब और न सताया जाए, जो होना था वो हो गया और जो अन्यथा सताया जा रहा है उससे बचा ले। सर्च के दौरान ही हमें 2 अक्टूबर 2025 को पब्लिश एक और वीडियो रिपोर्ट मिली। ये रिपोर्ट अली अहमद को प्रयागराज जेल से झांसी जेल में शिफ्ट किए जाने के बारे में है। दरअसल उस वक्त प्रयागराज जेल में अली अहमद की बैरक से लगभग 1100 रुपए कैश बरामद हुआ था, जिसके बाद 1 अक्टूबर को ये कार्रवाई की गई थी।
5: मीडिया वालों के माध्यम से मुख्यमंत्री जी से निवेदन है कि अब और न सताया जाए, जो कुछ हो गया है सो हो गया और जो अन्यथा सताया जा रहा है उससे बचा ले।
4: 1 अक्टूबर 2025 को इस बारे में छपी एक रिपोर्ट के मुताबिक अली अहमद को नैनी सेंट्रल जेल से झांसी जिला कारागार शिफ्ट कर दिया गया। झांसी में मीडिया को सामने देखकर उसने सीएम योगी से खुद को बचाने की गुहार लगाई थी। 17 जून 2025 को जेल डीआईजी राजेश श्रीवास्तव ने अली की बैरक में छापेमारी की थी और 1100 रुपए नकद बरामद किए थे। इसके बाद बैरक की निगरानी बढ़ा दी गई थी। खबर में वायरल वीडियो के स्क्रीनशॉट भी देखने को मिला। इस तरह हमारी पड़ताल में वायरल हो रहा दावा झूठा साबित हुआ। अतीक अहमद के बेटे अली अहमद का सीएम योगी से मदद की अपील करने वाला वीडियो अक्टूबर 2025 का है, जब उसे प्रयागराज के नैनी जेल से झांसी जेल शिफ्ट किया गया था। इसका हाल फिलहाल से कोई संबंध नहीं है। टीम फैक्ट चेक, गुड न्यूज टुडे।
2: मीडिया पर एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है और कुछ यूजर्स इस वीडियो को शेयर करते हुए ये दावा कर रहे हैं कि वीडियो में दिख रहा ये तैराक हाल ही में मोरक्को से तैरकर गैरकानूनी तरीके से स्पेन में दाखिल हो गया, लेकिन सच्चाई क्या है इस रिपोर्ट में जानिए।
4: स्पेन के स्क्यूटा शहर में मोरक्को से आए तकरीबन 60,000 घुसपैठिए दाखिल हो गए थे। इनमें से ज्यादातर लोग तैर कर आए थे। इस दौरान भीड़ में दबने, दम घुटने और समुद्र में डूबने से 67 लोगों की मौत हो गई थी। इन सब के बीच तैरते हुए सेल्फी वीडियो बनाते एक शख्स का ये वीडियो सोशल मीडिया पर ये कहकर शेयर किया जा रहा है कि ये व्यक्ति हाल ही में मोरक्को से समुद्र के रास्ते स्पेन पहुंचा था। एक एक्स यूजर ने वीडियो को शेयर करते हुए लिखा कि एक टीनेज लड़का सेल्फी स्टिक के साथ समंदर में तैर कर वीडियो बनाते हुए मोरक्को से स्क्यूटा पहुंचा और स्पेन में दाखिल हो गया। पिछले 2 दिनों में मोरक्को से 60,000 से ज्यादा प्रवासी स्पेन के इलाके स्क्यूटा में दाखिल हुए। इससे स्पेन के लिए एक बड़ा संकट खड़ा हो गया है। सोशल मीडिया के अलग अलग प्लेटफॉर्म पर यह वीडियो इसी मिलते जुलते दावे के साथ धड़ल्ले से शेयर किया जा रहा है।
2: दरअसल सोशल मीडिया पर एक शख्स का समंदर में तैरते हुए सेल्फी वीडियो तेजी से शेयर किया जा रहा है। दावा यह किया जा रहा है कि व्यक्ति मोरक्को से समुद्र के रास्ते तैरकर अवैध रूप से स्पेन में दाखिल हो गया। सोशल मीडिया के अलग अलग प्लेटफॉर्म्स पर यह वीडियो इसी मिलते जुलते दावे के साथ शेयर किया जा रहा है। ऐसे में इसका सच और झूठ जानना जरूरी हो गया था, तो हमने इसकी पड़ताल शुरू की। दावे की सच्चाई जानने के लिए फैक्ट चेक टीम ने वीडियो की तहकीकात की। सर्च के दौरान यह जानकारी जरूर सामने आई है कि जुलाई के अंत में हजारों मोरक्कोवासी स्पेन में अवैध रूप से दाखिल हुए थे। इस भारी घुसपैठ और संकट के बाद स्पेन और मोरक्को ने प्रवासियों को वापस भेजने के लिए कदम भी उठाए, सुरक्षा बढ़ाई गई। इस दौरान इस आधिकारिक वीडियो और तस्वीरें भी सामने आई, लेकिन इस दौरान वायरल हो रहा वीडियो, इसके तरह का कोई भी और वीडियो हमें नहीं मिला। लिहाजा हमें ऐसे सवालों की कसौटी पर कसा, जिसमें हमारा पहला सवाल यही था कि अगर दावा सच्चा है तो वायरल हो रहा वीडियो किसके बारे में है, इसके बारे में कोई आधिकारिक जानकारी सामने क्यों नहीं आई। दूसरा सवाल यह कि कहीं जानबूझकर वीडियो के जरिए अफवाह तो नहीं फैलाई जा रही। सच और झूठ इस रिपोर्ट में।
6: दावे की सच्चाई जानने के लिए फैक्ट चेक टीम पड़ताल में जुटी। सर्च करने पे हमें एक एक्स पोस्ट मिला, जिसमें बताया गया है कि ये शख्स मोरक्को का एक तैराक है जो अपने ही शहर अल जदीदा में तैर रहा था। इस यूजर ने यासीन लगोची नाम से इस तैराक के इंस्टाग्राम अकाउंट का स्क्रीनशॉट भी शेयर किया है। यासीन ने यह वीडियो 29 जुलाई को पोस्ट किया था। उन्होंने 4 जुलाई को फेसबुक पर एक वीडियो कंपाइलेशन शेयर किया था। इसमें भी वायरल वीडियो वाला हिस्सा देखा जा सकता है। इसके अलावा उन्होंने इस बारे में एक स्पष्टीकरण भी दिया है। इसमें वो कहते हैं कि उनके तैराकी के एक वीडियो के बारे में गलत दावे किए जा रहे हैं। ये वीडियो अल जदीदा शहर का है, न कि स्पेन के स्क्यूटा शहर का। वो ये भी कहते हैं कि वो इस वक्त ठीक उसी जगह हैं जहां उन्होंने वायरल वीडियो शूट किया था, और उन्होंने अपनी पूरी जिंदगी मोरक्को के इसी शहर में बिताई है। इस तरह हमारी पड़ताल में वायरल हो रहा दावा झूठा साबित हुआ। वीडियो में नजर आ रहे शख्स के तैर कर स्पेन में घुसपैठ करने की बात एकदम गलत है। टीम फैक्ट चेक, गुड न्यूज टुडे।
2: फैक्ट चेक में फिलहाल यहाँ रुकेंगे एक ब्रेक के लिए, और ब्रेक के उस पार आपको लिए चलेंगे वायरल दुनिया में, दिखाएंगे ऐसे वीडियोस जो सोशल मीडिया पर खूब पसंद किए जा रहे हैं।
0: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है।
2: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
7: और दुर्भाग्य कहता है
2: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
8: अविश्वास में विश्वास बसता है,
2: जो हमें अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
9: गुड न्यूज टुडे।
2: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे, देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
0: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
10: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
2: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर। मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे, देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
0: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबर
2: अच्छा कि आखिरी सफर कहाँ आपको लिए चलते हैं वायरल दुनिया में, दिखाते हैं ऐसे वीडियोस जो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हैं।
11: ऊंचाइयाँ कितनी भी मुश्किल क्यों ना हो, अगर हौसला मजबूत हो तो हर चुनौती आसान हो जाती है।
2: इन बच्चियों का अभ्यास भी इसी जज्बे की मिसाल है। मुश्किल लगने वाली गतिविधि को ये बेटियां पूरे आत्मविश्वास और मेहनत के साथ पूरा करती दिख रही हैं। उनका संतुलन, एकाग्रता और लगातार प्रयास देखने वालों को भी प्रभावित कर दे रहा है। यही छोटी छोटी कोशिशें बच्चों के अंदर आत्मविश्वास पैदा करती हैं और उन्हें आगे बढ़ने का हौसला देती हैं। इन बेटियों का जज्बा वाकई काबिले तारीफ है। सोशल मीडिया पर एक मासूम स्कूली बच्ची का ये वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है। वीडियो में बच्ची स्कूल ड्रेस पहने बारिश के पानी में बेफिक्र होकर खेलती और मस्ती करती नजर आ रही है। उसकी मासूमियत और बारिश का आनंद लेने का अंदाज लोगों का दिल जीत रहा है। बताया जा रहा है कि ये वीडियो यूपी के वाराणसी का है। संदीप यादव नाम के एक फोटोग्राफर ने इस वीडियो को रिकॉर्ड किया और फिर इसे सोशल मीडिया पर पोस्ट किया, जो देखते ही देखते वायरल हो गया।
9: दीदी, हमारे पास एक छोटा हेलमेट है, इसको दे सकता है क्या? बच्चों का हेलमेट, टॉम एंड जेरी वाला, ये पहनो।
2: हेलमेट पहनना बहुत ही जरूरी है। इसके लिए विभिन्न माध्यमों के जरिए जागरूकता भी फैलाई जाती है। सरकार ट्रैफिक नियमों के पालन करने के लिए विज्ञापन और कैंपेन पर करोड़ों रुपए खर्च करती है। हाल ही में इसी जागरूकता को एक शख्स ने कुछ ऐसे अंदाज में लोगों तक पहुंचाने का काम किया, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने लगा। ये वीडियो असम के गुवाहाटी का है, जहां सड़क पर एक बाइक सवार ने स्कूटी पर बिना हेलमेट के बैठे एक छोटे बच्चे को देखा तो उसने अपनी बाइक रोक दी और बच्चे को हेलमेट पहनने की सलाह देते हुए उसे एक छोटा सा हेलमेट भी दे दिया। हेलमेट पर बच्चों के पसंदीदा टॉम एंड जेरी के कैरेक्टर बने हुए थे, जिससे वो हेलमेट बच्चे के लिए भी बहुत प्यारी चीज बन गई। शख्स की इस प्यारी पहल ने सोशल मीडिया पर लोगों का दिल जीत लिया। सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है ये वीडियो खूब देखा जा रहा है। वीडियो में स्कूल में स्लो साइकिल रेस की प्रतियोगिता हुई है, जिसमें छात्रों को अपनी साइकिल इतनी धीमी चलानी है कि अंत में सबसे पीछे रहने वाले को ही विजेता घोषित किया जाएगा, बशर्ते आपके पैर साइकिल के पैडल से नीचे जाने नहीं चाहिए। अगर आपका पैर नीचे हो जाता है तो आप तुरंत उस रेस से बाहर हो जाएंगे। इस रेस में भाग लेने वाले सभी छात्र अपनी साइकिल को धीमी गति से चला रहे हैं। कुछ लोग तो साइकिल को बेहद ही धीमा करने के लिए ब्रेक का भी इस्तेमाल कर रहे हैं, मगर उनमें से एक छात्र इस रेस को जीतने के लिए साइकिल का ब्रेक मारकर उसे इस तरह से रोक देता है कि साइकिल एक जगह ही खड़ी रहती है और वो छात्र अपनी साइकिल के साथ एक इंच भी हिलता नहीं। छात्र अपनी साइकिल पर कुछ ऐसे बैलेंस बनाए रहता है कि उसके पैर नीचे जमीन पर टच ही नहीं होते और साइकिल भी एक जगह जमी रहती है। वहीं दूसरे छात्र एक एक कर अपना बैलेंस खोते जाते हैं और अपने पैर नीचे रख देते हैं, जिससे उन्हें रेस से बाहर होना पड़ता है। अंत में कलाबाजी दिखा रहे छात्र की जीत हो जाती है और उसे विजेता घोषित कर दिया जाता है।

0: सोशल मीडिया पर इन दिनों एक इमोशनल वीडियो वायरल है जिसे देख हर किसी की आंखें नम हो रही हैं। एक पति पत्नी के मिलन का ये पल इतना दिल छू लेने वाला है कि लोग बार बार देख रहे हैं और कमेंट कर रहे हैं। पति पत्नी अपने अपने काम की वजह से 6 साल तक दूर थे और जब दोनों का मिलन हुआ तो उस पल ने कई आंखें नम कर दी। कहते हैं कि अच्छे पड़ोसी सिर्फ आसपास रहने वाले लोग ही नहीं होते बल्कि समय के साथ परिवार का हिस्सा बन जाते हैं। सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा ये वीडियो इसी खूबसूरत रिश्ते की भावुक तस्वीर पेश कर रहा है। वीडियो में एक अमेरिकी महिला अपने भारतीय पड़ोसियों को विदाई देते हुए भावुक होकर रोती दिखाई दे रही है। भारतीय कपल अमेरिका से वापस भारत लौट रहा था और इसी दौरान उनके बीच का ये इमोशनल पल कैमरे में कैद हो गया। बताया जा रहा है कि भारतीय कपल अमेरिका के डिट्रॉइट से भारत लौटने की तैयारी कर रहा था। एयरपोर्ट के लिए रवाना होने से पहले उनकी अमेरिकी पड़ोसी उनसे मिलने गई। मुलाकात के दौरान महिला ने दोनों को गले लगा लिया। कुछ ही पलों में माहौल पूरी तरह भावुक हो गया। महिला अपने पड़ोसियों को गले लगाकर रोने लगी। दूसरी ओर भारतीय कपल मुस्कुराते हुए उन्हें संभालने की कोशिश करता नजर आया। इस छोटे से पल में दोनों ही परिवारों के बीच बना अपनापन साफ झलक रहा था। सोशल मीडिया पर ये दिल छू लेने वाला वीडियो वायरल है। वीडियो में पिता और बेटी के बीच का गहरा लगाव साफ नजर आता है। वीडियो में रेलवे स्टेशन का प्लेटफॉर्म दिखाई दे रहा है। ट्रेन धीरे धीरे स्टेशन से आगे बढ़ रही है और एक पुलिस अधिकारी उसके साथ कुछ कदम चलते नजर आते हैं। दरअसल ट्रेन में उनकी बेटी बैठी हुई है और वो उसे विदा करने के लिए वहां पहुंचे हुए थे। जैसे जैसे ट्रेन आगे बढ़ती है पिता की नजरें बेटी से हटने का नाम नहीं लेती। उनके चेहरे पर भावुकता साफ नजर आती है। बेटी भी अपने पिता को देखती है और उन्हें मुस्कुराने का इशारा करती है तो बेटी को खुश रखने के लिए पिता भी चेहरे पर मुस्कान लाने की कोशिश करते हैं और हाथ हिलाकर उसे विदा देते हैं। ट्रेन की रफ्तार बढ़ती जाती है और पिता कुछ दूर तक उसके साथ चलते रहते हैं। आखिरकार ट्रेन आगे निकल जाती है लेकिन उनकी आंखें आखिरी पल तक बेटी को तलाशती रहती है।
1: सारे कपड़े बर्तन झाड़ू पोछा काम कर सारे, वरना ये बीबियां जीने नहीं देंगी, खाने नहीं देंगी, पीने नहीं देंगी। आज जोड़ बीबी को सलाम कर प्यारे।
0: सोशल मीडिया पर एक मजेदार बीबी एंथम तेजी से वायरल हो रहा है जिसे सुनकर लोग अपनी हंसी रोक नहीं पा रहे। वीडियो में महिला शादीशुदा पुरुषों को मजाकिया अंदाज में कपड़े बर्तन और झाड़ू पोछा करने की सलाह देती नजर आती है।
1: आज जोड़ बीबी को सलाम कर प्यारे, बीबी संग रहना है गुलाम बन प्यारे।
0: गिनीज बुक में अनोखा कारनामा कर दिखाने वालों का नाम ही शुमार किया जाता है। अब इसके पन्ने में एक और नाम दर्ज हो गया है और वो नाम है निकोलस डेमारेनिस, जिन्हें निकी बकेट्स के नाम से भी जाना जाता है। इन्होंने मिनिएचर बास्केटबॉल का सबसे लंबा शॉट लगाने का रिकॉर्ड बनाया है। निकोलस ने गेंद को करीब 31.39 मीटर यानी 102.98 फीट दूर से बास्केट में पहुंचाया, जिसका वीडियो गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड ने खुद अपने ऑफिशियल इंस्टाग्राम अकाउंट पर शेयर किया है। निकोलस डेमारेनिस अमेरिका के फ्लोरिडा के टैंपा के रहने वाले हैं। इतनी लंबी दूरी से गेंद को सही दिशा में फेंकना अपने आप में बेहद मुश्किल भरा काम है, लेकिन उनकी सटीक निशानेबाजी और लगातार प्रैक्टिस का नतीजा ही अब एक शानदार रिकॉर्ड के रूप में सामने आया है। इस कारनामे के लिए गेंद को सही ताकत और सही एंगल के साथ फेंकना पड़ता है। जरा सी भी

0: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
1: और दुर्भाग्य कहता है
2: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
3: अविश्वास में विश्वास बसता है,
0: जो हम में अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
4: गुड न्यूज टुडे।
0: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते। खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे। देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
5: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
4: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
0: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।
3: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं, तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती है, तो कुछ दिखाती है विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है, तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं, तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज़ पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।

0: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
1: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
0: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से
2: अच्छी खबर में किंतु की गुंजाइश न रह जाए और बुरी खबर से परंतु सच्चाई ढूंढ कर लाए। ऐसी अच्छी और सच्ची खबरों के साथ आपके साथ मैं हूं नवजोत रंधावा। एक ऐसा शो जहां दिन की बड़ी खबर हम आपको आसान शब्दों में पॉइंट बाय पॉइंट समझाएंगे, यानी बड़ी खबर का सच्चा और अच्छा विश्लेषण। अच्छी और सच्ची खबरों में बात सबसे पहले गणेशोत्सव की होगी। गणेशोत्सव से पहले महागणपति का आगमन, महालक्ष्मी अवतार में काला चौकी के गणपति के दर्शन आपको कराएंगे। जरा हट के फ्रूट चॉकलेट का जायका भी लीजिएगा, डार्क चॉकलेट में फ्यूजन का स्वाद। और दिल्ली में कूड़े कचरे से ट्रिपल धमाका, कूड़ा जलाने से बिजली भी मिलेगी। शुभ हेडलाइंस के साथ
3: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट, कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच। HRIT यूनिवर्सिटी गाजियाबाद, शेपिंग फ्यूचर क्रिएटिंग लीडर्स।
2: चुनौतियों के बीच हेमकुंड साहिब यात्रा में रौनक, अब तक 2.5 लाख से ज्यादा श्रद्धालुओं ने मत्था टेका। 10 अक्टूबर तक जारी रहेगी पवित्र यात्रा। सावन के पवित्र महीने में दिख रहे शिव भक्ति के अनोखे रंग, मुंगेर में भव्य कांवड़ यात्रा बनी आकर्षण का केंद्र, श्रद्धालु बैजनाथ धाम में करेंगे जलाभिषेक। महाराष्ट्र में गणेशोत्सव की तैयारियां तेज, अकोला में बप्पा की प्रतिमाओं को अंतिम रूप दे रहे कारीगर। 14 सितंबर से शुरू होगा गणेशोत्सव। जम्मू कश्मीर दौरे पर अमेरिकी राजदूत सर्जियो गोर, श्रीनगर की डल लेक में की शिकारा की सवारी, घाटी के मेहमान नवाजी के हुए मुरीद।

यूपी के कई जिलों में बाढ़ जैसे हालात, वाराणसी से लेकर प्रयागराज तक बढ़ा नदियों का जलस्तर, अलर्ट मोड पर आया प्रशासन।

शुरुआत करते हैं अच्छी और सच्ची खबरों की। सबसे पहले गणेशोत्सव की बात करेंगे, जिसकी शुरुआत अगले महीने यानी कि 14 सितंबर से होने जा रही है। 10 दिन तक चलने वाले इस गणेशोत्सव को लेकर इन दिनों देश भर में तैयारियां जोर शोर से हो रही हैं, खासकर देश के पश्चिमी राज्य महाराष्ट्र में, जहां पर गणेश चतुर्थी के लिए न सिर्फ बड़े बड़े पूजा पंडाल आकार ले रहे हैं, बल्कि इन पूजा पंडालों में विराजने वाले विघ्नहर्ता भगवान गणेश की प्रतिमाएं भी पहुंचने लगी हैं। और इसी कड़ी में कालाचौकी के गणपति का आगमन बहुत धूमधाम से हुआ, वहीं बाजारों में भी गणेशोत्सव को लेकर रौनक नजर आने लगी है।

0: भगवान गणेश की 22 फीट ऊंची ये मनोहारी प्रतिमा जब पूजा पंडाल के लिए लाई गई, तो बप्पा के स्वागत में श्रद्धालुओं का सैलाब मुंबई की सड़कों पर उमड़ आया। भीड़ इतनी कि लोगों को सड़क पर जगह नहीं मिली, तो वो फ्लाईओवर, सड़क किनारे बने डिवाइडर और आसपास की इमारतों पर चढ़ गए। विघ्नहर्ता के स्वागत के लिए ढोल नगाड़े के साथ बप्पा की प्रतिमा जैसे जैसे अपनी मंजिल की ओर बढ़ी, लोगों का हुजूम बढ़ता चला गया। गणेश चतुर्थी का पर्व अगले महीने की 14 तारीख से शुरू हो रहा है, लेकिन इससे पहले ही मुंबई समेत पूरे महाराष्ट्र में सजने वाले छोटे बड़े गणेश पंडालों में बप्पा के आगमन का सिलसिला हर गुजरते दिन के साथ तेज होता जा रहा है। इसी कड़ी में कालाचौकी के महागणपति का आगमन बड़े धूमधाम के साथ हुआ।
1: देखिए, आपको बता दें कि मुंबई में अब जोरदार शुरुआत हो चुकी है गणेश महा उत्सव की, और बड़े बड़े पंडाल अपने बप्पा को अपनी जगह पर लेकर आना शुरू हो चुके हैं। फिलहाल इस समय मौजूद हूं साउथ मुंबई के काला चौकी के महागणपति के दरबार में, और आप देखें बहुत ही सुंदर भव्य तरीके से बप्पा को यहाँ पर विराजमान कर दिया गया है। आपको बताएं कि महालक्ष्मी के अवतार में गणपति बप्पा को ले आया गया है। चूंकि साज सज्जा का काम करना होता है, डेकोरेशन का काम करना होता है, इसलिए समय से पहले ही इस तरह से जो बड़ी बड़ी मूर्तियाँ होती हैं उन्हें बड़े बड़े पंडालों में लेकर आया जाता है। फिलहाल यहाँ बात करें इन बप्पा की, 22 फीट की ऊंचाई है, ट्रॉली से सिंह पर बाकायदा बप्पा सवार हैं, और खास बात यह है कि जो ट्रॉली रखी गई है जिस जगह पे, उसके नीचे बहुत ही सुंदर तरीके से रंगोली भी निकाली गई है, बनाई गई है, ठीक उसके ऊपर बप्पा को विराजमान करा गया है। और कुछ घंटों पहले बहुत सारे तस्वीरें, बहुत सारे वीडियो सोशल मीडिया पर बप्पा के आगमन को लेकर के वायरल हुए थे, जिसमें हजारों की तादाद में जो गणेश भक्त हैं वो जुटे हुए थे और हर कोई बप्पा का स्वागत कर रहा था, हर किसी के चेहरे पे खुशी नजर आ रही थी।
0: कालाचौकी महागणपति मंडल के जुड़े लोग बताते हैं कि हर साल बप्पा का स्वरूप बदलता है, इसी वजह से इस साल बप्पा महालक्ष्मी स्वरूप में पधारे हैं, और उनका पंडाल भी सोलापुर के महालक्ष्मी मंदिर की तर्ज पर सजाया जाएगा, जिसकी पहली झलक गणेशोत्सव के पहले दिन देखने को मिलेगी।
2: हर साल स्वरूप महागणपति का बदलता है, कभी महागणपति पांडुरंग विट्ठल के रूप में आते हैं, कभी सरस्वती के रूप में आते हैं, कभी भोले शंकर के रूप में आते हैं, तो कभी कान्हा नटखट बन के आते हैं। ये साल महालक्ष्मी का रूप, यानी महालक्ष्मी यानी क्या, स्थैर्य, शांति, संपत्ति, जो आजकल हर एक को आशीर्वाद के रूप में महागणपति देने आ रहे आ गए है, और इसी का जो हमारी झांकी बनेगी, डेकोरेशन बनेगा, वो भी उसी का एक कोल्हापुर के महालक्ष्मी मंदिर का जो कंपोनेंट्स है, जो छवि है, वही आपको देखने को मिलेगी। इसलिए मैं आपके ओर से हमारे सभी भक्तों को विनती करता हूँ कि ये महालक्ष्मी का रूप महागणपति का आप इस कोल्हापुर के महालक्ष्मी के मंदिर में देखने आइए।
0: मुंबई के प्रसिद्ध गणेश मंडलों में एक कालाचौकी महागणपति अपने भव्य आगमन और पारंपरिक उत्सव के लिए जाना जाता है, जहां हर साल बड़ी संख्या में भक्त बप्पा के दर्शन के लिए आते हैं, जिसे देखते हुए आयोजकों ने तैयारी शुरू कर दी है।
2: महागणपति का आगमन 16 हम लोग सिर्फ आगमन नहीं करते, तो एक परंपरा उसमें जताते हैं। महाराष्ट्र की जो जो परंपरा है, जो आजकल कम होती जा रही है, और वो सिर्फ उनके उनके जगह पे ही दिखाई जाती है, उनको हम सब मुंबई में लेके आते हैं। पालखी जो होली में हमारे कोकण में नचाई जाती है, वो कोली हमारे सब कोकण के बांधव वो पालखी लेके आते हैं, और महागणपति के जो रुपेरी पैर रहते हैं उनको वो पालखी में रखते हैं। हमारे कोली भाई बहन रहते हैं, वो उनका नृत्य प्रकार यहाँ पे दिखाते हैं। मर्दानी खेल जो रहते हैं, जो शिवकालीन छत्रपति शिवाजी महाराज जी के कालखंड से ये चलते आ रहे हैं, वो भी हमारे ये पारंपरिक आगमन 16 में रहते, इसलिए ये सब मैनेज करने के लिए हमें एक महीने का वक्त तो लगता ही है।
0: जैसे जैसे पूजा पंडालों में भगवान गणेश की प्रतिमाओं के पहुंचने का सिलसिला शुरू हुआ, मूर्तिकारों ने भी प्रतिमाओं को सजाने सवारने का काम तेज कर दिया। चाहे तिरुचिरापल्ली हो या फिर अकोला, कार्यशालाओं में प्रतिमाओं को ऑर्डर के हिसाब से तैयार किया जा रहा है। अकोला में बनने वाली गणेश प्रतिमाओं की डिमांड आसपास के शहरों जैसे अमरावती, नागपुर, यवतमाल और जलगांव में भी है।
3: अपने लाडले बापा का त्योहार जो है वो बस अब कुछ ही दिन बचे है इस लाडले के त्योहार को, और लाडले बापा जो है हर घर में, हर सार्वजनिक पंडाल में जो है विराजमान होने में जो है सभी भक्त जो है बड़े आतुर है। उससे पहले मूर्ति कलाकार जो है बापा की जो बड़ी बड़ी विशाल मूर्तियां जो है लगभग 3 फीट से तो लेकर 25 या 30 फीट की मूर्तियां इस सिद्धिविनायक आर्ट कार्यशाला में बन रही है, और ये लाल बाग की मूर्ति है जो अकोला जिले के अकोट की है। मानो इनकी महारत लाल बाग के राजा की सबसे ज्यादा मूर्तियों की डिमांड जो है शिवा भाऊ के पास रहती है, और शिवा भाऊ लगभग 3 फीट से लेकर 3 फीट या 5 फीट की जो मूर्तियां है वो मिट्टी की बनाते हैं।
4: हमारी मूर्तियां नागपुर से जलगांव तक सभी जिले में जाती है, और ज्यादातर हमारे लालबाग राजा का डिमांड ज्यादा है, तो इसीलिए हम लालबाग राजा मूर्ति की प्रतिमाएं ज्यादा बनाते हैं।
0: इन कार्यशालाओं में सिर्फ पूजा पंडालों के लिए ही गणेश प्रतिमाएं तैयार नहीं हो रही, बल्कि घरों के लिए भी छोटे आकार की प्रतिमाएं तैयार की गई। मूर्ति निर्माण से जुड़े लोग बताते हैं कि इस साल मूर्ति निर्माण में लगने वाले कच्चे माल की कीमत बढ़ने से इसका असर मूर्तियों की कीमतों पर पड़ा है। बावजूद इसके बड़ी संख्या में लोगों ने महीनों पहले ही गणेश मूर्तियों के लिए ऑर्डर दे रखा है।
4: इस वर्ष 25 से 30% कीमतों में वृद्धि हो गई है, क्योंकि मटेरियल महंगा होने की वजह से कीमत ज्यादा हो गई, और हमारे जो कारागिर है, जो हमारे साथी है जिनके भरोसे हमारा सब चलता है, वो सब बिहार से आते हैं। इस वक्त का माहौल बहुत अच्छा है, 2-3 साल के मुकाबले इस वक्त का माहौल बहुत अच्छा है, और लोगों में उत्साह भी ज्यादा दिख रहा है।
0: आपको बता दें कि बदलते वक्त के साथ लोगों के बीच इको फ्रेंडली प्रतिमाओं की डिमांड ज्यादा देखी जा रही है, क्योंकि ये प्रतिमाएं पर्यावरण को नुकसान नहीं पहुंचाती हैं। ऐसे में मूर्तिकार भी ऐसी प्रतिमाएं ज्यादा संख्या में बना रहे हैं ताकि लोगों की डिमांड को पूरा किया जा सके। मुंबई से धर्मेंद्र दुबे और अकोला से धनंजय साबले के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
5: चलिए आगे बढ़ते हैं। अगली अच्छी खबर दिल्ली के एक स्कूल से है। खबर यह है कि दिल्ली के अशोक नगर में मौजूद सर्वोदय कन्या विद्यालय की 4 छात्राओं ने एक खास तरह की चॉकलेट तैयार की है, जिसमें स्वाद के साथ साथ सेहत का भी खास ख्याल रखा गया है, क्योंकि इस चॉकलेट में सीजनल फ्रूट्स और ड्राई फ्रूट्स का इस्तेमाल हुआ है। मिश्री, मुस्कान, काजल और साक्षी, इन 4 छात्राओं ने यही वो इनोवेशन किया है जिसके जरिए कोशिश ये है कि बच्चों को चॉकलेट के साथ साथ फ्रूट्स और ड्राई फ्रूट्स का जायका भी मिल सके, ताकि उनकी सेहत भी बनी रहे।
6: चॉकलेट में आपके सामने लेकर आने वाली हूं।

0: छोटे से बॉक्स में रखी ये चॉकलेट कोई आम चॉकलेट नहीं है, बल्कि ये खास चॉकलेट है, क्योंकि इसमें चॉकलेट के साथ सीजनल फ्रूट्स और ड्राई फ्रूट्स इस्तेमाल हुए हैं, इसलिए इसे फ्रूट चॉकलेट कहा जा रहा है। इस चॉकलेट को बनाया है दिल्ली के सर्वोदय कन्या विद्यालय में पढ़ने वाली चार छात्राएं, मिष्टि, मुस्कान, काजल और अक्षी ने।
1: उम्र चाहे कोई भी हो, चॉकलेट्स खाना किसको नहीं पसंद। मुझे तो डेफिनेटली बहुत पसंद है, लेकिन मैं कभी कभी ये नहीं सोच पाती कि कौन सी चॉकलेट मुझे खानी चाहिए और कौन सी नहीं। लेकिन एक ऐसी चॉकलेट मैं आपके सामने लेकर आने वाली हूँ जहाँ पर हर एक माँ बाप को सोचने की या टेंशन लेने की नीड नहीं है। वो अपने बच्चों को ईजिली ये जो चॉकलेट्स मैं आपको अभी दिखा रही हूँ वो खिला सकते हो, क्योंकि ये चॉकलेट्स जो है वो फ्रूट चॉकलेट्स है। पेरेंट्स को किसी तरीके का डर नहीं होना चाहिए जब उनके छोटे बच्चे जो है वो चॉकलेट्स उनसे मांगे और वो देने से डरे, लेकिन ये चॉकलेट एक ऐसी है जो आप इनको इजीली जो है वो दे सकते हैं, खिला सकते हैं, इवन पेरेंट्स भी जो है एंजॉय कर सकते हैं। और ये जो चॉकलेट्स है बनाया है अगेन सर्वोदय कन्या विद्यालय जो कि ईस्ट ऑफ लोनी में है, इन्हीं की छात्राओं ने और ये चार छात्राओं ने मिलकर ऐसी एक चॉकलेट्स बनाई।
0: इस फ्रूट चॉकलेट में कोटिंग के लिए बाहर नेचुरल डार्क चॉकलेट इस्तेमाल की गई है और अंदर सीजनल फ्रूट्स और ड्राई फ्रूट्स मौजूद हैं, ताकि खाने वाले को स्वाद के साथ सेहत की चिंता न करनी पड़े, खासकर बच्चों को लेकर।
2: जनरली चॉकलेट बच्चे जब ज़्यादा खाते हैं तो उनको टीथ की प्रॉब्लम हो जाती है, ये और भी हेल्थ के लिए ज़्यादा खाना नुकसानदायक है। लेकिन इसके खाने के माध्यम से बच्चों को फ्रूट्स का जो वो पसंद कम करते हैं, कुछ फ्रूट्स इसके माध्यम से उनके अंदर जाएंगे और उनको हेल्थ का जो फ़ायदा है वो तो मिलेगा ही, और साथ में ये टेस्ट भी है। और पहले जब से सबसे पहले इन्होंने चॉकलेट बनाई थी तो इन्होंने फ्रूट्स को कोट कर दिया था, तो वो जैसे एक दो दिन में वो फ्रूट्स ख़राब होने लगा तो चॉकलेट भी ख़राब हो गई। अब इन्होंने जो नया आइडिया निकाला ये अपने आप में वाकई में बहुत कामयाब है कि इसमें इन्होंने पल्प को उसमें डाला है तो वो ज्यादा समय तक थोड़ा सा प्रिजर्व हो सकती है, तो ये मुझे बहुत अच्छा लगा।
0: गुड न्यूज टुडे से बातचीत में इन छात्राओं ने बताया कि उन्हें इस फ्रूट चॉकलेट को बनाने का आइडिया कहाँ से आया और कैसे इसकी शुरुआत हुई।
1: अच्छा, ये आइडिया कहाँ से आया? सभी चॉकलेट्स के दीवाने, तो आपने, आपके पेरेंट्स मना करते चॉकलेट नहीं खाना?
3: थोड़ा बहुत सबके पेरेंट्स मतलब अनहेल्दी है तो नहीं खानी चाहिए, इतनी तो लिमिट में खानी चाहिए, तो नॉर्मली हमने एक सोचा कि इतनी चॉकलेट्स नहीं खानी चाहिए, कुछ ऐसा हो कि हमें खाने में भी टेस्टी हो और हेल्दी भी हो, ताकि हमारी हेल्थ भी अच्छी रहे। तो हमने पहले, हमारा मेन प्रोडक्ट जो था वो था फ्रूट स्क्यूअर्स, उसमें हमने फ्रूट्स को चॉकलेट के साथ कोट करा और वो थी डार्क चॉकलेट, तो वो हमें हेल्दी है वो और टेस्ट भी अच्छा। उसमें हमने ड्राई फ्रूट्स, नट्स ऐड करे और अब जो हमने थोड़ा उसको इनोवेटिव किया है।
4: मैम, जैसे मेरा छोटा भाई है वो फ्रूट्स बिल्कुल भी नहीं खाता था और चॉकलेट्स बहुत ज्यादा खाता था, जिससे मेरी मम्मी बहुत ज्यादा परेशान थी। एंड फाइनली जब हम इस पर रिसर्च कर रहे थे तो हमने ये चीज देखी और मैंने जब अपने भाई को टेस्ट भी कराया, ही वॉज लविंग इट, वो इसको खा रहा था और मम्मी भी खुश थी क्योंकि इसमें ज्यादा स्वीटनेस नहीं और वो फ्रूट्स खाने लग गया था। तो मैम यही एक वो है कि यही एक सर्वे है, मतलब जिसको हम पेरेंट्स को दिखाएंगे, हम उन्हें पहले फ्री सैंपल्स भी बांटेंगे जिससे हम उन्हें को शो कर सके कि कैसे बच्चे इसको पसंद कर रहे हैं और कैसे एक हेल्दी स्नैक है।
0: इन छात्राओं ने इस प्रोडक्ट को सिर्फ एक स्कूल प्रोजेक्ट तक सीमित नहीं रखा, बल्कि इसे अपने स्टार्टअप बिजनेस आइडिया के तौर पर भी विकसित करने की दिशा में काम किया है। मिष्टि, मुस्कान, काजल और अक्षी की कोशिश है कि ऐसी चॉकलेट तैयार की जाए जिसे बच्चे खुशी खुशी खाएं और माता पिता को भी अपने बच्चों की सेहत को लेकर ज्यादा फिक्रमंद ना होना पड़े।
4: मैम, जैसे हम स्मॉल वाला बॉक्स अभी हम दे रहे हैं तो मैम इसका कॉस्ट 20 रुपीज हम रख रहे हैं, जिसके अंदर हमें प्रॉफिट 10 रुपीज का और है, ऑलमोस्ट 50% हम कह सकते हैं। मैम, इसमें हम आगे और इनोवेशंस करने वाले हैं, हम आगे रॉ मटेरियल जो है स्टॉक में खरीदा करेंगे, हम जो सामान है उसको देखेंगे कि हम पहले से प्रिपेयर करके रख पाएं बॉक्सेस वगैरह, जिससे मैम जो हमारा कॉस्ट है वो और कम आएगा और प्रॉफिट ज्यादा हो जाएगा हमारा।
1: आप देख सकते हैं कि बच्चों ने किस तरीके से जो है पूरी रिसर्च करी और वो रिसर्च जो है मैं आपको दिखा रही हूँ कि कहते हैं ना स्कूल के बच्चों ने करा है, तो उसी स्टाइल में आपको चीजें दिखेगा कि कवर भी बच्चों ने खुद हैंडमेड है, सारी चीजें जो है वो खुद बनाई है और उसके बाद इनका रिसर्च वर्क जो है वो शुरू होता है कि किस तरीके से इनका फाइनल प्रोडक्ट है वो इन्होंने पैकेजिंग के साथ जो है वो यहाँ दिखाने की कोशिश करी है। इसके अंदर क्या क्या इंग्रेडिएंट्स आए हैं वो बच्चों ने लिखा है कि कौन सा सीजनल फ्रूट है वो इस्तेमाल किया जाना चाहिए, किस तरीके की चॉकलेट्स का जो है वो यूज करना चाहिए। हालांकि फलों को खराब होता देखते हुए इन बच्चों ने जो है चंक्स का इस्तेमाल, प्योरी का इस्तेमाल करना जो है वो शुरू किया।
0: आज बाजार में कई फ्लेवर और कई ब्रांड की चॉकलेट मौजूद हैं, जिन्हें बच्चे ही नहीं बड़े भी बड़े चाव से खाते हैं। लेकिन हर किसी को अपनी सेहत की चिंता जरूर रहती है। ऐसे में मिष्टी, मुस्कान, काजल और अक्षी की बनाई ये चॉकलेट एक बेहतर विकल्प हो सकती है, बशर्ते ये देश में खाने पीने की चीजों की गुणवत्ता और सुरक्षा तय करने वाली संस्था फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया यानी फसाए के मानकों के मुताबिक हो।
1: भविष्य में खुद को कैसे देखना है, कहाँ लेके जाना है, उसकी शुरुआत कर दी है और वो शुरुआत कुछ इस छोटी चॉकलेट्स के रूप में इन्होंने करी है कि ये कुछ इस तरीके का प्रोडक्ट्स बना रहे हैं जो ये मार्केट में देना चाहते हैं जो हर किसी के लिए हेल्दी हो, अनहेल्दी बिल्कुल भी नहीं। कैमरा पर्सन लोकेंद्र के साथ मनीषा लड्डा, दिल्ली, गुड न्यूज टुडे।
5: बात ऐसे पॉल्यूशन कंट्रोल सिस्टम की जिसको दिल्ली के सरकारी स्कूल के 4 छात्रों ने मिलकर तैयार किया। फिलहाल प्रोटोटाइप स्टेज में ये उपकरण कूड़े कचरे को जलाकर सोलर पैनल की मदद से बिजली बनाता है। उसके बाद कूड़े को जलाने की बचत से पैदा हुए धुएं और कार्बन से तरह तरह के उत्पाद तैयार किए जा सकते हैं। छात्रों का ये दावा है कि उनके एयर पॉल्यूशन कंट्रोल सिस्टम की वजह से खुले में कूड़े कचरे को जलाने से गंभीर वायु प्रदूषण को टाला जा सकता है, जिससे लोगों की सेहत को भारी नुकसान होने से भी बचाया जाएगा।

0: हर साल दिवाली के आसपास दिल्ली साफ हवा के लिए जूझती है। सर्दियों के मौसम में दिल्ली में हवा को सांस लायक बनाए रखने में सरकारी एजेंसियों को भी बहुत जद्दोजहद करनी पड़ती है, पर अब इस समस्या का समाधान होने की उम्मीद जगी है। वायु प्रदूषण के समाधान की राह स्कूल प्रोजेक्ट से जुड़े इसी ढांचे से होकर निकल सकती है। जटिल सा दिखने वाला ये डिजाइन भूमि, जल और वायु प्रदूषण के लिए जिम्मेदार कूड़े कचरे को ज्यादा वैज्ञानिक तरीके से निपटाने की ताकत रखता है।
1: सर्दियां आते ही दिल्ली की हवा हर साल प्रदूषित हो जाती है और लोगों के मन में ढेर सारे सवाल आ जाते हैं कि आखिरकार सांस कैसे लें और उससे भी ज्यादा ये प्रदूषण जो है वो कैसे रोका जाए। और इन्हीं सभी सवालों का जवाब ढूंढते हुए दिल्ली के सरकारी स्कूल मंडोली एक्सटेंशन स्थित जो स्कूल है वहाँ के चार छात्रों ने एक ऐसा मॉडल तैयार किया है जिसमें इन सभी सवालों का जो जवाब है आपको वो मिलने वाला है कि किस तरीके से दिल्ली में जो लगातार प्रदूषण बढ़ता जा रहा है उसका जो समाधान है इन छात्रों ने जो है वो ढूंढ निकाला है। और ये जो मॉडल आप मेरे सामने देख रहे हैं ये वो मॉडल है जिनसे ये प्रदूषण रोकने की ये कोशिश जो है ये बच्चे जो है वो करते हुए आपको नजर आएंगे। तो ये जो आप पूरा सेटअप देख रहे हैं ये पोल्यूशन कंट्रोल सिस्टम है जो इन बच्चों ने जो है बनाया है।
0: पूर्वी दिल्ली के शाहदरा क्षेत्र में मंडोली एक्सटेंशन के सरकारी स्कूल में पढ़ने वाले इन बच्चों ने ऐसा पोल्यूशन कंट्रोल सिस्टम बनाया है जो खुले में कूड़ा कचरा जलाने के अलावा दूसरी वजह से होने वाले वायु प्रदूषण को भी काबू करता है। दरअसल छात्रों का ये मॉडल चार चरणों में काम करता है। सबसे पहले इसमें लगे कंटेनर में कूड़े कचरे को जलाया जाएगा, उससे पैदा होने वाली गर्मी को सोलर पैनल एनर्जी यानी ऊर्जा में बदलेगा। कूड़े कचरे के जलने से जो धुआं निकलेगा वो गैस चेम्बर के अंदर जाकर फिल्टर होगा जिसकी वजह से उसके अंदर ही कार्बन जमा हो जाएगा।
1: किस तरीके से इसका जो है पूरा प्रोसीजर है कैसे काम करेगा अगर इसको बड़े लेवल पे हम लेके जाते हैं?
2: एक्चुअली जब हम इसको बड़े लेवल पे लेके जाएंगे तो हमने जो कंटेनर लगाया है इस कंटेनर के हम अंदर हम बहुत सारा अपना वेस्ट रखेंगे और वेस्ट करने के बाद जो हमारी हीट निकलेगी उसके लिए हमने साइड में सोलर पैनल लगा रखे हैं, जो सोलर पैनल हीट मतलब हीट लेंगे और कंज्यूम करके उसे कन्वर्ट कर देंगे इलेक्ट्रिसिटी में, जो कि हमें यहाँ पर इस छोटे से बल्ब के अंदर अभी दिखा देंगे।
1: अभी हम डेमो देख सकते हैं इसका पूरा, तो आप देख सकते हैं ये डेमो ये जो है ये आपको करके दिखाएंगे कि किस तरीके से जितना भी जो वेस्ट है वो उससे उसकी शुरुआत होगी और एंड में जो है इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती हुई जो है आपको वो नजर आएगी। तो आप देख सकते हैं कि ये पूरा मॉडल मैं आपको दिखा रही हूँ जो दिल्ली के इन सरकारी स्कूलों के बच्चों ने जो बनाया है, ये सोलर पैनल है और यहाँ पर देखिए
2: ये आप देख सकते हैं यहाँ पे हमारी एनर्जी जो है प्रोड्यूस हो चुकी है ऑलरेडी, क्योंकि यहाँ पे सोलर पैनल जो है चार्ज हो गए हैं हीट की मदद से और चार्ज होने के बाद यहाँ पे हमारी एनर्जी आ चुकी है। और उसकी एनर्जी के बाद अब जो हमारा एयर पोल्यूशन होगा उसको कंट्रोल करने के लिए भी हमारे पास चीज़ें होनी चाहिए, क्योंकि हम वेस्ट जलाएंगे तो हमने लैंडफिल वेस्ट तो बचा लिया, लैंड को बचा लिया, लेकिन वहाँ से जब एयर पोल्यूशन होगा तो उसको कैसे कंट्रोल करेंगे? तो एयर पोल्यूशन को कंट्रोल करने के लिए हमने साइड में एक एब्जॉर्बर लगाया है जो इस एब्जॉर्बर जो है वो स्मोक को एब्जॉर्ब करेगा, देन एब्जॉर्ब करने के बाद पीछे हमने फिल्टर लगाया है जो फिल्टर कन्वर्ट कर सकता है कार्बन के अंदर।
0: पॉल्यूशन कंट्रोल सिस्टम के फिल्टर में जो राख बच जाएगी उसका इस्तेमाल मजबूत और चिकनी ईंटें बनाने के अलावा और कई उत्पादों को बनाने में किया जा सकता है।
2: ये उसको एज ए हम कंक्रीट बॉक्स बनाने में यूज कर सकते हैं, उनको हम रोड में बनाने में भी यूज कर सकते हैं।
0: कुछ महीने की रिसर्च और मेहनत के बाद तैयार किया गया ये मॉडल फिलहाल एक प्रोटोटाइप की शक्ल में है। समय के साथ इसको और बेहतर बनाने के साथ साथ दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता के सामने पेश करने की भी योजना है, ताकि इंडस्ट्रियल इलाकों में इस तरह की तकनीक को अपनाने की तरफ कदम उठाया जा सके।
3: देखिए ये तीन लेवल क्रॉस कर चुके हैं। सबसे पहले हमारे स्कूल से 8 टीमें सिलेक्ट हुई थी, उन 8 टीमों में से फिर 4 टीमें सिलेक्ट हुई जोनल लेवल पर, और अब जोनल के बाद जब हम डिस्ट्रिक्ट लेवल पर गए तो वहाँ पर भी इसको अप्रिशिएट किया गया है। तो कहीं ना कहीं बच्चों ने जो मेहनत की है वो जरूर रंग लाएगी। ये जो प्रोजेक्ट है यहाँ पर हम देखते हैं कि स्कूलों की भी 2 या 3 दिन की पोल्यूशन को लेकर छुट्टी होती है हर साल, तो बच्चों ने इसी को ध्यान में रखते हुए कि कुछ ऐसा किया जाए कि जो हमारी दिल्ली है वो प्रदूषण से कहीं ना कहीं, जैसे कहते हैं ना, पूरा तो ठीक नहीं कर सकते लेकिन कम से कम कुछ तो ऐसा करें, कुछ तो शुरुआत करें कि कुछ ठीक हो सके। तो इन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए बच्चों ने वेस्ट से लाइट भी जनरेट की है और वायु को भी क्या किया है, शुद्ध किया है।
0: दरअसल कारखानों, फैक्ट्रियों और मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स से निकलने वाले ठोस कचरे और हानिकारक धुएं की वजह से सबसे ज्यादा प्रदूषण फैलता है, जो हमारी हवा, पानी और मिट्टी को बड़े पैमाने पर दूषित करता है। इसके अलावा दिल्ली के ओखला, भलसवा और गाजीपुर में मौजूद लैंडफिल साइट्स यानी कचरे के पहाड़ को खत्म करने की एक बड़ी चुनौती है। वहां जमा लाखों टन कचरे का निपटारा आसान काम नहीं है। ऐसी चुनौतियों को देखते हुए ही छात्रों को कचरे से चलने वाले पोल्यूशन कंट्रोल सिस्टम बनाने का आइडिया आया।
3: गाजीपुर के बारे में स्टडी की, उसमें देखा कुछ कमियां, उस कमियों को हटा के अपने में थोड़ा आइडिया लगा के लगाया था।
0: दरअसल दिल्ली सरकार की तरफ से शिक्षित दिल्ली विकसित दिल्ली की सोच के तहत नींव यानी न्यू एरा ऑफ एंटरप्रेन्योरियल इकोसिस्टम एंड विजन योजना की शुरुआत की गई है। इसके तहत सरकारी स्कूलों के क्लास 8 से लेकर 12वीं तक के छात्रों में एंटरप्रेन्योरशिप यानी नवाचार को बढ़ावा देने के लिए आर्थिक सहयोग दिया जा रहा है, जिससे वो उज्जवल भविष्य के लिए तैयार हो सके।
4: ये सोच हमारे बच्चों की बड़ी अच्छी है और एक समाज में जो मतलब एक प्रदूषण की बड़ी समस्या है उसको ये बच्चे अगर दूर कर पाते हैं तो मुझे बड़ा गर्व होगा अपने बच्चों पर।
0: बच्चों की वैज्ञानिक समझ और सूझबूझ से तैयार हुआ ये स्कूल प्रोजेक्ट अब 12 महीने दमघोटू आबोहवा से जूझने के लिए मजबूर दिल्ली के लिए बड़ी उम्मीद और राहत साबित हो सकता है। दिल्ली से मनीषा लड्डा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
1: खबरें सच्ची होनी चाहिए, अच्छी खुद बहुत लगती है। नवजोत सुधावा साइनिंग ऑफ। आप सुनते रहे गुड न्यूज, देखते रहे गुड न्यूज टुडे।
5: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम
6: कब कोई व्यक्ति जीवन में सही निर्णय ले पाता है, कब व्यक्ति के द्वारा लिए गए निर्णय गलत होते हैं, किन ग्रहों का प्रभाव आपके निर्णय पर पड़ता है और सही निर्णय लेने के उपाय क्या हैं, जानिए मेरे साथ सिर्फ किस्मत कनेक्शन में।
1: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
7: और दुर्भाग्य कहता है
1: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
8: अविश्वास में विश्वास बसता है,
1: जो हमें अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
9: गुड न्यूज टुडे।
1: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे, देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
5: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
10: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
1: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।
8: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती है तो कुछ दिखाती है विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
1: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
7: और दुर्भाग्य कहता है
1: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
8: अविश्वास में विश्वास बसता है,
1: जो हमें अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
9: गुड न्यूज टुडे।
1: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है।
11: तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे। देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
5: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
10: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
11: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।
8: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं, तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती है, तो कुछ दिखाती है विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है, तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं, तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
11: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
7: और दुर्भाग्य कहता है
11: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
8: अविश्वास में विश्वास बसता है,
11: जो हमें अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
9: गुड न्यूज टुडे।
11: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे। देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
5: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
10: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
11: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।
8: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं, तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती है, तो कुछ दिखाती है विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है, तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती है, तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
11: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
7: और दुर्भाग्य कहता है
11: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
8: अविश्वास में विश्वास बसता है,
11: जो हमें अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
9: गुड न्यूज टुडे।
11: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे। देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
5: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
10: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।

0: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को।
1: नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं किस्मत कनेक्शन और मैं हूं आपके साथ शैलेंद्र पांडे। आज हम बात करेंगे आपके निर्णय लेने की क्षमता के बारे में। कौन सा ग्रह कैसा निर्णय लेता है, किस ग्रह के प्रभाव से आप सही निर्णय ले पाते हैं और सही निर्णय लेने के उपाय क्या हैं, आज इस विषय पर बात करेंगे। बात करेंगे 12 राशियों के दैनिक राशिफल की और कार्यक्रम के अंत में आपको बताएंगे एक लकी टिप के बारे में और एक सक्सेस मंत्र के बारे में। तो चलिए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले जानते हैं पंचांग। 20 अगस्त 2026 दिन बृहस्पतिवार, तिथि है श्रावण शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि, रात के 9:18 तक। नक्षत्र है विशाखा नक्षत्र, प्रातः 9:08 तक। चंद्रमा वृश्चिक राशि में संचरण कर रहे हैं, राहु काल का समय दोपहर 1:30 से लगभग 3 तक। दक्षिण दिशा की तरफ यात्रा करने की मनाही है, लेकिन अगर यात्रा करना जरूरी है तो जरा सी पीली सरसों खाकर और भगवान का स्मरण करके यात्रा करेंगे तो मुश्किल से बचे रहेंगे। अब जान लेते हैं दिनांक 20 अगस्त 2026 दिन बृहस्पतिवार को प्रातः काल ग्रहों की स्थिति क्या है। बुध और बृहस्पति विद्यमान हैं कर्क राशि में, सूर्य और केतु सिंह राशि में, शुक्र कन्या राशि में, चंद्रमा वृश्चिक राशि में, राहु कुंभ राशि में, शनि मीन राशि में और मंगल फिलहाल विद्यमान है मिथुन राशि में। ग्रहों की इसी स्थिति के आधार पर आगे हम जानेंगे कि आपका दैनिक राशि फल कैसा रहने वाला है। देखिए, आज हम बात कर रहे हैं आपके निर्णय लेने के बारे में, आपके फैसला लेने के बारे में। इनका ग्रहों से और ज्योतिष से क्या संबंध है? देखिए, ज्योतिष में निर्णय लेने की क्षमता पंचम नवम और एकादश भाव से देखी जाती है। कुंडली के जो अलग अलग तत्व होते हैं वो आपके निर्णय लेने पर, आपके फैसला लेने पर असर डालते हैं और अलग अलग ग्रह आपके निर्णय लेने की क्षमता पर अलग अलग प्रभाव डालते हैं। चंद्रमा मन का कारक होता है, चंद्रमा मन का स्वामी है, इसीलिए जीवन में आप जो फैसला लेते हैं, जो निर्णय लेते हैं, उसमें चंद्रमा की विशेष भूमिका होती है। कुंडली के अलावा हस्तरेखा विज्ञान में आपके अंगूठे को देख करके आपकी निर्णय की क्षमता को, आपकी डिसीजन की कैपेसिटी को जाना जा सकता है। निर्णय क्षमता पर चर्चा हमारी जारी है, लेकिन आपको बता दें कि कार्यक्रम के अंत में हम बताएंगे एक लकी टिप के बारे में और एक सक्सेस मंत्र के बारे में। अब जान लेते हैं मेष, वृषभ, मिथुन और कर्क राशि का दैनिक राशिफल। मेष राशि, स्वास्थ्य आपका बिगड़ सकता है, व्यर्थ के विवाद हो सकते हैं, महत्वपूर्ण काम टाल दीजिए, केले का दान कर दें तो दिन की मुश्किलें कम हो जाएंगी। वृषभ राशि, स्वास्थ्य में सुधार होगा, धन लाभ के योग बन रहे हैं, यात्रा के योग बन रहे हैं, अनाज का दान कर दें तो दिन की मुश्किलें कम हो जाएंगी। मिथुन राशि, मानसिक चिंताएं समाप्त होंगी, पारिवारिक समस्या हल होगी, धन लाभ के योग बन रहे हैं, खाने पीने की वस्तु का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। कर्क राशि, करियर में सफलता मिलेगी, काम का दबाव समाप्त होगा, खान पान में सावधानी बनाए रखें, भगवान को अगर पीले फूल अर्पित कर दें तो दिन बेहतर होगा। अब ये जानते हैं कि कौन सा ग्रह आपके निर्णय लेने की क्षमता को कैसे प्रभावित करता है। जिनकी कुंडलियों में सूर्य का प्रभाव होता है, ऐसे लोग तुरंत निर्णय लेते हैं, तुरंत डिसीजन लेते हैं, जिसका परिणाम कुल मिला जुला के ठीक ही रहता है। चंद्रमा वाले लोग आम तौर पर अपने इमोशंस से, अपनी भावनाओं से निर्णय लेते हैं, उनके निर्णय में बुद्धि नहीं होती, उनके निर्णय में भावना होती है। मंगल प्रधान लोग जोश में निर्णय लेते हैं, बिना सोचे विचारे तुरंत निर्णय लेते हैं और ज्यादातर इनके निर्णय गलत हो जाते हैं। बुध प्रधान लोग अक्सर निर्णय लेने में दुविधा के शिकार होते हैं, अक्सर ये कंफ्यूज रहते हैं कि किस तरह का निर्णय जीवन में लेना चाहिए। बृहस्पति और शुक्र प्रधान लोग अक्सर जीवन में बैलेंस निर्णय, अक्सर संतुलित निर्णय लेते हैं। शनि प्रधान लोग जो होते हैं, वो सोच समझकर, ठंडे दिमाग से, समय लगा करके बेहतरीन निर्णय लेते हैं। शनि वाले निर्णय लेने के मामले में सबसे ज्यादा बुद्धिमान होते हैं, उसके बाद बृहस्पति और शुक्र वालों का निर्णय अच्छा रहता है। निर्णय क्षमता पर हमारी बात जारी रहेगी, लेकिन आपको बता दें कि कार्यक्रम के अंत में हम बताएंगे एक लकी टिप के बारे में और एक सक्सेस मंत्र के बारे में। अब जान लेते हैं सिंह, कन्या, तुला और वृश्चिक राशि का दैनिक राशिफल। सिंह राशि, स्वास्थ्य का ध्यान रखें, परिवार में विवादों से बचाव करें, धन खर्च पर नियंत्रण रखें, केले का दान कर दें तो दिन की मुश्किलें कम हो जाएंगी। कन्या राशि, करियर में सफलता मिलेगी, रुका हुआ धन प्राप्त होगा, कोई शुभ सूचना मिलेगी, अनाज का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। तुला राशि, स्वास्थ्य में सुधार होगा, रुके हुए काम पूरे होंगे, दौड़ भाग बढ़ी रहेगी, खाने पीने की वस्तु का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। वृश्चिक राशि, रुके हुए काम पूरे होंगे, आर्थिक स्थिति अच्छी रहेगी, संपत्ति का लाभ हो सकता है, अनाज का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। अगर आप सही समय पर सही निर्णय नहीं ले पाते तो क्या उपाय करें जिससे आपकी निर्णय की क्षमता मजबूत हो और आप सही समय पर सही फैसला ले पाएं। सुबह के समय नवोदित सूर्य को यानी उगते हुए सूर्य को जल जरूर चढ़ाइएगा। महिलाएं जल में हल्दी मिला लें और पुरुष जल में रोली मिला लेंगे। महीने में दो एकादशी आती है, दोनों एकादशी का या एक पूर्णिमा का उपवास रखिएगा। केवल लिक्विड लेकर, केवल जलीय पदार्थ लेकर। भगवान शिव का पंचाक्षरी मंत्र है नमः शिवाय। रोज सुबह इस मंत्र का जप करें या भगवान विष्णु का द्वादशाक्षर मंत्र है ओम नमो भगवते वासुदेवाय, इस मंत्र का रोज सुबह जप करें। शनिवार को प्रकाश का दान करें यानी शनिवार की शाम को पीपल के नीचे सरसों के तेल का दीपक जलाएं। पीला पुखराज धारण करने से या हीरा धारण करने से भी निर्णय क्षमता मजबूत होती है, ऐसा देखा गया है। कार्यक्रम के अंत में आपको बताएंगे एक लकी टिप के बारे में और एक सक्सेस मंत्र के बारे में। अब जान लेते हैं धनु, मकर, कुंभ और मीन राशि के लोगों का दैनिक राशिफल। धनु राशि, व्यर्थ की चिंता हो सकती है, ऑफिस में तनाव हो सकता है, खान पान में सावधानी बनाए रखें, केले का दान कर दें तो दिन की मुश्किलें कम हो जाएंगी। मकर राशि, करियर की समस्याएं हल होंगी, स्थान परिवर्तन हो सकता है, धन लाभ के योग बन रहे हैं, अनाज का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। कुंभ राशि, रुके हुए काम पूरे होंगे, करियर में सफलता के योग हैं, धन का लाभ होगा। भगवान को अगर पीले फूल अर्पित कर दें तो दिन बेहतर होगा। मीन राशि, करियर में लाभ होगा, स्थान परिवर्तन के योग बन रहे हैं, खान पान का ध्यान रखें, खाने पीने की वस्तु का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। अब जान लेते हैं आपके भाग्य को बेहतर बनाने के लिए एक लकी टिप। अगर स्वास्थ्य की अचानक से आकस्मिक कोई समस्या आ गई हो तो रोज सुबह और शाम एक एक बार नारायण कवच का अगर पाठ करें और निरंतर प्रार्थना करें, या आपके लिए परिवार का कोई अन्य व्यक्ति करे, तो स्वास्थ्य में सुधार होना आरंभ हो जाएगा। अब जान लेते हैं दिनांक 20 अगस्त 2026 दिन बृहस्पतिवार का सक्सेस मंत्र क्या है। प्रातः काल भगवान शिव को पीले फूल या पीला फूल अर्पित करिएगा। घर से निकलते समय उस फूल को अपने पास रख लीजिएगा। अगर प्रातः काल ऐसा करते हैं तो दिन भर के कार्यों में आपको सफलता अवश्य मिलेगी। तो किस्मत कनेक्शन में आज के लिए बस इतना ही। आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो, इसी कामना के साथ मुझे दीजिए इजाजत। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए गुड न्यूज़ टुडे। नमस्कार।

0: को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है। इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।
1: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती है तो कुछ दिखाती है विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
0: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
2: और दुर्भाग्य कहता है
3: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
1: अविश्वास में विश्वास बसता है,
0: जो हम में अच्छाई जगाता है हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
4: गुड न्यूज टुडे।
0: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे, देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
5: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
4: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
0: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।
1: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती है तो कुछ दिखाती है विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
0: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
2: और दुर्भाग्य कहता है
3: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
1: अविश्वास में विश्वास बसता है,
0: जो हम में अच्छाई जगाता है हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
4: गुड न्यूज टुडे।
0: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे, देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे में।

0: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को।
1: गुजरात के साबरमती रिवर फ्रंट को तो आपने देखा ही होगा, अब ठीक इसी तर्ज पर यमुना के किनारे भी एक भव्य रिवर फ्रंट बनाने की तैयारी है। यानी कि यमुना का किनारा सिर्फ नदी और घाट तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि यहाँ घूमने फिरने से लेकर मनोरंजन और पर्यटन तक की तमाम सुविधाएं विकसित करने का प्लान है।
2: राजधानी दिल्ली की जीवनदायिनी कही जाने वाली यमुना किनारे विकास की नई तस्वीर तैयार करने की मुहिम शुरू हो गई है। गुजरात के साबरमती रिवर फ्रंट की तर्ज पर यमुना रिवर फ्रंट विकसित होगा। इस सिलसिले में दिल्ली के जल मंत्री प्रवेश वर्मा ने अधिकारियों के साथ गुजरात का दौरा कर साबरमती मॉडल का बारीकी से अध्ययन किया।
3: सामने दिल्ली में सबसे बड़ा चैलेंज है यमुना रिवर फ्रंट बनाना, यमुना मैया को साफ करना। हमने साबरमती रिवर फ्रंट से बहुत सारी योजनाओं को सीखा है और हमने उनका प्रेजेंटेशन भी लिया है, उनके अधिकारियों को एक बार दिल्ली में भी बुलाकर पूरा समझेंगे।
2: यमुना रिवर फ्रंट को आधुनिक, आकर्षक और पर्यावरण के अनुकूल बनाया जाएगा और साबरमती मॉडल को दिल्ली

0: के साथ ही यमुना किनारे पर्यटन को बढ़ावा देने पर भी जोर रहेगा। हालांकि यमुना रिवर फ्रंट की सबसे बड़ी चुनौती नदी की सफाई और पर्यावरण संरक्षण रहेगा, जिसके लिए लगातार काम किए जा रहे हैं और आगे भी सीवेज प्रबंधन, जल प्रदूषण और नियंत्रण और यमुना के इको सिस्टम को सुरक्षित रखने पर खास ध्यान दिया जाएगा। यमुना रिवर फ्रंट की इस योजना के मुकम्मल होने के बाद दिल्ली की एक अलग तस्वीर नजर आएगी, जो सेहतमंद होने के साथ आकर्षक भी होगी। नर्मदा से नरेंद्र पेपरवाला के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, विदेश टुडे।
1: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
2: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
1: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीज।
3: नमस्कार, मैं हूँ श्वेता झा, स्वागत है आपका न्यूज पथ में। राह जिंदगी की हो या खबरों की, उसमें कई मोड़ होते हैं, कई रफ्तार होती है, कई पड़ाव होते हैं। देश और दुनिया से जुड़ी पॉजिटिव खबरों के साथ आपको लिए चलेंगे न्यूज पथ पर, लेकिन सबसे पहले एक नजर इस वक्त की हेडलाइंस पर।
4: Presented by पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट, कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच।
5: HRIT यूनिवर्सिटी गाजियाबाद, शेपिंग फ्यूचर, क्रिएटिंग लीडर्स।
3: हॉकी वर्ल्ड कप में भारत ने पाकिस्तान को 5-3 से हराया, टॉप 8 में पहुंची टीम इंडिया, कप्तान हरमनप्रीत और अभिषेक ने दागे 2-2 गोल। जम्मू कश्मीर दौरे पर अमेरिकी राजदूत सर्जियो गो, श्रीनगर की डल लेक में की शिकारा की सवारी, घाटी के मेहमान नवाजी के हुए मुरीद। मौसम की चुनौतियों के बीच हेमकुंड साहिब यात्रा में रौनक, अब तक 2.5 लाख से ज्यादा श्रद्धालुओं ने टेका मत्था, 10 अक्टूबर तक जारी रहेगी पवित्र यात्रा। सावन के पवित्र महीने में दिख रहे हैं शिव भक्ति के अनोखे रंग, मुंगेर में भव्य कावड़ यात्रा बनी आकर्षण का केंद्र, श्रद्धालु बैद्यनाथ धाम में करेंगे जलाभिषेक। महाराष्ट्र में गणेशोत्सव की तैयारियां तेज, अकोला में बप्पा की प्रतिमाओं को अंतिम रूप दे रहे कारीगर, 14 सितंबर से शुरू होगा उत्सव। शुरू करते हैं न्यूज पथ पर सफर और सबसे पहले आपको दिखाते हैं ऐसी तस्वीरें जिनका जिक्र सरेरा है। ये तस्वीरें सुर्खियों में भी है और सोशल मीडिया पर भी है, इनसे आपका बाखबर होना बेहद जरूरी है क्योंकि चौराहे पर इन्हीं की चर्चा है और चर्चा वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाने वाली मिथिला पेंटिंग की भी। देखिए
6: रामायण का हर प्रसंग अपने आप में पूरी किताब है और उसके 50 से ज्यादा प्रसंगों को एक कैनवास पर समेटना आसान नहीं है, लेकिन बिहार की मिथिला पेंटिंग के जरिए ये साकार हो गया है। मधुबनी के सौराठ स्थित मिथिला चित्रकला संस्थान के 160 से ज्यादा कलाकारों ने मिलकर 108 मीटर लंबे कैनवास पर रामचरितमानस की गाथा को मिथिला पेंटिंग के जरिए उकेरा है। 48 घंटे की लगातार मेहनत से तैयार इस कलाकृति में रामचरितमानस के 51 प्रमुख प्रसंगों को दर्शाया गया है। पद्मश्री और राष्ट्रीय पुरस्कार प्राप्त कलाकारों की देखरेख में बनी इस पेंटिंग ने विश्व रिकॉर्ड बनाया है और अब इसे म्यूजियम में सुरक्षित रखने की तैयारी है।
7: परमात्मने नमः, श्रीमद् भगवद्गीता अथ पंच

0: श्रीमद् भागवत गीता के श्लोकों का पाठ करके गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में अपना नाम दर्ज कराया है। प्रांजल के मुताबिक उन्होंने श्रीमद् भागवत गीता के 15वें अध्याय का पाठ करीब 5 मिनट में पूरा करके ये रिकॉर्ड बनाया है। धनबाद के धैया की रहने वाली आन्या और प्रांजल इसका श्रेय अपनी माँ को देती हैं, जिन्होंने बचपन से ही इन्हें गीता के श्लोकों के नियमित पाठ का अभ्यास कराया और इसे इनकी दिनचर्या में शामिल कर दिया। बाढ़ और बारिश से देश के कई हिस्से प्रभावित हैं। इस बीच यूपी के मुजफ्फरनगर से एक ऐसी तस्वीर सामने आई जो लोगों की खूब सहानुभूति बटोर रहा है। असल में लगातार बारिश की वजह से यहां के शिव चौक पर पानी भर गया। ऐसे में बारिश के बीच वहां से गुजर रहे एक डिलीवरी बॉय का मोबाइल पानी में गिर गया। वो देर तक उसे पानी में ढूंढता रहा। राहगीरों के बीच वो कभी पानी में हाथ डालकर फोन तलाशता तो कभी बेबसी में पानी को देखता, लेकिन जब काफी ढूंढने के बाद भी मोबाइल नहीं मिला तो बेबसी में उसकी आंखें छलक पड़ी। युवक का नाम विशाल है। उसके मुताबिक उसका फोन 45,000 रुपए का था, जिसे उसने किस्तों पर खरीदा था। उसके लिए मोबाइल महज एक महंगा फोन नहीं बल्कि उसकी रोजी रोटी का जरिया भी था। ऐसे में अब उसने नगर पालिका से आर्थिक मदद की गुहार लगाई है। सावन का महीना है, ऐसे में बाबा बैद्यनाथ धाम जाने वाले कांवड़िया पथ भगवा रंगों से गुलजार है। ये तस्वीरें असरगंज के कच्ची कांवड़िया पथ की है, जहां शिव भक्तों कांवड़ियों का कारवां पैदल बाबा बैद्यनाथ धाम की ओर बढ़ रहा है। इस यात्रा में श्रद्धा के साथ साथ कांवड़ों की कलात्मकता भी लोगों का ध्यान खींच रही है। किसी कांवड़ में भगवान विष्णु की विशाल प्रतिमा योग निद्रा की मुद्रा में नजर आ रही है, तो किसी में भगवान श्री राम को भगवान शिव की पूजा करते हुए दिखाया गया है। वहीं कुछ कांवड़ भगवान महाकाल की भव्य प्रतिमा और पृथ्वी की आकृति से सजी हुई है। ये तस्वीरें राजस्थान के धौलपुर की हैं। यहाँ बसेड़ी कस्बे में भव्य शिव यात्रा निकाली गई, जिसमें लोगों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। इस यात्रा में सबसे खास रहा भगवान भोलेनाथ के रूप में कलाकारों की प्रस्तुति, जिसे देखकर लोग भक्ति में भाव विभोर नजर आए। यात्रा के दौरान जगह जगह लोगों ने फूल बरसाए। भोलेनाथ के जयकारों और भजनों की धुन पर लोग झूमते गाते नजर आए।
1: और अब बात करते हैं गणेश उत्सव से पहले पंडाल में बप्पा के आगमन की। मुंबई में गणेश उत्सव की रौनक अभी से नजर आने लगी है। बप्पा के स्वागत की तैयारियां जोर शोर से चल रही है। मुंबई में एक बड़े गणेश मंडल में गणपति बप्पा की भव्य प्रतिमा बड़े ही धूमधाम से पंडाल तक लाई गई। इस दौरान बप्पा के दर्शन के लिए भक्तों का हुजूम उमड़ पड़ा। इस दौरान भक्तों का उत्साह और उल्लास भी देखने लायक था।
0: आस्था का उमड़ता समंदर, ढोल ताशों की थाप पर झूमते श्रद्धालु और बाप्पा के स्वागत में उमड़ा जनसैलाब। गणेशोत्सव शुरू होने में भले ही अभी कई दिनों का वक्त बचा हो, लेकिन इस बार भी उत्सव कितना भव्य होगा उसका अंदाजा इन तस्वीरों को देखकर लगाया जा सकता है। ये तस्वीरें माया नगरी मुंबई के काला चौकी इलाके की हैं, जहां अभी से बाप्पा के स्वागत में भक्त उनकी भक्ति में झूम रहे हैं। महालक्ष्मी जी के पावन अवतार में ढली 22 फीट ऊंची बाप्पा की ये दिव्य प्रतिमा जैसे ही कारखाने से बाहर निकली, भक्तों का जनसैलाब उनके दर्शन के लिए उमड़ पड़ा।
2: गणपति बप्पा मोरिया, मंगल मूर्ति मोरिया। देखिए, आपको बता दें कि मुंबई में अब जोरदार शुरुआत हो चुकी है गणेश महा उत्सव की, और बड़े बड़े पंडाल अपने बप्पा को अपनी जगह पर लेकर आना शुरू हो चुके हैं। फिलहाल इस समय मौजूद हूं साउथ मुंबई के काला चौकी के महागणपति के दरबार में, और आप देखें बहुत ही सुंदर भव्य तरीके से बप्पा को यहां पर विराजमान कर दिया गया है। आपको बताएं कि महालक्ष्मी के अवतार में गणपति बप्पा को ले आया गया है। चूंकि साज सज्जा का काम करना होता है, डेकोरेशन का काम करना होता है, इसलिए समय से पहले ही इस तरह से जो बड़ी बड़ी मूर्तियां होती हैं उन्हें बड़े बड़े पंडालों में लेकर आया जाता है। फिलहाल यहां बात करें इन बप्पा की, 22 फीट की ऊंचाई है, ट्रॉली से सिंह पर बकायदा बप्पा सवार हैं, और खास बात यह है कि जो ट्रॉली रखी गई है जिस जगह पे, उसके नीचे बहुत ही सुंदर तरीके से रंगोली भी निकाली गई है, बनाई गई है, ठीक उसके ऊपर बप्पा को विराजमान करा गया है। बहुत सारे तस्वीरें, बहुत सारे वीडियो सोशल मीडिया पर बप्पा के आगमन को लेकर के वायरल हुए थे, जिसमें हजारों की तादाद में जो गणेश भक्त हैं वो जुटे हुए थे और हर कोई बप्पा का स्वागत कर रहा था। हर किसी के चेहरे पे खुशी नजर आ रही थी, ऐसा जैसा कि सालों से इंतजार हो। क्या नाम है आपका साहब, थोड़ा बताएं।
3: मेरा नाम अमन दलवी, महागणपति उत्सव मंडल का मैं पूर्व सेक्रेटरी हूँ।
2: अच्छा, मानना पड़ेगा इतने सारे लोग कहाँ से सब जुट गए थे और बहुत ही सुंदर तस्वीर थी, किस तरीके से आपने तैयारी की। और जैसा कि मैंने बताया, बहुत दिनों पहले ही आपने लाया है बप्पा को।
3: ये साल 16 अगस्त को महागणपति का पारंपरिक आगमन 16 है। महागणपति का आगमन 16 हम लोग सिर्फ आगमन नहीं करते, तो एक परंपरा उसमें जताते हैं। महाराष्ट्र की जो परंपरा है, जो आजकल कम होती जा रही है और वो सिर्फ उनके जगह पे ही दिखाई जाती है, उनको हम सब मुंबई में लेके आते हैं। पालखी जो होली में हमारे कोकण में नचाई जाती है, वो कोली हमारे सब कोकण के बांधव वो पालखी लेके आते हैं और महागणपति के जो रुपेरी पैर रहते हैं उनको वो पालखी में रखते हैं।
0: महाराष्ट्र में विशेषकर गणेश उत्सव बहुत ही बड़े स्तर पर और भव्य रूप से मनाया जाता है और इसकी झलक मुंबई में दिखनी शुरू हो गई है। 14 सितंबर से शुरू होने वाले गणेश उत्सव को लेकर कारखानों से गणपति प्रतिमाओं का पंडालों में पहुंचना शुरू हो गया है। काला चौकी और आसपास का ये पूरा इलाका अभी से गणेशोत्सव के रंग में रंग चुका है। काला चौकी के गणेश पंडाल में बापा का आगमन हो चुका है। अब यहाँ प्रतिमा की सजावट का काम होगा और 14 सितंबर से आस्था के उत्सव का एक शानदार नजारा यहाँ देखने को मिलेगा।
3: हर साल स्वरूप महागणपति का बदलता है। कभी महागणपति पांडुरंग विट्ठल के रूप में आते हैं, कभी सरस्वती के रूप में आते हैं, कभी भोले शंकर के रूप में आते हैं, तो कभी कान्हा नटखट बन के आते हैं। ये साल महालक्ष्मी का रूप, यानी महालक्ष्मी यानी क्या, स्थैर्य, शांति, संपत्ति, जो आजकल हर एक को आशीर्वाद के रूप में महागणपति देने आ गए। और इसी का जो हमारी झांकी बनेगी, डेकोरेशन बनेगा, वो भी उसी का एक कोल्हापुर के महालक्ष्मी मंदिर का जो कंपोनेंट्स है, जो छवि है, वही आपको देखने को मिलेगी। इसलिए मैं आपके ओर से हमारे सभी भक्तों को विनती करता हूँ कि ये महालक्ष्मी का रूप महागणपति का आप इस कोल्हापुर के महालक्ष्मी के मंदिर में देखने आइए।
2: अच्छा, 71 इयर्स हो गया है, तो जैसा कि मैं देख रहा हूँ महालक्ष्मी के अवतार में गणपति बप्पा हैं, तो ये जो डेकोरेशन बनेगा, चलचित्र बनेगा, ये भी उससे ही आसपास होगा।
3: इसी के आसपास, वही मैं आपको बोल रहा हूँ कि कोल्हापुर का जो महालक्ष्मी का टेम्पल है, जो पुरातन है, बहुत सालों, सैकड़ों सालों से वहाँ पे चल रहा है और जो दर्शन के लिए यहाँ के जो बड़े बुजुर्ग है वो वहाँ नहीं जा सकते महालक्ष्मी के दर्शन करने के लिए, कोल्हापुर के मंदिर के दर्शन के लिए। वो हमारा सौभाग्य रहेगा कि वो यहाँ पे आके देखे, ये मंदिर में ही वो महालक्ष्मी का रूप पाए और महालक्ष्मी के रूप में जो हमारा महागणपति सजा हुआ है उनके पैरों में नतमस्तक हो जाए।
0: ढोल ताशों की गड़गड़ाहट के बीच जब इस विशाल और भव्य प्रतिमा को पंडाल में ले जाया जा रहा था, तो रास्ते में हजारों की संख्या में भक्त पूरे उत्साह के साथ चल रहे थे। रास्ते में श्रद्धालु डांस और लेजिम करते हुए भी दिखाई पड़ रहे थे। काला चौकी के इस महागणपति के आगमन में एक ऐसी दिव्य छटा बिखर रही थी जो गणेशोत्सव को लेकर भक्तों की खुशी को बयां कर रही थी। गणेशोत्सव से पहले खेतवाड़ी में उत्सव का पूरा वातावरण बनने लगा है। इस काला चौकी का महागणपति के आसपास ही भक्तों को लाल बाग का राजा जैसे कई प्रसिद्ध बड़े गणेश पंडाल में बापा के दर्शन का सौभाग्य मिलता है। ये वही इलाका है जहां लाल बाग का राजा जैसे देश विदेश में प्रसिद्ध मंडल मौजूद हैं। ऐसे में काला चौकी के महागणपति का ये भव्य आगमन तो बस एक शुरुआत है। आने वाले दिनों में जब लाल बाग से लेकर गिरगांव चौपाटी तक बापा विराजेंगे, तो मुंबई का ये भक्तिमय उल्लास पूरी दुनिया को अपनी ओर आकर्षित करेगा।
2: गणपति बप्पा
3: मोरिया,
2: मंगल मूर्ति
3: मोरिया।
2: तो इस तरीके से कोल्हापुर के महालक्ष्मी के अवतार में गणपति बप्पा फिलहाल दक्षिण मुंबई के काला चौकी के महागणपति के दरबार में आ चुके हैं और धीरे धीरे ये जो पूरा परिसर है महालक्ष्मी के मंदिर के रूप में बदल जाएगा और उसके बाद लंबी लंबी कतारें श्रद्धालुओं की यहाँ पर लगेगी। घंटों लोग यहाँ खड़े होंगे, फिर चाहे इंद्र देवता बरस ही क्यों ना रहे हों, लेकिन फाइनली कितनी भी थकावट हो जाए, बप्पा के समक्ष आकर लोग खुद को बहुत ज़्यादा तंदुरुस्त समझेंगे, बहुत ज़्यादा फ्रेश समझेंगे और बप्पा के आशीर्वाद के साथ अपनी मनोकामना बप्पा के समक्ष रखेंगे।
0: गणेश उत्सव के बारे में एक बात जानकर हैरानी होगी कि ये शायद पहला ऐसा धार्मिक त्योहार है जिसका महत्व पौराणिक से कहीं ज्यादा ऐतिहासिक है। गणेश चतुर्थी तो वैसे ज्योतिष गणनाओं के आधार पर तय की जाती है, लेकिन इस महोत्सव की जड़ें भारत के इतिहास से जुड़ी हैं। हालांकि इतिहास में खंगालने पर वैसे तो ऐसा कोई दस्तावेज नहीं मिला जिसमें इस महोत्सव की शुरुआत की जानकारी मिलती हो, लेकिन कहा यह जाता है कि सन 1630 में महाराजा छत्रपति शिवाजी ने इस त्योहार को सबसे पहले पुणे में मनाना शुरू किया था। 18वीं सदी में पेशवा भी गणेश भक्त थे तो उन्होंने भी सार्वजनिक रूप से भाद्रपद के महीने में गणेशोत्सव मनाना शुरू किया, मगर ब्रिटिश राज जब आया तब गणेशोत्सव के लिए जो भी पैसा मिलता था वो बंद हो गया। इसकी वजह से गणेशोत्सव कुछ समय के लिए रोकना पड़ा। इसके बाद स्वतंत्रता सेनानी बाल गंगाधर तिलक ने इस महोत्सव को फिर से शुरू करने का फैसला किया। दरअसल 1892 में अंग्रेज एक नियम के तहत भारतीयों को एक जगह इकट्ठा नहीं होने देते थे। तिलक ने सोचा कि इस त्योहार के जरिए भारतीयों को एक जगह इकट्ठा किया जा सकता है और इसके जरिए उनमें संस्कृति के प्रति सम्मान और राष्ट्रवाद की भावना जगाई जा सकती है। इस बार गणेशोत्सव 14 सितंबर को गणेश चतुर्थी के पावन पर्व के साथ शुरू होने जा रहा है और 25 सितंबर को अनंत चतुर्दशी यानी गणेश विसर्जन के बाद खत्म होगा। मुंबई से धर्मेंद्र दुबे के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
1: हेमकुंड साहिब में 2.5 लाख से ज्यादा श्रद्धालुओं ने टेका मत्था। आइए आपको सीधे लिए चलते हैं न्यूज एक्सप्रेसवे पर, जहां देश भर की कुछ और जरूरी खबरें कर रही हैं आपका इंतजार।
0: पीएम मोदी की अध्यक्षता में हुई केंद्रीय कैबिनेट की बैठक में आज बुनियादी ढांचे से जुड़ी 5 बड़ी परियोजनाओं को मंजूरी दी गई। इनमें रेलवे की 4 परियोजनाएं शामिल हैं, जबकि बिहार में एक 4-लेन हाईवे परियोजना को भी हरी झंडी दी गई है। रेल परियोजनाओं में पश्चिम बंगाल और ओडिशा के महत्वपूर्ण रेल मार्गों को शामिल किया गया है। वहीं बिहार में सड़क संपर्क को बेहतर बनाने के लिए मुजफ्फरपुर सीतामढ़ी सोनबरसा 4-लेन हाईवे प्रोजेक्ट को मंजूरी दी गई है। भारत रत्न जननायक कर्पूरी ठाकुर के गांव और उसके आसपास रहने वाले लोगों को रेलवे की ओर से बड़ी सौगात मिली है। दरभंगा से नई दिल्ली जाने वाली बिहार संपर्क क्रांति एक्सप्रेस ट्रेन का ठहराव आज से कर्पूरी ग्राम स्टेशन पर शुरू हो गया है। इस मौके पर केंद्रीय मंत्री रामनाथ ठाकुर ने कर्पूरी ग्राम स्टेशन पर रुकी इस ट्रेन को हरी झंडी दिखाकर दिल्ली रवाना किया। बता दें कि भारत रत्न मिलने के बाद जननायक कर्पूरी ग्राम स्टेशन का रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने जायजा लिया था। ट्रेन यहां 2 मिनट के लिए रुकेगी। राजस्थान के पाली से एक दिल छू लेने वाली तस्वीर सामने आई है, जिसमें करीब 200 फीट ऊपर हाई वोल्टेज तारों में फंसे एक विदेशी पक्षी ग्रेटर फ्लेमिंगो को सफलतापूर्वक बचाया गया। इस रेस्क्यू के लिए वन विभाग के साथ साथ बिजली विभाग ने भी संवेदनशीलता और तत्परता दिखाई और 200 फीट से भी ज्यादा ऊंचाई पर पहुंचकर फ्लेमिंगो को सुरक्षित नीचे उतारा गया। इसके लिए बिजली विभाग को इमरजेंसी शटडाउन भी करना पड़ा। इस नेक काम में ग्रामीणों ने भी सहयोग किया। बाबा बूढ़ा अमरनाथ के लिए श्रद्धालुओं का दूसरा जत्था पुंज पहुंच गया है। यहां मंडी बेस कैंप में श्रद्धालुओं का फूलमालाओं से स्वागत किया गया। बूढ़ा अमरनाथ यात्रा के लिए पहुंचे इस दूसरे जत्थे में देश भर से 1938 श्रद्धालु शामिल हैं। बाबा बूढ़ा अमरनाथ जम्मू कश्मीर के पुंछ जिले की मंडी तहसील के राजपुरा गाँव में स्थित भगवान शिव का एक अत्यंत प्राचीन मंदिर है। सिखों के पवित्र तीर्थ गुरुद्वारा श्री हेमकुंड साहिब में तीर्थयात्रियों की संख्या ने पिछले कई सालों का रिकॉर्ड तोड़ दिया है। आंकड़ों के मुताबिक अब तक 2,62,000 श्रद्धालु हेमकुंड साहिब पहुंचकर गुरुद्वारे में मत्था टेक चुके हैं। बड़ी बात यह है कि बारिश, ठंड और पल पल बदलते मौसम के बावजूद श्रद्धालुओं के उत्साह में कोई कमी नहीं है। यात्रा 10 अक्टूबर तक जारी रहेगी। ऐसे में आने वाले दिनों में श्रद्धालुओं की संख्या और बढ़ने की उम्मीद है।
1: और अब बात ऑटो टैक्सी ड्राइवर्स के मराठी टेस्ट की। महाराष्ट्र में टैक्सी और ऑटो रिक्शा चालकों के लिए मराठी भाषा का मुद्दा एक बार फिर गर्मा सकता है। सरकार की ओर से मराठी सीखने के लिए दी गई 100 दिन की मोहलत खत्म हो चुकी है। अब ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट की बैठक में तय होगा कि भाषा की शर्त पूरी नहीं करने वाले ड्राइवर्स पर लाइसेंस या फिर परमिट सस्पेंड करने जैसी कार्रवाई होगी या उन्हें एक और मौका दिया जाएगा।
0: महाराष्ट्र महाराष्ट्र सरकार ने मुंबई समेत पूरे महाराष्ट्र में करीब 2,00,000 गैर मराठी रिक्शा और टैक्सी चालकों के लिए बोलचाल की मराठी सीखना जरूरी किया था। इसके लिए उन्हें 100 दिन की मोहलत दी गई थी, जो मंगलवार को खत्म हो गई।
4: महाराष्ट्र सरकार ने आदेश निकाला था कि जिन टैक्सी और ऑटो रिक्शा चालकों को मराठी नहीं आती, उनके लाइसेंस या परमिट जो है वो कैंसिल किए जाएंगे। मराठी सीखने के लिए 100 दिन का समय दिया गया था, जो अब पूरा हो चुका है और आज से कार्रवाई शुरू होनी थी, लेकिन कुछ संस्थाओं ने मांग की थी कि और समय दिया जाए मराठी सीखने के लिए। हमारे साथ यहाँ टैक्सी चलाते हैं। भाई पहले तो आपका नाम बताइए और इस फैसले को आप कैसे देखते हैं?
5: सर आपका फैसला सुनील कुमार तिवारी सर जी, जो फैसला है वो फैसला तो अच्छा है। मराठी सब जितने भी यहाँ हैं उनको सीखना तो चाहिए, लेकिन जो समय है समय बढ़ाना चाहिए। सरकार को भी हमारे बारे में सोचना चाहिए। हम भी गरीब हैं, रोज का 500 रुपया 600 रुपया कमाते हैं, उसमें परिवार का पालन पोषण करते हैं, लेकिन जो हमारे ऊपर सरकार है वो दया दृष्टि दिखाना बहुत जरूरी है। और सरकार जी से हम प्रताप सर नाई सर जी से बोलना चाहते हैं कि हमारे लिए थोड़ा तकलीफ हमें आप समझिए हमारे बारे में।
4: आपने मराठी सीखी और या आपको कब से आती थी मराठी?
5: मराठी से मला मुंबई मध्ये 20 वर्ष झाली महाराष्ट्र मध्ये। मी सर्वे मराठी बोलतो साहेब। हाँ आपल्या काय चुकी झाली हो त्याच्यात साहेबला माफी मांगतो मी। पकडे सर्वे टॅक्सीला उभी करा, इथे थांबा, पुढे जावा, जा सर्वे होतो मराठी मध्ये।
4: आपको लगता है ये फैसले की जरूरत थी, क्योंकि मतलब इतने सालों से चल रहा था, तो आपको लगता है ये फैसला सही है या इसकी जरूरत थी इस फैसले की?
5: जरूरत तो सरकार ने लाई है, हम लोगों तो हमारे लोग मराठी लोग इतने अच्छे हैं बेचारे कि बोलने के लिए कोई बोलता ही नहीं है, लेकिन सरकार एक कानून ला रही है तो उसका पालन करना हमारा कर्तव्य तो है, तो उसका कर्तव्य हम करेंगे। लेकिन इतना लाइसेंस रद्द कर दोगे, परमिट रद्द कर दोगे, गाड़ी में कोई प्रॉब्लम हो जाएगा, ऐसा कुछ करोगे तो फिर तो दिक्कत है सर हमारे लिए भी, हमें भी परेशानी है, उसका हमें को झेलना पड़ेगा।
0: ऑटो और टैक्सी चालकों का कहना है कि 100 दिनों में उन्हें पर्याप्त प्रशिक्षण नहीं मिल पाया। उनका कहना है कि वे थोड़ी बहुत मराठी बोल लेते हैं, लेकिन जिन लोगों ने अभी तक मराठी नहीं सीखी है उनके लाइसेंस या बैज रद्द करना उचित नहीं है, क्योंकि इसी काम से उनके परिवार का घर चलता है।
4: शंभू जी, 100 दिन पूरे हो चुके हैं, महाराष्ट्र सरकार ने कहा था कि अगर मराठी नहीं बोलेंगे तो कार्रवाई होगी, लाइसेंस सस्पेंड होगा, कैसे देखते हैं डिसीजन को, क्या कहेंगे? 100 दिन पूरे हो चुके हैं,
6: अभी तो कुछ पता नहीं चल रहा है
4: जी,
6: अभी तो कुछ पता नहीं चल रहा है।
4: आपने सीखी मराठी, आपको आती है?
6: हाँ मराठी थोड़ा बहुत बोलने तो आता है
4: जी, काम चल जाएगा मराठी?
6: हाँ काम चल जाएगा।
4: पर क्या आपको लगता है और समय देना चाहिए सीखने के लिए?
6: और समय तो देना चाहिए था।
4: आपका नाम बताइए और सरकार ने जो फैसला लिया है 100 दिन पूरे, 100 दिन मराठी सीखने का नहीं तो कार्रवाई होगी, उसके 100 दिन पूरे हो चुके हैं, इस फैसले को कैसे देखते हैं?
7: अब हम लोग तो पढ़ लिए हैं मराठी, अब सर्टिफिकेट मिलेगा
4: जी।
7: मराठी भी समझता हूँ, बोलता भी हूँ।
4: कुछ लोग मांग कर रहे हैं कि और थोड़ा समय देना चाहिए।
7: कुछ लोग नहीं आ पाए हैं ना, इतना एक साथ सबको नहीं हो पाया, उसका टाइम देना चाहिए सबको भाई, अभी सब नहीं पढ़ पाए हैं। सर्टिफिकेट कुछ को मिल रहा, अभी दिए नहीं, मिलेगा हम लोगों को, बोले आरटीओ में।
4: पर आप इस सर फैसले को सही मानते हैं? आपको लगता है सही फैसला है?
7: सही फैसला क्या बोले हम लोग, जो बोलेंगे हम लोगों के विरुद्ध में होता है काम।
4: इसकी जरूरत है आपको लगता है?
7: जरूरत है, हम लोग तो सब भाषा समझता हूँ, इंग्लिश, हिंदी, मराठी, मारवाड़ी, गुजराती, सब भाषा समझता बोलता हूँ, एक ही भाषा का हमें 5-6 भाषा ज्ञान है, मराठी भी बोलता हूँ, मराठी भी आता, हम लोग यहाँ 32 साल से चल रहे हैं।
0: मराठी सीखने के 100 दिन पूरे होने पर तकरीबन सभी ऑटो और टैक्सी चालकों का कहना है कि सरकार को कुछ और मोहलत देनी चाहिए। उनके चेहरे की मायूसी को देखकर ये समझा जा सकता है कि सरकार के इस फैसले से वो कितने बेबस नजर आ रहे हैं।
4: 100 दिन पूरे हो चुके हैं, सरकार ने कहा था जिनको मराठी नहीं आएगी टैक्सी और ऑटो रिक्शा चालकों को उन पर कार्रवाई की जाएगी, आप कैसे देखते हैं डिसीजन को?
8: हम अभी कुछ नहीं बोल सकता, अभी तो मैं गांव से आया हूं।
4: जी जी, आपका नाम क्या दादा?
8: साबिर
4: जी। इस डिसीजन को आप कैसे देखते हैं, ये फैसला सही लगता है आपको कि मराठी नहीं आएगा तो लाइसेंस आपका कैंसिल हो जाएगा?
8: नहीं, नहीं,
4: फैसला सही नहीं लगता, क्या कहेंगे इसको?
8: जैसे पहले चल रहा था उसी चलने दो आप। क्या
0: ऑटो और टैक्सी चालकों से बातचीत के दौरान यही मांग सामने आई कि सरकार उन्हें कुछ और समय दे और तुरंत कार्रवाई न करे।
4: अब आपकी सरकार से क्या मांगे? चलिए आपको तो मराठी आती है, आपको तो दिक्कत नहीं होगी, लेकिन जो सीख नहीं पाई है, जिनको नहीं आ पा रही है, आप क्या मांग सरकार से मांग करेंगे?
5: सरकार से यही मांग करते हैं कि पब्लिक सीख रही है, जो टैक्सी वाले रिक्शा वाले हैं वो लोग सब सीख रहे हैं, जरूरत है सीखने की, लेकिन आप एक्शन मत लीजिए सर जी। आप सीख रहे हो, सीखेंगे, उनको प्रेशर डालो, सीखेंगे, लेकिन एक्शन ना करिए जिससे हम लोग प्रताड़ित हो यहाँ से रहने के लिए।
4: बिल्कुल, तो साफ है कि सरकार का जो फैसला है कि मराठी आनी चाहिए, वो सीखेंगे भी, ये भी तैयारी है, लेकिन यही सरकार से विनती है इनकी कि इसको लेकर सरकार कोई एक्शन ना ले, क्योंकि यही इनकी रोजी रोटी है, और अगर यही सरकार छीन लेगी तो ये कहां जाएंगे और क्या करेंगे।
0: वहीं महाराष्ट्र के परिवहन मंत्री प्रताप सरनाइक का कहना है कि सरकार ने गैर मराठी रिक्शा और टैक्सी चालकों को मराठी सीखने के लिए 100 दिन का पर्याप्त समय दिया है। सरकार का दावा है कि अब तक करीब 1,65,000 रिक्शा और टैक्सी चालकों को मराठी सीखने का सर्टिफिकेट दिया जा चुका है। उन्होंने आगे ये भी कहा कि जिन चालकों को मराठी नहीं आती उनके खिलाफ कानून के तहत प्रक्रिया शुरू की जाएगी।
9: हमारे राज्य में आजू बाजू के राज्य से आने वाले सभी जो रिक्शा टैक्सी ड्राइवर है उनको यही आह्वान करते हैं कि ये महाराष्ट्र की संस्कृति है, महाराष्ट्र की परंपरा है, मराठी में अभिजात भाषा का दर्जा आदरणीय पंतप्रधान जी ने दिया, उसका आदर करना आपका भी कर्तव्य जैसे हमारा कर्तव्य है, तो आप भी मराठी सीखिए और इस अभियान में आप भाग ले लीजिए, मगर कानून के खिलाफ अगर कुछ आप करोगे तो उसके ऊपर हमें कार्रवाई करनी पड़ेगी।
0: मराठी को लेकर ये नया नियम पूरे महाराष्ट्र के लिए है। जहां तक मुंबई की बात है तो यहां 48,000 से ज्यादा ऑटो ड्राइवर हैं, जबकि 3,680 से ज्यादा टैक्सी ड्राइवर जो रोजाना ऑटो टैक्सी चलाकर अपना गुजारा कर रहे हैं, और अब गैर मराठी खासकर उत्तर भारतीय ड्राइवर नए नियम को लेकर मराठी सीख तो रहे हैं, लेकिन उनका कहना है कि उन्हें कुछ और समय मिलना चाहिए। ऐसे में सबसे बड़ा सवाल यही कि अब सरकार का अगला कदम क्या होगा? क्या मराठी नहीं सीखने वाले ड्राइवरों के लाइसेंस या परमिट सस्पेंड किए जाएंगे या सरकार उन्हें एक और मौका देगी? मुंबई से दीपेश त्रिपाठी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
1: न्यूज पत्र पर आगे है धन बाजार, जहां शेयर बाजार से लेकर कारोबार तक की सभी अहम खबरें होती हैं, जिसका सीधा रिश्ता आपकी आमदनी आपकी जेब से होता है। तो तेज रफ्तार खबरों के बीच जरूरी खबरें छूट ना जाए, इसलिए सीधे आपको लिए चलते हैं धन बाजार।
0: हफ्ते के तीसरे कारोबारी दिन शेयर बाजार में गिरावट देखने को मिली। सेंसेक्स 326 अंक लुढ़ाकर 76,910 पर बंद हुआ। वहीं निफ्टी भी 77 अंक फिसला या गिरकर 24,078 पर आ गया। सोने चांदी की कीमतों में गिरावट आई। ऑल इंडिया सर्राफा एसोसिएशन के मुताबिक बुधवार को दिल्ली में सोना 800 रुपए सस्ता हुआ। इसके साथ ही दिल्ली में 10 ग्राम सोने की कीमत घटकर 1,58,000 रुपए हो गई। वहीं चांदी की कीमतें भी 5,730 रुपए फिसले। अब दिल्ली में 1 किलो चांदी की कीमत घटकर 2,35,000 रुपए पर आ गई। बुधवार को डॉलर के मुकाबले रुपया फिसल गया, इसमें 2 पैसे की गिरावट आई। इस तरह 1 डॉलर के मुकाबले रुपए की कीमत 95.76 रुपए हो गई।
1: फिल्म मिर्जापुर द मूवी का नया गाना हो गया है रिलीज। इसके साथ ही फिल्म जगत से जुड़ी कुछ और खबरों को जानने के लिए आइए सीधे चलें फिल्मी मोड़ पर।
0: डायरेक्टर जोया अख्तर की फिल्म जिंदगी ना मिलेगी दोबारा में ऋतिक रोशन और कैटरीना कैफ की जोड़ी ने खूब चर्चा बटोरी थी। फिल्म में दोनों के बीच एक किसिंग सीन भी था, जो कैटरीना का पहला ऑन स्क्रीन किस था। अब जोया ने बताया है कि कैटरीना इस सीन के लिए क्यों तैयार हुई। उनके मुताबिक स्क्रिप्ट की जरूरत को समझते हुए कैटरीना ने इसे स्वीकार किया। जोया ने लैला के किरदार की कहानी को स्लीपिंग ब्यूटी और ऋतिक के किरदार को प्रिंस से जोड़ते हुए इस सीन को जरूरी बताया। हनुमान की दुनिया से प्रशांत वर्मा सिनेमैटिक यूनिवर्स का अगला चैप्टर महाकाली लगातार चर्चा में है। फिल्म में अभिनेता अक्षय खन्ना एक बिल्कुल नए अवतार में नजर आने वाले हैं। वो फिल्म में असुरों के शक्तिशाली गुरु शुक्राचार्य का किरदार निभाएंगे। धुरंधर में शानदार अभिनय के बाद अक्षय खन्ना का ये नया अंदाज दर्शकों के लिए खास होने वाला है। फिल्म की पहली झलक 24 अगस्त को सामने आएगी। प्रशांत वर्मा की कहानी और काल्पनिक आधार पर बनी इस फिल्म का निर्देशन पूजा कोल्लूरू कर रही है। महाकाव्य श्री रामायण कथा का पहला पोस्टर और टीजर जारी कर दिया गया है। फिल्म में देव शर्मा भगवान श्री राम की भूमिका में नजर आएंगे, जबकि अंजलि अरोड़ा माता सीता के किरदार से फीचर फिल्म में कदम रख रही हैं। अभिषेक सिंह के निर्देशन में बनी ये फिल्म हिंदी और छत्तीसगढ़ी दोनों भाषाओं में शूट की गई है। प्रकाश महोबिया और संजय बुंदेला ने इसे प्रोड्यूस किया है। फिल्म को एजे फिल्म एंटरटेनमेंट वर्ल्ड प्रस्तुत कर रहा है। श्री रामायण कथा 25 सितंबर को दोनों भाषाओं में सिनेमाघरों में रिलीज होगी।

कहते हैं गीता के श्लोकों में जीवन का सार छुपा है, इसलिए झारखंड के धनबाद की ये दोनों बहनें हर रोज गीता का पाठ करती हैं, ताकि जीवन के उतार चढ़ाव को समझ सकें। और अब उनकी यही आदत उनकी वैश्विक पहचान भी बन गई है। धनबाद के आन्या और प्रांजल मित्तल ने कम समय में

मिर्जापुर द मूवी को लेकर फैंस का क्रेज लगातार बढ़ता जा रहा है। फिल्म का नया गाना भी रिलीज कर दिया गया है, जिसमें पुराने पसंदीदा गाने वारूम फॉर एवर को नए और इमोशनल अंदाज में पेश किया गया है। एक्सेल एंटरटेनमेंट और अमेजन MGM स्टूडियोज ने इस गाने को रिलीज किया है। गुरमीत सिंह के निर्देशन में बनी फिल्म की कहानी पुनीत कृष्णा ने लिखी है। रितेश सिद्धवानी और फरहान अख्तर इसके प्रोड्यूसर हैं। मिर्जापुर द मूवी 4 सितंबर जन्माष्टमी के दिन हिंदी और तेलुगु में सिनेमाघरों में रिलीज होगी।

0: न्यूज पक में हम खबरों के सफर को आगे बढ़ाएं, उससे पहले एक नजर डाल लेते हैं इस वक्त की हेडलाइंस पर।
1: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाए स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा, प्यार से परोसा।
0: हॉकी वर्ल्ड कप में भारत ने पाकिस्तान को 5-3 से हराया। टॉप 8 में पहुंची टीम इंडिया। कप्तान हरमनप्रीत और अभिषेक ने दागे 2-2 गोल। जम्मू कश्मीर दौरे पर अमेरिकी राजदूत सर्जियो गोर। श्रीनगर की डल लेक में की शिकारा की सवारी। घाटी के मेहमान नवाजी की हुए मुरीद। मौसम की चुनौतियों के बीच हेमकुंड साहिब यात्रा में रौनक। अब तक 2.5 लाख से ज्यादा श्रद्धालुओं ने टेका मत्था। 10 अक्टूबर तक जारी रहेगी पवित्र यात्रा। सावन के पवित्र महीने में दिख रहे शिव भक्ति के अनोखे रंग। मुंगेर में भव्य कांवड़ यात्रा बनी आकर्षण का केंद्र। श्रद्धालु बैद्यनाथ धाम में करेंगे जलाभिषेक। महाराष्ट्र में गणेशोत्सव की तैयारियां तेज। अकोला में बप्पा की प्रतिमाओं को अंतिम रूप दे रहे कारीगर। 14 सितंबर से शुरू होगा उत्सव। चलिए न्यूज पथ पर खबरों के सफर को आगे बढ़ाया जाए, लेकिन उससे पहले हमें रुकना होगा यहाँ यानी कि वायरल चौक पर। यहाँ देख लेते हैं उन वीडियोस को जो कि सोशल मीडिया में धमाल मचाए हुए हैं। इनमें से कुछ वीडियोस ऐसे हैं जो आपको इमोशनल कर देंगे और कुछ आपको हंसने पर मजबूर।
2: वक्त बदला, उम्र बदली, जिंदगी के रंग भी बदल गए, लेकिन भाई की कलाई और बहन के प्यार का रिश्ता आज भी वैसा ही है। उम्र चाहे कितनी भी हो जाए, थकान चाहे कितनी भी हो, बहन राखी लेकर अपने भाई के घर जरूर पहुंचती है। बचपन में जिस रिश्ते में शरारतें थी, वही रिश्ता उम्र के आखिरी पड़ाव तक प्यार और अपनापन बनाए रखता है। भाई की कलाई पर बंधा ये धागा सिर्फ राखी नहीं, बल्कि बचपन से बुढ़ापे तक साथ निभाने वाले प्यार के निशाने है। कुछ भी हो, बॉडी तो आज ही बनेगी और ड्राई फ्रूट का डब्बा भी आज ही खाली होगा। बालकनी में बैठा ये बंदर भाई बड़े आराम से ड्राई फ्रूट खा रहा है। घर से डब्बा निकाला, आराम से बैठा और अब पूरा डब्बा साफ करने का प्लान है। बंदर का ये अंदाज देखकर ऐसा लग रहा है जैसे उसे किसी बात की कोई जल्दी ही नहीं है। सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे इस वीडियो को देखकर लोग खूब हंस रहे हैं और बंदर की इस हरकत को काफी पसंद कर रहे हैं। एक बच्ची ने गाय को खाना खिलाने की इच्छा जताई तो पापा ने बेटी की खुशी के लिए खुद गाय का रूप धारण कर लिया। कार्डबोर्ड पर गाय की तस्वीर बनाई गई और उसके पीछे पापा छिप गए। बच्ची बड़े प्यार से गाय को खाना खिलाती रही, लेकिन उसे जरा भी अंदाजा नहीं था कि तस्वीर के पीछे उसके पापा छिपे हैं। बेटी की मासूमियत और पापा का ये प्यारा अंदाज लोगों का दिल जीत रहा है। वीडियो देखकर लोग कह रहे हैं बच्चों की खुशी के लिए पापा कुछ भी कर सकते हैं। अनुशासन हो तो ऐसा और ट्रेनिंग हो तो ऐसी। इस वीडियो में एक प्यारा सा डॉगी अपने ऑफिसर की हर हरकत को बिल्कुल उसी अंदाज में दोहराता नजर आ रहा है। ऑफिसर जैसे जैसे आगे बढ़ते हैं और जो कुछ करते हैं, डॉगी भी उनके पीछे जाकर वैसा ही करने लगता है। डॉगी की समझदारी और शानदार ट्रेनिंग देखकर लोग हैरान हैं। सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा ये वीडियो लोगों को खूब पसंद आ रहा है। डॉगी का अनुशासन और अपने ऑफिसर के साथ तालमेल देखने लायक है। बचपन शायद ऐसा ही होता है जहां महंगे खिलौनों से ज्यादा मजा मिट्टी में खेलने में आता है। घर के सामने जमा ऊंची मिट्टी और दो बच्चे, बस फिर क्या था, शुरू हो गया खेल। दोनों बच्चे बारी बारी से मिट्टी के ढेर पर चढ़ते, फिर फिसल कर नीचे आते और दोबारा ऊपर चढ़ जाते। यही सिलसिला लगातार चलता रहा। चेहरे पर हंसी, आंखों में चमक और खेलने का जुनून साफ दिखाई देता है। बच्चों की ये मासूम मस्ती देखकर लगता है असली बचपन तो मिट्टी में ही मिलता है।
0: न्यूज़पथ के सफर में अब सोशल अड्डा का रुख करते हैं, जहां आज बात होगी देश की राजधानी दिल्ली की। दिल्ली में साफ सफाई को बढ़ावा देने के लिए एक नया अभियान शुरू किया गया है। दिल्ली की मुख्यमंत्री श्रीमती रेखा गुप्ता ने दिल्ली को कूड़े से आजादी स्वच्छता अभियान 2026 की शुरुआत की है। सीएम ने बताया कि दिल्ली में यह स्वच्छता अभियान 17 अगस्त से 2 अक्टूबर तक चलाया जाएगा। इस अभियान के तहत सार्वजनिक जगहों के साथ ही स्कूलों, सरकारी अस्पतालों, शौचालयों की सफाई भी सुनिश्चित की जाएगी। सीएम ने अपील की है कि सभी लोग इस अभियान में हिस्सा लें और माई सिटी माई रिस्पॉन्सिबिलिटी की फीलिंग के साथ काम करें। सीएम रेखा गुप्ता ने ये घोषणा भी की है कि स्वच्छता के क्षेत्र में बेहतरीन काम करने वाले वार्ड को 1 करोड़ रुपए का इनाम दिया जाएगा। सीएम रेखा गुप्ता ने बताया कि वे दिल्ली के सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स से कहेंगी कि वो कहीं भी कूड़ा दिखाई देने पर 3 लोगों को टैग करें। लोग रील पर दिल्ली सीएम को टैग करें, दूसरा अपने इलाके के विधायक को और तीसरा अपने पार्षद को, ताकि उस जगह पर सफाई सुनिश्चित की जा सके। मुख्यमंत्री ने इस अभियान के लिए 4 C's पर जोर दिया है, जिसमें कलेक्शन, क्लीनिंग, कन्वर्जन और सर्कुलर इकोनॉमी शामिल है। इसके जरिए कूड़े से ग्रीन फ्यूल बनाने का काम किया जाएगा। इसके साथ ही सीएम ने सार्वजनिक स्थानों पर स्वच्छता अभियान, कचरे को स्रोत पर ही अलग अलग करने, सिंगल यूज प्लास्टिक के इस्तेमाल को कम करने का भी आह्वान किया है। उन्होंने बताया कि 23 अगस्त और 30 अगस्त को JJ क्लस्टर का सफाई अभियान शुरू किया जाएगा। ऐसे ही 6 सितंबर और 13 सितंबर को भी ये सफाई अभियान जारी रखा जाएगा। 17 सितंबर को हर इलाकों के सरकारी अस्पतालों के सफाई अभियान का कार्यक्रम किया जाएगा, जिसमें लोगों से बढ़ चढ़कर शामिल होने की अपील की गई है। वहीं 17 सितंबर से 2 अक्टूबर तक मेरा स्कूल सबसे सुंदर की प्रतियोगिता होगी, जिसमें स्कूलों के मेंटेनेंस की ओर ध्यान दिया जाएगा। दिल्ली को स्वच्छ बनाने के लिए शुरू किए गए इस नए अभियान को लेकर हमने दिल्ली में लोगों से बात की और उनकी राय जानी।
3: राजधानी दिल्ली को साफ सुथरा करने को लेकर के दिल्ली सरकार के द्वारा कूड़े से आज़ादी नाम की एक मुहिम शुरू की गई है। जो दिल्ली का वार्ड सबसे साफ सुथरा होगा, उसके लिए प्रतियोगिता की जाएगी, उसको 1 करोड़ की इनाम राशि दी जाएगी। कूड़ा को साफ सुथरा करने को लेकर के जो दिल्ली सरकार ने कहा है कि 1 करोड़ दिया जाएगा, कितना अच्छा कदम मानते हैं इसको आप?
4: ये तो बहुत ही अच्छा कदम है। आज से कुछ टाइम पहले ही मेरे घर पे पूजा हुई थी दिल्ली में, ऐसी कूड़ों की लेके इतनी समस्या हुई कि फेंकने की जगह नहीं है। कूड़े वाले अलग ड्रामा करते हैं, लाइक एक दिन का कूड़ा आपको 4 दिन के बाद लेके जाएंगे। हर गली में आप देखो तो कहीं कुछ पड़ा है, कहीं कुछ पड़ा है, जैसे बीमारियां फैल रही है, बहुत सी दिक्कतें हो रही है। तो अच्छी बात है कि सरकार इसको लेके सोच रही है, क्योंकि आम जनता सच में बहुत परेशान होती है, और जब बारिश हो जाता है तो कूड़े की वजह से और ज्यादा गंदगी फैलती है।
5: मुहिम केवल कागजों तक सीमित ना रह जाए, इसको इम्प्लीमेंट करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। खाली इनाम देने से कुछ नहीं होगा, पेनल्टी भी इम्पोज होनी चाहिए। जो वार्ड सबसे ख़राब हो उसके ऊपर 1 करोड़ की पेनल्टी भी लगाई जाए, यानी 1 करोड़ ये नहीं कि मुख्यमंत्री के कोष से निकाल करके दे दिया जाए। जहाँ पे खराब काम हो रहा है, दिल्ली में कितने सारे वार्ड होंगे, उस वार्ड पे जिस पे पेनल्टी लगी है उसका इनाम उसको दिया जाए, वो ज़्यादा बेहतर है। और ये रिस्पॉन्सिबिलिटी फिक्स की जानी चाहिए किसी न किसी सरकारी अधिकारी के ऊपर, MCD के ऊपर, JE हो, AE हो, या बिल्डिंग डिपार्टमेंट, या जो भी इसका कूड़े का काम करता है उसके ऊपर जिम्मेदारी फिक्स भी होनी चाहिए। योजना तो बहुत अच्छी है। कूड़े को ख़त्म करने के लिए किसी भी स्तर तक जाना पड़े वो जाना चाहिए। जब कूड़े से हमें आज़ादी मिलेगी तभी लोगों के डेंगू से, मच्छरों से और या बीमारियों से आराम मिल पाएगा।
6: जी, ये जो मैंने सुना है अभी कि ऐसा सुनने में आया है कि 1 करोड़ रुपए की राशि मिलेगी जो भी वार्ड पे, जिसमें मतलब साफ़ सफाई और ये सब चीज़ें अच्छी रहेंगी। देखो, देखा जाए तो वैसे तो अच्छी चीज़ है, क्योंकि ये क्या है, एक तरीके से कंपटीशन को जन्म दे रहा है, और कंपटीशन में क्या होता है कि इंसान थोड़ी भी मेहनत करता है। तो जैसे अभी तक हम देख रहे हैं साफ़ सफाई के नाम पे, जैसे हम बात करें तो उतनी साफ़ सफाई नहीं रहती, चाहे उसके पीछे कोई भी वजह हो, किसी भी वजह से हो, साफ़ सफाई उस तरीके से नहीं है। लेकिन जब कंपटीशन आ गया है तो हो सकता है कि जो भी काउंसलर हैं एरिया के वो इस पे मेहनत करें, और अपने उनके नीचे जो भी लोग हैं इसके लिए, जो जो लोग जिम्मेदार हैं उनको भी प्रोत्साहित करेंगे और फोर्स करेंगे कि भाई, क्योंकि जब इसके लिए कंपटीशन रखा गया है तो ये भी है कि जब इसका एक एंड होगा तो कहीं ना कहीं प्रकाशित भी होगा कि फलाने वार्ड पे साफ सफाई के लिए हम इसको पुरस्कार कर रहे हैं। तो जहाँ तक देखा जाए तो अच्छी योजना है।
0: दिल्ली में यमुना के किनारे एक भव्य रिवर फ्रंट बनाने की तैयारी है, यानी कि यमुना का किनारा सिर्फ नदी और घाट तक अब सीमित नहीं रहेगा, बल्कि यहां पर घूमने फिरने से लेकर मनोरंजन और पर्यटन तक की सुविधाएं विकसित करने का प्लान।
7: राजधानी दिल्ली की जीवनदायिनी कही जाने वाली यमुना किनारे विकास की नई तस्वीर तैयार करने की मुहिम शुरू हो गई है। गुजरात के साबरमती रिवर फ्रंट की तर्ज पर यमुना रिवर फ्रंट विकसित होगा। इस सिलसिले में दिल्ली के जल मंत्री प्रवेश वर्मा ने अधिकारियों के साथ गुजरात का दौरा कर साबरमती मॉडल का बारीकी से अध्ययन किया।
8: सामने दिल्ली में सबसे बड़ा चैलेंज है यमुना रिवर फ्रंट बनाना, यमुना मैया को साफ करना। हमने साबरमती रिवर फ्रंट से बहुत सारी योजनाओं को सीखा है और हमने उनका प्रेजेंटेशन भी दिया है। उनके अधिकारियों को एक बार दिल्ली में भी बुलाकर पूरा समझेंगे।
7: यमुना रिवर फ्रंट को आधुनिक, आकर्षक और पर्यावरण के अनुकूल बनाया जाएगा और साबरमती मॉडल को दिल्ली की जरूरतों के मुताबिक लागू किया जाएगा। योजना के तहत यमुना किनारे खूबसूरत वॉकवे, साइकिल ट्रैक के साथ ही खेल और मनोरंजन से जुड़ी सुविधाएं विकसित की जाएंगी। कालिंदी कुंज के पास करीब 60 करोड़ रुपए की लागत से आधुनिक छठ घाट का निर्माण किया जाएगा। पारंपरिक धोबी घाटों को व्यवस्थित कर वहां आधुनिक मैकेनाइज्ड लॉटरी मशीनें लगाई जा सकती है। इसके साथ ही यमुना किनारे पर्यटन को बढ़ावा देने पर भी जोर रहेगा। हालांकि यमुना रिवर फ्रंट की सबसे बड़ी चुनौती नदी की सफाई और पर्यावरण संरक्षण रहेगा, जिसके लिए लगातार काम किए जा रहे हैं और आगे भी सीवेज प्रबंधन, जल प्रदूषण और नियंत्रण और यमुना के इकोसिस्टम को सुरक्षित रखने पर खास ध्यान दिया जाएगा। यमुना रिवर फ्रंट की इस योजना के मुकम्मल होने के बाद दिल्ली की एक अलग तस्वीर नजर आएगी, जो सेहतमंद होने के साथ आकर्षक भी होगी। नर्मदा से नरेंद्र पेपरवाला के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, ब्रिटिश टुडे।
0: छत्तीसगढ़ का बीजापुर कभी इस नाम के साथ बंदूक, नक्सलवाद और दहशत की तस्वीर जुड़ी होती थी, लेकिन अब इसी बीजापुर की एक नई तस्वीर सामने आई है। जहां जाने से लोग डरते थे, वहां अब सैलानियों की आवाजाही बढ़ रही है। घने जंगल, पहाड़ों से गिरते झरने और बस्तर का देसी स्वाद पर्यटकों को अपनी ओर खींच रहा है। यानी कि बीजापुर में अब डर की नहीं, बदलाव की कहानी लिखी जा रही है।
9: समय बीता, परिस्थितियां बदली और फिर एक दौर ऐसा आया जिसने तस्वीर ही बदल दी। जब बात छत्तीसगढ़ की होती थी तो जेहन में नक्सलवाद, बंदूक और दहशत की तस्वीरें उभरती थी, लेकिन अब वक्त बदल रहा है, हालात बदल रहे हैं और इसी बदलाव की गवाही दे रहा है बीजापुर। जहां कभी जाने से लोग डरते थे, आज वहीं दूर दूर से सैलानी पहुँच रहे हैं। घने जंगल, ऊँची पहाड़ियाँ और पहाड़ों से गिरता झरना, कुदरत का ये नजारा पर्यटकों को अपनी ओर खींच रहा है। बीजापुर पहुंचने वाले पर्यटकों के लिए यहाँ सिर्फ खूबसूरत नजारे ही नहीं, बल्कि स्थानीय स्वाद का मजा लेने का मौका भी है।
6: अभी यहाँ पे 27 लोग हैं समूह में, तो हम लोग आधे लोग को गाइड करने के लिए भेजते हैं, आधे लोग को किचन जिम्मेदारी दी है और आधे लोग टिकट काटने के लिए और दो तीन लोग को टिकट चेकिंग के लिए भी दिए हैं।
10: हम देख रहे हैं कि आपका ये किचन भी छोटा किचन सेटअप, ये किसके लिए है?
6: तो एक किचन हम लोग इसलिए यहाँ पे बनाए कि जो भी टूरिस्ट आते हैं दूर दूर से, थोड़ा सा खाना उना उनका उनके लिए व्यवस्था हो जाए, तो इस टाइप का बनाए हैं। तो एक प्लेट का 120 रुपया लेते हैं प्रति व्यक्ति का।
9: 120 रुपए की प्लेट में लोग लोकल फूड का स्वाद चख रहे हैं, यानी घूमना भी, खाना भी और बस्तर की संस्कृति को करीब से महसूस करना भी। पर्यटकों की मदद के लिए करीब 28 लोगों की गाइड टीम भी मौजूद है, जो उन्हें आसपास के इलाकों की सैर कराती है और रास्ते से लेकर घूमने तक हर कदम पर मदद करती है।
11: 2025 से थोड़ा सा डेवलपमेंट हो गया।
10: उससे पहले कैसा था यहाँ का मंजर, कैसा हुआ करता?
11: उससे पहले सर यहाँ कोई, अब जैसे कि कोई भी आ जाते हैं नया, कोई दूसरे स्टेट से भी आते हैं या फिर छत्तीसगढ़ से भी, जो इंसान जो भी आएगा तो सर उनके लिए पूछताछ ये सारा चीज, मतलब उतना इधर बहुत डर था सर, डर का माहौल
10: था। नक्सली लोग यहाँ वाटरफॉल पर ले जाने से,
11: सर वो लोग यही बोलते थे कि नहीं, ये लोगों को इधर घुसने मत दो।
10: ऐसा
11: जी,
10: तो वाटरफॉल तक जाने की पाबंदी रहती थी
11: सर?
12: मतलब मना नहीं रहता,
11: मना रहता था सर, नहीं ये लोग जो आते हैं तो।
9: और इसकी फीस भी ज्यादा नहीं, सिर्फ 25 रुपए प्रति व्यक्ति। पिछले सिर्फ दो महीनों में 2000 से ज्यादा पर्यटक यहां पहुंच चुके हैं, यानी जिस बीजापुर की पहचान कभी दहशत से होती थी, आज वही पर्यटन और खूबसूरती की वजह से लोगों को अपनी ओर आकर्षित कर रहा है।
12: यहाँ पे लगभग आना ही एकदम मना था, मतलब बहुत गिने चुने लोग ही आते थे यहाँ पे। अभी वर्तमान में मैं देख रहा हूँ तो रास्ता बन गया है अच्छा, मतलब पर्यटक लोग भी अच्छा यहाँ पे रिस्पांस दे रहे हैं, तो बढ़िया है। मेरे हिसाब से ये बस्तर का सबसे सुंदर और सबसे खूबसूरत वाटरफॉल है, नंबी वाटरफॉल।
9: बंदूक और दहशत की पहचान से निकलकर बीजापुर अब पर्यटन और बदलाव की नई कहानी लिख रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
0: हॉलीवुड स्टार मर्लिन मुनरो के 100वें जन्मदिन के मौके पर लॉन्च की गई है खास बार्बी डॉल। आइए सीधे आपको लिए चलते हैं न्यूज एक्सप्रेसवे पर, जहां विदेश से जुड़ी कुछ खबरें कर रही हैं आपका इंतजार।
13: फ्रांस के एस्ट्रोनॉट सोफी एडेनो ने पहली बार स्पेस वॉक कर इतिहास रच दिया। उन्होंने नासा के एस्ट्रोनॉट अनिल मेनन के साथ इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन के बाहर काम किया। दोनों का मिशन पुराने एंटीना को हटाकर नया एंटीना लगाना था। ये एंटीना स्पेस स्टेशन और धरती के बीच तेज कम्युनिकेशन और डेटा ट्रांसफर के लिए बेहद जरूरी है। हालांकि मिशन में देरी के चलते एंटीना बदलने का पूरा काम नहीं हो सका। दोनों ने एंटीना को सुरक्षित तरीके से जोड़ने के बाद स्पेस स्टेशन में वापसी की। हॉलीवुड स्टार मर्लिन मुनरो के 100वें जन्मदिन के मौके पर खास बार्बी डॉल लॉन्च की गई है। ये डॉल मर्लिन के मशहूर गाने डायमंड्स आर अ गर्ल्स बेस्ट फ्रेंड वाले आइकॉनिक लुक में है। इसमें हॉट पिंक ड्रेस, बड़ा बो और चमकते डायमंड एक्सेसरीज नजर आ रहे हैं। मैटल अब तक मर्लिन को सम्मान देने के लिए 7 बार्बी डॉल्स बना चुका है। इस सिलसिले की शुरुआत 1997 में हुई थी। मर्लिन का जन्म 1 जून 1926 को लॉस एंजल्स में हुआ था। खास डॉल 18 अगस्त से $81 यानी करीब 8000 रुपए में उपलब्ध है। चीन के चोंगछिंग में हजारों ड्रोन ने रात के आसमान को रोशनी से चकमका दिया। करीब 5000 ड्रोन एक साथ आसमान में उड़े और मछलियों समेत समुद्री जीवों की विशाल आकृतियां बनाने लगे। नजारा ऐसा था जैसे पूरा समंदर आसमान में उतर आया हो। ड्रोन शो की थीम मशहूर कहानी 20,000 समुद्र के नीचे एक यात्रा पर आधारित थी। रोशनी से बने समुद्री जीवों ने रात के आसमान को बेहद खूबसूरत बना दिया। इस अनोखे शो को देखने पहुंचे लोग आसमान में दिखी समुद्र की दुनिया देखकर हैरान रह गए। चीन के हुकाओ झरने के पास 1000 से ज्यादा लोगों ने मिलकर गीत गाया तो पूरा इलाका सुरों से गूंज उठा। लोगों ने मशहूर गीत येलो रिवर कैंटाटा गाया, जिसे 1939 में चीन के संघर्ष और एकता को दर्शाने के लिए बनाया गया था। गीत सुनकर वहां से गुजर रहे कई पर्यटक भी खुद को रोक नहीं पाए और गायन में शामिल हो गए। इस कार्यक्रम के लिए झरने की विशाल घाटी को प्राकृतिक मंच बनाया गया। तेज बहती नदी और झरने की आवाज ने पूरे माहौल को और भी खास बना दिया। चीन के हुबेई प्रांत में इन दिनों राफ्टिंग का रोमांच पर्यटकों को खूब आकर्षित कर रहा है। गर्मी से राहत पाने के लिए लोग तेज बहती नदी में राफ्टिंग का मजा ले रहे हैं। करीब 6.5 किलोमीटर लंबे राफ्टिंग ट्रैक में पानी का स्तर लगभग 148 मीटर नीचे जाता है। यहां राफ्टिंग के साथ ऑफ रोड रेसिंग, जंगल एडवेंचर और आउटडोर एक्टिविटी का भी आनंद लिया जा सकता है। साल 2006 में यहां राफ्टिंग शुरू हुई थी, तब से अब तक 80 लाख से ज्यादा पर्यटक यहां पहुंच चुके हैं।
0: ब्रेक प्लाजा पर हमारे लिए वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का, लेकिन आप कहीं मत जाएगा, ब्रेक के बाद लिए चलेंगे खेल चक्कर।
14: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, मोड़ इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी। गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
15: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
16: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे
17: गुड न्यूज टुडे पर।
0: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती हैं तो कुछ दिखाती हैं विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
18: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
19: और दुर्भाग्य कहता है
20: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
0: अविश्वास में विश्वास बसता है,
18: जो हमें अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
21: गुड न्यूज टुडे।
18: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते। खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे। देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
14: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच।
0: गोल टेस्ट के पहले मैच में 10 विकेट लेकर मानव सुथार ने रचा इतिहास। खेल जगत से जुड़ी ऐसी इंटरेस्टिंग खबरों को जानने के लिए आइए सीधे आपको लिए चले खेल चक्कर।
13: भारत ने गोल टेस्ट में श्रीलंका को 165 रनों से हरा दिया और 2 मैचों की सीरीज में 1-0 की बढ़त बना ली है। ये भारत का 600वां टेस्ट मैच था। श्रीलंका को जीत के लिए 372 रन का टारगेट मिला था, लेकिन टीम दूसरी पारी में 206 रन पर ही ऑल आउट हो गए। भारत की जीत के हीरो 24 साल के स्पिनर मानव सुथार रहे। दूसरी पारी में 55 रन देकर 6 विकेट लेने वाले सुथार ने श्रीलंका के आखिरी 4 विकेट सिर्फ 10 गेंद में लेकर भारत को जीत दिलाई। देवदत्त पड़िक्कल को उनकी 167 रन की पारी के लिए प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। गोल टेस्ट में मानव सुधार ने इतिहास रच दिया है। उन्होंने श्रीलंका के खिलाफ एक मैच में अकेले 10 विकेट ले लिए और इसके साथ ही वो विदेश में भारत के लिए एक टेस्ट में 10 विकेट लेने वाले सबसे युवा खिलाड़ी और सातवें स्पिनर बन गए हैं। मानव सुधार ने श्रीलंका की पहली पारी में 4 और दूसरी पारी में 6 विकेट लिए। सुधार ने एक मैच में 10 विकेट लेकर श्रीनिवास वेंकटराघवन का रिकॉर्ड भी तोड़ दिया है और भारतीय गेंदबाजों की उस लिस्ट में शामिल हो गए हैं जिन्होंने ये कारनामा कर दिखाया है। सुधार से पहले अनिल कुंबले, हरभजन सिंह, मनिंदर सिंह, वेंकटपति राजू और रविचंद्रन अश्विन ने ये उपलब्धि हासिल की है। राजधानी दिल्ली में चल रहे बैडमिंटन वर्ल्ड चैंपियनशिप में आज भारत की शुरुआत अच्छी रही। मेंस डबल्स में सात्विक साईराज रंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी की जोड़ी बिना खेले ही प्री क्वार्टर फाइनल में पहुंच गई है। दूसरे राउंड में सात्विक चिराग का मैच स्कॉटलैंड के अलेक्जेंडर डन और एडम प्रिंगल से होना था, लेकिन मुकाबले से पहले ही चोट के कारण स्कॉटिश जोड़ी ने अपना नाम वापस ले लिया और इस तरह भारतीय जोड़ी को वॉकओवर मिल गया। मिक्स डबल्स में भारतीय जोड़ी ध्रुव कपिला और तनिषा क्रास्टू ने भी बीडब्ल्यूएफ विश्व बैडमिंटन चैंपियनशिप के प्री क्वार्टर फाइनल में जगह बना ली है। उन्होंने राउंड ऑफ 32 के मुकाबले में मकाऊ के लियोंग योक चोंग और एनजी वेंगची को सीधे सेटों में 21-11, 21-11 से मात दी।
0: इसी के साथ न्यूज पथ में मेरे यानी कि श्वेता झा के साथ फिलहाल इतना ही। देश दुनिया के तमाम पॉजिटिव खबरों के लिए आप देखते रहिए गुड न्यूज टुडे।
14: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी।
22: क्या आप सोते समय परेशान रहते हैं? क्या आप पलंग पर फैल कर सोते हैं? क्या आपको सोने के लिए सहारे की जरूरत पड़ती है? आपके सोने का तरीका आपके मन के बारे में क्या बताता है, जानिए मेरे साथ सिर्फ गुड लक टुडे में।
14: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
15: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर, सच्ची खबर।
16: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।
0: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती हैं तो कुछ दिखाती हैं विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
16: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
19: और दुर्भाग्य कहता है
20: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
0: अविश्वास में विश्वास बसता है,
16: जो हम में अच्छाई जगाता है हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
15: गुड न्यूज टुडे।
18: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे, देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
14: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
15: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर, सच्ची खबर।
16: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।
0: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती है तो कुछ दिखाती है विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
14: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम।

0: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को।
1: क्या आप सोते समय परेशान रहते हैं? क्या आप पलंग पर फैल कर सोते हैं? क्या आपको सोने के लिए सहारे की जरूरत पड़ती है? आपके सोने का तरीका आपके मन के बारे में क्या बताता है? जानिए मेरे साथ सिर्फ गुड लक टुडे में।
2: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
3: और दुर्भाग्य कहता है
2: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।

0: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
1: और दुर्भाग्य कहता है
2: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
3: अविश्वास में विश्वास बसता है,
0: जो हमें अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
4: गुड न्यूज टुडे।
0: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे, देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
5: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
6: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
0: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।
3: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती है तो कुछ दिखाती है विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती है तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
0: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
1: और दुर्भाग्य कहता है
2: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
3: अविश्वास में विश्वास बसता है,
0: जो हमें अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
4: गुड न्यूज टुडे।
0: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे, देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
5: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
6: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
0: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर। असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
1: और दुर्भाग्य कहता है
2: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
3: अविश्वास में विश्वास बसता है,
0: जो हमें अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
4: गुड न्यूज टुडे।

0: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
1: देश देख रहा है।
2: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट, कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच। HRIT यूनिवर्सिटी गाजियाबाद, शेपिंग फ्यूचर, क्रिएटिंग लीडर्स।
3: हॉकी वर्ल्ड कप में भारत ने पाकिस्तान को 5-3 से हराया। टॉप 8 में पहुंची टीम इंडिया। कप्तान हरमनप्रीत और अभिषेक ने दागे

0: 노도골. जम्मू कश्मीर दौरे पर अमेरिकी राजदूत सर्जियो गोर श्रीनगर की डल लेक में की शिकारा की सवारी, घाटी के मेहमान नवाजी के मुरीद। मौसम की चुनौतियों के बीच हेमकुंड साहिब यात्रा में रौनक, अब तक 2.5 लाख से ज्यादा श्रद्धालुओं ने टेका मत्था। 10 अक्टूबर तक जारी रहेगी पवित्र यात्रा। सावन के पवित्र महीने में दिख रहे हैं शिव भक्ति के अनोखे रंग। मुंगेर में भव्य कांवड़ यात्रा बनी आकर्षण का मुख्य केंद्र, श्रद्धालु बैद्यनाथ धाम में करेंगे जलाभिषेक। महाराष्ट्र में गणेश उत्सव की तैयारियां तेज। अकोला में बप्पा की प्रतिमाओं को अंतिम रूप दे रहे हैं कारीगर, 14 सितंबर से शुरू होगा उत्सव।
1: गुड न्यूज चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है इसके अंदर ना।
0: गुड न्यूज टुडे देख रहे हैं आप, मैं हूं आपके साथ वैभव राज शुक्ला। स्वागत है आपका हमारे विशेष कार्यक्रम में, जहां हम बात कर रहे हैं बप्पा की। इनके आगमन के दिन अब बहुत करीब रह गए और इसलिए मुंबई में उनके स्वागत की तैयारियां जबरदस्त तरीके से लगातार जारी हैं। बड़े मंडपों में बप्पा की प्रतिमा और उनके दरबार की सजावट का काम तेजी से चल रहा है। आज आपको लिए चलेंगे लालबाग चौराहा मंडप में, जहां पर मुख्य द्वार का काम लगभग पूरा होने को है। आपको मंडप की सजावट और थीम के बारे में विस्तार से हम समझाएंगे भी। इसके बाद देखिए मुंबई के ही काला चौकी के महागणपति की प्रतिमा के आज हम दर्शन कराने जा रहे हैं, जिन्हें मंडप में बड़े ही धूमधाम के साथ लाया जा चुका है और अब उनकी सज्जा का काम शुरू हो चुका है। गणपति उत्सव को देखते हुए मुंबई के बाजारों और दुकानों में जबरदस्त रौनक है। बप्पा की प्रतिमा और उनके दरबार को सजाने वाली चीजों की भारी डिमांड इस वक्त देखने को मिल रही है। आज आपको बप्पा के लिए बन रहे आसन और सिंहासन दिखाएंगे, जिनकी भारी डिमांड है। शुरुआत करते हैं लालबाग के राजा के साथ। देखिए मुंबई में गणेश उत्सव की तैयारियां जोर पकड़ चुकी हैं और अब इंतजार बस बप्पा के आगमन का है। लालबाग चौराहा का भव्य मंडप दिन रात की मेहनत से आकार ले रहा है। धीमे धीमे 93वें साल में प्रवेश कर रहे लालबाग चौराहा के दर्शन करने के लिए हर साल देश विदेश से लाखों श्रद्धालु पहुंचेंगे, इसलिए पंडाल की सजावट से लेकर भक्तों की सुविधा और भीड़ प्रबंधन का खास तैयारियां उनके लिए की जा रही हैं। बप्पा की प्रतिमा से पर्दा गणेशोत्सव से एक दिन पहले उठेगा, जिसके लिए उत्सुकता भी है और इंतजार भी। देखिए लालबाग चौराहा से हमारी खास रिपोर्ट।

0: गण नायकाय गण देवताय गणाध्यक्षाय धीमहि, गुरु शरीराय गुणमंडिताय गुणेशानाय धीमहि, एक दंताय वक्रतुंडाय गौरी तनाय धीमहि, गजेशानाय भालचंद्राय श्री गणेशाय धीमहि। बापा के आने की शुभ घड़ी है और सबसे ज्यादा इंतजार लाल बागचा राजा के दर्शन का है। अब ज्यादा दिन बाकी नहीं जब यहाँ मुंबई का सबसे भव्य मंडप सजकर तैयार होगा, जिसमें नव साचा गणपति यानी मन्नतों के राजा की विशाल प्रतिमा विराजमान होगी। लेकिन उससे पहले अनगिनत काम है। वैसे तो 9 जून को ही पूजा के साथ उत्सव की तैयारियां शुरू हो चुकी हैं। और देखिए कैसे दिन रात काम करते हुए पंडाल का भव्य मुख्य द्वार लगभग तैयार है।
1: इसी रास्ते से विसर्जन के समय लालबाग के राजा बाहर की तरफ आते हैं और इसी सड़क पर बेसब्री से लाखों की तादाद में जुटे जो श्रद्धालु हैं वो लालबाग के राजा का अंतिम दर्शन करने के लिए घंटों खड़े रहते हैं। ये वही मुख्य द्वार है, ये वही भव्य बड़ा सा गेट है जहां पर लोग पहुंचकर सेल्फीज निकालते हैं, क्वालिटी जो तस्वीरें हैं वो शूट करते हैं और यहां पर आकर के इसकी जो शोभा है, जो सुंदरता है वो देखते हैं। आपको बताएं कि पिछली बार मुख्य द्वार को तिरुपति बालाजी का अवतार दिया गया था, उसका स्वरूप दिया गया था, लेकिन इस बार जो जानकारी मिल रही है कहीं ना कहीं भोलेनाथ को इस मुख्य द्वार से जोड़ा जाएगा। गौरतलब है कि श्रावण चल रहा है, ऐसे में जो जानकारी हमारे पास मिली है सूत्रों के मुताबिक जो हमें खबर मिली है इस बार बद्रीनाथ या केदारनाथ की थीम पर ये भव्य गेट बनाया जाएगा। आपको बताएं कि इसका काम शुरू हो चुका है, तकरीबन 1.5 महीने पहले से ही लाखों रुपए इस भव्य गेट के लिए लगते हैं। इस तरह के लालबाग के राजा पर कुल 3 गेट बनाए जाते हैं जहां से श्रद्धालु कतारों में होते हुए लालबाग के राजा का दर्शन करने के लिए पहुंचते हैं। बस यहां पर ज्यादा से ज्यादा 500 से 600 मीटर की दूरी पे ही लालबाग के राजा विराजमान है जहां पर उनकी प्रतिमा बनाने का काम शुरू है। हालांकि पर्दे से उन्हें अभी छिपाया गया है और एक दिन प्रेस कॉन्फ्रेंस ली जाएगी और उस दिन ही पहली बार लालबाग के राजा का दर्शन जो है वो दिया जाएगा।
0: जैसी शोहरत इस पंडाल की है उसी के अनुरूप हर साल इसकी सजावट होती है। बारीक नक्काशी, मनमोहक शिल्प और अद्भुत मूर्तियां, अभी तो ये झांकी है लेकिन इसे देखकर अंदाजा लगाया जा सकता है कि लाल बाग के राजा का मंडप इस साल कितना भव्य और दिव्य होगा। इस साल लाल बागचा राजा पंडाल अपने 93 साल में प्रवेश कर रहा है। हर साल की तरह इस साल भी भक्तों के मन में सवाल है कि बापा की प्रतिमा कैसी होगी, उनकी सज्जा कैसी होगी। लेकिन जहां प्रतिमा बनाई जा रही है वो जगह कपड़े से ढकी हुई है। हमेशा की तरह प्रतिमा से पर्दा गणेशोत्सव के एक दिन पहले उठेगा।
1: लालबाग के राजा जहां पर स्थापित हैं, इस जहां पर उनकी प्रतिमा बनाने का काम चल रहा है, मैं उस जगह पे मौजूद हूँ। ये आप देख रहे हैं तस्वीर, चारों तरफ से पैक किया गया है और यहाँ पर ही लालबाग के राजा को बनाने का काम जो है शुरू है। आप देखें बैरिकेड्स वगैरह सारे लगा दिए गए हैं। नॉर्मली यहाँ पर किसी को आने जाने अब नहीं दिया जा रहा है, लेकिन जो कोई भी लालबाग के राजा की उस पत्थर वाली प्रतिमा को जाकर श्रद्धा करना चाहता है, पूजा करना चाहता है, तो वो यहाँ पहुंच जाते हैं। खास बात यह है कि वो जगह है जिसे मन्नत की लाइन कही जाती है, मन्नत की कतार कही जाती है। यही वो जगह है जहां पर 8-10 घंटे लाइन में खड़े होने के बाद बप्पा के पास पहुंचा जाता है, तब जाकर के उनके पैर छूने का मौका मिलता है। थोड़ा सा देखें किस तरीके से एक बहुत ही भव्य तरीके से यहां पर लालबाग के राजा का दरबार सजाने का काम जो है शुरू है।
0: मुंबई के लालबागचा राजा देश के सबसे प्रसिद्ध गणपति मंडलों में शामिल हैं, जहां हर साल महाराष्ट्र ही नहीं बल्कि पूरे देश और विदेश से भी लाखों श्रद्धालु भगवान गणेश के दर्शन के लिए पहुंचते हैं। आम लोगों के साथ नेता, अभिनेता और उद्योगपतियों का तांता लगा रहता है। ऐसे में मंडल का सबसे ज्यादा फोकस भीड़ को कंट्रोल करने और भक्तों को बेहतर सुविधा देने पर होता है। बारिश के दिन है, लिहाजा सावधानी ज्यादा है।
1: मुंबई शहर की इन ऊंची ऊंची इमारतों के बीच लालबाग के राजा का दरबार है। कोशिश करते हैं तस्वीरों के माध्यम से दिखाने की कि किस तरह की व्यवस्था और किस तरह की तैयारी गणेश उत्सव को लेकर की जा रही है। गौरतलब है कि 14 सितंबर से मुंबई, महाराष्ट्र और ये पूरा देश जो है गणेश का महाउत्सव मनाने वाला है। पूरे देश भर में लालबाग के राजा का नाम बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा चर्चित है। अलग अलग राज्यों से लोग दर्शन करने के लिए आते हैं और तस्वीरों के माध्यम से आप देखें किस तरीके से पूरी तैयारी शुरू हो चुकी है। आप सामने देखें बकायदा टेंट लगा दिया गया है क्योंकि इंद्र देवता बहुत ज्यादा इस समय मुंबई में प्रसन्न है। अच्छी खासी बारिश हो रही है और जब घंटों कतार में खड़े रहने वाले जो श्रद्धालु हैं बप्पा तक पहुंचते हैं तो उनकी सुरक्षा और उनको लेकर के ठीक ठाक व्यवस्था किस तरीके से लालबाग द्वारा की जाती है ये दिखाने का हम पूरा प्रयास कर रहे हैं। सामने जो आप टेंट देख रहे हैं यहाँ पर ही घूम घूम कर लंबी लंबी कतारें लगाई जाती हैं जिसमें मुख दर्शन भी होता है और उनके पग का भी दर्शन होता है। साथ ही आपको बताएं कि ये वही मुख द्वार है जहां से लालबाग के राजा विसर्जन के लिए सीधे बाहर की तरफ आते हैं। आप देख रहे हैं संतरे कलर का यानी कि ऑरेंज कलर का टेंट है और यहां से ही वीआईपी, वीवीआईपी और तमाम वो श्रद्धालु जो बप्पा तक पहुंचते हैं वो भीतर की तरफ जाते हैं और इस टेंट के एकदम आखिरी में बप्पा के निर्माण कार्य जो है चल रहा है। हालांकि अभी लालबाग के राजा को दिखाया नहीं जा रहा है।
0: जहां लालबाग चा राजा का पंडाल है उसी परिसर में एक मशहूर बाजार है। आम दिनों में यहां काफी भीड़भाड़ होती है, रौनक रहती है। रोजमर्रा की चीजों के अलावा यहां पूजा पाठ का सामान मिलता है लेकिन गणेशोत्सव शुरू होते ही ये बाजार बंद कर दिया जाता है। लेकिन बापा के आने की खुशी ऐसी होती है कि दुकान बंद करने का मलाल यहां किसी दुकानदार को नहीं होता। लाल बागचा राजा का पंडाल तो सज ही रहा है, बापा के स्वागत के लिए बाजार भी तैयार है। बापा आएंगे तो धूम होगी, सजावट होगी, उनके लिए भव्य आसन और सिंहासन की जरूरत होगी। डिमांड ज्यादा है और समय कम, इसलिए जोर शोर से काम शुरू हो चुका है। मुंबई में लालबाग के राजा पंडाल से सटी गली में सहेली नाम की कार्यशाला में अभी से गणेश भक्तों की भारी भीड़ है क्योंकि यहां बाप्पा के लिए एक से बढ़कर एक आसन है।
2: के राजा का जो मंडल है उससे ठीक सटी एक गली है और गली में ही एक ऐसी कार्यशाला है जहां पर गणपति बप्पा को सजाने का काम बहुत ही तेजी से चल रहा है। उनके सिंहासन, उनके आसन को एक से बढ़कर एक रंग रूप दे करके बनाया गया है। थोड़ा तस्वीरों में देखें, एक से बढ़कर एक सिंहासन इस समय गणपति बप्पा गणेश जी के लिए जो है यहाँ बनाकर रखे हैं। गौरतलब है कि 14 सितंबर से गणेश उत्सव पूरा देश मनाने वाला है। ऐसे में हर कोई चाहता है कि अपने घरों में यानी कि घर गृति जो गणेश जी ले जाएंगे उन्हें जिस सिंहासन पर बिठाया जाए वो उनका पसंदीदा हो, डिमांडिंग हो और कहीं ना कहीं ट्रेंडिंग भी हो। यही वजह है कि आप देखें एक बहुत बड़ी कार्यशाला इस समय यहाँ पर है और लोग यहां पर ढेरों की तादाद में पहुंच रहे हैं, अपने पसंदीदा एक से बढ़कर एक सिंहासन भी बना रहे हैं। आकर्षित का केंद्र वैसे तो बहुत सारे हैं लेकिन ये जरा सा वाटर वॉल पेपर देखें, इसे गणेश जी के ठीक पीछे रख दिया जाएगा और जब बप्पा इसके समक्ष बैठेंगे, विराजमान होंगे तो आप समझ सकते हैं किस तरह की खूबसूरती देखने को मिलेगी। साथ ही साथ ये देखिए कितनी प्यारी सी रुद्र के साथ में शिवलिंग का भी अवतार यहां पर किया गया। इस तरह की एक से बढ़कर एक प्रतिमाओं से गढ़ी एक से बढ़कर एक सिंहासन आसन जिसे छोटे छोटे मंडप भी कहे जाते हैं वो बनाने का काम है।
0: कहने की जरूरत नहीं कि ऐसे खूबसूरत आसन बापा की प्रतिमा की भव्यता और बढ़ाते हैं, इसलिए गणेशोत्सव में इनकी जबरदस्त मांग होती है। 25 सालों से काम कर रही सहेली कार्यशाला में गणेश भक्तों के लिए ऑप्शन भी ढेर सारे हैं। पंढरीचा रूप आसन, श्री सिंहासन, सुखहर्ता आसन, मौर्या आसन, वक्रतुंड आसन, मंगल मूर्ति आसन, स्वामी समर्थ आसन, स्वराज आसन, बापा के लिए जिसे जो पसंद आ जाए।
3: आप देख सकते हैं कि हमारे सबसे ज्यादा विट्ठल पंडरीनाथ की है, शंकर भगवान की है, जैसे आप लोग अभी ये साल सबसे ज्यादा चले वो स्वामी समर्थ का है। अच्छा। आज का ट्रेंड चलो स्वामी समर्थ का, तो स्वामी समर्थ का हम लोग इसमें तीन साइज बना के रखे। हाँ। हमारे यहाँ आपको हर चीज में इसमें तीन साइज मिलेंगे, छोटा मीडियम और बड़ा, ऐसे तीन मिलेंगे। हाँ। जैसे आपका बप्पा होंगे वैसे वो साइज के आपको करके ये मिल जाएंगे सब। अच्छा, हमारे
2: जितनी लंबाई बप्पा की होगी उतनी साइज में आप सिंहासन बनाएंगे। यहाँ भी मैं देख रहा हूँ बहुत सारे लोग राजा पंढरीचा।
3: हाँ? ये राजा पंडित विट्ठल के हैं, एक नाम उनका राजा पंडित है। हाँ? जैसे गणपति का नाम है वक्रतुंड मनोदर, ये हम लोग वो नाम पे वो थीम पे सुखरता है, लंबोदर है, वक्रतुंडे, अलग अलग नाम पे मोरे है। जैसे गणपति बापा का नाम है वैसे हम लोग उसके नाम पे भी बनाए हुआ, सब अलग अलग चीज का आपको मिल सकता है हमारे यहाँ।
2: अच्छा, मैंने देखा एक दो लोगों ने आपसे छत्रपति शिवाजी महाराज की भी सिंहासन मांगी, वो भी
3: है हमारे यहाँ। महाराज के शिव महाराज के राज्यभिषेक का सिंहासन वो भी रखे, जिसके साथ में उनके मावड़े भी रखे हुए है। अच्छा। कि अगर आप घर पे बना सकते हो तो आपको अलग से मावड़ा चाहिए तो मावड़े भी मिल सकते हैं, जो फोल्डिंग पूरे आते हैं। मैम
0: बापा घर आएंगे तो उनके लिए सिर्फ आसन या सिंहासन ही नहीं चाहिए, उनकी प्रतिमा को सजाने का भी सामान जरूरी है। दरबार को सजाने के लिए भी खूबसूरत चीजों की आवश्यकता होती है। मुंबई के बाजारों में गणेशोत्सव से जुड़ी ऐसी तमाम चीजों की भरमार है। सहेली कार्यशाला में इसके लिए कई ऑप्शन हैं।
3: जैसे कि आप देखते हो कि फ्लावर्स में जो है, फ्लावर्स में काफ़ी जो न्यूट आइटम्स है, जो पूरा वेल्स लगाए हुए वो टाइप के आपको सिंहासन मिलेंगे, जो जो मेटल के आते हैं, बापा के पगड़ी से पगड़ी मिलेंगे, बापा की शाल मिलेंगी, रुमाल मिलेंगे, हार मिलेंगे, एक रूफ के नीचे आपको सब आइटम्स मिल जाएंगे, लाइट्स भी मिल जाएंगी सर।
0: मुंबई के अलग अलग इलाकों में अलग अलग बाजारों में बापा की प्रतिमा और उनके दरबार की साज सज्जा के लिए मुकुट, साफा, आर्टिफिशियल फूल माला और ग्रास शीट जैसी चीजों की अभी से भरमार है। बाजारों में रौनक है और ऐसी कार्यशाला में भारी भीड़। मुंबई से धर्मेंद्र दुबे के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
4: मुंबई की गलियों में गणपति बप्पा मोरिया की गूंज सुनाई देने लगी है और इसी के साथ शुरू हो गई है बप्पा के भव्य स्वागत की तैयारियां। साज सज्जा के लिए कला चौकी के 22 फीट ऊंचे महागणपति के पहले ही पंडाल में आगमन हो चुका है। ढोल नगाड़ों और जयकारों के साथ जब भक्त बप्पा को लेकर पहुंचे तो रौनक देखने वाली थी। इस बार महागणपति महालक्ष्मी के स्वरूप में विराजेंगे और पंडाल को भी सोलापुर के महालक्ष्मी मंदिर की तर्ज पर सजाया जाएगा। 71 साल पुराने इस मंडल में हर साल कुछ नया देखने को मिलता है, जिसका भक्तों को खास इंतजार रहता है। रिपोर्ट देखिए।

0: साल जिसका इंतजार होता है वो घड़ी बेहद करीब आ चुकी है। चंद रोज में ही मुंबई की सड़कें गलियां इस जय घोष से गूंजने वाली हैं। गणपति बाप्पा मोरिया, मंगल मूर्ति मोरिया। 14 सितंबर से गणेशोत्सव की शुरुआत है और उसकी तैयारी अभी से शुरू हो चुकी है। गणपति की प्रतिमाएं धूमधाम से पंडालों तक जा रही हैं। ढोल नगाड़ा बजाते, नाचते गाते भक्तिभाव के साथ मुंबई के काला चौकी के महागणपति को पंडाल में लाया गया। हजारों की संख्या में भक्त जयकारा लगाते प्रतिमा के साथ चले। इस तरह काला चौकी के 22 फीट ऊंचे महागणपति का उनके पंडाल में आगमन हो गया। सिंह पर सवार बाप्पा इस साल महालक्ष्मी जी के अवतार में है और हमेशा की तरह बाप्पा की ये प्रतिमा दिव्य और भव्य है।
1: बड़े बड़े पंडाल अपने बप्पा को अपनी जगह पर लेकर आना शुरू हो चुके हैं। फिलहाल इस समय मौजूद हूँ साउथ मुंबई के काला चौकी के महागणपति के दरबार में और आप देखें बहुत ही सुंदर भव्य तरीके से बप्पा को यहाँ पर विराजमान कर दिया गया है। आपको बताएं कि महालक्ष्मी के अवतार में गणपति बप्पा को ले आया गया है। फिलहाल यहाँ बात करें इन बप्पा की, 22 फीट की ऊंचाई है। ट्रॉली से सिंह पर बकायदा बप्पा सवार हैं और खास बात यह है कि जो ट्रॉली रखी गई है जिस जगह पे, उसके नीचे बहुत ही सुंदर तरीके से रंगोली भी निकाली गई है, बनाई गई है, ठीक उसके ऊपर बप्पा को विराजमान करा गया है। और कुछ घंटों पहले बहुत सारे तस्वीरें, बहुत सारे वीडियोस सोशल मीडिया पर बप्पा के आगमन को लेकर के वायरल हुए थे, जिसमें हजारों की तादाद में जो गणेश भक्त हैं वो जुटे हुए थे और हर कोई बप्पा का स्वागत कर रहा था।
0: काला चौकी इलाके में महागणपति का पंडाल अपनी भव्यता के लिए मशहूर है। न सिर्फ विशाल प्रतिमा बल्कि मन को मोह लेने वाली दिव्य साज सज्जा। सबसे बड़ी बात ये कि इसमें महाराष्ट्र की संस्कृति और परंपरा को संजोया जाता है।
2: हर साल स्वरूप महागणपति का बदलता है। कभी महागणपति पांडुरंग विट्ठल के रूप में आते हैं, कभी सरस्वती के रूप में आते हैं, कभी भोले शंकर के रूप में आते हैं, तो कभी कान्हा नटखट बन के आते हैं। ये साल महालक्ष्मी का रूप, यानी महालक्ष्मी यानी क्या, स्थैर्य, शांति, संपत्ति, जो आजकल हर एक को आशीर्वाद के रूप में महागणपति देने आ रहे आ गए हैं। और इसी का जो हमारी झांकी बनेगी, डेकोरेशन बनेगा, वो भी उसी का एक कोल्हापुर के महालक्ष्मी के मंदिर का जो कंपोनेंट्स है, जो छवि है, वही आपको देखने को मिलेगी। इसलिए मैं आपके ओर से हमारे सभी भक्तों को विनती करता हूँ कि ये महालक्ष्मी का रूप, महालक्ष्मी का रूप महागणपति का, आप इस कोल्हापुर के महालक्ष्मी के मंदिर में देखने आइए।
0: महागणपति की प्रतिमा आ चुकी है, अब इसकी सजावट पर काम शुरू हो जाएगा। लेकिन अभी से जोश ऐसा है कि हजारों की तादाद में भक्त दर्शन के लिए आने लगे हैं। कार्यकर्ताओं में जोश है और महागणपति मंडल के कर्ता धर्ता दिन रात काम में जुटे हैं। काला चौकी महागणपति मंडल में बाप्पा का स्वरूप हर साल बदलता है। इस साल बाप्पा महालक्ष्मी स्वरूप में पधारे हैं और उनका पंडाल भी सोलापुर के महालक्ष्मी मंदिर की तर्ज पर सजाया जाएगा, जिसकी पहली झलक गणेशोत्सव के पहले दिन देखने को मिलेगी।

0: महागणपति का आगमन 16 हम लोग सिर्फ आगमन नहीं करते, तो एक परंपरा उसमें जताते हैं। महाराष्ट्र की जो परंपरा है जो आजकल कम होती जा रही है और वो सिर्फ उनके जगह पे ही दिखाई जाती है, उनको हम सब मुंबई में लेके आते हैं। पालखी जो होली में हमारे कोकण में नचाई जाती है, वो कोली हमारे सब कोकण के बांधव वो पालखी लेके आते हैं और महागणपति के जो रुपेरी पैर रहते हैं उनको वो पालखी में रखते हैं। हमारे कोली भाई बहन रहते हैं वो उनका नृत्य प्रकार यहाँ पे दिखाते हैं। मर्दानी खेल जो रहते हैं जो शिवकालीन छत्रपति शिवाजी महाराज जी के कालखंड से ये चलते आ रहे हैं वो भी हमारे ये पारंपरिक आगमन 16 में रहते हैं। इसलिए ये सब मैनेज करने के लिए हमें एक महीने का वक्त तो लगता ही है।
1: काला चौकी महागणपति मंडल के 71 साल हो चुके हैं। हर साल ये मंडप अपनी साज सज्जा का नया कीर्तिमान बनाता है और उम्मीद की जा रही है कि इस साल भी गणेश उत्सव में यहाँ कुछ अलग कुछ नया देखने को मिलेगा। आपको बता दें कि काला चौकी के महागणपति के आसपास कई बड़े पंडाल हैं जो देश भर में मशहूर हैं। इसी इलाके में लालबाग का राजा, चिंतामणि का राजा, गणेश गली, चिंचपोकली का राजा और परेल का राजा जैसे पंडाल हैं। और जब गणेश उत्सव प्रारंभ होगा ये पूरा इलाका ही एक विशाल धर्म स्थल में तब्दील हो जाएगा और महागणपति के इस पंडाल में दर्शन के लिए लाखों भक्त पहुँचेंगे।
2: और धीरे धीरे ये जो पूरा परिसर है महालक्ष्मी के मंदिर के रूप में बदल जाएगा और उसके बाद लंबी लंबी कतारें श्रद्धालुओं की यहाँ पर लगेगी, घंटों लोग यहाँ खड़े होंगे, फिर चाहे इंद्र देवता बरस ही क्यों ना रहे हों, लेकिन फाइनली कितनी भी थकावट हो जाए बप्पा के समक्ष आकर लोग खुद को बहुत ज़्यादा तंदुरुस्त समझेंगे, बहुत ज़्यादा फ्रेश समझेंगे और बप्पा के आशीर्वाद के साथ अपनी मनोकामना बप्पा के समक्ष रखेंगे। वीडियो जर्नलिस्ट स्वागत खां के साथ धर्मेंद्र दुबे, गुड न्यूज़ टुडे, मुंबई।
3: मुंबई नहीं, आपको बता दें महाराष्ट्र के दूसरे इलाकों में भी गणेश उत्सव की तैयारियां तेज चल रही हैं। वहीं पर अकोला जैसे इलाकों में बड़े पैमाने पर बप्पा की विशाल प्रतिमाएं तैयार की जा रही हैं। इनमें कुछ मूर्तियां छोटी हैं जो घरों के लिए हैं और कुछ 30 फीट तक विशाल हैं जिन्हें पंडालों में विराजमान किया जाएगा। देखिए बप्पा की प्रतिमा के लिए सिद्धिविनायक आर्ट कार्यशाला मशहूर है जहाँ पर कलाकार ज़्यादातर लालबागचा राजा की तर्ज पर प्रतिमाएँ बनाते हैं और जिनकी डिमांड बहुत ज़्यादा है। रिपोर्ट देखिए।
4: तो ज्यादातर हमारे लालबाग राजा का डिमांड ज्यादा है तो इसीलिए हम लालबाग राजा मूर्ति प्रतिमाएं ज्यादा बनाते हैं। और इस वर्ष 25-30% कीमतों में वृद्धि हो गई क्योंकि मटेरियल महंगा होने की वजह से कीमत ज्यादा हो गई। और हमारे जो कारागिर है, जो हमारे साथी है जिनके भरोसे हमारे सब चलता है वो सब बिहार से आते हैं।
5: अपने लाडले बापा का त्योहार जो है वो बस अब कुछ ही दिन बचे है इस लाडले के त्योहार को और लाडले बप्पा जो है हर घर में हर सार्वजनिक पंडाल में जो है विराजमान होने में जो है सभी भक्त जो है बड़े आतुर है। उससे पहले मूर्ति कलाकार जो है बप्पा की जो बड़ी बड़ी विशाल मूर्तियां जो है लगभग 3 फीट से तो लेकर 25-30 फीट की मूर्तियां इस सिद्धिविनायक आर्ट कार्यशाला में बन रही है और ये लालबाग की मूर्ति है जो अकोला जिले के अकोट की है। मानो इनकी महारत लालबाग के राजा की सबसे ज्यादा मूर्तियों की डिमांड जो है शिवा भाऊ के पास रहती है और शिवा भाऊ लगभग 3 फीट से लेकर 3 फीट या 5 फीट की जो मूर्तियां है वो मिट्टी की बनाते हैं और बाकी जो बड़ी मूर्तियां जो है वो इन मूर्तियों को आप देख सकते हो कि कितनी सुंदर मूर्ति यहाँ पर है। मानो बापा प्रत्यक्ष हमारे साथ हमारे जेएनटी के दर्शकों के साथ जो है बोलते नजर आ रहे हैं, इतनी आंखों में उनकी रौनक है। और इस मूर्तियों को लगभग अब आखिरी हाथ लगाने में जो है कलाकार यहाँ पर जुट चुके हैं। आप देख सकते हो कि यहाँ पर 3 फीट से लेकर तो 25-30 फीट की बड़ी मूर्ति बनती है जो महज अकोला जिले में नहीं तो अमरावती, वाशिम, यवतमाल, जलगांव यहाँ तक कि नागपुर तक की मूर्तियाँ जो है यहाँ पर जाती है लाडले बापा को सार्वजनिक पंडाल में यहाँ पर ले जाने के लिए बड़े आतुर भक्त नजर आते हैं। तो हम भी कहेंगे गणपति बापा मोरिया तुम हमारे पंडाल में जल्दी आओ। धनंजय साहब ले गुड न्यूज टुडे अकोला।
3: तो खास कार्यक्रम में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम पॉजिटिव खबरों के लिए जुड़े रहिए गुड न्यूज टुडे के साथ। हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।

0: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
1: और दुर्भाग्य कहता है
2: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
3: अविश्वास में विश्वास बसता है,
0: जो हमें अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
4: गुड न्यूज टुडे।
0: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते। खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे। देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे में।
5: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
6: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
0: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।
7: Oh, my God.

0: कभी रफ्तार से दौड़ती हैं, तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती हैं, तो कुछ दिखाती हैं विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है, तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं, तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
1: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
2: और दुर्भाग्य कहता है
3: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
0: अविश्वास में विश्वास बसता है,
1: जो हम में अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
4: गुड न्यूज टुडे।
1: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते। खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे। देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे में।
5: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
4: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
1: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।
5: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को
6: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाए स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा, प्यार से परोसा।
7: हॉकी वर्ल्ड कप में भारत ने पाकिस्तान को 5-3 से हराया, टॉप 8 में पहुंची टीम इंडिया, कप्तान हरमनप्रीत और अभिषेक ने दागे 2-2 गोल। जम्मू कश्मीर दौरे पर अमेरिकी राजदूत सर्जियो गोर, श्रीनगर की डल लेक में की शिकारा राइड, घाटी के मेहमान नवाजी के हुए मुरीद। मौसम की चुनौतियों के बीच हेमकुंड साहिब यात्रा में रौनक, अब तक 2.5 लाख से ज्यादा श्रद्धालुओं ने टेका मत्था, 10 अक्टूबर तक जारी रहेगी यात्रा। सावन के पवित्र महीने में देख रहे हैं शिव भक्ति के अनोखे रंग, मुंगेर में भव्य कांवड़ यात्रा बनी आकर्षण का मुख्य केंद्र, श्रद्धालु बैद्यनाथ धाम में करेंगे जलाभिषेक। महाराष्ट्र में गणेश उत्सव की तैयारियां तेज, अकोला में बप्पा की प्रतिमाओं को अंतिम रूप दे रहे हैं कारीगर, 14 सितंबर से शुरू होगा उत्सव।
5: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम
7: हॉकी के मैदान से आए देश के लिए गुड न्यूज, विश्व कप मुकाबले में भारत ने पाकिस्तान को 5-3 के अंतर से हरा दिया। नेदरलैंड्स के एम्सटेलवीन ने खेले गए मुकाबले में पाकिस्तान को हराकर अगले राउंड में पहुंची भारतीय टीम। पाकिस्तान के खिलाफ मैच में कप्तान हरमनप्रीत सिंह ने 5वें और 21वें मिनट पर पेनल्टी कॉर्नर से किया गोल। भारतीय टीम की ओर से अभिषेक ने 11वें और 24वें मिनट पर किया शानदार गोल। हॉकी विश्व कप में 16 साल बाद खेला गया भारत पाकिस्तान का मुकाबला, भारत के हाथों हारकर विश्व कप से बाहर हुई पाकिस्तानी टीम। गोल टेस्ट में भारत की शानदार जीत, टीम इंडिया ने श्रीलंका को 165 रनों से हराया। मानव सुथार ने अपने करियर के दूसरे ही टेस्ट में रच दिया इतिहास, 10 विकेट लेने वाले बन गए और कारनामा अपने नाम किया, पहली पारी में 4 विकेट, दूसरी पारी में 6 विकेट। टेस्ट इतिहास में भारत की श्रीलंका पर लगातार 9वीं जीत। 2015 के बाद भारत के खिलाफ श्रीलंका को कोई टेस्ट जीत नसीब नहीं मिली। ये भारत का 600वां टेस्ट था। इस जीत के साथ दो टेस्ट की सीरीज में भारत को 1-0 की बढ़त। जीत के साथ भारत को वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के पॉइंट्स टेबल में मिली बड़ी राहत। अब भारत 10 मैचों में 5 जीत, 4 हार और 1 ड्रॉ के साथ 5वें पायदान पर। बैडमिंटन वर्ल्ड चैंपियनशिप में पीवी सिंधु की शानदार जीत, कनाडा की वेन यू को 21-16 21-17 से हराया। वर्ल्ड चैंपियनशिप के अगले राउंड में चीन की तीसरी वरीयता प्राप्त वांग झी से भिड़ेंगी 9वीं वरीयता प्राप्त पीवी सिंधु। वर्ल्ड चैंपियनशिप में आयुषा शेट्टी ने श्रीलंका के डुमिंडू को 21-8 21-10 से हराया। बैडमिंटन वर्ल्ड चैंपियनशिप में सात्विक साईराज और चिराग शेट्टी की भारतीय पुरुष डबल्स जोड़ी को मिला वॉकओवर। अमेरिका के गैरेट टैन से हार कर बैडमिंटन वर्ल्ड चैंपियनशिप से बाहर हुए लक्ष्य सेन। भगवान श्रीराम के करोड़ों भक्तों के लिए गुड न्यूज। मंदिर निर्माण समिति के अध्यक्ष नृपेंद्र मिश्रा बोले, सितंबर के अंत तक पूरा हो जाएगा मंदिर का निर्माण कार्य। अगले 2 दिन में श्रीराम मंदिर के शिखर पर स्थापित किया जाएगा मंदिर का प्रतीक चिन्ह। झारखंड के धनबाद में देखिए आस्था और परंपरा की शानदार तस्वीर, मां मनसा की 30 प्रतिमाओं का विसर्जन। श्रद्धालुओं की आस्था पर बारिश कभी नहीं पड़ रहा असर, धनबाद के कोरकोटा में लोगों ने मां मनसा की पूरी भक्ति के साथ विदा किया। कंधों पर मां मनसा की प्रतिमा लिए आगे बढ़ते हुए नजर आए श्रद्धालु। महाराष्ट्र के अकोला में दिखने लगी गणपति की उत्सव के रंग। गणपति महोत्सव के लिए अकोला में विशाल प्रतिमाओं के लिए कलाकार तैयार। गणपति प्रतिमाओं को अंतिम रूप देने में जुटे हुए कलाकार, 5 फीट से लेकर 30 फीट तक प्रतिमाएं उपलब्ध। जारी बारिश के बीच पवित्र हेमकुंड साहिब के श्रद्धालुओं का जोश लगातार है। इस साल अब तक लगभग 2.5 लाख से ज्यादा श्रद्धालुओं ने टेका मत्था। मुश्किल रास्ता और अनिश्चित मौसम के बावजूद श्रद्धालुओं का जोश है। बर्फीले रास्तों से करीब 19 किलोमीटर की पैदल यात्रा और पवित्र सरोवर में स्नान करने के बाद हेमकुंड साहिब में मत्था टेकने ते हैं श्रद्धालु। 10 अक्टूबर तक जारी रहेगी पवित्र यात्रा। पूरी श्रद्धा के साथ जारी है जम्मू कश्मीर के पुंछ जिले में स्थित प्राचीन बाबा बूढ़ा अमरनाथ की 12 दिवसीय यात्रा। पुंछ पहुंचा बूढ़ा अमरनाथ का दूसरा जत्था, जत्थी में देश विदेश के कुल 1938 भक्त। मंडी बेस कैंप में फूल माला पहनाकर किया गया यात्रियों का स्वागत। यात्रियों की सुविधा के लिए लगाए गए हैं खाने पीने के स्टॉल्स। भक्तों की यात्रा सुगम और सफल बनाने के लिए हर संभव कोशिश का प्रशासन। 28 अगस्त तक जारी रहेगी आस्था की ये यात्रा। रक्षाबंधन के दिन होगा 12 दिवसीय यात्रा का समापन। भगवान द्वितीय केदार के श्रद्धालुओं के लिए गुड न्यूज। सुरक्षा कारणों से 12 दिन बंद रहने के बाद फिर शुरू हुई मदमहेश्वर धाम की यात्रा। प्रशासन ने भीड़ नियंत्रण करने के लिए व्यापक इंतजाम किए। केरल के राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ आर लेकर ने की बीमार राहगीर की मदद। ब्लड शुगर लेवल बढ़ने से चक्कर आने के बाद रास्ते में गिर गया था गिरीश नाम का शख्स। गाड़ी से उतरकर बीमार शख्स के पास पहुंचे राज्यपाल और हालचाल जाना। शख्स की मदद करने के लिए 15 मिनट तक रुके रहे राज्यपाल। बाद में राज्यपाल ने शख्स को अस्पताल भेजने का इंतजाम किया। देशभर में गणेश उत्सव की तैयारियां तेज। तमिलनाडु के तिरुचिरापल्ली में बनाई जा रही है इको फ्रेंडली प्रतिमाएं। हर आकार और रंग रूप में बप्पा की कलाकृतियां बनाने में जुटे हुए हैं कलाकार। उधम सिंह नगर में दिख रही है राखी के त्योहार की रौनक। घर से दूर बैठे भाइयों तक राखी बेचने डाकघर में उमड़ रही है बहनें। राखी बेचने वाली महिलाओं को किसी तरह की परेशानी ना हो इसके लिए डाक विभाग ने भी विशेष व्यवस्थाएं की। राखी बेचने वाली हर आयु वर्ग की महिला शामिल। देश भर में 28 अगस्त को मनाया जाएगा भाई बहन का पवित्र त्यौहार। देश में रेल नेटवर्क का होगा विस्तार। केंद्रीय कैबिनेट ने 4 मल्टी ट्रैकिंग परियोजनाओं को मंजूरी दी। पश्चिम बंगाल, ओडिशा, तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश के 8 जिलों को कवर करेगी परियोजना। रेल नेटवर्क में करीब 410 किलोमीटर का सफर। पश्चिम बंगाल के खड़गपुर से ओडिशा के भद्रक और भद्रक से हरिदासपुर के बीच बनेगी 4th लाइन। आंध्र प्रदेश के गुमी डिपंडवी और तमिलनाडु के गुडूर के बीच बनेगी 90 किलोमीटर लंबी रेल लाइन। चारों मल्टी ट्रैकिंग रेल परियोजनाओं के निर्माण पर 9,450 करोड़ रुपए का आएगा खर्च। बिहार के मुजफ्फरपुर, सीतामढ़ी, सोन, बरसा को मिलेगी 4-लेन हाईवे की सौगात। केंद्रीय कैबिनेट ने मंजूरी दी। 22 किलोमीटर लंबे इस हाईवे का हाइब्रिड इम्यूनिटी मोड पर किया जाएगा विकास। हाईवे अपग्रेड होने से इलाके में कनेक्टिविटी हो जाएगी और बेहतर साथी व्यापार और आर्थिक गतिविधियों में होगी तेजी। दिल्ली में आयोजित यूपी जापान इन्वेस्टमेंट मीट में बोले रक्षा रेल मंत्री, देश में चल रहा दुनिया का सबसे बड़ा रेलवे स्टेशन का काम, 1300 से ज्यादा स्टेशनों का किया जा रहा पुनर्निर्माण। तमिलनाडु के महाबलीपुरम में कल साउदर्न जोनल काउंसिल की बैठक। जापानीज प्रतिनिधिमंडल की उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मुलाकात, निवेश को लेकर चर्चा हुई। उत्तर प्रदेश और यामानाशी के बीच बड़ी डील हुई, 4000 करोड़ की ग्रीन हाइड्रोजन और 2029 करोड़ के एस्कॉर्ट्स कुबोटा निवेश। इस मीट में जापान के 200 से ज्यादा उद्योगपति, सीईओ, बिजनेस लीडर्स शामिल। 22 अगस्त को काशी विश्वनाथ के दर्शन करेगा जापानीज प्रधान प्रतिनिधिमंडल, यूपी जापान इन्वेस्टमेंट मीट 2026 कार्यक्रम का हिस्सा लेंगे। एनएचएआई ने 121 टोल प्लाजा पर शुरू की ऑनलाइन फास्टैग लोकल पास सुविधा। सावन के पवित्र महीने में दिख रहे हैं शिव भक्ति के अनोखे रंग। मुंगेर में भव्य कांवड़ यात्रा बनी आकर्षण का मुख्य केंद्र। भारत में अमेरिका के राजदूत सर्गियो गोर ने श्रीनगर का दौरा किया और अमेरिकी राजदूत को एयरपोर्ट पर पटगाम के कलेक्टर ने किया स्वागत। अमेरिकी राजदूत ने श्रीनगर की खूबसूरती का किया दीदार। दिल्ली को स्वच्छ बनाने के लिए अभियान की शुरुआत हो गई। मुख्यमंत्री ने शुरू किया कूड़े से आजादी अभियान, सबसे स्वच्छ वार्ड को 1 करोड़ इनाम देने का ऐलान। दिल्ली के लोगों ने कूड़े से आजादी अभियान की तारीफ। दिल्ली के लोग बोले, योजना तो अच्छी है लेकिन योजना लागू होना जरूरी है। राजस्थान के पाली में बिजली के हाई वोल्टेज तार में फंसे विदेशी पक्षी का रेस्क्यू हुआ। हाई वोल्टेज तार में बिजली बंद कराने के बाद बिजली कर्मचारियों ने 200 फीट ऊपर तार पर चढ़कर बचाई जान। बिजली के आर्थिंग लाइन में फंसे थे पक्षी, सुरक्षित बाहर निकाला गया। तिरुवनंतपुरम में चिड़ियाघर में शेर के शावकों, सिम्बा और सूरी को मिला नया बाड़ा। मणिपुर में चुराचांदपुर के दूरदराज के इलाके में स्थित गांव बुकपी पहुंची मेडिकल टीम। हिमाचल में 21 अगस्त तक बारिश का दौर लगातार जारी रहने की संभावना। बिलासपुर, कांगड़ा और मंडी, सिरमौर में बारिश का ऑरेंज अलर्ट। चित्रकूट में लगातार बारिश से उफान पर नदी नाले, जनजीवन अस्त व्यस्त। प्रयागराज में बारिश के पानी में डूबा रेलवे ट्रैक, कई ट्रेन प्रभावित, यात्री हुए परेशान। श्रावस्ती में राप्ती नदी ने दिखाया रौद्र रूप, खतरे के निशान से 30 सेंटीमीटर ऊपर। उत्तराखंड के पौड़ी गढ़वाल में भारी बारिश के बाद भूस्खलन, रेस्क्यू ऑपरेशन तेज। यश की फिल्म टॉक्सिक का काउंटडाउन हो गया शुरू, 21 अगस्त से शुरू होने जा रही एडवांस बुकिंग का। फिल्म की रिलीज से महज 8 दिन बाकी। बॉक्स ऑफिस पर चला वरापन 2 का जादू, लगातार मजबूत पकड़ बनाए हुए, 100 करोड़ का आंकड़ा पार। दर्शकों को इंप्रेस कर नहीं पाई सनी देओल की फिल्म बटवारा 1947। अक्षय उबराव और हैली दारूवाला स्टार लव स्टोरी का हुआ टीजर आउट। मुंबई के गोरेगांव में बने अफगानिस्तान के सेट पर जारी है सलमान खान की अगली फिल्म SBC 63 की शूटिंग। फ्रांस की एस्ट्रोनॉट सोफी ने पहली बार स्पेस वॉकर के रज़ दिया इतिहास। उन्होंने आईएसएस के बाहर नासा के एस्ट्रोनॉट अनिल मेनन के साथ काम किया। सोफी और अनिल को स्पेस स्टेशन का एक जरूरी एंटीना बदलना था। दोनों एस्ट्रोनॉट्स ने मंगलवार सुबह स्पेस वॉक शुरू किया था। मिशन में हुई देरी के कारण पूरा नहीं हो सका काम। कैंटीना स्पेस स्टेशन और नासा की ह्यूस्टन कंट्रोल सेंटर के बीच भेजता है डेटा। बॉलीवुड स्टार मर्लिन मुनरो के 100वें बर्थडे पर खास बारबी डॉल हुई लॉन्च। बारबी ने मर्लिन का आइकॉनिक हॉट पिंक ड्रेस अपनाया। मैटल ने मर्लिन मुनरो को सम्मान देने के लिए अब तक 7 बारबी डॉल्स बनाई हैं। मर्लिन का जन्म 1 जून 1926 को लॉस एंजलिस में हुआ था। $81 में मिलेगी यह खास डॉल। मर्लिन की याद में बनी बाबी डॉल 18 अगस्त से बिक्री शुरू। चीन में आसमान में बना समुद्र, 5,000 ड्रोन से मछलियां और समुद्री जीवों की आकृतियां। हजारों ड्रोन से एक साथ तोड़कर अलग अलग फॉर्मेशन बनाते हुए नजर आए। ड्रोन शो की थीम मशहूर कहानी 20,000 लीक्स अंडर द सी पर रखी गई थी। ड्रोन ने उड़ते हुए समुद्री जीवों की बड़ी बड़ी तस्वीरें बनाई। आसमान में देखी पानी के अंदर की दुनिया। चीन के चोंगचिंग में ऐसा शो ने रात को बहुत खूबसूरत बना दिया। रोशनी और ड्रोन के इस कमाल को देखने के लिए हजारों लोग पहुंचे। चीन के होकाओ झरने के पास 1,000 से ज्यादा पर्यटकों ने मिलकर गाया गीत। गीत सुनकर वहां से गुजर रहे कई पर्यटक भी खुद को रोक नहीं पाए, फिर गीत गाने लगे। 1939 में बना था येलो रिवर रा कैंटाटा गीत। ये गीत चीन के संघर्ष और एकता की मिसाल। होकाओ झरने की विशाल घाटी को एक कार्यक्रम में प्राकृतिक मंच की तरह इस्तेमाल किया गया। इस जगह पर नदी की चौड़ाई करीब 300-400 मीटर से घटकर महज 50 मीटर रह जाती है। चीन के हुबेई प्रांत में इन दिनों राफ्टिंग का रोमांच। गर्मी से राहत पाने के लिए लोग तेज बहती हुई नदी में ले रहे हैं राफ्टिंग का मजा। करीब 6.5 किलोमीटर लंबा है राफ्टिंग ट्रैक। इस दौरान पानी का स्तर कुल 148 मीटर तक नीचे जाता है। ऑफ रोड रेसिंग, जंगल एडवेंचर, घूमने और आउटडोर एक्टिविटीज का भी पर्यटक उठा रहे हैं लुत्फ। साल 2006 में हुई थी यहां राफ्टिंग की शुरुआत। तब से अब तक 80 लाख से ज्यादा पर्यटक उपस्थित रह चुके हैं। यहां रोमांच के साथ साथ जंगल और प्राकृतिक नजारों का मिलता है अद्भुत संगम।
5: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को
0: कभी रफ्तार से दौड़ती हैं तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती हैं तो कुछ दिखाती हैं विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
3: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
2: और दुर्भाग्य कहता है
3: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
0: अविश्वास में विश्वास बसता है,
3: जो हम में अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
4: गुड न्यूज टुडे।
3: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते। खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे। देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे में। मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे, देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे में।
5: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को।
7: बोलिविया के इंडियन हाइलैंड्स में अगस्त की शुरुआत में मौसम ने ऐसा पलटा खाया कि पूरा इलाका बर्फ की चादर में ढक गया। तस्वीरें देखिए, भारी बर्फबारी और माइनस में पहुंचते तापमान ने जनजीवन को पूरी तरीके से प्रभावित कर दिया। कई इलाकों में सड़कें बंद हैं, बस सेवाएं ठप हैं और दर्जनों ट्रक ड्राइवर्स बर्फ के बीच फंस गए हैं। बर्फबारी का सबसे ज्यादा असर पोटोसी में देखने को मिला और जहां पर बर्फ ने चारागाहों को पूरी तरीके से ढक दिया। हालात को देखते हुए प्रशासन ने इमरजेंसी घोषित कर दी है। प्रभावित परिवार राहत उनको लगातार पहुंचाई जा रही है, लेकिन कई इलाकों में सड़कें बंद होने की वजह से राहत पहुंचाना अब चुनौती बन गया। सोशल मीडिया के दौर में कहानियां भी अब छोटी और तेज हो गई हैं। हॉलीवुड में एक नया फॉर्मेट तेजी से लोकप्रिय हो रहा है जिसे माइक्रो ड्रामा कहा जा रहा है। खास बात इसमें यह है देखिए कि इन कहानियों को मोबाइल की वर्टिकल स्क्रीन के हिसाब से बनाया जाता है। रोमांस, ड्रामा और हर कुछ मिनट में नया ट्विस्ट इसकी खासियत होती है। दिलचस्प बात इसमें यह भी है कि इस नए फॉर्मेट ने हॉलीवुड में कलाकारों, लेखकों, डायरेक्टर्स और प्रोडक्शन क्रू के लिए काम के नए अवसर बनाए।
8: सीरियल का नाम लेते ही आपके दिमाग में क्या आता है? लंबे एपिसोड, ढेर सारे किरदार और कहानी का धीरे धीरे आगे बढ़ना। लेकिन अब मनोरंजन की दुनिया में एक ऐसा फॉर्मेट तेजी से जगह बना रहा है जिसमें कहानी छोटी है, एपिसोड्स छोटे हैं, स्क्रीन छोटी है, लेकिन दर्शक को बांधने का तरीका बेहद दमदार है। नाम है माइक्रो ड्रामा। माइक्रो ड्रामा को आप कुछ हद तक टीवी सीरियल और सोशल मीडिया रील के बीच की कहानी समझ सकते हैं। रील की तरह मोबाइल पर वर्टिकल वीडियो, लेकिन रील से लंबी और ज्यादा जुड़ी हुई कहानी और टीवी सीरियल की तरह किरदार, रिश्ते, प्यार, दुश्मनी और सस्पेंस। फर्क सिर्फ इतना है कि यहाँ कहानी को घंटों नहीं मिनटों में आगे बढ़ाया जाता है। अमेरिका में माइक्रो ड्रामा की लोकप्रियता इतनी तेजी के साथ बढ़ी है कि पिछले साल हर महीने करीब 6,60,00,000 लोग इसे देख रहे थे। 2024 में यही संख्या करीब 2,60,00,000 थी, यानी सिर्फ एक साल के अंदर दर्शकों की संख्या दो गुने से भी ज्यादा हो गई।
9: They're designed for viewers to watch when they may not have access to a TV, maybe when they're on the subway, when they're waiting for a friend to meet them at a restaurant or a bar, or also if they're just sitting at home and their kids are on top of them and they just have access to their phone.
8: अब बात माइक्रो ड्रामा के कारोबार की। रिसर्च फर्म ओमडिया के अनुसार इस साल अमेरिका में माइक्रो ड्रामा का कारोबार करीब $1.5 अरब यानी लगभग 12,000 करोड़ रुपए तक पहुंच सकता है। अगले साल इसके करीब $2 अरब यानी लगभग 16,000 करोड़ रुपए तक पहुंचने का अनुमान है। यानी मोबाइल की छोटी सी स्क्रीन पर चलने वाली छोटी कहानियां अब बड़ा कारोबार बनती जा रही है। माइक्रो ड्रामा की सबसे बड़ी ताकत है कम खर्च में ज्यादा कहानी। एक माइक्रो ड्रामा सीरीज में आमतौर पर 50 से 75 एपिसोड्स तक होते हैं। पूरी सीरीज को बनाने में करीब $1-3 लाख खर्च हो सकते हैं। यानी माइक्रो ड्रामा का फॉर्मूला बिल्कुल सीधा है, कम खर्च, ज्यादा एपिसोड और दर्शक की लगातार दिलचस्पी।
9: Micro dramas actually started coming up during the strikes in LA. The first micro dramas I worked on with Candy Jar were during the strikes, and they were providing jobs at a time when jobs for production crews in LA were almost non-existent. And as production has moved out of LA, it continues to provide jobs in an industry where it's become increasingly hard for members of the entertainment world to find work, whether that's crew members, whether that's cast members, whether that's creatives and above the line people. So it's really actually created a thriving and booming economy in LA.
8: Micro drama sirf America ki kahani nahi hai. Is format ki shuruaat Chin mein hui. Wahan iski lokapriyata badhi, phir Chin se nikalkar ye format America pahuncha. अब रील शॉट और गुड शॉट जैसे चीनी निवेश वाले ऐप भी अमेरिकी बाजार में तेजी से अपनी जगह बना रहे हैं, इसलिए माइक्रो ड्रामा को चीन के बढ़ते सॉफ्ट पावर से भी जोड़कर देखा जा रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
5: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों।
10: क्या आप सोते समय परेशान रहते हैं? क्या आप पलंग पर फैल कर सोते हैं? क्या आपको सोने के लिए सहारे की जरूरत पड़ती है? आपके सोने का तरीका आपके मन के बारे में क्या बताता है? जानिए मेरे साथ सिर्फ गुड लक टुडे में।
1: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर। असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
2: और दुर्भाग्य कहता है
8: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
0: अविश्वास में विश्वास बसता है,
1: जो हमें अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
4: गुड न्यूज टुडे।
5: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
4: देश देख रहा है।
6: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट, कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच। HRIT University गाजियाबाद, शेपिंग फ्यूचर, क्रिएटिंग लीडर्स।
7: हॉकी वर्ल्ड कप में भारत ने पाकिस्तान को 5-3 से हराया, टॉप 8 में पहुंची टीम इंडिया, कप्तान हरमनप्रीत और अभिषेक ने दागे 2-2 गोल। जम्मू कश्मीर दौरे पर अमेरिकी राजदूत सर्जियो गोर, श्रीनगर की डल लेक में की शिकारा की सवारी, घाटी के मेहमान नवाजी के मुरीद।

0: तो चलिए आपको विस्तार से जानकारी देते हैं आज के इस शो में पंडित जी के साथ क्या चर्चा होने वाली है। देखिए चर्चा थोड़ी सी इंटरेस्टिंग है और चर्चा का विषय है सोने का तरीका, मतलब स्लीप का साइकिल और स्लीप का तरीका। आप किस तरह से सोते हैं वो तरीका सही है या फिर गलत है, ये तरीका सोने का क्या दर्शाता है, इसके क्या मायने होते हैं, इसका आपके जीवन पर किस तरह का प्रभाव पड़ता है, किस तरह से सही तरीके से सोना चाहिए, और पंडित जी इसके बारे में विस्तार से आपको जानकारी देने वाले हैं। बहुत सारे सवाल इसी मुद्दे के साथ जुड़े हुए पंडित जी से हम पूछने वाले हैं। आगे बढ़ेंगे, महा उपाय अंत में जाके आपको बताएंगे, राशियों का हाल भी आपको बताएंगे। सबसे पहले देखते हैं आज का गुड लक मंत्र।
1: देखिए अगर आप नए कपड़े पहली बार पहनने जा रहे हैं तो मैं आपको बता दूं कि बुधवार को नए वस्त्र प्रयोग करना विशेष शुभ होता है। अगर आप नए कपड़ों की पहनने की शुरुआत बुधवार को करें तो इससे आपको नए वस्त्रों का लाभ निरंतर होता रहेगा।
0: और चलिए इसी के साथ आगे बढ़ते हैं और पंडित जी से जान लेते हैं 20 अगस्त 2026 बृहस्पतिवार के पंचांग के बारे में।
1: दिनांक 20 अगस्त 2026 दिन बृहस्पतिवार, तिथि है श्रावण शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि, रात के 9:18 तक, नक्षत्र है विशाखा नक्षत्र प्रातः 9:08 तक, चंद्रमा वृश्चिक राशि में संचरण कर रहे हैं, राहु काल का समय दोपहर 1:30 से लगभग 3 तक, दक्षिण दिशा की तरफ यात्रा करने की मनाही है, लेकिन अगर यात्रा करना जरूरी है तो जरा सी पीली सरसों खाकर और भगवान का स्मरण करके यात्रा करेंगे तो मुश्किल से बचे रहेंगे।
0: और चलिए आज के विषय की शुरुआत करते हैं। शुरुआत में हमने आपको बताया कि हम बात करेंगे सोने के तरीके के बारे में। सोने का जो आपका तरीका है, जिस तरह से आप रात को सोते हैं, आपका भाग्य का कनेक्शन और ग्रहों का कनेक्शन इसके साथ क्या है और इसका क्या प्रभाव आपके ऊपर पड़ता है, पंडित जी पहले तो यही समझ लेते हैं कि ये साइंस क्या है।
1: जी देखिए आज हम आपको ये बताने की कोशिश करेंगे कि आपके सोने का जो तरीका है वो आपके मन के बारे में, आपके जीवन के बारे में क्या बताता है, क्योंकि आपकी मानसिक स्थिति ये बताती है कि आप किस तरीके से सोएंगे। हम ये नहीं कहते कि आपके सोने का तरीका गलत है या सही है, जैसे भी आपको अच्छा लगे वैसे सोइए, लेकिन आपके सोने का तरीका आपके मन के बारे में बताता है क्या तरीका है, क्या संबंध है। जब व्यक्ति जागता रहता है तो उसका भौतिक शरीर फिजिकल बॉडी काम करती है और जब सोता है तो उसका मन काम करता है। सोते समय व्यक्ति को देखकर आप उसकी आंतरिक स्थिति को, उसकी मानसिक स्थिति को समझ सकते हैं और ये भी जान सकते हैं कि उसका वर्तमान समय कैसा चल रहा है। व्यक्ति की राशि के बारे में भी ठीक ठीक अंदाजा लगा सकते हैं, क्योंकि अलग अलग राशि के लोगों का मन अलग अलग होता है और उसी तरह से उनके सोने का तरीका बदलता रहता है। सोने के तरीके में जब आप बदलाव करते हैं तो आप अपने मन को बहुत हद तक बदल सकते हैं, यानी जैसा आपका मन होगा, जैसी आपकी मानसिक स्थिति होगी उसी तरह से आप सोएंगे। ये

0: बात निश्चित है।
1: चलिए आगे बढ़ते हैं और राशिफल के साथ शुरुआत कर लेते हैं और पहली तीन राशियों का हाल पंडित जी आपको बताएंगे। सबसे पहले बारी है मेष, वृष और मिथुन वालों की।
0: मेष राशि, आपका स्वास्थ्य इस समय बिगड़ सकता है, सतर्क रहें। बेवजह के वाद विवाद हो सकते हैं, महत्वपूर्ण काम अभी एक दो दिन टाल दें। केले का दान कर दें तो दिन की मुश्किलें कम हो जाएंगी। शुभ रंग होगा आपके लिए धानी और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 60%। मेहनत ज्यादा होगी, भाग्य थोड़ा कम रहेगा। वृषभ राशि, स्वास्थ्य में सुधार होगा, धन लाभ के योग बन रहे हैं, यात्रा के योग बन रहे हैं। अनाज का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए गुलाबी और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 75%। उत्तम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। मिथुन राशि, मानसिक चिंताएं समाप्त होंगी, पारिवारिक समस्या हल होगी, धन लाभ के योग बन रहे हैं। खाने पीने की वस्तु का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए लाल और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 75%। उत्तम भाग्य आपके साथ बना हुआ है।
1: चलिए प्रश्न है पंडित जी से। पंडित जी, सोने के बारे में हम चूंकि बात कर रहे हैं, अगर कोई शख्स, वैसे तो इनफैक्ट बहुत सारे लोग करवट लेकर सोते हैं और सिकुड़े रहते हैं, ये क्या दर्शाता है उनकी पर्सनालिटी के बारे में, किस तरह से इस चीज को समझा जाए?
0: अगर आप करवट लेकर सोते हैं, सिकुड़े रहते हैं, तो इसका अर्थ क्या है? ये बताता है कि आप शनि या शुक्र प्रधान व्यक्ति हैं, आपके जीवन में शनि या शुक्र की प्रधानता है। भावनात्मक रूप से ऐसे लोग जो सिकुड़ कर सोते हैं अपने आप को अकेला महसूस करते हैं और ऐसे लोग चीजों को अपने अंदर रखते हैं, लोगों से बांटना नहीं चाहते। हालांकि ऐसे लोग धन के मामले में, नाम यश के मामले में बड़े भाग्यशाली होते हैं। जो लोग सिकुड़ कर सोते हैं ऐसे लोगों को हमेशा प्रेम और दोस्ती के मामले में सावधान रहना चाहिए। जिन लोगों को प्रेम में, संबंधों में, रिलेशन में समस्या हो उन्हें सिकुड़ कर सोने से बचना चाहिए।
1: और चलिए आगे बढ़ते हैं राशिफल के साथ और अगली तीन राशियों का हाल भी पंडित जी से ही जान लेते हैं कि कैसा रहने वाला है। बारी है कर्क, सिंह और कन्या वालों की।
0: कर्क राशि, करियर में सफलता मिलने का समय बना हुआ है, काम का दबाव समाप्त होगा, खान पान में सावधानी बनाए रखें। भगवान को अगर पीले फूल अर्पित कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए सफेद और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 70%। मध्यम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। सिंह राशि, स्वास्थ्य का ध्यान रखें, परिवार में विवादों से बचाव करें, धन खर्च पर नियंत्रण रखें, केले का दान कर दें तो दिन की मुश्किलें कम हो जाएंगी। शुभ रंग होगा आपके लिए नारंगी और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 60%। मेहनत ज्यादा होगी, भाग्य थोड़ा कम रहेगा। कन्या राशि, करियर में सफलता मिलेगी, रुका हुआ धन प्राप्त होगा, कोई शुभ सूचना मिलेगी। अनाज का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए क्रीम और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 75%। उत्तम भाग्य आपके साथ बना हुआ है।
1: चलिए दर्शकों के सवालों को शो में शामिल करते हैं और पहला सवाल पंडित जी तक कौन से दर्शक ने पहुंचाया है वो आपको जानकारी देंगे पंडित जी।
0: जी, आज का पहला प्रश्न मृदुला जी ने हमें लिखा है और मृदुला जी हमें कानपुर से मेल लिखती हैं। 25 अप्रैल 1981 का जन्म है, रात में 9:40, जन्म स्थान है उन्नाव, उत्तर प्रदेश, मेल लिखती हैं कानपुर से। ये कह रही हैं कि शादी के लगभग 5-6 साल के बाद वैवाहिक जीवन में दिक्कतें आ गईं और अब मैं अपने मायके में रह रही हूं, तो क्या मेरा विवाह चल सकेगा और मेरा वैवाहिक जीवन आगे कैसा रहेगा? मृदुला जी, आपको सेपरेशन के लिए विचार नहीं करना चाहिए। आपकी कुंडली के हिसाब से मामला इतना जटिल भी नहीं है। संभावना ज्यादातर ये है कि ये मामला सुलझ जाएगा, इसलिए थोड़ी शांति रखिए। अक्टूबर के बाद से चीजें हल हो जाएंगी और आपका वैवाहिक जीवन बचेगा। क्रोध में, जोश में आकर कोई निर्णय मत लीजिएगा, आगे की जिंदगी ठीक रहेगी। एक ओपल बनवा करके पहन लें, 10-12 रत्ती का ओपल, चांदी में, दाहिने हाथ की तर्जनी उंगली में। शुक्रवार की शाम को ओपल धारण करें। रोज सुबह 1 बार विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करें या सुनें तो आपका मंगल होगा।
1: चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ें, उससे पहले आपको सूचित कर देते हैं कि आप भी पंडित जी से कोई प्रश्न अगर पूछना चाहते हैं, जीवन में कोई परेशानी है उसका निवारण चाहते हैं, तो अपने तमाम सवाल इस शो में भेज सकते हैं ईमेल आईडी के माध्यम से। ईमेल आईडी आपकी टीवी स्क्रीन पर है, आप नोट कर लीजिए। बढ़ते हैं दूसरे प्रश्न की तरफ, पंडित जी से जानते हैं कौन सा है अगला सवाल।
0: जी, अगला प्रश्न बांके बिहारी जी ने हमें लिखा है और बांके बिहारी जी भागलपुर से मेल लिखते हैं, अपनी पुत्री के बारे में जानना चाहते हैं। पुत्री की जन्म तारीख है 8 सितंबर 1993, रात में 8:40, जन्म स्थान है भागलपुर। ये कह रहे हैं कि मेरी पुत्री का करियर बहुत अच्छा है, नौकरी बहुत अच्छी कर रही है, लेकिन उसका विवाह नहीं हो पा रहा है। बात आगे बढ़ती है लेकिन आगे बढ़ने के बाद बात हो नहीं पाती है, तो उसकी शादी नहीं हो पा रही है। विवाह कब तक होगा और वैवाहिक जीवन कैसा रहेगा? बांके बिहारी जी, आपकी पुत्री के विवाह का समय चल रहा है और ज्योतिष के हिसाब से साल 2026 के अंत में या 2027 के आरंभ में स्वयं की इच्छा से ये अपना विवाह करेंगी। आपको बहुत परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। अगर संभव होगा तो विवाह के पहले एक बार बालक की कुंडली दिखवा लीजिएगा और उसमें अगर कोई कमी बेसी है तो उसका उपाय पहले से कर लेना चाहिए। आप ऐसा करिए, अपनी बेटी को एक ओपल बनवा के पहना दीजिए, 10-12 रत्ती का ओपल चांदी में, दाहिने हाथ की तर्जनी उंगली में। शुक्रवार की शाम को एक ओपल अपनी बेटी को पहनाइए और आप अपनी बेटी के लिए रोज सुबह के समय 108 बार ओम नमः शिवाय का जप करें तो मुझे लगता है काफी बेहतर होगा।
1: चलिए अगला प्रश्न पंडित जी से लेते हैं। पंडित जी, अक्सर बहुत लोगों को देखा गया है कि पलंग पर बेड पर पूरी तरह से फैल कर वो सो जाते हैं, हाथ पैर बिखेर कर सोते हैं, उनके लिए तो वो कंफर्ट जोन होता है, लेकिन ये क्या दर्शाता है, इसका मतलब क्या निकाला जाए?
0: बहुत सारे लोग पलंग पर पूरी तरह से फैल कर सोते हैं, हाथ पैर बिखेर करके सोते हैं, पलंग पर पूरा कब्जा करके सोते हैं। ये क्या बताता है? ये बताता है कि डेफिनेटली आपकी कुंडली में, आपके जीवन में मंगल या सूर्य पावरफुल हैं, मंगल या सूर्य से आप प्रभावित हैं और आपका शासन हर जगह चलता है। ऐसे लोग जबरदस्ती चीजों को पाना चाहते हैं, कोई भी चीज मिलनी ही चाहिए चाहे परिणाम कुछ भी हो। ऐसे लोगों का वाणी पर नियंत्रण नहीं होता। हालांकि ऐसे लोग बुरे नहीं होते, ये दिल के बड़े अच्छे होते हैं। ऐसे लोगों को जीवन में छोटी छोटी चीजों को पाने में भी काफी संघर्ष करना पड़ता है। ऐसे लोगों को सच्चे रिश्तों की और लोगों की कदर करनी चाहिए। अगर जीवन में संघर्ष ज्यादा है तो पलंग पर चैन से सोइए, पलंग पर फैल करके अधिकार स्थापित करके मत सोइए।
1: चलिए पंडित जी से अगला सवाल लेते हैं। पंडित जी, सवाल ये है कि अक्सर बहुत सारे लोग ऐसे भी होते हैं जो बिल्कुल सीधा होकर सोते हैं, ज्यादा बदलाव उनके सोने के तरीके में होता नहीं है, इसका क्या मतलब है?
0: अगर आप पलंग पर बिल्कुल सीधा होकर सोते हैं, ज्यादा बदलाव नहीं होता, तो ये बताता है कि आपके ऊपर सूर्य और शनि का मिश्रित प्रभाव है। सूर्य और शनि दोनों का मिक्सचर है आपके ऊपर। ऐसे लोग नियमों और अनुशासन के मामले में बड़े सख्त होते हैं। हालांकि ऐसे लोगों का पारिवारिक जीवन अच्छा नहीं होता, समाज में बहुत सम्मान पाते हैं। ऐसे लोग चीजों को सही समय पर पाते हैं और धीरे धीरे परफेक्ट तरीके से आगे बढ़ते हैं। इनको स्वास्थ्य की सडन समस्याएं, आकस्मिक समस्याएं परेशान करती हैं, उसका ध्यान देना चाहिए। अगर आप बिल्कुल सीधा होकर सोते हैं और स्वास्थ्य में लगातार समस्याएं रहती हैं, तो केवल आप इतना करिए कि एक करवट लेकर आप सोया करिए, उससे आपका स्वास्थ्य सामान्यतः बेहतर बना रहेगा।
1: और चलिए राशिफल के साथ आगे बढ़ते हुए, तुला वृश्चिक
0: में लगातार समस्याएं रहती हैं, तो केवल आप इतना करिए कि एक करवट लेकर आप सोया करिए, उससे आपका स्वास्थ्य सामान्यतः बेहतर बना रहेगा।
1: और चलिए राशिफल के साथ आगे बढ़ते हुए, तुला वृश्चिक और धनु राशि वालों के बारे में भी आपको जानकारी देते हैं कि इनके भाग्य में आज क्या लिखा है।

0: वृश्चिक राशि, रुके हुए काम पूरे होंगे, आर्थिक स्थिति अच्छी रहेगी, संपत्ति का लाभ हो सकता है, अनाज का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए नारंगी और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 90%। सबसे ज्यादा भाग्य आपके साथ बना हुआ है। धनु राशि, व्यर्थ की चिंता हो सकती है, ऑफिस में तनाव हो सकता है, खान पान में सावधानी रखें, केले का दान कर दें तो दिन की मुश्किलें कम हो जाएंगी। शुभ रंग होगा आपके लिए आसमानी और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 60%। मेहनत ज्यादा होगी, भाग्य थोड़ा कम होगा।
1: चलिए अगला प्रश्न पंडित जी से पूछते हैं। पंडित जी, सोने का तरीका किस किस का कैसा होता है, उसके बारे में तो हम जानकारी आपसे ले ही रहे हैं। अब जैसे भी लोग सोते हों, सोने के लिए कई लोगों को ना सहारा चाहिए होता है, तो इसका क्या अर्थ निकाला जाए और इसका क्या प्रभाव होता है?
0: देखिए, बहुत सारे लोग सोते हैं तो उनको तकिया चाहिए, तकिया पकड़ के सोएंगे, या बगल में कोई सोया है तो उसका हाथ पकड़ के सोएंगे। एक सपोर्ट उनको सोते समय भी चाहिए। ये बताता है कि आप बिल्कुल चंद्रमा प्रधान व्यक्ति हैं। आपके जीवन में सबसे महत्वपूर्ण ग्रह है चंद्र। ऐसे लोग मन के बड़े अच्छे और बड़े भोले, बड़े साफ होते हैं। आम तौर पर जीवन में किसी बुरी घटना के घटने के बाद अपने आप को असुरक्षित, इनसिक्योर महसूस करते हैं। इनको हमेशा लगता है कुछ हो न जाए, कुछ बुरा घट न जाए, उसके लिए सपोर्ट खोजते हैं। ऐसे लोग धन के मामले में जबरदस्त भाग्यवान होते हैं। ऐसे लोगों को ईश्वर से हमेशा अपना संबंध बनाए रखना चाहिए। और अगर आप भावनात्मक रूप से कमजोर हैं तो पलंग पर फैल करके सोइए और अपने पलंग पर ढेर सारे तकिए रखिए, तो निश्चित रूप से आप मेंटली धीरे धीरे मजबूत होने शुरू हो जाएंगे।
1: चले एक और प्रश्न इसी से जुड़ा हुआ पंडित जी से लेते हैं। पंडित जी, सवाल यह है कि कई लोगों को, इनफैक्ट मुझे भी, बहुत ज्यादा नींद आती है और कहीं भी मौका मिले सोने के लिए तैयार रहते हैं, तो इसका क्या प्रभाव होता है हमारे जीवन पर, इसका क्या अर्थ निकाला जाए?
0: बहुत सारे लोग होते हैं जिनको बहुत नींद आती है और मौका मिलते ही सो जाते हैं। ऐसे लोग शुद्ध रूप से शुक्र प्रधान व्यक्ति होते हैं। इनके जीवन में शुक्र की भूमिका बहुत होती है और इनको आम तौर पर कोई भी बुरी चीज या कोई भी अच्छी चीज बहुत समय तक प्रभावित नहीं करती। जीवन में कुछ भी अच्छा हो, कुछ भी बुरा हो, ये अपने हिसाब से जीवन जिएंगे। भाग्य और यश इनके साथ जरूर होता है और जीवन में धन भी आराम से मिलता है, लेकिन इनके अंदर वैराग्य भी होता है। कभी कभी अचानक सब कुछ छोड़कर जा भी सकते हैं। इनको हमेशा अपने साथ एक अच्छा दोस्त जरूर रखना चाहिए। जो लोग जा

0: आलसी हैं, ज्यादा लापरवाह हैं, उन्हें हर समय और हर जगह सोने से बचना चाहिए। शुक्र अगर लीड करेगा तो आपको नींद आने में जीवन में ज्यादा दिक्कतें नहीं होंगी, लेकिन शुक्र नींद के अलावा आलस्य भी पैदा करता है, इस बात का थोड़ा ध्यान बनाए रखिएगा।
1: और चलिए राशिफल के अंत की तरफ पहुंच गए हैं और अंतिम तीन राशियों का हाल भी आपको बता देते हैं, कैसा रहने वाला है बारी अब मकर, कुंभ और मीन वालों की।
0: मकर राशि, करियर की समस्याएं आपकी हल होती दिखाई दे रही हैं, दिक्कतें दूर होंगी, स्थान परिवर्तन हो सकता है, धन लाभ के योग बन रहे हैं, अनाज का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए नीला और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 85%। बेहतरीन भाग्य आपके साथ बना हुआ है। कुंभ राशि, रुके हुए काम पूरे होंगे, करियर में सफलता के योग हैं, धन का लाभ होगा। भगवान को अगर पीले फूल अर्पित कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए फिरोजी और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 80%। बहुत अच्छा भाग्य आपके साथ बना हुआ है। मीन राशि, करियर में लाभ होगा, स्थान परिवर्तन के योग बन रहे हैं, खान पान का ध्यान रखें, खाने पीने की वस्तु का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए हरा और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 70%। मध्यम भाग्य आपके साथ बना हुआ है।
1: जानकारी लेते हैं कि अगला सवाल इस शो में कौन से दर्शक ने भेजा है। पंडित जी,
0: जी अगला प्रश्न कुणाल जी ने हमें लिखा है और कुणाल जी हमें छत्तीसगढ़ से मेल लिखते हैं। इनकी जन्म की तारीख है 20 अगस्त 1989, जन्म का समय शाम के 6:05, बिलासपुर छत्तीसगढ़। ये कह रहे हैं कि मेरी एक सरकारी नौकरी को लेकर मेरा एक मुकदमा चल रहा है, क्या उस मुकदमे में मुझे सफलता मिलेगी, क्या मैं दोबारा नौकरी पा सकूंगा। कुणाल जी, आपकी कुंडली के हिसाब से आपको कोर्ट से नौकरी मिलेगी। अगर आप कोर्ट गए हैं, मुकदमा चल रहा है, तो आपके पक्ष में निर्णय आएगा। साल 2027 के अप्रैल के बाद आपको नौकरी मिल जाएगी, आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। एक मूंगा बनवा के पहनिए, 10-12 रत्ती का मूंगा, तांबे या सोने की अंगूठी में, दाहिने हाथ की अनामिका अंगुली में। मंगलवार को प्रातः मूंगा धारण करें, सुबह और शाम दोनों समय एक एक बार संकट मोचन हनुमानाष्टक का पाठ करें, आपको लाभ होगा।
1: और चलिए इसी के साथ आगे बढ़ते हैं और दर्शकों का अंतिम सवाल भी इस शो में शामिल करते हैं और पंडित जी से जानते हैं कौन से दर्शक का है अंतिम सवाल।
0: जी,

0: आज का अंतिम प्रश्न कृति ने हमें लिखा है और कृति हमें मेल लिखती हैं बहराइच उत्तर प्रदेश से। इनकी जन्म की तारीख है 30 नवंबर 1990। जन्म का समय सुबह के 10 बजे। जन्म का स्थान है गोंडा उत्तर प्रदेश। ये कह रही हैं कि मेरे पतिदेव लखनऊ में नौकरी करते हैं और मैं बहराइच में नौकरी कर रही हूँ और हम दोनों साथ में नहीं रह पा रहे हैं। काफ़ी समय से मैं ट्रांसफ़र का प्रयास कर रही हूँ लेकिन मेरा ट्रांसफ़र भी नहीं हो पा रहा है। तो भविष्य में हम दोनों कब तक एक साथ में रह पाएंगे, क्या संभावना है? कृति, आपकी कुंडली के हिसाब से अभी 2 साल का समय लगेगा। 2028 के मार्च के बाद ऐसी स्थिति बन सकती है कि आपका ट्रांसफर हो, स्थान परिवर्तन हो और आप अपने पति के साथ रह सकें, नौकरी भी कर सकें और वैवाहिक जीवन भी ठीक चल सके। अभी तो पति से दूर रहने की संभावना ही आपकी कुंडली में दिखाई दे रही है। अभी आपको ट्रांसफर के लिए ज़्यादा कोशिश नहीं करनी चाहिए। आपकी कुंडली में अगले साल 2027 में संपत्ति का लाभ होने के योग बनते हैं। 2027 में कोई बना बनाया मकान या बना बनाया फ्लैट आप खरीदेंगी, ये संभावना दिख रही है। रोज सुबह शाम 108 बार नमः शिवाय का जप करें और रोज सुबह सूर्य देव को जल अर्पित करें ताकि आपका जीवन बेहतर हो सके।
1: चलिए एक और प्रश्न आज के विषय से जुड़ा हुआ पंडित जी से पूछते हैं। पंडित जी, सवाल यह है कि बहुत सारे लोगों को अक्सर बहुत सारे रीजंस की वजह से नींद नहीं आती, तो ये चीजें क्या इंडिकेट करती हैं, क्या दर्शाती हैं?
0: जी देखिए, वैसे जो नींद का स्वामी है वो शनि है, क्योंकि आपके दिमाग में जो हिप्नोटिक एंजाइम है जो निद्रा की गहराई पैदा करता है वो है शनि। तो जिन लोगों को नींद में डिस्टरबेंस होती है, नींद नहीं आती है, बहुत सारे लोग दवाई खाते हैं फिर भी नींद नहीं आती है, पक्का जानिए कि शनि की प्रधानता में कोई गड़बड़ी होगी। नींद का जो आनंद है कि आप तुरंत सोए और गहरी नींद आ गई, उसमें पहले नंबर पर है शनि। दूसरे नंबर पर भूमिका होती है चंद्रमा और शुक्र की, क्योंकि ये जीवन में आपको सुख देते हैं। अच्छी नींद आना भी सुखी रहने की निशानी है, सुख की निशानी है, इसीलिए चंद्र और शुक्र की भूमिका भी होती है। जिन लोगों को गहरी नींद नहीं आती, ऐसे लोगों को सबसे सरल उपाय यह है कि मेडिटेशन या ध्यान करना चाहिए। जब आप ध्यान करते हैं तो दिमाग के नर्व, दिमाग का केमिकल कंपोजिशन ये बेहतर होता है और कुछ दिनों के बाद लगातार ध्यान करने से नींद आने लगती है। दूसरे नंबर पे एक रत्न है, उसे कहते हैं ओपल, बड़ा अच्छा रत्न है और ओपल पहनने से आपका मन, आपका शरीर बड़ा रिलैक्सिंग मोड में चला जाता है, तनाव को कम करता है, तनाव को घटाता है। तो अगर आपको नींद आने में दिक्कत है, तनाव बहुत है या सोते हैं घंटे में उठ जाते हैं, नींद गहरी नहीं हो पाती है, तो आप सलाह लेकर एक ओपल या एक मोती, इसमें से एक रत्न अगर आप सलाह लेकर धारण करें तो आपको निश्चित रूप से लाभ होगा।
1: चलिए आगे बढ़ते हैं और पंडित जी से अब जान लेते हैं कि जिन तमाम लोगों का जन्मदिन है 20 अगस्त को, उनका हैप्पी बर्थडे, उनके लिए क्या कुछ लेकर आया है।
0: जिन लोगों का जन्मदिन 20 अगस्त को है उन्हें हम सबकी तरफ से जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं। आने वाले वर्ष में आर्थिक स्थिति अच्छी बनी रहेगी, कारोबार और नौकरी में स्थिरता आएगी, अविवाहितों का विवाह इस साल हो सकता है, स्वास्थ्य में थोड़ा उतार चढ़ाव भी आपके रह सकता है। क्या उपाय करेंगे? पूरे साल भर भगवान शिव की अगर उपासना करें तो वर्ष आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा।
1: और चलिए अब पंडित जी से जान लेते हैं आज के शो की जिज्ञासा के बारे में।
0: आज की जिज्ञासा है कि क्या काले रंग के या नीले रंग के गणपति की मूर्ति या चित्र की पूजा की जा सकती है। देखिए, सामान्यतः पीले और लाल रंग के गणपति की पूजा उत्तम होती है। काले या नीले रंग के गणपति की पूजा तंत्र की पूजा है। बिना किसी गुरु के निर्देशन के गणपति की तंत्र पूजा ना करें।
1: और चलिए अब पंडित जी से जान लेते हैं 20 अगस्त 2026 बृहस्पतिवार के शुभ पहर के बारे में।
0: दिनांक 20 अगस्त 2026 दिन बृहस्पतिवार, शुभ पहर का समय है शाम को 7:30 से रात के 9 बजे तक। इस समय में घर के पूजा स्थान पर दीपक जलाएं, वाद विवाद, कर्ज और मुकदमे से आपको छुटकारा मिलेगा, लेकिन करेंगे शुभ पहर में ही। समय फिर से नोट करें, 20 अगस्त बृहस्पतिवार शाम को 7:30 से 9 बजे रात के बीच में।
1: और चलिए शो के अंत की तरफ बढ़ चले हैं और अब आपको बताएंगे आज के शो की गुड लक राशि कौन सी है।
0: हम आपको बता रहे हैं कि अलग अलग राशि के लोग भगवान शिव की पूजा कैसे करेंगे। आज की गुडलक राशि है कुंभ। आपको नियमित रूप से खासतौर से सोमवार के सोमवार शिव मंदिर में दीपक जलाना चाहिए। ऐसा करने से आपके स्वास्थ्य की समस्याएं बेहतर रहेंगी।
1: चलिए, तमाम उपायों के बारे में और तमाम जानकारियां तो आपने प्राप्त कर ली हैं इस शो से जुड़ी हुई। अब बात करते हैं खास उपाय के बारे में, तो पंडित जी आपको जानकारी देंगे कि आज का महा उपाय खास उपाय क्या है। पंडित जी,
0: जी अगर आपका संबंध अपने ससुराल वालों से खराब हो, आप स्त्री हो या पुरुष हो, ससुराल वालों से संबंध गड़बड़ है तो क्या करेंगे? सूर्यास्त के समय एक लोटा जल में 1 चम्मच दूध मिलाएं और फिर इस जल से सूर्य को अर्घ दें। रोज करिए शाम के समय, लेकिन ये प्रयोग रविवार को नहीं करेंगे। लगातार ये प्रयोग 1 महीने तक करिए, आपका संबंध आपके ससुराल वालों से उत्तम हो जाएगा।
1: तो पंडित जी, महा उपाय साझा करने के लिए और ये तमाम जानकारियां दर्शकों तक पहुंचाने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।
0: धन्यवाद।
1: और चलिए आज के इस खास एपिसोड में फिलहाल के लिए इतना ही, लेकिन देश और दुनिया की तमाम अच्छी और पॉजिटिव खबरें जारी हैं। आप देखते रहिए गुड न्यूज़ टुडे। नमस्कार।

0: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
1: और दुर्भाग्य कहता है
2: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
3: अविश्वास में विश्वास बसता है,
0: जो हमें अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
4: गुड न्यूज टुडे।
0: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते। खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे। देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे में।

0: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है कम से।
1: बात करेंगे ऐसे पॉल्यूशन कंट्रोल सिस्टम की जिसको दिल्ली के सरकारी स्कूल के 4 छात्रों ने मिलकर तैयार किया है। फिलहाल प्रोटोटाइप स्टेज में ये उपकरण कूड़े कचरे को जलाकर सोलर पैनल की मदद से बिजली बनाता है। उसके बाद कूड़े को जलाने की वजह से पैदा हुए धुएं और कार्बन से तरह तरह के उत्पाद तैयार किए जा सकते हैं। छात्रों का दावा यह है कि उनके पॉल्यूशन कंट्रोल सिस्टम की वजह से खुले में कूड़े कचरे को जलाने से गंभीर वायु प्रदूषण को टाला जा सकता है, जिससे लोगों की सेहत को भारी नुकसान होने से बच जाता है।
2: हर साल दिवाली के आसपास दिल्ली साफ हवा के लिए जूझती है। सर्दियों के मौसम में दिल्ली में हवा को सांस लायक बनाए रखने में सरकारी एजेंसियों को भी बहुत जद्दोजहद करनी पड़ती है, पर अब इस समस्या का समाधान होने की उम्मीद जगी है। वायु प्रदूषण के समाधान की राह स्कूल प्रोजेक्ट से जुड़े इसी ढांचे से होकर निकल सकती है। जटिल सा दिखने वाला ये डिजाइन भूमि, जल और वायु प्रदूषण के लिए जिम्मेदार कूड़े कचरे को ज्यादा वैज्ञानिक तरीके से निपटाने की ताकत रखता है।
3: सर्दियां आते ही दिल्ली की हवा हर साल प्रदूषित हो जाती है और लोगों के मन में ढेर सारे सवाल आ जाते हैं कि आखिरकार सांस कैसे लें और उससे भी ज्यादा ये प्रदूषण जो है वो कैसे रोका जाए। और इन्हीं सभी सवालों का जवाब ढूंढते हुए दिल्ली के सरकारी स्कूल मंडोली एक्सटेंशन स्थित जो स्कूल है वहाँ के 4 छात्रों ने एक ऐसा मॉडल तैयार किया है जिसमें इन सभी सवालों का जो जवाब है आपको वो मिलने वाला है कि किस तरीके से दिल्ली में जो लगातार प्रदूषण बढ़ता जा रहा है उसका जो समाधान है इन 4 छात्रों ने जो है वो ढूंढ निकाला है। और ये जो मॉडल आप मेरे सामने देख रहे हैं ये वो मॉडल है जिनसे ये प्रदूषण रोकने की ये कोशिश जो है ये बच्चे जो है वो करते हुए आपको नजर आएंगे। तो ये जो आप पूरा सेटअप देख रहे हैं ये पोल्यूशन कंट्रोल सिस्टम है जो इन बच्चों ने जो है बनाया है।
2: पूर्वी दिल्ली के शाहदरा क्षेत्र में मंडोली एक्सटेंशन के सरकारी स्कूल में पढ़ने वाले इन बच्चों ने ऐसा पोल्यूशन कंट्रोल सिस्टम बनाया है जो खुले में कूड़ा कचरा जलाने के अलावा दूसरी वजह से होने वाले वायु प्रदूषण को भी काबू करता है। दरअसल छात्रों का ये मॉडल 4 चरणों में काम करता है। सबसे पहले इसमें लगे कंटेनर में कूड़े कचरे को जलाया जाएगा, उससे पैदा होने वाली गर्मी को सोलर पैनल एनर्जी यानी ऊर्जा में बदलेगा। कूड़े कचरे के जलने से जो धुआं निकलेगा वो गैस चेम्बर के अंदर जाकर फिल्टर होगा, जिसकी वजह से उसके अंदर ही कार्बन जमा हो जाएगा।
3: किस तरीके से इसका जो है पूरा प्रोसीजर है, कैसे काम करेगा अगर इसको बड़े लेवल पे हम लेके जाते हैं?
4: एक्चुअली जब हम इसको बड़े लेवल पे लेके जाएंगे तो हमने जो कंटेनर लगाया है इस कंटेनर के हम अंदर हम बहुत सारा अपना वेस्ट रखेंगे और वेस्ट करने के बाद जो हमारी हीट निकलेगी उसके लिए हमने साइड में सोलर पैनल लगा रखे हैं, जो सोलर पैनल हीट लेंगे और कंज्यूम करके उसे कन्वर्ट कर देंगे इलेक्ट्रिसिटी में, जो कि हमें यहाँ पर इस छोटे से बल्ब के अंदर अभी दिखा देंगे।
3: अभी हम डेमो देख सकते हैं इसका पूरा? तो आप देख सकते हैं ये डेमो, ये जो है ये आपको करके दिखाएंगे कि किस तरीके से जितना भी जो वेस्ट है वो उससे उसकी शुरुआत होगी और एंड में जो है इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती हुई जो है आपको वो नजर आएगी। तो आप देख सकते हैं कि ये पूरा मॉडल मैं आपको दिखा रही हूँ जो दिल्ली के इन सरकारी स्कूलों के बच्चों ने जो बनाया है। ये सोलर पैनल है और यहाँ पर देखिए
4: ये आप देख सकते हैं यहाँ पे हमारी एनर्जी जो है प्रोड्यूस हो चुकी है ऑलरेडी, क्योंकि यहाँ पे सोलर पैनल जो है चार्ज हो गए हैं हीट की मदद से और चार्ज होने के बाद यहाँ पे हमारी एनर्जी आ चुकी है। और उसकी एनर्जी के बाद अब जो हमारा एयर पोल्यूशन होगा उसको कंट्रोल करने के लिए भी हमारे पास चीज़ें होनी चाहिए, क्योंकि हम वेस्ट जलाएंगे तो हमने लैंडफिल वेस्ट तो बचा लिया, लैंड को बचा लिया, लेकिन वहाँ से जब एयर पोल्यूशन होगा तो उसको कैसे कंट्रोल करेंगे। तो एयर पोल्यूशन को कंट्रोल करने के लिए हमने साइड में एक एब्जॉर्वर लगाया है जो इस एब्जॉर्वर जो है वो स्मोक को एब्जॉर्व करेगा, देन एब्जॉर्ब करने के बाद पीछे हमने फिल्टर लगाया है जो फिल्टर कन्वर्ट कर सकता है कार्बन के अंदर।
2: पोल्यूशन कंट्रोल सिस्टम के फिल्टर में जो राख बच जाएगी उसका इस्तेमाल मजबूत और चिकनी ईंटें बनाने के अलावा और कई उत्पादों को बनाने में किया जा सकता है।
4: ये उसको एज हम कंक्रीट बॉक्स बनाने में यूज कर सकते हैं, उनको हम रोड में बनाने में भी यूज कर सकते हैं।
2: कुछ महीने की रिसर्च और मेहनत के बाद तैयार किया गया ये मॉडल फिलहाल एक प्रोटोटाइप की शक्ल में है। समय के साथ इसको और बेहतर बनाने के साथ साथ दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता के सामने पेश करने की भी योजना है, ताकि इंडस्ट्रियल इलाकों में इस तरह की तकनीक को अपनाने की तरफ कदम उठाया जा सके।
5: देखिए ये

0: तीन लेवल क्रॉस कर चुके हैं. सबसे पहले हमारे स्कूल से 8 टीमें सिलेक्ट हुई थी. उन 8 टीमों में से फिर 4 टीमें सिलेक्ट हुई जोनल लेवल पर. और अब जोनल के बाद जब हम डिस्ट्रिक्ट लेवल पर गए तो वहाँ पर भी इसको अप्रिशिएट किया गया है. तो कहीं ना कहीं बच्चों ने जो मेहनत की है वो जरूर रंग लाएगी. ये जो प्रोजेक्ट है यहाँ पर हम देखते हैं कि स्कूलों की भी 2 या 3 दिन की पोल्यूशन को लेकर छुट्टी होती है हर साल. तो बच्चों ने इसी को ध्यान में रखते हुए कि कुछ ऐसा किया जाए कि जो हमारी दिल्ली है वो प्रदूषण से कहीं ना कहीं, जैसे कहते हैं ना, पूरा तो ठीक नहीं कर सकते लेकिन कम से कम कुछ तो ऐसा करें, कुछ तो शुरुआत करें कि कुछ ठीक हो सके. तो इन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए बच्चों ने वेस्ट से लाइट भी जनरेट की है और वायु को भी क्या किया है, शुद्ध किया है.
1: दरअसल कारखानों, फैक्ट्रियों और मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स से निकलने वाले ठोस कचरे और हानिकारक धुएं की वजह से सबसे ज्यादा प्रदूषण फैलता है, जो हमारी हवा, पानी और मिट्टी को बड़े पैमाने पर दूषित करता है. इसके अलावा दिल्ली के ओखला, भलसवा और गाजीपुर में मौजूद लैंडफिल साइट्स यानी कचरे के पहाड़ को खत्म करने की एक बड़ी चुनौती है. वहाँ जमा लाखों टन कचरे का निपटारा आसान काम नहीं है. ऐसी चुनौतियों को देखते हुए ही छात्रों को कचरे से चलने वाले पॉल्यूशन कंट्रोल सिस्टम बनाने का आइडिया आया.
2: गाजीपुर के बारे में स्टडी की, उसमें देखा कुछ कमियां, उस कमियों को हटा के अपने में थोड़ा आइडिया लगा के लगाया था.
1: दरअसल दिल्ली सरकार की तरफ से शिक्षित दिल्ली, विकसित दिल्ली की सोच के तहत नींव यानी न्यू एरा ऑफ एंटरप्रेन्योरियल इकोसिस्टम एंड विजन योजना की शुरुआत की गई है. इसके तहत सरकारी स्कूलों के क्लास 8 से लेकर 12वीं तक के छात्रों में एंटरप्रेन्योरशिप यानी नवाचार को बढ़ावा देने के लिए आर्थिक सहयोग दिया जा रहा है, जिससे वो उज्जवल भविष्य के लिए तैयार हो सके.
3: ये सोच हमारे बच्चों की बड़ी अच्छी है और एक समाज में जो मतलब एक प्रदूषण की बड़ी समस्या है उसको ये बच्चे अगर दूर कर पाते हैं तो मुझे बड़ा गर्व होगा अपने बच्चों पर.
1: बच्चों की वैज्ञानिक समझ और सूझबूझ से तैयार हुआ ये स्कूल प्रोजेक्ट अब 12 महीने दमघोटू आबो हवा से जूझने के लिए मजबूर दिल्ली के लिए बड़ी उम्मीद और राहत साबित हो सकता है. दिल्ली से मनीषा लड्डा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे.
4: श्रीनगर की खूबसूरत वादियों में अमेरिकी राजदूत सर्जियो गोर ने शिकारा राइड का आनंद लिया. डल झील की शांत लहरों के बीच शिकारा पर सवार सर्जियो गोर कश्मीर की प्राकृतिक खूबसूरती का दीदार करते हुए नजर आए. शिकारा राइड के दौरान उन्होंने डल झील की मनमोहक नजारों का लुत्फ उठाया. चारों तरफ पहाड़, झील का शांत पानी और शिकारा की सवारी ने इस पल को और भी ज्यादा खास बना दिया. सर्जियो गोर की ये तस्वीरें कश्मीर की खूबसूरती को और मेहमान नवाजी को बयां करती. कश्मीर आने वाले पर्यटकों के लिए डल झील और शिकारा राइड हमेशा से खास आकर्षण का केंद्र रहे हैं. तमिलनाडु के तिरुचिरापल्ली में गणपति बप्पा के स्वागत की तैयारियां शुरू हो चुकी हैं. गणेशोत्सव के लिए कलाकार दिन रात बप्पा की प्रतिमाओं को आकार देने में जुटे हुए हैं. कहीं मिट्टी को आकार दिया जा रहा है तो कहीं पर इन प्रतिमाओं में रंग भरकर इन्हें अंतिम रूप दिया जा रहा है. कलाकारों के हाथों की मेहनत से गणपति की अलग अलग रूपों वाली प्रतिमाएं तैयार लगातार हो रही हैं. और खास बात इसमें यह है कि तिरुचिरापल्ली में तैयार होने वाली इन प्रतिमाओं की मांग सिर्फ देशी नहीं बल्कि विदेशों में भी है. यानी बप्पा के स्वागत की तैयारियां यहां सिर्फ एक त्यौहार नहीं बल्कि कलाकारों की कला, मेहनत और आस्था का उत्सव है. गुजरात का साबरमती रिवर फ्रंट तो आपने जरूर देखा होगा. अब इसी तर्ज पर यमुना के किनारे भी एक भव्य रिवर फ्रंट बनाने की तैयारी है. यानी यमुना का किनारा सिर्फ नदी और घाट तक सीमित नहीं रहेगा बल्कि यहां पर घूमने फिरने से लेकर मनोरंजन और पर्यटन तक की सुविधाएं विकसित करने का प्लान है. यानी यमुना का किनारा अब एक नए रूप में नजर आ सकता है.
5: राजधानी दिल्ली की जीवनदायिनी कही जाने वाली यमुना किनारे विकास की नई तस्वीर तैयार करने की मुहिम शुरू हो गई है. गुजरात के साबरमती रिवर फ्रंट की तर्ज पर यमुना रिवर फ्रंट विकसित होगा. इस सिलसिले में दिल्ली के जल मंत्री प्रवेश वर्मा ने अधिकारियों के साथ गुजरात का दौरा कर साबरमती मॉडल का बारीकी से अध्ययन किया.
6: सामने दिल्ली में सबसे बड़ा चैलेंज है यमुना रिवर फ्रंट बनाना, यमुना मैया को साफ करना. हमने साबरमती रिवर फ्रंट से बहुत सारी योजनाओं को सीखा है और हमने उनका प्रेजेंटेशन भी लिया है. उनके अधिकारियों को एक बार दिल्ली में भी बुलाकर पूरा समझेंगे.
5: यमुना रिवर फ्रंट को आधुनिक, आकर्षक और पर्यावरण के अनुकूल बनाया जाएगा और साबरमती मॉडल को दिल्ली की जरूरतों के मुताबिक लागू किया जाएगा। योजना के तहत यमुना किनारे खूबसूरत वॉकवे, साइकिल ट्रैक के साथ ही खेल और मनोरंजन से जुड़ी सुविधाएं विकसित की जाएंगी। कालिंदी कुंज के पास करीब 60 करोड़ रुपए की लागत से आधुनिक छठ घाट का निर्माण किया जाएगा। पारंपरिक धोबी घाटों को व्यवस्थित कर वहां आधुनिक मैकेनाइज्ड लॉटरी मशीनें लगाई जा सकती है। इसके साथ ही यमुना किनारे पर्यटन को बढ़ावा देने पर भी जोर रहेगा। हालांकि यमुना रिवर फ्रंट की सबसे बड़ी चुनौती नदी की सफाई और पर्यावरण संरक्षण रहेगा, जिसके लिए लगातार काम किए जा रहे हैं और आगे भी सीवेज प्रबंधन, जल प्रदूषण और नियंत्रण और यमुना के इको सिस्टम को सुरक्षित रखने पर खास ध्यान दिया जाएगा। यमुना रिवर फ्रंट की इस योजना के मुकम्मल होने के बाद दिल्ली की एक अलग तस्वीर नजर आएगी, जो सेहतमंद होने के साथ आकर्षक भी होगी। नर्मदा से नरेंद्र पेपरवाला के साथ ब्यूरो रिपोर्ट प्रोड्यूस टुडे।
4: और एक अच्छी खबर आपको बता दें, दिल्ली के ही एक स्कूल से निकल कर आ रही है खबर। ये है कि दिल्ली के अशोक नगर में मौजूद सर्वोदय कन्या विद्यालय की चार छात्राओं ने एक खास चॉकलेट तैयार की है, जिसमें स्वाद के साथ साथ सेहत का भी ख्याल रखा गया है। क्योंकि देखिए, इसमें चॉकलेट में सीजन फ्रूट्स और ड्राई फ्रूट्स का इस्तेमाल किया गया है। मिष्टी, मुस्कान, काजल और अक्षी इन चार छात्राओं का यही वो इनोवेशन है, जिसके जरिए इनकी कोशिश है कि बच्चों को चॉकलेट के साथ साथ फ्रूट्स और ड्राई फ्रूट्स का जायका मिले।

0: छोटे से बॉक्स में रखी ये चॉकलेट कोई आम चॉकलेट नहीं है, बल्कि ये खास चॉकलेट है, क्योंकि इसमें चॉकलेट के साथ सीजनल फ्रूट्स और ड्राई फ्रूट्स इस्तेमाल हुए हैं, इसलिए इसे फ्रूट चॉकलेट कहा जा रहा है। इस चॉकलेट को बनाया है दिल्ली के सर्वोदय कन्या विद्यालय में पढ़ने वाली चार छात्राएं मिष्टी, मुस्कान, काजल और अक्षी ने।
1: उम्र चाहे कोई भी हो, चॉकलेट्स खाना किसको नहीं पसंद। मुझे तो डेफिनेटली बहुत पसंद है, लेकिन मैं कभी कभी ये नहीं सोच पाती कि कौन सी चॉकलेट मुझे खानी चाहिए और कौन सी नहीं। लेकिन एक ऐसी चॉकलेट मैं आपके सामने लेकर आने वाली हूँ जहाँ पर हर एक माँ बाप को सोचने की या टेंशन लेने की नीड नहीं है। वो अपने बच्चों को ईजिली ये जो चॉकलेट्स मैं आपको अभी दिखा रही हूँ वो खिला सकते हो, क्योंकि ये चॉकलेट्स जो है वो फ्रूट चॉकलेट्स है। पेरेंट्स को किसी तरीके का डर नहीं होना चाहिए जब उनके छोटे बच्चे जो है वो चॉकलेट्स उनसे मांगे और वो देने से डरे। लेकिन ये चॉकलेट एक ऐसी है जो आप इनको इजीली जो है वो दे सकते हैं, खिला सकते हैं, इवन पेरेंट्स भी जो है एंजॉय कर सकते हैं। और ये जो चॉकलेट्स है बनाया है अगेन सर्वोदय कन्या विद्यालय जो कि ईस्ट ऑफ लोनी में है, इन्हीं की छात्राओं ने और ये चार छात्राओं ने मिलकर ऐसी एक चॉकलेट्स बनाई।
0: इस फ्रूट चॉकलेट में कोटिंग के लिए बाहर नेचुरल डार्क चॉकलेट इस्तेमाल की गई है और अंदर सीजनल फ्रूट्स और ड्राई फ्रूट्स मौजूद हैं, ताकि खाने वाले को स्वाद के साथ सेहत की चिंता न करनी पड़े, खासकर बच्चों को लेकर।
2: जनरली चॉकलेट बच्चे जब ज़्यादा खाते हैं तो उनको टीथ की प्रॉब्लम हो जाती है, ये और भी हेल्थ के लिए ज़्यादा खाना नुकसानदायक है। लेकिन इसके खाने के माध्यम से बच्चों को फ्रूट्स का जो वो पसंद कम करते हैं, कुछ फ्रूट्स इसके माध्यम से उनके अंदर जाएंगे और उनको हेल्थ का जो फ़ायदा है वो तो मिलेगा ही, और साथ में ये टेस्ट भी है। और पहले जब से सबसे पहले इन्होंने चॉकलेट बनाई थी तो इन्होंने फ्रूट्स को कोट कर दिया था, तो वो जैसे एक दो दिन में वो फ्रूट्स ख़राब होने लगा तो चॉकलेट भी ख़राब हो गई। अब इन्होंने जो नया आइडिया निकाला ये अपने आप में वाकई में बहुत कामयाब है कि इसमें इन्होंने पल्प को उसमें डाला है तो वो ज्यादा समय तक थोड़ा सा प्रिजर्व हो सकती है, तो ये मुझे बहुत अच्छा लगा।
0: गुड न्यूज टुडे से बातचीत में इन छात्राओं ने बताया कि उन्हें इस फ्रूट चॉकलेट को बनाने का आइडिया कहाँ से आया और कैसे इसकी शुरुआत हुई।
1: अच्छा, ये आइडिया कहाँ से आया? सभी चॉकलेट्स के दीवाने, तो आपके पेरेंट्स मना करते चॉकलेट नहीं खाना?
3: थोड़ा बहुत सबके पेरेंट्स मतलब अनहेल्दी है तो नहीं खानी चाहिए इतनी, तो लिमिट में खानी चाहिए। तो नॉर्मली हमने एक सोचा कि इतनी चॉकलेट्स नहीं खानी चाहिए, कुछ ऐसा हो कि हमें खाने में भी टेस्टी हो और हेल्दी भी हो, ताकि हमारी हेल्थ भी अच्छी रहे। तो हमने पहले हमारा मेन प्रोडक्ट जो था वो था फ्रूट स्क्यूअर्स, उसमें हमने फ्रूट्स को चॉकलेट के साथ कोट करा और वो थी डार्क चॉकलेट, तो वो हमें हेल्दी है वो और टेस्ट भी अच्छा। उसमें हमने ड्राई फ्रूट्स नट्स ऐड करे और अब जो हमने थोड़ा उसको इनोवेटिव किया है।
4: मैम, जैसे मेरा छोटा भाई है वो फ्रूट्स बिल्कुल भी नहीं खाता था और चॉकलेट्स बहुत ज्यादा खाता था, जिससे मेरी मम्मी

0: ज़्यादा परेशान थी. एंड फाइनली जब हम इस पर रिसर्च कर रहे थे तो हमने ये चीज़ देखी, और मैंने जब अपने भाई को टेस्ट भी कराया, ही वॉज लविंग इट, वो इसको खा रहा था. और मम्मी भी खुश थी क्योंकि इसमें ज़्यादा स्वीटनेस नहीं, और वो फ्रूट्स खाने लग गया था. तो मैम यही एक वो है कि यही एक सर्वे है, मतलब जिसको हम पेरेंट्स को दिखाएंगे, हम उन्हें पहले फ्री सैंपल्स भी बांटेंगे जिससे हम उनको शो कर सके कि कैसे बच्चे इसको पसंद कर रहे हैं और कैसे एक हेल्दी स्नैक है.
1: इन छात्राओं ने इस प्रोडक्ट को सिर्फ एक स्कूल प्रोजेक्ट तक सीमित नहीं रखा, बल्कि इसे अपने स्टार्टअप बिजनेस आइडिया के तौर पर भी विकसित करने की दिशा में काम किया है. मिष्टी, मुस्कान, काजल और अक्षी की कोशिश है कि ऐसी चॉकलेट तैयार की जाए जिसे बच्चे खुशी खुशी खाएं और माता पिता को भी अपने बच्चों की सेहत को लेकर ज्यादा फिक्रमंद ना होना पड़े.
0: जैसे हमें स्मॉल वाला बॉक्स अभी हम दे रहे हैं तो मैम इसका कॉस्ट 20 रुपीज हम रख रहे हैं, जिसके अंदर हमें प्रॉफिट 10 रुपीज का और है, ऑलमोस्ट 50% हम कह सकते हैं. मैम इसमें हम आगे और इनोवेशंस करने वाले हैं, हम आगे रॉ मटेरियल जो है स्टॉक में खरीदा करेंगे, हम जो सामान है उसको देखेंगे कि हम पहले से प्रिपेयर करके रख पाएं बॉक्सेस वगैरह, जिससे मैम जो हमारा कॉस्ट है वो और कम आएगा और प्रॉफिट ज्यादा हो जाएगा हमारा.
2: आप देख सकते हैं कि बच्चों ने किस तरीके से जो है पूरी रिसर्च करी, और वो रिसर्च जो है मैं आपको दिखा रही हूँ कि कहते हैं ना स्कूल के बच्चों ने करा है, तो उसी स्टाइल में आपको चीजें दिखेगा कि कवर भी बच्चों ने खुद हैंडमेड है, सारी चीजें जो है वो खुद बनाई है, और उसके बाद इनका रिसर्च वर्क जो है वो शुरू होता है कि किस तरीके से इनका फाइनल प्रोडक्ट है वो इन्होंने पैकेजिंग के साथ जो है वो यहाँ दिखाने की कोशिश करी है. इसके अंदर क्या क्या इंग्रेडिएंट्स आए हैं वो बच्चों ने लिखा है कि कौन सा सीजनल फ्रूट है वो इस्तेमाल किया जाना चाहिए, किस तरीके की चॉकलेट्स का जो है वो यूज करना चाहिए. हालांकि फलों को खराब होता देखते हुए इन बच्चों ने जो है चंक्स का इस्तेमाल, प्योरी का इस्तेमाल करना जो है वो शुरू किया.
1: आज बाजार में कई फ्लेवर और कई ब्रांड की चॉकलेट मौजूद हैं जिन्हें बच्चे ही नहीं बड़े भी बड़े चाव से खाते हैं, लेकिन हर किसी को अपनी सेहत की चिंता जरूर रहती है. ऐसे में मिष्टी, मुस्कान, काजल और अक्षी की बनाई ये चॉकलेट एक बेहतर विकल्प हो सकती है, बशर्ते ये देश में खाने पीने की चीजों की गुणवत्ता और सुरक्षा तय करने वाली संस्था फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया यानी फसाई के मानकों के मुताबिक हो.
2: भविष्य में खुद को कैसे देखना है, कहाँ लेके जाना है, उसकी शुरुआत कर दी है, और वो शुरुआत कुछ इस छोटी चॉकलेट्स के रूप में इन्होंने करी है कि ये कुछ इस तरीके का प्रोडक्ट्स बना रहे हैं जो ये मार्केट में देना चाहते हैं, जो हर किसी के लिए हेल्दी हो, अनहेल्दी बिल्कुल भी नहीं. कैमरा पर्सन लोकेंद्र के साथ मनीषा लड्डा, दिल्ली, गुड न्यूज टुडे.
3: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को. गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए. वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
4: देश देख रहा है अच्छी खबरें. गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर, सच्ची खबर.
5: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे. तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर.
3: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए. वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
4: देश देख रहा है अच्छी खबरें. गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर, सच्ची खबर.
3: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए. वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
4: देश देख रहा है अच्छी खबरें. गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर, सच्ची खबर.
3: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए. वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
4: देश देख रहा है अच्छी खबरें. गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर, सच्ची खबर.
3: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना

0: उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, मोर इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
1: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
0: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की

0: हेमकुंड साहिब यात्रा में रौनक, अब तक 2.5 लाख से ज्यादा श्रद्धालुओं ने टेका मत्था। 10 अक्टूबर तक जारी रहेगी पवित्र यात्रा। सावन के पवित्र महीने में दिख रहे हैं शिव भक्ति के अनोखे रंग। मुंगेर में भव्य कांवड़ यात्रा बनी आकर्षण का मुख्य केंद्र। श्रद्धालु बैद्यनाथ धाम में करेंगे जलाभिषेक। महाराष्ट्र में गणेश उत्सव की तैयारियां तेज। अकोला में बप्पा की प्रतिमाओं को अंतिम रूप दे रहे हैं कारीगर। 14 सितंबर से शुरू होगा उत्सव।
1: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी।
2: शुरू करते हैं न्यूज पथ पर सफर और सबसे पहले आपको दिखाते हैं ऐसी तस्वीरें जिनका जिक्र सरेरा है। ये तस्वीरें सुर्खियों में भी है और सोशल मीडिया पर भी है। इनसे आपका बाखबर होना बेहद जरूरी है क्योंकि चौराहे पर इन्हीं की चर्चा है और चर्चा वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाने वाली मिथिला पेंटिंग की भी। देखिए
3: रामायण का हर प्रसंग अपने आप में पूरी किताब है और उसके 50 से ज्यादा प्रसंगों को एक कैनवास पर समेटना आसान नहीं है, लेकिन बिहार की मिथिला पेंटिंग के जरिए ये साकार हो गया है। मधुबनी के सौराठ स्थित मिथिला चित्रकला संस्थान के 160 से ज्यादा कलाकारों ने मिलकर 108 मीटर लंबे कैनवास पर रामचरितमानस की गाथा को मिथिला पेंटिंग के जरिए उकेरा है। 48 घंटे की लगातार मेहनत से तैयार इस कलाकृति में रामचरितमानस के 51 प्रमुख प्रसंगों को दर्शाया गया है। पद्मश्री और राष्ट्रीय पुरस्कार प्राप्त कलाकारों की देखरेख में बनी इस पेंटिंग ने विश्व रिकॉर्ड बनाया है और अब इसे म्यूजियम में सुरक्षित रखने की तैयारी है।

0: कहते हैं गीता के श्लोकों में जीवन का सार छुपा है, इसलिए झारखंड के धनबाद की ये दोनों बहनें हर रोज गीता का पाठ करती हैं, ताकि जीवन के उतार चढ़ाव को समझ सकें। और अब उनकी यही आदत उनकी वैश्विक पहचान भी बन गई है। धनबाद के आन्या और प्रांजल मित्तल ने कम समय में श्रीमद् भागवत गीता के श्लोकों का पाठ करके गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में अपना नाम दर्ज कराया है। प्रांजल के मुताबिक उन्होंने श्रीमद् भागवत गीता के 15वें अध्याय का पाठ करीब 5 मिनट में पूरा करके ये रिकॉर्ड बनाया है। धनबाद के धैया की रहने वाली आन्या और प्रांजल इसका श्रेय अपनी माँ को देती हैं, जिन्होंने बचपन से ही इन्हें गीता के श्लोकों के नियमित पाठ का अभ्यास कराया और इसे इनकी दिनचर्या में शामिल कर दिया। बाढ़ और बारिश से देश के कई हिस्से प्रभावित हैं। इस बीच यूपी के मुजफ्फरनगर से एक ऐसी तस्वीर सामने आई जो लोगों की खूब सहानुभूति बटोर रहा है। असल में लगातार बारिश की वजह से यहां के शिव चौक पर पानी भर गया। ऐसे में बारिश के बीच वहां से गुजर रहे एक डिलीवरी बॉय का मोबाइल पानी में गिर गया। वो देर तक उसे पानी में ढूंढता रहा। राहगीरों के बीच वो कभी पानी में हाथ डालकर फोन तलाशता तो कभी बेबसी में पानी को देखता, लेकिन जब काफी ढूंढने के बाद भी मोबाइल नहीं मिला तो बेबसी में उसकी आंखें छलक पड़ी। युवक का नाम विशाल है। उसके मुताबिक उसका फोन 45,000 रुपए का था, जिसे उसने किस्तों पर खरीदा था। उसके लिए मोबाइल महज एक महंगा फोन नहीं बल्कि उसकी रोजी रोटी का जरिया भी था। ऐसे में अब उसने नगर पालिका से आर्थिक मदद की गुहार लगाई है। सावन का महीना है, ऐसे में बाबा बैद्यनाथ धाम जाने वाले कांवरिया पथ भगवा रंगों से गुलजार है। ये तस्वीरें असरगंज के कच्ची कांवरिया पथ की है, जहां शिव भक्तों कांवड़ियों का कारवां पैदल बाबा बैद्यनाथ धाम की ओर बढ़ रहा है। इस यात्रा में श्रद्धा के साथ साथ कांवड़ों की कलात्मकता भी लोगों का ध्यान खींच रही है। किसी कांवड़ में भगवान विष्णु की विशाल प्रतिमा योग निद्रा की मुद्रा में नजर आ रही है, तो किसी में भगवान श्री राम को भगवान शिव की पूजा करते हुए दिखाया गया है। वहीं कुछ कांवड़ भगवान महाकाल की भव्य प्रतिमा और कछुए की आकृति से यहां बसेड़ी कस्बे में भव्य शिव यात्रा निकाली गई, जिसमें लोगों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। इस यात्रा में सबसे खास रहा भगवान भोलेनाथ के रूप में कलाकारों की प्रस्तुति, जिसे देखकर लोग भक्ति में भाव विभोर नजर आए। यात्रा के दौरान जगह जगह लोगों ने फूल बरसाए। भोलेनाथ के जयकारों और भजनों की धुन पर लोग झूमते गाते नजर आए।
1: हेमकुंड साहिब में ढाई कुछ और जरूरी खबरें कर रही हैं आपका इंतजार।
0: पीएम मोदी की अध्यक्षता में हुई केंद्रीय कैबिनेट

0: की बैठक में आज बुनियादी ढांचे से जुड़ी 5 बड़ी परियोजनाओं को मंजूरी दी गई। इनमें रेलवे की 4 परियोजनाएं शामिल हैं, जबकि बिहार में एक 4-लेन हाईवे परियोजना को भी हरी झंडी दी गई है। रेल परियोजनाओं में पश्चिम बंगाल और ओडिशा के महत्वपूर्ण रेल मार्गों को शामिल किया गया है। वहीं बिहार में सड़क संपर्क को बेहतर बनाने के लिए मुजफ्फरपुर सीतामढ़ी सोनबरसा 4-लेन हाईवे प्रोजेक्ट को मंजूरी दी गई है। भारत रत्न जननायक कर्पूरी ठाकुर के गांव और उसके आसपास रहने वाले लोगों को रेलवे की ओर से बड़ी सौगात मिली है। दरभंगा से नई दिल्ली जाने वाली बिहार संपर्क क्रांति एक्सप्रेस ट्रेन का ठहराव आज से कर्पूरी ग्राम स्टेशन पर शुरू हो गया है। इस मौके पर केंद्रीय मंत्री रामनाथ ठाकुर ने कर्पूरी ग्राम स्टेशन पर रुकी इस ट्रेन को हरी झंडी दिखाकर दिल्ली रवाना किया। बता दें कि भारत रत्न मिलने के बाद जननायक कर्पूरी ग्राम स्टेशन का रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने जायजा लिया था। ट्रेन यहां 2 मिनट के लिए रुकेगी। राजस्थान के पाली से एक दिल छू लेने वाली तस्वीर सामने आई है, जिसमें करीब 200 फीट ऊपर हाई वोल्टेज तारों में फंसे एक विदेशी पक्षी ग्रेटर फ्लेमिंगो को सफलतापूर्वक बचाया गया। इस रेस्क्यू के लिए वन विभाग के साथ साथ बिजली विभाग ने भी संवेदनशीलता और तत्परता दिखाई और 200 फीट से भी ज्यादा ऊंचाई पर पहुंचकर फ्लेमिंगो को सुरक्षित नीचे उतारा गया। इसके लिए बिजली विभाग को इमरजेंसी शटडाउन भी करना पड़ा। इस नेक काम में ग्रामीणों ने भी सहयोग किया। बाबा बूढ़ा अमरनाथ के लिए श्रद्धालुओं का दूसरा जत्था पुंज पहुंच गया है। यहां मंडी बेस कैंप में श्रद्धालुओं का फूलमालाओं से स्वागत किया गया। बूढ़ा अमरनाथ यात्रा के लिए पहुंचे इस दूसरे जत्थे में देश भर से 1938 श्रद्धालु शामिल हैं। बाबा बूढ़ा अमरनाथ जम्मू कश्मीर के पुंछ जिले की मंडी तहसील के राजपुरा गाँव में स्थित भगवान शिव का एक अत्यंत प्राचीन मंदिर है। सिखों के पवित्र तीर्थ गुरुद्वारा श्री हेमकुंड साहिब में तीर्थयात्रियों की संख्या ने पिछले कई सालों का रिकॉर्ड तोड़ दिया है। आंकड़ों के मुताबिक अब तक 2,62,000 श्रद्धालु हेमकुंड साहिब पहुंचकर गुरुद्वारे में मत्था टेक चुके हैं। बड़ी बात यह है कि बारिश, ठंड और पल पल बदलते मौसम के बावजूद श्रद्धालुओं के उत्साह में कोई कमी नहीं है। यात्रा 10 अक्टूबर तक जारी रहेगी। ऐसे में आने वाले दिनों में श्रद्धालुओं की संख्या और बढ़ने की उम्मीद है।
1: और अब बात ऑटो टैक्सी ड्राइवर्स के मराठी टेस्ट की। महाराष्ट्र में टैक्सी और ऑटो रिक्शा चालकों के लिए मराठी भाषा का मुद्दा एक बार फिर गर्मा सकता है। सरकार की ओर से मराठी सीखने के लिए दी गई 100 दिन की मोहलत खत्म हो चुकी है। अब ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट की बैठक में तय होगा कि भाषा की शर्त पूरी नहीं करने वाले ड्राइवर्स पर लाइसेंस या फिर परमिट सस्पेंड करने जैसी कार्रवाई होगी या उन्हें एक और मौका दिया जाएगा।
0: महाराष्ट्र सरकार ने मुंबई समेत पूरे महाराष्ट्र में करीब 2,00,000 गैर मराठी रिक्शा और टैक्सी चालकों के लिए बोलचाल की मराठी सीखना जरूरी किया था। इसके लिए उन्हें 100 दिन की मोहलत दी गई थी, जो मंगलवार को खत्म हो गई।
2: महाराष्ट्र सरकार ने आदेश निकाला था कि जिन टैक्सी और ऑटो रिक्शा चालकों को मराठी नहीं आती, उनके लाइसेंस या परमिट जो है वो कैंसिल किए जाएंगे। मराठी सीखने के लिए 100 दिन का समय दिया गया था, जो अब पूरा हो चुका है और आज से कार्रवाई शुरू होनी थी। लेकिन कुछ संस्थाओं ने मांग की थी कि और समय दिया जाए मराठी सीखने के लिए। हमारे साथ यहाँ टैक्सी चलाते हैं। भाई पहले तो आपका नाम बताइए और इस फैसले को आप कैसे देखते हैं?
3: सर आपका नाम? फैसला सुनील कुमार तिवारी जी। सर जी, जो फैसला है वो फैसला तो अच्छा है। मराठी समय जितने भी यहाँ हैं उनको सीखना तो चाहिए, लेकिन जो समय है समय बढ़ाना चाहिए। सरकार को भी हमारे बारे में सोचना चाहिए। हम भी गरीब हैं, रोज का 500-600 रुपया कमाते हैं, उसमें परिवार का पालन पोषण करते हैं। लेकिन जो हमारे ऊपर सरकार है, दया दृष्टि दिखाना बहुत जरूरी है। और सरकार जी से हम प्रताप सर नाई सर जी से बोलना चाहते हैं कि हमारे लिए थोड़ा तकलीफ, हमें आप समझिए हमारे बारे में।
2: आपने मराठी सीखी और या आपको कब से आती थी मराठी?
3: मराठी से मला मुंबई मध्ये 20 वर्ष झाली। महाराष्ट्र मध्ये मी सर्वे मराठी बोलतो साहेब। हाँ, आपल्या काय चुकी झाली हो त्याच्यात साहेबला माफी मांगतो मी। पकडे सर्वे टॅक्सीला उभी करा, इथे थांबा, पुढे जावा, सर्वे येतो मराठी मध्ये।
2: आपको लगता है ये फैसले की जरूरत थी, क्योंकि मतलब इतने सालों से चल रहा था, तो आपको लगता है ये फैसला सही है या इसकी जरूरत थी इस फैसले की?
3: जरूरत तो सरकार ने लाई है। हम लोगों तो हमारे लोग मराठी लोग इतने अच्छे हैं बेचारे की बोलने के लिए कोई बोलता ही नहीं है, लेकिन सरकार एक कानून ला रही है तो उसका पालन करना हमारा कर्तव्य तो है, तो उसका कर्तव्य हम करेंगे। लेकिन इतना लाइसेंस रद्द कर दोगे, परमिट रद्द कर दोगे, गाड़ी में कोई प्रॉब्लम हो जाएगा, ऐसा कुछ करोगे तो फिर तो दिक्कत है सर हमारे लिए भी, हमें भी परेशानी है, उसका हमें को झेलना पड़ेगा।
0: ऑटो और टैक्सी चालकों का कहना है कि 100 दिनों में उन्हें पर्याप्त प्रशिक्षण नहीं मिल पाया। उनका कहना है कि वे थोड़ी बहुत मराठी बोल लेते हैं, लेकिन जिन लोगों ने अभी तक मराठी नहीं सीखी है उनके लाइसेंस या बैज रद्द करना उचित नहीं है, क्योंकि इसी काम से उनके परिवार का घर चलता है।
2: शंभू जी, 100 दिन पूरे हो चुके हैं, महाराष्ट्र सरकार ने कहा था कि अगर मराठी नहीं बोलेंगे तो कार्रवाई होगी, लाइसेंस सस्पेंड होगा, कैसे देखते हैं डिसीजन को, क्या कहेंगे? 100 दिन पूरे हो चुके हैं,
4: अभी तो कुछ पता नहीं चल रहा है
2: जी,
4: अभी तो कुछ पता नहीं चल रहा है
2: आपने सीखी मराठी, आपको आती है?
4: हाँ, मराठी थोड़ा बहुत बोलने तो आता है
2: जी, काम चल जाएगा मराठी?
4: हाँ, काम चल जाएगा।
2: पर क्या आपको लगता है और समय देना चाहिए सीखने के लिए?
4: और समय तो देना चाहिए था।
2: आपका नाम बताइए, और सरकार ने जो फैसला लिया है 100 दिन पूरे, 100 दिन मराठी सीखने का, नहीं तो कार्रवाई होगी, उसके 100 दिन पूरे हो चुके हैं, इस फैसले को कैसे देखते हैं?
5: अब हम लोग तो पढ़ लिए हैं मराठी, अब सर्टिफिकेट मिलेगा
2: जी।
5: मराठी भी समझता हूँ, बोलता भी हूँ।
2: कुछ लोग मांग कर रहे हैं कि और थोड़ा समय देना चाहिए,
5: कुछ लोग नहीं आ पाए हैं ना, इतना एक साथ सबको नहीं हो पाया, उसका टाइम देना चाहिए सबको भाई, अभी सब नहीं पढ़ पाए हैं, सर्टिफिकेट कुछ को मिल रहा अभी दिए नहीं, मिलेगा हम लोगों को, बोले आरटीओ में।
2: पर आप इस फैसले को सही मानते हैं, आपको लगता है सही फैसला है?
5: सही फैसला क्या बोले हम लोग, जो बोलेंगे हम लोगों के विरुद्ध में होता है काम,
2: इसकी जरूरत है आपको लगता है?
5: जरूरत है, हम लोग तो सब भाषा समझता हूँ, इंग्लिश, हिंदी, मराठी, मारवाड़ी, गुजराती, सब भाषा समझता बोलता हूँ, एक ही भाषा का हमें 5-6 भाषा ज्ञान है, मराठी भी बोलता हूँ, मराठी भी आता, हम लोग यहाँ 32 साल से चला रहे हैं।
0: मराठी सीखने के 100 दिन पूरे होने पर तकरीबन सभी ऑटो और टैक्सी चालकों का कहना है कि सरकार को कुछ और मोहलत देनी चाहिए। उनके चेहरे की मायूसी को देखकर ये समझा जा सकता है कि सरकार के इस फैसले से वो कितने बेबस नजर आ रहे हैं।
2: 100 दिन पूरे हो चुके हैं, सरकार ने कहा था जिनको मराठी नहीं आएगी, टैक्सी और ऑटो रिक्शा चालकों को, उन पर कार्रवाई की जाएगी, आप कैसे देखते हैं इस डिसीजन को?
6: हम अभी कुछ नहीं बोल सकते, अभी तो मैं गांव से आया हूं।
2: जी जी, आपका नाम क्या दादा?
6: साबिर
2: जी। इस डिसीजन को आप कैसे देखते हैं, ये फैसला सही लगता है आपको कि मराठी नहीं आएगा तो लाइसेंस आपका कैंसिल हो जाएगा?
6: नहीं, हाँ नहीं,
2: फैसला सही नहीं लगता, क्या कहेंगे इसको?
6: जैसे पहले चल रहा था उसी चलने दो, आप क्या?
0: ऑटो और टैक्सी चालकों से बातचीत के दौरान यही मांग सामने आई कि सरकार उन्हें कुछ और समय दे और तुरंत कार्रवाई न करे।
2: अब आपकी सरकार से क्या मांगे, चलिए आपको तो मराठी आती है, आपको तो दिक्कत नहीं होगी, लेकिन जो सीख नहीं पाई है, जिनको नहीं आ पा रही है, आप क्या मांग सरकार से मांग करेंगे?
3: सरकार से यही मांग करते हैं कि पब्लिक सीख रही है, जो टैक्सी वाले, रिक्शा वाले हैं, वो लोग सब सीख रहे हैं, जरूरत है सीखने की, लेकिन आप एक्शन मत लीजिए सर जी, आप सीख रहे हो, सीखेंगे, उनको आप प्रेशर डालो, सीखेंगे, लेकिन अब एक्शन ना करिए कि जिससे हम लोग प्रताड़ित हो यहाँ से रहने के लिए।
2: बिल्कुल, तो साफ है कि सरकार का जो फैसला है कि मराठी आनी चाहिए, वो सीखेंगे भी, ये भी तैयारी है, लेकिन यही सरकार से विनती है इनकी कि इसको लेकर सरकार कोई एक्शन ना ले, क्योंकि यही इनकी रोजी रोटी है, और अगर यही सरकार छीन लेगी तो ये कहां जाएंगे और क्या करेंगे?
0: वहीं महाराष्ट्र के परिवहन मंत्री प्रताप सरनाइक का कहना है कि सरकार ने गैर मराठी रिक्शा और टैक्सी चालकों को मराठी सीखने के लिए 100 दिन का पर्याप्त समय दिया है। सरकार का दावा है कि अब तक करीब 1,65,000 रिक्शा और टैक्सी चालकों को मराठी सीखने का सर्टिफिकेट दिया जा चुका है। उन्होंने आगे ये भी कहा कि जिन चालकों को मराठी नहीं आती उनके खिलाफ कानून के तहत प्रक्रिया शुरू की जाएगी।
7: हमारे राज्य में आजू बाजू के राज्य से आने वाले सभी जो रिक्शा या टैक्सी ड्राइवर है उनको यही आह्वान करते हैं कि ये महाराष्ट्र की संस्कृति है, महाराष्ट्र की परंपरा है, मराठी में अभिजात भाषा का दर्जा आदरणीय पंतप्रधान जी ने दिया, उसका आदर करना आपका भी कर्तव्य है, जैसे हमारा कर्तव्य है, तो आप भी मराठी सीखिए और इस अभियान में आप भाग ले लीजिए, मगर कानून के खिलाफ अगर कुछ आप करोगे तो उसके ऊपर हमें कार्रवाई करनी पड़ेगी।
0: मराठी को लेकर ये नया नियम पूरे महाराष्ट्र के लिए है। जहाँ तक मुंबई की बात है, तो यहाँ 48,000 से ज्यादा ऑटो ड्राइवर हैं, जबकि 3,680 से ज्यादा टैक्सी ड्राइवर जो रोजाना ऑटो टैक्सी चलाकर अपना गुजारा कर रहे हैं। और अब गैर मराठी खासकर उत्तर भारतीय ड्राइवर नए नियम को लेकर मराठी सीख तो रहे हैं, लेकिन उनका कहना है कि उन्हें कुछ और समय मिलना चाहिए। ऐसे में सबसे बड़ा सवाल यही कि अब सरकार का अगला कदम क्या होगा? क्या मराठी नहीं सीखने वाले ड्राइवरों के लाइसेंस या परमिट सस्पेंड किए जाएंगे या सरकार उन्हें एक और मौका देगी? मुंबई से दीपेश त्रिपाठी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
1: फिल्म मिर्जापुर द मूवी का नया गाना हो गया है रिलीज। इसके साथ ही फिल्म जगत से जुड़ी कुछ और खबरों को जानने के लिए आइए सीधे चलें फिल्मी मोड़ पर।
0: डायरेक्टर जोया अख्तर की फिल्म जिंदगी न मिलेगी दोबारा में ऋतिक रोशन और कैटरीना कैफ की जोड़ी ने खूब चर्चा बटोरी थी। फिल्म में दोनों के बीच एक किसिंग सीन भी था जो कैटरीना का पहला ऑन स्क्रीन किस था। अब जोया ने बताया है कि कैटरीना इस सीन के लिए क्यों तैयार हुई। उनके मुताबिक स्क्रिप्ट की जरूरत को समझते हुए कैटरीना ने इसे स्वीकार किया। जोया ने लैला के किरदार की कहानी को स्लीपिंग ब्यूटी और ऋतिक के किरदार को प्रिंस से जोड़ते हुए इस सीन को जरूरी बताया। हनुमान की दुनिया से प्रशांत वर्मा सिनेमैटिक यूनिवर्स का अगला चैप्टर महाकाली लगातार चर्चा में है। फिल्म में अभिनेता अक्षय खन्ना एक बिल्कुल नए अवतार में नजर आने वाले हैं। वो फिल्म में असुरों के शक्तिशाली गुरु शुक्राचार्य का किरदार निभाएंगे। धुरंधर में शानदार अभिनय के बाद अक्षय खन्ना का ये नया अंदाज दर्शकों के लिए खास होने वाला है। फिल्म की पहली झलक 24 अगस्त को सामने आएगी। प्रशांत वर्मा की कहानी और काल्पनिक आधार पर बनी इस फिल्म का निर्देशन पूजा कोल्लूरू कर रही है। महाकाव्य श्री रामायण कथा का पहला पोस्टर और टीजर जारी कर दिया गया है। फिल्म में देव शर्मा भगवान श्री राम की भूमिका में नजर आएंगे, जबकि अंजलि अरोड़ा माता सीता के किरदार से फीचर फिल्म में कदम रख रही हैं। अभिषेक सिंह के निर्देशन में बनी ये फिल्म हिंदी और छत्तीसगढ़ी दोनों भाषाओं में शूट की गई है। प्रकाश महोबिया और संजय बुंदेला ने इसे प्रोड्यूस किया है। फिल्म को एजे फिल्म एंटरटेनमेंट वर्ल्ड प्रस्तुत कर रहा है। श्री रामायण कथा 25 सितंबर को दोनों भाषाओं में सिनेमाघरों में रिलीज होगी।

मिर्जापुर द मूवी को लेकर फैंस का क्रेज लगातार बढ़ता जा रहा है। फिल्म का नया गाना भी रिलीज कर दिया गया है, जिसमें पुराने पसंदीदा गाने वारू फॉर एवर को नए और इमोशनल अंदाज में पेश किया गया है। एक्सेल एंटरटेनमेंट और अमेजन MGM स्टूडियोज ने इस गाने को रिलीज किया है। गुरमीत सिंह के निर्देशन में बनी फिल्म की कहानी पुनीत कृष्णा ने लिखी है। रितेश सिद्धवानी और फरहान अख्तर इसके प्रोड्यूसर हैं। मिर्जापुर द मूवी 4 सितंबर जन्माष्टमी के दिन हिंदी और तेलुगु में सिनेमाघरों में रिलीज होगी।

0: चलिए न्यूज पथ पर खबरों के सफर को आगे बढ़ाया जाए, लेकिन उससे पहले हमें रुकना होगा यहाँ, यानी कि वायरल चौक पर। यहाँ देख लेते हैं उन वीडियोस को जो कि सोशल मीडिया में धमाल मचाए हुए हैं। इनमें से कुछ वीडियोस ऐसे हैं जो आपको इमोशनल कर देंगे और कुछ आपको हंसने पर मजबूर।
1: वक्त बदला, उम्र बदली, जिंदगी के रंग भी बदल गए, लेकिन भाई की कलाई और बहन के प्यार का रिश्ता आज भी वैसा ही है। उम्र चाहे कितनी भी हो जाए, थकान चाहे कितनी भी हो, बहन राखी लेकर अपने भाई के घर जरूर पहुंचती है। बचपन में जिस रिश्ते में शरारतें थी, वही रिश्ता उम्र के आखिरी पड़ाव तक प्यार और अपनापन बनाए रखता है। भाई की कलाई पर बंधा ये धागा सिर्फ राखी नहीं, बल्कि बचपन से बुढ़ापे तक साथ निभाने वाले प्यार के निशाने हैं। भी हो, बॉडी तो आज ही बनेगी और ड्राई फ्रूट का डब्बा भी आज ही खाली होगा। बालकनी में बैठा ये बंदर भाई बड़े आराम से ड्राई फ्रूट खा रहा है। घर से डब्बा निकाला, आराम से बैठा और अब पूरा डब्बा साफ करने का प्लान है। बंदर का ये अंदाज देखकर ऐसा लग रहा है जैसे उसे किसी बात की कोई जल्दी ही नहीं है। सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे इस वीडियो को देखकर लोग खूब हंस रहे हैं और बंदर की इस हरकत को काफी पसंद कर रहे हैं। एक बच्चे ने गाय को खाना खिलाने की इच्छा जताई तो पापा ने बेटी की खुशी के लिए खुद गाय का रूप धारण कर लिया। कार्डबोर्ड पर गाय की तस्वीर बनाई गई और उसके पीछे पापा छिप गए। बच्ची बड़े प्यार से गाय को खाना खिलाती रही, लेकिन उसे जरा भी अंदाजा नहीं था कि तस्वीर के पीछे उसके पापा छिपे हैं। बेटी की मासूमियत और पापा का ये प्यारा अंदाज लोगों का दिल जीत रहा है। वीडियो देखकर लोग कह रहे हैं, बच्चों की खुशी के लिए पापा कुछ भी कर सकते हैं। अनुशासन हो तो ऐसा और ट्रेनिंग हो तो ऐसी। इस वीडियो में एक प्यारा सा डॉगी अपने ऑफिसर की हर हरकत को बिल्कुल उसी अंदाज में दोहराता नजर आ रहा है। ऑफिसर जैसे जैसे आगे बढ़ते हैं और जो कुछ करते हैं, डॉगी भी उनके पीछे जाकर वैसा ही करने लगता है। डॉगी की समझदारी और शानदार ट्रेनिंग देखकर लोग हैरान हैं। सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा ये वीडियो लोगों को खूब पसंद आ रहा है। डॉगी का अनुशासन और अपने ऑफिसर के साथ तालमेल देखने लायक है। बचपन शायद ऐसा ही होता है, जहां महंगे खिलौनों से ज्यादा मजा मिट्टी में खेलने में आता है। घर के सामने जमा ऊंची मिट्टी और दो बच्चे, बस फिर क्या था, शुरू हो गया खेल। दोनों बच्चे बारी बारी से मिट्टी के ढेर पर चढ़ते, फिर फिसल कर नीचे आते और दोबारा ऊपर चढ़ जाते। यही सिलसिला लगातार चलता रहा। चेहरे पर हंसी, आंखों में चमक और खेलने का जुनून साफ दिखाई देता है। बच्चों की ये मासूम मस्ती देखकर लगता है असली बचपन तो मिट्टी में ही मिलता है।
0: न्यूज पथ के सफर में अब सोशल अड्डा का रुख करते हैं, जहां आज बात होगी देश की राजधानी दिल्ली की। दिल्ली में साफ सफाई को बढ़ावा देने के लिए एक नया अभियान शुरू किया गया है। दिल्ली की मुख्यमंत्री श्रीमती रेखा गुप्ता ने दिल्ली को कूड़े से आजादी स्वच्छता अभियान 2026 की शुरुआत की है। सीएम ने बताया कि दिल्ली में यह स्वच्छता अभियान 17 अगस्त से 2 अक्टूबर तक चलाया जाएगा। इस अभियान के तहत सार्वजनिक जगहों के साथ ही स्कूलों, सरकारी अस्पतालों, शौचालयों की सफाई भी सुनिश्चित की जाएगी। सीएम ने अपील की है कि सभी लोग इस अभियान में हिस्सा लें और माई सिटी माई रिस्पॉन्सिबिलिटी की फीलिंग के साथ काम करें। सीएम रेखा गुप्ता ने ये घोषणा भी की है कि स्वच्छता के क्षेत्र में बेहतरीन काम करने वाले वार्ड को 1 करोड़ रुपए का इनाम दिया जाएगा। सीएम रेखा गुप्ता ने बताया कि वे दिल्ली के सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स से कहेंगी कि वो कहीं भी कूड़ा दिखाई देने पर 3 लोगों को टैग करें। लोग रील पर दिल्ली सीएम को टैग करें, दूसरा अपने इलाके के विधायक को और तीसरा अपने पार्षद को, ताकि उस जगह पर सफाई सुनिश्चित की जा सके। मुख्यमंत्री ने इस अभियान के लिए 4 C's पर जोर दिया है, जिसमें कलेक्शन, क्लीनिंग, कन्वर्जन और सर्कुलर इकोनॉमी शामिल है। इसके जरिए कूड़े से ग्रीन फ्यूल बनाने का काम किया जाएगा। इसके साथ ही सीएम ने सार्वजनिक स्थानों पर स्वच्छता अभियान, कचरे को स्रोत पर ही अलग अलग करने, सिंगल यूज प्लास्टिक के इस्तेमाल को कम करने का भी आह्वान किया है। उन्होंने बताया कि 23 अगस्त और 30 अगस्त को JJ क्लस्टर का सफाई अभियान शुरू किया जाएगा। ऐसे ही 6 सितंबर और 13 सितंबर को भी ये सफाई अभियान जारी रखा जाएगा। 17 सितंबर को हर इलाकों के सरकारी अस्पतालों के सफाई अभियान का कार्यक्रम किया जाएगा, जिसमें लोगों से बढ़ चढ़कर शामिल होने की अपील की गई है। वहीं 17 सितंबर से 2 अक्टूबर तक मेरा स्कूल सबसे सुंदर की प्रतियोगिता होगी, जिसमें स्कूलों के मेंटेनेंस की ओर ध्यान दिया जाएगा। दिल्ली को स्वच्छ बनाने के लिए शुरू किए गए इस नए अभियान को लेकर हमने दिल्ली में लोगों से बात की और उनकी राय जानी।
2: राजधानी दिल्ली को साफ सुथरा करने को लेकर के दिल्ली सरकार के द्वारा कूड़े से आजादी नाम की एक मुहिम शुरू की गई है। जो दिल्ली का वार्ड सबसे साफ सुथरा होगा उसके लिए प्रतियोगिता की जाएगी, उसको 1 करोड़ की इनाम राशि दी जाएगी। कूड़ा को साफ सुथरा करने को लेकर के जो दिल्ली सरकार ने कहा है कि 1 करोड़ दिया जाएगा, कितना अच्छा कदम मानते हैं इसको आप?
3: ये तो बहुत ही अच्छा कदम है। आज से कुछ टाइम पहले ही मेरे घर पे पूजा हुई थी। दिल्ली में ऐसी कूड़ों की लेके इतनी समस्या हुई कि फेंकने की जगह नहीं है। कूड़े वाले अलग ड्रामा करते हैं, लाइक एक दिन का कूड़ा आपको 4 दिन के बाद लेके जाएंगे। हर गली में आप देखो तो कहीं कुछ पड़ा है, कहीं कुछ पड़ा है, जिससे बीमारियां फैल रही है, बहुत सी दिक्कतें हो रही है। तो अच्छी बात है कि सरकार इसको लेके सोच रही है, क्योंकि आम जनता सच में बहुत परेशान होती है, और जब बारिश हो जाता है तो कूड़े की वजह से और ज्यादा गंदगी फैलती है।
4: मुहिम केवल कागजों तक सीमित ना रह जाए, इसको इम्प्लीमेंट करना बहुत ज़्यादा जरूरी है। खाली इनाम देने से कुछ नहीं होगा, पेनल्टी भी इम्पोज होनी चाहिए। जो वार्ड सबसे खराब हो उसके ऊपर 1 करोड़ की पेनल्टी भी लगाई जाए, यानी 1 करोड़ ये नहीं कि मुख्यमंत्री के पोस्टर निकाल करके दे दिया जाए। जहाँ पे खराब काम हो रहा है, दिल्ली में कितने सारे वार्ड होंगे, उस वार्ड पे जिस पे पेनल्टी लगी है उसका इनाम उसको दिया जाए, वो ज़्यादा बेहतर है। और ये रिस्पॉन्सिबिलिटी फिक्स की जानी चाहिए किसी न किसी सरकारी अधिकारी के ऊपर, एमसीडी के ऊपर, जेई हो, एई हो, या बिल्डिंग डिपार्टमेंट, या जो भी इसका कूड़े का काम करता है उसके ऊपर जिम्मेदारी फिक्स भी होनी चाहिए। योजना तो बहुत अच्छी है। कूड़े को खत्म करने के लिए किसी भी स्तर तक जाना पड़े वो जाना चाहिए। जब कूड़े से हमें आज़ादी मिलेगी तभी लोगों के डेंगू से, मच्छरों से और या बीमारियों से आराम मिल पाएगा।
5: जी, ये जो मैंने सुना है अभी कि ऐसा सुनने में आया है कि 1 करोड़ रुपए की राशि मिलेगी जो भी वार्ड पे, जिसमें मतलब साफ सफाई और ये सब चीज़ें अच्छी रहेंगी। देखो, देखा जाए तो वैसे तो अच्छी चीज़ है, क्योंकि ये क्या है, एक तरीके से कंपटीशन को जन्म दे रहा है। और कंपटीशन में क्या होता है कि इंसान थोड़ी सी मेहनत करता है, तो जैसे अभी तक हम देख रहे हैं साफ सफाई के नाम पे जैसे हम बात करें तो उतनी साफ सफाई नहीं रहती, चाहे उसके पीछे कोई भी वजह हो, किसी भी वजह से हो, साफ सफाई उस तरीके से नहीं है। लेकिन जब कंपटीशन आ गया है तो हो सकता है कि जो भी काउंसलर हैं एरिया के वो इस पे मेहनत करें, और अपने उनके नीचे जो भी लोग हैं इसके लिए, जो जो लोग जिम्मेदार हैं उनको भी प्रोत्साहित करेंगे और फोर्स करेंगे कि भाई, क्योंकि जब इसके लिए कंपटीशन रखा गया है तो ये भी है कि जब इसका एक एंड होगा तो कहीं ना कहीं प्रकाशित भी होगा कि फलाने वार्ड पे साफ सफाई के लिए हम इसको पुरस्कार कर रहे हैं। तो जहाँ तक देखा जाए तो अच्छी योजना है।
0: दिल्ली में यमुना के किनारे एक भव्य रिवर फ्रंट बनाने की तैयारी है, यानी कि यमुना का किनारा सिर्फ नदी और घाट तक अब सीमित नहीं रहेगा, बल्कि यहाँ पर घूमने फिरने से लेकर मनोरंजन और पर्यटन तक की सुविधाएं विकसित करने का प्लान।
6: राजधानी दिल्ली की जीवनदायिनी कही जाने वाली यमुना किनारे विकास की नई तस्वीर तैयार करने की मुहिम शुरू हो गई है। गुजरात के साबरमती रिवर फ्रंट की तर्ज पर यमुना रिवर फ्रंट विकसित होगा। इस सिलसिले में दिल्ली के जल मंत्री प्रवेश वर्मा ने अधिकारियों के साथ गुजरात का दौरा कर साबरमती मॉडल का बारीकी से अध्ययन किया।
7: सामने दिल्ली में सबसे बड़ा चैलेंज है यमुना रिवर फ्रंट बनाना, यमुना मैया को साफ करना। हमने साबरमती रिवर फ्रंट से बहुत सारी योजनाओं को सीखा है और हमने उनका प्रेजेंटेशन भी लिया है, उनके अधिकारियों को एक बार दिल्ली में भी बुलाकर पूरा समझेंगे।
6: यमुना रिवर फ्रंट को आधुनिक, आकर्षक और पर्यावरण के अनुकूल बनाया जाएगा और साबरमती मॉडल को दिल्ली की जरूरतों के मुताबिक लागू किया जाएगा। योजना के तहत यमुना किनारे खूबसूरत वॉकवे, साइकिल ट्रैक के साथ ही खेल और मनोरंजन से जुड़ी सुविधाएं विकसित की जाएंगी। कालिंदी कुंज के पास करीब 60 करोड़ रुपए की लागत से आधुनिक छठ घाट का निर्माण किया जाएगा। पारंपरिक धोबी घाटों को व्यवस्थित कर वहां आधुनिक मैकेनाइज्ड लॉटरी मशीनें लगाई जा सकती है। इसके साथ ही यमुना किनारे पर्यटन को बढ़ावा देने पर भी जोर रहेगा। हालांकि यमुना रिवर फ्रंट की सबसे बड़ी चुनौती नदी की सफाई और पर्यावरण संरक्षण रहेगा, जिसके लिए लगातार काम किए जा रहे हैं और आगे भी सीवेज प्रबंधन, जल प्रदूषण और नियंत्रण और यमुना के इकोसिस्टम को सुरक्षित रखने पर खास ध्यान दिया जाएगा। यमुना रिवर फ्रंट की इस योजना के मुकम्मल होने के बाद दिल्ली की एक अलग तस्वीर नजर आएगी, जो सेहतमंद होने के साथ आकर्षक भी होगी। नर्मदा से नरेंद्र पेपरवाला के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, विदेश टुडे।
8: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, मोर इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ। गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को।
9: हॉकी वर्ल्ड कप में भारत ने पाकिस्तान को 5-3 से हराया। टॉप एट में पहुंची टीम इंडिया, कप्तान हरमनप्रीत और अभिषेक ने दागे 2-2 गोल। जम्मू कश्मीर दौरे पर अमेरिकी राजदूत सर्जियो गोर श्रीनगर की डल लेक में की शिकारा की सवारी, घाटी के मेहमान नवाजी के मुरीद। मौसम की चुनौतियों के बीच हेमकुंड साहिब यात्रा में रौनक, अब तक 2.5 लाख से ज्यादा श्रद्धालुओं ने टेका मत्था। 10 अक्टूबर तक जारी रहेगी पवित्र यात्रा। सावन के पवित्र महीने में दिख रहे हैं शिव भक्ति के अनोखे रंग। मुंगेर में भव्य कांवड़ यात्रा बनी आकर्षण का मुख्य केंद्र, श्रद्धालु बैद्यनाथ धाम में करेंगे जलाभिषेक। महाराष्ट्र में गणेश उत्सव की तैयारियां तेज। अकोला में बप्पा की प्रतिमाओं को अंतिम रूप दे रहे हैं कारीगर। 14 सितंबर से शुरू होगा उत्सव।

गुड न्यूज टुडे देख रहे हैं आप, मैं हूं आपके साथ वैभव राज शुक्ला। स्वागत है आपका हमारे विशेष कार्यक्रम में, जहां हम बात कर रहे हैं बप्पा की। इनके आगमन के दिन अब बहुत करीब रह गए और इसलिए मुंबई में उनके स्वागत की तैयारियां जबरदस्त तरीके से लगातार जारी हैं। बड़े मंडपों में बप्पा की प्रतिमा और उनके दरबार की सजावट का काम तेजी से चल रहा है। आज आपको

लिए चलेंगे लालबाग चौराजा मंडप में, जहां पर मुख्य द्वार का काम लगभग पूरा होने को है। आपको मंडप की सजावट और थीम के बारे में विस्तार से हम समझाएंगे भी। इसके बाद देखिए मुंबई के ही काला चौकी के महागणपति की प्रतिमा के आज हम दर्शन कराने जा रहे हैं, जिन्हें मंडप में बड़े ही धूमधाम के साथ लाया जा चुका है और अब उनकी सज्जा का काम शुरू हो चुका है। गणपति उत्सव को देखते हुए मुंबई के बाजारों और दुकानों में जबरदस्त रौनक है। बप्पा की प्रतिमा और उनके दरबार को सजाने वाली चीजों की भारी डिमांड इस वक्त देखने को मिल रही है। आज आपको बप्पा के लिए बन रहे आसन और सिंहासन दिखाएंगे, जिनकी भारी डिमांड है। शुरुआत करते हैं लालबाग के राजा के साथ। देखिए मुंबई में गणेश उत्सव की तैयारियां जोर पकड़ चुकी हैं और अब इंतजार बस बप्पा के आगमन का है। लालबाग का राजा का भव्य मंडप दिन रात की मेहनत से आकार ले रहा है। धीमे धीमे 93वें साल में प्रवेश कर रहे लालबाग चार राजा के दर्शन करने के लिए हर साल देश विदेश से लाखों श्रद्धालु पहुंचेंगे, इसलिए पंडाल की सजावट से लेकर भक्तों की सुविधा और भीड़ प्रबंधन का खास तैयारियां उनके लिए की जा रही हैं। बप्पा की प्रतिमा से पर्दा गणेशोत्सव से एक दिन पहले उठेगा, जिसके लिए उत्सुकता भी है और इंतजार भी। देखिए लालबाग चार राजा से हमारी खास रिपोर्ट।

0: गण नायकाय गण देवताय गणाध्यक्षाय धीमहि, गुरु शरीराय गुणमंडिताय गुणेशानाय धीमहि, एक दंताय वक्रतुंडाय गौरी तनाय धीमहि, गजेशानाय भालचंद्राय श्री गणेशाय धीमहि। बापा के आने की शुभ घड़ी है और सबसे ज्यादा इंतजार लाल बागचा राजा के दर्शन का है। अब ज्यादा दिन बाकी नहीं जब यहाँ मुंबई का सबसे भव्य मंडप सजकर तैयार होगा, जिसमें नव साचा गणपति यानी मन्नतों के राजा की विशाल प्रतिमा विराजमान होगी। लेकिन उससे पहले अनगिनत काम है। वैसे तो 9 जून को ही पूजा के साथ उत्सव की तैयारियां शुरू हो चुकी हैं। और देखिए कैसे दिन रात काम करते हुए पंडाल का भव्य मुख्य द्वार लगभग तैयार है।
1: इसी रास्ते से विसर्जन के समय लालबाग के राजा बाहर की तरफ आते हैं और इसी सड़क पर बेसब्री से लाखों की तादाद में जुटे जो श्रद्धालु हैं वो लालबाग के राजा का अंतिम दर्शन करने के लिए घंटों खड़े रहते हैं। ये वही मुख्य द्वार है, ये वही भव्य बड़ा सा गेट है जहां पर लोग पहुंचकर सेल्फीज निकालते हैं, क्वालिटी जो तस्वीरें हैं वो शूट करते हैं और यहां पर आकर के इसकी जो शोभा है, जो सुंदरता है वो देखते हैं। आपको बताएं कि पिछली बार मुख्य द्वार को तिरुपति बालाजी का अवतार दिया गया था, उसका स्वरूप दिया गया था, लेकिन इस बार जो जानकारी मिल रही है कहीं ना कहीं भोलेनाथ को इस मुख्य द्वार से जोड़ा जाएगा। गौरतलब है कि श्रावण चल रहा है, ऐसे में जो जानकारी हमारे पास मिली है सूत्रों के मुताबिक जो हमें खबर मिली है इस बार बद्रीनाथ या केदारनाथ की थीम पर ये भव्य गेट बनाया जाएगा। आपको बताएं कि इसका काम शुरू हो चुका है, तकरीबन 1.5 महीने पहले से ही लाखों रुपए इस भव्य गेट के लिए लगते हैं। इस तरह के लालबाग के राजा पर कुल 3 गेट बनाए जाते हैं जहां से श्रद्धालु कतारों में होते हुए लालबाग के राजा का दर्शन करने के लिए पहुंचते हैं। बस यहां पर ज्यादा से ज्यादा 500 से 600 मीटर की दूरी पे ही लालबाग के राजा विराजमान है जहां पर उनकी प्रतिमा बनाने का काम शुरू है। हालांकि पर्दे से उन्हें अभी छिपाया गया है और एक दिन प्रेस कॉन्फ्रेंस ली जाएगी और उस दिन ही पहली बार लालबाग के राजा का दर्शन जो है वो दिया जाएगा।
0: जैसी शोहरत इस पंडाल की है उसी के अनुरूप हर साल इसकी सजावट होती है। बारीक नक्काशी, मनमोहक शिल्प और अद्भुत मूर्तियां, अभी तो ये झांकी है लेकिन इसे देखकर अंदाजा लगाया जा सकता है कि लालबाग के राजा का मंडप इस साल कितना भव्य और दिव्य होगा। इस साल लालबागचा राजा पंडाल अपने 93 साल में प्रवेश कर रहा है। हर साल की तरह इस साल भी भक्तों के मन में सवाल है कि बापा की प्रतिमा कैसी होगी, उनकी सज्जा कैसी होगी। लेकिन जहां प्रतिमा बनाई जा रही है वो जगह कपड़े से ढकी हुई है। हमेशा की तरह प्रतिमा से पर्दा गणेशोत्सव के एक दिन पहले उठेगा।
1: लालबाग के राजा जहां पर स्थापित हैं, इस जहां पर उनकी प्रतिमा बनाने का काम चल रहा है, मैं उस जगह पे मौजूद हूं। ये आप देख रहे हैं तस्वीर, चारों तरफ से पैक किया गया है और यहां पर ही लालबाग के राजा को बनाने का काम जो है शुरू है। आप देखें बैरिकेड्स वगैरह सारे लगा दिए गए हैं। नॉर्मली यहाँ पर किसी को आने जाने अब नहीं दिया जा रहा है, लेकिन जो कोई भी लालबाग के राजा की उस पत्थर वाली प्रतिमा को जाकर श्रद्धा करना चाहता है, पूजा करना चाहता है, तो वो यहाँ पहुंच जाते हैं। खास बात यह है कि वो जगह है जिसे मन्नत की लाइन कही जाती है, मन्नत की कतार कही जाती है। यही वो जगह है जहां पर 8-10 घंटे लाइन में खड़े होने के बाद बप्पा के पास पहुंचा जाता है, तब जाकर के उनके पैर छूने का मौका मिलता है। थोड़ा सा देखें किस तरीके से एक बहुत ही भव्य तरीके से यहाँ पर लालबाग के राजा का दरबार सजाने का काम जो है शुरू है।
0: मुंबई के लालबागचा राजा देश के सबसे प्रसिद्ध गणपति मंडलों में शामिल हैं, जहां हर साल महाराष्ट्र ही नहीं बल्कि पूरे देश और विदेश से भी लाखों श्रद्धालु भगवान गणेश के दर्शन के लिए पहुंचते हैं। आम लोगों के साथ नेता, अभिनेता और उद्योगपतियों का तांता लगा रहता है। ऐसे में मंडल का सबसे ज्यादा फोकस भीड़ को कंट्रोल करने और भक्तों को बेहतर सुविधा देने पर होता है। बारिश के दिन है, लिहाजा सावधानी ज्यादा है।
1: मुंबई शहर की इन ऊंची ऊंची इमारतों के बीच लालबाग के राजा का दरबार है। कोशिश करते हैं तस्वीरों के माध्यम से दिखाने की कि किस तरह की व्यवस्था और किस तरह की तैयारी गणेश उत्सव को लेकर की जा रही है। गौरतलब है कि 14 सितंबर से मुंबई, महाराष्ट्र और ये पूरा देश जो है गणेश का महाउत्सव मनाने वाला है। पूरे देश भर में लालबाग के राजा का नाम बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा चर्चित है। अलग अलग राज्यों से लोग दर्शन करने के लिए आते हैं और तस्वीरों के माध्यम से आप देखें किस तरीके से पूरी तैयारी शुरू हो चुकी है। आप सामने देखें बकायदा टेंट लगा दिया गया है क्योंकि इंद्र देवता बहुत ज्यादा इस समय मुंबई में प्रसन्न है। अच्छी खासी बारिश हो रही है और जब घंटों कतार में खड़े रहने वाले जो श्रद्धालु हैं बप्पा तक पहुंचते हैं तो उनकी सुरक्षा और उनको लेकर के ठीक ठाक व्यवस्था किस तरीके से लालबाग द्वारा की जाती है ये दिखाने का हम पूरा प्रयास कर रहे हैं। सामने जो आप टेंट देख रहे हैं यहाँ पर ही घूम घूम कर लंबी लंबी कतारें लगाई जाती हैं जिसमें मुख दर्शन भी होता है और उनके पग का भी दर्शन होता है। साथ ही आपको बताएं कि ये वही मुख द्वार है जहां से लालबाग के राजा विसर्जन के लिए सीधे बाहर की तरफ आते हैं। आप देख रहे हैं संतरे कलर का यानी कि ऑरेंज कलर का टेंट है और यहां से ही वीआईपी, वीवीआईपी और तमाम वो श्रद्धालु जो बप्पा तक पहुंचते हैं वो भीतर की तरफ जाते हैं और इस टेंट के एकदम आखिरी में बप्पा के निर्माण कार्य जो है चल रहा है। हालांकि अभी लालबाग के राजा को दिखाया नहीं जा रहा है।
0: जहां लालबागचा राजा का पंडाल है उसी परिसर में एक मशहूर बाजार है। आम दिनों में यहां काफी भीड़भाड़ होती है, रौनक रहती है। रोजमर्रा की चीजों के अलावा यहां पूजा पाठ का सामान मिलता है लेकिन गणेशोत्सव शुरू होते ही ये बाजार बंद कर दिया जाता है। लेकिन बापा के आने की खुशी ऐसी होती है कि दुकान बंद करने का मलाल यहां किसी दुकानदार को नहीं होता। लाल बागचा राजा का पंडाल तो सज ही रहा है, बापा के स्वागत के लिए बाजार भी तैयार है। बापा आएंगे तो धूम होगी, सजावट होगी, उनके लिए भव्य आसन और सिंहासन की जरूरत होगी। डिमांड ज्यादा है और समय कम, इसलिए जोर शोर से काम शुरू हो चुका है। मुंबई में लालबाग के राजा पंडाल से सटी गली में सहेली नाम की कार्यशाला में अभी से गणेश भक्तों की भारी भीड़ है क्योंकि यहां बाप्पा के लिए एक से बढ़कर एक आसन है।
2: के राजा का जो मंडल है उससे ठीक सटी एक गली है और गली में ही एक ऐसी कार्यशाला है जहां पर गणपति बप्पा को सजाने का काम बहुत ही तेजी से चल रहा है। उनके सिंहासन, उनके आसन को एक से बढ़कर एक रंग रूप दे करके बनाया गया है। थोड़ा तस्वीरों में देखें, एक से बढ़कर एक सिंहासन इस समय गणपति बप्पा गणेश जी के लिए जो है यहाँ बनाकर रखे हैं। गौरतलब है कि 14 सितंबर से गणेश उत्सव पूरा देश मनाने वाला है। ऐसे में हर कोई चाहता है कि अपने घरों में यानी कि घर गृति जो गणेश जी ले जाएंगे उन्हें जिस सिंहासन पर बिठाया जाए वो उनका पसंदीदा

0: डिमांडिंग हो और कहीं ना कहीं ट्रेंडिंग भी हो, यही वजह है कि आप देखें एक बहुत बड़ी कार्यशाला इस समय यहाँ पर है और लोग यहाँ पर ढेरों की तादाद में पहुंच रहे हैं, अपने पसंदीदा एक से बढ़कर एक सिंहासन भी बना रहे हैं। आकर्षित का केंद्र वैसे तो बहुत सारे हैं, लेकिन ये जरा सा वाटर वॉल पेपर देखें, इसे गणेश जी के ठीक पीछे रख दिया जाएगा और जब बप्पा इसके समक्ष बैठेंगे, विराजमान होंगे, तो आप समझ सकते हैं किस तरह की खूबसूरती देखने को मिलेगी। साथ ही साथ ये देखिए कितनी प्यारी सी रुद्र के साथ में शिवलिंग का भी अवतार यहां पर किया गया है। इस तरह की एक से बढ़कर एक प्रतिमाओं से गढ़ी एक से बढ़कर एक सिंहासन आसन, जिसे छोटे छोटे मंडप भी कहे जाते हैं, वो बनाने का काम है।
1: कहने की जरूरत नहीं कि ऐसे खूबसूरत आसन बाप्पा की प्रतिमा की भव्यता और बढ़ाते हैं, इसलिए गणेशोत्सव में इनकी जबरदस्त मांग होती है। 25 सालों से काम कर रही सहेली कार्यशाला में गणेश भक्तों के लिए ऑप्शन भी ढेर सारे हैं। पंढरीचा रूप आसन, श्री सिंहासन, सुखहर्ता आसन, मोर्या आसन, वक्रतुंड आसन, मंगल मूर्ति आसन, स्वामी समर्थ आसन, स्वराज आसन, बापा के लिए जिसे जो पसंद आ जाए।
2: आप देख सकते हैं कि हमारे सबसे ज्यादा विट्ठल पंढरीनाथ की है, शंकर भगवान की है, जैसे आप लोग अभी ये साल सबसे ज्यादा चला वो स्वामी समर्थ का है। अच्छा। आज के ट्रेंड चलो स्वामी समर्थ का, तो स्वामी समर्थ का हम लोग इसमें तीन साइज बना के रखे। हाँ। हमारे यहाँ आपको हर चीज में इसमें तीन साइज मिलेंगे, छोटा, मीडियम और बड़ा, ऐसे तीन मिलेंगे। हाँ। जैसे आपका बप्पा होंगे वैसे वो साइज के आपको करके ये मिल जाएंगे सब। अच्छा, हमारे
0: जितनी लंबाई बप्पा की होगी उतनी साइज में आप सिंहासन बनाएंगे। यहाँ भी मैं देख रहा हूँ बहुत सारे लोग राजा पंढरीचा,
2: ये राजा पंडित विट्ठल के हैं, एक नाम है उनका राजा पंडित। जैसे गणपति का नाम है वक्रतुंड मनोदर, हम लोग वो नाम पे वो थीम पे सुखहर्ता है, लंबोदर है, वक्रतुंडे, अलग अलग नाम पे मोरे है। जैसे गणपति बापा का नाम है वैसे हम लोग उसके नाम पे भी बनाए, वो सब अलग अलग चीज का आपको मिल सकता है हमारे यहाँ।
0: अच्छा, मैंने देखा एक दो लोगों ने आपसे छत्रपति शिवाजी महाराज की भी सिंहासन मांगी, वो भी
2: हमारे यहाँ महाराज के, शिव महाराज के राज्याभिषेक का सिंहासन वो भी रखे, जिसके साथ में उनके मावड़े भी रखे हुए है। अच्छा। कि अगर आप घर पे बना सकते हो तो आपको अलग से मावड़ा चाहिए तो मावड़े भी मिल सकते हैं, जो फोल्डिंग पूरे आते हैं। मैम
1: बापा घर आएंगे तो उनके लिए सिर्फ आसन या सिंहासन ही नहीं चाहिए, उनकी प्रतिमा को सजाने का भी सामान जरूरी है। दरबार को सजाने के लिए भी खूबसूरत चीजों की आवश्यकता होती है। मुंबई के बाजारों में गणेशोत्सव से जुड़ी ऐसी तमाम चीजों की भरमार है। सहेली कार्यशाला में इसके लिए कई ऑप्शन हैं।
2: जैसे कि आप देखते हो कि फ्लावर्स में जो है, फ्लावर्स में काफी जो न्यू आइटम्स है, जो पूरा वेल्स लगाए हुए वो टाइप के, आपको सिंहासन मिलेंगे जो जो मेटल के आते हैं, बापा के पगड़ी से पगड़ी मिलेंगे, बापा की शाल मिलेंगी, रुमाल मिलेंगे, हार मिलेंगे, एक रूफ के नीचे आपको सब आइटम्स मिल जाएंगे, लाइट्स भी मिल जाएंगे सर।
1: मुंबई के अलग अलग इलाकों में, अलग अलग बाजारों में बापा की प्रतिमा और उनके दरबार की साज सज्जा के लिए मुकुट, साफा, आर्टिफिशियल फूलमाला और ग्रास शीट जैसी चीजों की अभी से भरमार है। बाजारों में रौनक है और ऐसी कार्यशाला में भारी भीड़। मुंबई से धर्मेंद्र दुबे के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
3: मुंबई की गलियों में गणपति बप्पा मोरिया की गूंज सुनाई देने लगी है और इसी के साथ शुरू हो गई है बप्पा के भव्य स्वागत की तैयारियां। साज सज्जा के लिए कला चौकी के 22 फीट ऊंचे महागणपति के पहले ही पंडाल में आगमन हो चुका है। ढोल नगाड़ों और जयकारों के साथ जब भक्त बप्पा को लेकर पहुंचे तो रौनक देखने वाली थी। इस बार महागणपति महालक्ष्मी के स्वरूप में विराजेंगे और पंडाल को भी सोलापुर के महालक्ष्मी मंदिर की तर्ज पर सजाया जाएगा। 71 साल पुराने इस मंडल में हर साल कुछ नया देखने को मिलता है, जिसका भक्तों को खास इंतजार रहता है। रिपोर्ट देखिए।

साल जिसका इंतजार होता है वो घड़ी बेहद करीब आ चुकी है। चंद रोज में ही मुंबई की सड़कें गलियां इस जय घोष से गूंजने वाली हैं। गणपति बाप्पा मोरिया, मंगल मूर्ति।

0: तैयारियां। 14 सितंबर से गणेशोत्सव की शुरुआत है और उसकी तैयारी अभी से शुरू हो चुकी है। गणपति की प्रतिमाएं धूमधाम से पंडालों तक जा रही हैं। ढोल नगाड़ा बजाते, नाचते गाते भक्तिभाव के साथ मुंबई के काला चौकी के महागणपति को पंडाल में लाया गया। हजारों की संख्या में भक्त जयकारा लगाते प्रतिमा के साथ चले। इस तरह काला चौकी के 22 फीट ऊंचे महागणपति का उनके पंडाल में आगमन हो गया। सिंह पर सवार बाप्पा इस साल महालक्ष्मी जी के अवतार में हैं और हमेशा की तरह बाप्पा की ये प्रतिमा दिव्य और भव्य है।
1: बड़े बड़े पंडाल अपने बप्पा को अपनी जगह पर लेकर आना शुरू हो चुके हैं। फिलहाल इस समय मौजूद हूँ साउथ मुंबई के काला चौकी के महागणपति के दरबार में और आप देखें बहुत ही सुंदर भव्य तरीके से बप्पा को यहाँ पर विराजमान कर दिया गया है। आपको बताएं कि महालक्ष्मी के अवतार में गणपति बप्पा को ले आया गया है। फिलहाल यहाँ बात करें इन बप्पा की 22 फीट की ऊंचाई है। ट्रॉली से सिंह पर बकायदा बप्पा सवार हैं और खास बात यह है कि जो ट्रॉली रखी गई है जिस जगह पे उसके नीचे बहुत ही सुंदर तरीके से रंगोली भी निकाली गई है, बनाई गई है, ठीक उसके ऊपर बप्पा को विराजमान करा गया है। और कुछ घंटों पहले बहुत सारे तस्वीरें, बहुत सारे वीडियोस सोशल मीडिया पर बप्पा के आगमन को लेकर के वायरल हुए थे, जिसमें हजारों की तादाद में जो गणेश भक्त हैं वो जुटे हुए थे और हर कोई बप्पा का स्वागत कर रहा था।
0: काला चौकी इलाके में महागणपति का पंडाल अपनी भव्यता के लिए मशहूर है। न सिर्फ विशाल प्रतिमा बल्कि मन को मोह लेने वाली दिव्य साज सज्जा। सबसे बड़ी बात ये कि इसमें महाराष्ट्र की संस्कृति और परंपरा को संजोया जाता है।
2: हर साल स्वरूप महागणपति का बदलता है। कभी महागणपति पांडुरंग विट्ठल के रूप में आते हैं, कभी सरस्वती के रूप में आते हैं, कभी भोले शंकर के रूप में आते हैं, तो कभी कान्हा नटखट बन के आते हैं। ये साल महालक्ष्मी का रूप, यानी महालक्ष्मी यानी क्या? स्थैर्य, शांति, संपत्ति, जो आजकल हर एक को आशीर्वाद के रूप में महागणपति देने आ रहे आ गए हैं। और इसी का जो हमारी झांकी बनेगी, डेकोरेशन बनेगा, वो भी उसी का एक कोल्हापुर के महालक्ष्मी के मंदिर का जो कंपोनेंट्स है, जो छवि है, वही आपको देखने को मिलेगी। इसलिए मैं आपके ओर से हमारे सभी भक्तों को विनती करता हूँ कि ये महालक्ष्मी का रूप महागणपति का आप इस कोल्हापुर के महालक्ष्मी के मंदिर में देखने आइए।
0: महागणपति की प्रतिमा आ चुकी है, अब इसकी सजावट पर काम शुरू हो जाएगा। लेकिन अभी से जोश ऐसा है कि हजारों की तादाद में भक्त दर्शन के लिए आने लगे हैं। कार्यकर्ताओं में जोश है और महागणपति मंडल के कर्ता धर्ता दिन रात काम में जुटे हैं। काला चौकी महागणपति मंडल में बाप्पा का स्वरूप हर साल बदलता है। इस साल बाप्पा महालक्ष्मी स्वरूप में पधारे हैं और उनका पंडाल भी सोलापुर के महालक्ष्मी मंदिर की तर्ज पर सजाया जाएगा, जिसकी पहली झलक गणेशोत्सव के पहले दिन देखने को मिलेगी।

0: महागणपति का आगमन 16 हम लोग सिर्फ आगमन नहीं करते, तो एक परंपरा उसमें जताते हैं। महाराष्ट्र की जो जो परंपरा है जो आजकल कम होती जा रही है और वो सिर्फ उनके उनके जगह पे ही दिखाई जाती है, उनको हम सब मुंबई में लेके आते हैं। पालखी जो होली में हमारे कोकण में नचाई जाती है, वो कोली हमारे सब कोकण के बांधव वो पालखी लेके आते हैं और महागणपति के जो रुपेरी पैर रहते हैं उनको वो पालखी में रखते हैं। हमारे कोली भाई बहन रहते हैं वो उनका नृत्य प्रकार यहाँ पे दिखाते हैं। मर्दानी खेल जो रहते हैं जो शिवकालीन छत्रपति शिवाजी महाराज जी के काल्य खंड से ये चलते आ रहे हैं वो भी हमारे ये पारंपरिक आगमन 16 में रहते, इसलिए ये सब मैनेज करने के लिए हमें एक महीने का वक्त तो लगता ही है।
1: काला चौकी महागणपति मंडल के 71 साल हो चुके हैं। हर साल ये मंडप अपनी साज सज्जा का नया कीर्तिमान बनाता है और उम्मीद की जा रही है कि इस साल भी गणेश उत्सव में यहाँ कुछ अलग कुछ नया देखने को मिलेगा। आपको बता दें कि काला चौकी के महागणपति के आसपास कई बड़े पंडाल हैं जो देश भर में मशहूर हैं। इसी इलाके में लालबाग का राजा, चिंतामणि का राजा, गणेश गली, चिंच पोकली का राजा और परेल का राजा जैसे पंडाल हैं। और जब गणेश उत्सव प्रारंभ होगा ये पूरा इलाका ही एक विशाल धर्म स्थल में

0: तब्दील हो जाएगा और महागणपति के इस पंडाल में दर्शन के लिए लाखों भक्त पहुंचेंगे।
1: और धीरे धीरे ये जो पूरा परिसर है महालक्ष्मी के मंदिर के रूप में बदल जाएगा और उसके बाद लंबी लंबी कतारें श्रद्धालुओं की यहाँ पर लगेगी, घंटों लोग यहाँ खड़े होंगे, फिर चाहे इंद्र देवता बरस ही क्यों ना रहे हों, लेकिन फाइनली कितनी भी थकावट हो जाए बप्पा के समक्ष आकर लोग खुद को बहुत ज़्यादा तंदुरुस्त समझेंगे, बहुत ज़्यादा फ्रेश समझेंगे और बप्पा के आशीर्वाद के साथ अपनी मनोकामना बप्पा के समक्ष रखेंगे। वीडियो जर्नलिस्ट वादत खां के साथ धर्मेंद्र दुबे, गुड न्यूज़ टुडे, मुंबई।
2: मुंबई नहीं, आपको बता दें महाराष्ट्र के

0: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
1: और दुर्भाग्य कहता है
2: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
3: अविश्वास में विश्वास बसता है,
0: जो हमें अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज़ टुडे बनाता है।
4: गुड न्यूज़ टुडे।

0: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है कम से।
1: देश के कई हिस्सों में बारिश का दौर जारी है, इससे कई जगह बाढ़ जैसे हालात बने हुए हैं। इन सबके बीच राहत और बचाव का काम भी लगातार चल रहा है। एक रेस्क्यू ऑपरेशन समंदर में भी चलाया गया, तो हिमाचल प्रदेश में बारिश को लेकर मौसम विभाग का अलर्ट भी है।
2: बारिश की वजह से देश के कई हिस्सों में बाढ़ जैसे हालात बने हुए हैं। इन सब के बीच जगह जगह लोग बेबस नजर आते हैं। इनके लिए रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया जा रहा है। राहत और बचाव की टीमें जरूरतमंदों तक खाने पीने का सामान पहुंचाने के साथ ही लोगों को सुरक्षित स्थान तक पहुंचाने का भी काम कर रही है। बारिश और बाढ़ को लेकर जारी रेस्क्यू ऑपरेशन के अलावा समंदर में मुश्किल हालात के बीच फंसे लोगों की जान भी बचाई जा रही है। गुजरात के नवसारी की ये तस्वीरें देखिए। यहाँ समंदर में फंसे मछुआरों को एयरलिफ्ट कर सुरक्षित बचाया गया। समंदर में एक नाव के डूबने की स्थिति में होने की जानकारी मिलने पर कोस्ट गार्ड ने तत्काल हेलीकॉप्टर के जरिए रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया और नाव में सवार सभी 9 मछुआरों को एक एक कर सुरक्षित बचा लिया।
3: के जलालपुर तहसील के कृष्णपुर गांव से एक फिशिंग बोट वलसाड़ की ओर जाने को रवाना हुई थी, जिसमें 9 लोग सवार थे। जयेश भाई टंडेल की ये जो बोट थी वो धोलाई मरीन बंदर से 2.5 नोटिकल माइल के दूरी पर सिंक होना स्टार्ट हुई थी। 9 लोगों का रेस्क्यू कॉल हमें कंट्रोल रूम में मिला था, उसमें ये सब 9 लोगों को रेस्क्यू करने के लिए पहले NDRF की टीम से आयोजन किया था, फिर पता चला कि भाई ये अपने कोस्ट गार्ड के चोपर के मदद से ही रेस्क्यू करना पड़ेगा। तो कोस्ट गार्ड के जो कमांडेंट साहब है उनसे मैंने बात की थी। नवसारी जिला कलेक्टर श्री मनीष गुरवानी साहब ने कोस्ट गार्ड के DIG साहब से बात करते ही तुरंत उन्होंने चोपर भेजा था।
2: रेस्क्यू कर सभी 9 मछुआरों को समंदर तट पर सुरक्षित उतार दिया गया। वहीं ओडिशा में बाढ़ के पानी में बहे एक व्यक्ति का भी रेस्क्यू किया गया। ओडिशा के बाढ़ प्रभावित भद्रक जिले की ये तस्वीर देखिए। बालीपाटना इलाके के तारनगर गांव के रहने वाले सुनंदा बेहरा ताड़ के पेड़ को पकड़कर भूखे प्यासे 5 दिन तक इसी तरह अपनी जान बचाते रहे। ODRF की टीम को सुनंदा बाजापति पाड़िया इलाके में मिली। वहां से रेस्क्यू कर उन्हें बालीपाटना मेडिकल सेंटर ले जाया गया, जहां उनका इलाज चल रहा है। मैदान से लेकर पहाड़ तक में हो रही बारिश मुश्किल का सबब बन रही है। उत्तराखंड में ऋषिकेश से लेकर देहरादून तक में SDRF और पुलिस की टीम रेस्क्यू ऑपरेशन में पसीना बहाती नजर आ रही है। ऋषिकेश में पानी के तेज बहाव में फंसी एक गाड़ी के ऊपर जवान रस्सी के सहारे पहुंचे और फिर गाड़ी के अंदर से एक एक कर दोनों लोगों को सुरक्षित बाहर निकाला। वहीं देहरादून के विकास नगर में स्वर्णा नदी में फंसे 6 छात्रों को भी SDRF के जवानों ने काफी मशक्कत के बाद सुरक्षित रेस्क्यू किया। उत्तराखंड में भारी बारिश की वजह से नदी नाले उफान पर हैं, जिसको देखते हुए प्रशासन अलर्ट मोड में है और लोगों से सतर्कता बरतने की अपील की जा रही है। हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला समेत जगह जगह बारिश का दौर देखने को मिल रहा है। इन सब के बीच मुश्किल हालात में फंसे लोगों का रेस्क्यू भी किया जा रहा है। हिमाचल प्रदेश में मानसून सक्रिय है और इसके चलते 22 अगस्त तक बारिश का दौर जारी रहने का अनुमान है, जिसको लेकर मौसम विभाग ने अलर्ट भी जारी किया है।
4: हमीरपुर, चंबा, कांगड़ा, मंडी, शिमला, सिरमौर, यहाँ पे एक दो स्थानों में हैवी रेनफॉल का येलो अलर्ट जारी किया गया। उसके उपरांत 20 और 21 अगस्त को चंबा, कांगड़ा, कुल्लू, मंडी, यहाँ के लिए येलो कैटेगरी में हैवी रेनफॉल का येलो अलर्ट जारी किया गया है। फिर उसके उपरांत देखिए 22 अगस्त को जो वेदर एक्टिविटी है उसकी इंटेंसिटी में काफ़ी कमी आएगी। हालांकि 22 अगस्त को जो हमारी जो वेदर एक्टिविटी है वो जो हमारे क्षेत्र में मध्यवर डिस्ट्रिक्ट हैं, जो क्षेत्र ऊना, बिलासपुर, हमीरपुर, वहाँ पर कुछ क्षेत्रों में हल्के से मध्यम बारिश का दौर जारी रहेगा। जो मेजर रिडक्शन है वेदर का वो 22 अगस्त के उपरांत देखने को मिलेगा प्रदेश में, और उसके बाद 23 और 24 अगस्त को काफ़ी कम रहेगी, मतलब वेदर एक्टिविटी मतलब कुछ क्षेत्रों तक ही सीमित रहेगी। और
2: हिमाचल प्रदेश में 22 अगस्त के बाद भले ही बारिश में कमी आने का अनुमान है, लेकिन फ्लैश फ्लड के खतरे को देखते हुए मौसम विभाग ने नदी नालों से दूर रहने की सलाह दी है। नवसारी से रौनक जानी और शिमला से विकास शर्मा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
0: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को।
5: क्या आप सोते समय परेशान रहते हैं? क्या आप पलंग पर फैल कर सोते हैं? क्या आपको सोने के लिए सहारे की जरूरत पड़ती है? आपके सोने का तरीका आपके मन के बारे में क्या बताता है? जानिए मेरे साथ सिर्फ गुड लक टुडे में।
1: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
6: और दुर्भाग्य कहता है
1: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
7: अविश्वास में विश्वास बसता है,
1: जो हम में अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
8: गुड न्यूज टुडे।
1: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे, देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे में।

0: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर। गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को।
1: हॉकी वर्ल्ड कप में भारत ने पाकिस्तान को 5-3 से हराया। टॉप 8 में पहुंची टीम इंडिया, कप्तान हरमनप्रीत और अभिषेक ने दागे 2-2 गोल। जम्मू कश्मीर दौरे पर अमेरिकी राजदूत सर्जियो गोर श्रीनगर की दल लेक में की शिकारा की सवारी, घाटी के मेहमान नवाजी के मुरीद। मौसम की चुनौतियों के बीच हेमकुंड साहिब यात्रा में रौनक, अब तक 2.5 लाख से ज्यादा श्रद्धालुओं ने टेका मत्था। 10 अक्टूबर तक जारी रहेगी पवित्र यात्रा। सावन के पवित्र महीने में देख रहे हैं शिव भक्ति के अनोखे रंग। मुंगेर में भव्य कांवड़ यात्रा बनी आकर्षण का मुख्य केंद्र, श्रद्धालु बैद्यनाथ धाम में करेंगे जलाभिषेक। महाराष्ट्र में गणेश उत्सव की तैयारियां तेज। अकोला में बप्पा की प्रतिमाओं को अंतिम रूप दे रहे हैं कारीगर, 14 सितंबर से शुरू होगा उत्सव।
0: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे।

0: अच्छी सोच।
1: ये शुरू करते हैं न्यूज पद पर सफर और सबसे पहले आपको दिखाते हैं ऐसी तस्वीरें जिनका जिक्र सरेरा है। ये तस्वीरें सुर्खियों में भी है और सोशल मीडिया पर भी है। इनसे आपका बाखबर होना बेहद जरूरी है क्योंकि चौराहे पर इन्हीं की चर्चा है और चर्चा वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाने वाली मिथिला पेंटिंग की भी। देखिए
2: रामायण का हर प्रसंग अपने आप में पूरी किताब है और उसके

0: रामायण का हर प्रसंग अपने आप में पूरी किताब है और उसके 50 से ज्यादा प्रसंगों को एक कैनवास पर समेटना आसान नहीं है, लेकिन बिहार की मिथिला पेंटिंग के जरिए ये साकार हो गया है। मधुबनी के सौराठ स्थित मिथिला चित्रकला संस्थान के 160 से ज्यादा कलाकारों ने मिलकर 108 मीटर लंबे कैनवास पर रामचरितमानस की गाथा को मिथिला पेंटिंग के जरिए उकेरा है। 48 घंटे की लगातार मेहनत से तैयार इस कलाकृति में रामचरितमानस के 51 प्रमुख प्रसंगों को दर्शाया गया है। पद्मश्री और राष्ट्रीय पुरस्कार प्राप्त कलाकारों की देखरेख में बनी इस पेंटिंग ने विश्व रिकॉर्ड बनाया है और अब इसे म्यूजियम में सुरक्षित रखने की तैयारी है।
1: परमात्मने नमः श्रीमद्भगवद्गीता अथ

0: करवे।
1: कहते हैं गीता के श्लोकों में जीवन का सार छुपा है, इसलिए झारखंड के धनबाद की ये दोनों बहनें हर रोज गीता का पाठ करती हैं, ताकि जीवन के उतार चढ़ाव को समझ सकें, और अब उनकी यही आदत उनकी वैश्विक पहचान भी बन गई है। धनबाद के आन्या और प्रांजल मित्तल ने कम समय में श्रीमद् भागवत गीता के श्लोकों का पाठ करके गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में अपना नाम दर्ज कराया है। प्रांजल के मुताबिक उन्होंने श्रीमद् भागवत गीता के 15वें अध्याय का पाठ करीब 5 मिनट में पूरा करके ये रिकॉर्ड बनाया है। धनबाद के धैया की रहने वाली आन्या और प्रांजल इसका श्रेय अपनी माँ को देती हैं, जिन्होंने बचपन से ही इन्हें गीता के श्लोकों के नियमित पाठ का अभ्यास कराया और इसे इनकी दिनचर्या में शामिल कर दिया। बाढ़ और बारिश से देश के कई हिस्से प्रभावित हैं। इस बीच यूपी के मुजफ्फरनगर से एक ऐसी तस्वीर सामने आई जो लोगों की खूब सहानुभूति बटोर रहा है। असल में लगातार बारिश की वजह से यहां के शिव चौक पर पानी भर गया। ऐसे में बारिश के बीच वहां से गुजर रहे एक डिलीवरी बॉय का मोबाइल पानी में गिर गया। वो देर तक उसे पानी में ढूंढता रहा। राहगीरों के बीच वो कभी पानी में हाथ डालकर फोन तलाशता तो कभी बेबसी में पानी को देखता, लेकिन जब काफी ढूंढने के बाद भी मोबाइल नहीं मिला तो बेबसी में उसकी आंखें छलक पड़ी। युवक का नाम विशाल है। उसके मुताबिक उसका फोन 45,000 रुपए का था, जिसे उसने किस्तों पर खरीदा था। उसके लिए मोबाइल महज एक महंगा फोन नहीं बल्कि उसकी रोजी रोटी का जरिया भी था। ऐसे में अब उसने नगर पालिका से आर्थिक मदद की गुहार लगाई है। सावन का महीना है, ऐसे में बाबा बैद्यनाथ धाम जाने वाले कांवड़िया पथ भगवा रंगों से गुलजार है। ये तस्वीरें असरगंज के कच्ची कांवड़िया पथ की है, जहां शिव भक्तों कांवड़ियों का कारवां पैदल बाबा बैद्यनाथ धाम की ओर बढ़ रहा है। इस यात्रा में श्रद्धा के साथ साथ कांवड़ों की कलात्मकता भी लोगों का ध्यान खींच रही है। किसी कांवड़ में भगवान विष्णु की विशाल प्रतिमा योग निद्रा की मुद्रा में नजर आ रही है, तो किसी में भगवान श्री राम को भगवान शिव की पूजा करते हुए दिखाया गया है। वहीं कुछ कांवड़ भगवान महाकाल की भव्य प्रतिमा और कछुए की आकृति से सजी हुई है। ये तस्वीरें राजस्थान के धौलपुर की हैं। यहाँ बसेड़ी कस्बे में भव्य शिव यात्रा निकाली गई, जिसमें लोगों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। इस यात्रा में सबसे खास रहा भगवान भोलेनाथ के रूप में कलाकारों की प्रस्तुति, जिसे देखकर लोग भक्ति में भाव विभोर नजर आए। यात्रा के दौरान जगह जगह लोगों ने फूल बरसाए। भोलेनाथ के जयकारों और भजनों की धुन पर लोग झूमते गाते नजर आए।
2: हेमकुंड साहिब में 2.5 लाख से ज्यादा श्रद्धालुओं ने टेका मत्था। आइए आपको सीधे लिए चलते हैं न्यूज एक्सप्रेसवे पर, जहां देश भर की कुछ और जरूरी खबरें कर रही हैं आपका इंतजार।
1: पीएम मोदी की अध्यक्षता में हुई केंद्रीय कैबिनेट की बैठक में आज बुनियादी ढांचे से जुड़ी 5 बड़ी परियोजनाओं को मंजूरी दी गई। इनमें रेलवे की 4 परियोजनाएं शामिल हैं, जबकि बिहार में एक 4-लेन हाईवे परियोजना को भी हरी झंडी दी गई है। रेल परियोजनाओं में पश्चिम बंगाल और ओडिशा के महत्वपूर्ण रेल मार्गों को शामिल किया गया है। वहीं बिहार में सड़क संपर्क को बेहतर बनाने के लिए मुजफ्फरपुर सीतामढ़ी सोनबरसा 4-लेन हाईवे प्रोजेक्ट को मंजूरी दी गई है। भारत रत्न जननायक कर्पूरी ठाकुर के गांव और उसके आसपास रहने वाले लोगों को रेलवे की ओर से बड़ी सौगात मिली है। दरभंगा से नई दिल्ली जाने वाली बिहार संपर्क क्रांति एक्सप्रेस ट्रेन का ठहराव आज से कर्पूरी ग्राम स्टेशन पर शुरू हो गया है। इस मौके पर केंद्रीय मंत्री रामनाथ ठाकुर ने कर्पूरी ग्राम स्टेशन पर रुकी इस ट्रेन को हरी झंडी दिखाकर दिल्ली रवाना किया। बता दें कि भारत रत्न मिलने के बाद जननायक कर्पूरी ग्राम स्टेशन का रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने जायजा लिया था। ट्रेन यहाँ 2 मिनट के लिए रुकेगी। राजस्थान

0: की पाली से एक दिल छू लेने वाली तस्वीर सामने आई है, जिसमें करीब 200 फीट ऊपर हाई वोल्टेज तारों में फंसे एक विदेशी पक्षी ग्रेटर फ्लेमिंगो को सफलतापूर्वक बचाया गया। इस रेस्क्यू के लिए वन विभाग के साथ साथ बिजली विभाग ने भी संवेदनशीलता और तत्परता दिखाई और 200 फीट से भी ज्यादा ऊंचाई पर पहुंचकर फ्लेमिंगो को सुरक्षित नीचे उतारा गया। इसके लिए बिजली विभाग को इमरजेंसी शटडाउन भी करना पड़ा। इस नेक काम में ग्रामीणों ने भी सहयोग किया। बाबा बूढ़ा अमरनाथ के लिए श्रद्धालुओं का दूसरा जत्था पुंज पहुंच गया है। यह मंडी बेस कैंप में श्रद्धालुओं का फूल मालाओं से स्वागत किया गया। बूढ़ा अमरनाथ यात्रा के लिए पहुंचे इस दूसरे जत्थे में देश भर से 1938 श्रद्धालु शामिल हैं। बाबा बूढ़ा अमरनाथ जम्मू कश्मीर के पुंछ जिले की मंडी तहसील के राजपुरा गांव में स्थित भगवान शिव का एक अत्यंत प्राचीन मंदिर है। सिखों के पवित्र तीर्थ गुरुद्वारा श्री हेमकुंड साहिब में तीर्थयात्रियों की संख्या ने पिछले कई सालों का रिकॉर्ड तोड़ दिया है। आंकड़ों के मुताबिक अब तक 2,62,000 श्रद्धालु हेमकुंड साहिब पहुंचकर गुरुद्वारे में मत्था टेक चुके हैं। बड़ी बात यह है कि बारिश, ठंड और पल पर बदलते मौसम के बावजूद श्रद्धालुओं के उत्साह में कोई कमी नहीं है। यात्रा 10 अक्टूबर तक जारी रहेगी। ऐसे में आने वाले दिनों में श्रद्धालुओं की संख्या और बढ़ने की उम्मीद है।
1: और अब बात ऑटो टैक्सी ड्राइवर्स के मराठी टेस्ट की। महाराष्ट्र में टैक्सी और ऑटो रिक्शा चालकों के लिए मराठी भाषा का मुद्दा एक बार फिर गर्मा सकता है। सरकार की ओर से मराठी सीखने के लिए दी गई 100 दिन की मोहलत खत्म हो चुकी है। अब ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट की बैठक में तय होगा कि भाषा की शर्त पूरी नहीं करने वाले ड्राइवर्स पर लाइसेंस या फिर परमिट सस्पेंड करने जैसी कार्रवाई होगी या उन्हें एक और मौका दिया जाएगा।
0: महाराष्ट्र सरकार ने मुंबई समेत पूरे महाराष्ट्र में करीब 2,00,000 गैर मराठी रिक्शा और टैक्सी चालकों के लिए बोलचाल की मराठी सीखना जरूरी किया था। इसके लिए उन्हें 100 दिन की मोहलत दी गई थी, जो मंगलवार को खत्म हो गई।
2: महाराष्ट्र सरकार ने आदेश निकाला था कि जिन टैक्सी और ऑटो रिक्शा चालकों को मराठी नहीं आती, उनके लाइसेंस या परमिट जो है वो कैंसिल किए जाएंगे। मराठी सीखने के लिए 100 दिन का समय दिया गया था, जो अब पूरा हो चुका है और आज से कार्रवाई शुरू होनी थी, लेकिन कुछ संस्थाओं ने मांग की थी कि और समय दिया जाए मराठी सीखने के लिए। हमारे साथ यहाँ टैक्सी चलाते हैं। भाई पहले तो आपका नाम बताइए और इस फैसले को आप कैसे देखते हैं?
3: सर आपका फैसला सुनील कुमार तिवारी जी। सर जी, जो फैसला है वो फैसला तो अच्छा है। मराठी सब जितने भी यहाँ है उनको सीखना तो चाहिए, लेकिन जो समय है समय बढ़ाना चाहिए। सरकार को भी हमारे बारे में सोचना चाहिए। हम भी गरीब हैं, रोज का 500 रुपया 600 रुपया कमाते हैं, उसमें परिवार का पालन पोषण करते हैं, लेकिन जो हमारे ऊपर सरकार है वो दया दृष्टि दिखाना बहुत जरूरी है। और सरकार जी से हम प्रताप सरनाई सर जी से बोलना चाहते हैं कि हमारे लिए थोड़ा तकलीफ, हमें आप समझिए हमारे बारे में।
2: आपने मराठी सीखी और या आपको कब से आती थी मराठी?
3: से मला मुंबई मध्ये 20 वर्ष झाली महाराष्ट्र मध्ये। मी सर्वे मराठी बोलतो साहेब। हाँ, आपल्या काय चुकी झाली हो त्याच्या साहेबला माफी मांगतो मी। पकडे सर्वे टॅक्सीला उभी करा, इथे थांबा, पुढे जावा, सर्वे येतो मराठी मध्ये।
2: आपको लगता है ये फैसले की जरूरत थी, क्योंकि मतलब इतने सालों से चल रहा था, तो आपको लगता है ये फैसला सही है या इसकी जरूरत थी इस फैसले की?
3: जरूरत तो सरकार ने लाई है, हम लोगों तो हमारे लोग मराठी लोग इतने अच्छे हैं बेचारे की बोलने के लिए कोई बोलता ही नहीं है, लेकिन सरकार एक कानून ला रही है तो उसका पालन करना हमारा कर्तव्य तो है, तो उसका कर्तव्य हम करेंगे। लेकिन इतना लाइसेंस रद्द कर दोगे, परमिट रद्द कर दोगे, गाड़ी में कोई प्रॉब्लम हो जाएगा, ऐसा कुछ करोगे तो फिर तो दिक्कत है सर हमारे लिए भी, हमें भी परेशानी है, उसका हमें को झेलना पड़ेगा।
0: ऑटो और टैक्सी चालकों का कहना है कि 100 दिनों में उन्हें पर्याप्त प्रशिक्षण नहीं मिल पाया। उनका कहना है कि वे थोड़ी बहुत मराठी बोल लेते हैं, लेकिन जिन लोगों ने अभी तक मराठी नहीं सीखी है उनके लाइसेंस या बैज रद्द करना उचित नहीं है, क्योंकि इसी काम से उनके परिवार का घर चलता है।
2: शंभू जी, 100 दिन पूरे हो चुके हैं, महाराष्ट्र सरकार ने कहा था कि अगर मराठी नहीं बोलेंगे तो कार्रवाई होगी, लाइसेंस सस्पेंड होगा, कैसे देखते हैं डिसीजन को, क्या कहेंगे? 100 दिन पूरे हो चुके हैं,
3: अभी तो कुछ पता नहीं चल रहा है
2: जी।
3: अभी तो कुछ पता नहीं चल रहा है।
2: आपने सीखी मराठी, आपको आती है?
3: हाँ, मराठी थोड़ा बहुत बोलने तो आता है
2: जी। काम चल जाएगा मराठी?
3: हाँ, काम चल जाएगा।
2: पर क्या आपको लगता है और समय देना चाहिए सीखने के लिए?
3: और समय तो देना चाहिए था।
2: आपका नाम बताइए। और सरकार ने जो फैसला लिया है 100 दिन पूरे, 100 दिन मराठी सीखने का, नहीं तो कार्रवाई होगी, उसके 100 दिन पूरे हो चुके हैं, इस फैसले को कैसे देखते हैं आप?
4: अब हम लोग तो पढ़ लिए हैं, मराठी अब सर्टिफिकेट मिलेगा, मराठी भी समझता हूँ, बोलता भी हूँ।
2: कुछ लोग मांग कर रहे हैं कि और थोड़ा समय देना चाहिए,
4: कुछ लोग नहीं आ पाए हैं ना, इतना एक साथ सबको नहीं हो पाया, उसका टाइम देना चाहिए सबको भाई, अभी सब नहीं पढ़ पाए हैं। सर्टिफिकेट कुछ को मिल रहा, अभी दिए नहीं, मिलेगा हम लोगों को, बोले आरटीओ में।
2: और आप इस फैसले को सही मानते हैं? आपको लगता है सही फैसला है?
4: सही फैसला क्या बोले हम लोग, जो बोलेंगे हम लोगों के विरुद्ध में होता है काम।
2: इसकी जरूरत है आपको लगता है?
4: जरूरत है, हम लोग तो सब भाषा समझता हूँ, इंग्लिश, हिंदी, मराठी, मारवाड़ी, गुजराती, सब भाषा समझता बोलता हूँ, एक ही भाषा का हमें 5-6 भाषा ज्ञान है, मराठी भी बोलता हूँ, मराठी भी आता, हम लोग यहाँ 32 साल से चल रहे हैं।
0: मराठी सीखने के 100 दिन पूरे होने पर तकरीबन सभी ऑटो और टैक्सी चालकों का कहना है कि सरकार को कुछ और मोहलत देनी चाहिए। उनके चेहरे की मायूसी को देखकर ये समझा जा सकता है कि सरकार के इस फैसले से वो कितने बेबस नजर आ रहे हैं।
2: 100 दिन पूरे हो चुके हैं, सरकार ने कहा था जिनको मराठी नहीं आएगी, टैक्सी और ऑटो रिक्शा चालकों को, उन पर कार्रवाई की जाएगी, आप कैसे देखते हैं इस डिसीजन को?
5: हम अभी कुछ नहीं बोल सकता, अभी तो मैं गांव से आया हूं।
2: जी जी, आपका नाम क्या दादा?
5: साबिर
2: जी। इस डिसीजन को आप कैसे देखते हैं? ये फैसला सही लगता है आपको कि मराठी नहीं आएगा तो लाइसेंस आपका कैंसिल हो जाएगा?
5: नहीं, नहीं,
2: फैसला सही नहीं लगता, क्या कहेंगे इस पर?
5: जैसे पहले चल रहा था उसी चलने दो आप। क्या
0: ऑटो और टैक्सी चालकों से बातचीत के दौरान यही मांग सामने आई कि सरकार उन्हें कुछ और समय दे और तुरंत कार्रवाई न करे।
2: अब आपकी सरकार से क्या मांगे? चलिए आपको तो मराठी आती है, आपको तो दिक्कत नहीं होगी, लेकिन जो सीख नहीं पाई है, जिनको नहीं आ पा रही है, आप क्या मांग सरकार से मांग करेंगे?
3: सरकार से यही मांग करते हैं कि पब्लिक सीख रही है, जो टैक्सी वाले, रिक्शा वाले हैं, वो लोग सब सीख रहे हैं, जरूरत है सीखने की, लेकिन आप एक्शन मत लीजिए सर जी, आप सीख रहे हो, सीखेंगे, उनको प्रेशर डालो, सीखेंगे, लेकिन एक्शन ना करिए कि जिससे हम लोग प्रताड़ित हो यहाँ से रहने के लिए।
2: बिल्कुल, तो साफ है कि सरकार का जो फैसला है कि मराठी आनी चाहिए, वो सीखेंगे भी, ये भी तैयारी है, लेकिन यही सरकार से विनती है इनकी कि इसको लेकर सरकार कोई एक्शन ना ले, क्योंकि यही इनकी रोजी रोटी है, और अगर यही सरकार छीन लेगी तो ये कहाँ जाएंगे और क्या करेंगे।
0: वहीं महाराष्ट्र के परिवहन मंत्री प्रताप सरनाइक का कहना है कि सरकार ने गैर मराठी रिक्शा और टैक्सी चालकों को मराठी सीखने के लिए 100 दिन का पर्याप्त समय दिया है। सरकार का दावा है कि अब तक करीब 1,65,000 रिक्शा और टैक्सी चालकों को मराठी सीखने का सर्टिफिकेट दिया जा चुका है। उन्होंने आगे ये भी कहा कि जिन चालकों को मराठी नहीं आती, उनके खिलाफ कानून के तहत प्रक्रिया शुरू की जाएगी।
6: हमारे राज्य में आजू बाजू के राज्य से आने वाले सभी जो रिक्शा टैक्सी ड्राइवर है, उनको यही आह्वान करते हैं कि ये महाराष्ट्र की संस्कृति है, महाराष्ट्र की परंपरा है, मराठी में अभिजात भाषा का दर्जा आदरणीय पंतप्रधान जी ने दिया, उसका आदर करना आपका भी कर्तव्य, जैसे हमारा कर्तव्य है, तो आप भी मराठी सीखिए और इस अभियान में आप भाग ले लीजिए, मगर कानून के खिलाफ अगर कुछ आप करोगे तो उसके ऊपर हमें कार्रवाई करनी पड़ेगी।
0: मराठी को लेकर ये नया नियम पूरे महाराष्ट्र के लिए है। जहां तक मुंबई की बात है तो यहां 48,000 से ज्यादा ऑटो ड्राइवर हैं, जबकि 3,680 से ज्यादा टैक्सी ड्राइवर, जो रोजाना ऑटो टैक्सी चलाकर अपना गुजारा कर रहे हैं, और अब गैर मराठी, खासकर उत्तर भारतीय ड्राइवर नए नियम को लेकर मराठी सीख तो रहे हैं, लेकिन उनका कहना है कि उन्हें कुछ और समय मिलना चाहिए। ऐसे में सबसे बड़ा सवाल यही कि अब सरकार का अगला कदम क्या होगा? क्या मराठी नहीं सीखने वाले ड्राइवरों के लाइसेंस या परमिट सस्पेंड किए जाएंगे, या सरकार उन्हें एक और मौका देगी? मुंबई से दीपेश त्रिपाठी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
1: फिल्म मिर्जापुर द मूवी का नया गाना हो गया है रिलीज। इसके साथ ही फिल्म जगत से जुड़ी कुछ और खबरों को जानने के लिए आइए सीधे चलें फिल्मी मोड़ पर।
0: डायरेक्टर जोया अख्तर की फिल्म जिंदगी न मिलेगी दोबारा में ऋतिक रोशन और कैटरीना कैफ की जोड़ी ने खूब चर्चा बटोरी थी। फिल्म में दोनों के बीच एक किसिंग सीन भी था, जो कैटरीना का पहला ऑन स्क्रीन किस था। अब जोया ने बताया है कि कैटरीना इस सीन के लिए क्यों तैयार हुई। उनके मुताबिक स्क्रिप्ट की जरूरत को समझते हुए कैटरीना ने इसे स्वीकार किया। जोया ने लैला के किरदार की कहानी को स्लीपिंग ब्यूटी और ऋतिक के किरदार को प्रिंस से जोड़ते हुए इस सीन को जरूरी बताया। हनुमान की दुनिया से प्रशांत वर्मा सिनेमैटिक यूनिवर्स का अगला चैप्टर महाकाली लगातार चर्चा में है। फिल्म में अभिनेता अक्षय खन्ना एक बिल्कुल नए अवतार में नजर आने वाले हैं। वो फिल्म में असुरों के शक्तिशाली गुरु शुक्राचार्य का किरदार निभाएंगे। धुरंधर में शानदार अभिनय के बाद अक्षय खन्ना का ये नया अंदाज दर्शकों के लिए खास होने वाला है। फिल्म की पहली झलक 24 अगस्त को सामने आएगी। प्रशांत वर्मा की कहानी और काल्पनिक आधार पर बनी इस फिल्म का निर्देशन पूजा कोल्लूरू कर रही है। महाकाव्य श्री रामायण कथा का पहला पोस्टर और टीजर जारी कर दिया गया है। फिल्म में देव शर्मा भगवान श्री राम की भूमिका में नजर आएंगे, जबकि अंजलि अरोड़ा माता सीता के किरदार से फीचर फिल्म में कदम रख रही हैं। अभिषेक सिंह के निर्देशन में बनी ये फिल्म हिंदी और छत्तीसगढ़ी दोनों भाषाओं में शूट की गई है। प्रकाश महोबिया और संजय बुंदेला ने इसे प्रोड्यूस किया है। फिल्म को एजे फिल्म एंटरटेनमेंट वर्ल्ड प्रस्तुत कर रहा है। श्री रामायण कथा 25 सितंबर को दोनों भाषाओं में सिनेमाघरों में रिलीज होगी।

मिर्जापुर द मूवी को लेकर फैंस का क्रेज लगातार बढ़ता जा रहा है। फिल्म का नया गाना भी रिलीज कर दिया गया है, जिसमें पुराने पसंदीदा गाने वारू फॉर एवर को नए और इमोशनल अंदाज में पेश किया गया है। एक्सेल एंटरटेनमेंट और अमेजन MGM स्टूडियोज ने इस गाने को रिलीज किया है। गुरमीत सिंह के निर्देशन में बनी फिल्म की कहानी पुनीत कृष्णा ने लिखी है। रितेश सिद्धवानी और फरहान अख्तर इसके प्रोड्यूसर हैं। मिर्जापुर द मूवी 4 सितंबर जन्माष्टमी के दिन हिंदी और तेलुगु में सिनेमाघरों में रिलीज होगी।

0: चलिए न्यूज पथ पर खबरों के सफर को आगे बढ़ाया जाए, लेकिन उससे पहले हमें रुकना होगा यहाँ यानी कि वायरल चौक पर। यहाँ देख लेते हैं उन वीडियोस को जो कि सोशल मीडिया में धमाल मचाए हुए हैं। इनमें से कुछ वीडियोस ऐसे हैं जो आपको इमोशनल कर देंगे और कुछ आपको हंसने पर मजबूर।
1: वक्त बदला, उम्र बदली, जिंदगी के रंग भी बदल गए, लेकिन भाई की कलाई और बहन के प्यार का रिश्ता आज भी वैसा ही है। उम्र चाहे कितनी भी हो जाए, थकान चाहे कितनी भी हो, बहन राखी लेकर अपने भाई के घर जरूर पहुंचती है। बचपन में जिस रिश्ते में शरारतें थी, वही रिश्ता उम्र के आखिरी पड़ाव तक प्यार और अपनापन बनाए रखता है। भाई की कलाई पर बंधा ये धागा सिर्फ राखी नहीं, बल्कि बचपन से बुढ़ापे तक साथ निभाने वाले प्यार के निशाने है। कुछ भी हो, बॉडी तो आज ही बनेगी और ड्राई फ्रूट का डब्बा भी आज ही खाली होगा। बालकनी में बैठा ये बंदर भाई बड़े आराम से ड्राई फ्रूट खा रहा है। घर से डब्बा निकाला, आराम से बैठा और अब पूरा डब्बा साफ करने का प्लान है। बंदर का ये अंदाज देखकर ऐसा लग रहा है जैसे उसे किसी बात की कोई जल्दी ही नहीं है। सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे इस वीडियो को देख कर लोग खूब हंस रहे हैं और बंदर की इस हरकत को काफी पसंद कर रहे हैं। एक बच्ची ने गाय को खाना खिलाने की इच्छा जताई तो पापा ने बेटी की खुशी के लिए खुद गाय का रूप धारण कर लिया। कार्डबोर्ड पर गाय की तस्वीर बनाई गई और उसके पीछे पापा छिप गए। बच्ची बड़े प्यार से गाय को खाना खिलाती रही, लेकिन उसे जरा भी अंदाजा नहीं था कि तस्वीर के पीछे उसके पापा छिपे हैं। बेटी की मासूमियत और पापा का ये प्यारा अंदाज लोगों का दिल जीत रहा है। वीडियो देखकर लोग कह रहे हैं, बच्चों की खुशी के लिए पापा कुछ भी कर सकते हैं। अनुशासन हो तो ऐसा और ट्रेनिंग हो तो ऐसी। इस वीडियो में एक प्यारा सा डॉगी अपने ऑफिसर की हर हरकत को बिल्कुल उसी अंदाज में दोहराता नजर आ रहा है। ऑफिसर जैसे जैसे आगे बढ़ते हैं और जो कुछ करते हैं, डॉगी भी उनके पीछे जाकर वैसा ही करने लगता है। डॉगी की समझदारी और शानदार ट्रेनिंग देखकर लोग हैरान हैं। सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा ये वीडियो लोगों को खूब पसंद आ रहा है। डॉगी का अनुशासन और अपने ऑफिसर के साथ तालमेल देखने लायक है। बचपन शायद ऐसा ही होता है जहाँ महंगे खिलौनों से ज्यादा मजा मिट्टी में खेलने में आता है। घर के सामने जमा ऊंची मिट्टी और दो बच्चे, बस फिर क्या था, शुरू हो गया खेल। दोनों बच्चे बारी बारी से मिट्टी के ढेर पर चढ़ते, फिर फिसल कर नीचे आते और दोबारा ऊपर चढ़ जाते। यही सिलसिला लगातार चलता रहा। चेहरे पर हंसी, आंखों में चमक और खेलने का जुनून साफ दिखाई देता है। बच्चों की ये मासूम मस्ती देखकर लगता है असली बचपन तो मिट्टी में ही मिलता है।
0: न्यूज पथ के सफर में अब सोशल अड्डा का रुख करते हैं, जहां आज बात होगी देश की राजधानी दिल्ली की। दिल्ली में साफ सफाई को बढ़ावा देने के लिए एक नया अभियान शुरू किया गया है। दिल्ली की मुख्यमंत्री श्रीमती रेखा गुप्ता ने दिल्ली को कूड़े से आजादी स्वच्छता अभियान 2026 की शुरुआत की है। सीएम ने बताया कि दिल्ली में यह स्वच्छता अभियान 17 अगस्त से 2 अक्टूबर तक चलाया जाएगा। इस अभियान के तहत सार्वजनिक जगहों के साथ ही स्कूलों, सरकारी अस्पतालों, शौचालयों की सफाई भी सुनिश्चित की जाएगी। सीएम ने अपील की है कि सभी लोग इस अभियान में हिस्सा लें और माई सिटी माई रिस्पॉन्सिबिलिटी की फीलिंग के साथ काम करें। सीएम रेखा गुप्ता ने ये घोषणा भी की है कि स्वच्छता के क्षेत्र में बेहतरीन काम करने वाले वार्ड को 1 करोड़ रुपए का इनाम दिया जाएगा। सीएम रेखा गुप्ता ने बताया कि वे दिल्ली के सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स से कहेंगी कि वो कहीं भी कूड़ा दिखाई देने पर 3 लोगों को टैग करें। लोग रील पर दिल्ली सीएम को टैग करें, दूसरा अपने इलाके के विधायक को और तीसरा अपने पार्षद को, ताकि उस जगह पर सफाई सुनिश्चित की जा सके। मुख्यमंत्री ने इस अभियान के लिए 4 C's पर जोर दिया है, जिसमें कलेक्शन, क्लीनिंग, कन्वर्जन और सर्कुलर इकोनॉमी शामिल है। इसके जरिए कूड़े से ग्रीन फ्यूल बनाने का काम किया जाएगा। इसके साथ ही सीएम ने सार्वजनिक स्थानों पर स्वच्छता अभियान, कचरे को स्रोत पर ही अलग अलग करने, सिंगल यूज प्लास्टिक के इस्तेमाल को कम करने का भी आह्वान किया है। उन्होंने बताया कि 23 अगस्त और 30 अगस्त को जेजे क्लस्टर का सफाई अभियान शुरू किया जाएगा। ऐसे ही 6 सितंबर और 13 सितंबर को भी ये सफाई अभियान जारी रखा जाएगा। 17 सितंबर को हर इलाकों के सरकारी अस्पतालों के सफाई अभियान का कार्यक्रम किया जाएगा, जिसमें लोगों से बढ़ चढ़कर शामिल होने की अपील की गई है। वहीं 17 सितंबर से 2 अक्टूबर तक मेरा स्कूल सबसे सुंदर की प्रतियोगिता होगी, जिसमें स्कूलों के मेंटेनेंस की ओर ध्यान दिया जाएगा। दिल्ली को स्वच्छ बनाने के लिए शुरू किए गए इस नए अभियान को लेकर हमने दिल्ली में लोगों से बात की और उनकी राय जानी।
2: राजधानी दिल्ली को साफ सुथरा करने को लेकर के दिल्ली सरकार के द्वारा कूड़े से आजादी नाम की एक मुहिम शुरू की गई है। जो दिल्ली का वार्ड सबसे साफ सुथरा होगा उसके लिए प्रतियोगिता की जाएगी, उसको 1 करोड़ की इनाम राशि दी जाएगी। कूड़ा को साफ सुथरा करने को लेकर के जो दिल्ली सरकार ने कहा है कि 1 करोड़ दिया जाएगा, कितना अच्छा कदम मानते हैं इसको आप?
3: ये तो बहुत ही अच्छा कदम है। आज से कुछ टाइम पहले ही मेरे घर पे पूजा हुई थी। दिल्ली में ऐसी कूड़ों की लेके इतनी समस्या हुई कि फेंकने की जगह नहीं है। कूड़े वाले अलग ड्रामा करते हैं, लाइक एक दिन का कूड़ा आपको 4 दिन के बाद लेके जाएंगे। हर गली में आप देखो तो कहीं कुछ पड़ा है, कहीं कुछ पड़ा है, जिससे बीमारियां फैल रही है, बहुत सी दिक्कतें हो रही है। तो अच्छी बात है कि सरकार इसको लेके सोच रही है, क्योंकि आम जनता सच में बहुत परेशान होती है। और जब बारिश हो जाता है तो कूड़े की वजह से और ज्यादा गंदगी फैलती है।
4: मुहिम केवल कागजों तक सीमित ना रह जाए, इसको इम्प्लीमेंट करना बहुत ज़्यादा जरूरी है। खाली इनाम देने से कुछ नहीं होगा, पेनल्टी भी इम्पोज होनी चाहिए। जो वार्ड सबसे खराब हो उसके ऊपर 1 करोड़ की पेनल्टी भी लगाई जाए, यानी 1 करोड़ ये नहीं कि मुख्यमंत्री के पोस्टर निकाल करके दे दिया जाए। जहाँ पे खराब काम हो रहा है, दिल्ली में कितने सारे वार्ड होंगे, उस वार्ड पे जिसपे पेनल्टी लगी है उसका इनाम उसको दिया जाए, वो ज़्यादा बेहतर है। और ये रिस्पॉन्सिबिलिटी फिक्स की जानी चाहिए किसी न किसी सरकारी अधिकारी के ऊपर, MCD के ऊपर, JE हो, AE हो, या बिल्डिंग डिपार्टमेंट, या जो भी इसका कूड़े का काम करता है उसके ऊपर जिम्मेदारी फिक्स भी होनी चाहिए। योजना तो बहुत अच्छी है। कूड़े को खत्म करने के लिए किसी भी स्तर तक जाना पड़े वो जाना चाहिए। जब कूड़े से हमें आज़ादी मिलेगी तभी लोगों के डेंगू से, मच्छरों से और या बीमारियों से आराम मिल पाएगा।
5: जी ये जो मैंने सुना है अभी कि ऐसा सुनने में आया है कि 1 करोड़ रुपए की राशि मिलेगी जो भी वार्ड पे जिसमें मतलब साफ सफाई और ये सब चीज़ें अच्छी रहेंगी। देखो देखा जाए तो वैसे तो अच्छी चीज़ है, क्योंकि ये क्या है, एक तरीके से कंपटीशन को जन्म दे रहा है। और कंपटीशन में क्या होता है कि इंसान थोड़ी सी मेहनत करता है, तो जैसे अभी तक हम देख रहे हैं साफ सफाई के नाम पे जैसे हम बात करें तो उतनी साफ सफाई नहीं रहती, चाहे उसके पीछे कोई भी वजह हो, किसी भी वजह से हो, साफ सफाई उस तरीके से नहीं है। लेकिन जब कंपटीशन आ गया है तो हो सकता है कि जो भी काउंसलर हैं एरिया के वो इस पे मेहनत करें और अपने उनके नीचे जो भी लोग हैं इसके लिए जो लोग जिम्मेदार हैं उनको भी प्रोत्साहित करेंगे और फोर्स करेंगे कि भाई, क्योंकि जब इसके लिए कंपटीशन रखा गया है तो ये भी है कि जब इसका एक एंड होगा तो कहीं ना कहीं प्रकाशित भी होगा कि फलाने वार्ड पे साफ सफाई के लिए हम इसको पुरस्कार कर रहे हैं। तो जहां तक देखा जाए तो अच्छी योजना है।
0: दिल्ली में यमुना के किनारे एक भव्य रिवर फ्रंट बनाने की तैयारी है, यानी कि यमुना का किनारा सिर्फ नदी और घाट तक अब सीमित नहीं रहेगा, बल्कि यहां पर घूमने फिरने से लेकर मनोरंजन और पर्यटन तक की सुविधाएं विकसित करने का प्लान है।
6: राजधानी दिल्ली की जीवनदायिनी कही जाने वाली यमुना किनारे विकास की नई तस्वीर तैयार करने की मुहिम शुरू हो गई है। गुजरात के साबरमती रिवर फ्रंट की तर्ज पर यमुना रिवर फ्रंट विकसित होगा। इस सिलसिले में दिल्ली के जल मंत्री प्रवेश वर्मा ने अधिकारियों के साथ गुजरात का दौरा कर साबरमती मॉडल का बारीकी से अध्ययन किया।
7: सामने दिल्ली में सबसे बड़ा चैलेंज है यमुना रिवर फ्रंट बनाना, यमुना मैया को साफ करना। हमने साबरमती रिवर फ्रंट से बहुत सारी योजनाओं को सीखा है और हमने उनका प्रेजेंटेशन भी लिया है, उनके अधिकारियों को एक बार दिल्ली में भी बुलाकर पूरा समझेंगे।
6: यमुना रिवर फ्रंट को आधुनिक, आकर्षक और पर्यावरण के अनुकूल बनाया जाएगा और साबरमती मॉडल को दिल्ली की जरूरतों के मुताबिक लागू किया जाएगा। योजना के तहत यमुना किनारे खूबसूरत वॉकवे, साइकिल ट्रैक के साथ ही खेल और मनोरंजन से जुड़ी सुविधाएं विकसित की जाएंगी। कालिंदी कुंज के पास करीब 60 करोड़ रुपए की लागत से आधुनिक छठ घाट का निर्माण किया जाएगा। पारंपरिक धोबी घाटों को व्यवस्थित कर वहां आधुनिक मैकेनाइज्ड लॉटरी मशीनें लगाई जा सकती है। इसके साथ ही यमुना किनारे पर्यटन को बढ़ावा देने पर भी जोर रहेगा। हालांकि यमुना रिवर फ्रंट की सबसे बड़ी चुनौती नदी की सफाई और पर्यावरण संरक्षण रहेगा, जिसके लिए लगातार काम किए जा रहे हैं और आगे भी सीवेज प्रबंधन, जल प्रदूषण और नियंत्रण और यमुना के इकोसिस्टम को सुरक्षित रखने पर खास ध्यान दिया जाएगा। यमुना रिवर फ्रंट की इस योजना के मुकम्मल होने के बाद दिल्ली की एक अलग तस्वीर नजर आएगी, जो सेहतमंद होने के साथ आकर्षक भी होगी। नर्मदा से नरेंद्र पेपरवाला के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, विद टुडे।
8: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, मोड़ इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छा।
9: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर। असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
10: और दुर्भाग्य कहता है
11: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
12: अविश्वास में विश्वास बसता है,
9: जो हम में अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
13: गुड न्यूज टुडे,
8: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से।
14: हॉकी वर्ल्ड कप में भारत ने पाकिस्तान को 5-3 से हराया, टॉप 8 में पहुंची टीम इंडिया, कप्तान हरमनप्रीत और अभिषेक ने दागे 2-2 गोल। जम्मू कश्मीर दौरे पर अमेरिकी राजदूत सर्जियो गोर, श्रीनगर की डल लेक में की शिकारा की सवारी, घाटी की मेहमान नवाजी के मुरीद। मौसम की चुनौतियों के बीच हेमकुंड साहिब यात्रा में रौनक, अब तक 2.5 लाख से ज्यादा श्रद्धालुओं ने टेका मत्था, 10 अक्टूबर तक जारी रहेगी पवित्र यात्रा। सावन के पवित्र महीने में देख रहे हैं शिव भक्ति के अनोखे रंग, मुंगेर में भव्य कांवड़ यात्रा बनी आकर्षण का मुख्य केंद्र, श्रद्धालु बैद्यनाथ धाम में करेंगे जलाभिषेक। महाराष्ट्र में गणेश उत्सव की तैयारियां तेज, अकोला में बप्पा की प्रतिमाओं को अंतिम रूप दे रहे हैं कारीगर, 14 सितंबर से शुरू होगा उत्सव।

गुड न्यूज टुडे देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ वैभव राज शुक्ला। स्वागत है आपका हमारे विशेष कार्यक्रम में, जहां हम बात कर रहे हैं बप्पा की। इनके आगमन के दिन अब बहुत करीब रह गए हैं और इसलिए मुंबई में उनके स्वागत की तैयारियां जबरदस्त तरीके से लगातार जारी हैं। बड़े मंडपों में बप्पा की प्रतिमा और उनके दरबार की सजावट का काम तेजी से चल रहा है। आज आपको लिए चलेंगे लालबाग चौराजा मंडप में, जहां पर मुख्य द्वार का काम लगभग पूरा होने को है। आपको मंडप की सजावट और थीम के बारे में विस्तार से हम समझाएंगे भी। इसके बाद देखिए मुंबई के ही काला चौकी के महागणपति की प्रतिमा के आज हम दर्शन कराने जा रहे हैं, जिन्हें मंडप में बड़े ही धूमधाम के साथ लाया जा चुका है और अब उनकी सज्जा का काम शुरू हो चुका है। गणपति उत्सव को देखते हुए मुंबई के बाजारों और दुकानों में जबरदस्त रौनक है। बप्पा की प्रतिमा और उनके दरबार को सजाने वाली चीजों की भारी डिमांड इस वक्त देखने को मिल रही है। आज आपको बप्पा के लिए बन रहे आसन और सिंहासन दिखाएंगे, जिनकी भारी डिमांड है। शुरुआत करते हैं लालबाग के राजा के साथ। देखिए मुंबई में गणेश उत्सव की तैयारियां जोर पकड़ चुकी हैं और अब इंतजार बस बप्पा के आगमन का है। लालबाग चौराजा का भव्य मंडप दिन रात की मेहनत से आकार ले रहा है। धीमे धीमे 93वें साल में प्रवेश कर रहे लालबाग चौराजा के दर्शन करने के लिए हर साल देश विदेश से लाखों श्रद्धालु पहुंचेंगे। इसलिए पंडाल की सजावट से लेकर भक्तों की सुविधा और भीड़ प्रबंधन का खास तैयारियां उनके लिए की जा रही हैं। बप्पा की प्रतिमा से पर्दा गणेशोत्सव से एक दिन पहले उठेगा, जिसके लिए उत्सुकता भी है और इंतजार भी। देखिए लालबाग चौराजा से हमारी खास रिपोर्ट।

0: गण नायकाय गण देवताय गणाध्यक्षाय धीमहि गुरु शरीराय गुणमंडिताय गुणेशानाय धीमहि एक दंताय वक्रतुंडाय गौरी तनाय धीमहि गजेशानाय भालचंद्राय श्री गणेशाय धीमहि। बापा के आने की शुभ घड़ी है और सबसे ज्यादा इंतजार लाल बागचा राजा के दर्शन का है। अब ज्यादा दिन बाकी नहीं जब यहाँ मुंबई का सबसे भव्य मंडप सजकर तैयार होगा, जिसमें नव साचा गणपति यानी मन्नतों के राजा की विशाल प्रतिमा विराजमान होगी। लेकिन उससे पहले अनगिनत काम है। वैसे तो 9 जून को ही पूजा के साथ उत्सव की तैयारियां शुरू हो चुकी हैं। और देखिए कैसे दिन रात काम करते हुए पंडाल का भव्य मुख्य द्वार लगभग तैयार है।
1: इसी रास्ते से विसर्जन के समय लालबाग के राजा बाहर की तरफ आते हैं और इसी सड़क पर बेसब्री से लाखों की तादाद में जुटे जो श्रद्धालु हैं वो लालबाग के राजा का अंतिम दर्शन करने के लिए घंटों खड़े रहते हैं। ये वही मुख्य द्वार है, ये वही भव्य बड़ा सा गेट है जहां पर लोग पहुंचकर सेल्फीज निकालते हैं, क्वालिटी जो तस्वीरें हैं वो शूट करते हैं और यहां पर आकर के इसकी जो शोभा है, जो सुंदरता है वो देखते हैं। आपको बताएं कि पिछली बार मुख्य द्वार को तिरुपति बालाजी का अवतार दिया गया था, उसका स्वरूप दिया गया था, लेकिन इस बार जो जानकारी मिल रही है कहीं ना कहीं भोलेनाथ को इस मुख्य द्वार से जोड़ा जाएगा। गौरतलब है कि सावन चल रहा है, ऐसे में जो जानकारी हमारे पास मिली है सूत्रों के मुताबिक जो हमें खबर मिली है इस बार बद्रीनाथ या केदारनाथ की थीम पर ये भव्य गेट बनाया जाएगा। आपको बताएं कि इसका काम शुरू हो चुका है, तकरीबन 1.5 महीने पहले से ही लाखों रुपए इस भव्य गेट के लिए लगते हैं। इस तरह के लालबाग के राजा पर कुल 3 गेट बनाए जाते हैं जहां से श्रद्धालु कतारों में होते हुए लालबाग के राजा का दर्शन करने के लिए पहुंचते हैं। बस यहां पर ज्यादा से ज्यादा 500 से 600 मीटर की दूरी पे ही लालबाग के राजा विराजमान है जहां पर उनकी प्रतिमा बनाने का काम शुरू है। हालांकि पर्दे से उन्हें अभी छिपाया गया है और एक दिन प्रेस कॉन्फ्रेंस ली जाएगी और उस दिन ही पहली बार लालबाग के राजा का दर्शन जो है वो दिया जाएगा।
0: जैसी शोहरत इस पंडाल की है उसी के अनुरूप हर साल इसकी सजावट होती है। बारीक नक्काशी, मनमोहक शिल्प और अद्भुत मूर्तियां, अभी तो ये झांकी है लेकिन इसे देखकर अंदाजा लगाया जा सकता है कि लालबाग के राजा का मंडप इस साल कितना भव्य और दिव्य होगा। इस साल लालबागशा राजा पंडाल अपने 93 साल में प्रवेश कर रहा है। हर साल की तरह इस साल भी भक्तों के मन में सवाल है कि बापा की प्रतिमा कैसी होगी, उनकी सज्जा कैसी होगी। लेकिन जहां प्रतिमा बनाई जा रही है वो जगह कपड़े से ढकी हुई है। हमेशा की तरह प्रतिमा से पर्दा गणेशोत्सव के एक दिन पहले उठेगा।
1: लालबाग के राजा जहां पर स्थापित हैं, इस जहां पर उनकी प्रतिमा बनाने का काम चल रहा है, मैं उस जगह पे मौजूद हूं। ये आप देख रहे हैं तस्वीर, चारों तरफ से पैक किया गया है और यहां पर ही लालबाग के राजा को बनाने का काम जो है शुरू है। आप देखें बैरिकेड्स वगैरह सारे लगा दिए गए हैं। नॉर्मली यहाँ पर किसी को आने जाने अब नहीं दिया जा रहा है, लेकिन जो कोई भी लालबाग के राजा की उस पत्थर वाली प्रतिमा को जाकर श्रद्धा करना चाहता है, पूजा करना चाहता है, तो वो यहाँ पहुंच जाते हैं। खास बात यह है कि वो जगह है जिसे मन्नत की लाइन कही जाती है, मन्नत की कतार कही जाती है। यही वो जगह है जहां पर 8-10 घंटे लाइन में खड़े होने के बाद बप्पा के पास पहुंचा जाता है, तब जाकर के उनके पैर छूने का मौका मिलता है। थोड़ा सा देखें किस तरीके से एक बहुत ही भव्य तरीके से यहाँ पर लालबाग के राजा का दरबार सजाने का काम जो है शुरू है।
0: मुंबई के लालबागचा राजा देश के सबसे प्रसिद्ध गणपति मंडलों में शामिल हैं, जहाँ हर साल महाराष्ट्र ही नहीं बल्कि पूरे देश और विदेश से भी लाखों श्रद्धालु भगवान गणेश के दर्शन के लिए पहुँचते हैं। आम लोगों के साथ नेता, अभिनेता और उद्योगपतियों का तांता लगा रहता है। ऐसे में मंडल का सबसे ज्यादा फोकस भीड़ को कंट्रोल करने और भक्तों को बेहतर सुविधा देने पर होता है। बारिश के दिन है लिहाजा सावधानी ज्यादा है।
1: मुंबई शहर की इन ऊंची ऊंची इमारतों के बीच लालबाग के राजा का दरबार है। कोशिश करते हैं तस्वीरों के माध्यम से दिखाने की कि किस तरह की व्यवस्था और किस तरह की तैयारी गणेश उत्सव को लेकर की जा रही है। गौरतलब है कि 14 सितंबर से मुंबई, महाराष्ट्र और ये पूरा देश जो है गणेश का महाउत्सव मनाने वाला है। पूरे देश भर में लालबाग के राजा का नाम बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा चर्चित है। अलग अलग राज्यों से लोग दर्शन करने के लिए आते हैं और तस्वीरों के माध्यम से आप देखें किस तरीके से पूरी तैयारी शुरू हो चुकी है। आप सामने देखें बकायदा टेंट लगा दिया गया है क्योंकि इंद्र देवता बहुत ज्यादा इस समय मुंबई में प्रसन्न है। अच्छी खासी बारिश हो रही है और जब घंटों कतार में खड़े रहने वाले जो श्रद्धालु हैं बप्पा तक पहुंचते हैं तो उनकी सुरक्षा और उनको लेकर के ठीक ठाक व्यवस्था किस तरीके से लालबाग द्वारा की जाती है ये दिखाने का हम पूरा प्रयास कर रहे हैं। सामने जो आप टेंट देख रहे हैं यहाँ पर ही घूम घूम कर लंबी लंबी कतारें लगाई जाती हैं जिसमें मुख दर्शन भी होता है और उनके पग का भी दर्शन होता है। साथ ही आपको बताएं कि ये वही मुखद्वार है जहां से लालबाग के राजा विसर्जन के लिए सीधे बाहर की तरफ आते हैं। आप देख रहे हैं संतरे कलर का यानी कि ऑरेंज कलर का टेंट है और यहां से ही वीआईपी, वीवीआईपी और तमाम वो श्रद्धालु जो बप्पा तक पहुंचते हैं वो भीतर की तरफ जाते हैं और इस टेंट के एकदम आखिरी में बप्पा के निर्माण कार्य जो है चल रहा है। हालांकि अभी लालबाग के राजा को दिखाया नहीं जा रहा है।
0: जहां लालबागचा राजा का पंडाल है उसी परिसर में एक मशहूर बाजार है। आम दिनों में यहां काफी भीड़ भाड़ होती है, रौनक रहती है। रोजमर्रा की चीजों के अलावा यहां पूजा पाठ का सामान मिलता है, लेकिन गणेश उत्सव शुरू होते ही ये बाजार बंद कर दिया जाता है। लेकिन बापा के आने की खुशी ऐसी होती है कि दुकान बंद करने का मलाल यहां किसी दुकानदार को नहीं होता। लालबागचा राजा का पंडाल तो सज ही रहा है, बापा के स्वागत के लिए बाजार भी तैयार है। बापा आएंगे तो धूम होगी, सजावट होगी, उनके लिए भव्य आसन और सिंहासन की जरूरत होगी। डिमांड ज्यादा है और समय कम, इसलिए जोर शोर से काम शुरू हो चुका है। मुंबई में लालबाग के राजा पंडाल से सटी गली में सहेली नाम की कार्यशाला में अभी से गणेश भक्तों की भारी भीड़ है क्योंकि यहां बाप्पा के लिए एक से बढ़कर एक आसन है।
2: के राजा का जो मंडल है उससे ठीक सटी एक गली है और गली में ही एक ऐसी कार्यशाला है जहां पर गणपति बप्पा को सजाने का काम बहुत ही तेजी से चल रहा है। उनके सिंहासन, उनके आसन को एक से बढ़कर एक रंग रूप दे करके बनाया गया है। थोड़ा तस्वीरों में देखें, एक से बढ़कर एक सिंहासन इस समय गणपति बप्पा गणेश जी के लिए जो है यहाँ बनाकर रखे हैं। गौरतलब है कि 14 सितंबर से गणेश उत्सव पूरा देश मनाने वाला है। ऐसे में हर कोई चाहता है कि अपने घरों में यानी कि घर गृहती जो गणेश जी ले जाएंगे उन्हें जिस सिंहासन पर बिठाया जाए वो उनका पसंदीदा हो, डिमांडिंग हो और कहीं ना कहीं ट्रेंडिंग भी हो। यही वजह है कि आप देखें एक बहुत बड़ी कार्यशाला इस समय यहाँ पर है और लोग यहां पर ढेरों की तादाद में पहुंच रहे हैं, अपने पसंदीदा एक से बढ़कर एक सिंहासन भी बना रहे हैं। आकर्षित का केंद्र वैसे तो बहुत सारे हैं लेकिन ये जरा सा वाटर वॉल पेपर देखें, इसे गणेश जी के ठीक पीछे रख दिया जाएगा और जब बप्पा इसके समक्ष बैठेंगे, विराजमान होंगे तो आप समझ सकते हैं किस तरह की खूबसूरती देखने को मिलेगी। साथ ही साथ ये देखिए कितनी प्यारी सी रुद्र के साथ में शिवलिंग का भी अवतार यहां पर किया गया। इस तरह की एक से बढ़कर एक प्रतिमाओं से गढ़ी एक से बढ़कर एक सिंहासन आसन जिसे छोटे छोटे मंडप भी कहे जाते हैं वो बनाने का काम है।
0: कहने की जरूरत नहीं कि ऐसे खूबसूरत आसन बापा की प्रतिमा की भव्यता और बढ़ाते हैं, इसलिए गणेशोत्सव में इनकी जबरदस्त मांग होती है। 25 सालों से काम कर रही सहेली कार्यशाला में गणेश भक्तों के लिए ऑप्शन भी ढेर सारे हैं। पंढरीचा रूप आसन, श्री सिंहासन, सुखहर्ता आसन, मौर्या आसन, वक्रतुंड आसन, मंगल मूर्ति आसन, स्वामी समर्थ आसन, स्वराज आसन, बापा के लिए जिसे जो पसंद आ जाए।
3: आप देख सकते हो कि हमारे सबसे ज्यादा विट्ठल पंडरीनाथ की है, शंकर भगवान की है, जैसे आप लोग अभी ये साल सबसे ज्यादा चला वो स्वामी समर्थ का है। अच्छा। आज का ट्रेंड चलो स्वामी समर्थ का, तो स्वामी समर्थ का हम लोग इसमें तीन साइज बना के रखे। हाँ। हमारे यहाँ आपको हर चीज में इसमें तीन साइज मिलेंगे, छोटा मीडियम और बड़ा, ऐसे तीन मिलेंगे। हाँ। जैसे आपका बापा होंगे वैसे वो साइज के आपको करके ये मिल जाएंगे सब।
2: हमारे लंबाई बापा की होगी उतनी साइज में आप सिंहासन बनाएंगे। यहाँ भी मैं देख रहा हूँ बहुत सारे लोग राजा पंढरीचा,
3: ये राजा पंडित विठल के हैं, एक नाम है उनका राजा पंडित है। जैसे गणपति का नाम है वक्रतुंड मनोदर, हम लोग वो नाम पे वो थीम पे सुकरता है, लंबोदर है, वक्रतुंड है, अलग अलग नाम पे मोरे है। जैसे गणपति बापा का नाम है वैसे हम लोग उसके नाम पे भी बनाए, वो सब अलग अलग चीज का आपको मिल सकता है हमारे यहाँ।
2: अच्छा, मैंने देखा एक दो लोगों ने आपसे छत्रपति शिवाजी महाराज की भी सिंहासन मांगी, वो भी
3: है हमारे यहाँ। महाराजा के शिव महाराजा के राज्याभिषेक का सिंहासन वो भी रखे, जिसके साथ में उनके मावड़े भी रखे हुए है। अच्छा। कि अगर आप घर पे बना सकते हो तो आपको अलग से मावड़ा चाहिए तो मावड़े भी मिल सकते हैं, जो फोल्डिंग पूरे आते हैं। मैम
0: बापा घर आएंगे तो उनके लिए सिर्फ आसन या सिंहासन ही नहीं चाहिए, उनकी प्रतिमा को सजाने का भी सामान जरूरी है। दरबार को सजाने के लिए भी खूबसूरत चीजों की आवश्यकता होती है। मुंबई के बाजारों में गणेशोत्सव से जुड़ी ऐसी तमाम चीजों की भरमार है। सहेली कार्यशाला में इसके लिए कई ऑप्शन हैं।
3: जैसे कि आप देखते हो कि फ्लावर्स में जो है, फ्लावर्स में काफी जो न्यू आइटम्स है, जो पूरा वेल्स लगा है वो टाइप के, आपको सिंहासन मिलेंगे जो जो मेटल के आते हैं, बापा के पगड़ी से पगड़ी मिलेंगे, बापा की शाल मिलेंगी, रुमाल मिलेंगे, हार मिलेंगे, एक रूफ के नीचे आपको सब आइटम्स मिल जाएंगे, लाइट्स भी मिल जाएंगे सर।
0: मुंबई के अलग अलग इलाकों में अलग अलग बाजारों में बापा की प्रतिमा और उनके दरबार की साज सज्जा के लिए मुकुट, साफा, आर्टिफिशियल फूलमाला और ग्रास शीट जैसी चीजों की अभी से भरमार है। बाजारों में रौनक है और ऐसी कार्यशाला में भारी भीड़। मुंबई से धर्मेंद्र दुबे के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
4: मुंबई की गलियों में गणपति बप्पा मोरिया की गूंज सुनाई देने लगी है और इसी के साथ शुरू हो गई है बप्पा के भव्य स्वागत की तैयारियां। साज सज्जा के लिए कला चौकी के 22 फीट ऊंचे महागणपति के पहले ही पंडाल में आगमन हो चुका है। ढोल नगाड़ों और जयकारों के साथ जब भक्त बप्पा को लेकर पहुंचे तो रौनक देखने वाली थी। इस बार महागणपति महालक्ष्मी के स्वरूप में विराजेंगे और पंडाल को भी सोलापुर के महालक्ष्मी मंदिर की तर्ज पर सजाया जाएगा। 71 साल पुराने इस मंडल में हर साल कुछ नया देखने को मिलता है जिसका भक्तों को खास इंतजार रहता है। रिपोर्ट देखिए।

0: साल जिसका इंतजार होता है वो घड़ी बेहद करीब आ चुकी है। चंद रोज में ही मुंबई की सड़कें गलियां इस जय घोष से गूंजने वाली हैं। गणपति बाप्पा मोरिया, मंगल मूर्ति मोरिया। 14 सितंबर से गणेशोत्सव की शुरुआत है और उसकी तैयारी अभी से शुरू हो चुकी है। गणपति की प्रतिमाएं धूमधाम से पंडालों तक जा रही हैं। ढोल नगाड़ा बजाते, नाचते गाते भक्तिभाव के साथ मुंबई के काला चौकी के महागणपति को पंडाल में लाया गया। हजारों की संख्या में भक्त जयकारा लगाते प्रतिमा के साथ चले। इस तरह काला चौकी के 22 फीट ऊंचे महागणपति का उनके पंडाल में आगमन हो गया। सिंह पर सवार बाप्पा इस साल महालक्ष्मी जी के अवतार में है और हमेशा की तरह बाप्पा की ये प्रतिमा दिव्य और भव्य है।
1: बड़े बड़े पंडाल अपने बप्पा को अपनी जगह पर लेकर आना शुरू हो चुके हैं। फिलहाल इस समय मौजूद हूँ साउथ मुंबई के काला चौकी के महागणपति के दरबार में और आप देखें बहुत ही सुंदर भव्य तरीके से बप्पा को यहाँ पर विराजमान कर दिया गया है। आपको बताएं कि महालक्ष्मी के अवतार में गणपति बप्पा को ले आया गया है। फिलहाल यहाँ बात करें इन बप्पा की तो 22 फीट की ऊंचाई है। ट्रॉली से सिंह पर बाकायदा बप्पा सवार हैं और खास बात यह है कि जो ट्रॉली रखी गई है जिस जगह पे उसके नीचे बहुत ही सुंदर तरीके से रंगोली भी निकाली गई है, बनाई गई है, ठीक उसके ऊपर बप्पा को विराजमान करा गया है। और कुछ घंटों पहले बहुत सारे तस्वीरें, बहुत सारे वीडियोस सोशल मीडिया पर बप्पा के आगमन को लेकर के वायरल हुए थे जिसमें हजारों की तादाद में जो गणेश भक्त हैं वो जुटे हुए थे और हर कोई बप्पा का स्वागत कर रहा था।
0: काला चौकी इलाके में महागणपति का पंडाल अपनी भव्यता के लिए मशहूर है। न सिर्फ विशाल प्रतिमा बल्कि मन को मोह लेने वाली दिव्य साज सज्जा। सबसे बड़ी बात ये कि इसमें महाराष्ट्र की संस्कृति और परंपरा को संजोया जाता है।
2: हर साल स्वरूप महागणपति का बदलता है। कभी महागणपति पांडुरंग विट्ठल के रूप में आते हैं, कभी सरस्वती के रूप में आते हैं, कभी भोले शंकर के रूप में आते हैं, तो कभी कान्हा नटखट बन के आते हैं। ये साल महालक्ष्मी का रूप, यानी महालक्ष्मी यानी क्या, स्थैर्य, शांति, संपत्ति, जो आजकल हर एक को आशीर्वाद के रूप में महागणपति देने आ रहे आ गए हैं। और इसी का जो हमारी झांकी बनेगी, डेकोरेशन बनेगा, वो भी उसी का एक कोल्हापुर के महालक्ष्मी मंदिर का जो कंपोनेंट्स है, जो छवि है, वही आपको देखने को मिलेगी। इसलिए मैं आपके ओर से हमारे सभी भक्तों को विनती करता हूँ कि ये महालक्ष्मी का रूप, महालक्ष्मी का रूप महागणपति का, आप इस कोल्हापुर के महालक्ष्मी के मंदिर में देखने आइए।
0: महागणपति की प्रतिमा आ चुकी है, अब इसकी सजावट पर काम शुरू हो जाएगा। लेकिन अभी से जोश ऐसा है कि हजारों की तादाद में भक्त दर्शन के लिए आने लगे हैं। कार्यकर्ताओं में जोश है और महागणपति मंडल के कर्ता धर्ता दिन रात काम में जुटे हैं। काला चौकी महागणपति मंडल में बाप्पा का स्वरूप हर साल बदलता है। इस साल बाप्पा महालक्ष्मी स्वरूप में पधारे हैं और उनका पंडाल भी सोलापुर के महालक्ष्मी मंदिर की तर्ज पर सजाया जाएगा, जिसकी पहली झलक गणेशोत्सव के पहले दिन देखने को मिलेगी।
2: महागणपति का आगमन सोलह, हम लोग सिर्फ आगमन नहीं करते, तो एक परंपरा उसमें जताते हैं। महाराष्ट्र की जो परंपरा है, जो आजकल कम होती जा रही है और वो सिर्फ उनके जगह पे ही दिखाई जाती है, उनको हम सब मुंबई में लेके आते हैं। पालखी जो होली में हमारे कोकण में नचाई जाती है, वो कोली हमारे सब कोकण के बांधव वो पालखी लेके आते हैं और महागणपति के जो रुपेरी पैर रहते हैं उनको वो पालखी में रखते हैं। हमारे कोली भाई बहन रहते हैं वो उनका नृत्य प्रकार यहाँ पे दिखाते हैं। मर्दानी खेल जो रहते हैं, जो शिवकालीन छत्रपति शिवाजी महाराज जी के कालखंड से ये चलते आ रहे, वो भी हमारे ये पारंपरिक आगमन सोलह में रहते। इसलिए ये सब मैनेज करने के लिए हमें एक महीने का वक्त तो लगता ही है।
0: काला चौकी महागणपति मंडल के 71 साल हो चुके हैं। हर साल ये मंडप अपनी साज सज्जा का नया कीर्तिमान बनाता है। और उम्मीद की जा रही है कि इस साल भी गणेश उत्सव में यहाँ कुछ अलग कुछ नया देखने को मिलेगा। आपको बता दें कि काला चौकी के महागणपति के आसपास कई बड़े पंडाल हैं जो देश भर में मशहूर हैं। इसी इलाके में लाल बाग का राजा, चिंतामणि का राजा, गणेश गली, चिंच पोकली का राजा और परेल का राजा जैसे पंडाल हैं। और जब गणेश उत्सव प्रारंभ होगा ये पूरा इलाका ही एक विशाल धर्म स्थल में तब्दील हो जाएगा और महागणपति के इस पंडाल में दर्शन के लिए लाखों भक्त पहुंचेंगे।
1: और धीरे धीरे ये जो पूरा परिसर है महालक्ष्मी के मंदिर के रूप में बदल जाएगा और उसके बाद लंबी लंबी कतारें श्रद्धालुओं की यहाँ पर लगेगी, घंटों लोग यहाँ खड़े होंगे, फिर चाहे इंद्र देवता बरस ही क्यों ना रहे हों, लेकिन फाइनली कितनी भी थकावट हो जाए बप्पा के समक्ष आकर लोग खुद को बहुत ज़्यादा तंदुरुस्त समझेंगे, बहुत ज़्यादा फ्रेश समझेंगे और बप्पा के आशीर्वाद के साथ अपनी मनोकामना बप्पा के समक्ष रखेंगे। वीडियो जर्नलिस्ट स्वागत खां के साथ धर्मेंद्र दुबे, गुड न्यूज़ टुडे मुंबई।
3: मुंबई नहीं, आपको बता दें महाराष्ट्र के
4: क्या आप सोते समय परेशान रहते हैं? क्या आप पलंग पर फैल कर सोते हैं? क्या आपको सोने के लिए सहारे की जरूरत पड़ती है? आपके सोने का तरीका आपके मन के बारे में क्या बताता है, जानिए मेरे साथ सिर्फ गुड लक टुडे में।
5: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है
6: और दुर्भाग्य कहता है
7: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
8: अविश्वास में विश्वास बसता है
9: जो हमें अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
10: गुड न्यूज टुडे।
11: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे। देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
12: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है कम से।
13: देश के कई हिस्सों में बारिश का दौर जारी है, इससे कई जगह बाढ़ जैसे हालात बने हुए हैं। इन सब के बीच राहत और बचाव का काम भी लगातार चल रहा है। एक रेस्क्यू ऑपरेशन समंदर में भी चलाया गया, तो हिमाचल प्रदेश में बारिश को लेकर मौसम विभाग का अलर्ट भी है।
14: बारिश की वजह से देश के कई हिस्सों में बाढ़ जैसे हालात बने हुए हैं। इन सब के बीच जगह जगह लोग बेबस नजर आते हैं।
15: एक छोटा बच्चा आया है।
14: इनके लिए रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया जा रहा है। राहत और बचाव की टीमें जरूरतमंदों तक खाने पीने का सामान पहुंचाने के साथ ही लोगों को सुरक्षित स्थान तक पहुँचाने का भी काम कर रही है। बारिश और बाढ़ को लेकर जारी रेस्क्यू ऑपरेशन के अलावा समंदर में मुश्किल हालात के बीच फंसे लोगों की जान भी बचाई जा रही है। गुजरात के नवसारी की ये तस्वीरें देखिए। यहाँ समंदर में फंसे मछुआरों को एयरलिफ्ट कर सुरक्षित बचाया गया। समंदर में एक नाव के डूबने की स्थिति में होने की जानकारी मिलने पर कोस्ट गार्ड ने तत्काल हेलीकॉप्टर के जरिए रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया और नाव में सवार सभी 9 मछुआरों को एक एक कर सुरक्षित बचा लिया।
16: के जलालपुर तहसील के कृष्णपुर गांव से एक फिशिंग बोट वलसाड़ की ओर जाने को रवाना हुई थी, जिसमें 9 लोग सवार थे। जयेश भाई कंडेल की ये जो बोट थी वो धोलाई मरीन बंदर से 2.5 नोटिकल माइल के दूरी पर सिंक होना स्टार्ट हुई थी। 9 लोगों का रेस्क्यू कॉल हमें कंट्रोल रूम में मिला था, उसमें ये सब 9 लोगों को रेस्क्यू करने के लिए पहले NDRF की टीम से आयोजन किया था, फिर पता चला कि भाई ये अपने कोस्ट गार्ड के चोपर के मदद से ही रेस्क्यू करना पड़ेगा। तो कोस्ट गार्ड के जो कमांडेंट साहब है उनसे मैंने बात की थी। नवसारी जिला कलेक्टर श्री मनीष गुरवानी साहब ने कोस्ट गार्ड के DIG साहब से बात करते ही तुरंत उन्होंने चोपर भेजा था।
14: रेस्क्यू कर सभी 9 मछुआरों को समंदर तट पर सुरक्षित उतार दिया गया। वहीं ओडिशा में बाढ़ के पानी में बहे एक व्यक्ति का भी रेस्क्यू किया गया। ओडिशा के बाढ़ प्रभावित भद्रक जिले की ये तस्वीर देखिए। बालीपाटना इलाके के तारनगर गांव के रहने वाले सुनंदा बेहरा ताड़ के पेड़ को पकड़कर भूखे प्यासे 5 दिन तक इसी तरह अपनी जान बचाते रहे। ODRAF की टीम को सुनंदा बाजापति पाड़िया इलाके में मिली, वहां से रेस्क्यू कर उन्हें बालीपाटना मेडिकल सेंटर ले जाया गया जहां उनका इलाज चल रहा है। मैदान से लेकर पहाड़ तक में हो रही बारिश मुश्किल का सबब बन रही है। उत्तराखंड में ऋषिकेश से लेकर देहरादून तक में SDRF और पुलिस की टीम रेस्क्यू ऑपरेशन में पसीना बहाती नजर आ रही है। ऋषिकेश में पानी के तेज बहाव में फंसी एक गाड़ी के ऊपर जवान रस्सी के सहारे पहुंचे और फिर गाड़ी के अंदर से एक एक कर दोनों लोगों को सुरक्षित बाहर निकाला। वहीं देहरादून के विकास नगर में स्वर्णा नदी में फंसे 6 छात्रों को भी SDRF के जवानों ने काफी मशक्कत के बाद सुरक्षित रेस्क्यू किया। उत्तराखंड में भारी बारिश की वजह से नदी नाले उफान पर हैं, जिसको देखते हुए प्रशासन अलर्ट मोड में है और लोगों से सतर्कता बरतने की अपील की जा रही है। हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला समेत जगह जगह बारिश का दौर देखने को मिल रहा है। इन सब के बीच मुश्किल हालात में फंसे लोगों का रेस्क्यू भी किया जा रहा है। हिमाचल प्रदेश में मॉनसून सक्रिय है और इसके चलते 22 अगस्त तक बारिश का दौर जारी रहने का अनुमान है, जिसको लेकर मौसम विभाग ने अलर् ट भी जारी किया है।
10: 19 अगस्त को हमीरपुर, चंबा, कांगड़ा, मंडी, शिमला, सिरमौर और यहाँ पे एक दो स्थानों में हैवी रेनफॉल का येलो अलर्ट जारी किया गया। उसके उपरांत 20 और 21 अगस्त को चंबा, कांगड़ा, कुल्लू, मंडी यहाँ के लिए येलो कैटेगरी में हैवी रेनफॉल का येलो अलर्ट जारी किया गया। फिर उसके उपरांत देखिए 22 अगस्त को जो वेदर एक्टिविटी है उसकी इंटेंसिटी में काफ़ी कमी आएगी। हालांकि 22 अगस्त को जो हमारी जो वेदर एक्टिविटी है वो जो हमारे क्षेत्र में मध्यवर डिस्ट्रिक्ट हैं, जो क्षेत्र ऊना, बिलासपुर, हमीरपुर, वहाँ पर कुछ क्षेत्रों में हल्के से मध्यम बारिश का दौर जारी रहेगा। जो मेजर रिडक्शन है वेदर का वो 22 अगस्त के उपरांत देखने को मिलेगा प्रदेश में, और उसके बाद 23 और 24 अगस्त को काफ़ी कम रहेगी, मतलब वेदर एक्टिविटी मतलब कुछ क्षेत्रों तक ही सीमित रहेगी। और
14: हिमाचल प्रदेश में 22
10: कुछ क्षेत्रों तक ही सीमित रहेगी और
14: हिमाचल प्रदेश मौसम विभाग ने नदी नालों से दूर छुड़े।
12: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की

0: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे, देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे में।
1: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
2: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
1: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से
3: हॉकी वर्ल्ड कप में भारत ने पाकिस्तान को 5-3 से हराया। टॉप 8 में पहुंची टीम इंडिया, कप्तान हरमनप्रीत और अभिषेक ने दागे 2-2 गोल। जम्मू कश्मीर दौरे पर अमेरिकी राजदूत सर्जियो गोर श्रीनगर की डल लेक में की शिकारा की सवारी, घाटी के मेहमान नवाजी के मुरीद। मौसम की चुनौतियों के बीच हेमकुंड साहिब यात्रा में रौनक, अब तक 2.5 लाख से ज्यादा श्रद्धालुओं ने टेका मत्था, 10 अक्टूबर तक जारी रहेगी पवित्र यात्रा। सावन के पवित्र महीने में दिख रहे हैं शिव भक्ति के अनोखे रंग, मुंगेर में भव्य कांवड़ यात्रा बनी आकर्षण का मुख्य केंद्र, श्रद्धालु बैद्यनाथ धाम में करेंगे जलाभिषेक। महाराष्ट्र में गणेश उत्सव की तैयारियां तेज, अकोला में बप्पा की प्रतिमाओं को अंतिम रूप दे रहे हैं कारीगर, 14 सितंबर से शुरू होगा उत्सव।
1: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छा।
4: शुरू करते हैं न्यूज पद पर सफर और सबसे पहले आपको दिखाते हैं ऐसी तस्वीरें जिनका जिक्र सरेरा है। ये तस्वीरें सुर्खियों में भी है और सोशल मीडिया पर भी है, इनसे आपका बाखबर होना बेहद जरूरी है क्योंकि चौराहे पर इन्हीं की चर्चा है और चर्चा वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाने वाली मिथिला पेंटिंग की भी। देखिए
5: रामायण का हर प्रसंग अपने आप में पूरी किताब है और उसके 50 से ज्यादा प्रसंगों को एक कैनवास पर समेटना आसान नहीं है, लेकिन बिहार की मिथिला पेंटिंग के जरिए

0: लगातार मेहनत से तैयार इस कलाकृति में रामचरितमानस के 51 प्रमुख प्रसंगों को दर्शाया गया है। पद्मश्री और राष्ट्रीय पुरस्कार प्राप्त कलाकारों की देखरेख में बनी इस पेंटिंग ने विश्व रिकॉर्ड बनाया है और अब इसे म्यूजियम में सुरक्षित रखने की तैयारी है।
1: परमात्मने नमः। श्रीमद् भगवद्गीता अथ पंच

0: कहते हैं गीता के श्लोकों में जीवन का सार छुपा है, इसलिए झारखंड के धनबाद की ये दोनों बहनें हर रोज गीता का पाठ करती हैं, ताकि जीवन के उतार चढ़ाव को समझ सकें। और अब उनकी यही आदत उनकी वैश्विक पहचान भी बन गई है। धनबाद के आन्या और प्रांजल मित्तल ने कम समय में श्रीमद् भागवत गीता के श्लोकों का पाठ करके गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में अपना नाम दर्ज कराया है। प्रांजल के मुताबिक उन्होंने श्रीमद् भागवत गीता के 15वें अध्याय का पाठ करीब 5 मिनट में पूरा करके ये रिकॉर्ड बनाया है। धनबाद के धैया की रहने वाली आन्या और प्रांजल इसका श्रेय अपनी माँ को देती हैं, जिन्होंने बचपन से ही इन्हें गीता के श्लोकों के नियमित पाठ का अभ्यास कराया और इसे इनकी दिनचर्या में शामिल कर दिया। बाढ़ और बारिश से देश के कई हिस्से प्रभावित हैं। इस बीच यूपी के मुजफ्फरनगर से एक ऐसी तस्वीर सामने आई जो लोगों की खूब सहानुभूति बटोर रहा है। असल में लगातार बारिश की वजह से यहां के शिव चौक पर पानी भर गया। ऐसे में बारिश के बीच वहां से गुजर रहे एक डिलीवरी बॉय का मोबाइल पानी में गिर गया। वो देर तक उसे पानी में ढूंढता रहा। राहगीरों के बीच वो कभी पानी में हाथ डालकर फोन तलाशता तो कभी बेबसी में पानी को देखता, लेकिन जब काफी ढूंढने के बाद भी मोबाइल नहीं मिला तो बेबसी में उसकी आंखें छलक पड़ी। युवक का नाम विशाल है। उसके मुताबिक उसका फोन 45,000 रुपए का था, जिसे उसने किस्तों पर खरीदा था। उसके लिए मोबाइल महज एक महंगा फोन नहीं बल्कि उसकी रोजी रोटी का जरिया भी था। ऐसे में अब उसने नगर पालिका से आर्थिक मदद की गुहार लगाई है। सावन का महीना है, ऐसे में बाबा बैद्यनाथ धाम जाने वाले कांवड़िया पथ भगवा रंगों से गुलजार हैं। ये तस्वीरें असरगंज के कच्ची कांवड़िया पथ की है, जहां शिव भक्तों कांवड़ियों का कारवां पैदल बाबा बैद्यनाथ धाम की ओर बढ़ रहा है। इस यात्रा में श्रद्धा के साथ साथ कांवड़ों की कलात्मकता भी लोगों का ध्यान खींच रही है। किसी कांवड़ में भगवान विष्णु की विशाल प्रतिमा योग निद्रा की मुद्रा में नजर आ रही है, तो किसी में भगवान श्री राम को भगवान शिव की पूजा करते हुए दिखाया गया है। वहीं कुछ कांवड़ भगवान महाकाल की भव्य प्रतिमा और पृथ्वी की आकृति से सजी हुई है। ये तस्वीरें राजस्थान के धौलपुर की हैं। यहाँ बसेरी कस्बे में भव्य शिव यात्रा निकाली गई, जिसमें लोगों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। इस यात्रा में सबसे खास रहा भगवान भोलेनाथ के रूप में कलाकारों की प्रस्तुति, जिसे देखकर लोग भक्ति में भाव विभोर नजर आए। यात्रा के दौरान जगह जगह लोगों ने फूल बरसाए। भोलेनाथ के जयकारों और भजनों की धुन पर लोग झूमते गाते नजर आए।
1: हेमकुंड साहिब में 2.5 लाख से ज्यादा श्रद्धालुओं ने टेका मत्था। आइए आपको सीधे लिए चलते हैं न्यूज एक्सप्रेसवे पर, जहां देश भर की कुछ और जरूरी खबरें कर रही हैं आपका इंतजार।
0: पीएम मोदी की अध्यक्षता में हुई केंद्रीय कैबिनेट की बैठक में आज बुनियादी ढांचे से जुड़ी 5 बड़ी परियोजनाओं को मंजूरी दी गई। इनमें रेलवे की 4 परियोजनाएं शामिल हैं, जबकि बिहार में एक 4-लेन हाईवे परियोजना को भी हरी झंडी दी गई है। रेल परियोजनाओं में पश्चिम बंगाल और ओडिशा के महत्वपूर्ण रेल मार्गों को शामिल किया गया है। वहीं बिहार में सड़क संपर्क को बेहतर बनाने के लिए मुजफ्फरपुर सीतामढ़ी सोनबरसा 4-लेन हाईवे प्रोजेक्ट को मंजूरी दी गई है। भारत रत्न जननायक कर्पूरी ठाकुर के गांव और उसके आसपास रहने वाले लोगों को रेलवे की ओर से बड़ी सौगात मिली है। दरभंगा से नई दिल्ली जाने वाली बिहार संपर्क क्रांति एक्सप्रेस ट्रेन का ठहराव आज से कर्पूरी ग्राम स्टेशन पर शुरू हो गया है। इस मौके पर केंद्रीय मंत्री रामनाथ ठाकुर ने कर्पूरी ग्राम स्टेशन पर रुकी इस ट्रेन को हरी झंडी दिखाकर दिल्ली रवाना किया। बता दें कि भारत रत्न मिलने के बाद जननायक कर्पूरी ग्राम स्टेशन का रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने जायजा लिया था। ट्रेन यहां 2 मिनट के लिए रुकेगी। राजस्थान के पाली से एक दिल छू लेने वाली तस्वीर सामने आई है, जिसमें करीब 200 फीट ऊपर हाई वोल्टेज तारों में फंसे एक विदेशी पक्षी ग्रेटर फ्लेमिंगो को सफलतापूर्वक बचाया गया। इस रेस्क्यू के लिए वन विभाग के साथ साथ बिजली विभाग ने भी संवेदनशीलता और तत्परता दिखाई और 200 फीट से भी ज्यादा ऊंचाई पर पहुंचकर फ्लेमिंगो को सुरक्षित नीचे उतारा गया। इसके लिए बिजली विभाग को इमरजेंसी शटडाउन भी करना पड़ा। इस नेक काम में ग्रामीणों ने भी सहयोग किया। बाबा बूढ़ा अमरनाथ

0: लिए श्रद्धालुओं का दूसरा जत्था पुंछ पहुंच गया है। यहां मंडी बेस कैंप में श्रद्धालुओं का फूल मालाओं से स्वागत किया गया। बूढ़ा अमरनाथ यात्रा के लिए पहुंचे इस दूसरे जत्थे में देश भर से 1938 श्रद्धालु शामिल हैं। बाबा बूढ़ा अमरनाथ जम्मू कश्मीर के पुंछ जिले की मंडी तहसील के राजपुरा गांव में स्थित भगवान शिव का एक अत्यंत प्राचीन मंदिर है। सिखों के पवित्र तीर्थ गुरुद्वारा श्री हेमकुंड साहिब में तीर्थयात्रियों की संख्या ने पिछले कई सालों का रिकॉर्ड तोड़ दिया है। आंकड़ों के मुताबिक अब तक 2,62,000 श्रद्धालु हेमकुंड साहिब पहुंचकर गुरुद्वारे में मत्था टेक चुके हैं। बड़ी बात यह है कि बारिश, ठंड और पल पल बदलते मौसम के बावजूद श्रद्धालुओं के उत्साह में कोई कमी नहीं है। यात्रा 10 अक्टूबर तक जारी रहेगी। ऐसे में आने वाले दिनों में श्रद्धालुओं की संख्या और बढ़ने की उम्मीद है।
1: और अब बात ऑटो टैक्सी ड्राइवर्स के मराठी टेस्ट की। महाराष्ट्र में टैक्सी और ऑटो रिक्शा चालकों के लिए मराठी भाषा का मुद्दा एक बार फिर गर्मा सकता है। सरकार की ओर से मराठी सीखने के लिए दी गई 100 दिन की मोहलत खत्म हो चुकी है। अब ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट की बैठक में तय होगा कि भाषा की शर्त पूरी नहीं करने वाले ड्राइवर्स पर लाइसेंस या फिर परमिट सस्पेंड करने जैसी कार्रवाई होगी या उन्हें एक और मौका दिया जाएगा।
0: महाराष्ट्र सरकार ने मुंबई समेत पूरे महाराष्ट्र में करीब 2,00,000 गैर मराठी रिक्शा और टैक्सी चालकों के लिए बोलचाल की मराठी सीखना जरूरी किया था। इसके लिए उन्हें 100 दिन की मोहलत दी गई थी जो मंगलवार को खत्म हो गई।
2: महाराष्ट्र सरकार ने आदेश निकाला था कि जिन टैक्सी और ऑटो रिक्शा चालकों को मराठी नहीं आती उनके लाइसेंस या परमिट जो है वो कैंसिल किए जाएंगे। मराठी सीखने के लिए 100 दिन का समय दिया गया था जो अब पूरा हो चुका है और आज से कार्रवाई शुरू होनी थी, लेकिन कुछ संस्थाओं ने मांग की थी कि और समय दिया जाए मराठी सीखने के लिए। हमारे साथ यहाँ टैक्सी चलाते हैं भाई, पहले तो आपका नाम बताइए और इस फैसले को आप कैसे देखते हैं?
3: सर आपका नाम? फैसला सुनील कुमार तिवारी जी। सर जी, जो फैसला है वो फैसला तो अच्छा है। मराठी सब जितने भी यहाँ है उनको सीखना तो चाहिए, लेकिन जो समय है समय बढ़ाना चाहिए। सरकार को भी हमारे बारे में सोचना चाहिए। हम भी गरीब हैं, रोज का 500-600 रुपया कमाते हैं, उसमें परिवार का पालन पोषण करते हैं, लेकिन जो हमारे ऊपर सरकार है वो दया दृष्टि दिखाना बहुत जरूरी है। और सरकार जी से हम प्रताप सर नाई सर जी से बोलना चाहते हैं कि हमारे लिए थोड़ा तकलीफ हमें आप समझिए हमारे बारे में।
2: आपने मराठी सीखी और या आपको कब से आती थी मराठी?
3: मराठी से मला मुंबई मध्ये 20 वर्ष झाली। महाराष्ट्र मध्ये मी सर्वे मराठी बोलतो साहेब। हाँ, आपल्या काय चुकी झाली हो त्याच्यात साहेबला माफी मांगतो मी। पकडे सर्वे टॅक्सीला उभी करा, इथे थांबा, पुढे जावा, सर्वे येतो मराठी मध्ये।
2: आपको लगता है ये फैसले की जरूरत थी क्योंकि मतलब इतने सालों से चल रहा था, तो आपको लगता है ये फैसला सही है या इसकी जरूरत थी इस फैसले की?
3: जरूरत तो सरकार ने लाई है, हम लोगों तो हमारे लोग मराठी लोग इतने अच्छे हैं बेचारे की बोलने के लिए कोई बोलता ही नहीं है, लेकिन सरकार एक कानून ला रही है तो उसका पालन करना हमारा कर्तव्य तो है, तो उसका कर्तव्य हम करेंगे। लेकिन इतना आप लाइसेंस रद्द कर दोगे, परमिट रद्द कर दोगे, गाड़ी में कोई प्रॉब्लम हो जाएगा, ऐसा कुछ करोगे तो फिर तो दिक्कत है सर हमारे लिए भी, हमें भी परेशानी है, उसका हमें को झेलना पड़ेगा।
0: ऑटो और टैक्सी चालकों का कहना है कि 100 दिनों में उन्हें पर्याप्त प्रशिक्षण नहीं मिल पाया। उनका कहना है कि वे थोड़ी बहुत मराठी बोल लेते हैं, लेकिन जिन लोगों ने अभी तक मराठी नहीं सीखी है उनके लाइसेंस या बैज रद्द करना उचित नहीं है क्योंकि इसी काम से उनके परिवार का घर चलता है।
2: शंभू जी, 100 दिन पूरे हो चुके हैं, महाराष्ट्र सरकार ने कहा था कि अगर मराठी नहीं बोलेंगे तो कार्रवाई होगी, लाइसेंस सस्पेंड होगा, कैसे देखते हैं डिसीजन को, क्या कहेंगे? 100 दिन पूरे हो चुके हैं,
4: अभी तो कुछ पता नहीं चल रहा है
2: जी।
4: अभी तो कुछ पता नहीं चल रहा है।
2: आपने सीखी मराठी, आपको आती है?
4: हाँ, मराठी थोड़ा बहुत बोलने तो आता है
2: जी। काम चल जाएगा मराठी?
4: हाँ, काम चल जाएगा।
2: पर क्या आपको लगता है और समय देना चाहिए सीखने के लिए?
4: और समय तो देना चाहिए था।
2: आपका नाम बताइए और सरकार ने जो फैसला लिया है 100 दिन पूरे, 100 दिन मराठी सीखने का नहीं तो कार्रवाई होगी, उसके 100 दिन पूरे हो चुके, इस फैसले को कैसे देखते हैं
5: हम? अब हम लोग तो पढ़ लिए हैं, मराठी अब सर्टिफिकेट मिलेगा, मराठी भी समझता हूँ, बोलता भी हूँ।
2: कुछ लोग मांग कर रहे हैं कि और थोड़ा समय देना चाहिए।
5: कुछ लोग नहीं आ पाए हैं ना, इतना एक साथ सबको नहीं हो पाया, उसका टाइम देना चाहिए सबको भाई। अभी सब नहीं पढ़ पाए हैं, सर्टिफिकेट कुछ को मिल रहा अभी दिए नहीं, मिलेगा हम लोगों को, बोले RTO में। हाँ,
2: पर आप इस फैसले को सही मानते हैं? आपको लगता है सही फैसला है?
5: सही फैसला क्या बोले हम लोग, जो बोलेंगे हम लोगों के विरुद्ध में होता है काम।
2: इसकी जरूरत है आपको लगता है?
5: जरूरत है, हम लोग तो सब भाषा समझता हूँ, ये इंग्लिश, हिंदी, मराठी, मारवाड़ी, गुजराती सब भाषा समझता बोलता हूँ, एक ही भाषा का हमें 5-6 भाषा ज्ञान है, मराठी भी बोलता हूँ, मराठी भी आता, हम लोग यहाँ 32 साल से चला रहे हैं।
0: मराठी सीखने के 100 दिन पूरे होने पर तकरीबन सभी ऑटो और टैक्सी चालकों का कहना है कि सरकार को कुछ और मोहलत देनी चाहिए। उनके चेहरे की मायूसी को देखकर ये समझा जा सकता है कि सरकार के इस फैसले से वो कितने बेबस नजर आ रहे हैं।
2: 100 दिन पूरे हो चुके हैं, सरकार ने कहा था जिनको मराठी नहीं आएगी टैक्सी और ऑटो रिक्शा चालकों को उन पर कार्रवाई की जाएगी, आप कैसे देखते हैं इस डिसीजन को?
6: हम अभी कुछ नहीं बोल सकते, अभी तो मैं गाँव से आया।
2: जी जी, आपका नाम क्या दादा?
6: साबिर
2: जी। इस डिसीजन को आप कैसे देखते हैं? ये फैसला सही लगता है आपको कि मराठी नहीं आएगा तो लाइसेंस आपका कैंसिल हो जाएगा?
6: नहीं, नहीं,
2: फैसला सही नहीं लगता। क्या कहेंगे इसको?
6: जैसे पहले चल रहा था उसी चलने दो आप। क्या
0: ऑटो टैक्सी चालकों से बातचीत के दौरान यही मांग सामने आई कि सरकार उन्हें कुछ और समय दे और तुरंत कार्रवाई न करे।
2: आपकी सरकार से क्या मांगे? चलिए आपको तो मराठी आती है, आपको तो दिक्कत नहीं होगी, लेकिन जो सीख नहीं पाई है, जिनको नहीं आ पा रही है, आप क्या मांग सरकार से मांग करेंगे?
3: सरकार से यही मांग करते हैं कि पब्लिक सीख रही है, जो टैक्सी वाले, रिक्शा वाले हैं, वो लोग सब सीख रहे हैं, जरूरत है सीखने की, लेकिन आप एक्शन मत लीजिए सर जी। आप सीख रहे हो, सीखेंगे, उनको प्रेशर डालो, सीखेंगे, लेकिन अब एक्शन ना करिए जिससे हम लोग प्रताड़ित हो यहाँ से रहने के लिए।
2: बिल्कुल, तो साफ है कि सरकार का जो फैसला है कि मराठी आनी चाहिए, वो सीखेंगे भी, ये भी तैयारी है, लेकिन यही सरकार से विनती है इनकी कि इसको लेकर सरकार कोई एक्शन ना ले, क्योंकि यही इनकी रोजी रोटी है, और अगर यही सरकार छीन लेगी तो ये कहां जाएंगे और क्या करेंगे।
0: वहीं महाराष्ट्र के परिवहन मंत्री प्रताप सरनाइक का कहना है कि सरकार ने गैर मराठी रिक्शा और टैक्सी चालकों को मराठी सीखने के लिए 100 दिन का पर्याप्त समय दिया है। सरकार का दावा है कि अब तक करीब 1,65,000 रिक्शा और टैक्सी चालकों को मराठी सीखने का सर्टिफिकेट दिया जा चुका है। उन्होंने आगे ये भी कहा कि जिन चालकों को मराठी नहीं आती उनके खिलाफ कानून के तहत प्रक्रिया शुरू की जाएगी।
7: हमारे राज्य में आजू बाजू के राज्य से आने वाले सभी जो रिक्शा टैक्सी ड्राइवर है उनको यही आह्वान करते हैं कि ये महाराष्ट्र की संस्कृति है, महाराष्ट्र की परंपरा है, मराठी में अभिजात भाषा का दर्जा आदरणीय पंतप्रधान जी ने दिया, उसका आदर करना आपका भी कर्तव्य है जैसे हमारा कर्तव्य है, तो आप भी मराठी सीखिए और इस अभियान में आप भाग ले लीजिए, मगर कानून के खिलाफ अगर कुछ आप करोगे तो उसके ऊपर हमें कार्रवाई करनी पड़ेगी।
0: मराठी को लेकर ये नया नियम पूरे महाराष्ट्र के लिए है। जहां तक मुंबई की बात है तो यहां 48,000 से ज्यादा ऑटो ड्राइवर हैं, जबकि 3,680 से ज्यादा टैक्सी ड्राइवर, जो रोजाना ऑटो टैक्सी चलाकर अपना गुजारा कर रहे हैं, और अब गैर मराठी खासकर उत्तर भारतीय ड्राइवर नए नियम को लेकर मराठी सीख तो रहे हैं, लेकिन उनका कहना है कि उन्हें कुछ और समय मिलना चाहिए। ऐसे में सबसे बड़ा सवाल यही कि अब सरकार का अगला कदम क्या होगा? क्या मराठी नहीं सीखने वाले ड्राइवरों के लाइसेंस या परमिट सस्पेंड किए जाएंगे, या सरकार उन्हें एक और मौका देगी? मुंबई से दीपेश त्रिपाठी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
1: फिल्म मिर्जापुर द मूवी का नया गाना हो गया है रिलीज। इसके साथ ही फिल्म जगत से जुड़ी कुछ और खबरों को जानने के लिए आइए सीधे चले फिल्मी मोड़ पर।
0: डायरेक्टर जोया अख्तर की फिल्म जिंदगी न मिलेगी दोबारा में ऋतिक रोशन और कैटरीना कैफ की जोड़ी ने खूब चर्चा बटोरी थी। फिल्म में दोनों के बीच एक किसिंग सीन भी था, जो कैटरीना का पहला ऑन स्क्रीन किस था। अब जोया ने बताया है कि कैटरीना इस सीन के लिए क्यों तैयार हुई। उनके मुताबिक स्क्रिप्ट की जरूरत को समझते हुए कैटरीना ने इसे स्वीकार किया। जोया ने लैला के किरदार की कहानी को स्लीपिंग ब्यूटी और ऋतिक के किरदार को प्रिंस से जोड़ते हुए इस सीन को जरूरी बताया। हनुमान की दुनिया से प्रशांत वर्मा सिनेमैटिक यूनिवर्स का अगला चैप्टर महाकाली लगातार चर्चा में है। फिल्म में अभिनेता अक्षय खन्ना एक बिल्कुल नए अवतार में नजर आने वाले हैं। वो फिल्म में असुरों के शक्तिशाली गुरु शुक्राचार्य का किरदार निभाएंगे। धुरंधर में शानदार अभिनय के बाद अक्षय खन्ना का ये नया अंदाज दर्शकों के लिए खास होने वाला है। फिल्म की पहली झलक 24 अगस्त को सामने आएगी। प्रशांत वर्मा की कहानी और काल्पनिक आधार पर बनी इस फिल्म का निर्देशन पूजा कोल्लूरू कर रही है। महाकाव्य श्री रामायण कथा का पहला पोस्टर और टीजर जारी कर दिया गया है। फिल्म में देव शर्मा भगवान श्री राम की भूमिका में नजर आएंगे, जबकि अंजलि अरोड़ा माता सीता के किरदार से फीचर फिल्म में कदम रख रही हैं। अभिषेक सिंह के निर्देशन में बनी ये फिल्म हिंदी और छत्तीसगढ़ी दोनों भाषाओं में शूट की गई है। प्रकाश महोबिया और संजय बुंदेला ने इसे प्रोड्यूस किया है। फिल्म को एजे फिल्म एंटरटेनमेंट वर्ल्ड प्रस्तुत कर रहा है। श्री रामायण कथा 25 सितंबर को दोनों भाषाओं में सिनेमाघरों में रिलीज होगी।

मिर्जापुर द मूवी को लेकर फैंस का क्रेज लगातार बढ़ता जा रहा है। फिल्म का नया गाना भी रिलीज कर दिया गया है, जिसमें पुराने पसंदीदा गाने वारू फॉर एवर को नए और इमोशनल अंदाज में पेश किया गया है। एक्सेल एंटरटेनमेंट और अमेजन MGM स्टूडियोज ने इस गाने को रिलीज किया है। गुरमीत सिंह के निर्देशन में बनी फिल्म की कहानी पुनीत कृष्णा ने लिखी है। रितेश सिद्धवानी और फरहान अख्तर इसके प्रोड्यूसर हैं। मिर्जापुर द मूवी 4 सितंबर जन्माष्टमी के दिन हिंदी और तेलुगु में सिनेमाघरों में रिलीज होगी।

0: चलिए न्यूज पथ पर खबरों के सफर को आगे बढ़ाया जाए, लेकिन उससे पहले हमें रुकना होगा यहाँ यानी कि वायरल चौक पर। यहाँ देख लेते हैं उन वीडियोस को जो कि सोशल मीडिया में धमाल मचाए हुए हैं। इनमें से कुछ वीडियोस ऐसे हैं जो आपको इमोशनल कर देंगे और कुछ आपको हंसने पर मजबूर।
1: वक्त बदला, उम्र बदली, जिंदगी के रंग भी बदल गए, लेकिन भाई की कलाई और बहन के प्यार का रिश्ता आज भी वैसा ही है। उम्र चाहे कितनी भी हो जाए, थकान चाहे कितनी भी हो, बहन राखी लेकर अपने भाई के घर जरूर पहुंचती है। बचपन में जिस रिश्ते में शरारतें थी, वही रिश्ता उम्र के आखिरी पड़ाव तक प्यार और अपनापन बनाए रखता है। भाई की कलाई पर बंधा ये धागा सिर्फ राखी नहीं बल्कि बचपन से बुढ़ापे तक साथ निभाने वाले प्यार के निशाने है। कुछ भी हो, बॉडी तो आज ही बनेगी और ड्राई फ्रूट का डब्बा भी आज ही खाली होगा। बालकनी में बैठा ये बंदर भाई बड़े आराम से ड्राई फ्रूट खा रहा है। घर से डब्बा निकाला, आराम से बैठा और अब पूरा डब्बा साफ करने का प्लान है। बंदर का ये अंदाज देखकर ऐसा लग रहा है जैसे उसे किसी बात की कोई जल्दी ही नहीं है। सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे इस वीडियो को देखकर लोग खूब हंस रहे हैं और बंदर की इस हरकत को काफी पसंद कर रहे हैं। एक बच्ची ने गाय को खाना खिलाने की इच्छा जताई तो पापा ने बेटी की खुशी के लिए खुद गाय का रूप धारण कर लिया। कार्डबोर्ड पर गाय की तस्वीर बनाई गई और उसके पीछे पापा छिप गए। बच्ची बड़े प्यार से गाय को खाना खिलाती रही, लेकिन उसे जरा भी अंदाजा नहीं था कि तस्वीर के पीछे उसके पापा छिपे हैं। बेटी की मासूमियत और पापा का ये प्यारा अंदाज लोगों का दिल जीत रहा है। वीडियो देखकर लोग कह रहे हैं बच्चों की खुशी के लिए पापा कुछ भी कर सकते हैं। अनुशासन हो तो ऐसा और ट्रेनिंग हो तो ऐसी। इस वीडियो में एक प्यारा सा डॉगी अपने ऑफिसर की हर हरकत को बिल्कुल उसी अंदाज में दोहराता नजर आ रहा है। ऑफिसर जैसे जैसे आगे बढ़ते हैं और जो कुछ करते हैं, डॉगी भी उनके पीछे जाकर वैसा ही करने लगता है। डॉगी की समझदारी और शानदार ट्रेनिंग देखकर लोग हैरान हैं। सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा ये वीडियो लोगों को खूब पसंद आ रहा है। डॉगी का अनुशासन और अपने ऑफिसर के साथ तालमेल देखने लायक है। बचपन शायद ऐसा ही होता है जहाँ महंगे खिलौनों से ज्यादा मजा मिट्टी में खेलने में आता है। घर के सामने जमा ऊंची मिट्टी और दो बच्चे, बस फिर क्या था, शुरू हो गया खेल। दोनों बच्चे बारी बारी से मिट्टी के ढेर पर चढ़ते, फिर फिसल कर नीचे आते और दोबारा ऊपर चढ़ जाते। यही सिलसिला लगातार चलता रहा। चेहरे पर हंसी, आंखों में चमक और खेलने का जुनून साफ दिखाई देता है। बच्चों की ये मासूम मस्ती देखकर लगता है असली बचपन तो मिट्टी में ही मिलता है।
0: न्यूज पथ के सफर में अब सोशल अड्डा का रुख करते हैं, जहां आज बात होगी देश की राजधानी दिल्ली की। दिल्ली में साफ सफाई को बढ़ावा देने के लिए एक नया अभियान शुरू किया गया है। दिल्ली की मुख्यमंत्री श्रीमती रेखा गुप्ता ने दिल्ली को कूड़े से आजादी स्वच्छता अभियान 2026 की शुरुआत की है। सीएम ने बताया कि दिल्ली में यह स्वच्छता अभियान 17 अगस्त से 2 अक्टूबर तक चलाया जाएगा। इस अभियान के तहत सार्वजनिक जगहों के साथ ही स्कूलों, सरकारी अस्पतालों, शौचालयों की सफाई भी सुनिश्चित की जाएगी। सीएम ने अपील की है कि सभी लोग इस अभियान में हिस्सा लें और माई सिटी माई रिस्पॉन्सिबिलिटी की फीलिंग के साथ काम करें। सीएम रेखा गुप्ता ने ये घोषणा भी की है कि स्वच्छता के क्षेत्र में बेहतरीन काम करने वाले वार्ड को 1 करोड़ रुपए का इनाम दिया जाएगा। सीएम रेखा गुप्ता ने बताया कि वे दिल्ली के सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स से कहेंगी कि वो कहीं भी कूड़ा दिखाई देने पर 3 लोगों को टैग करें। लोग रील पर दिल्ली सीएम को टैग करें, दूसरा अपने इलाके के विधायक को और तीसरा अपने पार्षद को, ताकि उस जगह पर सफाई सुनिश्चित की जा सके। मुख्यमंत्री ने इस अभियान के लिए 4 C's पर जोर दिया है, जिसमें कलेक्शन, क्लीनिंग, कन्वर्जन और सर्कुलर इकोनॉमी शामिल है। इसके जरिए कूड़े से ग्रीन फ्यूल बनाने का काम किया जाएगा। इसके साथ ही सीएम ने सार्वजनिक स्थानों पर स्वच्छता अभियान, कचरे को स्रोत पर ही अलग अलग करने, सिंगल यूज प्लास्टिक के इस्तेमाल को कम करने का भी आह्वान किया है। उन्होंने बताया कि 23 अगस्त और 30 अगस्त को जेजे क्लस्टर का सफाई अभियान शुरू किया जाएगा। ऐसे ही 6 सितंबर और 13 सितंबर को भी ये सफाई अभियान जारी रखा जाएगा। 17 सितंबर को हर इलाकों के सरकारी अस्पतालों के सफाई अभियान का कार्यक्रम किया जाएगा, जिसमें लोगों से बढ़ चढ़कर शामिल होने की अपील की गई है। वहीं 17 सितंबर से 2 अक्टूबर तक मेरा स्कूल सबसे सुंदर की प्रतियोगिता होगी, जिसमें स्कूलों के मेंटेनेंस की ओर ध्यान दिया जाएगा। दिल्ली को स्वच्छ बनाने के लिए शुरू किए गए इस नए अभियान को लेकर हमने दिल्ली में लोगों से बात की और उनकी राय जानी।
2: राजधानी दिल्ली को साफ सुथरा करने को लेकर के दिल्ली सरकार के द्वारा कूड़े से आज़ादी नाम की एक मुहिम शुरू की गई है। जो दिल्ली का वार्ड सबसे साफ सुथरा होगा उसके लिए प्रतियोगिता की जाएगी, उसको 1 करोड़ की इनाम राशि दी जाएगी। कूड़ा को साफ सुथरा करने को लेकर के जो दिल्ली सरकार ने कहा है कि 1 करोड़ दिया जाएगा, कितना अच्छा कदम मानते हैं इसको आप?
3: ये तो बहुत ही अच्छा कदम है। आज से कुछ टाइम पहले ही मेरे घर पे पूजा हुई थी दिल्ली में, ऐसी कूड़ों की लेके इतनी समस्या हुई कि फेंकने की जगह नहीं है। कूड़े वाले अलग ड्रामा करते हैं, लाइक एक दिन का कूड़ा आपको 4 दिन के बाद लेके जाएंगे। हर गली में आप देखो तो कहीं कुछ पड़ा है, कहीं कुछ पड़ा है, जैसे बीमारियां फैल रही है, बहुत सी दिक्कतें हो रही है। तो अच्छी बात है कि सरकार इसको लेके सोच रही है, क्योंकि आम जनता सच में बहुत परेशान होती है, और जब बारिश हो जाता है तो कूड़े की वजह से और ज्यादा गंदगी फैलती है।
4: मुहिम केवल कागजों तक सीमित ना रह जाए, इसको इम्प्लीमेंट करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। खाली इनाम देने से कुछ नहीं होगा, पेनल्टी भी इम्पोज होनी चाहिए। जो वार्ड सबसे ख़राब हो उसके ऊपर 1 करोड़ की पेनल्टी भी लगाई जाए, यानी 1 करोड़ ये नहीं कि मुख्यमंत्री के पोस्ट से निकाल करके दे दिया जाए। जहाँ पे खराब काम हो रहा है, दिल्ली में कितने सारे वार्ड होंगे, उस वार्ड पे जिस पे पेनल्टी लगी है उसका इनाम उसको दिया जाए, वो ज़्यादा बेहतर है। और ये रिस्पॉन्सिबिलिटी फिक्स की जानी चाहिए किसी न किसी सरकारी अधिकारी के ऊपर, MCD के ऊपर, JE हो, AE हो, या बिल्डिंग डिपार्टमेंट, या जो भी इसका कूड़े का काम करता है उसके ऊपर जिम्मेदारी फिक्स भी होनी चाहिए। योजना तो बहुत अच्छी है। कूड़े को ख़त्म करने के लिए किसी भी स्तर तक जाना पड़े वो जाना चाहिए। जब कूड़े से हमें आज़ादी मिलेगी तभी लोगों के डेंगू से, मच्छरों से और या बीमारियों से आराम मिल पाएगा।
5: जी, ये जो मैंने सुना है अभी कि ऐसा सुनने में आया है कि 1 करोड़ रुपये की राशि मिलेगी जो भी वार्ड पर जिसमें मतलब साफ़ सफाई और ये सब चीज़ें अच्छी रहेंगी, देखो देखा जाए तो वैसे तो अच्छी चीज़ है, क्योंकि ये क्या है, एक तरीके से कंपटीशन को जन्म दे रहा है। और कंपटीशन में क्या होता है कि इंसान थोड़ी सी मेहनत करता है, तो जैसे अभी तक हम देख रहे हैं साफ़ सफाई के नाम पे जैसे हम बात करें तो उतनी साफ़ सफाई नहीं रहती, चाहे उसके पीछे कोई भी वजह हो, किसी भी वजह से हो, साफ़ सफाई उस तरीके से नहीं है। लेकिन जब कंपटीशन आ गया है तो हो सकता है कि जो भी काउंसलर हैं एरिया के वो इस पे मेहनत करें, और अपने उनके नीचे जो भी लोग हैं इसके लिए, जो जो लोग जिम्मेदार हैं उनको भी प्रोत्साहित करेंगे और फोर्स करेंगे कि भाई, क्योंकि जब इसके लिए कंपटीशन रखा गया है तो ये भी है कि जब इसका एक एंड होगा तो कहीं ना कहीं प्रकाशित भी होगा कि फलाने वार्ड पे साफ सफाई के लिए हम इसको पुरस्कार कर रहे हैं। तो जहां तक देखा जाए तो अच्छी योजना है।
0: दिल्ली में यमुना के किनारे एक भव्य रिवर फ्रंट बनाने की तैयारी है, यानी कि यमुना का किनारा सिर्फ नदी और घाट तक अब सीमित नहीं रहेगा, बल्कि यहां पर घूमने फिरने से लेकर मनोरंजन और पर्यटन तक की सुविधाएं विकसित करने का प्लान।
6: राजधानी दिल्ली की जीवनदायिनी कही जाने वाली यमुना किनारे विकास की नई तस्वीर तैयार करने की मुहिम शुरू हो गई है। गुजरात के साबरमती रिवर फ्रंट की तर्ज पर यमुना रिवर फ्रंट विकसित होगा। इस सिलसिले में दिल्ली के जल मंत्री प्रवेश वर्मा ने अधिकारियों के साथ गुजरात का दौरा कर साबरमती मॉडल का बारीकी से अध्ययन किया।
7: सामने दिल्ली में सबसे बड़ा चैलेंज है यमुना रिवर फ्रंट बनाना, यमुना मैया को साफ करना। हमने साबरमती रिवर फ्रंट से बहुत सारी योजनाओं को सीखा है और हमने उनका प्रेजेंटेशन भी लिया है, उनके अधिकारियों को एक बार दिल्ली में भी बुलाकर पूरा समझेंगे।
6: यमुना रिवर फ्रंट को आधुनिक, आकर्षक और पर्यावरण के अनुकूल बनाया जाएगा और साबरमती मॉडल को दिल्ली की जरूरतों के मुताबिक लागू किया जाएगा। योजना के तहत यमुना किनारे खूबसूरत वॉकवे, साइकिल ट्रैक के साथ ही खेल और मनोरंजन से जुड़ी सुविधाएं विकसित की जाएंगी। कालिंदी कुंज के पास करीब 60 करोड़ रुपए की लागत से आधुनिक छठ घाट का निर्माण किया जाएगा। पारंपरिक धोबी घाटों को व्यवस्थित कर वहां आधुनिक मैकेनाइज्ड लॉन्ड्री मशीनें लगाई जा सकती है। इसके साथ ही यमुना किनारे पर्यटन को बढ़ावा देने पर भी जोर रहेगा। हालांकि यमुना रिवर फ्रंट की सबसे बड़ी चुनौती नदी की सफाई और पर्यावरण संरक्षण रहेगा, जिसके लिए लगातार काम किए जा रहे हैं और आगे भी सीवेज प्रबंधन, जल प्रदूषण और नियंत्रण और यमुना के इकोसिस्टम को सुरक्षित रखने पर खास ध्यान दिया जाएगा। यमुना रिवर फ्रंट की इस योजना के मुकम्मल होने के बाद दिल्ली की एक अलग तस्वीर नजर आएगी, जो सेहतमंद होने के साथ आकर्षक भी होगी। नर्मदा से नरेंद्र पेपरवाला के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, ब्रिटिश टुडे।
8: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ।
9: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।
0: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती हैं तो कुछ दिखाती हैं विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
8: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को।
10: हॉकी वर्ल्ड कप में भारत ने पाकिस्तान को 5-3 से हराया, टॉप 8 में पहुंची टीम इंडिया, कप्तान हरमनप्रीत और अभिषेक ने दागे 2-2 गोल। जम्मू कश्मीर दौरे पर अमेरिकी राजदूत सर्जियो गोर, श्रीनगर की दल लेक में की शिकारा की सवारी, घाटी के मेहमान नवाजी के मुरीद। मौसम की चुनौतियों के बीच हेमकुंड साहिब यात्रा में रौनक, अब तक 2.5 लाख से ज्यादा श्रद्धालुओं ने टेका मत्था, 10 अक्टूबर तक जारी रहेगी पवित्र यात्रा। सावन के पवित्र महीने में देख रहे हैं शिव भक्ति के अनोखे रंग, मुंगेर में भव्य कांवड़ यात्रा बनी आकर्षण का मुख्य केंद्र, श्रद्धालु बैद्यनाथ धाम में करेंगे जलाभिषेक। महाराष्ट्र में गणेश उत्सव की तैयारियां तेज, अकोला में बप्पा की प्रतिमाओं को अंतिम रूप दे रहे हैं कारीगर, 14 सितंबर से शुरू होगा उत्सव।

नमस्कार, गुड न्यूज टुडे देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ वैभव राज शुक्ला। स्वागत है आपका हमारे विशेष कार्यक्रम में, जहां हम बात कर रहे हैं बप्पा की। इनके आगमन के दिन अब बहुत करीब रह गए हैं और इसलिए मुंबई में उनके स्वागत की तैयारियां जबरदस्त तरीके से लगातार जारी हैं। बड़े मंडपों में बप्पा की प्रतिमा और उनके दरबार की सजावट का काम तेजी से चल रहा है। आज आपको लिए चलेंगे लालबाग चौराजा मंडप में, जहां पर मुख्य द्वार का काम लगभग पूरा होने को है। आपको मंडप की सजावट और थीम के बारे में विस्तार से हम समझाएंगे भी। इसके बाद देखिए मुंबई के ही काला चौकी के महागणपति की प्रतिमा के आज हम दर्शन कराने जा रहे हैं, जिन्हें मंडप में बड़े ही धूमधाम के साथ लाया जा चुका है और अब उनकी सज्जा का काम शुरू हो चुका है। गणपति उत्सव को देखते हुए मुंबई के बाजारों और दुकानों में जबरदस्त रौनक है। बप्पा की प्रतिमा और उनके दरबार को सजाने वाली चीजों की भारी डिमांड इस वक्त देखने को मिल रही है। आज आपको बप्पा के लिए बन रहे आसन और सिंहासन दिखाएंगे, जिनकी भारी डिमांड है। शुरुआत करते हैं लालबाग के राजा के साथ। देखिए मुंबई में गणेश उत्सव की तैयारियां जोर पकड़ चुकी हैं और अब इंतजार बस बप्पा के आगमन का है। लालबाग का राजा का भव्य मंडप दिन रात की मेहनत से आकार ले रहा है। धीमे धीमे 93वें साल में प्रवेश कर रहे लालबाग चौराजा के दर्शन करने के लिए हर साल देश विदेश से लाखों श्रद्धालु पहुंचेंगे, इसलिए पंडाल की सजावट से लेकर भक्तों की सुविधा और भीड़ प्रबंधन का खास तैयारियां उनके लिए की जा रही हैं। बप्पा की प्रतिमा से पर्दा गणेशोत्सव से एक दिन पहले उठेगा, जिसके लिए उत्सुकता भी है और इंतजार भी। देखिए लालबाग चौराजा से हमारी खास रिपोर्ट।

0: गण नायकाय गण देवताय गणाध्यक्षाय धीमहि गुरु शरीराय गुणमंडिताय गुणेशानाय धीमहि एक दंताय वक्रतुंडाय गौरी तनाय धीमहि गजेशानाय भालचंद्राय श्री गणेशाय धीमहि। बापा के आने की शुभ घड़ी है और सबसे ज्यादा इंतजार लाल बागचा राजा के दर्शन का है। अब ज्यादा दिन बाकी नहीं जब यहाँ मुंबई का सबसे भव्य मंडप सजकर तैयार होगा, जिसमें नव साचा गणपति यानी मन्नतों के राजा की विशाल प्रतिमा विराजमान होगी। लेकिन उससे पहले अनगिनत काम है। वैसे तो 9 जून को ही पूजा के साथ उत्सव की तैयारियां शुरू हो चुकी हैं। और देखिए कैसे दिन रात काम करते हुए पंडाल का भव्य मुख्य द्वार लगभग तैयार है।
1: इसी रास्ते से विसर्जन के समय लालबाग के राजा बाहर की तरफ आते हैं और इसी सड़क पर बेसब्री से लाखों की तादाद में जुटे जो श्रद्धालु हैं वो लालबाग के राजा का अंतिम दर्शन करने के लिए घंटों खड़े रहते हैं। ये वही मुख्य द्वार है, ये वही भव्य बड़ा सा गेट है जहां पर लोग पहुंचकर सेल्फीज निकालते हैं, क्वालिटी जो तस्वीरें हैं वो शूट करते हैं और यहां पर आकर के इसकी जो शोभा है, जो सुंदरता है वो देखते हैं। आपको बताएं कि पिछली बार मुख्य द्वार को तिरुपति बालाजी का अवतार दिया गया था, उसका स्वरूप दिया गया था, लेकिन इस बार जो जानकारी मिल रही है कहीं ना कहीं भोलेनाथ को इस मुख्य द्वार से जोड़ा जाएगा। गौरतलब है कि श्रावण चल रहा है, ऐसे में जो जानकारी हमारे पास मिली है सूत्रों के मुताबिक जो हमें खबर मिली है इस बार बद्रीनाथ या केदारनाथ की थीम पर ये भव्य गेट बनाया जाएगा। आपको बताएं कि इसका काम शुरू हो चुका है, तकरीबन 1.5 महीने पहले से ही लाखों रुपए इस भव्य गेट के लिए लगते हैं। इस तरह के लालबाग के राजा पर कुल 3 गेट बनाए जाते हैं जहां से श्रद्धालु कतारों में होते हुए लालबाग के राजा का दर्शन करने के लिए पहुंचते हैं। बस यहां पर ज्यादा से ज्यादा 500 से 600 मीटर की दूरी पे ही लालबाग के राजा विराजमान है जहां पर उनकी प्रतिमा बनाने का काम शुरू है। हालांकि पर्दे से उन्हें अभी छिपाया गया है और एक दिन प्रेस कॉन्फ्रेंस ली जाएगी और उस दिन ही पहली बार लालबाग के राजा का दर्शन जो है वो दिया जाएगा।
0: जैसी शोहरत इस पंडाल की है उसी के अनुरूप हर साल इसकी सजावट होती है। बारीक नक्काशी, मनमोहक शिल्प और अद्भुत मूर्तियां, अभी तो ये झांकी है लेकिन इसे देखकर अंदाजा लगाया जा सकता है कि लालबाग के राजा का मंडप इस साल कितना भव्य और दिव्य होगा। इस साल लालबागचा राजा पंडाल अपने 93 साल में प्रवेश कर रहा है। हर साल की तरह इस साल भी भक्तों के मन में सवाल है कि बापा की प्रतिमा कैसी होगी, उनकी सज्जा कैसी होगी। लेकिन जहां प्रतिमा बनाई जा रही है वो जगह कपड़े से ढकी हुई है। हमेशा की तरह प्रतिमा से पर्दा गणेशोत्सव के एक दिन पहले उठेगा।
1: लालबाग के राजा जहां पर स्थापित हैं, इस जहां पर उनकी प्रतिमा बनाने का काम चल रहा है, मैं उस जगह पे मौजूद हूँ। ये आप देख रहे हैं तस्वीर, चारों तरफ से पैक किया गया है और यहाँ पर ही लालबाग के राजा को बनाने का काम जो है शुरू है। आप देखें बैरिकेड्स वगैरह सारे लगा दिए गए हैं। नॉर्मली यहाँ पर किसी को आने जाने अब नहीं दिया जा रहा है, लेकिन जो कोई भी लालबाग के राजा की उस पत्थर वाली प्रतिमा को जाकर श्रद्धा करना चाहता है, पूजा करना चाहता है, तो वो यहाँ पहुंच जाते हैं। खास बात यह है कि वो जगह है जिसे मन्नत की लाइन कही जाती है, मन्नत की कतार कही जाती है। यही वो जगह है जहां पर 8-10 घंटे लाइन में खड़े होने के बाद बप्पा के पास पहुंचा जाता है, तब जाकर के उनके पैर छूने का मौका मिलता है। थोड़ा सा देखें किस तरीके से एक बहुत ही भव्य तरीके से यहां पर लालबाग के राजा का दरबार सजाने का काम जो है शुरू है।
0: मुंबई के लालबागचा राजा देश के सबसे प्रसिद्ध गणपति मंडलों में शामिल हैं, जहां हर साल महाराष्ट्र ही नहीं बल्कि पूरे देश और विदेश से भी लाखों श्रद्धालु भगवान गणेश के दर्शन के लिए पहुंचते हैं। आम लोगों के साथ नेता, अभिनेता और उद्योगपतियों का तांता लगा रहता है। ऐसे में मंडल का सबसे ज्यादा फोकस भीड़ को कंट्रोल करने और भक्तों को बेहतर सुविधा देने पर होता है। बारिश के दिन है, लिहाजा सावधानी ज्यादा है।
1: मुंबई शहर की इन ऊंची ऊंची इमारतों के बीच लालबाग के राजा का दरबार है। कोशिश करते हैं तस्वीरों के माध्यम से दिखाने की कि किस तरह की व्यवस्था और किस तरह की तैयारी गणेश उत्सव को लेकर की जा रही है। गौरतलब है कि 14 सितंबर से मुंबई, महाराष्ट्र और ये पूरा देश जो है गणेश का महाउत्सव मनाने वाला है। पूरे देश भर में लालबाग के राजा का नाम बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा चर्चित है। अलग अलग राज्यों से लोग दर्शन करने के लिए आते हैं और तस्वीरों के माध्यम से आप देखें किस तरीके से पूरी तैयारी शुरू हो चुकी है। आप सामने देखें बकायदा टेंट लगा दिया गया है क्योंकि इंद्र देवता बहुत ज्यादा इस समय मुंबई में प्रसन्न है। अच्छी खासी बारिश हो रही है और जब घंटों कतार में खड़े रहने वाले जो श्रद्धालु हैं बप्पा तक पहुंचते हैं तो उनकी सुरक्षा और उनको लेकर के ठीक ठाक व्यवस्था किस तरीके से लालबाग द्वारा की जाती है ये दिखाने का हम पूरा प्रयास कर रहे हैं। सामने जो आप टेंट देख रहे हैं यहाँ पर ही घूम घूम कर लंबी लंबी कतारें लगाई जाती हैं जिसमें मुख दर्शन भी होता है और उनके पग का भी दर्शन होता है। साथ ही आपको बताएं कि ये वही मुख द्वार है जहां से लालबाग के राजा विसर्जन के लिए सीधे बाहर की तरफ आते हैं। आप देख रहे हैं संतरे कलर का यानी कि ऑरेंज कलर का टेंट है और यहां से ही वीआईपी, वीवीआईपी और तमाम वो श्रद्धालु जो बप्पा तक पहुंचते हैं वो भीतर की तरफ जाते हैं और इस टेंट के एकदम आखिरी में बप्पा के निर्माण कार्य जो है चल रहा है। हालांकि अभी लालबाग के राजा को दिखाया नहीं जा रहा है।
0: जहां लालबागचा राजा का पंडाल है उसी परिसर में एक मशहूर बाजार है। आम दिनों में यहां काफी भीड़भाड़ होती है, रौनक रहती है। रोजमर्रा की चीजों के अलावा यहां पूजा पाठ का सामान मिलता है लेकिन गणेश उत्सव शुरू होते ही ये बाजार बंद कर दिया जाता है। लेकिन बापा के आने की खुशी ऐसी होती है कि दुकान बंद करने का मलाल यहां किसी दुकानदार को नहीं होता। लालबागचा राजा का पंडाल तो सज ही रहा है, बापा के स्वागत के लिए बाजार भी तैयार है। बापा आएंगे तो धूम होगी, सजावट होगी, उनके लिए भव्य आसन और सिंहासन की जरूरत होगी। डिमांड ज्यादा है और समय कम, इसलिए जोर शोर से काम शुरू हो चुका है। मुंबई में लालबाग के राजा पंडाल से सटी गली में सहेली नाम की कार्यशाला में अभी से गणेश भक्तों की भारी भीड़ है क्योंकि यहां बाप्पा के लिए एक से बढ़कर एक आसन है।
2: के राजा का जो मंडल है उससे ठीक सटी एक गली है और गली में ही एक ऐसी कार्यशाला है जहां पर गणपति बप्पा को सजाने का काम बहुत ही तेजी से चल रहा है। उनके सिंहासन, उनके आसन को एक से बढ़कर एक रंग रूप दे करके बनाया गया है। थोड़ा तस्वीरों में देखें, एक से बढ़कर एक सिंहासन इस समय गणपति बप्पा गणेश जी के लिए जो है यहाँ बनाकर रखे हैं। गौरतलब है कि 14 सितंबर से गणेश उत्सव पूरा देश मनाने वाला है। ऐसे में हर कोई चाहता है कि अपने घरों में यानी कि घर एंडिंग भी हो। यही वजह है कि आप देखें एक बहुत बड़ी कार्यशाला इस समय यहाँ पर है और लोग यहाँ पर ढेरों की तादाद में पहुंच रहे हैं, अपने पसंदीदा एक से बढ़कर एक सिंहासन भी बना रहे हैं। आकर्षित का केंद्र वैसे तो बहुत सारे हैं लेकिन ये जरा सा वाटर वॉल पेपर देखें, इसे गणेश जी के ठीक पीछे रख दिया जाएगा और जब बप्पा इसके समक्ष बैठेंगे, विराजमान होंगे, तो आप समझ सकते हैं किस तरह की खूबसूरती देखने को मिलेगी। साथ ही साथ ये देखिए कितनी प्यारी सी रुद्र के साथ में शिवलिंग का भी अवतार यहां पर किया गया। इस तरह की एक से बढ़कर एक प्रतिमाओं से गढ़ी एक से बढ़कर एक सिंहासन आसन जिसे छोटे छोटे मंडप भी कहे जाते हैं वो बनाने का काम है।
0: कहने की जरूरत नहीं कि ऐसे खूबसूरत आसन बापा की प्रतिमा की भव्यता और बढ़ाते हैं, इसलिए गणेशोत्सव में इनकी जबरदस्त मांग होती है। 25 सालों से काम कर रही सहेली कार्यशाला में गणेश भक्तों के लिए ऑप्शन भी ढेर सारे हैं। पंडरीचा रूप आसन, श्री सिंहासन, सुखहर्ता आसन, मोर्या आसन, वक्रतुंड आसन, मंगल मूर्ति आसन, स्वामी समर्थ आसन, स्वराज आसन, बापा के लिए जिसे जो पसंद आ जाए।
3: आप देख सकते हैं कि हमारे सबसे ज्यादा विट्ठल पंडरीनाथ की है, शंकर भगवान की है, जैसे आप लोग अभी ये साल सबसे ज्यादा चला वो स्वामी समर्थ का है। अच्छा। आज का ट्रेंड चलो स्वामी समर्थ का, तो स्वामी समर्थ का हम लोग इसमें तीन साइज बना के रखे। हाँ। हमारे यहाँ आपको हर चीज में इसमें तीन साइज मिलेंगे, छोटा मीडियम और बड़ा, ऐसे तीन मिलेंगे। हाँ। जैसे आपका बप्पा होंगे वैसे वो साइज के आपको करके ये मिल जाएंगे सब। अच्छा, हमारे
2: जितनी लंबाई बप्पा की होगी उतनी साइज में आप सिंहासन बनाएंगे। यहाँ भी मैं देख रहा हूँ बहुत सारे लोग राजा पंढरीचा,
3: ये राजा पंडित विठल के हैं, एक नाम है उनका राजा पंडित। जैसे गणपति का नाम है वक्रतुंड मनोदर, हम लोग वो नाम पे वो थीम पे सुकरता है, लंबोदर है, वक्रतुंडे, अलग अलग नाम पे मोरे है। जैसे गणपति बापा का नाम है वैसे हम लोग उसके नाम पे भी बनाए, वो सब अलग अलग चीज का आपको मिल सकता है हमारे यहाँ।
2: अच्छा, मैंने देखा एक दो लोगों ने आपसे छत्रपति शिवाजी महाराज की भी सिंहासन मांगी, वो भी
3: हमारे यहाँ महाराज के शिव महाराज के राज्यभिषेक का सिंहासन वो भी रखे, जिसके साथ में उनके मावड़े भी रखे हुए है। अच्छा। कि अगर आप घर पे बना सकते तो आपको अलग से मावड़ा चाहिए तो मावड़े भी मिल सकते हैं, जो फोल्डिंग पूरे आते हैं। मैम
0: बापा घर आएंगे तो उनके लिए सिर्फ आसन या सिंहासन ही नहीं चाहिए, उनकी प्रतिमा को सजाने का भी सामान जरूरी है। दरबार को सजाने के लिए भी खूबसूरत चीजों की आवश्यकता होती है। मुंबई के बाजारों में गणेशोत्सव से जुड़ी ऐसी तमाम चीजों की भरमार है। सहेली कार्यशाला में इसके लिए कई ऑप्शन हैं।
3: जैसे कि आप देखते हो कि फ्लावर्स में जो है, फ्लावर्स में काफी जो न्यू आइटम्स है, जो पूरा वेल्स लगा है वो टाइप के, आपको सिंहासन मिलेंगे जो जो मेटल के आते हैं, बापा के पगड़ी से पगड़ी मिलेंगे, बापा की शाल मिलेंगी, रुमाल मिलेंगे, हार मिलेंगे, एक रूफ के नीचे आपको सब आइटम्स मिल जाएंगे,
2: लाइटिंग्स मिलेंगी,
3: लाइट्स भी मिल जाएंगे सर।
0: मुंबई के अलग अलग इलाकों में अलग अलग बाजारों में बापा की प्रतिमा और उनके दरबार की साज सज्जा के लिए मुकुट, साफा, आर्टिफिशियल फूलमाला और ग्रास शीट जैसी चीजों की अभी से भरमार है। बाजारों में रौनक है और ऐसी कार्यशाला में भारी भीड़। मुंबई से धर्मेंद्र दुबे के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
4: मुंबई की गलियों में गणपति बप्पा मोरिया की गूंज सुनाई देने लगी है और इसी के साथ शुरू हो गई है बप्पा के भव्य स्वागत की तैयारियां। साज सज्जा के लिए कला चौकी के 22 फीट ऊंचे महागणपति के पहले ही पंडाल में आगमन हो चुका है। ढोल नगाड़ों और जयकारों के साथ जब भक्त बप्पा को लेकर पहुंचे तो रौनक देखने वाली थी। इस बार महागणपति महालक्ष्मी के स्वरूप में विराजेंगे और पंडाल को भी सोलापुर के महालक्ष्मी मंदिर की तर्ज पर सजाया जाएगा। 71 साल पुराने इस मंडल में हर साल कुछ नया देखने को मिलता है जिसका भक्तों को खास इंतजार रहता है। रिपोर्ट देखिए।

0: साल जिसका इंतजार होता है वो घड़ी बेहद करीब आ चुकी है। चंद रोज में ही मुंबई की सड़कें गलियां इस जय घोष से गूंजने वाली हैं। गणपति बाप्पा मोरिया, मंगल मूर्ति मोरिया। 14 सितंबर से गणेशोत्सव की शुरुआत है और उसकी तैयारी अभी से शुरू हो चुकी है। गणपति की प्रतिमाएं धूमधाम से पंडालों तक जा रही हैं। ढोल नगाड़ा बजाते, नाचते गाते भक्तिभाव के साथ मुंबई के काला चौकी के महागणपति को पंडाल में लाया गया। हजारों की संख्या में भक्त जयकारा लगाते प्रतिमा के साथ चले। इस तरह काला चौकी के 22 फीट ऊंचे महागणपति का उनके पंडाल में आगमन हो गया। सिंह पर सवार बाप्पा इस साल महालक्ष्मी जी के अवतार में है और हमेशा की तरह बाप्पा की ये प्रतिमा दिव्य और भव्य है।
1: बड़े पंडाल अपने बप्पा को अपनी जगह पर लेकर आना शुरू हो चुके हैं। फिलहाल इस समय मौजूद हूँ साउथ मुंबई के काला चौकी के महागणपति के दरबार में और आप देखें बहुत ही सुंदर भव्य तरीके से बप्पा को यहाँ पर विराजमान कर दिया गया है। आपको बताएं कि महालक्ष्मी के अवतार में गणपति बप्पा को ले आया गया है। फिलहाल यहाँ बात करें इन बप्पा की तो 22 फीट की ऊंचाई है। ट्रॉली से सिंह पर बाकायदा बप्पा सवार हैं और खास बात यह है कि जो ट्रॉली रखी गई है जिस जगह पे उसके नीचे बहुत ही सुंदर तरीके से रंगोली भी निकाली गई है, बनाई गई है, ठीक उसके ऊपर बप्पा को विराजमान करा गया है। और कुछ घंटों पहले बहुत सारे तस्वीरें, बहुत सारे वीडियोस सोशल मीडिया पर बप्पा के आगमन को लेकर के वायरल हुए थे जिसमें हजारों की तादाद में जो गणेश भक्त हैं वो जुटे हुए थे और हर कोई बप्पा का स्वागत कर रहा था।
0: काला चौकी इलाके में महागणपति का पंडाल अपनी भव्यता के लिए मशहूर है। न सिर्फ विशाल प्रतिमा बल्कि मन को मोह लेने वाली दिव्य साज सज्जा। सबसे बड़ी बात ये कि इसमें महाराष्ट्र की संस्कृति और परंपरा को संजोया जाता है।
2: हर साल स्वरूप महागणपति का बदलता है। कभी महागणपति पांडुरंग विट्ठल के रूप में आते हैं, कभी सरस्वती के रूप में आते हैं, कभी भोले शंकर के रूप में आते हैं, तो कभी कान्हा नटखट बन के आते हैं। ये साल महालक्ष्मी का रूप, यानी महालक्ष्मी यानी क्या, स्थैर्य, शांति, संपत्ति, जो आजकल हर एक को आशीर्वाद के रूप में महागणपति देने आ रहे आ गए हैं। और इसी का जो हमारी झांकी बनेगी, डेकोरेशन बनेगा, वो भी उसी का एक कोल्हापुर के महालक्ष्मी के मंदिर का जो कंपोनेंट्स है, जो छवि है, वही आपको देखने को मिलेगी। इसलिए मैं आपके ओर से हमारे सभी भक्तों को विनती करता हूँ कि ये महालक्ष्मी का रूप, महालक्ष्मी का रूप महागणपति का, आप इस कोल्हापुर के महालक्ष्मी के मंदिर में देखने आइए।
0: महागणपति की प्रतिमा आ चुकी है, अब इसकी सजावट पर काम शुरू हो जाएगा। लेकिन अभी से जोश ऐसा है कि हजारों की तादाद में भक्त दर्शन के लिए आने लगे हैं। कार्यकर्ताओं में जोश है और महागणपति मंडल के कर्ता धर्ता दिन रात काम में जुटे हैं। काला चौकी महागणपति मंडल में बाप्पा का स्वरूप हर साल बदलता है। इस साल बाप्पा महालक्ष्मी स्वरूप में पधारे हैं और उनका पंडाल भी सोलापुर के महालक्ष्मी मंदिर की तर्ज पर सजाया जाएगा, जिसकी पहली झलक गणेशोत्सव के पहले दिन देखने को मिलेगी।

0: महागणपति का आगमन सोलह हम लोग सिर्फ आगमन नहीं करते, तो एक परंपरा उसमें जताते हैं। महाराष्ट्र की जो परंपरा है जो आजकल कम होती जा रही है और वो सिर्फ उनके जगह पे ही दिखाई जाती है, उनको हम सब मुंबई में लेके आते हैं। पालखी जो होली में हमारे कोकण में नचाई जाती है, वो कोली हमारे सब कोकण के बांधव वो पालखी लेके आते हैं और महागणपति के जो रुपेरी पैर रहते हैं उनको वो पालखी में रखते हैं। हमारे कोली भाई बहन रहते हैं वो उनका नृत्य प्रकार यहाँ पे दिखाते हैं। मर्दानी खेल जो रहते हैं जो शिवकालीन छत्रपति शिवाजी महाराज जी के कालखंड से ये चलते आ रहे हैं वो भी हमारे ये पारंपरिक आगमन सोलह में रहते, इसलिए ये सब मैनेज करने के लिए हमें एक महीने का वक्त तो लगता ही है।
1: काला चौकी महागणपति मंडल के 71 साल हो चुके हैं। हर साल ये मंडप अपनी साज सज्जा का नया कीर्तिमान बनाता है और उम्मीद की जा रही है कि इस साल भी गणेश उत्सव में यहाँ कुछ अलग कुछ नया देखने को मिलेगा। आपको बता दें कि काला चौकी के महागणपति के आसपास कई बड़े पंडाल हैं जो देश भर में मशहूर हैं। इसी इलाके में लालबाग का राजा, चिंतामणि का राजा, गणेश गली, चिंचपोकली का राजा और परेल का राजा जैसे पंडाल हैं। और जब गणेश उत्सव प्रारंभ होगा ये पूरा इलाका ही एक विशाल धर्म स्थल में तब्दील हो जाएगा और महागणपति के इस पंडाल में दर्शन के लिए लाखों भक्त पहुँचेंगे।
2: और धीरे धीरे ये जो पूरा परिसर है महालक्ष्मी के मंदिर के रूप में बदल जाएगा और उसके बाद लंबी लंबी कतारें श्रद्धालुओं की यहाँ पर लगेगी, घंटों लोग यहाँ खड़े होंगे, फिर चाहे इंद्र देवता बरस ही क्यों ना रहे हों, लेकिन फाइनली कितनी भी थकावट हो जाए बप्पा के समक्ष आकर लोग खुद को बहुत ज़्यादा तंदुरुस्त समझेंगे, बहुत ज़्यादा फ्रेश समझेंगे और बप्पा के आशीर्वाद के साथ अपनी मनोकामना बप्पा के समक्ष रखेंगे। वीडियो जर्नलिस्ट स्वागत खां के साथ धर्मेंद्र दुबे, गुड न्यूज़ टुडे मुंबई।
3: मुंबई नहीं, आपको बता दें महाराष्ट्र के
4: क्या आप सोते समय परेशान रहते हैं? क्या आप पलंग पर फैल कर सोते हैं? क्या आपको सोने के लिए सहारे की जरूरत पड़ती है? आपके सोने का तरीका आपके मन के बारे में क्या बताता है, जानिए मेरे साथ सिर्फ गुड लक टुडे में।
5: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है
6: और दुर्भाग्य कहता है
7: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
8: अविश्वास में विश्वास बसता है
9: जो हम में अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
10: गुड न्यूज टुडे,
11: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को।
12: देश के कई हिस्सों में बारिश का दौर जारी है, इससे कई जगह बाढ़ जैसे हालात बने हुए हैं। इन सबके बीच राहत और बचाव का काम भी लगातार चल रहा है। एक रेस्क्यू ऑपरेशन समंदर में भी चलाया गया, तो हिमाचल प्रदेश में बारिश को लेकर मौसम विभाग का अलर्ट भी है।
13: बारिश की वजह से देश के कई हिस्सों में बाढ़ जैसे हालात बने हुए हैं। इन सब के बीच जगह जगह लोग बेबस नजर आते हैं।
14: एक छोटा बच्चा आया है।
13: इनके लिए रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया जा रहा है। राहत और बचाव की टीमें जरूरतमंदों तक खाने पीने का सामान पहुंचाने के साथ ही लोगों को सुरक्षित स्थान तक पहुंचाने का भी काम कर रही है। बारिश और बाढ़ को लेकर जारी रेस्क्यू ऑपरेशन के अलावा समंदर में मुश्किल हालात के बीच फंसे लोगों की जान भी बचाई जा रही है। गुजरात के नवसारी की ये तस्वीरें देखिए, यहाँ समंदर में फंसे मछुआरों को एयरलिफ्ट कर सुरक्षित बचाया गया। समंदर में एक नाव के डूबने की स्थिति में होने की जानकारी मिलने पर कोस्ट गार्ड ने तत्काल हेलीकॉप्टर के जरिए रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया और नाव में सवार सभी 9 मछुआरों को एक एक कर सुरक्षित बचा लिया।
15: के जलालपुर तहसील के कृष्णपुर गांव से एक फिशिंग बोट वलसाड की ओर जाने को रवाना हुई थी, जिसमें 9 लोग सवार थे। जयेश भाई टंडेल की ये जो बोट थी वो धोलाई मरीन बंदर से ढाई नोटिकल माइल के दूरी पर सिंक होना स्टार्ट हुई थी। 9 लोगों का रेस्क्यू कॉल हमें कंट्रोल रूम में मिला था, उसमें ये सब 9 लोगों को रेस्क्यू करने के लिए पहले एनडीआरएफ की टीम से आयोजन किया था, फिर पता चला कि भाई ये अपने कोस्ट गार्ड के चोपर के मदद से ही रेस्क्यू करना पड़ेगा। तो कोस्ट गार्ड के जो कमांडेंट साहब है उनसे मैंने बात की थी, नवसारी जिला कलेक्टर श्री मनीष पुरवानी साहब ने कोस्ट गार्ड के डीआईजी साहब से बात करते ही तुरंत उन्होंने चोपर भेजा था।
13: रेस्क्यू कर सभी 9 मछुआरों को समंदर तट पर सुरक्षित उतार दिया गया। वहीं ओडिशा में बाढ़ के पानी में बहे एक व्यक्ति का भी रेस्क्यू किया गया। ओडिशा के बाढ़ प्रभावित भद्रक जिले की ये तस्वीर देखिए। बालीपाटना इलाके के तारनगर गांव के रहने वाले सुनंदा बेहरा ताड़ के पेड़ को पकड़कर भूखे प्यासे 5 दिन तक इसी तरह अपनी जान बचाते रहे। ODRAF की टीम को सुनंदा बाजापति पाड़िया इलाके में मिली, वहां से रेस्क्यू कर उन्हें पालीपाटना मेडिकल सेंटर ले जाया गया जहां उनका इलाज चल रहा है। मैदान से लेकर पहाड़ तक में हो रही बारिश मुश्किल का सबब बन रही है। उत्तराखंड में ऋषिकेश से लेकर देहरादून तक में SDRF और पुलिस की टीम रेस्क्यू ऑपरेशन में पसीना बहाती नजर आ रही है। ऋषिकेश में पानी के तेज बहाव में फंसी एक गाड़ी के ऊपर जवान रस्सी के सहारे पहुंचे और फिर गाड़ी के अंदर से एक एक कर दोनों लोगों को सुरक्षित बाहर निकाला। वहीं देहरादून के विकास नगर में स्वर्णा नदी में फंसे 6 छात्रों को भी SDRF के जवानों ने काफी मशक्कत के बाद सुरक्षित रेस्क्यू किया। उत्तराखंड में भारी बारिश की वजह से नदी नाले उफान पर हैं, जिसको देखते हुए प्रशासन अलर्ट मोड में है और लोगों से सतर्कता बरतने की अपील की जा रही है। हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला समेत जगह जगह बारिश का दौर देखने को मिल रहा है। इन सब के बीच मुश्किल हालात में फंसे लोगों का रेस्क्यू भी किया जा रहा है। हिमाचल प्रदेश में मानसून सक्रिय है और इसके चलते 22 अगस्त तक बारिश का दौर जारी रहने का अनुमान है, जिसको लेकर मौसम विभाग ने अलर्ट भी जारी किया है।
10: 19 अगस्त को हमीरपुर, चंबा, कांगड़ा, मंडी, शिमला, सिरमौर, यहाँ पे एक दो स्थानों में हैवी रेनफॉल का येलो अलर्ट जारी किया गया है। उसके उपरांत 20 और 21 अगस्त को चंबा, कांगड़ा, कुल्लू, मंडी, यहाँ के लिए येलो कैटेगरी में हैवी रेनफॉल का येलो अलर्ट जारी किया गया है। फिर उसके उपरांत देखिए 22 अगस्त को जो वेदर एक्टिविटी है उसकी इंटेंसिटी में काफ़ी कमी आएगी। हालांकि 22 अगस्त को जो हमारी जो वेदर एक्टिविटी है वो जो हमारे क्षेत्र में मध्य डिस्ट्रिक्ट हैं, जो क्षेत्र ऊना, बिलासपुर, हमीरपुर, वहाँ पर कुछ क्षेत्रों में हल्के से मध्यम बारिश का दौर जारी रहेगा। जो मेजर रिडक्शन है वेदर का वो 22 अगस्त के उपरांत देखने को मिलेगा प्रदेश में, और उसके बाद 23 और 24 अगस्त को काफ़ी कम रहेगी, मतलब वेदर एक्टिविटी मतलब कुछ क्षेत्रों तक सीमित रहेगी। और
13: हिमाचल प्रदेश में 22 अगस्त के बाद भले ही बारिश में कमी आने का अनुमान है, लेकिन फ्लैश फ्लड के खतरे को देखते हुए मौसम विभाग ने नदी नालों से दूर रहने की सलाह दी है। नवसारी से रौनक जानी और शिमला से विकास शर्मा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
11: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को

0: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे, देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे। मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे, देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
1: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को।
2: हॉकी वर्ल्ड कप में भारत ने पाकिस्तान को 5-3 से हराया, टॉप 8 में पहुंची टीम इंडिया, कप्तान हरमनप्रीत और अभिषेक ने दागे 2-2 गोल। जम्मू कश्मीर दौरे पर अमेरिकी राजदूत सर्जियो गोर श्रीनगर की डल लेक में की शिकारा की सवारी, घाटी की मेहमान नवाजी के मुरीद। मौसम की चुनौतियों के बीच हेमकुंड साहिब यात्रा में रौनक, अब तक 2.5 लाख से ज्यादा श्रद्धालुओं ने टेका मत्था, 10 अक्टूबर तक जारी रहेगी पवित्र यात्रा। सावन के पवित्र महीने में दिख रहे हैं शिव भक्ति के अनोखे रंग, मुंगेर में भव्य कांवड़ यात्रा बनी आकर्षण का मुख्य केंद्र, श्रद्धालु बैद्यनाथ धाम में करेंगे जलाभिषेक। महाराष्ट्र में गणेश उत्सव की तैयारियां तेज, अकोला में बप्पा की प्रतिमाओं को अंतिम रूप दे रहे हैं कारीगर, 14 सितंबर से शुरू होगा उत्सव।
1: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, मोड़ इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के।
3: शुरू करते हैं न्यूज पथ पर सफर और सबसे पहले आपको दिखाते हैं ऐसी तस्वीरें जिनका जिक्र सरेरा है। ये तस्वीरें सुर्खियों में भी है और सोशल मीडिया पर भी है, इनसे आपका बाखबर होना बेहद जरूरी है क्योंकि चौराहे पर इन्हीं की चर्चा है और चर्चा वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाने वाली मिथिला पेंटिंग की भी। देखिए
4: रामायण का हर प्रसंग अपने आप में पूरी किताब है और उसके 50 से ज्यादा प्रसंगों को एक कैनवास पर समेटना आसान नहीं है, लेकिन बिहार की मिथिला पेंटिंग के जरिए ये साकार हो गया है। मधुबनी के सौराठ स्थित मिथिला चित्रकला संस्थान के 160 से ज्यादा कलाकारों ने मिलकर 108 मीटर लंबे कैनवास पर रामचरितमानस की गाथा को मिथिला पेंटिंग के जरिए उकेरा है। 48 घंटे की लगातार मेहनत से तैयार इस कलाकृति में रामचरितमानस के 51 प्रमुख प्रसंगों को दर्शाया गया है। पद्मश्री और राष्ट्रीय पुरस्कार प्राप्त कलाकारों की देखरेख में बनी इस पेंटिंग ने विश्व रिकॉर्ड बनाया है और अब इसे म्यूजियम में सुरक्षित रखने की तैयारी है।
5: परमात्मने नमः श्रीमद् भगवद्गीता अथ

0: हैं और अब उनकी यही आदत उनकी वैश्विक पहचान भी बन गई है। धनबाद के आन्य और प्रांजल मित्तल ने कम समय में श्रीमद् भागवत गीता के श्लोकों का पाठ करके गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में अपना नाम दर्ज कराया है। प्रांजल के मुताबिक उन्होंने श्रीमद् भागवत गीता के 15वें अध्याय का पाठ करीब 5 मिनट में पूरा करके ये रिकॉर्ड।
1: हेमकुंड साहिब में 2.5 लाख से ज्यादा श्रद्धालुओं ने टेका मत्था। आइए आपको सीधे लिए चलते हैं न्यूज एक्सप्रेसवे पर, जहां देश भर की कुछ और जरूरी खबरें कर रही हैं आपका इंतजार।
0: पीएम मोदी की अध्यक्षता में हुई केंद्रीय कैबिनेट की बैठक में आज बुनियादी ढांचे से जुड़ी 5 बड़ी परियोजनाओं को मंजूरी दी गई। इनमें रेलवे की 4 परियोजनाएं शामिल हैं, जबकि बिहार में एक 4-लेन हाईवे परियोजना को भी हरी झंडी दी गई है। रेल परियोजनाओं में पश्चिम बंगाल और ओडिशा के महत्वपूर्ण रेल मार्गों को शामिल किया गया है। वहीं बिहार में सड़क संपर्क को बेहतर बनाने के लिए मुजफ्फरपुर सीतामढ़ी सोनबरसा 4-लेन हाईवे प्रोजेक्ट को मंजूरी दी गई है। भारत रत्न जननायक कर्पूरी ठाकुर के गांव और उसके आसपास रहने वाले लोगों को रेलवे की ओर से बड़ी सौगात मिली है। दरभंगा से नई दिल्ली जाने वाली बिहार संपर्क क्रांति एक्सप्रेस ट्रेन का ठहराव आज से कर्पूरी ग्राम स्टेशन पर शुरू हो गया है। इस मौके पर केंद्रीय मंत्री रामनाथ ठाकुर ने कर्पूरी ग्राम स्टेशन पर रुकी इस ट्रेन को हरी झंडी दिखाकर दिल्ली रवाना किया। बता दें कि भारत रत्न मिलने के बाद जननायक कर्पूरी ग्राम स्टेशन का रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने जायजा लिया था। ट्रेन यहाँ 2 मिनट के लिए रुकेगी। राजस्थान के पाली से एक दिल छू लेने वाली तस्वीर सामने आई है, जिसमें करीब 200 फीट ऊपर हाई वोल्टेज तारों में फंसे एक विदेशी पक्षी ग्रेटर फ्लेमिंगो को सफलतापूर्वक बचाया गया। इस रेस्क्यू के लिए वन विभाग के साथ साथ बिजली विभाग ने भी संवेदनशीलता और तत्परता दिखाई और 200 फीट से भी ज्यादा ऊंचाई पर पहुंचकर फ्लेमिंगो को सुरक्षित नीचे उतारा गया। इसके लिए बिजली विभाग को इमरजेंसी शटडाउन भी करना पड़ा। इस नेक काम में ग्रामीणों ने भी सहयोग किया। बाबा बूढ़ा अमरनाथ के लिए श्रद्धालुओं का दूसरा जत्था पुंज पहुंच गया है। यहां मंडी बेस कैंप में श्रद्धालुओं का फूलमालाओं से स्वागत किया गया। बूढ़ा अमरनाथ यात्रा के लिए पहुंचे इस दूसरे जत्थे में देश भर से 1938 श्रद्धालु शामिल हैं। बाबा बूढ़ा अमरनाथ जम्मू कश्मीर के पुंछ जिले की मंडी तहसील के राजपुरा गाँव में स्थित भगवान शिव का एक अत्यंत प्राचीन मंदिर है। सिखों के पवित्र तीर्थ गुरुद्वारा श्री हेमकुंड साहिब में तीर्थयात्रियों की संख्या ने पिछले कई सालों का रिकॉर्ड तोड़ दिया है। आंकड़ों के मुताबिक अब तक 2,62,000 श्रद्धालु हेमकुंड साहिब पहुंचकर गुरुद्वारे में मत्था टेक चुके हैं। बड़ी बात यह है कि बारिश, ठंड और पल पल बदलते मौसम के बावजूद श्रद्धालुओं के उत्साह में कोई कमी नहीं है। यात्रा 10 अक्टूबर तक जारी रहेगी। ऐसे में आने वाले दिनों में श्रद्धालुओं की संख्या और बढ़ने की उम्मीद है।
1: और अब बात ऑटो टैक्सी ड्राइवर्स के मराठी टेस्ट की। महाराष्ट्र में टैक्सी और ऑटो रिक्शा चालकों के लिए मराठी भाषा का मुद्दा एक बार फिर गर्मा सकता है। सरकार की ओर से मराठी सीखने के लिए दी गई 100 दिन की मोहलत खत्म हो चुकी है। अब ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट की बैठक में तय होगा कि भाषा की शर्त पूरी नहीं करने वाले ड्राइवर्स पर लाइसेंस या फिर परमिट सस्पेंड करने जैसी कार्रवाई होगी या उन्हें एक और मौका दिया जाएगा।
0: महाराष्ट्र सरकार ने मुंबई समेत पूरे महाराष्ट्र में करीब 2 लाख गैर मराठी रिक्शा और टैक्सी चालकों के लिए बोलचाल की मराठी सीखना जरूरी किया था। इसके लिए उन्हें 100 दिन की मोहलत दी गई थी, जो मंगलवार को खत्म हो गई।
2: महाराष्ट्र सरकार ने आदेश निकाला था कि जिन टैक्सी और ऑटो रिक्शा चालकों को मराठी नहीं आती, उनके लाइसेंस या परमिट जो है वो कैंसिल किए जाएंगे। मराठी सीखने के लिए 100 दिन का समय दिया गया था, जो अब पूरा हो चुका है और आज से कार्रवाई शुरू होनी थी, लेकिन कुछ संस्थाओं ने मांग की थी कि और समय दिया जाए मराठी सीखने के लिए। हमारे साथ यहाँ टैक्सी चलाते हैं। भाई पहले तो आपका नाम बताइए और इस फैसले को आप कैसे देखते हैं?
3: सर आपका फैसला सुनील कुमार तिवारी जी। सर जी, जो फैसला है वो फैसला तो अच्छा है। मराठी समय जितने भी यहाँ है उनको सीखना तो चाहिए, लेकिन जो समय है समय बढ़ाना चाहिए। सरकार को भी हमारे बारे में सोचना चाहिए। हम भी गरीब हैं, रोज का 500 रुपया 600 रुपया कमाते हैं, उसमें परिवार का पालन पोषण करते हैं, लेकिन जो हमारे ऊपर सरकार है वो दया दृष्टि दिखाना बहुत जरूरी है। और सरकार जी से हम प्रताप सर नाई सर जी से बोलना चाहते हैं कि हमारे लिए थोड़ा तकलीफ, हमें आप समझिए हमारे बारे में।
2: आपने मराठी सीखी और या आपको कब से आती थी मराठी?
3: मराठी से मला मुंबई मध्ये 20 वर्ष झाली। महाराष्ट्र मध्ये मी सर्वे मराठी बोलतो साहेब। हाँ, आपल्या काय चुकी झाली हो त्याच्यात साहेबला माफी मांगतो मी, पकड़े सर्वे टैक्सी ला वो भी वगैरह इतने थामा।

0: पुढे जावा जा सर्वे होतो मराठी मध्ये.
1: आपको लगता है ये फैसले की जरूरत थी क्योंकि मतलब इतने सालों से चल रहा था, तो आपको लगता है ये फैसला सही है या इसकी जरूरत थी इस फैसले की?
0: जरूरत तो सरकार ने लाई है, हम लोगों तो हमारे लोग मराठी लोग इतने अच्छे हैं बेचारे कि बोलने के लिए कोई बोलता ही नहीं है, लेकिन अब सरकार एक कानून ला रही है तो उसका पालन करना हमारा कर्तव्य तो है, तो उसका कर्तव्य हम करेंगे. लेकिन इतना लाइसेंस रद्द कर दोगे, परमिट रद्द कर दोगे, गाड़ी में कोई प्रॉब्लम हो जाएगा, ऐसा कुछ करोगे तो फिर तो दिक्कत है सर हमारे लिए भी, हमें भी परेशानी है, उसका हमें को झेलना पड़ेगा.
2: ऑटो और टैक्सी चालकों का कहना है कि 100 दिनों में उन्हें पर्याप्त प्रशिक्षण नहीं मिल पाया. उनका कहना है कि वे थोड़ी बहुत मराठी बोल लेते हैं, लेकिन जिन लोगों ने अभी तक मराठी नहीं सीखी है उनके लाइसेंस या बैज रद्द करना उचित नहीं है, क्योंकि इसी काम से उनके परिवार का घर चलता है.
1: शंभू जी, 100 दिन पूरे हो चुके हैं, महाराष्ट्र सरकार ने कहा था कि अगर मराठी नहीं बोलेंगे तो कार्रवाई होगी, लाइसेंस सस्पेंड होगा, कैसे देखते हैं डिसीजन को, क्या कहेंगे? 100 दिन पूरे हो चुके हैं,
3: अभी तो कुछ पता नहीं चल रहा है
1: जी.
3: अभी तो कुछ पता नहीं चल रहा है.
1: आपने सीखी मराठी, आपको आती है?
3: हाँ, मराठी थोड़ा बहुत बोलने तो आता है
1: जी. काम चल जाएगा मराठी?
3: हाँ, काम चल जाएगा.
1: पर क्या आपको लगता है और समय देना चाहिए सीखने के लिए?
3: और समय तो देना चाहिए था.
1: आपका नाम बताइए और सरकार ने जो फैसला लिया है 100 दिन पूरे, 100 दिन मराठी सीखने का नहीं तो कार्रवाई होगी, उसके 100 दिन पूरे हो चुके, इस फैसले को कैसे देखते हैं?
4: अब हम लोग तो पढ़ लिए हैं मराठी, अब सर्टिफिकेट मिलेगा
1: जी.
4: मराठी भी समझता हूँ, बोलता भी हूँ.
1: कुछ लोग मांग कर रहे हैं कि और थोड़ा समय देना चाहिए.
4: कुछ लोग नहीं आ पाए हैं ना, इतना एक साथ सबको नहीं हो पाया, उसका टाइम देना चाहिए सबको भाई. अभी सब नहीं पढ़ पाए हैं, सर्टिफिकेट कुछ को मिल रहा अभी भी दिए नहीं, मिलेगा हम लोगों को, बोले आरटीओ में.
1: पर आप इस फैसले को सही मानते हैं? आपको लगता है सही फैसला है?
4: सही फैसला क्या बोले हम लोग, जो बोलेंगे हम लोगों के विरुद्ध में होता है काम.
1: इसकी जरूरत है आपको लगता है?
4: जरूरत है, हम लोग तो सब भाषा समझता हूँ, ये इंग्लिश, हिंदी, मराठी, मारवाड़ी, गुजराती, सब भाषा समझता बोलता हूँ, एक ही भाषा का हमें 5-6 भाषा ज्ञान है, मराठी भी बोलता हूँ, मराठी भी आता, हम लोग यहाँ 32 साल से चला रहे हैं.
2: मराठी सीखने के 100 दिन पूरे होने पर तकरीबन सभी ऑटो और टैक्सी चालकों का कहना है कि सरकार को कुछ और मोहलत देनी चाहिए. उनके चेहरे की मायूसी को देखकर ये समझा जा सकता है कि सरकार के इस फैसले से वो कितने बेबस नजर आ रहे हैं.
1: 100 दिन पूरे हो चुके हैं, सरकार ने कहा था जिनको मराठी नहीं आएगी, टैक्सी और ऑटो रिक्शा चालकों को, उन पर कार्रवाई की जाएगी, आप कैसे देखते हैं इस डिसीजन को?
5: हम अभी कुछ नहीं बोल सकते, अभी तो मैं गांव से आया हूं.
1: जी जी, आपका नाम क्या दादा?
5: साबिर
1: जी. इस डिसीजन को आप कैसे देखते हैं? ये फैसला सही लगता है आपको कि मराठी नहीं आएगा तो लाइसेंस आपका कैंसिल हो जाएगा?
5: नहीं,
1: फैसला सही नहीं लगता. क्या कहेंगे इसको?
5: जैसे पहले चल रहा था उसी चलने दो आप. क्या
2: ऑटो टैक्सी चालकों से बातचीत के दौरान यही मांग सामने आई कि सरकार उन्हें कुछ और समय दे और तुरंत कार्रवाई न करे.
1: अब आपकी सरकार से क्या मांगे? चलिए आपको तो मराठी आती है, आपको तो दिक्कत नहीं होगी, लेकिन जो सीख नहीं पाई है, जिनको नहीं आ पा रही है, आप क्या मांग सरकार से मांग करेंगे?
0: सरकार से यही मांग करते हैं कि पब्लिक सीख रही है, जो टैक्सी वाले, रिक्शा वाले हैं, वो लोग सब सीख रहे हैं, जरूरत है सीखने की, लेकिन आप एक्शन मत लीजिए सर जी. आप सीख रहे हो, सीखेंगे, उनको प्रेशर डालो, सीखेंगे, लेकिन अब एक्शन ना करिए कि जिससे हम लोग प्रताड़ित हो यहाँ से रहने के लिए.
1: बिल्कुल, तो साफ है कि सरकार का जो फैसला है कि मराठी आनी चाहिए, वो सीखेंगे भी, ये भी तैयारी है, लेकिन यही सरकार से विनती है इनकी कि इसको लेकर सरकार कोई एक्शन ना ले, क्योंकि यही इनकी रोजी रोटी है, और अगर यही सरकार छीन लेगी तो ये कहाँ जाएंगे और क्या करेंगे.
2: वहीं महाराष्ट्र के परिवहन मंत्री प्रताप सरनाइक का कहना है कि सरकार ने गैर मराठी रिक्शा और टैक्सी चालकों को मराठी सीखने के लिए 100 दिन का पर्याप्त समय दिया है. सरकार का दावा है कि अब तक करीब 1,65,000 रिक्शा और टैक्सी चालकों को मराठी सीखने का सर्टिफिकेट दिया जा चुका है. उन्होंने आगे ये भी कहा कि जिन चालकों को मराठी नहीं आती उनके खिलाफ कानून के तहत प्रक्रिया शुरू की जाएगी.
6: हमारे राज्य में आजू बाजू के राज्य से आने वाले सभी जो रिक्शा या टैक्सी ड्राइवर है उनको यही आह्वान करते हैं कि ये महाराष्ट्र की संस्कृति है, महाराष्ट्र की परंपरा है, मराठी में अभिजात भाषा का दर्जा आदरणीय पंतप्रधान जी ने दिया, उसका आदर करना आपका भी कर्तव्य है जैसे हमारा कर्तव्य है. तो आप भी मराठी सीखिए और इस अभियान में आप भाग ले लीजिए, मगर कानून के खिलाफ अगर कुछ आप करोगे तो उसके ऊपर हमें कार्रवाई करनी पड़ेगी।
2: मराठी को लेकर ये नया नियम पूरे महाराष्ट्र के लिए है। जहां तक मुंबई की बात है तो यहां 48,000 से ज्यादा ऑटो ड्राइवर हैं, जबकि 3,680 से ज्यादा टैक्सी ड्राइवर जो रोजाना ऑटो टैक्सी चलाकर अपना गुजारा कर रहे हैं। और अब गैर मराठी खासकर उत्तर भारतीय ड्राइवर नए नियम को लेकर मराठी सीख तो रहे हैं, लेकिन उनका कहना है कि उन्हें कुछ और समय मिलना चाहिए। ऐसे में सबसे बड़ा सवाल यही कि अब सरकार का अगला कदम क्या होगा? क्या मराठी नहीं सीखने वाले ड्राइवरों के लाइसेंस या परमिट सस्पेंड किए जाएंगे या सरकार उन्हें एक और मौका देगी? मुंबई से दीपेश त्रिपाठी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
7: फिल्म मिर्जापुर द मूवी का नया गाना हो गया है रिलीज। इसके साथ ही फिल्म जगत से जुड़ी कुछ और खबरों को जानने के लिए आइए सीधे चले फिल्मी मोड़ पर।
2: डायरेक्टर जोया अख्तर की फिल्म जिंदगी न मिलेगी दोबारा में ऋतिक रोशन और कैटरीना कैफ की जोड़ी ने खूब चर्चा बटोरी थी। फिल्म में दोनों के बीच एक किसिंग सीन भी था जो कैटरीना का पहला ऑन स्क्रीन किस था। अब जोया ने बताया है कि कैटरीना इस सीन के लिए क्यों तैयार हुई। उनके मुताबिक स्क्रिप्ट की जरूरत को समझते हुए कैटरीना ने इसे स्वीकार किया। जोया ने लैला के किरदार की कहानी को स्लीपिंग ब्यूटी और ऋतिक के किरदार को प्रिंस से जोड़ते हुए इस सीन को जरूरी बताया। हनुमान की दुनिया से प्रशांत वर्मा सिनेमैटिक यूनिवर्स का अगला चैप्टर महाकाली लगातार चर्चा में है। फिल्म में अभिनेता अक्षय खन्ना एक बिल्कुल नए अवतार में नजर आने वाले हैं। वो फिल्म में असुरों के शक्तिशाली गुरु शुक्राचार्य का किरदार निभाएंगे। धुरंधर में शानदार अभिनय के बाद अक्षय खन्ना का ये नया अंदाज दर्शकों के लिए खास होने वाला है। फिल्म की पहली झलक 24 अगस्त को सामने आएगी। प्रशांत वर्मा की कहानी और काल्पनिक आधार पर बनी इस फिल्म का निर्देशन पूजा कोल्लूरू कर रही है। महाकाव्य श्री रामायण कथा का पहला पोस्टर और टीजर जारी कर दिया गया है। फिल्म में देव शर्मा भगवान श्री राम की भूमिका में नजर आएंगे, जबकि अंजलि अरोड़ा माता सीता के किरदार से फीचर फिल्म में कदम रख रही हैं। अभिषेक सिंह के निर्देशन में बनी ये फिल्म हिंदी और छत्तीसगढ़ी दोनों भाषाओं में शूट की गई है। प्रकाश महोबिया और संजय बुंदेला ने इसे प्रोड्यूस किया है। फिल्म को एजे फिल्म एंटरटेनमेंट वर्ल्ड प्रस्तुत कर रहा है। श्री रामायण कथा 25 सितंबर को दोनों भाषाओं में सिनेमाघरों में रिलीज होगी।

मिर्जापुर द मूवी को लेकर फैंस का क्रेज लगातार बढ़ता जा रहा है। फिल्म का नया गाना भी रिलीज कर दिया गया है, जिसमें पुराने पसंदीदा गाने वारूम फॉर एवर को नए और इमोशनल अंदाज में पेश किया गया है। एक्सेल एंटरटेनमेंट और अमेजन MGM स्टूडियोज ने इस गाने को रिलीज किया है। गुरमीत सिंह के निर्देशन में बनी फिल्म की कहानी पुनीत कृष्णा ने लिखी है। रितेश सिद्धवानी और फरहान अख्तर इसके प्रोड्यूसर हैं। मिर्जापुर द मूवी 4 सितंबर जन्माष्टमी के दिन हिंदी और तेलुगु में सिनेमाघरों में रिलीज होगी।

0: चलिए न्यूज पथ पर खबरों के सफर को आगे बढ़ाया जाए, लेकिन उससे पहले हमें रुकना होगा यहाँ यानी कि वायरल चौक पर। यहाँ देख लेते हैं उन वीडियोस को जो कि सोशल मीडिया में धमाल मचाए हुए हैं। इनमें से कुछ वीडियोस ऐसे हैं जो आपको इमोशनल कर देंगे और कुछ आपको हंसने पर मजबूर।
1: वक्त बदला, उम्र बदली, जिंदगी के रंग भी बदल गए, लेकिन भाई की कलाई और बहन के प्यार का रिश्ता आज भी वैसा ही है। उम्र चाहे कितनी भी हो जाए, थकान चाहे कितनी भी हो, बहन राखी लेकर अपने भाई के घर जरूर पहुंचती है। बचपन में जिस रिश्ते में शरारतें थी, वही रिश्ता उम्र के आखिरी पड़ाव तक प्यार और अपनापन बनाए रखता है। भाई की कलाई पर बंधा ये धागा सिर्फ राखी नहीं बल्कि बचपन से बुढ़ापे तक साथ निभाने वाले प्यार के निशाने है। कुछ भी हो, बॉडी तो आज ही बनेगी और ड्राई फ्रूट का डब्बा भी आज ही खाली होगा। बालकनी में बैठा ये बंदर भाई बड़े आराम से ड्राई फ्रूट खा रहा है। घर से डब्बा निकाला, आराम से बैठा और अब पूरा डब्बा साफ करने का प्लान है। बंदर का ये अंदाज देखकर ऐसा लग रहा है जैसे उसे किसी बात की कोई जल्दी ही नहीं है। सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे इस वीडियो को देख कर लोग खूब हंस रहे हैं और बंदर की इस हरकत को काफी पसंद कर रहे हैं। एक बच्ची ने गाय को खाना खिलाने की इच्छा जताई तो पापा ने बेटी की खुशी के लिए खुद गाय का रूप धारण कर लिया। कार्डबोर्ड पर गाय की तस्वीर बनाई गई और उसके पीछे पापा छिप गए। बच्ची बड़े प्यार से गाय को खाना खिलाती रही, लेकिन उसे जरा भी अंदाजा नहीं था कि तस्वीर के पीछे उसके पापा छिपे हैं। बेटी की मासूमियत और पापा का ये प्यारा अंदाज लोगों का दिल जीत रहा है। वीडियो देखकर लोग कह रहे हैं बच्चों की खुशी के लिए पापा कुछ भी कर सकते हैं। अनुशासन हो तो ऐसा और ट्रेनिंग हो तो ऐसी। इस वीडियो में एक प्यारा सा डॉगी अपने ऑफिसर की हर हरकत को बिल्कुल उसी अंदाज में दोहराता नजर आ रहा है। ऑफिसर जैसे जैसे आगे बढ़ते हैं और जो कुछ करते हैं, डॉगी भी उनके पीछे जाकर वैसा ही करने लगता है। डॉगी की समझदारी और शानदार ट्रेनिंग देखकर लोग हैरान हैं। सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा ये वीडियो लोगों को खूब पसंद आ रहा है। डॉगी का अनुशासन और अपने ऑफिसर के साथ तालमेल देखने लायक है। बचपन शायद ऐसा ही होता है जहाँ महंगे खिलौनों से ज्यादा मजा मिट्टी में खेलने में आता है। घर के सामने जमा ऊंची मिट्टी और दो बच्चे, बस फिर क्या था, शुरू हो गया खेल। दोनों बच्चे बारी बारी से मिट्टी के ढेर पर चढ़ते, फिर फिसल कर नीचे आते और दोबारा ऊपर चढ़ जाते। यही सिलसिला लगातार चलता रहा। चेहरे पर हंसी, आंखों में चमक और खेलने का जुनून साफ दिखाई देता है। बच्चों की ये मासूम मस्ती देखकर लगता है असली बचपन तो मिट्टी में ही मिलता है।
0: न्यूज पथ के सफर में अब सोशल अड्डा का रुख करते हैं, जहां आज बात होगी देश की राजधानी दिल्ली की। दिल्ली में साफ सफाई को बढ़ावा देने के लिए एक नया अभियान शुरू किया गया है। दिल्ली की मुख्यमंत्री श्रीमती रेखा गुप्ता ने दिल्ली को कूड़े से आजादी स्वच्छता अभियान 2026 की शुरुआत की है। सीएम ने बताया कि दिल्ली में यह स्वच्छता अभियान 17 अगस्त से 2 अक्टूबर तक चलाया जाएगा। इस अभियान के तहत सार्वजनिक जगहों के साथ ही स्कूलों, सरकारी अस्पतालों, शौचालयों की सफाई भी सुनिश्चित की जाएगी। सीएम ने अपील की है कि सभी लोग इस अभियान में हिस्सा लें और माय सिटी माय रिस्पॉन्सिबिलिटी की फीलिंग के साथ काम करें। सीएम रेखा गुप्ता ने ये घोषणा भी की है कि स्वच्छता के क्षेत्र में बेहतरीन काम करने वाले वार्ड को 1 करोड़ रुपए का इनाम दिया जाएगा। सीएम रेखा गुप्ता ने बताया कि वे दिल्ली के सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स से कहेंगी कि वो कहीं भी कूड़ा दिखाई देने पर 3 लोगों को टैग करें। लोग रील पर दिल्ली सीएम को टैग करें, दूसरा अपने इलाके के विधायक को और तीसरा अपने पार्षद को, ताकि उस जगह पर सफाई सुनिश्चित की जा सके। मुख्यमंत्री ने इस अभियान के लिए 4 C's पर जोर दिया है, जिसमें कलेक्शन, क्लीनिंग, कन्वर्जन और सर्कुलर इकोनॉमी शामिल है। इसके जरिए कूड़े से ग्रीन फ्यूल बनाने का काम किया जाएगा। इसके साथ ही सीएम ने सार्वजनिक स्थानों पर स्वच्छता अभियान, कचरे को स्रोत पर ही अलग अलग करने, सिंगल यूज प्लास्टिक के इस्तेमाल को कम करने का भी आह्वान किया है। उन्होंने बताया कि 23 अगस्त और 30 अगस्त को जेजे क्लस्टर का सफाई अभियान शुरू किया जाएगा। ऐसे ही 6 सितंबर और 13 सितंबर को भी ये सफाई अभियान जारी रखा जाएगा। 17 सितंबर को हर इलाकों के सरकारी अस्पतालों के सफाई अभियान का कार्यक्रम किया जाएगा, जिसमें लोगों से बढ़ चढ़कर शामिल होने की अपील की गई है। वहीं 17 सितंबर से 2 अक्टूबर तक मेरा स्कूल सबसे सुंदर की प्रतियोगिता होगी, जिसमें स्कूलों के मेंटेनेंस की ओर ध्यान दिया जाएगा। दिल्ली को स्वच्छ बनाने के लिए शुरू किए गए इस नए अभियान को लेकर हमने दिल्ली में लोगों से बात की और उनकी राय जानी।
2: राजधानी दिल्ली को साफ सुथरा करने को लेकर के दिल्ली सरकार के द्वारा कूड़े से आजादी नाम की एक मुहिम शुरू की गई है। जो दिल्ली का वार्ड सबसे साफ सुथरा होगा उसके लिए प्रतियोगिता की जाएगी, उसको 1 करोड़ की इनाम राशि दी जाएगी। कूड़ा को साफ सुथरा करने को लेकर के जो दिल्ली सरकार ने कहा है कि 1 करोड़ दिया जाएगा, कितना अच्छा कदम मानते हैं इसको आप?
3: ये तो बहुत ही अच्छा कदम है। आज से कुछ टाइम पहले ही मेरे घर पे पूजा हुई थी। दिल्ली में ऐसी कूड़ों की लेके इतनी समस्या हुई कि फेंकने की जगह नहीं है। कूड़े वाले अलग ड्रामा करते हैं, लाइक एक दिन का कूड़ा आपको 4 दिन के बाद लेके जाएंगे। हर गली में आप देखो तो कहीं कुछ पड़ा है, कहीं कुछ पड़ा है, जिससे बीमारियां फैल रही है, बहुत सी दिक्कतें हो रही है। तो अच्छी बात है कि सरकार इसको लेके सोच रही है, क्योंकि आम जनता सच में बहुत परेशान होती है। और जब बारिश हो जाता है तो कूड़े की वजह से और ज्यादा गंदगी फैलती है।
4: मुहिम केवल कागजों तक सीमित ना रह जाए, इसको इम्प्लीमेंट करना बहुत ज्यादा जरूरी है। खाली इनाम देने से कुछ नहीं होगा, पेनल्टी भी इम्पोज होनी चाहिए। जो वार्ड सबसे खराब हो उसके ऊपर 1 करोड़ की पेनल्टी भी लगाई जाए, यानी 1 करोड़ ये नहीं कि मुख्यमंत्री के पोस्टर निकाल करके दे दिया जाए। जहाँ पे खराब काम हो रहा है, दिल्ली में कितने सारे वार्ड होंगे, उस वार्ड पे जिसपे पेनल्टी लगी है उसका इनाम उसको दिया जाए, वो ज्यादा बेहतर है। और ये रिस्पॉन्सिबिलिटी फिक्स की जानी चाहिए किसी न किसी सरकारी अधिकारी के ऊपर, MCD के ऊपर, JE हो, AE हो, या बिल्डिंग डिपार्टमेंट, या जो भी इसका कूड़े का काम करता है उसके ऊपर जिम्मेदारी फिक्स भी होनी चाहिए। योजना तो बहुत अच्छी है। कूड़े को खत्म करने के लिए किसी भी स्तर तक जाना पड़े वो जाना चाहिए। जब कूड़े से हमें आज़ादी मिलेगी तभी लोगों के डेंगू से, मच्छरों से और या बीमारियों से आराम मिल पाएगा।
5: जी, ये जो मैंने सुना है अभी कि ऐसा सुनने में आया है कि 1 करोड़ रुपए की राशि मिलेगी जो भी वार्ड पे, जिसमें मतलब साफ सफाई और ये सब चीज़ें अच्छी रहेंगी। देखो, देखा जाए तो वैसे तो अच्छी चीज़ है, क्योंकि ये क्या है, एक तरीके से कंपटीशन को जन्म दे रहा है। और कंपटीशन में क्या होता है कि इंसान थोड़ी सी मेहनत करता है, तो जैसे अभी तक हम देख रहे हैं साफ सफाई के नाम पे जैसे हम बात करें तो उतनी साफ सफाई नहीं रहती, चाहे उसके पीछे कोई भी वजह हो, किसी भी वजह से हो, साफ सफाई उस तरीके से नहीं है। लेकिन जब कंपटीशन आ गया है तो हो सकता है कि जो भी काउंसलर हैं एरिया के वो इस पे मेहनत करें, और अपने उनके नीचे जो भी लोग हैं इसके लिए, जो जो लोग जिम्मेदार हैं उनको भी प्रोत्साहित करेंगे और फोर्स करेंगे कि भाई, क्योंकि जब इसके लिए कंपटीशन रखा गया है तो ये भी है कि जब इसका एक एंड होगा तो वो कहीं ना कहीं प्रकाशित भी होगा कि फलाने वार्ड पे साफ सफाई के लिए हम इसको पुरस्कार कर रहे हैं। तो जहाँ तक देखा जाए तो अच्छी योजना है।
0: दिल्ली में यमुना के किनारे एक भव्य रिवर फ्रंट बनाने की तैयारी है, यानी कि यमुना का किनारा सिर्फ नदी और घाट तक अब सीमित नहीं रहेगा, बल्कि यहाँ पर घूमने फिरने से लेकर मनोरंजन और पर्यटन तक की सुविधाएं विकसित करने का प्लान।
6: राजधानी दिल्ली की जीवनदायिनी कही जाने वाली यमुना किनारे विकास की नई तस्वीर तैयार करने की मुहिम शुरू हो गई है। गुजरात के साबरमती रिवर फ्रंट की तर्ज पर यमुना रिवर फ्रंट विकसित होगा। इस सिलसिले में दिल्ली के जल मंत्री प्रवेश वर्मा ने अधिकारियों के साथ गुजरात का दौरा कर साबरमती मॉडल का बारीकी से अध्ययन किया।
7: सामने दिल्ली में सबसे बड़ा चैलेंज है यमुना रिवर फ्रंट बनाना, यमुना मैया को साफ करना। हमने साबरमती रिवर फ्रंट से बहुत सारी योजनाओं को सीखा है और हमने उनका प्रेजेंटेशन भी लिया है, उनके अधिकारियों को एक बार दिल्ली में भी बुलाकर पूरा समझेंगे।
6: यमुना रिवर फ्रंट को आधुनिक, आकर्षक और पर्यावरण के अनुकूल बनाया जाएगा और साबरमती मॉडल को दिल्ली की जरूरतों के मुताबिक लागू किया जाएगा। योजना के तहत यमुना किनारे खूबसूरत वॉकवे, साइकिल ट्रैक के साथ ही खेल और मनोरंजन से जुड़ी सुविधाएं विकसित की जाएंगी। कालिंदी कुंज के पास करीब 60 करोड़ रुपए की लागत से आधुनिक छठ घाट का निर्माण किया जाएगा। पारंपरिक धोबी घाटों को व्यवस्थित कर वहां आधुनिक मैकेनाइज्ड लॉन्ड्री मशीनें लगाई जा सकती है। इसके साथ ही यमुना किनारे पर्यटन को बढ़ावा देने पर भी जोर रहेगा। हालांकि यमुना रिवर फ्रंट की सबसे बड़ी चुनौती नदी की सफाई और पर्यावरण संरक्षण रहेगा, जिसके लिए लगातार काम किए जा रहे हैं और आगे भी सीवेज प्रबंधन, जल प्रदूषण और नियंत्रण और यमुना के इकोसिस्टम को सुरक्षित रखने पर खास ध्यान दिया जाएगा। यमुना रिवर फ्रंट की इस योजना के मुकम्मल होने के बाद दिल्ली की एक अलग तस्वीर नजर आएगी, जो सेहतमंद होने के साथ आकर्षक भी होगी। नर्मदा से नरेंद्र पेपरवाला के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, विटनेस टुडे।
8: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी।
9: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।
0: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती हैं तो कुछ दिखाती हैं विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
8: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से।
10: हॉकी वर्ल्ड कप में भारत ने पाकिस्तान को 5-3 से हराया, टॉप 8 में पहुंची टीम इंडिया, कप्तान हरमनप्रीत और अभिषेक ने दागे 2-2 गोल। जम्मू कश्मीर दौरे पर अमेरिकी राजदूत सर्जियो गोर श्रीनगर की डल लेक में की शिकारा की सवारी, घाटी के मेहमान नवाजी के मुरीद। मौसम की चुनौतियों के बीच हेमकुंड साहिब यात्रा में रौनक, अब तक 2.5 लाख से ज्यादा श्रद्धालुओं ने टेका मत्था, 10 अक्टूबर तक जारी रहेगी पवित्र यात्रा। सावन के पवित्र महीने में दिख रहे हैं शिव भक्ति के अनोखे रंग, मुंगेर में भव्य कांवड़ यात्रा बनी आकर्षण का मुख्य केंद्र, श्रद्धालु बैद्यनाथ धाम में करेंगे जलाभिषेक। महाराष्ट्र में गणेश उत्सव की तैयारियां तेज, अकोला में बप्पा की प्रतिमाओं को अंतिम रूप दे रहे हैं कारीगर, 14 सितंबर से शुरू होगा उत्सव।

गुड न्यूज टुडे देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ वैभव राज शुक्ला। स्वागत है आपका हमारे विशेष कार्यक्रम में, जहां हम बात कर रहे हैं बप्पा की। इनके आगमन के दिन अब बहुत करीब रह गए हैं और इसलिए मुंबई में उनके स्वागत की तैयारियां जबरदस्त तरीके से लगातार जारी हैं। बड़े मंडपों में बप्पा की प्रतिमा और उनके दरबार की सजावट का काम तेजी से चल रहा है। आज आपको लिए चलेंगे लालबाग चौराहा मंडप में, जहां पर मुख्य द्वार का काम लगभग पूरा होने को है। आपको मंडप की सजावट और थीम के बारे में विस्तार से हम समझाएंगे भी। इसके बाद देखिए मुंबई के ही काला चौकी के महागणपति की प्रतिमा के आज हम दर्शन कराने जा रहे हैं, जिन्हें मंडप में बड़े ही धूमधाम के साथ लाया जा चुका है और अब उनकी सज्जा का काम शुरू हो चुका है। गणपति उत्सव को देखते हुए मुंबई के बाजारों और दुकानों में जबरदस्त रौनक है। बप्पा की प्रतिमा और उनके दरबार को सजाने वाली चीजों की भारी डिमांड इस वक्त देखने को मिल रही है। आज आपको बप्पा के लिए बन रहे आसन और सिंहासन दिखाएंगे, जिनकी भारी डिमांड है। शुरुआत करते हैं लालबाग के राजा के साथ। देखिए मुंबई में गणेश उत्सव की तैयारियां जोर पकड़ चुकी हैं और अब इंतजार बस बप्पा के आगमन का है। लालबाग चौराहा का भव्य मंडप दिन रात की मेहनत से आकार ले रहा है। धीमे धीमे 93वें साल में प्रवेश कर रहे लालबाग चौराहा के दर्शन करने के लिए हर साल देश विदेश से लाखों श्रद्धालु पहुंचेंगे, इसलिए पंडाल की सजावट से लेकर भक्तों की सुविधा और भीड़ प्रबंधन का खास तैयारियां उनके लिए की जा रही हैं। बप्पा की प्रतिमा से पर्दा गणेशोत्सव से एक दिन पहले उठेगा, जिसके लिए उत्सुकता भी है और इंतजार भी। देखिए लालबाग चौराहा से हमारी खास रिपोर्ट।

0: गण नायकाय गण देवताय गणाध्यक्षाय धीमहि गुरु शरीराय गुणमंडिताय गुणेशानाय धीमहि एक दंताय वक्रतुंडाय गौरी तनाय धीमहि गजेशानाय भालचंद्राय श्री गणेशाय धीमहि। पापा के आने की शुभ घड़ी है और सबसे ज्यादा इंतजार लाल बागचा राजा के दर्शन का है। अब ज्यादा दिन बाकी नहीं जब यहाँ मुंबई का सबसे भव्य मंडप सजकर तैयार होगा, जिसमें नव साचा गणपति यानी मन्नतों के राजा की विशाल प्रतिमा विराजमान होगी। लेकिन उससे पहले अनगिनत काम है। वैसे तो 9 जून को ही पूजा के साथ उत्सव की तैयारियां शुरू हो चुकी हैं। और देखिए कैसे दिन रात काम करते हुए पंडाल का भव्य मुख्य द्वार लगभग तैयार है।
1: इसी रास्ते से विसर्जन के समय लालबाग के राजा बाहर की तरफ आते हैं और इसी सड़क पर बेसब्री से लाखों की तादाद में जुटे जो श्रद्धालु हैं वो लालबाग के राजा का अंतिम दर्शन करने के लिए घंटों खड़े रहते हैं। ये वही मुख्य द्वार है, ये वही भव्य बड़ा सा गेट है जहां पर लोग पहुंचकर सेल्फीज निकालते हैं, क्वालिटी जो तस्वीरें हैं वो शूट करते हैं और यहां पर आकर के इसकी जो शोभा है, जो सुंदरता है वो देखते हैं। आपको बताएं कि पिछली बार मुख्य द्वार को तिरुपति बालाजी का अवतार दिया गया था, उसका स्वरूप दिया गया था, लेकिन इस बार जो जानकारी मिल रही है कहीं ना कहीं भोलेनाथ को इस मुख्य द्वार से जोड़ा जाएगा। गौरतलब है कि श्रावण चल रहा है, ऐसे में जो जानकारी हमारे पास मिली है सूत्रों के मुताबिक जो हमें खबर मिली है इस बार बद्रीनाथ या केदारनाथ की थीम पर ये भव्य गेट बनाया जाएगा। आपको बताएं कि इसका काम शुरू हो चुका है, तकरीबन 1.5 महीने पहले से ही लाखों रुपए इस भव्य गेट के लिए लगते हैं। इस तरह के लालबाग के राजा पर कुल 3 गेट बनाए जाते हैं जहां से श्रद्धालु कतारों में होते हुए लालबाग के राजा का दर्शन करने के लिए पहुंचते हैं। बस यहां पर ज्यादा से ज्यादा 500 से 600 मीटर की दूरी पे ही लालबाग के राजा विराजमान है जहां पर उनकी प्रतिमा बनाने का काम शुरू है। हालांकि पर्दे से उन्हें अभी छिपाया गया है और एक दिन प्रेस कॉन्फ्रेंस ली जाएगी और उस दिन ही पहली बार लालबाग के राजा का दर्शन जो है वो दिया जाएगा।
0: जैसी शोहरत इस पंडाल की है उसी के अनुरूप हर साल इसकी सजावट होती है। बारीक नक्काशी, मनमोहक शिल्प और अद्भुत मूर्तियां, अभी तो ये झांकी है लेकिन इसे देखकर अंदाजा लगाया जा सकता है कि लालबाग के राजा का मंडप इस साल कितना भव्य और दिव्य होगा। इस साल लाल बागचा राजा पंडाल अपने 93 साल में प्रवेश कर रहा है। हर साल की तरह इस साल भी भक्तों के मन में सवाल है कि बापा की प्रतिमा कैसी होगी, उनकी सज्जा कैसी होगी। लेकिन जहां प्रतिमा बनाई जा रही है वो जगह कपड़े से ढकी हुई है। हमेशा की तरह प्रतिमा से पर्दा गणेशोत्सव के एक दिन पहले उठेगा।
1: लालबाग के राजा जहां पर स्थापित हैं, इस जहां पर उनकी प्रतिमा बनाने का काम चल रहा है, मैं उस जगह पे मौजूद हूं। ये आप देख रहे हैं तस्वीर, चारों तरफ से पैक किया गया है और यहां पर ही लालबाग के राजा को बनाने का काम जो है शुरू है। आप देखें बैरिकेड्स वगैरह सारे लगा दिए गए हैं। नॉर्मली यहाँ पर किसी को आने जाने अब नहीं दिया जा रहा है, लेकिन जो कोई भी लालबाग के राजा की उस पत्थर वाली प्रतिमा को जाकर श्रद्धा करना चाहता है, पूजा करना चाहता है, तो वो यहाँ पहुंच जाते हैं। खास बात यह है कि वो जगह है जिसे मन्नत की लाइन कही जाती है, मन्नत की कतार कही जाती है। यही वो जगह है जहां पर 8-10 घंटे लाइन में खड़े होने के बाद बप्पा के पास पहुंचा जाता है, तब जाकर के उनके पैर छूने का मौका मिलता है। थोड़ा सा देखें किस तरीके से एक बहुत ही भव्य तरीके से यहाँ पर लालबाग के राजा का दरबार सजाने का काम जो है शुरू है।
0: मुंबई के लालबागचा राजा देश के सबसे प्रसिद्ध गणपति मंडलों में शामिल हैं, जहाँ हर साल महाराष्ट्र ही नहीं बल्कि पूरे देश और विदेश से भी लाखों श्रद्धालु भगवान गणेश के दर्शन के लिए पहुँचते हैं। आम लोगों के साथ नेता, अभिनेता और उद्योगपतियों का तांता लगा रहता है। ऐसे में मंडल का सबसे ज्यादा फोकस भीड़ को कंट्रोल करने और भक्तों को बेहतर सुविधा देने पर होता है। बारिश के दिन है, लिहाजा सावधानी ज्यादा है।
1: मुंबई शहर की इन ऊंची ऊंची इमारतों के बीच लालबाग के राजा का दरबार है। कोशिश करते हैं तस्वीरों के माध्यम से दिखाने की कि किस तरह की व्यवस्था और किस तरह की तैयारी गणेश उत्सव को लेकर की जा रही है। गौरतलब है कि 14 सितंबर से मुंबई, महाराष्ट्र और ये पूरा देश जो है गणेश का महाउत्सव मनाने वाला है। पूरे देश भर में लालबाग के राजा का नाम बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा चर्चित है। अलग अलग राज्यों से लोग दर्शन करने के लिए आते हैं और तस्वीरों के माध्यम से आप देखें किस तरीके से पूरी तैयारी शुरू हो चुकी है। आप सामने देखें बकायदा टेंट लगा दिया गया है क्योंकि इंद्र देवता बहुत ज्यादा इस समय मुंबई में प्रसन्न है। अच्छी खासी बारिश हो रही है और जब घंटों कतार में खड़े रहने वाले जो श्रद्धालु हैं बप्पा तक पहुंचते हैं तो उनकी सुरक्षा और उनको लेकर के ठीक ठाक व्यवस्था किस तरीके से लालबाग द्वारा की जाती है ये दिखाने का हम पूरा प्रयास कर रहे हैं। सामने जो आप टेंट देख रहे हैं यहाँ पर ही घूम घूम कर लंबी लंबी कतारें लगाई जाती हैं जिसमें मुख दर्शन भी होता है और उनके पग का भी दर्शन होता है। साथ ही आपको बताएं कि ये वही मुख द्वार है जहां से लालबाग के राजा विसर्जन के लिए सीधे बाहर की तरफ आते हैं। आप देख रहे हैं संतरे कलर का यानी कि ऑरेंज कलर का टेंट है और यहां से ही वीआईपी, वीवीआईपी और तमाम वो श्रद्धालु जो बप्पा तक पहुंचते हैं वो भीतर की तरफ जाते हैं और इस टेंट के एकदम आखिरी में बप्पा के निर्माण कार्य जो है चल रहा है। हालांकि अभी लालबाग के राजा को दिखाया नहीं जा रहा है।
0: जहां लालबाग का राजा का पंडाल है उसी परिसर में एक मशहूर बाजार है। आम दिनों में यहां काफी भीड़ भाड़ होती है, रौनक रहती है। रोजमर्रा की चीजों के अलावा यहां पूजा पाठ का सामान मिलता है लेकिन गणेश उत्सव शुरू होते ही ये बाजार बंद कर दिया जाता है। लेकिन बापा के आने की खुशी ऐसी होती है कि दुकान बंद करने का मलाल यहां किसी दुकानदार को नहीं होता। लाल बागचा राजा का पंडाल तो सज ही रहा है। बापा के स्वागत के लिए बाजार भी तैयार है। बापा आएंगे तो धूम होगी, सजावट होगी, उनके लिए भव्य आसन और सिंहासन की जरूरत होगी। डिमांड ज्यादा है और समय कम, इसलिए जोर शोर से काम शुरू हो चुका है। मुंबई में लालबाग के राजा पंडाल से सटी गली में सहेली नाम की कार्यशाला में अभी से गणेश भक्तों की भारी भीड़ है क्योंकि यहां बाप्पा के लिए एक से बढ़कर एक आसन है।
2: के राजा का जो मंडल है उससे ठीक सटी एक गली है और गली में ही एक ऐसी कार्यशाला है जहां पर गणपति बप्पा को सजाने का काम बहुत ही तेजी से चल रहा है। उनके सिंहासन, उनके आसन को एक से बढ़कर एक रंग रूप दे करके बनाया गया है। थोड़ा तस्वीरों में देखें, एक से बढ़कर एक सिंहासन इस समय गणपति बप्पा गणेश जी के लिए जो है यहाँ बनाकर रखे हैं। गौरतलब है कि 14 सितंबर से गणेश उत्सव पूरा देश मनाने वाला है। ऐसे में हर कोई चाहता है कि अपने घरों में यानी कि घर गृहती जो गणेश जी ले जाएंगे उन्हें जिस सिंहासन पर बिठाया जाए वो उनका पसंदीदा हो, डिमांडिंग हो और कहीं ना कहीं ट्रेंडिंग भी हो। यही वजह है कि आप देखें एक बहुत बड़ी कार्यशाला इस समय यहाँ पर है और लोग यहां पर ढेरों की तादाद में पहुंच रहे हैं, अपने पसंदीदा एक से बढ़कर एक सिंहासन भी बना रहे हैं। आकर्षित का केंद्र वैसे तो बहुत सारे हैं लेकिन ये जरा सा वाटर वॉल पेपर देखें, इसे गणेश जी के ठीक पीछे रख दिया जाएगा और जब बप्पा इसके समक्ष बैठेंगे, विराजमान होंगे तो आप समझ सकते हैं किस तरह की खूबसूरती देखने को मिलेगी। साथ ही साथ ये देखिए कितनी प्यारी सी रुद्र के साथ में शिवलिंग का भी अवतार यहां पर किया गया। इस तरह की एक से बढ़कर एक प्रतिमाओं से गढ़ी एक से बढ़कर एक सिंहासन आसन जिसे छोटे छोटे मंडप भी कहे जाते हैं वो बनाने का काम है।
0: कहने की जरूरत नहीं कि ऐसे खूबसूरत आसन बापा की प्रतिमा की भव्यता और बढ़ाते हैं, इसलिए गणेशोत्सव में इनकी जबरदस्त मांग होती है। 25 सालों से काम कर रही सहेली कार्यशाला में गणेश भक्तों के लिए ऑप्शन भी ढेर सारे हैं। पंडरीचा रूप आसन, श्री सिंहासन, सुखहर्ता आसन, मौर्या आसन, वक्रतुंड आसन, मंगल मूर्ति आसन, स्वामी समर्थ आसन, स्वराज आसन, बापा के लिए जिसे जो पसंद आ जाए।
3: आप देख सकते हैं कि हमारे सबसे ज्यादा विट्ठल पंडरीनाथ की है, शंकर भगवान की है, जैसे आप लोग अभी ये साल सबसे ज्यादा चला वो स्वामी समर्थ का है। अच्छा। आज का ट्रेंड चलो स्वामी समर्थ का, तो स्वामी समर्थ का हम लोग इसमें तीन साइज बना के रखे। हाँ। हमारे यहाँ आपको हर चीज में इसमें तीन साइज मिलेंगे, छोटा मीडियम और बड़ा, ऐसे तीन मिलेंगे। हाँ। जैसे आपका बापा होंगे वैसे वो साइज के आपको करके ये मिल जाएंगे सब।
2: हमारे लंबाई बप्पा की होगी उतनी साइज में आप सिंहासन बनाएंगे। यहाँ भी मैं देख रहा हूँ बहुत सारे लोग राजा पंढरीचा,
3: ये राजा पंडित विठल के हैं, एक नाम है उनका राजा पंडित है। जैसे गणपति का नाम है वक्रतुंड मनोदर, हम लोग वो नाम पे वो थीम पे सुकरता है, लंबोदर है, वक्रतुंडे, अलग अलग नाम पे मोरे है। जैसे गणपति बापा का नाम है वैसे हम लोग उसके नाम पे भी बनाए, वो सब अलग अलग चीज का आपको मिल सकता है हमारे यहाँ।
2: अच्छा, मैंने देखा एक दो लोगों ने आपसे छत्रपति शिवाजी महाराज की भी सिंहासन मांगी, वो भी
3: है हमारे यहाँ। महाराज के शिव महाराज के राज्यभिषेक का सिंहासन वो भी रखे, जिसके साथ में उनके मावड़े भी रखे हुए है। अच्छा। कि अगर आप घर पे बना सकते हो तो आपको अलग से मावड़ा चाहिए तो मावड़े भी मिल सकते हैं, जो फोल्डिंग पूरे आते हैं। मैम
0: बापा घर आएंगे तो उनके लिए सिर्फ आसन या सिंहासन ही नहीं चाहिए, उनकी प्रतिमा को सजाने का भी सामान जरूरी है। दरबार को सजाने के लिए भी खूबसूरत चीजों की आवश्यकता होती है।
4: मुंबई की गलियों में गणपति बप्पा मोरिया की गूंज सुनाई देने लगी है और इसी के साथ शुरू हो गई है बप्पा के भव्य स्वागत की तैयारियां। साज सज्जा के लिए कला चौकी के 22 फीट ऊंचे महागणपति के पहले ही पंडाल में आगमन हो चुका है। ढोल नगाड़ों और जयकारों के साथ जब भक्त बप्पा को लेकर पहुंचे तो रौनक देखने वाली थी। इस बार महागणपति महालक्ष्मी के स्वरूप में विराजेंगे और पंडाल को भी सोलापुर के महालक्ष्मी मंदिर की तर्ज पर सजाया जाएगा। 71 साल पुराने इस मंडल में हर साल कुछ नया देखने को मिलता है, जिसका भक्तों को खास इंतजार रहता है। रिपोर्ट देखिए।

0: साल जिसका इंतजार होता है वो घड़ी बेहद करीब आ चुकी है। चंद रोज में ही मुंबई की सड़कें गलियां इस जयघोष से गूंजने वाली हैं। गणपति बाप्पा मोरिया, मंगल मूर्ति मोरिया। 14 सितंबर से गणेशोत्सव की शुरुआत है और उसकी तैयारी अभी से शुरू हो चुकी है। गणपति की प्रतिमाएं धूमधाम से पंडालों तक जा रही हैं। ढोल नगाड़ा बजाते, नाचते गाते भक्तिभाव के साथ मुंबई के काला चौकी के महागणपति को पंडाल में लाया गया। हजारों की संख्या में भक्त जयकारा लगाते प्रतिमा के साथ चले। इस तरह काला चौकी के 22 फीट ऊंचे महागणपति का उनके पंडाल में आगमन हो गया। सिंह पर सवार बाप्पा इस साल महालक्ष्मी जी के अवतार में है और हमेशा की तरह बाप्पा की ये प्रतिमा दिव्य और भव्य है।
1: बड़े बड़े पंडाल अपने बप्पा को अपनी जगह पर लेकर आना शुरू हो चुके हैं। फिलहाल इस समय मौजूद हूँ साउथ मुंबई के काला चौकी के महागणपति के दरबार में और आप देखें बहुत ही सुंदर भव्य तरीके से बप्पा को यहाँ पर विराजमान कर दिया गया है। आपको बताएं कि महालक्ष्मी के अवतार में गणपति बप्पा को ले आया गया है। हाल यहाँ बात करें इन बप्पा की तो 22 फीट की ऊंचाई है। ट्रॉली से सिंह पर बकायदा बप्पा सवार हैं और खास बात यह है कि जो ट्रॉली रखी गई है जिस जगह पे उसके नीचे बहुत ही सुंदर तरीके से रंगोली भी निकाली गई है, बनाई गई है, ठीक उसके ऊपर बप्पा को विराजमान करा गया है। और कुछ घंटों पहले बहुत सारे तस्वीरें, बहुत सारे वीडियोस सोशल मीडिया पर बप्पा के आगमन को लेकर के वायरल हुए थे जिसमें हजारों की तादाद में जो गणेश भक्त हैं वो जुटे हुए थे और हर कोई बप्पा का स्वागत कर रहा था।
0: काला चौकी इलाके में महागणपति का पंडाल अपनी भव्यता के लिए मशहूर है। न सिर्फ विशाल प्रतिमा बल्कि मन को मोह लेने वाली दिव्य साज सज्जा। सबसे बड़ी बात ये कि इसमें महाराष्ट्र की संस्कृति और परंपरा को संजोया जाता है।
2: हर साल स्वरूप महागणपति का बदलता है। कभी महागणपति पांडुरंग विट्ठल के रूप में आते हैं, कभी सरस्वती के रूप में आते हैं, कभी भोले शंकर के रूप में आते हैं, तो कभी कान्हा नटखट बन के आते हैं। ये साल महालक्ष्मी का रूप यानी महालक्ष्मी यानी क्या, स्थैर्य, शांति, संपत्ति, जो आजकल हर एक को आशीर्वाद के रूप में महागणपति देने आ रहे आ गए हैं। और इसी का जो हमारी झांकी बनेगी, डेकोरेशन बनेगा, वो भी उसी का एक कोल्हापुर के महालक्ष्मी के मंदिर का जो कंपोनेंट्स है, जो छवि है, वही आपको देखने को मिलेगी। इसलिए मैं आपके ओर से हमारे सभी भक्तों को विनती करता हूँ कि ये महालक्ष्मी का रूप, महालक्ष्मी का रूप महागणपति का आप इस कोल्हापुर के महालक्ष्मी के मंदिर में देखने आइए।
0: महागणपति की प्रतिमा आ चुकी है, अब इसकी सजावट पर काम शुरू हो जाएगा। लेकिन अभी से जोश ऐसा है कि हजारों की तादाद में भक्त दर्शन के लिए आने लगे हैं। कार्यकर्ताओं में जोश है और महागणपति मंडल के कर्ता धर्ता दिन रात काम में जुटे हैं। काला चौकी महागणपति मंडल में बाप्पा का स्वरूप हर साल बदलता है। इस साल बाप्पा महालक्ष्मी स्वरूप में पधारे हैं और उनका पंडाल भी सोलापुर के महालक्ष्मी मंदिर की तर्ज पर सजाया जाएगा, जिसकी पहली झलक गणेशोत्सव के पहले दिन देखने को मिलेगी।

0: महागणपति का आगमन 16 हम लोग सिर्फ आगमन नहीं करते, तो एक परंपरा उसमें जताते हैं। महाराष्ट्र की जो परंपरा है जो आजकल कम होती जा रही है और वो सिर्फ उनके जगह पे दिखाई जाती है, उनको हम सब मुंबई में लेके आते हैं। पालखी जो होली में हमारे कोकण में नचाई जाती है, वो कोली हमारे सब कोकण के बांधव वो पालखी लेके आते हैं और महागणपति के जो रुपेरी पैर रहते हैं उनको वो पालखी में रखते हैं। हमारे कोली भाई बहन रहते हैं वो उनका नृत्य प्रकार यहाँ पे दिखाते हैं। मर्दानी खेल जो रहते हैं जो शिवकालीन छत्रपति शिवाजी महाराज जी के काल्य खंड से ये चलते आ रहे हैं, वो भी हमारे ये पारंपरिक आगमन 16 में रहते, इसलिए ये सब मैनेज करने के लिए हमें एक महीने का वक्त तो लगता ही है।
1: काला चौकी महागणपति मंडल के 71 साल हो चुके हैं। हर साल ये मंडप अपनी साज सज्जा का नया कीर्तिमान बनाता है और उम्मीद की जा रही है कि इस साल भी गणेश उत्सव में यहाँ कुछ अलग कुछ नया देखने को मिलेगा। आपको बता दें कि काला चौकी के महागणपति के आसपास कई बड़े पंडाल हैं जो देश भर में मशहूर हैं। इसी इलाके में लालबाग का राजा, चिंतामणि का राजा, गणेश गली, चिंचपोकली का राजा और परेल का राजा जैसे पंडाल हैं। और जब गणेश उत्सव प्रारंभ होगा ये पूरा इलाका ही एक विशाल धर्म स्थल में तब्दील हो जाएगा और महागणपति के इस पंडाल में दर्शन के लिए लाखों भक्त पहुँचेंगे।
2: और धीरे धीरे ये जो पूरा परिसर है महालक्ष्मी के मंदिर के रूप में बदल जाएगा और उसके बाद लंबी लंबी कतारें श्रद्धालुओं की यहाँ पर लगेगी, घंटों लोग यहाँ खड़े होंगे, फिर चाहे इंद्र देवता बरस ही क्यों ना रहे हों, लेकिन फाइनली कितनी भी थकावट हो जाए बप्पा के समक्ष आकर लोग खुद को बहुत ज़्यादा तंदुरुस्त समझेंगे, बहुत ज़्यादा फ्रेश समझेंगे और बप्पा के आशीर्वाद के साथ अपनी मनोकामना बप्पा के समक्ष रखेंगे। वीडियो जर्नलिस्ट स्वागत खां के साथ धर्मेंद्र दुबे, गुड न्यूज़ टुडे, मुंबई।
3: मुंबई नहीं, आपको बता दें महाराष्ट्र के
4: क्या आप सोते समय परेशान रहते हैं? क्या आप पलंग पर फैल कर सोते हैं? क्या आपको सोने के लिए सहारे की जरूरत पड़ती है? आपके सोने का तरीका आपके मन के बारे में क्या बताता है, जानिए मेरे साथ सिर्फ गुड लक टुडे में।
5: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है
6: और दुर्भाग्य कहता है
7: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
8: अविश्वास में विश्वास बसता है
9: जो हम में अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
10: गुड न्यूज टुडे,
11: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को।
12: देश के कई हिस्सों में बारिश का दौर जारी है, इससे कई जगह बाढ़ जैसे हालात बने हुए हैं। इन सब के बीच राहत और बचाव का काम भी लगातार चल रहा है। एक रेस्क्यू ऑपरेशन समंदर में भी चलाया गया, तो हिमाचल प्रदेश में बारिश को लेकर मौसम विभाग का अलर्ट भी है।
13: बारिश की वजह से देश के कई हिस्सों में बाढ़ जैसे हालात बने हुए हैं। इन सब के बीच जगह जगह लोग बेबस नजर आते हैं। इनके लिए रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया जा रहा है। राहत और बचाव की टीमें जरूरतमंदों तक खाने पीने का सामान पहुंचाने के साथ ही लोगों को सुरक्षित स्थान तक पहुंचाने का भी काम कर रही है। बारिश और बाढ़ को लेकर जारी रेस्क्यू ऑपरेशन के अलावा समंदर में मुश्किल हालात के बीच फंसे लोगों की जान भी बचाई जा रही है। गुजरात के नवसारी की ये तस्वीरें देखिए, यहाँ समंदर में फंसे मछुआरों को एयरलिफ्ट कर सुरक्षित बचाया गया। समंदर में एक नाव के डूबने की स्थिति में होने की जानकारी मिलने पर कोस्ट गार्ड ने तत्काल हेलीकॉप्टर के जरिए रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया और नाव में सवार सभी 9 मछुआरों को एक एक कर सुरक्षित बचा लिया।
14: के जलालपुर तहसील के कृष्णपुर गांव से एक फिशिंग बोट वलसाड़ की ओर जाने को रवाना हुई थी, जिसमें 9 लोग सवार थे। जयेश भाई कंडेल की ये जो बोट थी वो धोलाई मरीन बंदर से ढाई नोटिकल माइल के दूरी पर सिंक होना स्टार्ट हुई थी। 9 लोगों का रेस्क्यू कॉल हमें कंट्रोल रूम में मिला था, उसमें ये सब 9 लोगों को रेस्क्यू करने के लिए पहले एनडीआरएफ की टीम से आयोजन किया था, फिर पता चला कि भाई ये अपने कोस्ट गार्ड के चोपर के मदद से ही रेस्क्यू करना पड़ेगा। तो कोस्ट गार्ड के जो कमांडेंट साहब है उनसे मैंने बात की थी, नवसारी जिला कलेक्टर श्री मनीष गुरवानी साहब ने कोस्ट गार्ड के डीआईजी साहब से बात करते ही तुरंत उन्होंने चोपर भेजा था।
13: रेस्क्यू कर सभी 9 मछुआरों को समंदर तट पर सुरक्षित उतार दिया गया। वहीं ओडिशा में बाढ़ के पानी में बहे एक व्यक्ति का भी रेस्क्यू किया गया। ओडिशा के बाढ़ प्रभावित भद्रक जिले की ये तस्वीर देखिए। बालीपाटना इलाके के तारनगर गांव के रहने वाले सुनंदा बेहरा ताड़ के पेड़ को पकड़कर भूखे प्यासे 5 दिन तक इसी तरह अपनी जान बचाते रहे। ODRAF की टीम को सुनंदा बाजापति पाड़िया इलाके में मिली, वहां से रेस्क्यू कर उन्हें पालीपाटना मेडिकल सेंटर ले जाया गया जहां उनका इलाज चल रहा है। मैदान से लेकर पहाड़ तक में हो रही बारिश मुश्किल का सबब बन रही है। उत्तराखंड में ऋषिकेश से लेकर देहरादून तक में SDRF और पुलिस की टीम रेस्क्यू ऑपरेशन में पसीना बहाती नजर आ रही है। ऋषिकेश में पानी के तेज बहाव में फंसी एक गाड़ी के ऊपर जवान रस्सी के सहारे पहुंचे और फिर गाड़ी के अंदर से एक एक कर दोनों लोगों को सुरक्षित बाहर निकाला। वहीं देहरादून के विकास नगर में स्वर्णा नदी में फंसे 6 छात्रों को भी SDRF के जवानों ने काफी मशक्कत के बाद सुरक्षित रेस्क्यू किया। उत्तराखंड में भारी बारिश की वजह से नदी नाले उफान पर हैं, जिसको देखते हुए प्रशासन अलर्ट मोड में है और लोगों से सतर्कता बरतने की अपील की जा रही है। हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला समेत जगह जगह बारिश का दौर देखने को मिल रहा है। इन सब के बीच मुश्किल हालात में फंसे लोगों का रेस्क्यू भी किया जा रहा है। हिमाचल प्रदेश में मॉनसून सक्रिय है और इसके चलते 22 अगस्त तक बारिश का दौर जारी रहने का अनुमान है, जिसको लेकर मौसम विभाग ने अलर्ट भी जारी किया है।
10: 19 अगस्त को हमीरपुर, चंबा, कांगड़ा, मंडी, शिमला, सिरमौर और यहाँ पे एक दो स्थानों में हैवी रेनफॉल का येलो अलर्ट जारी किया गया। उसके उपरांत 20 और 21 अगस्त को चंबा, कांगड़ा, कुल्लू, मंडी यहाँ के लिए येलो कैटेगरी में हैवी रेनफॉल का येलो अलर्ट जारी किया गया। फिर उसके उपरांत देखिए 22 अगस्त को जो वेदर एक्टिविटी है उसकी इंटेंसिटी में काफ़ी कमी आएगी। हालांकि 22 अगस्त को जो हमारी जो वेदर एक्टिविटी है वो जो हमारे क्षेत्र में मध्यवर डिस्ट्रिक्ट हैं, जो क्षेत्र ऊना, बिलास, हमीरपुर, वहाँ पर कुछ क्षेत्रों में हल्के से मध्यम बारिश का दौर जारी रहेगा। जो मेजर रिडक्शन है वेदर का वो 22 अगस्त के उपरांत देखने को मिलेगा प्रदेश में, और उसके बाद 23 और 24 अगस्त को काफ़ी कम रहेगी, मतलब वेदर एक्टिविटी मतलब कुछ क्षेत्रों तक सीमित रहेगी। और
13: हिमाचल प्रदेश में 22 अगस्त के बाद भले ही बारिश में कमी आने का अनुमान है, लेकिन फ्लैश फ्लड के खतरे को देखते हुए मौसम विभाग ने नदी नालों से दूर रहने की सलाह दी है। नवसारी से रौनक जानी और शिमला से विकास शर्मा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
11: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को

0: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे, देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
1: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए इसके ऊपर उसके ऊपर, ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
2: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
1: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को।
3: हॉकी वर्ल्ड कप में भारत ने पाकिस्तान को 5-3 से हराया, टॉप 8 में पहुंची टीम इंडिया, कप्तान हरमनप्रीत और अभिषेक ने दागे 2-2 गोल। जम्मू कश्मीर दौरे पर अमेरिकी राजदूत सर्जियो गोर, श्रीनगर की डल लेक में की शिकारा की सवारी, घाटी की मेहमान नवाजी के मुरीद। मौसम की चुनौतियों के बीच हेमकुंड साहिब यात्रा में रौनक, अब तक 2.5 लाख से ज्यादा श्रद्धालुओं ने टेका मत्था, 10 अक्टूबर तक जारी रहेगी पवित्र यात्रा। सावन के पवित्र महीने में दिख रहे हैं शिव भक्ति के अनोखे रंग, मुंगेर में भव्य कांवड़ यात्रा बनी आकर्षण का मुख्य केंद्र, श्रद्धालु बैद्यनाथ धाम में करेंगे जलाभिषेक। महाराष्ट्र में गणेश उत्सव की तैयारियां तेज, अकोला में बप्पा की प्रतिमाओं को अंतिम रूप दे रहे हैं कारीगर, 14 सितंबर से शुरू होगा उत्सव।
1: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए इसके ऊपर उसके ऊपर, ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी।
4: तो करते हैं न्यूज पद पर सफर और सबसे पहले आपको दिखाते हैं ऐसी तस्वीरें जिनका जिक्र सरेरा है। ये तस्वीरें सुर्खियों में भी है और सोशल मीडिया पर भी है, इनसे आपका बाखबर होना बेहद जरूरी है क्योंकि चौराहे पर इन्हीं की चर्चा है और चर्चा वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाने वाली मिथिला पेंटिंग की भी। देखिए
5: रामायण का हर प्रसंग अपने आप में पूरी किताब है और उसके 50 से ज्यादा प्रसंगों को एक कैनवास पर समेटना आसान नहीं है, लेकिन बिहार की मिथिला पेंटिंग के जरिए ये साकार हो गया है। मधुबनी के सौराठ स्थित मिथिला चित्रकला संस्थान के 160 से ज्यादा कलाकारों ने मिलकर 108 मीटर लंबे कैनवास पर रामचरितमानस की गाथा को मिथिला पेंटिंग के जरिए उकेरा है। 48 घंटे की लगातार मेहनत से तैयार इस कलाकृति में रामचरितमानस के 51 प्रमुख प्रसंगों को दर्शाया गया है। पद्मश्री और राष्ट्रीय पुरस्कार प्राप्त कलाकारों की देखरेख में बनी इस पेंटिंग ने विश्व रिकॉर्ड बनाया है और अब इसे म्यूजियम में सुरक्षित रखने की तैयारी है।

0: कहते हैं गीता के श्लोकों में जीवन का सार छुपा है, इसलिए झारखंड के धनबाद की ये दोनों बहनें हर रोज गीता का पाठ करती हैं, ताकि जीवन के उतार चढ़ाव को समझ सकें। और अब उनकी यही आदत उनकी वैश्विक पहचान भी बन गई है। धनबाद के आन्या और प्रांजल मित्तल ने कम समय में श्रीमद् भागवत गीता के श्लोकों का पाठ करके गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में अपना नाम दर्ज कराया है। प्रांजल के मुताबिक उन्होंने श्रीमद् भागवत गीता के 15वें अध्याय का पाठ करीब 5 मिनट में पूरा करके ये रिकॉर्ड बनाया है। धनबाद के धैया की रहने वाली आन्या और प्रांजल इसका श्रेय अपनी माँ को देती हैं, जिन्होंने बचपन से ही इन्हें गीता के श्लोकों के नियमित पाठ का अभ्यास कराया और इसे इनकी दिनचर्या में शामिल कर दिया। बाढ़ और बारिश से देश के कई हिस्से प्रभावित हैं। इस बीच यूपी के मुजफ्फरनगर से एक ऐसी तस्वीर सामने आई जो लोगों की खूब सहानुभूति बटोर रहा है। असल में लगातार बारिश की वजह से यहां के शिव चौक पर पानी भर गया। ऐसे में बारिश के बीच वहां से गुजर रहे एक डिलीवरी बॉय का मोबाइल पानी में गिर गया। वो देर तक उसे पानी में ढूंढता रहा। राहगीरों के बीच वो कभी पानी में हाथ डालकर फोन तलाशता तो कभी बेबसी में पानी को देखता, लेकिन जब काफी ढूंढने के बाद भी मोबाइल नहीं मिला तो बेबसी में उसकी आंखें छलक पड़ी। युवक का नाम विशाल है। उसके मुताबिक उसका फोन 45,000 रुपए का था, जिसे उसने किस्तों पर खरीदा था। उसके लिए मोबाइल महज एक महंगा फोन नहीं बल्कि उसकी रोजी रोटी का जरिया भी था। ऐसे में अब उसने नगर पालिका से आर्थिक मदद की गुहार लगाई है। सावन का महीना है, ऐसे में बाबा बैद्यनाथ धाम जाने वाले कांवड़िया पथ भगवा रंगों से गुलजार है। ये तस्वीरें असरगंज के कच्ची कांवड़िया पथ की है, जहां शिव भक्तों कांवड़ियों का कारवां पैदल बाबा बैद्यनाथ धाम की ओर बढ़ रहा है। इस यात्रा में श्रद्धा के साथ साथ कांवड़ों की कलात्मकता भी लोगों का ध्यान खींच रही है। किसी कांवड़ में भगवान विष्णु की विशाल प्रतिमा योग निद्रा की मुद्रा में नजर आ रही है, तो किसी में भगवान श्री राम को भगवान शिव की पूजा करते हुए दिखाया गया है। वहीं कुछ कांवड़ भगवान महाकाल की भव्य प्रतिमा और कछुए की आकृति से सजी हुई है। ये तस्वीरें राजस्थान के धौलपुर की हैं। यहाँ बसेड़ी कस्बे में भव्य शिव यात्रा निकाली गई, जिसमें लोगों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। इस यात्रा में सबसे खास रहा भगवान भोलेनाथ के रूप में कलाकारों की प्रस्तुति, जिसे देखकर लोग भक्ति में भाव विभोर नजर आए। यात्रा के दौरान जगह जगह लोगों ने फूल बरसाए। भोलेनाथ के जयकारों और भजनों की धुन पर लोग झूमते गाते नजर आए।
1: हेमकुंड साहिब में 2.5 लाख से ज्यादा श्रद्धालुओं ने टेका मत्था। आइए आपको सीधे लिए चलते हैं न्यूज एक्सप्रेसवे पर, जहां देश भर की कुछ और जरूरी खबरें कर रही हैं आपका इंतजार।
0: पीएम मोदी की अध्यक्षता में हुई केंद्रीय कैबिनेट की बैठक में आज बुनियादी ढांचे से जुड़ी 5 बड़ी परियोजनाओं को मंजूरी दी गई। इनमें रेलवे की 4 परियोजनाएं शामिल हैं, जबकि बिहार में एक 4-लेन हाईवे परियोजना को भी हरी झंडी दी गई है। रेल परियोजनाओं में पश्चिम बंगाल और ओडिशा के महत्वपूर्ण रेल मार्गों को शामिल किया गया है। वहीं बिहार में सड़क संपर्क को बेहतर बनाने के लिए मुजफ्फरपुर सीतामढ़ी सोनबरसा 4-लेन हाईवे प्रोजेक्ट को मंजूरी दी गई है। भारत रत्न जननायक कर्पूरी ठाकुर के गांव और उसके आसपास रहने वाले लोगों को रेलवे की ओर से बड़ी सौगात मिली है। दरभंगा से नई दिल्ली जाने वाली बिहार संपर्क क्रांति एक्सप्रेस ट्रेन का ठहराव आज से कर्पूरी ग्राम स्टेशन

0: राजस्थान के पाली से एक दिल छू लेने वाली तस्वीर सामने आई है, जिसमें करीब 200 फीट ऊपर हाई वोल्टेज तारों में फंसे एक विदेशी पक्षी ग्रेटर फ्लेमिंगो को सफलतापूर्वक बचाया गया। इस रेस्क्यू के लिए वन विभाग के साथ साथ बिजली विभाग ने भी संवेदनशीलता और तत्परता दिखाई और 200 फीट से भी ज्यादा ऊंचाई पर पहुंचकर फ्लेमिंगो को सुरक्षित नीचे उतारा गया। इसके लिए बिजली विभाग को इमरजेंसी शटडाउन भी करना पड़ा। इस नेक काम में ग्रामीणों ने भी सहयोग किया। बाबा बूढ़ा अमरनाथ के लिए श्रद्धालुओं का दूसरा जत्था पुंज पहुंच गया है। यहां मंडी बेस कैंप में श्रद्धालुओं का फूलमालाओं से स्वागत किया गया। बूढ़ा अमरनाथ यात्रा के लिए पहुंचे इस दूसरे जत्थे में देश भर से 1938 श्रद्धालु शामिल हैं। बाबा बूढ़ा अमरनाथ जम्मू कश्मीर के पुंछ जिले की मंडी तहसील के राजपुरा गांव में स्थित भगवान शिव का एक अत्यंत प्राचीन मंदिर है। सिखों के पवित्र तीर्थ गुरुद्वारा श्री हेमकुंड साहिब में तीर्थयात्रियों की संख्या ने पिछले कई सालों का रिकॉर्ड तोड़ दिया है। आंकड़ों के मुताबिक अब तक 2,62,000 श्रद्धालु हेमकुंड साहिब पहुंचकर गुरुद्वारे में मत्था टेक चुके हैं। बड़ी बात यह है कि बारिश, ठंड और पल पल बदलते मौसम के बावजूद श्रद्धालुओं के उत्साह में कोई कमी नहीं है। यात्रा 10 अक्टूबर तक जारी रहेगी। ऐसे में आने वाले दिनों में श्रद्धालुओं की संख्या और बढ़ने की उम्मीद है।
1: और अब बात ऑटो टैक्सी ड्राइवर्स के मराठी टेस्ट की। महाराष्ट्र में टैक्सी और ऑटो रिक्शा चालकों के लिए मराठी भाषा का मुद्दा एक बार फिर गर्मा सकता है। सरकार की ओर से मराठी सीखने के लिए दी गई 100 दिन की मोहलत खत्म हो चुकी है। अब ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट की बैठक में तय होगा कि भाषा की शर्त पूरी नहीं करने वाले ड्राइवर्स पर लाइसेंस या फिर परमिट सस्पेंड करने जैसी कार्रवाई होगी या उन्हें एक और मौका दिया जाएगा।
0: महाराष्ट्र सरकार ने मुंबई समेत पूरे महाराष्ट्र में करीब 2,00,000 गैर मराठी रिक्शा और टैक्सी चालकों के लिए बोलचाल की मराठी सीखना जरूरी किया था। इसके लिए उन्हें 100 दिन की मोहलत दी गई थी, जो मंगलवार को खत्म हो गई।
2: महाराष्ट्र सरकार ने आदेश निकाला था कि जिन टैक्सी और ऑटो रिक्शा चालकों को मराठी नहीं आती, उनके लाइसेंस या परमिट जो है वो कैंसिल किए जाएंगे। मराठी सीखने के लिए 100 दिन का समय दिया गया था, जो अब पूरा हो चुका है और आज से कार्रवाई शुरू होनी थी, लेकिन कुछ संस्थाओं ने मांग की थी कि और समय दिया जाए मराठी सीखने के लिए। हमारे साथ यहाँ टैक्सी चलाते हैं भाई, पहले तो आपका नाम बताइए और इस फैसले को आप कैसे देखते हैं?
3: सर आपका नाम? फैसला सुनील कुमार तिवारी जी। सर जी, जो फैसला है वो फैसला तो अच्छा है। मराठी सब जितने भी यहाँ है उनको सीखना तो चाहिए, लेकिन जो समय है समय बढ़ाना चाहिए। सरकार को भी हमारे बारे में सोचना चाहिए। हम भी गरीब हैं, रोज का 500 रुपया 600 रुपया कमाते हैं, उसमें परिवार का पालन पोषण करते हैं, लेकिन जो हमारे ऊपर सरकार है वो दया दृष्टि दिखाना बहुत जरूरी है। और सरकार जी से हम प्रताप सर नाई सर जी से बोलना चाहते हैं कि हमारे लिए थोड़ा तकलीफ, हमें आप समझिए हमारे बारे में।
2: आपने मराठी सीखी और या आपको कब से आती थी मराठी?
3: मराठी से मला मुंबई मध्ये 20 वर्ष झाली। महाराष्ट्र मध्ये मी सर्वे मराठी बोलतो साहेब। हाँ, आपल्या काय चुकी झाली हो त्याच्यात साहेबला माफी मांगतो मी। पकडे सर्वे टॅक्सीला उभी करा, इथे थांबा, पुढे जावा, जा सर्वे येतो मराठी मध्ये।
2: आपको लगता है ये फैसले की जरूरत थी, क्योंकि मतलब इतने सालों से चल रहा था, तो आपको लगता है ये फैसला सही है या इसकी जरूरत थी इस फैसले की?
3: जरूरत तो सरकार ने लाई है, हम लोगों तो हमारे लोग मराठी लोग इतने अच्छे हैं बेचारे कि बोलने के लिए कोई बोलता ही नहीं है, लेकिन सरकार एक कानून ला रही है तो उसका पालन करना हमारा कर्तव्य तो है, तो उसका कर्तव्य हम करेंगे। लेकिन इतना लाइसेंस रद्द कर दोगे, परमिट रद्द कर दोगे, गाड़ी में कोई प्रॉब्लम हो जाएगा, ऐसा कुछ करोगे तो फिर तो दिक्कत है सर हमारे लिए भी, हमें भी परेशानी है, उसका हमें को झेलना पड़ेगा।
0: ऑटो और टैक्सी चालकों का कहना है कि 100 दिनों में उन्हें पर्याप्त प्रशिक्षण नहीं मिल पाया। उनका कहना है कि वे थोड़ी बहुत मराठी बोल लेते हैं, लेकिन जिन लोगों ने अभी तक मराठी नहीं सीखी है उनके लाइसेंस या बैज रद्द करना उचित नहीं है, क्योंकि इसी काम से उनके परिवार का घर चलता है।
2: शंभू जी, 100 दिन पूरे हो चुके हैं, महाराष्ट्र सरकार ने कहा था कि अगर मराठी नहीं बोलेंगे तो कार्रवाई होगी, लाइसेंस सस्पेंड होगा, कैसे देखते हैं डिसीजन को, क्या कहेंगे? 100 दिन पूरे हो चुके हैं,
3: अभी तो कुछ पता नहीं चल रहा है
2: जी।
3: अभी तो कुछ पता नहीं चल रहा है।
2: आपने सीखी मराठी, आपको आती है?
3: हाँ, मराठी थोड़ा बहुत बोलने तो आता है
2: जी। काम चल जाएगा मराठी?
3: हाँ, काम चल जाएगा।
2: पर क्या आपको लगता है और समय देना चाहिए सीखने के लिए?
3: और समय तो देना चाहिए था।
2: आपका नाम बताइए और सरकार ने जो फैसला लिया है 100 दिन

0: पूरे 100 दिन मराठी सीखने का नहीं तो कार्रवाई होगी, उसके 100 दिन पूरे हो चुके, इस फैसले को कैसे देखते हैं?
1: अब हम लोग तो पढ़ लिए हैं, मराठी अब सर्टिफिकेट मिलेगा, मराठी भी समझता हूँ, बोलता भी हूँ।
0: कुछ लोग मांग कर रहे हैं कि और थोड़ा समय देना चाहिए,
1: कुछ लोग नहीं आ पाए हैं ना, इतना एक साथ सबको नहीं हो पाया, उसका टाइम देना चाहिए सबको भाई, अभी सब नहीं पढ़ पाए हैं, सर्टिफिकेट कुछ को मिल रहा अभी दिए नहीं, मिलेगा हम लोगों को, बोले आरटीओ में।
0: पर आप इस फैसले को सही मानते हैं, आपको लगता है सही फैसला है?
1: सही फैसला क्या बोले हम लोग, जो बोलेंगे हम लोगों के विरुद्ध में होता है काम,
0: इसकी जरूरत है आपको लगता है?
1: जरूरत है, हम लोग तो सब भाषा समझता हूँ, इंग्लिश हिंदी मराठी मारवाड़ी गुजराती सब भाषा समझता बोलता हूँ, एक ही भाषा का हमें 5-6 भाषा ज्ञान है, मराठी भी बोलता हूँ, मराठी भी आता, हम लोग यहाँ 32 साल से चल रहे हैं।
2: मराठी सीखने के 100 दिन पूरे होने पर तकरीबन सभी ऑटो और टैक्सी चालकों का कहना है कि सरकार को कुछ और मोहलत देनी चाहिए। उनके चेहरे की मायूसी को देखकर ये समझा जा सकता है कि सरकार के इस फैसले से वो कितने बेबस नजर आ रहे हैं।
0: 100 दिन पूरे हो चुके हैं, सरकार ने कहा था जिनको मराठी नहीं आएगी टैक्सी और ऑटो रिक्शा चालकों को उन पर कार्रवाई की जाएगी, आप कैसे देखते हैं इस डिसीजन को?
3: हम अभी कुछ नहीं बोल सकता, अभी तो मैं गांव से आया हूं।
0: जी जी, आपका नाम क्या दादा?
3: साबिर
0: जी। इस डिसीजन को आप कैसे देखते हैं, ये फैसला सही लगता है आपको कि मराठी नहीं आएगा तो लाइसेंस आपका कैंसिल हो जाएगा?
3: नहीं, नहीं,
0: फैसला सही नहीं लगता, क्या कहेंगे इसको?
3: जैसे पहले चल रहा था उसी चलने दो, आप क्या?
2: ऑटो और टैक्सी चालकों से बातचीत के दौरान यही मांग सामने आई कि सरकार उन्हें कुछ और समय दे और तुरंत कार्रवाई न करे।
0: अब आपकी सरकार से क्या मांगे? चलिए आपको तो मराठी आती है, आपको तो दिक्कत नहीं होगी, लेकिन जो सीख नहीं पाई है, जिनको नहीं आ पा रही है, आप क्या मांग सरकार से मांग करेंगे?
4: सरकार से यही मांग करते हैं कि पब्लिक सीख रही है, जो टैक्सी वाले रिक्शा वाले हैं वो लोग सब सीख रहे हैं, जरूरत है सीखने की, लेकिन आप एक्शन मत लीजिए सर जी, आप सीख रहे हो सीखेंगे, उनको प्रेशर डालो सीखेंगे, लेकिन अब एक्शन ना करिए कि जिससे हम लोग प्रताड़ित हो यहाँ से रहने के लिए।
0: बिल्कुल, तो साफ है कि सरकार का जो फैसला है कि मराठी आनी चाहिए वो सीखेंगे भी, ये भी तैयारी है, लेकिन यही सरकार से विनती है इनकी कि इसको लेकर सरकार कोई एक्शन ना ले, क्योंकि यही इनकी रोजी रोटी है, और अगर यही सरकार छीन लेगी तो ये कहाँ जाएंगे और क्या करेंगे।
2: वहीं महाराष्ट्र के परिवहन मंत्री प्रताप सरनाइक का कहना है कि सरकार ने गैर मराठी रिक्शा और टैक्सी चालकों को मराठी सीखने के लिए 100 दिन का पर्याप्त समय दिया है। सरकार का दावा है कि अब तक करीब 1,65,000 रिक्शा और टैक्सी चालकों को मराठी सीखने का सर्टिफिकेट दिया जा चुका है। उन्होंने आगे ये भी कहा कि जिन चालकों को मराठी नहीं आती उनके खिलाफ कानून के तहत प्रक्रिया शुरू की जाएगी।
5: हमारे राज्य में आजू बाजू के राज्य से आने वाले सभी जो रिक्शा टैक्सी ड्राइवर है उनको यही आह्वान करते हैं कि ये महाराष्ट्र की संस्कृति है, महाराष्ट्र की परंपरा है, मराठी में अभिजात भाषा का दर्जा आदरणीय पंतप्रधान जी ने दिया, उसका आदर करना आपका भी कर्तव्य है जैसे हमारा कर्तव्य है, तो आप भी मराठी सीखिए और इस अभियान में आप भाग ले लीजिए, मगर कानून के खिलाफ अगर कुछ आप करोगे तो उसके ऊपर हमें कार्रवाई करनी पड़ेगी।
2: मराठी को लेकर ये नया नियम पूरे महाराष्ट्र के लिए है। जहां तक मुंबई की बात है तो यहां 48,000 से ज्यादा ऑटो ड्राइवर हैं, जबकि 3,680 से ज्यादा टैक्सी ड्राइवर जो रोजाना ऑटो टैक्सी चलाकर अपना गुजारा कर रहे हैं, और अब गैर मराठी खासकर उत्तर भारतीय ड्राइवर नए नियम को लेकर मराठी सीख तो रहे हैं, लेकिन उनका कहना है कि उन्हें कुछ और समय मिलना चाहिए। ऐसे में सबसे बड़ा सवाल यही कि अब सरकार का अगला कदम क्या होगा? क्या मराठी नहीं सीखने वाले ड्राइवरों के लाइसेंस या परमिट सस्पेंड किए जाएंगे या सरकार उन्हें एक और मौका देगी? मुंबई से दीपेश त्रिपाठी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
6: मिर्जापुर द मूवी का नया गाना हो गया है रिलीज। इसके साथ ही फिल्म जगत से जुड़ी कुछ और खबरों को जानने के लिए आइए सीधे चलें फिल्मी मोड़ पर।
2: डायरेक्टर जोया अख्तर की फिल्म जिंदगी न मिलेगी दोबारा में ऋतिक रोशन और कैटरीना कैफ की जोड़ी ने खूब चर्चा बटोरी थी। फिल्म में दोनों के बीच एक किसिंग सीन भी था जो कैटरीना का पहला ऑन स्क्रीन किस था। अब जोया ने बताया है कि कैटरीना इस सीन के लिए क्यों तैयार हुई। उनके मुताबिक स्क्रिप्ट की जरूरत को समझते हुए कैटरीना ने इसे स्वीकार किया। जोया ने लैला के किरदार की कहानी को स्लीपिंग ब्यूटी और ऋतिक के किरदार को प्रिंस से जोड़ते हुए इस सीन को जरूरी बताया। हनुमान की दुनिया से प्रशांत वर्मा सिनेमैटिक यूनिवर्स का अगला चैप्टर महाकाली लगातार चर्चा में है। फिल्म में अभिनेता अक्षय खन्ना एक बिल्कुल नए अवतार में नजर आने वाले हैं। वो फिल्म में असुरों के शक्तिशाली गुरु शुक्राचार्य का किरदार निभाएंगे। धुरंधर में शानदार अभिनय के बाद अक्षय खन्ना का ये नया अंदाज दर्शकों के लिए खास होने वाला है। फिल्म की पहली झलक 24 अगस्त को सामने आएगी। प्रशांत वर्मा की कहानी और काल्पनिक आधार पर बनी इस फिल्म का निर्देशन पूजा कुल्लुरु कर रही है। महाकाव्य श्री रामायण कथा का पहला पोस्टर और टीजर जारी कर दिया गया है। फिल्म में देव शर्मा भगवान श्री राम की भूमिका में नजर आएंगे, जबकि अंजलि अरोड़ा माता सीता के किरदार से फीचर फिल्म में कदम रख रही हैं। अभिषेक सिंह के निर्देशन में बनी ये फिल्म हिंदी और छत्तीसगढ़ी दोनों भाषाओं में शूट की गई है। प्रकाश महोबिया और संजय बुंदेला ने इसे प्रोड्यूस किया है। फिल्म को एजे फिल्म एंटरटेनमेंट वर्ल्ड प्रस्तुत कर रहा है। श्री रामायण कथा 25 सितंबर को दोनों भाषाओं में सिनेमाघरों में रिलीज होगी।

मिर्जापुर द मूवी को लेकर फैंस का क्रेज लगातार बढ़ता जा रहा है। फिल्म का नया गाना भी रिलीज कर दिया गया है, जिसमें पुराने पसंदीदा गाने वारूम फॉर एवर को नए और इमोशनल अंदाज में पेश किया गया है। एक्सेल एंटरटेनमेंट और अमेजन MGM स्टूडियोज ने इस गाने को रिलीज किया है। गुरमीत सिंह के निर्देशन में बनी फिल्म की कहानी पुनीत कृष्णा ने लिखी है। रितेश सिद्धवानी और फरहान अख्तर इसके प्रोड्यूसर हैं। मिर्जापुर द मूवी 4 सितंबर जन्माष्टमी के दिन हिंदी और तेलुगु में सिनेमाघरों में रिलीज होगी।

0: चलिए न्यूज पथ पर खबरों के सफर को आगे बढ़ाया जाए, लेकिन उससे पहले हमें रुकना होगा यहाँ, यानी कि वायरल चौक पर। यहाँ देख लेते हैं उन वीडियोस को जो कि सोशल मीडिया में धमाल मचाए हुए हैं। इनमें से कुछ वीडियोस ऐसे हैं जो आपको इमोशनल कर देंगे और कुछ आपको हंसने पर मजबूर।
1: वक्त बदला, उम्र बदली, जिंदगी के रंग भी बदल गए, लेकिन भाई की कलाई और बहन के प्यार का रिश्ता आज भी वैसा ही है। उम्र चाहे कितनी भी हो जाए, थकान चाहे कितनी भी हो, बहन राखी लेकर अपने भाई के घर जरूर पहुंचती है। बचपन में जिस रिश्ते में शरारतें थी, वही रिश्ता उम्र के आखिरी पड़ाव तक प्यार और अपनापन बनाए रखता है। भाई की कलाई पर बंधा ये धागा सिर्फ राखी नहीं, बल्कि बचपन से बुढ़ापे तक साथ निभाने वाले प्यार के निशाने है। कुछ भी हो, बॉडी तो आज ही बनेगी और ड्राई फ्रूट का डब्बा भी आज ही खाली होगा। बालकनी में बैठा ये बंदर भाई बड़े आराम से ड्राई फ्रूट खा रहा है। घर से डब्बा निकाला, आराम से बैठा और अब पूरा डब्बा साफ करने का प्लान है। बंदर का ये अंदाज देखकर ऐसा लग रहा है जैसे उसे किसी बात की कोई जल्दी ही नहीं है। सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे इस वीडियो को देखकर लोग खूब हंस रहे हैं और बंदर की इस हरकत को काफी पसंद कर रहे हैं। एक बच्ची ने गाय को खाना खिलाने की इच्छा जताई तो पापा ने बेटी की खुशी के लिए खुद गाय का रूप धारण कर लिया। कार्डबोर्ड पर गाय की तस्वीर बनाई गई और उसके पीछे पापा छिप गए। बच्ची बड़े प्यार से गाय को खाना खिलाती रही, लेकिन उसे जरा भी अंदाजा नहीं था कि तस्वीर के पीछे उसके पापा छिपे हैं। बेटी की मासूमियत और पापा का ये प्यारा अंदाज लोगों का दिल जीत रहा है। वीडियो देखकर लोग कह रहे हैं, बच्चों की खुशी के लिए पापा कुछ भी कर सकते हैं। अनुशासन हो तो ऐसा और ट्रेनिंग हो तो ऐसी। इस वीडियो में एक प्यारा सा डॉगी अपने ऑफिसर की हर हरकत को बिल्कुल उसी अंदाज में दोहराता नजर आ रहा है। ऑफिसर जैसे जैसे आगे बढ़ते हैं और जो कुछ करते हैं, डॉगी भी उनके पीछे जाकर वैसा ही करने लगता है। डॉगी की समझदारी और शानदार ट्रेनिंग देखकर लोग हैरान हैं। सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा ये वीडियो लोगों को खूब पसंद आ रहा है। डॉगी का अनुशासन और अपने ऑफिसर के साथ तालमेल देखने लायक है। बचपन शायद ऐसा ही होता है जहाँ महंगे खिलौनों से ज्यादा मजा मिट्टी में खेलने में आता है। घर के सामने जमा ऊंची मिट्टी और दो बच्चे, बस फिर क्या था, शुरू हो गया खेल। दोनों बच्चे बारी बारी से मिट्टी के ढेर पर चढ़ते, फिर फिसल कर नीचे आते और दोबारा ऊपर चढ़ जाते। यही सिलसिला लगातार चलता रहा। चेहरे पर हंसी, आंखों में चमक और खेलने का जुनून साफ दिखाई देता है। बच्चों की ये मासूम मस्ती देखकर लगता है असली बचपन तो मिट्टी में ही मिलता है।
0: न्यूज पथ के सफर में अब सोशल अड्डा का रुख करते हैं, जहां आज बात होगी देश की राजधानी दिल्ली की। दिल्ली में साफ सफाई को बढ़ावा देने के लिए एक नया अभियान शुरू किया गया है। दिल्ली की मुख्यमंत्री श्रीमती रेखा गुप्ता ने दिल्ली को कूड़े से आजादी स्वच्छता अभियान 2026 की शुरुआत की है। सीएम ने बताया कि दिल्ली में यह स्वच्छता अभियान 17 अगस्त से 2 अक्टूबर तक चलाया जाएगा। इस अभियान के तहत सार्वजनिक जगहों के साथ ही स्कूलों, सरकारी अस्पतालों, शौचालयों की सफाई भी सुनिश्चित की जाएगी। सीएम ने अपील की है कि सभी लोग इस अभियान में हिस्सा लें और माई सिटी माई रिस्पॉन्सिबिलिटी की फीलिंग के साथ काम करें। सीएम रेखा गुप्ता ने ये घोषणा भी की है कि स्वच्छता के क्षेत्र में बेहतरीन काम करने वाले वार्ड को 1 करोड़ रुपए का इनाम दिया जाएगा। सीएम रेखा गुप्ता ने बताया कि वे दिल्ली के सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स से कहेंगी कि वो कहीं भी कूड़ा दिखाई देने पर 3 लोगों को टैग करें। लोग रील पर दिल्ली सीएम को टैग करें, दूसरा अपने इलाके के विधायक को और तीसरा अपने पार्षद को, ताकि उस जगह पर सफाई सुनिश्चित की जा सके। मुख्यमंत्री ने इस अभियान के लिए 4 C's पर जोर दिया है, जिसमें कलेक्शन, क्लीनिंग, कन्वर्जन और सर्कुलर इकोनॉमी शामिल है। इसके जरिए कूड़े से ग्रीन फ्यूल बनाने का काम किया जाएगा। इसके साथ ही सीएम ने सार्वजनिक स्थानों पर स्वच्छता अभियान, कचरे को स्रोत पर ही अलग अलग करने, सिंगल यूज प्लास्टिक के इस्तेमाल को कम करने का भी आह्वान किया है। उन्होंने बताया कि 23 अगस्त और 30 अगस्त को जेजे क्लस्टर का सफाई अभियान शुरू किया जाएगा। ऐसे ही 6 सितंबर और 13 सितंबर को भी ये सफाई अभियान जारी रखा जाएगा। 17 सितंबर को हर इलाकों के सरकारी अस्पतालों के सफाई अभियान का कार्यक्रम किया जाएगा, जिसमें लोगों से बढ़ चढ़कर शामिल होने की अपील की गई है। वहीं 17 सितंबर से 2 अक्टूबर तक मेरा स्कूल सबसे सुंदर की प्रतियोगिता होगी, जिसमें स्कूलों के मेंटेनेंस की ओर ध्यान दिया जाएगा। दिल्ली को स्वच्छ बनाने के लिए शुरू किए गए इस नए अभियान को लेकर हमने दिल्ली में लोगों से बात की और उनकी राय जानी।
2: राजधानी दिल्ली को साफ सुथरा करने को लेकर के दिल्ली सरकार के द्वारा कूड़े से आजादी नाम की एक मुहिम शुरू की गई है। जो दिल्ली का वार्ड सबसे साफ सुथरा होगा उसके लिए प्रतियोगिता की जाएगी, उसको 1 करोड़ की इनाम राशि दी जाएगी। कूड़ा को साफ सुथरा करने को लेकर के जो दिल्ली सरकार ने कहा है कि 1 करोड़ दिया जाएगा, कितना अच्छा कदम मानते हैं इसको आप?
3: ये तो बहुत ही अच्छा कदम है। आज से कुछ टाइम पहले ही मेरे घर पे पूजा हुई थी दिल्ली में, ऐसी कूड़ों की लेके इतनी समस्या हुई कि फेंकने की जगह नहीं है। कूड़े वाले अलग ड्रामा करते हैं, लाइक एक दिन का कूड़ा आपको 4 दिन के बाद लेके जाएंगे। हर गली में आप देखो तो कहीं कुछ पड़ा है, कहीं कुछ पड़ा है, जैसे बीमारियां फैल रही है, बहुत सी दिक्कतें हो रही है। तो अच्छी बात है कि सरकार इसको लेके सोच रही है, क्योंकि आम जनता सच में बहुत परेशान होती है, और जब बारिश हो जाता है तो कूड़े की वजह से और ज्यादा गंदगी फैलती है।
4: मुहिम केवल कागजों तक सीमित ना रह जाए, इसको इम्प्लीमेंट करना बहुत ज़्यादा जरूरी है। खाली इनाम देने से कुछ नहीं होगा, पेनल्टी भी इम्पोज होनी चाहिए। जो वार्ड सबसे खराब हो उसके ऊपर 1 करोड़ की पेनल्टी भी लगाई जाए, यानी 1 करोड़ ये नहीं मुख्यमंत्री के पोस्टर निकाल करके दे दिया जाए। जहाँ पे खराब काम हो रहा है, दिल्ली में कितने सारे वार्ड होंगे, उस वार्ड पे जिसपे पेनल्टी लगी है उसका इनाम उसको दिया जाए, वो ज़्यादा बेहतर है। और ये रिस्पॉन्सिबिलिटी फिक्स की जानी चाहिए किसी न किसी सरकारी अधिकारी के ऊपर, MCD के ऊपर, JE हो, AE हो, या बिल्डिंग डिपार्टमेंट, या जो भी इसका कूड़े का काम करता है उसके ऊपर जिम्मेदारी फिक्स भी होनी चाहिए। योजना तो बहुत अच्छी है। कूड़े को खत्म करने के लिए किसी भी स्तर तक जाना पड़े वो जाना चाहिए। जब कूड़े से हमें आज़ादी मिलेगी तभी लोगों के डेंगू से, मच्छरों से और या बीमारियों से आराम मिल पाएगा।
5: जी, ये जो मैंने सुना है अभी कि ऐसा सुनने में आया है कि 1 करोड़ रुपए की राशि मिलेगी जो भी वार्ड पे जिसमें मतलब साफ़ सफाई और ये सब चीज़ें अच्छी रहेंगी, देखो देखा जाए तो वैसे तो अच्छी चीज़ है, क्योंकि ये क्या है, एक तरीके से कंपटीशन को जन्म दे रहा है। और कंपटीशन में क्या होता है कि इंसान थोड़ी सी मेहनत करता है, तो जैसे अभी तक हम देख रहे हैं साफ़ सफाई के नाम पे जैसे हम बात करें तो उतनी साफ़ सफाई नहीं रहती, चाहे उसके पीछे कोई भी वजह हो, किसी भी वजह से हो, साफ़ सफाई उस तरीके से नहीं है। लेकिन जब कंपटीशन आ गया है तो हो सकता है कि जो भी काउंसलर हैं एरिया के वो इस पे मेहनत करें, और अपने उनके नीचे जो भी लोग हैं इसके लिए, जो जो लोग जिम्मेदार हैं उनको भी प्रोत्साहित करेंगे और फोर्स करेंगे कि भाई, क्योंकि जब इसके लिए कंपटीशन रखा गया है तो ये भी है कि जब इसका एक एंड होगा तो वो कहीं ना कहीं प्रकाशित भी होगा कि फलाने वार्ड पे साफ़ सफाई के लिए हम इसको पुरस्कार कर रहे हैं। तो जहाँ तक देखा जाए तो अच्छी योजना है।
0: दिल्ली में यमुना के किनारे एक भव्य रिवर फ्रंट बनाने की तैयारी है, यानी कि यमुना का किनारा सिर्फ नदी और घाट तक अब सीमित नहीं रहेगा, बल्कि यहां पर घूमने फिरने से लेकर मनोरंजन और पर्यटन तक की सुविधाएं विकसित करने का प्लान है।
6: राजधानी दिल्ली की जीवनदायिनी कही जाने वाली यमुना किनारे विकास की नई तस्वीर तैयार करने की मुहिम शुरू हो गई है। गुजरात के साबरमती रिवर फ्रंट की तर्ज पर यमुना रिवर फ्रंट विकसित होगा। इस सिलसिले में दिल्ली के जल मंत्री प्रवेश वर्मा ने अधिकारियों के साथ गुजरात का दौरा कर साबरमती मॉडल का बारीकी से अध्ययन किया।
7: सामने दिल्ली में सबसे बड़ा चैलेंज है यमुना रिवर फ्रंट बनाना, यमुना मैया को साफ करना। हमने साबरमती रिवर फ्रंट से बहुत सारी योजनाओं को सीखा है और हमने उनका प्रेजेंटेशन भी लिया है, उनके अधिकारियों को एक बार दिल्ली में भी बुलाकर पूरा समझेंगे।
6: यमुना रिवर फ्रंट को आधुनिक, आकर्षक और पर्यावरण के अनुकूल बनाया जाएगा और साबरमती मॉडल को दिल्ली की जरूरतों के मुताबिक लागू किया जाएगा। योजना के तहत यमुना किनारे खूबसूरत वॉकवे, साइकिल ट्रैक के साथ ही खेल और मनोरंजन से जुड़ी सुविधाएं विकसित की जाएंगी। कालिंदी कुंज के पास करीब 60 करोड़ रुपए की लागत से आधुनिक छठ घाट का निर्माण किया जाएगा। पारंपरिक धोबी घाटों को व्यवस्थित कर वहां आधुनिक मैकेनाइज्ड लॉटरी मशीनें लगाई जा सकती है। इसके साथ ही यमुना किनारे पर्यटन को बढ़ावा देने पर भी जोर रहेगा। हालांकि यमुना रिवर फ्रंट की सबसे बड़ी चुनौती नदी की सफाई और पर्यावरण संरक्षण रहेगा, जिसके लिए लगातार काम किए जा रहे हैं और आगे भी सीवेज प्रबंधन, जल प्रदूषण और नियंत्रण और यमुना के इकोसिस्टम को सुरक्षित रखने पर खास ध्यान दिया जाएगा। यमुना रिवर फ्रंट की इस योजना के मुकम्मल होने के बाद दिल्ली की एक अलग तस्वीर नजर आएगी, जो सेहतमंद होने के साथ आकर्षक भी होगी। नर्मदा से नरेंद्र पेपरवाला के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, ब्रिटिश टुडे।
8: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मोड़-धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, मोड़ इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ। एक
9: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर। असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
10: और दुर्भाग्य कहता है
11: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
12: अविश्वास में विश्वास बसता है,
9: जो हम में अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
13: गुड न्यूज टुडे।

0: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
1: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
0: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
1: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
0: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
1: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
0: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
1: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे।